रखिए कि जो भी काम वो आज करने जा रहा है उसे कर पाने की क्षमता और योग्यता उसमें है भी या नहीं है, तो इस विचार के बाद ही शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि अगर काम उसके बूते के बाहर है तो वो कुछ और करे, क्योंकि अगर ऐसा काम जो वो नहीं कर सकता है, जो उसकी ताकत के भीतर नहीं है, तो वो लोगों की हंसी का पात्र हो जाएगा। बड़ा कुछ करने का सपना है तो उस दिशा में आगे कदम बढ़ाने से पहले अपने भीतर के आईने में यानी मन रूपी दर्पण में एक बार जरूर झांक ले। कहते हैं कि इस मन के दर्पण की हजार आंख होती हैं। वैसे तो मनुष्य की दो आंखें होती हैं, लेकिन मन रूपी दर्पण की तो हजार आंखें होती हैं। तो इसलिए अगर इसमें देखते हैं तो ये झूठ नहीं बोलता। तो मन का ये दर्पण ठीक ठीक बता देगा कि जो भी हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। अगर जिद में आकर हमने अपने मन रूपी दर्पण की बात को टालने की या फिर झुटलाने की कोशिश की, तो हो सकता है जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसमें शायद सफलता नहीं मिले। तो सीधी सी बात है कि अगर आंखों से नहीं दिखाई देता तो कसीदा या डिजाइन बनाने की क्या जरूरत है। अगर ऐसा जिद में आकर किया तो वो जो सुई की नोक है ना, वो तो उंगलियों को लहूलहान कर देगी, क्योंकि आपको डिजाइन बनाना या कसीदा करने की जो कला है वो आती ही नहीं है, तो ऐसा काम क्यों करना। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, श्रोताओं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे दूसरों की देखा देखी ऐसे काम करने लगते हैं या करने की कोशिश करने लगते हैं जिसकी करने की जो योग्यता होती है वो उनमें है ही नहीं। अब उन्हें ये गलत फहमी रहती है कि जब सामने वाला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई ऐसे में अगर उसे कोई उसका अपना उसे ऐसा करने से रोकने की समझाइश दे तो मुमकिन है, संभव है कि देखा देखी करने वाले को बात समझ में आ जाए कि भाई उसने अगर ऐसा किया है तो मैं भी कर सकता हूं। ये पहले विचार कर लेना चाहिए कि मैं इस योग्य हूं कि नहीं, उसके बाद ही अपना कदम बढ़ाना चाहिए। श्रोताओं, इसी प्रसंग में एक घटना हमें याद आ गई। शहर में कुछ लड़के लड़कियों का किसी टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन होना था और जो ऑडिशन करने वाले लोग थे यानी चयनकर्ता जो थे वो मुंबई से आए थे। तो मेरे पड़ोस के वर्मा जी का बेटा भी इसमें भाग लेना चाहता था। अब उसने कॉलेज में एक दो नाटकों में भाग भी लिया था, लेकिन ऑडिशन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी वो मेंटली यानी कि मानसिक रूप से कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा। घर में मां को डांट देता, अगर वो नाश्ता या खाना खाने को कहती तो कहती ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, खा लूंगा। इसी तरह पिता से भी एक दिन उलझ पड़ा जब पिता ने उसे एक अर्जेंट चिट्ठी रजिस्ट्री से भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने को कहा तो उसने पलट कर जवाब दिया, आपको मालूम नहीं क्या कि मुझे ऑडिशन देना है, तैयारी करनी है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, आपकी तरह मुझे वो ऑफिस क्लर्क नहीं बनना है। और फिर जानते हैं पोस्ट ऑफिस में कितनी भीड़ रहती है, मैं घंटों तक लाइन में तो नहीं खड़ा रह सकता। बेटे के इस अंदाज और बोलने के तरीके से
पिता कुछ खिन्न से हो गए, उदास हो गए। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन शायद उसे कोसते हुए कमरे से बाहर निकले होंगे कि देखो ये लड़का इतना सा भी काम नहीं करता। तो खैर, इसके बाद ऑडिशन के ठीक दो दिन पहले वो लड़का अचानक से बीमार हो गया। दवाई चली पर एन ऑडिशन के दिन वो इतना स्वस्थ नहीं था कि भाग लेने जा सके। नतीजा ये हुआ कि वो नहीं जा सका, और उसके बाद तो उसका व्यवहार बिल्कुल ऊल जलूल होता चला गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़का चुपचाप माता पिता को बिना बताए घर से कुछ नकदी और जेवर चुरा करके घर से भाग गया। बेचारे माँ बाप सिवाय रोने धोने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। और मोहल्ले में तो जितने मुंह उतनी बातें। जो कुछ अपने थे उन्हें जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने अपना दुख भी प्रकट किया, अफसोस जाहिर किया कि ये क्या किया इसने। तो प्रिय श्रोता मित्रों, ये घटना एक नहीं कई घरों की कहानी है, और मुद्दा वही है देखा देखी करना, बिना सोचे विचारे, बिना अपने मन का सही मार्गदर्शन पाए ऐसे काम में हाथ डालना जिसमें सफलता और यश का शिखर मिल ही जाएगा, ये नितांत बुद्धिहीन और नासमझी का फैसला माना जाएगा, फैसला कहा जाएगा। एक्टिंग अगर आपको करनी है, किसी भी युवा या युवती को, लड़के या लड़की को एक्टिंग करनी है, फिल्मों में, टीवी सीरियल में, या फिर सिंगर बनना है, गायक गायिका बनना है, तो सबसे पहले अपनी आवश्यक पढ़ाई पूरी कर लें, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी बनना है उसका विधिवत प्रशिक्षण लें, यानी जिसको कहते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है हर एक की, एक्टिंग की भी ट्रेनिंग होती है और गायक बनने की, गाना गाने की तो बहुत कठिन प्रशिक्षण उसका होता है, कठिन ट्रेनिंग होती है। तो ये सब प्रशिक्षण लेने के बाद ही इस लाइन में आगे बढ़ें। लाखों की भीड़ में अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है और आपने वाकई मेहनत की है, तो फिर एक न एक दिन भले ही महानायक जैसी शिखरता ना भी मिले, लेकिन भीड़ से अलग आपकी अपनी एक खास पहचान बनकर रहेगी। तो अंत में चलते चलते यही कहना है कि हमेशा अपनी योग्यता अनुसार अच्छा सोचें, अच्छा करें,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था आइए अच्छा सोचे अच्छा करे, और लेखक व प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। दोस्तों, सदैव बड़ा और अच्छा सोचे, हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर चले और अच्छी बातों का स्मरण करे, सब अच्छा ही होगा। ज्यादातर लोग बहुत सीमित दायरों में रहकर ही सोचते हैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। और तो और, जो काम मन को भाए वही करे, जहाँ तक हो सके अपनी रुचि के अनुसार ही काम चुने, क्योंकि ऐसा करने से हम उसमें अपना 100% दे सकते हैं। इसके अलावा जीवन को संतुलित बनाना सीखे। हमें जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो घर और बाहर दोनों स्तर का हो सकता है। इसमें हमें चाहिए कि हम अपना संतुलन बना के रखें, यही हमारी सफलता का आधार है। असफलता से घबराना कैसा? असफलता किसी काम को फिर से शुरू करने का मौका देती है, उसी काम को और भी बेहतर तरीके से किया जाए। इसलिए सफलता असफलता की चिंता किए बगैर पूरे मन से काम करें, कर्मठ बने। कुछ लोग लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करते। सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के अनुसार मेहनत करें। श्रोताओं, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। आपके मन में यह भरोसा जरूर होना चाहिए कि मैंने अपने लक्ष्य को साधने के लिए जो सपने देखे हैं, उन्हें मैं पूरा कर सकता हूँ। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम पर्यावरण में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की वार्ता का शीर्षक है वनों का संरक्षण और लेखक व प्रस्तुत करता है स्वर्गीय माइकल होजेस जी।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता वनों का संरक्षण। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, जिस प्रकार से हमारे जीवन में अन्य किसी प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से घास के मैदानों और वनों का भी अत्यधिक महत्व है। एक ओर जहां वन प्राकृतिक सौंदर्य और उसके संतुलन के कारण और प्रतीक हैं, वहीं ये वन्य जीवों के आश्रय स्थल भी हैं। ये वन्य जीव वनों का उपयोग आश्रय स्थल और भोजन के रूप में करने के साथ साथ प्रकृति के साथ उसका संतुलन भी बनाए रखते हैं। इन्हीं के माध्यम से जलवायु को भी बनाए रखा जाता है। वनों से हमें कई प्रकार की औषधियां और वनोपज प्राप्त होती हैं। वनों की कटाई से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो हमारे जीवन को निरंतर कठिनाई की ओर ले जा रही हैं। इसी प्रकार से घास के मैदानों के विषय में भी कहा जा सकता है, वन हो चाहे घास के मैदान हो, इससे हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ ही मिलते हैं। श्रोता साथियों, तो क्या हमें केवल इसलिए ही वनों के संरक्षण के विषय में सोचना चाहिए या वन संरक्षण की पहल करना चाहिए कि वनों से हमें लाभ मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। वनों से राजस्व की प्राप्ति होती है, इसलिए निसंकोच रूप से कहा जाता है कि वन है तो जीवन है। हमारे अपने इस जीवन के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। वनों का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वनों से ही पर्यावरण में स्थिरता कायम रहती है, यानी कि पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। वन हमारी भलाई के लिए ही प्रकृति ने हमें सौंपा है। इस प्रकार से वन हमारे लिए प्राकृतिक धरोहर है। हमारे निवास स्थान की तरह वन भी वन्य जीव जंतुओं के लिए आवासीय स्थल हैं। वनों से लोगों की, विशेषकर आदिवासियों की, बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। वन के महत्व को हमारे जीवन में इस तरह से भी आंका जा सकता है कि वन है तो मिट्टी है, मिट्टी है तो खेती है, और खेती है तो जीवन है। यही कारण है कि हमारे लिए इन परिस्थितियों में वनों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। जैसा कि वार्ता के आरंभ में यह कहा जा चुका है कि वनों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है, तो आइए हम वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ पर भी एक नजर डाल लें। सबसे पहले हम बात करते हैं वनों से अप्रत्यक्ष लाभ की। वनों से अप्रत्यक्ष रूप से हमें यह लाभ होता है कि वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं। यही काम वनस्पतियां और झाड़ियां भी करती हैं। इनकी जड़ें, विशेषकर वृक्षों की जड़ें, गहराई में भी मिट्टी को पकड़कर रखती हैं। ये वन ही होते हैं जो क्षेत्र में जलवायु को एक रूप या एक समान बनाए रखते हैं। बारिश में जब नदियों में बाढ़ आती है, तब नदी का पानी उफन कर वृक्षों के कारण ही नदी से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वृक्षों से ही नदी के किनारे ऊंचे बने रहते हैं। इसलिए अधिकतर नदी की बाढ़ का पानी नदी से बाहर निकलकर फैल नहीं पाता है। कई बार बाढ़ अपने उग्र रूप में तभी तबाही मचाती है जब वह उग्र और उफनती नदी के ऊंचे किनारों को पार करके समतल भूमि पर उतर आती है। तब बाढ़ का भयावह रूप खेतों, घरों और भूमि के एक बड़े भाग को पानी में जलमग्न कर देता है। इसीलिए नदी के तट पर बड़े और घने वृक्षों का होना नितांत ही आवश्यक है, ताकि बाढ़ के प्रकोप से बहुत हद तक बचा जा सके। वनों की एक खासियत यह भी है कि वे वायुमंडल की नमी को लगातार बनाए रखते हैं और बादलों को वर्षा करने के लिए आकर्षित करते हैं। जिन क्षेत्रों में सघन वन होते हैं, इसलिए वहां बहुतायत से वर्षा होती है, और जिन क्षेत्रों में वनों की कमी है या वन नहीं है, वहां पर कम वर्षा या फिर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। श्रोता साथियों, पौधारोपण के कार्य को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि यही पौधे वृक्ष का रूप धारण करके पर्यावरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वृक्ष ही होते हैं जो अपनी जड़ों के माध्यम से वर्षा के जल को भूमि में पहुंचाते हैं और उस जल को संग्रहित करते हैं। यदि ये वृक्ष ऐसा न करें तो वर्षा का जल
भूमि में संग्रहित होने की बजाय व्यर्थ में बह जाए। इस प्रकार से वृक्ष भूमि के नीचे जल का संग्रहण करके भूमि के जलस्तर में वृद्धि भी करते हैं। वनों के वृक्ष एक और महत्वपूर्ण कार्य यह करते हैं कि वे पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाते हैं तथा साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित भी रखते हैं। इससे वायु शुद्ध बनी रहती है। यही कारण है कि वनों से प्राणदायी शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन का विसर्जन करते हैं। श्रोता साथियों, इसके अलावा वन प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि भी करते हैं। उस प्राकृतिक सौंदर्य में जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और पर्यटक उस सौंदर्य को निहारने और उसका आनंद लेने के लिए वनों की रोमांचक यात्रा करते हैं। चूंकि वनों में अनेक प्रकार के वन्य जीव और जंतु भी रहते हैं, इसलिए उनके प्रति अपनी जिज्ञासा मिटाने, उनके रहन सहन, उनकी आदतों और उनसे होने वाले लाभ और हानि का विश्लेषण करने के लिए भी जीव वैज्ञानिक, अन्य वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ जंगल की साहसिक यात्रा करते हैं। उन पर शोध कार्य करते हैं और उनका जीवन स्तर वनों में कायम रखने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि वनों को सघन बनाए रखने में वन्य जीव जंतुओं की भी अपनी एक महत्वपूर्ण और एकल भूमिका होती है। यही वन्य जीव और जंतु प्रकृति प्रदत्त अपनी आदतों से, अपने रहन सहन से वनों के क्षेत्रों में इजाफा भी करते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। श्रोता साथियों, हम बात कर रहे थे वनों से अप्रत्यक्ष लाभ की। आइए अब बात करते हैं वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ की। आदिकाल से मानव ने सहजता से प्राप्त होने वाले ईंधन के रूप में लकड़ी और पशु के मल यानी कि गोबर की पहचान की। आदिकाल का यह सिलसिला हमारे देश के गांवों में आज भी प्रचलन में है। भारत के गांवों में आज भी ईंधन के लिए लकड़ी और गाय भैंस के गोबर का ही उपयोग किया जाता है। लकड़ी और गोबर का ईंधन देश के कुल शक्ति संसाधन के रूप में लगभग 35% उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वनों की लकड़ियों से ईंधन का काम भी लिया जाता है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत खेतों, सड़कों और रेल लाइनों के किनारे वृक्षों के लिए पौधारोपण किया गया। हर बच्चे के लिए एक पेड़ और वर्तमान का नारा गो ग्रीन विकसित किया जा रहा है। गो ग्रीन का सरल अर्थ है हरियाली की ओर अग्रसर होना, हरी तिमा फैलाना, हरा भरा कर देना। इसीलिए वर्तमान में वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। श्रोता साथियों, वन और उसके वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और रखते हैं, बल्कि वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। साथ ही हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। तो क्या हमें भी वृक्ष और वनों का संरक्षण नहीं करना चाहिए? क्या हमें भी गो ग्रीन नारे के साथ हरा नहीं हो जाना चाहिए? चारों ओर हरितिमा नहीं फैलाना चाहिए? वनों का संरक्षण नहीं करना चाहिए? पौधारोपण नहीं करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें सघन वन मिले, वृक्ष मिले? इसीलिए हमें हरियाली फैलानी चाहिए।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था वनों का संरक्षण और जिसके लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे स्वर्गीय माइकल हॉजेस जी। दोस्तों, पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति द्वारा कुछ चीजें उपहार के रूप में मिली है। प्रकृति ने हमें सूर्य, चांद, हवा, जल, पहाड़, हरे भरे वन और धरती के नीचे छिपी हुई खनिज संपदा धरोहर के रूप में हमारी सहायता के लिए प्रदान किए हैं। मनुष्य अपनी मेहनत से धन कमा सकता है, लेकिन प्रकृति की धरोहर को अथक प्रयास करने के पश्चात भी बढ़ा नहीं सकता। प्रकृति द्वारा दी गई ये सभी वस्तुएं सीमित है। आज हम सबको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि प्रकृति ने धरोहर के रूप में जो भी वस्तुएं दी हैं, उनका हम सब अच्छी तरह से प्रयोग करें और आने वाली पीढ़ी के लिए इन वस्तुओं को संभाल कर रखे तथा इनके स्थान पर दूसरे विकल्प ढूंढने का प्रयास करे। अतः यह पृथ्वी हमारी धरोहर है और हर तरीके से इसको संभाल कर रखना हम सभी का कर्तव्य है। साथियों, वक्त की सुइयां इशारा कर रही है और अब हमें बंदिशें लगा रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। इजाजत दीजिए अपनी रेडियो सहेली ज्योति कुजूर को और खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक जी को कि वो आए और ढेर सारे कार्यक्रमों से आपका मनोरंजन करे और ज्ञान बढ़ाए। नमस्कार।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं पवित्र बाइबल के पाठ से। तो आइए सुनते हैं आज का पहला पाठ जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वो उनकी तरह निष्पाप है, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान ये है, जो धर्माचरण नहीं करता वो ईश्वर की संतान नहीं है, और वो भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत योहन के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें

फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVA हिंदी। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है RVA हिंदी। दोस्तों, अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड एड्रेस है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के अंतर्गत आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका शीर्षक है पानी पर केंद्र के हक में ही राष्ट्रहित। श्रोताओं, देश के 256 जिलों के 33 करोड़ से अधिक सूखे से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु सरकार की चेतना को जागृत करने के लिए प्रबुद्ध समाज सेवियों द्वारा देशव्यापी जल सत्याग्रह का समापन हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने पानी को लेकर आपातकाल लगाने की बात करके जल संकट पर एक नई संवैधानिक बहस छेड़ दी। श्रोताओं, संसद में जब महत्वपूर्ण विषयों पर राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, तब पानी के बारे में अधिकतर नेताओं का आम मत होना सुखद है। श्रोताओं, इसकी बानगी लोकसभा की जल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में मिलती है, जिसमें पानी को संविधान की समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की गई है। संविधान के अनुच्छेद 262 और केंद्र की सूची प्रविष्टि 56 में दिए गए अधिकार के बावजूद पानी और नदी पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची का कानून अगर पारित हो गया तो पानी के बारे में केंद्र सरकार भी कानून बना सकेगी। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता 30 वर्ष पहले 1986 में ही समझते हुए भूजल पर केंद्र सरकार के अधिकार पर जोर दिया था। संसद की लोक लेखा समिति की 2014-15 की 8वीं रिपोर्ट में जल प्रदूषण की चर्चा करते हुए पानी को समवर्ती सूची में लाने की बात की गई है। श्रोताओं, भाजपा तथा टीआरएस के कुछ सांसदों ने पानी को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्राइवेट बिल भी पेश किए हैं। शिक्षा, बिजली एवं चिकित्सा जैसे विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं। उसी तर्ज पर पानी भी संविधान की समवर्ती सूची में आने से जल संकट से निपटने में आसानी होगी। आलोचकों के अनुसार पानी को केंद्र सरकार के दायरे में लाने से निजीकरण तथा बाजारवाद हावी होने की उम्मीद है, पर ऐसे खतरे तो पानी पर राज्य सरकार के नियंत्रण में ज्यादा हैं। श्रोताओं, बढ़ती आबादी के साथ नदियां सुकुड़ रही हैं और भूजल स्तर खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। देश में पानी 6,607 ब्लॉक्स है, जिनमें 2,000 ब्लॉक्स में पानी के अत्यधिक शोषण से हालात गंभीर हो गए हैं। श्रोताओं, बढ़ती आबादी और उपभोग से आजादी के 70 साल बाद देश में पानी के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1/4 रह गई है। श्रोताओं, पिछले साल देश में लगभग 1879 अरब घन मीटर सालाना पानी उपलब्ध था, जिसमें सिर्फ 1,123 अरब घन मीटर का ही इस्तेमाल हो पाया था। बकाया पानी के बेहतर प्रबंधन एवं इस्तेमाल के लिए देशव्यापी नजरिए की जरूरत है, क्योंकि पानी राज्यों की सीमाओं के राजनीतिक भूगोल को नहीं समझता। श्रोताओं, प्रगतिशील राज्यों ने इस बात को पहले ही समझ लिया था, जिस वजह से डैम सुरक्षा विधेयक 2010 हेतु बंगाल और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार को पानी के बारे में कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। श्रोताओं, सूखे पर केंद्र सरकार की मदद मांगने वाले राज्य पानी को समवर्ती सूची में लाने का विरोध कैसे कर सकते हैं? अभी हाल में 10 राज्यों ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 42,143 करोड़ रुपए की मांग की है। लातूर में पानी के संकट पर केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन से पानी भेजा गया। श्रोताओं, पंजाब द्वारा सतलज जल संधि के उल्लंघन पर हरियाणा ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अधिकारों के संरक्षण की गुहार लगाई थी, जिसमें पानी पर केंद्र सरकार के अधिकार का तर्कसंगत मामला बनता है। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख 2002 में एक रोचक मामला आया, जिसमें नदियों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हुए उन्हें आपस में जोड़ने की बात की थी। नदियों को जोड़ने की योजना कांग्रेस के शासनकाल में के.एल. राव ने 1972 में बनाई थी,
इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मूर्त रूप देते हुए टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके मुखिया सुरेश प्रभु बने हुए थे। श्रोताओं, जनहित याचिका में 10 साल की लंबी सुनवाई के बावजूद 2012 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं पारित किया। श्रोताओं, क्रियान्वयन में विलंब से प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है और अब इसका क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि राज्य पानी की अधिकता को मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रोताओं, पर्यावरण विस्थापन एवं अन्य कारणों से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आशंका व्यक्त की जा रही है। विरोध के आधार पर प्रोजेक्ट रोकने की बजाय समस्याओं का निराकरण होना आवश्यक है। योजना में विलंब से बुंदेलखंड, विदर्भ, कालाहांडी और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में भयानक मानवीय त्रासदियां हो रही हैं। श्रोताओं, जिस वजह से देश में पानी का आपातकाल लागू करने की बात होने लगी है, अर्थव्यवस्था के फैलाव में जैसे खनिज पदार्थों का ट्रांसफर होता है, वैसे ही मानवीय समाज को बचाने के लिए पानी का नदियों में ट्रांसफर हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है। श्रोताओं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे जल संकट वाले देश को 2050 तक जीडीपी में 6% तक की हानि हो सकती है। श्रोताओं, भारत में विश्व की 18% आबादी है पर पानी के स्रोत सिर्फ 4% हैं। अगर हम बढ़ती आबादी पर नियंत्रण पर असफल रहे तो पानी के प्रबंधन के नए तरीके अपनाने ही होंगे। एनएसडीआई की रिपोर्ट के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 2% वृद्धि होने के साथ सिंचाई में 33 MH की बढ़ोतरी हो सकती है। श्रोताओं, इससे 34,000 MW जल विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होने के साथ रोजगार में भी 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें ग्रामीण समाज में एक नई कृषि क्रांति हो सकती है। श्रोताओं, सूखती नदियों की बड़ी जवाबदेही राजनेताओं की है जो राज्यों में संगठित तौर पर अवैध माइनिंग करवाते हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी के कारोबार से भी राजनेता संपन्न हो रहे हैं। राज्यों के बीच पानी की लड़ाई से किसानों की फसलों को फायदा हो ना हो, पर दलों की चुनावी फसल जरूर अच्छी हो जाती है। पानी राष्ट्रीय संपत्ति है जिसके बेहतर उपयोग के लिए केंद्रीय नियमन होना ही चाहिए। संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर गतिरोध है पर पानी को समवर्ती सूची में लाने के यूपीए सरकार तथा वर्तमान एनडीए सरकार ने पानी को समवर्ती सूची में लाने की पैरवी की है। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर पानी के कानून को पारित करके क्या राजनेता देश को जोड़ पाएंगे? पानी के आपातकाल के इस भयानक दौर में सामूहिक विमर्श और सहमति ही देश को पानी और खुशहाली ले पाएगी। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम पुनः सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं पवित्र बाइबल के पाठ से। तो आइए सुनते हैं आज का पहला पाठ, जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वो उनकी तरह निष्पाप है, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान ये है, जो धर्माचरण नहीं करता वो ईश्वर की संतान नहीं है, और वो भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दूसरे दिन योहन फिर अपने दो शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी ये बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रेयस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वो उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत योहन के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVAHindi। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है RVA हिंदी। दोस्तों, अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड एड्रेस है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के अंतर्गत आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका शीर्षक है पानी पर केंद्र के हक में ही राष्ट्रहित। श्रोताओं, देश के 256 जिलों के 33 करोड़ से अधिक सूखे से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु सरकार की चेतना को जागृत करने के लिए प्रबुद्ध समाज सेवियों द्वारा देशव्यापी जल सत्याग्रह का समापन हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने पानी को लेकर आपातकाल लगाने की बात करके जल संकट पर एक नई संवैधानिक बहस छेड़ दी। श्रोताओं, संसद में जब महत्वपूर्ण विषयों पर राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, तब पानी के बारे में अधिकतर नेताओं का आम मत होना सुखद है। श्रोताओं, इसकी बानगी लोकसभा की जल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में मिलती है, जिसमें पानी को संविधान की समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की गई है। संविधान के अनुच्छेद 262 और केंद्र की सूची प्रविष्टि 56 में दिए गए अधिकार के बावजूद पानी और नदी पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची का कानून अगर पारित हो गया तो पानी के बारे में केंद्र सरकार भी कानून बना सकेगी। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता 30 वर्ष पहले 1986 में ही समझते हुए भूजल पर केंद्र सरकार के अधिकार पर जोर दिया था। संसद की लोक लेखा समिति की 2014-15 की 8वीं रिपोर्ट में जल प्रदूषण की चर्चा करते हुए पानी को समवर्ती सूची में लाने की बात की गई है। श्रोताओं, भाजपा तथा टीआरएस के कुछ सांसदों ने पानी को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्राइवेट बिल भी पेश किए हैं। शिक्षा, बिजली एवं चिकित्सा जैसे विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं। उसी तर्ज पर पानी भी संविधान की समवर्ती सूची में आने से जल संकट से निपटने में आसानी होगी। आलोचकों के अनुसार पानी को केंद्र सरकार के दायरे में लाने से निजीकरण तथा बाजारवाद हावी होने की उम्मीद है, पर ऐसे खतरे तो पानी पर राज्य सरकार के नियंत्रण में ज्यादा हैं। श्रोताओं, बढ़ती आबादी के साथ नदियां सुकुड़ रही हैं और भूजल स्तर खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। देश में पानी 6,607 ब्लॉक्स हैं, जिनमें 2,000 ब्लॉक्स में पानी के अत्यधिक शोषण से हालात गंभीर हो गए हैं। श्रोताओं, बढ़ती आबादी और उपभोग से आजादी के 70 साल बाद देश में पानी के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1/4 रह गई है। श्रोताओं, पिछले साल देश में लगभग 1879 अरब घन मीटर सालाना पानी उपलब्ध था, जिसमें सिर्फ 1,123 अरब घन मीटर का ही इस्तेमाल हो पाया था। बकाया पानी के बेहतर प्रबंधन एवं इस्तेमाल के लिए देशव्यापी नजरिए की जरूरत है, क्योंकि पानी राज्यों की सीमाओं के राजनीतिक भूगोल को नहीं समझता। श्रोताओं, प्रगतिशील राज्यों ने इस बात को पहले ही समझ लिया था, जिस वजह से डैम सुरक्षा विधेयक 2010 हेतु बंगाल और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार को पानी के बारे में कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। श्रोताओं, सूखे पर केंद्र सरकार की मदद मांगने वाले राज्य पानी को समवर्ती सूची में लाने का विरोध कैसे कर सकते हैं? अभी हाल में 10 राज्यों ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 42,143 करोड़ रुपए की मांग की है। लातूर में पानी के संकट पर केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन से पानी भेजा गया। श्रोताओं, पंजाब द्वारा सतलज जल संधि के उल्लंघन पर हरियाणा ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अधिकारों के संरक्षण की गुहार लगाई थी, जिसमें पानी पर केंद्र सरकार के अधिकार का तर्कसंगत मामला बनता है। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख 2002 में एक रोचक मामला आया, जिसमें नदियों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हुए उन्हें आपस में जोड़ने की बात की थी। नदियों को जोड़ने की योजना कांग्रेस के शासनकाल में के.एल. राव ने 1972 में बनाई थी,
इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मूर्त रूप देते हुए टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके मुखिया सुरेश प्रभु बने हुए थे। श्रोताओं, जनहित याचिका में 10 साल की लंबी सुनवाई के बावजूद 2012 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं पारित किया। श्रोताओं, क्रियान्वयन में विलंब से प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है और अब इसका क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि राज्य पानी की अधिकता को मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रोताओं, पर्यावरण विस्थापन एवं अन्य कारणों से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आशंका व्यक्त की जा रही है। विरोध के आधार पर प्रोजेक्ट रोकने की बजाय समस्याओं का निराकरण होना आवश्यक है। योजना में विलंब से बुंदेलखंड, विदर्भ, कालाहांडी और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में भयानक मानवीय त्रासदियां हो रही हैं। श्रोताओं, जिस वजह से देश में पानी का आपातकाल लागू करने की बात होने लगी है, अर्थव्यवस्था के फैलाव में जैसे खनिज पदार्थों का ट्रांसफर होता है, वैसे ही मानवीय समाज को बचाने के लिए पानी का नदियों में ट्रांसफर हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है। श्रोताओं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे जल संकट वाले देश को 2050 तक जीडीपी में 6% तक की हानि हो सकती है। श्रोताओं, भारत में विश्व की 18% आबादी है पर पानी के स्रोत सिर्फ 4% हैं। अगर हम बढ़ती आबादी पर नियंत्रण पर असफल रहे तो पानी के प्रबंधन के नए तरीके अपनाने ही होंगे। एनएसडीआई की रिपोर्ट के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 2% वृद्धि होने के साथ सिंचाई में 33 MH की बढ़ोतरी हो सकती है। श्रोताओं, इससे 34,000 MW जल विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होने के साथ रोजगार में भी 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें ग्रामीण समाज में एक नई कृषि क्रांति हो सकती है। श्रोताओं, सूखती नदियों की बड़ी जवाबदेही राजनेताओं की है जो राज्यों में संगठित तौर पर अवैध माइनिंग करवाते हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी के कारोबार से भी राजनेता संपन्न हो रहे हैं। राज्यों के बीच पानी की लड़ाई से किसानों की फसलों को फायदा हो ना हो पर दलों की चुनावी फसल जरूर अच्छी हो जाती है। पानी राष्ट्रीय संपत्ति है जिसके बेहतर उपयोग के लिए केंद्रीय नियमन होना ही चाहिए। संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर गतिरोध है पर पानी को समवर्ती सूची में लाने के यूपीए सरकार तथा वर्तमान एनडीए सरकार ने पानी को समवर्ती सूची में लाने की पैरवी की है। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर पानी के कानून को पारित करके क्या राजनेता देश को जोड़ पाएंगे? पानी के आपातकाल के इस भयानक दौर में सामूहिक विमर्श और सहमति ही देश को पानी और खुशहाली ले पाएगी। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम पुनः सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।

एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत SSPS। दोस्तों, अभी की सभा 11 से 12 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुंबकम, नाटक और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: बिहार में खेती का भविष्य आपको कैसा दिखता है मुखिया जी? क्या कृषि के माध्यम से बिहार में एक और हरित क्रांति की आशा की जा सकती है?
1: बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है
0: जी।
1: अगर कृषि के क्षेत्र में उचित ध्यान दिया जाएगा तो निश्चय ही क्रांति की आशा की जा सकती है। ये सब कुछ सरकार की कृषि नीति के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन बात यह है कि जब तक सरकार इस दिशा में सक्रिय नहीं होगी तब तक कुछ किया नहीं जा सकता।
0: एक बात ये बताइए कि किसान आप किसे कहेंगे, क्या उसका मापदंड आपकी नजर में क्या है?
1: देखिए भाई, किसान से मेरा मतलब खेती करके अपनी आजीविका चलाने वाला व्यक्ति है, न कि जमीन का मालिक जो कोई और काम करता हो। हाल ही में मुझे एक पब्लिक स्कूल में जाने का मौका मिला
0: जी।
1: वहां हमें एक भी छात्र नहीं मिला जो किसान का बेटा हो या फिर भविष्य में किसान बनना चाहता हो। ये स्थिति कृषि के वर्तमान और भविष्य दोनों को ही प्रतिबिंबित करता है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा माना जाए मुखिया जी कि बिहार की कृषि बदल रही है या फिर इसके प्रति लोगों का सोच जो है वो नकारात्मक होता जा रहा है, कैसे इसको आप देखते हैं?
1: देखिए, मैंने अपने जीवन में दो ही चीजों को ऐसा देखा है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो है बिहार की कृषि और यहाँ के किसान।
0: अच्छा अच्छा।
1: इनकी दशा आज भी वैसी है जैसे 50 साल पहले थी। सरकार ने कई योजनाएं चलाई और कई प्रोत्साहन दिए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। एक सच्चाई ये भी है कि किसान को छोड़कर कृषि से जुड़ा अन्य व्यक्ति, चाहे वो बीज बेचने वाला हो या उपज खरीदने वाला, सभी खुश हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा ही आकलन हमारा भी रहा है मुखिया जी। बिहार की कृषि और किसान, अगर दोनों का दशा देखते हैं तो आप किस तरह की आशाएं आपको नजर आती हैं?
1: बिहार की कृषि और किसान दोनों को ही इस सरकार से बहुत आशाएं हैं
0: जी,
1: और वे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कृषि के क्षेत्र में कई समस्याएं और चुनौतियां हैं। यहां के लगभग 90% किसान भूमिहीन और छोटे या फिर सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं
0: जी। जी,
1: वे जमीन बटाई पर लेकर खेती करते हैं और उनकी हालत सबसे खराब होती है
0: जी।
1: इसकी विडंबना देखिए कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान इनकी फसल को होता है और सरकारी मुआवजा
0: जी, जी,
1: जमीन के मालिक उठा लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं ये जानना चाहूंगा मुखिया जी कि अब क्या ऐसा माना जाए कि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनका कृषि से मोह भंग हो रहा है, उनको कोई रुचि नहीं रह गई है, वे कृषि कार्य से जुड़ना नहीं चाहते हैं?
1: लगता ऐसा ही है कि आज के युवा का कृषि से मोह भंग हो गया है और इस क्षेत्र में बौद्धिक मानव शक्ति का तेजी से पलायन हो रहा है। आम धारणा बन गई है कि दिमाग वालों के लिए खेती नहीं है।
0: आखिर इसके पीछे कारण क्या है मुखिया जी?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, कृषि के अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ किसान को छोड़कर हर क्षेत्र के लोगों के लिए पक्की मासिक और वार्षिक आय तय है
0: जी। जी,
1: बिहार में सिंचाई की सुविधा और साधनों का अभाव है। अगर यहां सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त होती तथा इस साल हर साल आने वाले अकाल को टाला जा सकता। बिहार में किसानों के लिए एक भी संस्थान नहीं है। बिहार किसान आयोग सरकार द्वारा प्रायोजित है, लेकिन किसानों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सारी ये अव्यवस्था के बाद भी किसान कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ये बात भी कम नहीं है मुखिया जी।
1: देखिए, मैं मानता हूं कि सभी समस्याओं के बावजूद यहां के मेहनतकश किसान फसल उपजा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं
0: जी।
1: उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। कृषकों के लिए सरकार की ओर से हर साल पैकेज और अनुदान की घोषणा की जाती है, पर वितरण प्रणाली और पद्धति के खराब होने के कारण किसानों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। खाद्य सुरक्षा भी यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
0: इस बाबत नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई?
1: देखिए, नई सरकार से प्रदेश के भूमिहीन, छोटे, सीमांत और बड़े सभी किसानों की एक ऐसी कृषि नीति, कृषि मैप, कृषि योजना की उम्मीद है जिसमें कृषि एक मोहक कार्य बन जाए।
0: अच्छा अच्छा।
1: अगर सरकार कुछ बातों पर गंभीरता से ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर लोगों की आशाएं पूरी हो सकती हैं।
0: अब बोल रहे हैं कि सरकार इन बातों पर गंभीरता से ध्यान देगी, तो किन बातों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, इसमें पहला है भूमि सुधार।
0: जी,
1: बिहार की कृषि व्यवस्था संस्थागत सुधार के लिए कराह रही है।
0: जी जी,
1: ये क्षेत्र भी कृषक फ्रेंडली नीतियों की मांग कर रहा है। इसमें सबसे प्रमुख है भूमि सुधार। बटाईदारी व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें फसल उगाने वाला व्यक्ति किसान माना जाए, न कि जमीन का मालिक किसान कहलाए।
0: जी,
1: एक बार किसान बटाईदारों को किसान के रूप में मान्यता देती है तो कृषि अपने आप फलीभूत होने लगेगी।
0: तो क्या यह माना जाए मुखिया जी कि सरकार के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही है?
1: जी हाँ, सरकार की पहली चुनौती यही होगी कि बटाईदारी बिल पास करती है या नहीं। सरकार को एक ऐसी नीति भी बनानी चाहिए जिसमें किसानों में सुरक्षा का अनुभव हो।

0: बेहतर हो सकेगी। सरकार से किसानों की काफी उम्मीदें हैं, किसानों की बेहतरी के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, मेरा बिल्कुल साफ तौर पर यह मानना है कि बिना भूमि सुधार के बिना किसानों की दशा नहीं सुधर सकती।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि किसान तभी होता है जब उसके पास खेती योग्य भूमि हो
0: जी।
1: और हमारे यहाँ के हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोगों के पास खेती योग्य भूमि ही नहीं है
0: जी।
1: आज के दौर में वैसे भी खेती करना जोखिम का काम माना जाता है, लागत बढ़ जाती है, लेकिन उसके अनुपात में उनको फसलों का उचित दाम नहीं मिलता।
0: एक बात यह भी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक सही समय पर उचित रूप में नहीं पहुंच पा रहा है, इसके लिए किस तरह के पहल करने की जरूरत है?
1: इस बात को मैं भी मानता हूं वीरेंद्र भाई कि सरकार की अधिकांश योजनाओं से लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लाभ पाने की पद्धति को और सरल बनाने की जरूरत है। सरकार को अपनी डिलीवरी मैकेनिज्म को संस्थागत और प्रक्रियागत दोनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में काम करना होगा
0: जी।
1: डिलीवरी मैकेनिज्म को किसान के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना होगा, तभी जाकर इस समस्या का हल निकल सकता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। हमारे देश के किसान भाई में ऐसे भी साक्षरता का औसत देखें तो बहुत कम है। ऐसे में मैकेनिज्म में बदलाव करना ही होगा, तभी जाकर के हम लाभ की राशि उन तक सही समय में और उचित मात्रा में जो तय की जाती है उस मात्रा में उन तक पहुंचा सकेंगे। इस जानकारी के लिए मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर कृषि से संबंधित आपसे बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कानूनी ज्ञान का। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीलिंग एक्ट लागू हुए वर्षों बीत गए, लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। श्याम भाई, हमारे यहाँ बड़ी विडम्बना की स्थिति है कि आज भी हमारे यहाँ भूमि सुधार कानून सही ढंग से, कारगर ढंग से लागू नहीं है, जिसके प्रभाव से हमारे यहाँ करीब करोड़ों लोग त्रस्त हैं, बेचैन हैं।
2: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वीरेंद्र भाई। हमारे यहाँ जो खेती करना चाहते हैं उनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, और जिनके पास जमीन है वो खेती करना नहीं बल्कि करवाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अपने पूरे रकबे में वो खेती कर पाने की स्थिति में भी नहीं है, उनके बच्चे खेती में कोई रुचि भी नहीं लेते हैं, और जो मेहनत कश तबका है वो खेती योग्य जमीन के अभाव में बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में वे खेती करें तो कैसे?
0: यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सीलिंग एक्ट के अभाव में आज जो देश के हालात हैं उसको आप कैसे देखते हैं कपूर साहब?
1: देखिए वीरेंद्र जी, आजादी के 65 साल बाद भी देश में 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खेती करना चाहते हैं पर उनके पास अपना खेत नहीं है, यहाँ तक कि अपना घर भी नहीं है। वे जहाँ रहते हैं वहाँ से उजड़ना उनकी नियति बन गई है।
0: सबसे दुखद बात तो यह है श्याम जी कि ये अधिकांश विवाद और समस्याओं की जड़ में जमीन ही है।
1: जी,
0: कुछ समय पहले की ही घटना को ले लीजिए। बिहार के समस्तीपुर में दबंगों ने 40 महादलित परिवारों के घरों को उजाड़ दिया था।
1: जी,
0: और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, यहाँ तक कि कई दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर

0: तक नहीं हुआ।
1: इसी परिप्रेक्ष्य में अगर दूसरी घटना का जिक्र करें तो कुछ दिन पहले पूर्णिया में ट्रक पर सवार होकर कुछ दबंग आए और महादलितों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया।
0: जी जी।
1: जिसमें 3 महादलित मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। इसकी पृष्ठभूमि में भी कहीं न कहीं जमीन का मामला ही था।
2: जी। आप सही कह रहे हैं, दोनों घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है। इसी नीति को बदलने के लिए राजगोपाल पीवी ने व्यवस्था को संवेदनशील बनने पर विवश किया। 50,000 सत्याग्रही सरकार के साथ करार के बाद आगरा से लौट गए।
0: तो क्या उनके सत्याग्रह का मकसद पूरा हो गया? भूमि की जो मांग उन्होंने उठाई थी उस पर कार्रवाई करने का भरोसा या दिलासा उन्हें मिल गया था श्याम जी?
1: इस मुद्दे पर उनका कहना था कि आंदोलन तथा सत्याग्रह सतत प्रक्रिया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: सत्य मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। पर उस समय के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने जो करार किया था उससे भूमि गारंटी कानून मिलने की उम्मीद थी। वहां लैंड रिफॉर्म के लिए राज्य सरकारों से कहने की बात भी की गई थी। इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर ऐसा पूरक कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार तैयार थी जिससे भूमिहीनों और बेघरों को जमीन मिल सके।
0: नए भूमि सुधार कानून की सख्त जरूरत किन राज्यों में है? क्या कुछ राज्य पहले से बेहतर नहीं कर रहे हैं? हालांकि ये सीलिंग एक्ट कानून तो हमारे यहाँ कपूर साहब वर्षों से मौजूद है।
2: जी, देश के ज्यादातर इलाकों में अभी तक लैंड रिफॉर्म नहीं हो सका।
0: जी।
2: पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो लाखों एकड़ जमीन राज्य सरकारों के कब्जे में है, जिन्हें जरूरत के हिसाब से तो उद्योगों को दिया जा रहा है पर भूमिहीन बेघर लोगों को नहीं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की जरूरत है। पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने इस दिशा में अच्छी पहल कर रखी है। जम्मू कश्मीर में तो भूमि सुधार किया जा चुका है।
0: राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के लिए जो मसौदा केंद्र सरकार को सौंपा गया था श्याम भाई
2: जी,
0: हाँ, अगर सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या कुछ किया जा सकता है?
1: सरकार ऐसा नहीं कर सकती। कानून की दिशा बदलने में ब्यूरोक्रेसी की दिलचस्पी रहती है। लोगों की कोशिश है कि सरकार में बैठे लोग पहले सच्चाई से तो अवगत हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब लोग मकसद से नहीं भटकेंगे और ये बात सही है कि गरीबों के लिए कानून बनना चाहिए। अगर कुछ कमियां रहीं तो दूर करने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो फिर नया आंदोलन शुरू किया जाएगा।
0: जब राजगोपाल पीवी से पूछा गया था कपूर साहब कि केंद्र सरकार आपके संगठन का इस्तेमाल नक्सल और माओवादी संगठनों से निपटने के लिए करना चाहती है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था?
2: उनका साफ कहना था कि हम लोग गांधीवादी विचार के लोग हैं
0: जी,
2: हिंसा के हमेशा विरुद्ध हैं, चाहे वो सरकार व उसकी एजेंसियों की ओर से की जा रही हिंसा हो या प्रतिक्रियावादी संगठनों की ओर से। लोगों को जमीन पर कब्जे न देना, उनका हक छीनकर सड़क पर मरने के लिए धकेल देना भी हिंसा है। इसके विरुद्ध हम सड़क पर उतरे हैं। पूरी दुनिया ने देखा सरकार संवेदनशील हुई है और रास्ता निकला। हम हर तरह के हिंसा के विरुद्ध हैं।
0: जमीन की लड़ाई में सारी दुनिया एक है, उस समय यह एक नारा प्रचलित हुआ था, तो इस नारे को आप कैसे देखते हैं श्याम जी?
1: देखिए, दुनिया का अर्थ व्यापक है।
0: अच्छा।
1: जय जगत यानी सारे विश्व की समस्याओं के विरुद्ध सत्याग्रह की भावना।
0: अच्छा।
1: जल, जंगल और जमीन की समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, अफ्रीका के देशों, ब्राजील समेत सैकड़ों देश इस समस्या से प्रभावित हैं। इथोपिया जैसे भूखमरी के शिकार देश में भारत की कंपनियां सफेद मूसली उगाकर अरब देशों के बीच बेच रही हैं।
0: अच्छा।
1: वहां लोगों की जमीन मिले तो वे मूसली की जगह अनाज उगाएंगे।
0: इस प्रश्न पर राजगोपाल जी का क्या कहना था कि भूमिहीनों को मकान और खेती के लिए कितनी भूमि पर्याप्त मानते थे वे?
2: इस मसले पर उनका साफ कहना था कि हमने 10 डिसमिल जमीन मांगी है, एक एकड़ का दसवां हिस्सा
0: जी।
2: पहले हमारी राज्य सरकारें भूमिहीनों को 15 डिसमिल जमीन देती थी, इसे धीरे धीरे घटाकर 2-3 डिसमिल कर दिया गया। अब 3 डिसमिल जमीन में घर कहां बनाएंगे, बकरी कहां बांधेंगे, गाय बैल कहां रखेंगे? मकान के लिए 10 डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए, खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन मिले, जिसे भूमिहीन परिवारों का पोषण हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न है, मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूं श्याम जी, कि ये हमारे देश में उतनी जमीन है क्या?
1: देखिए, सच तो ये है कि हमारे देश में खेती के लिए जमीन इतनी है कि अगर सरकार ठीक से बांटे तो भूमिहीनों को जमीन देने के बाद भी करोड़ों एकड़ जमीन बची रहेगी।
0: भूमि सुधार कानून में मुख्य रूप से किन चीजों की मांग की गई है कपूर साहब?
2: वीरेंद्र जी, सबसे पहली बात है कि भूमि का सही वितरण हो
0: जी,
2: भूमि का रिकॉर्ड सही और राष्ट्रीय स्तर पर हो। भूमि को सरकारों ने उत्पाद बना दिया है, किसान आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कुछ राज्यों में एक एक व्यक्ति के पास 100-100 एकड़ जमीन है और किसी के पास या लाखों लोगों के पास 1 डिसमिल भी नहीं है। खेती की जमीन अलग हो, जंगल के लिए जमीन अलग हो और उद्योगों के लिए अलग जमीन तय की जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पर सरकारी जमीन तो सार्वजनिक संपत्ति है,
1: हाँ।
0: उसे सरकार मुफ्त में भला क्यों देगी, ये भी एक प्रश्न उठता है।
1: देखिए, गरीबों को जमीन न देने के लिए कई तरह के दबाव हैं। मुफ्त में जमीन का सवाल भी उसी से जुड़ा है
0: जी।
1: पर देश आजाद होने के बाद गरीबों को क्या मिला? 22 करोड़ लोग भूमिहीन और आवासहीन हैं। वे रहने के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। क्या देश में पूंछ हिलाकर जीने वालों का समाज तैयार किया जा रहा है? सरकार यही चाहती है पर लोग नहीं चाहते। पंजाब के किसानों ने सरकार से कहा था कि 1 एकड़ जमीन दो और अपने बीपीएल कार्ड, पेंशन कार्ड सब वापस ले लो।
0: बिल्कुल, उन लोगों का जो जवाब था बिल्कुल जायज है। एक चीज ये बताइए कपूर साहब, कि जब उनसे पूछा गया कि आप सड़क पर क्यों उतर रहे हैं, जब सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था जमीन के लिए, तो सरकार तो ग्वालियर में ही समझौते को तैयार थी, तो फिर उन्होंने क्या कहा?
2: उनका कहना था कि गांधी जी ने लोक सेवक बनने का संदेश दिया था
0: जी,
2: जिसे राजनेताओं और नौकरशाहों ने भुला दिया है। उनका साफ कहना था कि उनको लड़ने का शौक नहीं है, जवाबदेही तय करने के लिए सड़क पर उतरना मजबूरी है। सरकार की नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 142 जिलों में नक्सल की समस्या है, गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है, देश इमरजेंसी वार्ड में पड़ा है और आप सड़क पर उतरने को जुर्म बता रहे हैं।
0: बिल्कुल, उन्होंने सही कहा था। जमीन से ही जुड़ा एक मसला है भूमि अधिग्रहण को लेकर के
2: जी,
0: जिसके लिए विधेयक का मसौदा भी स्वीकृत किया जा चुका है श्याम भाई, यह संसद में पारित भी हो गया है। तो उसके परिणाम को भी अगर हम लोग देखते हैं, तो खास करके आप बताइए कि उसके परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ होने वाला है?
1: अधिकार प्राप्त मंत्रियों के एक समूह ने जमीन अधिग्रहण के लिए जिस विधेयक का मसौदा स्वीकृत किया है
0: जी,
1: जो संसद में पास भी हो गया है, वो कहीं से भी जायज नहीं है।
0: अच्छा अच्छा।
1: उससे भूमि अधिग्रहण में कुछ आसानी हो जाएगी। सिंगूर, नंदीग्राम और अन्य कई जगहों पर उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो उग्र आंदोलन हुए, उनका एक नतीजा ये निकला कि अधिग्रहण लगभग ठहर गया था, जो अब खुलकर सामने आएगा।
0: जो राज्य औद्योगिकरण के दौर से गुजर रहे हैं, वहां पर भूमि अधिग्रहण की स्थिति कैसी है कपूर साहब?
2: जिन राज्यों में पहले से काफी औद्योगिकरण हो चुका है
0: जी,
2: वहां तो फिर भी स्थिति ठीक है, पर जो राज्य पहले से औद्योगिक रूप से पिछड़े थे और राज्य सरकारें उद्योग लगाना चाहती है, वहां स्थिति बहुत खराब है। मसलन पश्चिम बंगाल में सिंगूर, नंदीग्राम आंदोलनों के बाद कोई बड़ा निवेश नहीं आया है।
0: ऐसा क्यों श्याम जी, जानकारों का इस मुद्दे पर क्या विचार है, वे क्या कहते हैं?
1: देखिए, देशी विदेशी निवेशक और अर्थशास्त्र के जानकार बता रहे हैं कि देश में नए निवेश के कम होने की एक वजह यह भी है कि उद्योगों को जमीन मिलने में दिक्कत हो रही है।
0: अच्छा।
1: तमाम राज्यों ने अपने अपने स्तर से जमीन अधिग्रहण को लेकर कानून बनाए हैं, पर इस मामले में उलझन अभी भी वैसी ही बनी हुई है।
0: क्या इससे पहले भी जमीन अधिग्रहण के लिए संसद में विधेयक लाया गया था कपूर साहब?
2: ये प्रस्तावित विधेयक उस विधेयक का संशोधित रूप है जो 3 साल पहले संसद में पेश हुआ था और जिसे संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। उस समय संसदीय समिति की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रस्तावित विधेयक से संतुष्ट थी क्योंकि उनकी समिति की सिफारिशों को बहुत हद तक मान लिया गया था।
0: एक बात यह है श्याम भाई कि ये खेती योग्य भूमि जो है वो बिल्कुल सिमटती जा रही है। देश आने वाले खाद्यान्न संकट को नजरअंदाज कर रहा है बिल्कुल। अभी भूमि का समान वितरण नहीं हुआ और ऊपर से पूंजीपतियों के लिए खेती योग्य जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए नित्य नए कानून बनाए जा रहे हैं। किसानों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। बहुत सारे कानून अभी भी धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, वो लगातार ऐसा देखा जा रहा है। आप दोनों के साथ इस मुद्दे पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में अभी हम लोग चलते हैं। इस जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल आईडी है rva@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आरवीए ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड नंबर है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहे और सुनते रहे सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, आइए अब सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी। वे हमसे बात करेंगे डॉक्टर अमृत सिंह के बारे में, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट, आज के व्यक्ति विशिष्ट कार्यक्रम में हम आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त सुविख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज के युग में, आज के जीवन में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, उसमें पूंजी, ब्रॉन्ड्स और धन का लगभग संपूर्ण वर्चस्व छाया हुआ है। वास्तविक मुद्दों को उठाया तो जा रहा है, लेकिन उन पर अमल करने की तो जैसे अनदेखी भी की जा रही है और उन्हें गंभीरता से सुलझाने की प्रवृत्ति को भी नहीं अपनाया जा रहा है। ध्यान वास्तविक मुद्दों की बजाय हवाई मुद्दों में ज्यादा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ समझ में आता है। कुछ विद्वान इसे वर्चुअल लूटपाट का नाम देते हैं। अब जरा सोचें, ऐसे माहौल में हमारे निर्धन और साधारण जन की हालत पहले से बेहतर हो सकती है क्या? तो इसी संदर्भ में हमें याद आती है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर अमर्त्य सेन का, जिन्हें आज से 12 साल पहले इसी अक्टूबर माह में अपनी लेखनी और शोध के कारण तथा आम जन के प्रति उनके चिंतन के आधार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय मूल के दार्शनिक अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन को विश्व का सर्वोच्च सम्मान मिलने से ये सत्य पूरी तरह से उजागर हुआ है, और उजागर ही क्या, प्रमाणित हुआ है कि एक आम निर्धन व्यक्ति की मूलभूत समस्याओं को एक नई सोच के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता और पहचान प्राप्त हुई है। अब योजनाएं तो अनेक बनती हैं और फिर ढोल धमाकों के साथ उनका बड़े जोर जोर से प्रचार भी होता है, लेकिन इनमें से बहुत कम पूर्ण सफलता पाती हैं योजनाएं, और बाकी तो पांडित्य और आंकड़ों के जाल में फंसकर कहीं खो जाती है, गुम हो जाती है। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने इसी तथ्य को अपनी शोध का आधार बनाया था और इसके द्वारा विश्व को ये जानकारी दी थी कि लक्ष्य और घोषणा के बीच में कितनी दूरी होती है, क्या हमें पाना है और क्या हमें उसकी योजना बनानी है, क्या उसकी हमें घोषणा करनी है, इसके बीच की जो दूरी है, ये जानकारी डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सेन इस तथ्य को बखूबी जानते थे कि शहरों की चकाचौंध में भारतीयों को अपने देश की गरीबी, भुखमरी और भयानक कुपोषण की वास्तविक तस्वीर का पता ही नहीं चल पाता। उन्होंने जान लिया था कि ऐसे ही कारणों से अनेक तरह की समस्याओं का जन्म होता है, निर्धन और भूख से मरता है, गरीब और अपनी लाचारी से परेशान होता है। इसीलिए उन्होंने अपने शोध में ये बात जोर देकर कही कि अगर हमारी आर्थिक रूप से जो बढ़ोतरी होती है, कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, कोई योजना हम शुरू करते हैं और उसमें हमें आर्थिक रूप से बहुत फायदा होता है, तो ये होती है आर्थिक रूप से बढ़ोतरी। तो अगर हमारी आर्थिक रूप से कोई बढ़ोतरी होती है और उसका अगर समान रूप से वितरण नहीं होता है, सब जन को उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो भयानक समस्याओं का समाधान कैसे होगा?
कैसे गरीब को उसका हक मिलेगा? आर्थिक वृद्धि केवल शासन द्वारा जो धन यानी राजस्व के रूप में अर्जित होती है और जो फिर बाजार में जाकर फैलने लगती है, इसी को प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए कि ये बात जोर शोर से कही जा रही है कि देखिए बाजार में ये चीज कितनी कितनी कितनी मुनाफे कमा रही है। ये गलत है। इस पूरी प्रक्रिया में आबादी के बहुमत की भागीदारी होनी ही चाहिए, और वो भी खास करके गरीब वर्ग की भागीदारी, जिसकी तादाद हमारे देश में काफी है। जब वितरण प्रणाली में इस वर्ग की भी समान हिस्सेदारी होगी, तभी तो हम उसे आर्थिक सफलता कहेंगे, और यही मानी भी जानी गई। डॉक्टर अमर्त्य सेन का दृढ़ता से यही मानना था कि वास्तविक रूप में और हिसाब के रूप में नैतिकता और मानवीयता से जुड़ी वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र ही मानव के सुखद और स्थायी विकास के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, और यही दृष्टिकोण हमें अपनाना ही होगा। श्रोता मित्रों, डॉक्टर अमर्त्य सेन उच्च श्रेणी के अर्थशास्त्री थे, इसी कारण उनका सदैव यही प्रमुख और प्राथमिक लक्ष्य रहा कि समाज में जितनी भी तरह की आर्थिक आमदनी जितने भी स्रोतों से प्राप्त होती है, वो किस रूप में और किस तरह से बांटी जाती है, उसका वितरण होता है, और इस प्रणाली में हमारे गरीब तबके को कितना लाभ और कितना हिस्सा मिलता है। बहुत बड़ी बात है साथियों। डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में कुछ हम जानकारी देने जा रहे हैं कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को भी पढ़ाया, बाद में वहां से पद छोड़कर कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में भी वे छात्रों को पढ़ाते रहे, अपने मूल विषय यानी अर्थशास्त्र में, जिसे हम इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, अपनी शोध और योगदान देने के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले एशियाई हैं। और हमें मालूम ही है कि उनसे पहले जिन भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे हैं महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर, सर सी वी रमन, डॉ हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा और डॉ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो साथियों, ये बात सर्वमान्य है कि डॉक्टर सेन ने भूख और गरीबी के मापदंड पर आर्थिक वृद्धि को परखने और वितरण करने की जो पहल की, उसे पूरे संसार में मान्यता मिली। 21वीं सदी को बीते 10 साल हो चुके हैं। इस बीच पूंजीपतियों, मुनाफाखोरों, भ्रष्टाचारियों और उनके कारनामों का ग्राफ काफी बढ़ चुका है। भारत और विश्व के अधिकांश देश महंगाई की मार से त्रस्त और परेशान हैं। अर्थव्यवस्था विकास के नाम पर ब्रांड बन चुकी है। हमें डॉक्टर सेन ने जो कुछ किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो भी हमें आर्थिक सफलता मिलती है, उसका सबको लाभ मिले।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी, जिन्होंने हमें बताया डॉक्टर अमृत सिंह के बारे में। और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाटक, जिसके प्रस्तुतकर्ता और लेखक हैं संदीप दुबे, और नाटक का शीर्षक है कितना बदल गया इंसान, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: प्रसिद्ध नाटक कितना बदल गया इंसान, इसके लेखक और निर्देशक हैं संदीप दुबे।
1: नफरत, गुस्से व खून खराबे की आग में जल रहा इंदौर शहर। चारों ओर पुलिस की घूमती गाड़ियां सन्नाटे को और भयावह करते पुलिस के सायरन। मैंने अपनी आंखों से पहली बार कर्फ्यू के वे चार दिन देखे थे। पूरा शहर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। खून से लथपथ एक आदमी अचानक हमारे बगीचे के दरवाजे पर लड़खड़ाते आ गिरा था। वह कराह रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। दंगे की आग कहां से भड़की थी किसी को पता नहीं था, लेकिन इस आग को बहुत सावधानी के साथ फैलाया गया था।
2: शंकर, शंकर बेटा।
1: क्या बात है रहीम चाचा?
2: अरे शंकर बेटा, आगे मत जाना, यहीं से वापस लौट जाओ।
1: घबराते क्यों हो रहीम चाचा? मेरा कोई क्या करेगा? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
2: अरे बेटा, शहर में दंगा हो गया है। दंगा? हम गरीब लोगों को दंगों में मार डालना सबसे आसान काम होता है। घर चले जाओ शंकर बेटा।
1: होने दो चाचा जान, हमारे देश में जरा सी झड़प को भी दंगों का नाम देकर बड़ी खबर बना दिया जाता है।
2: नहीं बेटा, आगे मत जाना। अरे शहर के चार भागों में कर्फ्यू लग गया है। भले ही यह मजहबी जुनून रहा हो, पर इंदौर की सड़कों पर हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है। शंकर बेटा, इंसानियत का खून हो रहा है। घर चले जाओ बेटा।
1: पर कल तक तो सब ठीक था चाचा, आज अचानक ऐसा क्या हो गया?
2: अरे क्या बताऊं बेटा, सड़क चौड़ीकरण अभियान के अंतर्गत 100 साल पुराने एक मंदिर को तोड़ दिया गया था, वही एक मस्जिद को भी। अब वहाँ फैल गई कि यह सोची समझी साजिश है और दंगा फैल गया।
1: चाचा, गैर कानूनी कब्जों का यह सवाल केवल यहाँ ही नहीं है बल्कि पूरे देश का है। हर कोई अपना मंदिर, अपनी मस्जिद बीच रास्ते में बना लेगा तो हमें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी।
2: बेटा, मुझे 80 साल हो गए इस शहर को देखते देखते, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। हमारे मंदिर मस्जिद तो शहर के बाहर ही बने थे। शहर बड़ा, आबादी बढ़ी, तो ये सब शहर के बीचों बीच आ गए। सरकार चाहती तो यह मसला हल हो सकता था बेटा। सड़क निकालने का रास्ता कोई दूसरा भी तो हो सकता था।
1: पर यह तो इस शहर के लोगों को भी सोचना चाहिए था चाचा। इस स्वर्ग से सुंदर इस शहर को कब्रगाह में बदलने की क्या जरूरत है?
2: बेटा शंकर, ठीक भी हो तेरा कहना। इस सवाल का जवाब एक इंदौर, एक शहर को नहीं, हम सबको देना है। अरे अरे, भीड़ हमारी तरफ आ रही है। ले ले शंकर बेटा, मेरी टोपी पहले बढ़ना, ये छोड़ दे।
1: तुम डरो मत चाचा, ये सब मेरे अपने लोग हैं। ये फारूक, ये सलीम और ये अयाज। क्यों भाइयों, मैंने सच कहा?
2: बेटा, आज इनका इरादा ठीक नहीं, सभी की आंखों में खून तेज रहा है। भाग जा बेटा, भाग जा।
1: मैं भाग कर कहां जाऊं चाचा? ये शहर, ये मोहल्ला, इबादत पूरा मेरा अपना है। यहाँ इबादत पड़ी जाती है चाचा। इस मस्जिद की नींव मैंने उस मंदिर के चंदे से रखी थी। इस मस्जिद की अजान से मैं जागा हूँ और उस मंदिर की आरती के बाद मैं सोया हूँ चाचा।
2: शंकर बेटा, ये सब आज कुछ नहीं सुनेंगे। भाग जा बेटा, भाग जा। इनकी आंख में सांप्रदायिकता की आग धड़क रही है। इन सब की आंख पर पर्दा पड़ा है। इनकी नजर में आज कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। इन सब का आज एक ही मकसद है, बदला, खून का बदला। इनकी न कोई जात है, न कोई मजहब। भाग जा बेटा।
3: मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। देखो तुम्हारा बदला उन लोगों से है जिन्होंने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी और फिर हमारा भी तो मंदिर टूटा। देखो मुझे छोड़ दो, मैंने तो इस इलाके की जर्जर हुई मस्जिदों को संवारा है। देखो मुझे, देखो ये चाकू, ये खंजर दूर करो।
4: चुप कर वे, मंदिर मस्जिद संभालने वाले, हमारे पास समय कम है। 22 में से 11 थानों में कर्फ्यू लगा है। हमें बचे हुए लोगों में भी दंगा भड़काना है। मुद्दा बहुत गर्म है, तेरे जैसे लोग तो माहौल को ठंडा करके रखते हैं। भाग यहाँ से वरना निकाल दूंगा से।
3: मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। हिंदू मुसलमान में नफरत की खाई और गहरी नहीं करने दूंगा। मैं सबको समझूंगा, आंखें खोलूंगा कि यह सब षड्यंत्र है, आपस में लड़ाने का षड्यंत्र। इन सब के पीछे राजनीति है, राजनीति है। मैं तुम्हें चाचा
2: शंकर बेटा, मैं तुम्हारे सीने में खंजर नहीं घोंपते देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया।
3: रहीम चाचा, ये तुमने क्या किया?
5: एक अधेड़ को नहलुहान कर दिया तुम लोगों ने। रहीम चाचा को खून कर दिया तुम लोगों ने। चलो हमें और भी काम करना है।
3: चाचा जान, तुमने क्यों मेरा पक्ष लिया?
2: बेटे अब मेरा क्या काम, तुम्हें तो अलग जगानी है, एक नया सवेरा लाना है, तुम्हारी सख्त जरूरत है।
3: हाँ चाचा, भूल सकता हूँ कैसे वो नजारा उम्र का, जब खुदा भी सो रहा था चल दिए तुम जो बिछड़े इस चमन की खुशियां चल गई, जैसे माली चल दिया हो गुल से रिश्ता तोड़।

0: भैया भैया यहाँ क्यों छिपे खड़े हो? आज राखी है, रक्षाबंधन। तुम अपने घर नहीं गए? क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है?
1: कौन कौन है? हट जाओ, हट जाओ मेरे सामने। मैं राखी जैसे कमजोर धागे नहीं बांधता। मेरे हाथों में बमों की लड़ियां बनी है। ये देख लड़की, राखी आत्मघाती बमों से मेरा पूरा शरीर बंधा है। मेरे शरीर पर अब कोई जगह खाली नहीं है।
0: भैया राखी का धागा तुम्हारे इन बमों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बंधा कर तो देखो। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? मुझे ही अपनी बहन बना लो। याद रखना, जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगी राखी।
1: बहन राखी जीवन? मेरा कोई जीवन नहीं और न ही मेरी रक्षा की कोई गारंटी। मुझे भावना में मत फुसला लड़की। मैं सब छोड़ कर आया हूँ, सब अपने घर परिवार सब छोड़ दिया मैंने। अब मेरा एक ही मकसद है, आतंक। जिसकी सब पूजा करते हैं। मैं आज तक किसी का सगा नहीं हुआ, तेरा भी गला रेत सकता हूँ लड़की।
0: चलो घर चलो भैया, तुम थक गए हो। राखी बंधा लेना फिर चले जाना। मेरा भी कोई भाई नहीं है, शायद ऊपर वाले ने तुम्हें ही भाई बनाकर भेजा है।
1: अरे कैसा भाई और कैसी बहन, मेरा रिश्ता सिर्फ आतंक से है, पैसे से है और बड़े बड़े नेताओं से। मैं कभी नहीं हार सकता। इस देश की भोली भाली जनता पर मैं हमेशा भारी रहूंगा और आतंक के साए में कम कपाती अवाम पर मेरी जीत हमेशा होगी।
0: क्या कहा? आवाम पर भारी रहना चाहते हो? तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। मैं मूर्ख थी जो तुम जैसे क्रूर आदमी को अपना भाई बनाने चली थी। गद्दार, देश के दुश्मन। देश का दुश्मन मेरा भाई कभी नहीं हो सकता।
1: चल मेरे सामने से हट जा लड़की, मुझे अभी बहुत काम है। मस्जिदों पर पत्थर बिकवाने हैं और मंदिरों पर अपवित्र चीजें। फिर सवेरा होते ही इंसान भेड़िया बन जाएगा।
0: नीच आदमखोर आतंकवादी, तेरा अंत जल्दी ही आएगा।

0: कौन है? अंधी हूँ तो क्या बेटा, टटोल कर तो देख सकती हूँ और बता सकती हूँ। तो कोई परेशानी में है ना? चल चल अंदर चल बेटा, बाहर बड़ी ठंडी है, चल।
1: ए बुढ़िया, कहीं तू मुझे देख तो नहीं रही है?
0: अरे
1: अंधे होने का नाटक किया तो गला काट डालूंगा तेरा।
0: बेटा जीवन भर इन आँखों ने कलयुग तो देखा है, अब आंखें देख नहीं सकती थी तो अंधी हो गई। अच्छा रहा, पर तू इतना हाफ क्यों रहा है बेटा? क्या हुआ, कोई तेरा पीछा करता है या किसी का डर है?
1: मेरा कोई क्या पीछा करेगा बुढ़िया, सिर्फ मौत मेरा पीछा करती है, सिर्फ मौत। इसलिए मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, ना देखता हूँ।
0: बेटा काम क्या करते हो, क्या धंधा करते हो?
1: आतंक फैलाना धंधा है मेरा, और देश की आवाम को भड़काना, खून खराबा कराना मेरा व्यवसाय। बुढ़िया मेरा खंजर न हिंदू को बख्शता है, न मुसलमान को, न भाई को, न बहन को हट जा मेरे
0: पास। और न माँ को?
1: हाँ न माँ को। बुढ़िया मैंने कहा ना मुझे किसी से कोई लेना देना है, हट जा मैं कहता हूँ, हट जा, हट जा।
0: बेटा बेटा मुझे पता है तू ये सब बेमन से कर रहा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, त्याग दे, छोड़ दे ये चूल्हा, छोड़ दे।
1: मेरा रूप कभी बदल नहीं सकता बुढ़िया, मुझे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। आतंक नाम है मेरा, अभी अभी 11 साल के एक लड़के को बम से बांध कर चीथड़े चीथड़े कर गया मैं। पूरे बाजार में सिर्फ मैं खड़ा रहता हूँ, बाकी तो सब अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। आतंक नाम है मेरा, बुढ़िया हट जा मेरे सामने से।
0: बेटा बेटा एक माँ के गले लग कर देख, फिर तुझे पता चलेगा एक बेटे का सुख क्या होता।
1: नहीं नहीं, ए बुढ़िया, ए मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना।
0: क्यों बेटा? बेटा भला एक माँ को अपने बेटे को छूने से क्या ऐतराज?
1: नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे हाथ मत लगा। माँ मैं तेरे लायक नहीं, मैं तेरा नालायक बेटा हूँ। मैंने चंद लोगों के बहकावे में आकर, पैसों के लालच में आकर, स्वर्ग से सुंदर इस इंदौर शहर को, इस देश को नरक बनाकर राख कर दिया है। आज तेरी ममता ने मुझे तोड़कर रख दिया माँ। गरीबी और बेरोजगारी के चलते मैं अपना रास्ता भटक गया था, उन लोगों को बचा लो, उन लोगों को बचा लो माँ, उन लोगों को बचा लो, मर जाएंगे वो लोग। उन निर्दोषों को जिनकी जिंदगी आज शाम 5:50 पर लाशों में बदलने वाली है।
0: क्या मतलब बेटा?
1: और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आज शाम लाल बाग के भीड़ भरे इलाके में 5 बम फटने वाले हैं, और वो बम मैंने रखे हैं माँ, मैंने रखे।
0: बेटा बेटा बेटा तेरा प्रायश्चित है, तेरी क्षमा है। हाँ बेटा अपनी माँ के गले लग जा।
1: नहीं
0: और कसम कहा कि फिर कभी भी ऐसा नहीं।
1: नहीं माँ मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, मेरे शरीर में बम लगे हुए, तुमने छुआ तो देखते देखते मेरे चीथड़े हो जाएंगे। ये देख ये रहा रिमोट कंट्रोल, इससे मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अरे तू तो देख भी नहीं सकती। अब ध्यान से सुनना माँ, तेरे बेटे के चीथड़ों में कितना दम है।
0: नहीं नहीं बेटे,
1: देखना माँ।
0: नहीं एक, बेटा रुको, नहीं
1: तो
0: नहीं
1: तीन।

कितना बदल गया इंसान। अभी आपने सुना ये नाटक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे नूपुर दीक्षित, अंतरा करवड़े और संदीप दुबे।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नाटक, जिसके प्रस्तुतकर्ता और लेखक थे संदीप दुबे। इस नाटक का शीर्षक था कितना बदल गया है इंसान, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब मैं आगे की सभा का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ विवेक पीटर रॉबर्ट को। अब आज्ञा दीजिए सिस्टर गंगा रावत एसएसपीएस को। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संतोष जोशी और उनके साथ हैं प्रीति वर्मा। प्रीति जी आज हमें करियर के बारे में बताएंगी कि स्टूडेंट्स को किस प्रकार से अपना करियर चुनना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात संतोष जोशी के साथ।

0: श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम में हमने विभिन्न अवसरों पर आपकी मुलाकात अलग अलग शख्सियत से करवाई है और आज भी हम उसी मुकाम पर हैं। श्रोताओं, अक्सर ये देखा गया है कि आज के दौर में किसी भी विद्यार्थी के लिए अपने कैरियर का चुनाव करना एक सोच का विषय हो जाता है और उसके लिए उसे उसकी ये कोशिश रहती है कि वो कहां से उस चीज के बारे में मालूम करे और ये हासिल करे कि उसे निर्णय ले क्या लेना है। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है प्रीति वर्मा जी को। हम उनका सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत करते हैं। प्रीति जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: प्रीति जी। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अभी आप क्या कर रही हैं।
1: संतोष जी, मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी से, गुजराती कॉलेज से।
0: तो ये तो आप पढ़ाई कर रही हैं।
1: जी,
0: पढ़ाई का बताया आपने।
1: जी,
0: पढ़ाई के अलावा आप कोई नौकरी भी कहीं कर रही हैं?
1: जी संतोष जी, मैं एक नौकरी कर रही हूँ, एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है दी एच मेकर्स, और यहाँ पर मैं टेलीकॉलिंग का काम करती हूँ। इसको अगर हम कहें तो मतलब स्टूडेंट जो बच्चे रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, उन्हें फोन पर समझाना कि वे आगे क्या करना चाहते हैं अपने भविष्य में, कैसे अपना भविष्य सफल बनाना चाहते हैं, तो उन्हें वही समझाना कि आगे उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है कि आगे हमें क्या करना है, उसके लिए अभी से हम क्या करें, तो उन्हें वही समझाना कि आगे आप अच्छे से करें, ये सीखें आप, तो इससे आपको आपका विकास होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी।
0: हाँ हाँ, तो ये तो आप जब ऑफिस पहुंचती हैं, अपने ऑफिस में आप गई, तो आपका काम कैसे शुरू होता है वो बताएं आप, कि वहां पर विद्यार्थी आते हैं या आपको उन्हें उनके पास जाना होता है?
1: संतोष जी, ऐसा होता है कि जैसे जो हमारे जो ऑफिस में एक सेक्टर है, एक विभाग है, विभाग उसमें उसके कुछ लोग रहते हैं बाहर, वे जाते हैं, जो विद्यार्थी उन्हें बाहर मिलते हैं, कॉलेज के बाहर मिलते हैं, और जो सड़क पर अपन वो कैनोपी लगाते हैं उसमें जो विद्यार्थियों से वे बात करते हैं, फिर उनको बस हमारे पास प्रोग्राम है उसके बारे में वे समझाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, फिर विद्यार्थियों से बात करके उन्हें दो दिनों की प्री क्लास, मतलब दो दिनों की क्लासेस देखने के लिए कि कैसी होती हैं, इसके लिए वे लोग आमंत्रित करके आते हैं उन्हें, फिर वही नंबर और नाम हमारे पास आते हैं, फिर उन्हीं से हम बात करते हैं, बच्चों से, विद्यार्थियों से उन्हें हम फोन लगाते हैं, फिर उनसे हम बात करते हैं कि आगे वे क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं वे, और अभी से उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं वे, हम वो जानते हैं, फिर उन्हें उनके प्रयास और कैसे बेहतर हो सके, हम उस तरीके से उन्हें अपने विचार बताते हैं कि आगे वो और कितना अच्छा कर सकते हैं।
0: तो ये जो कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो उनकी सारी जानकारी आपके पास कैसे पहुंचती है? आपने बताया कुछ लोग तो वहाँ जाते हैं
1: जी,
0: लेकिन विद्यार्थियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है
1: जी,
0: तो आपके पास क्या सबकी जानकारी पहुंचती है?
1: सभी की नहीं, जिन विद्यार्थियों से हम मिल पाते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में हमें जानकारी होती है, सभी के बारे में जानकारी नहीं होती है, मगर कुछ जैसे कि जो विद्यार्थी आते हैं वहाँ पर, तो फिर वो दूसरों से भी मिलते हैं, तो फिर उन्हें भी पता चलता है कि नहीं ये अच्छा है, तो फिर दूसरे विद्यार्थी भी हमसे मिलने आते हैं, वे भी जानते हैं कि आगे हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम उन्हें भी वहाँ पर पूरा गाइड करते हैं, उन्हें सब बताते हैं कि कैसे उन्हें भी आगे बढ़ना है।
0: तो इसके लिए वहाँ विद्यार्थियों को आपसे वहाँ संपर्क करने के लिए उनके कोई कम से कम कोई योग्यता पढ़ाई में होनी चाहिए कि उन्हें 11वीं या 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ऐसा कुछ कोई नियम
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं नहीं संतोष जी, ऐसा कुछ नियम तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है इंदौर शहर में आपने भी देखा होगा अधिकतर विद्यार्थी बाहर से आकर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी इतना ज्यादा पता नहीं होता है कि आगे हमें क्या करना है और इंदौर में हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं अपने करियर को, तो उनको भी मतलब ऐसी कुछ योग्यता नहीं है, वे भी आकर हमसे बात करते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि देखिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इसमें इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर उन्हें हम समझाते हैं, ऐसा कुछ योग्यता जरूरी नहीं होती है जी।
0: इंग्लिश का जैसे आपने बताया
1: जी,
0: तो ये बात तो तय है कि आने वाले कुछ सालों में अंग्रेजी जहां नहीं किसी को आएगी उसके लिए कैरियर बनाना बहुत मुश्किल होगा।
1: बिल्कुल सही,
0: इस तरह की कुछ बातें हैं। तो जैसे किसी, यहां तो वातावरण उतना है नहीं कि अगर किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती
1: जी,
0: तो उसे फिर, लेकिन उसे शुरू से बोलना सिखाना पड़ेगा
1: जी, जी।
0: तो वो भी होता है
1: जी, बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स, हम कह सकते हैं उसे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अनुसार हम विद्यार्थी की योग्यता देखकर हम उन्हें वो प्रोग्राम सुझाव करते हैं कि आप इसे ले सकते हैं और इसमें आप, हम ये कराते हैं ताकि इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश, अंग्रेजी सीख सकें।
0: तो अगर जिसे थोड़ी बहुत आती है
1: जी,
0: तो उसकी, उसे आने के लिए, उसमें और रवानी लाने के लिए
1: जी,
0: उसे फ्लुएंसी जिसे कहते
1: जी,
0: हैं, रवानी लाने के लिए भी आप अलग से कोई प्रोग्राम होता है?
1: हाँ जी संतोष जी, हमारे पास जैसे अलग अलग प्रोग्राम है, जिसे शुरू से जिसे सिखाना है उसके लिए अलग है बेसिक इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, उसे शुरू से सिखाया जाता है उसमें, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं रवानी लाने के लिए, तो उस तरीके का प्रोग्राम भी हमारे पास है जो कि फ्लुएंसी डेवलपमेंट कहलाता है, लैंग्वेज प्लस कहलाता है। तो उसमें जो विद्यार्थियों की क्षमता रहती है कि जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, तो उन्हें हम और ऐसा वातावरण हम उन्हें उस प्रोग्राम में देते हैं ताकि वो और रवानी ला सके अपनी अंग्रेजी में, अच्छे से बोल सके। कई बार विद्यार्थियों को डर लगता है कि दूसरों के सामने हम कैसे बोल पाएंगे, तो उनके डर को दूर करने के लिए भी वहां पर हम ऐसा करते हैं जैसे कि उन्हें मंच पर आमंत्रित करके उन्हें कहते हैं कि अब आप अपने आप को, अपने बारे में कुछ बोलिए, उससे उनका डर दूर होता है और वो सभी के सामने इंग्लिश, अंग्रेजी बोल पाते हैं।
0: तो इस तरह से एक आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है
1: जी।
0: एक बात देखी हमने कि कई बार जो विद्यार्थी है उसका, उसके जो माँ बाप, माता पिता हैं, माता पिता के साथ पढ़ाई के मामले में उसके विचार नहीं मिलते। ज्यादातर ये देखा है कि वो करना कुछ चाहता है और उसके जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो उससे कुछ दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो

0: वो अच्छा अपने आप को बना पाएगा। तो वही माता पिता कई बार समझते हैं, मगर कई बार माता पिता सोचते हैं कि नहीं, इसमें अच्छा नहीं कर पाएगा, इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएगा हमारा बच्चा, या इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। तो उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आगे मेरा जो बच्चा है वो अच्छा मतलब कर पाएगा या नहीं।
1: एक बात ये है कि इसमें आपने देखा होगा, इतना आपको समय इसमें हो गया है काम करते हुए समय, कि आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है या लड़कों की?
0: आने वाले विद्यार्थियों में अगर हम इस तरीके से देखें तो दोनों की संख्या समान ही है, क्योंकि पहले लड़कियां नहीं आती थी बाहर से, क्योंकि माता पिता नहीं भेज पाते थे कि लड़की बाहर कैसे जाएगी पढ़ने। मगर आज का जो समय चल रहा है उसमें लड़कियों को भी पूरी आजादी मिल रही है उन्हें, कि वे भी अपने आप को दिखा सके कि हम भी कुछ कर सकती हैं। तो लड़कियों की भी संख्या बढ़ रही है, पूरी बराबर चल रही है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि लड़कियां कम है या पीछे हैं।
1: और विषय भी जो विषय लड़के चुनते हैं वही लड़कियां भी चुनती हैं, क्या उसमें कोई फर्क है कि लड़कियां फला फला कोई विषय वो नहीं ले पाती हैं, ऐसा नहीं?
0: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लड़कियों को आज के समय में लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो बिल्कुल वो उस विषय को चुनती हैं, वो उस क्षेत्र को चुनती हैं। जैसा कि देखा होगा आपने पायलट, तो अगर हम ऐसे देखें तो हम यही सोचते हैं कि नहीं एक लड़का है वो पायलट अच्छे से बन सकता है, मगर आज लड़कियां भी उस क्षेत्र में रुचि ले रही हैं, उसमें अच्छे से अच्छा करके बता रही हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
1: अच्छा, एक आजकल काफी शब्द सुनने में आ रहा है जिसे कहा जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
0: जी
1: अपने व्यक्तित्व का विकास,
0: जी
1: तो यहाँ आपके यहाँ कुछ इससे भी संबंधित कुछ किया जाता है, किया जाता है तो कैसे उसको आप लागू करते हैं?
0: जी संतोष जी, इससे संबंधित हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम है एडवांटेज, ये पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, विकास व्यक्तित्व विकास के लिए ही ये प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले हम ये सिखाते हैं, क्योंकि एक व्यक्तित्व, एक अच्छी विकसित व्यक्तित्व सिर्फ दिखने के कारण ही नहीं होता है, उसे ज्ञान कितना है हर चीज के बारे में वो भी ज्यादा महत्व रखता है। तो वहीं हम सिखाते हैं उन्हें कि कैसे वो अपनी बोली को और अच्छे से निखार सके, अच्छे जो शब्द होते हैं वो अपनी बातचीत में ला सकें, क्योंकि हमने देखा है कि जो सबसे ज्यादा अच्छे शब्द अपने उपयोग में लाता है बात करने के, हम उसी को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यही हमारा मेन व्यक्तित्व विकास में ये हम लेकर चलते हैं पॉइंट, अगर हम इसे कहें तो ये लेकर चलते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी है। एनालिटिकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो दूसरों को कैसे हम पहचान सकते हैं, दूसरों को कैसे, दूसरों के बारे में कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डिसीजन, जैसे कि क्या कहेंगे हम इसे,
1: निर्णय
0: लेने की क्षमता कैसी है, और हम कैसे सही टाइम पर सही निर्णय लेते हैं वो भी जल्दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस जगह पर हम हैं वो हमने पहले कोई निर्णय लिया होगा तभी हम उस जगह पर हैं। उसके बाद लगन और मेहनत कैसी है, अपने हमारे सामने मतलब हमारा विजन अगर हम देखें, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं हम, आगे अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं वो हमारे सामने पूरा होना चाहिए, कि हमें ये करना है, पूरा हमें पहले से जानकारी होना चाहिए कि हमें इस क्षेत्र में जाना है और उसके लिए हमें ये करना है।
1: तो प्रीति जी, आपने अपने काम के बारे में बताया
0: जी,
1: अपने ऑफिस के बारे में, अपनी पढ़ाई आपने की वो बताया, अब हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे आपने खुद के बारे में। अब अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके परिवार में कौन कौन है।
0: संतोष जी, इंदौर में ही मेरा जन्म हुआ है और मेरे परिवार में मेरे मम्मी हैं, मेरे पिताजी हैं और हम चार भाई बहन हैं, मुझसे बड़ा एक भाई है और मुझसे छोटी दो बहनें हैं।
1: और आपके पिताजी क्या करते हैं?
0: मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं और मेरी मम्मी जो है वो घर में ही सिलाई करती हैं, ताकि मतलब और घर में हेल्प हो पाए ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम समस्या ना आए ज्यादा, क्योंकि हम शुरू से ही मतलब ऐसा रहा है कि जब से दादा दादी नहीं रहे हैं उस वक्त के बाद से घर में बहुत ज्यादा मतलब समस्या होने लगी थी, कि कैसे चारों भाई बहनों को पढ़ाना,
1: आर्थिक समस्या
0: कह सकते हैं जी, तो सभी को पढ़ाना। उसके बाद हमारे माता पिता का यही सपना था, मेरे माता पिता का, कि उनका भविष्य अच्छा बना पाए, तो उसके लिए उन्होंने शुरू से ही बहुत मेहनत करी, जैसे कि अभी तक भी वे करते आ रहे हैं, हमें इस सफल उस पे जगह पर उन्होंने लाए हैं। वे अभी मेरा भाई भी बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहा है, मेरी बहन भी अच्छा पढ़ रही है, स्कूल में है दोनों बहनें।
1: तो आपने मतलब जो नौकरी की, जो अपने जॉब किया
0: जी,
1: तो उसके पीछे भी

0: कहीं यही बात है कि आप अपने परिवार को सहारा देना चाहती थी।
1: हाँ, मैंने मेरी नौकरी का निर्णय इसी के लिए था कि मैं अपने परिवार को भी सहारा दे सकूं। और नौकरी करने के साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि आज बाहर क्या है, वातावरण बाहर का, कैसे हम बाहर अपने आप को और ऊपर लाएं और आगे बढ़ाएं अपने आप को। पता चला कि बाहर क्या क्या चीजें जरूरी हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब चीज करना बहुत आसान होता है, बिल्कुल अगर हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो सब कुछ आसान ही होता है। हम सोचते हैं कि हम कैसे कोई कुछ बन सकते हैं, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, मगर ये है कि अगर हम उसके लिए सही से मेहनत करें, शुरू से अगर हम करें तो कुछ भी
0: हाँ, तो
1: इम्पॉसिबल
0: आसान बन
1: नहीं
0: जाता
1: है,
0: है हर चीज,
1: आसान
0: कठिन
1: बन
0: कुछ
1: जाते
0: नहीं
1: हैं।
0: है। प्रीति जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था
1: जी
0: कि आप चूंकि ऑफिस में आप कार्य करती हैं, तो
1: जी
0: वहां जो आपके बॉस हैं वो तो स्वाभाविक तौर से आपसे उम्र में बड़े होंगे
1: जी
0: और आप बहुत छोटी हैं अभी। क्या
1: जी
0: उम्र आपकी होगी?
1: 20 साल
0: बहुत छोटी उम्र है।
1: जी
0: तो अगर कभी वहां आपको कोई कुछ कह देता है आपका बॉस, या
1: जी
0: तो आपको बुरा तो लगता होगा, डांट देता है किसी किसी बात
1: जी
0: के कारण, काम के कारण।
1: संतोष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझसे और अपेक्षा करते हैं कि मैं और अच्छा करूं। वो मुझ में ही कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहते हैं, इसलिए वे मुझे डांटते हैं। तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश भी करती हूँ कि मैं और अच्छे से अच्छा काम करूं और कभी ऐसा मौका ना आने दूं कि सर को मुझे कुछ, मेरे बॉस को मुझे कुछ कहना पड़े। तो मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करती रहती हूँ।
0: देखिए, ये कच्चा संदेश है श्रोताओं तक कि नहीं तो क्या होता है कि तैश में या भावावेश में या
1: जी
0: गुस्से में
1: जी
0: कोई नौकरी छोड़ के भी चला जाता है कि रखो हमें नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे युवा श्रोताओं का आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं अपने युवा श्रोताओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि जो भी अपने भविष्य में आप करना चाहें उसे पूरे अच्छी तरीके से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे ये करना है और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि सभी सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और इससे हमारा लक्ष्य जो है हम नहीं पा पाते हैं। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलें कि मुझे इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है और इसी के लिए प्रयास करना है। अपने आप पे विश्वास रखें सिर्फ, और अपना मार्गदर्शन अच्छे से करें।
0: तो प्रीति जी, आपने जो बातें बताई, एक श्रोताओं के लिए आपने संदेश भी दिया, और वैसे भी आपकी जो बातें हुई उससे भी काफी बातें श्रोताओं तक पहुंची हैं। हमारे वो युवा श्रोता जो कि अभी पढ़ रहे हैं और अभी कुछ करना चाहते हैं, जिनके सामने कोई लक्ष्य अभी है नहीं, कईयों के सामने है भी और उन्हें लगता होगा कि वो क्या करें, तो ये बातें साफ हुई हैं कि एक तो लक्ष्य है वो साफ होना चाहिए। आपकी बातों से यही पता लगता है कि सुने सबकी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए क्या सही होगा उसे ठीक ठीक सामने रखकर, मार्गदर्शन सही लेकर, मेहनत और लगन से अगर वो जुटे रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रीति जी, आज आप हमारी स्टूडियो में आई और आपने हमारे जरिए श्रोताओं तक इतनी अच्छी बातें पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष जोशी और उनके साथ थी प्रीति वर्मा। प्रीति जी ने हमें बताया कि किस प्रकार एक स्टूडेंट को अपना करियर चुनना चाहिए। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रम को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं श्री कृष्णकांत दुबे एवं स्वतंत्र कुमार ओझा, और वार्ता का शीर्षक है पुस्तकालय और पुस्तक मेलों का महत्व।

0: हमारे आज के युवा विकास कार्यक्रम में हर बार की तरह मैं और मेरे वरिष्ठ श्री कृष्णकांत दुबे आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो भी संभवतः एक महत्वपूर्ण विषय है। तो दुबे जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा और अक्सर पढ़ने में आता ही रहता है कि हमारे इंदौर शहर में भी एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है।
1: जी,
0: तो पुस्तक मेला अपने आप में बेहद ज्ञानवर्धक होता है।
1: सही कहा आपने।
0: और युवाओं के लिए सबसे पहली जरूरी बात है उनका शिक्षण,
1: जी,
0: पढ़ाई लिखाई। अब शहरों महानगरों में तो यहाँ के जो युवा हैं, युवतियां हैं, ये तो किसी तरह इनको पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं वहां के भी युवा युवतियों को पढ़ाई पूरी करना बहुत जरूरी है, अपना कोर्स, अपना स्कूल और अपना जो भी पाठ्यक्रम है सबसे पहले उसमें ध्यान देना चाहिए। भले ही परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, हालात ऐसे हो सकते हैं कि भाई नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ भी कुछ और अपना पुश्तैनी जो काम है वो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है। तो आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, यानी हमारे श्रोताओं को बताइए कि युवाओं के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और ये जो पुस्तक मेलों का आयोजन होता है ये कितने सहायक हो सकते हैं, खास करके हमारे इस वर्ग को।
1: जी, तो देखिए ओझा जी, जब शिक्षण की बात आती है तो हम इसे दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक वे शिक्षण संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, उनका अपना एक स्तर होता है। वहां जो विद्यार्थी, जो छात्र पढ़ते हैं, वाले समझिए कि उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं ज्ञान प्राप्त करने की।
0: जी,
1: लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी इस चीज की कमी है कि वे सामान्य रूप से अपने पाठ्यक्रम जरूर पढ़ लेते हैं बच्चे और युवा, लेकिन जो सही ज्ञान होता है कभी कभी जो पुस्तकों में होता है वो उनको कम मिलता है। इसके सबसे बड़े कारण ये हैं कि वहां इस तरह के साधन नहीं होते। यहां शहरों में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां होती हैं, पुस्तकों की दुकान भी होती हैं जहां जाकर के युवा अपने विषय का और यहां तक कि मनोरंजन के लिए जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं वे बड़ी आसानी से मिल जाती हैं।
0: हर विषय से, हर विषय से पुस्तकों का शहरों में तो कम से कम मिलना आसान है।
1: बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं उदय जी कि जो शहरों में सुविधा है वो गांव में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वे ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते ग्राम के युवा या ग्राम के बच्चे, उनमें भी बड़ी आकांक्षा होती है। वे चाहते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति की जितनी दिशाएं हैं वो प्राप्त हों। वे शहर आते हैं क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि परिवहन के और आवागमन के साधन जो हैं काफी बढ़ चुके हैं। जब वे शहर में आते हैं तो शायद वे अपनी इस आकांक्षा की थोड़ी बहुत पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन सर्वसुलभ ये बात नहीं है। जिनकी क्षमता है वे तो आ जाते हैं, लेकिन जिनकी क्षमता नहीं है, जो युवक दूसरे काम करते हैं, वो इस सुविधा से वंचित रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि गांव में, जैसा आपने कहा, कि ज्ञान प्राप्ति की दिशा में एक जागृति लाई जाए, एक विकास लाया जाए, तभी जाकर के ये समस्या हल हो सकती है।
0: और ये जो पुस्तक मेलों का आयोजन होता है इसके पीछे भी एक उद्देश्य तो ये भी रहता है।
1: जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: कम से कम पाठक वर्ग को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसे कुछ अपने विषय से मेल खाता हुआ साहित्य या पुस्तक पढ़ने को मिले। तो दुबे जी, ये अपन ग्रामीण अंचलों की बात कर रहे हैं, तो आपने ऐसा भी कहा कि अब तो आने जाने के साधन। और आप अब तो अब हम सब ये देख भी रहे हैं कि अधिकतर गांव सिमटते चले आ रहे हैं शहरों की ओर, शहरों में समाहित होते जा रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: तो अब जो गांव में हैं, जो दूर अंचल में हैं या कहीं भी गांव में हैं, और अगर उनको ऐसी जानकारी होती है कि भाई शहर में पुस्तक मेला लगा है,
1: जी,
0: तो मेरी राय है कि उन्हें भाई कोई अच्छी फिल्म लगती है तो 7-8 लड़के लड़कियां मिलकर के, भले गांव में ही रहते हो, वो फिल्म देखने के लिए शहर में आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो पुस्तक मेला अगर लगता है तो उसमें भी आना चाहिए।
1: ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा है तो उन्हें ये जरूर होना चाहिए कि वे जब पुस्तक मेला लगे, चाहे वो शहर में हो या कस्बे में हो, वहां उनको जरूर जाना चाहिए और अपनी रुचि की पुस्तकें या अपने विषय की पुस्तकें जरूर खरीदना चाहिए। खरीदना बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी,
1: क्योंकि जो खरीदी गई चीज है वो आपके पास संग्रहित रहती है। मांग कर लाई गई कोई चीज कभी भी स्थायी नहीं होती, वो कभी भी मांगी जा सकती है।
0: जी।
1: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पुस्तकें मांगी ना जाए, उसे खरीदा जाए और पढ़ा जाए। मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं, खासकर गांवों की बात है ये। हमारे यहां पर सरस्वती को ज्ञानदात्री माना गया है, और आपने देखा होगा कि जब उनकी आराधना की जाती है तो पुस्तक धारिणी शब्द कहा जाता है।
0: क्या बात
1: है। जब पुस्तक धारिणी शब्द कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि ज्ञान का सारा स्रोत जो है वो पुस्तकों में है। वहीं से हम शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, वहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और वो ज्ञान हमें कई दिशाएं देता है। आज मैं कह सकता हूं आपसे कि हमारे देश के युवा बाहर देशों में जाकर के जो नाम कमा रहे हैं उसके पीछे उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान, उनके औत्सुक ज्ञान के प्रति औत्सुकता, ये सब जो चीजें हैं ये हमें बराबर इस बात का इंगित करती है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। ये आज दुनिया के नखरे में या दुनिया के इतिहास में या इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया है। तो ये इसलिए किया है कि वो, और आपने अक्सर देखा होगा, कई बार आपने भी पढ़ा होगा कि गांव के बच्चे जो हैं वे इन चीजों में अग्रणी होते हैं। तो वो इसीलिए है कि जिनमें ऐसी लगन होती है वो चाहते हैं कि वो जो ज्ञान के स्रोत हैं, पुस्तकें हैं, हम उनको खरीदें, उनको पढ़ें, उनमें अध्ययन करें। अगर हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं है तो हम अपने गुरुओं से उसकी ज्ञान की प्राप्ति करें।
0: और फिर एक तरह की जिज्ञासा भी रहती है।
1: जी
0: की अक्सर कई चीजें ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण इलाकों में पता ही नहीं रहती।
1: जी।
0: तो मतलब ये कि कहने का, और शायद आपकी बातों से मैं तो खैर सहमत हूं ही, हमारे युवा साथी भी सहमत होंगे कि भाई अगर आसपास आपके शहर में कहीं पुस्तक मेले का आयोजन हो तो उसमें जरूर जाइए। थोड़ा सा भाई और कुछ नहीं तो एक डिक्शनरी खरीद लीजिए, एक शब्दकोश ही खरीद लिया, हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी के तो नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो वही शब्दकोश ही खरीदने, क्योंकि दुबे जी मेरा ये अनुभव रहा है कि कईयों के पास डिक्शनरी रहती नहीं है,
1: और इसीलिए उनका शब्द भंडार जो होता है, ओझा जी आपने देखा होगा कि बहुत सीमित होता है। और जिनके शब्द भंडार विस्तार होता है, जिनके पास अपने शब्द होते हैं, जिनके पास अपनी अभिव्यक्ति की एक तरीके से सही दिशा होती है, तो आगे चल करके वो लेखक भी बन जाते हैं, आगे चल करके वो एक अच्छे वक्ता भी बन जाते हैं। तो कई सारे लाभ हैं इन चीजों के जो उन्हें प्राप्त करना चाहिए। तो उदय जी, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि जो जैसे शब्दकोश के बारे में आपने कहा कि बहुत जरूरी है, तो शब्द भंडार का जो महत्व है, आप इसके बारे में कुछ युवाओं से कहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं तो यही समझता हूं दुबे जी कि शब्द अपने आप में एक ऐसा अस्त्र है
1: जी,
0: जो बड़े से बड़े संकट और दुविधा के क्षणों में
1: जी
0: आपकी सहायता कर सकता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई जगह ऐसा होता है कि जब अगर आपके पास शब्द हैं तो अपने आप को अभिव्यक्त करने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो अपने को अभिव्यक्त कर देता है या अभिव्यक्ति की उसकी क्षमता होती है, वो व्यक्ति कभी भी कहीं हारता नहीं है।
0: जी, बिल्कुल।
1: हर जगह जब खड़ा होता है तो उसके शब्दों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और समझते हैं कि विद्वान आदमी है। तो ये
0: और इसके लिए जरूरी है, देखिए शब्दों का भंडार सागर के समान है, जैसे स्वर्ग है वैसे शब्द है।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और इसीलिए आप जानते हैं कि शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है।
0: हाँ,
1: तो ब्रह्म का मतलब केवल भगवान नहीं है।
0: उसका ज्ञान तो आप मतलब आपको जितना मिल जाए कम ही मानना चाहिए, लेकिन अगर जिसके पास है शब्द है तो कम से कम वो अपनी बात को अच्छी तरह से लोगों के। और आज देखिए आज क्या स्थिति है कि रोजगार और नौकरियों के मामले में युवा साथियों को शब्द से बहुत समृद्ध होना चाहिए, बोलने में उनको बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि स्मार्ट होना चाहिए, तेज होना चाहिए। और वो तेजी जरूर तभी आएगी जब आप अपने आसपास के माहौल को भी समझेंगे और पढ़ते लिखते भी रहेंगे।
1: और
0: भले आप रोज अखबार पढ़ें, भाई पूरा अखबार भी अगर आप पढ़ें तो कई चीजें आपको बाहर विदेशों की भी जानने को मिलती हैं।
1: और इसीलिए जब आपने कहा कि पुस्तक मेलों का महत्व बहुत अधिक है, इसमें दो मत हो ही नहीं सकते ओझा जी। और युवकों को इस दिशा में सोचना चाहिए और ये कोशिश भी करनी चाहिए कि गांव में भी कभी पुस्तक मेले लगें। अगर ग्रामीण युवा जो हैं उनको इन चीजों की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से
0: बिल्कुल लगना चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। खाली शहरों में ही नहीं लगाएं, वो कस्बों में भी लगाएं, आसपास तक आसपास के गांव के लोग या वहां के वो सब
1: युवा हैं।
0: तो जुबी जी, अब इसी संदर्भ में मैं पुस्तकों की बात निकली है तो मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी किस रूप में सहायक होती है।
1: अब देखिए, अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन गांव में बीता है। तो जिस समय देश आजाद हुआ उस समय गांव में जब पंचायतों का निर्माण हुआ तो मैं समझता हूं कि उस जमाने में जो पंचायतों का स्वरूप था उसमें एक बात महत्वपूर्ण थी कि हर गांव के अंदर लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय हो, ताकि गांव के जो युवा हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिले पुस्तकों के द्वारा। और यह भी देखा है मैंने कि दुनिया की बेस्ट से बेस्ट यानी सबसे अच्छी सर्वोत्तम पुस्तकें जो अनुदित थी हिन्दी में वो गांव में आपको उपलब्ध हो जाती थी। ये
0: मतलब आप
1: ये नेहरू की बात कह रहा हूँ।
0: अगर आपको प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ने को मिले या अच्छी कविताएं पढ़ने को मिले, अच्छे निबंध पढ़ने को मिले,
1: क्या बात,
0: तो उससे ज्ञान बढ़ता ही है। तो आज किसी सदी की बात करें तो आज लाइब्रेरी का और खास करके उस लाइब्रेरी में काम कर रहे लाइब्रेरियन के पद का बहुत अधिक महत्व हो गया है। दुबे जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आजकल लाइब्रेरियन की भर्ती जो है ना वो नई तकनीक के हिसाब से की जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें क्या होता है बताऊं मैं आपको। लाइब्रेरियन को ई रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब स्रोत,
1: स्रोत
0: ई मेल जैसे होता है ना,
1: जी जी जी,
0: तो ई रिसोर्सेस का मतलब विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत से उसको जानकारी होनी चाहिए लाइब्रेरियन को। दूसरी ई बुक्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो कंप्यूटर में आजकल किताबों, तो उसका उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए लाइब्रेरियन को। और ई जर्नल्स यानी जो पत्र पत्रिका इसकी कैटलॉगिंग को आना चाहिए कि भाई कहाँ से कौन सी पत्रिका निकल रही है, विदेशों से कौन सी निकल रही है, अपने देश में कौन सी निकल रही है। तो ये सब चीजें आज के दौर में लाइब्रेरी के पद पर काम करने वाले लाइब्रेरियन को सीखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो लाइब्रेरी का अपना महत्व है,
1: पुस्तक
0: मेले का अपना महत्व है और इन सबसे बढ़ के ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और ज्ञान हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि वो इसे प्राप्त कर सकें और अगर वो भले वो कोई भी आगे जाकर के
1: कुछ भी कर
0: करें, किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन अगर वो शिक्षित होंगे,
1: ज्ञानवान होंगे,
0: तो उनका निश्चित रूप से सुखद भविष्य होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो अब हम अपने श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था पुस्तकालय और पुस्तक मेलों का महत्व। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे श्री कृष्णकांत दुबे एवं स्वतंत्र कुमार ओझा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, कार्यक्रम युग संचार का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है संचार अमृत है, जहर नहीं बनना चाहिए, और प्रस्तुतकर्ता है स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के हमारे युग संचार कार्यक्रम का विषय है संचार अमृत है, जहर नहीं बनना चाहिए। साथियों, संचार सभी जानते हैं कि जीवन में और जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। अब क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है, चाहे कला का क्षेत्र हो तो संगीत, नृत्य और चित्रकला सहित समस्त ललित कलाओं को चारों ओर संचारित करने का, प्रसारित करने का काम संचार ही तो करता है। जब भी कोई सुंदर कला प्रदर्शित होती है तो उसे जनमानस में लोकप्रिय करने का काम संचार ही करता है। यही स्थिति साहित्य में भी है। जब भी कोई ज्ञान युक्त फैंटेसी या फिर समाज और धर्म को लेकर कोई साहित्य प्रकाशित होता है, कोई पुस्तक छपकर बाहर आती है, तो उसकी प्रसिद्धि से, उसकी सारगर्भित भाषा से सभी साहित्य प्रेमी उसको पढ़ने को उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। आकर्षण के इस कार्य को भी संचार ही प्रसारित करता है। तो कहने का अर्थ यही है कि शब्द और ध्वनि का सुमधुर संप्रेषण संचार के द्वारा ही संभव है। कुछ विद्वानों ने संचार की तुलना सागर से भी की है, यानी अथाह जल का समुद्र। सभी जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का भी रोचक वर्णन पढ़ने को मिलता है। क्या है ये कथा? जब देवताओं और दानवों ने मिलकर वासुकी नाग का प्रयोग करते हुए समुद्र मंथन किया था, तब इस मंथन से अनेक बहुमूल्य रत्न और अमृत के घड़े के साथ विष भी निकला था, जहर भी निकला था। अब विष का तो भगवान शिव ने पान कर लिया और अमृत कुंभ के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि सभी अमर होना चाहते थे, कोई मरना नहीं चाहता था। उसमें से थोड़ा सा भी अमृत पी लेते तो वो मर ही नहीं सकते थे। बहरहाल, संचार की तुलना समुद्र से कुछ ऐसे ही संदर्भ को लेकर की गई है, इसीलिए संचार की तुलना सागर से मानी जाती है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है? तो इसका उत्तर यही है कि संचार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है मशीनी उद्योग, उपकरण आदि। इन सब में तो जैसे क्रांति आ गई, और ये बात प्रामाणिक है कि इस क्षेत्र में विज्ञान ने जो हर दिन नूतन, जिसको कि हम लेटेस्ट कहते हैं, इन्वेंशंस, आविष्कार विज्ञान द्वारा हो रहे हैं, निश्चय ही वो संचार मंथन से निकला अमृत है, जो मानव के लिए अत्यंत हितकारी है। लेकिन इसी मंथन से जो जहर निकला है, जो विष निकला है, उसे भी मानव को ही पीना पड़ रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात नहीं बल्कि हम तो कहेंगे गंभीर स्थिति है। तो अब इस संचार मंथन से किस तरह जहर फैला है, उसी पर बात करें। इस आधुनिक संचार क्रांति के बेहद उपयोगी यंत्र हैं सभी जानते हैं, कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल, उसके बाद वेबसाइट और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल रूप से ये हैं। और आज के दौर में चाहे युवा हों अथवा अधेड़, जो कि असामाजिक और खुराफाती आदतों के हैं, ये सब इसका जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे गलत काम कर रहे हैं और इनमें अपराध जगत सबसे ऊपर है और अपराधों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। टेलीफोन के आविष्कार ने दुनिया भर में संवाद स्थापित करने को आसान और सुलभ बना दिया। विमान के आविष्कार ने, जिसे जहाज कहें या हवाई जहाज कहें, इसके आविष्कार ने क्या किया? विश्व की दूरियां मिटा दी। इसके साथ टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल के आविष्कार ने क्या किया? इन्होंने मनोरंजन और अपार ज्ञान का ऐसा संसार जगमगा दिया कि पूरी दुनिया इसके अनगिनत रंगों में रंग गई। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इंटरनेट, जो कि कंप्यूटर से संचालित होता है। लेकिन बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन रंगों को बदरंग कर दिया चंद बहके हुए भटके हुए इंसानों ने। मोबाइल के रूप में टेलीफोन ब्लैकमेलिंग का माध्यम संचार करने लगा, विमान विध्वंस और विनाश करने लगा। अरे हम सभी जानते हैं कि विमानों से कैसे कैसे भयानक आतंकी हमले हुए हैं। इसी कड़ी में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 20 सालों में लगभग विश्व के अनेक विमान हाईजैक के शिकार हुए। हाईजैक हम सभी जानते हैं, विमान उड़ रहा है, अचानक से 4-5 आतंकवादी मशीन गने लेकर के उसमें घुसे हुए हैं और सारे यात्रियों को डरा रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, नहीं तो उन यात्रियों को मार दिया जाएगा या हवाई जहाज से फेंक दिया जाएगा। इस तरह कई चित्र आपने हमने सभी ने देखे हैं। तो ये विमान हाईजैक बहुत ज्यादा हुआ है और जो विमान को किडनैप करते हैं इन्हें अपहरणकर्ता कहते हैं। तो अपहरणकर्ताओं की मांगें पूरी करने में विमान में सवार निर्दोष यात्रियों को खामोखा बिला वजह अपनी जान पर बनाती है, उनकी बहुत परेशानी उनको उठाना पड़ती। और ऐसी भी घटनाएं हमें मालूम है कि इसमें कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है, अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है उनको। तो अब इसे क्या कहेंगे, इन आतंकी घटनाओं को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे संचार के मंथन से निकला जहर। जी हाँ, यही वो जहर है। इसी तरह मोबाइल और उसके SMS स्कूल कॉलेज की लड़कियों और महिलाओं को परेशान और बदनाम करने जैसी अश्लील वारदातों के लिए धड़ल्ले से उपयोग में लिए जा रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि मानसिक रूप से विकृत पागल कुछ लोग आए दिन ऐसी नाजायज हरकतें करते हुए एक तरह की सनसनी फैला रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। अब इंटरनेट की बात करें, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है, तो उसका भी उपयोग ऐसे ही लोग, यानी हम तो कहेंगे कि अश्लीलता की हदें पार कर चुके हैं। पोर्नोग्राफी हैकिंग, इकोनॉमिक क्राइम, कॉपीराइट और पेटेंट के उल्लंघन की घटनाएं भी काफी बढ़ रही हैं। इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। इंटरनेट सर्फिंग ज्ञान का विस्तार करने के लिए है, अश्लीलता के लिए नहीं है। लेकिन ये खुराफाती असामाजिक तत्व निरंतर इसका उपयोग गंदी हरकतों के लिए करते हैं और ये एक गंभीर मसला है, और गंभीर मसला ही नहीं बल्कि ये तो एक अपराध है। इन कामों के लिए कुछ साइबर कैफे भी अपनी दुकानदारी चलाकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अंत में हम यही बात दोहराना चाहेंगे कि संचार हमारे लिए अमृत के समान है। इस अमृत को जो जहर में बदलने वाले मानव समुदाय हैं, वो पूरे विश्व के लिए कलंक हैं, और इस कलंक को मिटाने का हमें सामूहिक प्रयास करना ही होगा। नमस्कार।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था संचार अमृत है, जहर नहीं बनना चाहिए, और प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

विवेक जी, आपने बुलाया और हम चले आए। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, लीजिए मैं फिर से उपस्थित आपकी खिदमत के लिए, आपको नई नई जानकारी देने, आपका मनोबल बढ़ाने। स्वीकार करे आपकी रेडियो दोस्त ज्योति का फूलों से भरा, कोमलता से भरा सह स्नेह नमस्कार। दोस्तों, अभी की सभा समय 9 से 10 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। श्रोता साथियों, कार्यक्रम सर्वधर्म विचार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अभी की सभा की वार्ता का शीर्षक है, धार्मिक अतिक्रमण को ना मिले सार्वजनिक मान्यता, जिसके प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोर जी। और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बंडोर एसवीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है धार्मिक अतिक्रमण को न मिले सार्वजनिक मान्यता। मित्रों, गिरीश उपाध्याय जी लिखते हैं, मध्य प्रदेश में इटारसी के पंडितों का एक फैसला पूरे देश के लिए नजीर बन सकता है। वहां के सर्व ब्राह्मण समाज ने हाल ही में निर्णय लिया है कि निजी स्वार्थों के खातिर नालियों के ऊपर या आसपास मंदिर बनाकर धर्म का फायदा उठा रहे लोगों के मंदिरों में वे पूजा या कोई भी कर्मकांड नहीं करेंगे। सर्व ब्राह्मण समाज ने कर्मकांडी पुजारियों और पंडितों का प्रकोष्ठ बनाया है, जिसके हाल में ही हुई एक बैठक में शहर के पुजारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया। पुजारियों का स्पष्ट कहना है कि जिस मंदिर का निर्माण व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया गया है वहां वे पूजा करने नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि इस तरह के मंदिरों में विराजित देव प्रतिमाओं को विधि विधान के साथ विस्थापित कर शहर के प्रमुख मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाए। मित्रों, दरअसल मध्य प्रदेश ही नहीं देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थलों को धड़ल्ले से स्वार्थ सिद्धि का जरिया बनाया जा रहा है। चाहे किसी जमीन पर बेजा कब्जा करना हो या जमीन अथवा निर्माण को कानूनी कार्यवाही से बचाना हो, सबसे बेहतर तरीका यही हो गया है कि वहां कोई धार्मिक ढांचा खड़ा कर दिया जाए। यह बात किसी एक संप्रदाय पर नहीं, सभी पर लागू होती है। कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों के लिए ऐसे निर्माण अक्सर बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। कई बार तो शहर की निर्माण या विकास योजनाएं ऐसे अवैध निर्माणों के कारण या तो वर्षों लटकी रहती है या फिर उनका स्वरूप ही बदलना पड़ता है, जिस पर जनता का ही अतिरिक्त पैसा खर्च होता है। ऐसे निर्माण न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन बल्कि सार्वजनिक यातायात में भी बाधा खड़ी करते हैं। प्रशासनिक तौर पर की जाने वाली कार्रवाइयों से बचने के लिए कोर्ट से स्थगनादेश ले लिया जाता है और मामला सालों तक उलझा रहता है। जबलपुर शहर में ही हाईकोर्ट ने स्वयं पहल कर ऐसे सैकड़ों धार्मिक अतिक्रमण हटवाए हैं। यह बात अलग है कि बाकी शहरों में अभी इस तरह की कोई मुहिम प्रभावी ढंग से नहीं चल सकी है। सरकारी जमीन पर काबिज धार्मिक ढांचे के अतिक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दो टूक टिप्पणी करते हुए कहा है कि अलग से जमीन खरीदो और बनाओ आलिशान मंदिर। न्यायालय ने यह टिप्पणी सरकार के जवाब पर की, जिसमें कहा गया था कि सामान्य जन के लिए बने बगीचे के अंदर बने मंदिर किसी भी तरह यातायात में बाधक नहीं है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पार्क बच्चों के खेलने के लिए बने हैं। न्यायाधीश के लाहौटी और न्यायाधीश अजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक स्थल अतिक्रमण माना जाए और उसे तत्काल हटा दिया जाए। धार्मिक स्थलों के नाम पर भूमि के अवैध अतिक्रमण के प्रयासों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भी सराहनीय है। कोई भी धर्म या संप्रदाय धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर नाजायज लाभ उठाने के लोभ के संवरण से आज पीछे नहीं है। धार्मिक चिन्ह स्थापित कर अच्छी खासी भूमि का अतिक्रमण हम सभी ने देखा है। हद तो तब हो जाती है जबकि अपने निवास स्थानों जिनकी बाउंड्री अमूनन अतिक्रमण ही होती है को बचाने के लिए बाहरी कोने में एक छोटा सा मंदिर या आराधनालय स्थापित कर दिया जाता है। इसी भगवान की व्यक्तिगत उपासना ही उन्हें नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान से बचाने में ढाल का काम कर देती है। इस पाप कर्म में जबरन भागी बनवाए जाते प्रभु के हृदय पर क्या गुजरती होगी, भला सोचा है उनके भक्तों ने। कई बार काफी सावधानी पूर्वक चलाए जा रहे अभियानों में भी एक छोटी सी असावधानी जैसे मूर्ति की एक उंगली का टूटना जैसी घटनाओं ने बड़े दंगों का रूप भी ले लिया है। ऐसी घटनाओं का लाभ उठाने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहे हैं। मित्रों, इस परिप्रेक्ष्य में इटारसी के सर्व ब्राह्मण समाज का फैसला नई दिशा दे सकता है। दरअसल ऐसे किसी भी निर्माण को यदि सार्वजनिक मान्यता न मिले तो न उसका कोई धार्मिक महत्व बन सकता है और न ही उसके खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही में कोई खास बाधा आ सकती है। लेकिन गली गली में हो जाने वाले ऐसे निर्माण तब और ज्यादा तकलीफदेह हो जाते हैं जब वहां आए दिन धार्मिक आयोजन या भंडारे होने लगते हैं और लोग बीच सड़क में गाड़ियां रोककर धार्मिक कर्मकांड करने लगते हैं। यदि कर्मकांड करवाने वाले लोग ही
ऐसे निर्माणों को तवज्जो न दे तो इस ढांचों की पूछ परख ही नहीं होगी और धीरे धीरे लोगों का ध्यान भी उन पर से हटता जाएगा। नालियों पर या उसके किनारे बनने वाले धार्मिक ढांचों का तो वैसे भी कोई महत्व नहीं होना चाहिए। इटारसी से जो विचार सामने आया है, देश प्रदेश के अन्य शहरों में भी उसका अनुसरण हो तो धार्मिक अतिक्रमणों की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है। मित्रों, आज जरूरत है कि सभी धर्मों के प्रतिनिधि और राजनीतिक दल व्यक्तिगत हित साधना के इस शर्मनाक प्रयास के विरोध में एकजुट हो। अतिक्रमित धर्मस्थलों को उपासना के लिए अयोग्य घोषित किया जाए और भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर उसका उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ धार्मिक आयोजनों के नाम पर सार्वजनिक स्थलों के संतुलित अतिक्रमण के विरुद्ध भी जनमानस बनाए जाने की जरूरत है। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था धार्मिक अतिक्रमण को न मिले सार्वजनिक मान्यता, और जिसके प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोर जी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संसार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं अब एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगले कार्यक्रम के बारे में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि बोए जाते हैं बेटे और उगाती है बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती है बेटियां, एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ढेले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती है बेटियां, रुलाते हैं कुछ बेटे और रोती हैं बेटियां, कई तरह गिरते हैं बेटे और संभाल लेती हैं बेटियां, और यही बेटियां नारी बनकर सशक्त होती है। साथियों, अब तो आप हमारे अगले कार्यक्रम के बारे में जान ही चुके होंगे। हमारा अगला कार्यक्रम है नारी सशक्तिकरण और अभी की सभा समय 9 से 10 की वार्ता का शीर्षक है उपदेश देने वाली महिलाएं, और जिसकी लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता है भवानी कौल जी।

नारी सशक्तिकरण वार्ता सुनिए, उपदेश देने वाली महिलाएं। साथियों, अपने आसपास दफ्तर में, रिश्तेदारी में, सभा स्थल में महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह आपने देखा और सुना होगा, जो अक्सर दूसरों को केवल और केवल उपदेश देती हैं। ऐसी महिलाओं को सुनकर, देखकर आप मंद मंद मुस्कुराते होंगे या उनकी मूर्खता पर आपको दया आती होगी। इस तरह की नारियों की कोई कमी नहीं है, ये हर जगह मिल जाती हैं, बखूबी अपनी बातों को रखते हुए, समझाते हुए। वैसे तो महिलाएं विभिन्न तरह की होती हैं साथियों, उनका रहन सहन, विचार, सोचने समझने की शक्ति व उसकी क्षमता अलग अलग होती है, ये आप भी जानते हैं। नारियों के इन तमाम समूह में एक समूह महिलाओं का ऐसा भी होता है जो खुद को बहुत होशियार समझती हैं। कई तो समझदारी के साथ स्वयं को विद्वान और बुद्धिमान भी मानती हैं। वे जो कह रही हैं वही सही है, वे जो कर रही हैं वही सही है, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं। उनका कहना यानी पत्थर की लकीर है, उसे कोई झूठला नहीं सकता। ऐसी महिलाओं से आप कभी सामना हुआ होगा, अपनी बातों को दावे के साथ रखते हुए आप भी उलझन में पड़ गए होंगे। तो साथियों, आप अपने विचार उन महिलाओं के सामने रखते तो हैं, पर उन बातों को वे नहीं मानती, बल्कि बहुत सारी हिदायतें आपको दे जाती हैं। आपको अपना मुंह बंद रखना पड़ता है और बीच बीच में हुंकार के रूप में हां भी कहना पड़ता है। हो सकता है आपके द्वारा कही बात सही हो, बिल्कुल सही हो, पर वे मानने को तैयार ही नहीं होती। महिलाओं की कुछ जमात ऐसी भी होती है साथियों, कि जिनके सामने कोई भी समस्या रखी जाए, कोई भी परेशानी रखी जाए, तो सिवाय सही रास्ता दिखाने के ये उपदेश देंगी कि तुमको तो ये करना चाहिए, तुमको तो वो करना चाहिए था, तुम्हें पता नहीं, इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है, तुम तो मूर्ख हो, मेरी बात मानो तो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आदि आदि, और ना जाने कितनी तमाम बातें। अब भला आप ही बताइए, ये कोई बात हुई? कोई आपके पास अपनी समस्या लेकर आया है, अपनी परेशानी लेकर आया है, अपना दुख लेकर आया है, और आप उसे अपनी ही बात थोप रहे हैं, अपनी ही बातें किए जा रहे हैं, उनकी सुनने को तैयार ही नहीं? साथियों, ऐसी महिलाओं को जरा गंभीरता से लिया जाए तो ये दूसरों को अपने उपदेश के जरिए हताश करती हैं, निराश करती हैं, आपको अपने विचारों से ठेस पहुंचाती हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि इस तरह की नारियां अंदर ही अंदर बहुत खुश होती हैं कि हमने उनको बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। इतना ही नहीं, वे उपदेश दे देकर थकती भी नहीं हैं और बोर भी नहीं होती हैं। वे यह भी नहीं सोचती कि मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, क्या वह सही है या गलत है। सुनने वाला बोर हो जाएगा, पर वे नहीं थकती और न ही बोर होती हैं। तो साथियों, फिर ऐसा भी नहीं कि वे केवल अपने घर परिवार, जान पहचान वालों को ही उपदेश देती हैं। वे तो पड़ोसियों के घर भी जाकर उपदेश देती हैं, उनके पारिवारिक मामलों में टांग अड़ाती हैं। इन महिलाओं से बात करने में लोग कतराते हैं। सामने वो महिला दिख जाए तो उल्टे पांव दूसरे रास्ते से निकलना पड़ता है उनको। अनजान व्यक्ति भी इनके उपदेश की मार से बच नहीं सकता। कुछ सासू माँ से अपनी बहुएं तो संभलती नहीं है, दूसरों की बहुओं को बोलने से चुकती नहीं, उन्हें जमाने भर का नियम धर्म बताएंगी, परंपराओं को समझाएंगी, खाना बनाने के तौर तरीके बताएंगी और न जाने क्या क्या, जैसे कुछ उस बेचारी को आता ही नहीं। अरे भाई, नई नवेली बहू को वो भी पड़ोस की, उसे सिखाएंगी कि
सास माँ के समान होती है, उसकी हर बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। सासू माँ को कभी झिड़कना मत, सास कुछ बोले तो बुरा नहीं मानना, उसकी सेवा करना, उसके हाथ पैर दबाना और तुम्हारे जो छोटे नंद देवर हैं उनका भी खास ध्यान रखना। इस तरह के तमाम उपदेश देकर आ जाएंगे। अब अनावश्यक रूप से उपदेश देने वाली उस महिला को कौन समझाए कि ये सारी बातें उसे भी पता है, उस नई नवेली दुल्हन को भी पता है। यथाशक्ति वो अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेगी। ये तो सही है कि वो एक नए परिवेश में गई है, नए परिवार में गई है, लेकिन भाई उसके ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारी है। वो भी पढ़ी लिखी है, संभाल लेगी, अपनी जिम्मेदारियां समझ लेगी। साथियों, एक राहगीर ने ऐसी ही एक महिला से पता पूछ लिया। पता बताने के बजाय लगी उपदेश देने। देखो बेटा, पता पूछने से पहले तुम्हें हम जैसे बुजुर्ग महिला का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें दो तीन बार आवाज नहीं देना चाहिए। और सुनो बेटा, पता बताने के बाद हमें धन्यवाद देना चाहिए था। अपने बुजुर्गों को न नमस्ते न धन्यवाद, अरे ये कहाँ का रिवाज है? उस बेचारे ने अपना सिर पीट लिया, कहाँ पता पूछने चला गया, ढंग से पता भी नहीं मिला और दुनिया भर का उपदेश। अगर आप महिलाएं भी इस तरह दूसरों को छोटी मोटी बातों में बड़े बड़े उपदेश देती हूँ तो समझ जाइए, लोग आपकी बातें सुनते कम है, मखौल ज्यादा उड़ाते हैं। आप समय पर हंसी का पात्र भी बन सकती हैं, तब आपको काफी तकलीफ होगी। इसलिए उपदेश देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कभी न करें। आपकी उपदेश भरी बातों से लोग बचना चाहेंगे और आपके समक्ष आने से डरेंगे भी, क्योंकि बेकार की बातें सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। आपकी बातें सुनकर उसे अमल में लाया जाएगा यह जरूरी नहीं है। इसलिए आप महिलाएं अधिक उपदेश देती हैं तो फिर संभल जाइए, कम बोलिए, अच्छा बोलिए। यदि आप कम बोलेंगी, सार गर्भित बातें बोलेंगी तो लोग आपकी बातें सुनेंगे भी और मानेंगे भी। इस तरह से साथियों देखा जाए तो उपदेश देना इन महिलाओं में आदतन होता है। किसी को उपदेश दिए बिना इनके पेट का खाना नहीं पचता। किसी को बोलने का मौका न देते हुए उसे ढेर सारी बातें बताना। अच्छा, इनकी सब हिदायतें चाहिए में होती हैं। तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना चाहिए। तो आप महिलाएं संभल जाइए और अच्छा बोलिए और कम बोलिए, ताकि लोग आपकी बात माने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था उपदेश देने वाली महिलाएं और जिसकी लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल जी। दोस्तों, आइए अब हम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि उन्होंने नारी की रचना की। उन्होंने हम मनुष्य को, पशु पक्षियों को बनाया, धरती बनाई। तो आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, कार्यक्रम मन दर्पण में आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वार्ता का शीर्षक है जाने की क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य, और लेखक है कृष्णकांत दुबे जी और प्रस्तुत करता है संतोष जोशी जी।

मन दर्पण के अंतर्गत वार्ता जाने कि क्या है हमारा जीवन उद्देश्य। लेखक कृष्णकांत दुबे, प्रस्तुतकर्ता संतोष जोशी। मित्रों, अगर मनुष्य ये दावा करता है कि वो इस ईश्वरीय सृष्टि में अन्य प्राणियों से भिन्न है, उनसे भिन्न है उसका अस्तित्व, वो सब में उन्नत है और उसमें ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं, शक्ति हैं, जो कि किसी अन्य प्राणी में नहीं है, तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि प्रभु की यह कृपा मनुष्य के प्रति उसका कोई विशेष पक्षपात नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि ईश्वर ने उसे ये विशेषताएं इसलिए भेंट की, प्रदान की हैं कि वो इस पृथ्वी को अधिक सुंदर, अधिक संपन्न, अधिक अच्छा और शांतिपूर्ण बनाए रखने में भरपूर मदद करे, सहयोग करे। उस प्रभु ने यही विशेष उत्तरदायित्व सौंपकर इंसान को इस धरा, इस पृथ्वी पर भेजा है। इस महत उत्तरदायित्व को मनुष्य किस तरह संपन्न करता है, ये सब कुछ मनुष्य पर ही तो निर्भर है। हाँ, किसी विद्वान ने ये कितना सही कहा है, ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान इसलिए दिया कि वो उसकी निर्मित सृष्टि में जो भी कुछ है वो उसे ठीक ठाक और व्यवस्थित बनाए रखे। इसलिए मनुष्य जाति को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सृष्टि में इंसान को जो ज्ञान, जो संवेदना, जो विशेष चेतना, जो श्रेष्ठता प्राप्त है, वो इसलिए कि इस संसार की श्रेष्ठता न केवल बनी रहे बल्कि मनुष्य उसमें लगातार वृद्धि करता रहे, बढ़ोतरी करता रहे। हम यानी मनुष्य ये भी नहीं भूलें कि ईश्वर द्वारा उसे इस धरती पर इस उद्देश्य से भेजा गया कि वो एक ऐसा सेवक, ऐसा अनुयायी है जो अपने कुशल हाथों से इस सृष्टि को अच्छी तरह परख कर उसकी रचना को और अधिक सजा संवार सके, उसे और अधिक सुंदरता दे सके। प्रभु ने इस धरा पर उसे ऐसे ही अधिकार, ऐसे ही कर्तव्य, ऐसे ही महत्वपूर्ण दायित्व देकर भेजा है, ताकि वो इस धरती पर लोक मंगल की भावना का निरंतर विस्तार कर सके, उसे बढ़ा सके। हम सब इस महत सत्य से परिचित हैं कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, जिसमें सेवा भावना होती है, उसका विस्तार होता है, वही सच्ची उन्नति का, प्रशंसा का, यश का सहज भागीदार बनता है। अब प्रश्न है, क्या आप अपने आप को ऐसा बनाना नहीं चाहेंगे? वैसे किसी विद्वान ने, चिंतक ने कितना सच कहा है। देखा जाए तो किसी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं होती, बशर्ते कि वो अपना जीवन सहजता, सादगी, सरलता से बिताए। जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है, उसके पास न तो लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए समय की कमी होती है, न ही सामान्य साधनों की। उसे तो अपने समय और उसके पास जो भी जैसे भी साधन हैं, उनका उपयोग तो उन्हीं कामों में करना चाहिए जो परहित के लिए हों, जन जन के हित के लिए, कल्याण के लिए हों। उसे तो इसी व्रत का पालन करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि लोकहित को ही अपना जीवन लक्ष्य, जीवन उद्देश्य बना लेते हैं। वे ऐसी जन सेवा करके अपने में सच्चे सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन को सिर्फ अपनी ही महत्वाकांक्षा में बांध लेते हैं, एक घेरे में बांध लेते हैं, और ये समझ लेते हैं कि यही सब कुछ हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। पर वे ये भूल जाते हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक बार प्रवेश करने पर उसमें से निकल पाना एकदम असंभव, एकदम कठिन हो जाता है। उसके बाद तो एक के बाद एक महत्वाकांक्षाएं जीवन में उभरते हुए उसी मनुष्य के लिए निरंतर बोझ बनती चली जाती हैं, और उसके पश्चात शुरू होता है उन इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दिन रात संघर्ष, दिन रात परिश्रम। यूं व्यक्ति का परिश्रमशील होना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन हाय तौबा वाला परिश्रम आगे चलकर जीवन को हर तरह से असहनीय बना देता है। और महत्वाकांक्षाएं हैं कि वे मनुष्य को मृग तृष्णा की तरह लगातार छलावा देती रहती हैं,
और वे व्यक्ति उस मृग मरीचिका के पीछे भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। ऐसे मनुष्य को फिर कहीं भी विश्राम नहीं मिल पाता और न ही सच्चा लक्ष्य ही। इस तरह उनका जीवन अंधी थकान से भर जाता है। ऐसे लोग ये बात भूल जाते हैं कि कुछ भले काम भी हैं इस जीवन में जो उन्हें करना है और जो उनकी राह देख रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ये सोचना है कि केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति मात्र ही हमारे जीवन का उद्देश्य बनकर न रह जाए। हाँ, ये भी सही है, शुरू शुरू में महत्वाकांक्षाएं बड़ी मोहक, बड़ी सुहानी लगती हैं। वे व्यक्ति को निश्चित आकर्षित करती, लुभाती हैं। वे व्यक्ति को अपने पीछे चलने के लिए भी विवश करती हैं। अगर व्यक्ति ने एक बारगी उनके पीछे चलना शुरू कर दिया तो फिर उस चलने का, उस अंधी यात्रा का कहीं कोई अंत नहीं होता, कहीं छोर, कहीं समाप्ति नहीं दिखाई देती। कई व्यक्तियों का यह अनुभव भी है कि महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में मिली असफलताएं जीवन में भयावह हाहाकार उत्पन्न कर देती हैं। ये हाहाकार मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शांति को भी भंग कर देती है और बाकी सब कुछ सिमट कर रह जाता है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जितना सहज सरल होगा और जितना अधिक मानव कल्याण की भावना से भरा होगा, वो मनुष्य को उतना ही सुख देगा, शांति देगा। विश्व में जितने भी मनीषी, जितने भी महान चिंतक विचारक हुए हैं, कहें कि महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन का मूल उद्देश्य मात्र मानव कल्याण और विश्व कल्याण ही रहा है। इसी महत उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने जीवन पथ का निर्माण किया। हम ये भी नहीं भूले कि उन्होंने अपना रोजमर्रा का या पारिवारिक जीवन ना जिया हो, पर उनका जीवन उद्देश्य महिमामय रहा है। उन्होंने महत्वाकांक्षा के अहंकार भरे जीवन को कभी भी नहीं स्वीकारा, कहें कि उसे ठुकराया ही है। हम सब जानते हैं कि जिनका जीवन उद्देश्य निर्मलता भरा है, ऐसे पुरुष विपत्तियों से कभी नहीं घबराते, क्योंकि वे जानते हैं कि वे स्वयं प्रपंच रहित हैं। इसीलिए आपदाएं जैसी आई हैं वैसी चली भी जाएंगी, इसीलिए वे अपना जीवन निर्भयता पूर्वक बिताते हैं। ज्ञानी जन इसीलिए तो कहते हैं, जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए आत्मकल्याण और दूसरा जन कल्याण। आत्मकल्याण व्यक्ति जीवन को ऊंचाइयां देता है और उसे देवत्व की सुनहरी दिशा की ओर अग्रसर करता है। जन कल्याण के प्रति रुझान व्यक्ति का समाज के प्रति सीधा सीधा कर्तव्य बोध है। जिन लोगों के बीच, जिस समाज के बीच व्यक्ति ने जन्म लिया, जिनके सहयोग ने व्यक्ति जीवन को गति दी, उसे आगे बढ़ाया, विकसित किया, जिसके बीच रहकर ज्ञान अर्जित किया, जिस समाज ने जीवन साधन दिए, उनके प्रति भी व्यक्ति के अपने कर्तव्य होते हैं। व्यक्ति जनहित समाज हित में काम करके अपने इन्हीं कर्तव्यों का पालन करता है। इसीलिए आत्मकल्याण और जन कल्याण व्यक्ति जीवन के प्रमुख उद्देश्य होने ही चाहिए। कुल मिलाकर एक सफल जीवन के बारे में यदि हम कहें तो यही होगा कि आत्मकल्याण और जन कल्याण, ये दो बातें मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं ही तथा उसके आसपास के समाज के लिए भी कल्याणकारी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के अंतर्गत वार्ता, और आज की वार्ता का शीर्षक था जाने की क्या है हमारा जीवन का उद्देश्य, और लेखक थे स्वर्गीय कृष्णकांत दुबे जी और प्रस्तुतकर्ता थे संतोष जोशी जी। श्रोताओं, मेरी सहेली ने मुझे एक संदेश लिख के भेजा है। वे कहती है कि इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। साथियों, आइए अब सुनते हैं भगवान के आदर में एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब वक्त न जाया करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण, जिसका शीर्षक है हो जाए कॉफी और लेखिका व प्रस्तुत करता है समता खान चंदानी।

पर्यावरण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है हो जाए कॉफी। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता हैं समता खानचंदानी। श्रोता साथियों, आप सभी को समता का प्यार वाला नमस्कार। दोस्तों, क्या आपका भी गर्मी के मारे बुरा हाल है और गला सूख रहा है? मेरा भी हाल आपके ही जैसा है और मुझे ठंडी कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, क्या कहा, आपको भी कॉफी पसंद है? अरे साथियों, कॉफी तो दुनिया भर में बहुत पसंद की जाती है। आपको बता दूं कि दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में कॉफी का नाम दूसरे स्थान पे आता है और चाय से ज्यादा दुनिया में कॉफी के दीवाने हैं। बरिस्ता, कैफे कॉफी डे, कॉफी हाउस, कोस्टा और कैरेबियन कॉफी जैसे कॉफी बेचने वाली शॉप भी दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्हें इतनी शोहरत कॉफी ने ही तो दिलाई है। दोस्तों, वैसे आप बताइए, आपको ठंडी कॉफी पसंद है या गर्म? आपको बताऊं कि कैपेचिनो कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, एस्प्रो कॉफी, अरबी कॉफी या दक्षिण भारत की फिल्टर कॉफी, सभी का स्वाद अपने आप में निराला है। चलिए दोस्तों, कॉफी के साथ कॉफी की यात्रा पर चलते हैं। पहले पहल कॉफी इथियोपिया में पाई गई थी। कुछ कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति का स्थान यमन है, पर कुल मिलाकर सबसे पहले अरब देशों में कॉफी लोकप्रिय हुई। दोस्तों, ये 13वीं शताब्दी की बात है। उस समय इस्लाम में अल्कोहल पर पाबंदी थी और शायद इसी कारण लोगों का रुझान कॉफी के प्रति बहुत बढ़ गया। 16वीं शताब्दी तक कॉफी का उत्पादन अरब देशों में बड़े खुफिया तरीके से किया जाता था। यहाँ तक कि उपजाऊ कॉफी के बीज अरब देशों के बाहर मिलते ही नहीं थे। 1650 में कॉफी इंग्लैंड आ गई और ऑक्सफर्ड व लंदन में कॉफी की दुकानें भी खुल गई। हैरत की बात तो यह है दोस्तों कि जहाँ 16वीं शताब्दी तक कॉफी का उत्पादन केवल अरब देशों में ही किया जाता था, वहीं 19वीं शताब्दी में कॉफी का 80% उत्पादन केवल अकेले ब्राजील ने किया। कितनी जल्दी लोकप्रिय हुई होगी ना दोस्तों। भारत में भी कॉफी चोरी चोरी 16वीं शताब्दी में ही आई। अब तो करीब 70 देशों में कॉफी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब इसके पेड़ के बारे में कुछ बातें जान लें। कॉफी का पेड़ करीब 10 से 12 फुट लंबा होता है और इसको आमतौर पर झाड़ यानी शर्ब ही कहा जाता है। 3 से 5 वर्ष की आयु के झाड़ पर फलाना शुरू हो जाते हैं और लगभग 50 वर्षों तक यह पेड़ उपजाऊ रहता है। इसके फल को कॉफी बीन्स कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि फल मिल गया यानी बस मिल गई कॉफी, तो दोस्तों आप गलत हैं। कॉफी बीन्स से कॉफी निकालना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले कॉफी के दानों को तोड़कर उसमें से नरम पदार्थ जिसे कि पल्प कहा जाता है उसे निकाला जाता है। इसके पश्चात कॉफी के बीजों से निकले पल्प को 36 घंटे पानी में भिगोकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इससे कॉफी में कुछ रासायनिक बदलाव हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें धोकर सुखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है दोस्तों, लेकिन इसी मेहनत और समय के कारण कॉफी का स्वाद लाजवाब बन जाता है। कॉफी की दो प्रजातियां पाई जाती है। इनमें कैफिया अरेबिका सबसे पुरानी प्रजाति है। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति का स्थान इथियोपिया था और वहीं से यह मिस्र और यूरोप होते हुए सारी दुनिया में फैली थी, लेकिन क्योंकि यह सबसे पहले अरब देशों में पसंद की गई, इसीलिए इसे अरेबिका नाम दिया गया। कॉफी की यह प्रजाति बेहद संवेदनशील थी और दोस्तों यह हर कहीं उग नहीं पाती थी। कॉफी की दूसरी प्रजाति कैफिया रोबस्टा ऐसे वातावरण में भी पनप सकती थी जहां अरेबिका नहीं उग पाती थी। यूं तो दोस्तों अब कॉफी की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन यही दो प्रजाति सबसे पुरानी और मुख्य है। कैफिया अरेबिका स्वाद और गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, परंतु कैफिया रोबस्टा में उससे 40 से 50% तक ज्यादा कैफीन होता है। दोस्तों, उगाने से लेकर पीसने तक हर कदम पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है। कॉफी के झाड़ पर बहुत से कीड़े लगने की आशंका हमेशा बनी रहती है और इसमें डाले जाने वाली खाद भी कॉफी की गुणवत्ता पर असर डालती है। इसके बाद कॉफी के पके हुए दानों को तोड़ना भी खासा मायने रखता है। यहाँ यदि सावधानी नहीं बरती गई तो अच्छे पके दानों के साथ अधपके दानों के मिल जाने की संभावना हो जाती है और इससे सारी की सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। एक एक दाना चुन चुन कर तोड़ा जाता है।
तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कॉफी इतनी महंगी क्यों मिलती है। खैर दोस्तों, आजकल कॉफी सिर्फ स्वाद के ही लिए नहीं पी जाती, कॉफी कैफीन का अच्छा स्रोत है। कैफीन एक उत्तेजक होता है जो हमारे दिमाग की नसों को सचेत करता है। साथ ही साथ दोस्तों, कॉफी में ऐसे कई सारे गुण हैं जिनका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉफी में कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारी में फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों ये तो आपने खुद अनुभव किया होगा कि कॉफी पीने के बाद थकान से राहत मिल जाती है और कॉफी नींद भी भगा देती है। इसीलिए रात में जाकर पढ़ाई करने वाले बच्चों में कॉफी पीने का प्रचलन है। इससे न सिर्फ उनकी नींद उड़ जाती है बल्कि उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है। इसी गुण के कारण कई दफ्तरों में काम के दौरान कॉफी ब्रेक दिया जाता है। साथ ही साथियों, कॉफी में कई औषधीय गुण भी होते हैं। यह दर्द निवारक दवाओं का असर बढ़ा देती है। जिनका रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है उन्हें भी तुरंत कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं तो अक्सर ही कॉफी पीने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। दोस्तों जिन्हें अस्थमा की शिकायत है उन्हें भी मैं कॉफी पीने की सलाह दूंगी, क्योंकि अस्थमा के रोगियों को भी कॉफी पीने से राहत महसूस होती है। हाल ही में साथियों, एक शोध ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कॉफी के साथ चीनी मिलाकर पीने से दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए तो यह मेमोरी यानी कि याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ा देती है। खैर श्रोता साथियों, शोध तो और भी बहुत हुए कॉफी पर। जैसे कि एक शोध ये कहता है कि कॉफी का महिलाओं और पुरुषों पर असर अलग अलग होता है। कैपेचिनो या एस्प्रेसो कॉफी पीने से जहां महिलाओं का दिमाग तेजी से काम करने लगता है, वहीं पुरुषों पर इसका कोई खास असर नहीं होता। जो भी हो दोस्तों, लेकिन कॉफी दर्द में राहत तो निश्चय ही पहुंचाती है और इसी कारण दर्द निवारक दवाइयों में कैफीन का सम्मिश्रण दिया जाता है। कैफीन इन दवाओं के अवशोषण की क्षमता को बेहतर बनाता है और इसके दर्द निवारक असर को बढ़ा देता है। दोस्तों कई लोग ये भी दावा करते हैं कि कैफीन वाली कड़क कॉफी माइग्रेन में आराम देती है, और अगर शुरुआती दौर में ही इसे लिया जाए तो माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दोस्तों कॉफी का सेवन मधुमेह की बीमारी में भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉफी का सेवन मेलिटस टाइप 2 मधुमेह यानी कि डायबिटीज की संभावना को भी कम करता है, और तो और दिल के दौरे की गुंजाइश भी कॉफी पीने वालों में कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों इतने सारे औषधीय गुणों को जान लेने के बाद ऐसा मत कीजिएगा कि बस एक के बाद एक कॉफी के प्याले पे प्याले चढ़ाए जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादा मात्रा में कॉफी पीने से नुकसान भी होता है। आखिर दोस्तों अति तो हर चीज की बुरी होती है ना। खास करके दोस्तों गर्भवती महिलाओं को तो कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि अधिक कैफीन पीने से गर्भपात का खतरा हो सकता है। मेरी राय तो यह है दोस्तों कि किसी भी चीज का अधिक सेवन अच्छा नहीं होता, इसीलिए कॉफी की एडिक्ट मत बन जाइए। जैसा कि आजकल का ट्रेंड हो चला है, चाय और कॉफी के बगैर तो लोग रह ही नहीं पाते। दोस्तों जो लोग कॉफी का स्वाद तो लेना चाहते हैं लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाले कैफीन का सेवन नहीं करना चाहते, उनके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। अब बाजार में डी कैफिनेटेड कॉफी भी उपलब्ध है जिसमें कैफीन की अधिकांश मात्रा निकाल दी जाती है। तो देखा दोस्तों, प्रकृति और पर्यावरण ने हमारी सेहत और हमारे स्वाद दोनों का हमेशा से ख्याल रखा है। तो चलिए ना शुक्रिया अदा करते हैं पर्यावरण का एक कप कॉफी के साथ। तो चलिए एक एक कप कॉफी का प्याला पीते हैं और मुझे दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था हो जाए कॉफी, और जिसकी लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता थी संता खान चंदानी। दोस्तों, वक्त की सुइयां अब मुझे बंदिशे लगा रही है और कह रही है अब आपके रेडियो दोस्त विवेक जी को आमंत्रित करने का समय हो गया है और आपसे अलविदा कहने का वक्त भी हो चुका है। अनुमति दीजिए आपके रेडियो दोस्त ज्योति को। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल जगत से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े, और उनकी कहानी का शीर्षक है बिल्ली और चूहे।

हमारे बाल मित्रों, आपके भाई ईशान खापर्डे का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है बिल्ली और चूहे। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। तेनालीराम के घर में चूहों ने हुड़दंग मचा रखा था और एक दिन चूहों ने उसकी पत्नी की एक सुंदर साड़ी को काटकर उसमें छेद भी कर दिया। अब तो तेनालीराम और उसकी पत्नी को उन चूहों पर बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने सोचा इन चूहों को पकड़कर खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जाने कितना बड़ा नुकसान कर दे। लेकिन बहुत प्रयत्न के बाद भी चूहे उनके हाथ नहीं आ रहे थे। कई घंटों की कोशिश के बाद भी एक चूहा ही पकड़कर खत्म कर पाए। तेनालीराम बहुत ज्यादा परेशान था। थक हार कर वह अपने एक मित्र के पास गया जिसने उसे सलाह दी थी कि इनसे छुटकारा पाने के लिए वह एक बिल्ली पाल ले। अपने दोस्त की सलाह पर तेनालीराम ने एक बिल्ली पाल ली और सचमुच उसके यहाँ के चूहे खत्म होने लगे। पति पत्नी दोनों ने राहत की सांस ली। अचानक एक दिन बड़ी अजीब घटना घट गई। तेनालीराम की पालतू बिल्ली ने पड़ोसियों के पालतू तोते को पकड़कर खा लिया। तोते की मालकिन ने अपने पति से इस बात की शिकायत की और कहा कि इस दुष्ट बिल्ली को पकड़कर फौरन ही मार डालो। उस औरत के पति ने तेनालीराम के बिल्ली का पीछा किया और उसे धर दबोचा। वह उसे मारने ही वाला था कि तेनालीराम वहाँ पहुँच गया। तेनालीराम ने उस औरत के पति से कहा, भाई मैंने यह बिल्ली अपने घर में हुए चूहों से छुटकारा पाने के लिए पाली है, इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए और मुझे वापिस कर दीजिए, मुझ पर आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। लेकिन वह नहीं माना, बोला चूहे पकड़ने के लिए तुम्हें बिल्ली की क्या आवश्यकता है, मैं तो बिना बिल्ली के ही चूहे पकड़ लेता हूँ, और कहते हुए उसने बिल्ली को मार डाला। थोड़े समय बाद पड़ोसी ने एक सुंदर संदूक उपहार स्वरूप भेजा। उसने अपने सोने वाले कमरे में ले जाकर वह संदूक खोल कर देखा। उसे कमरे में उसकी पत्नी की कीमती साड़ियाँ और उसके भी कपड़े रखे थे। उस संदूक के खुलते ही चूहों की भारी फौज उसमें से उछलकर बाहर निकल आई और वे कमरे में चारों ओर धमाचौकड़ी मचाने लग गए। उसने काफी प्रयत्न किए, असफल रहने पर उन्हें पकड़ने के लिए अपने नौकरों को भी इस काम पर लगा दिया। काफी समय की उछल कूद के बाद घर में जब चूहों की फौज से छुटकारा मिल पाया, पर इस बीच बहुत ही नुकसान हो गया। गलीचों का सत्यानाश हो गया, कीमती फूलदान टूट गए। हारकर पड़ोसी ने पता लगाने का प्रयत्न किया कि उनको संदूक भेजने वाला कौन हो सकता है। तभी संदूक में रखे कागज पर उनकी नजर पड़ी जिस पर लिखा था, आपने कहा था कि आप बिल्ली के बगैर भी चूहों को पकड़ सकते हैं। मैं आपका इम्तिहान लेने के लिए कुछ चूहे आपके पास भेज रहा हूँ, कृपया परिणाम की जानकारी देने का भी कष्ट करें। आपका आज्ञाकारी सेवक तेनालीराम। कागज का वह पुर्जा पढ़ते ही तोते के मालिक की समझ में सारा माजरा आ गया और वह अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर धड़ाम से बेड पर बैठ गया।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े, और उनकी कहानी का शीर्षक था बिल्ली और चूहे। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक बाल गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

इसका शीर्षक है चोर विद्वान। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। एक शहर में पंडित तोताराम जैसा विद्वान रहता था, किंतु दुख की बात यह थी कि उस बेचारे के पास केवल विद्या ही विद्या थी। घर में केवल गरीबी थी। वह दो समय की रोटी के लिए भी चिंतित थे। भूखा भी इंसान कब तक रह सकता है, दुख भी कब तक सह सकता है। मित्र संबंधी उसे देखते ही इसीलिए आंखें फेर लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि यह भूखा उनसे कुछ न कुछ मांगेगा। इतने सारे दुख सहन करने के पश्चात वह करता भी तो क्या करता। अब तो उसके सामने दो रास्ते ही थे, या तो वह आत्महत्या कर ले या फिर चोर बन जाए। मरने से तो चोर बनना ही अच्छा है, क्योंकि आत्महत्या तो वैसा ही पाप है। यही सोचकर वह विद्वान पंडित चोर बन गया। चोरी करना भी पाप है, मगर भूखे मरना तो उससे भी बड़ा पाप है। अब बेचारा पंडित चोरी करके अपना पेट पालने लगा। चोर बनते ही जैसे उसके दिन फिर गए। खूब पेट भरकर खाता, बल्कि उन सबको खिलाता जो भी भूखे नजर आते। साधु संतों को बुलाकर भोजन करवाता। एक बार उस चोर पंडित ने चार ब्राह्मणों को कुछ कीमती चीजें बेचते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा कि इनको कैसे लूटा जाए, कोई ऐसा ढंग निकालूं जिससे यह सब कुछ उसके कब्जे में आ जाए। थोड़ी देर सोचने पश्चात वह उनके पास पहुंचा और बड़े बड़े श्लोक बोलने लगा। उसे इस प्रकार श्लोक बोलते देखकर ब्राह्मण बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, भाई तुम तो बहुत विद्वान ब्राह्मण हो, क्या हमारे साथ नौकरी करोगे? किसी ने ठीक ही कहा है, अत्यंत शर्मिली नारी उल्टा होती है। खारा पानी ठंडा होता है, मीठी बातें करने वाला प्राणी खतरनाक होता है। उन चार ब्राह्मणों ने अपनी कीमती सामान बेचकर और बहुत सा कीमती सामान खरीदा, ताकि उसे दूसरे शहर में जाकर बेचकर वह धन कमाए। वह चोर पंडित उनका नौकर बनकर इन ब्राह्मणों के साथ ही चलने लगा। उसके मन में तो पाप था ही। वह सोच रहा था कि इनका सारा माल कैसे छीन लूं। क्या ना मैं इन्हें जहर देकर मार डालूं और इनका माल लेकर गायब हो जाऊं। मगर जैसे ही वह यह सोच रहा था और वे सब चलते चलते एक गांव के करीब पहुंचे, तो वहां पर बैठे एक नाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आओ आओ, देखो बड़े धनी पंडित आए हैं, इनका माल लूट लो। उस नाई की आवाज सुनते ही बहुत से लोग लाठियां भाले लिए दौड़ आए। सबके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शिकार मोटा है, जाने ना पाए। सब चोरों ने मिलकर इन ब्राह्मणों को घेर लिया। इनमें से एक मोटा सा आकर बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है वह निकाल दो, नहीं तो याद रखो हम तुम्हें आदमी की चमड़ी उधेड़ कर उसके शरीर में से सब कुछ निकाल देते हैं। देखो सरकार, हमारे पास धन नहीं है, तुम चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो, चारों ब्राह्मणों ने कहा। ओ मूर्ख ब्राह्मणों, आज तक तुम्हारी बातें झूठ नहीं निकली। यदि तुम धन निकालकर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देंगे। उनकी यह बात सुनकर पांचवा चोर ब्राह्मण सोचने लगा कि यही मौका है अपने पापों को धोने का। मैं यदि इन ब्राह्मणों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं, तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। मौत तो हर इंसान की आती है। यह सोचकर वह ब्राह्मण उन चोरों से बोला, देखो भाई, यदि तुम्हें संदेह है कि हमारे पास बहुत धन है, तो सबसे पहले मेरे शरीर की तलाशी लो। यदि तुम्हें मेरे पास धन ना मिले तो मेरे शरीर के टुकड़े करके फेंक देना और इन्हें छोड़ देना, क्योंकि फिर तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे। उस ब्राह्मण की बात सुनते ही उन चोरों ने उसकी तलाशी ली। जब उसकी तलाशी ली तब उसे कुछ ना मिला तो उसके शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाले। मगर

उसने भी कमाल की कुर्बानी दी कि शरीर के टुकड़े होते समय उफ तक न की। अब तो चोरों को विश्वास हो गया कि इनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो ब्राह्मण अपनी जान नहीं दे सकता था। उस ब्राह्मण ने केवल सच को सिद्ध करने के लिए ही अपनी जान दी है। शेष चारों ब्राह्मणों को इशारा करते हुए डाकुओं का सरदार बोला, जाओ भाई, अब तुम जाओ, हमारी ही भूल थी कि हमने आप पर विश्वास नहीं किया। अब इसकी हत्या करने के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि तुम लोग सच्चे हो। ब्राह्मण तो बचकर चले गए, मगर उस नौकर के त्याग को वे सदा ही याद रखेंगे, जिसने अपनी जान गंवाकर उन्हें बचा लिया था।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक था चोर विद्वान। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपने समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक से, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: समुद्री लहरें जीवन के उन संघर्षों का प्रतीक है जो मनुष्य को निराश कर देते हैं या फिर ऐसे कुछ निर्णय लेने पर बाध्य करते हैं जिससे वो ताउम्र उबर नहीं पाता। मगर वहीं ईश्वर पर विश्वास और संघर्षों में धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर संकट से उबर जाता है। यहां ईसा नाव से उतरकर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें पहचान लिया और आसपास के गांवों में भी ये खबर फैला दी। सब लोग अपने अपने रोगी रिश्तेदारों व मित्रों सहित आए और ईसा से चंगाई पाकर खुशी खुशी लौट गए। मगर यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री ईसा के पास उनके शिष्यों की शिकायत लेकर पहुंचे।
1: आपको पता है आपके शिष्य पुरखों की परंपरा तोड़ते हैं, वे बिना हाथ धोए भोजन करते हैं।
2: मेरे शिष्य तो पुरखों की ही परंपराएं तोड़ते हैं, परंतु तुम लोग अपनी ही परंपरा के नाम पर ईश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो? ईश्वर ने कहा, अपने माता पिता का आदर करो और जो अपने माता पिता को श्राप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वो ईश्वर को अर्पित है, तो वो फिर अपने माता पिता को कुछ नहीं दे सकता है। इस प्रकार तुम लोगों ने अपनी परंपरा के नाम पर ईश्वर का वचन रद्द कर दिया है। ढोंगियों, ईसा या नबी ने तुम्हारे बारे में ठीक ही भविष्यवाणी की है। ये लोग मुख से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए नियम मात्र।

अशांति और पाप कर्म में लिप्त होती मानवता का एक प्रमुख कारण है मानव के बनाए नियम, जिन्हें कोई स्वीकार करता है तो कोई अस्वीकार, कोई उसे उचित मानता है तो कोई अनुचित, कोई प्रशंसा करता है तो कोई आलोचना, और यूं ईश्वरीय नियमों के पालन से दूर मानव अपने ही द्वारा बनाए नियमों से कटुता का शिकार बनता जाता है। तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो, जो मुंह में आता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है, जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है।

0: फरीसियों की मान्यता थी कि शारीरिक शुद्धता आत्मिक शुद्धता से जरूरी है, जबकि ईसा कहते थे कि ईश्वर के नियमों का पालन अपने जीवन व्यवहार में सदाचरण द्वारा किया जा सकता है। ईसा के दो टूक जवाब फरीसियों को जरा नहीं भाते थे। उस रोज भी वे ईसा से नाराज हो उठे थे। इस पर शिष्यों ने ईसा से कहा,
1: गुरुवर, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बुरा मान गए हैं?
2: जो पौधा मेरे पिता ने नहीं रोपा वो उखाड़ा जाएगा। तुम लोग उन फरीसियों की चिंता न करो, उन्हें रहने दो। वे तो अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे।
1: गुरुवर, शुद्ध और अशुद्ध भोजन वाला यह दृष्टांत हमें समझा दीजिए।
2: पेत्रुस, क्या तुम ये नहीं समझते कि जो मुंह में पड़ता है वो पेट में जाकर शौच घर में निकलता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वो मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं। ये ही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, न कि बिना हाथ धोए भोजन करने से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, कार्यक्रम स्वास्थ्य का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक है पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस कार्यक्रम का पूरा पूरा अर्थ आपके सामने रखने वाली है। जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं। साथियों, स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम में हमने कई दफा बातें की हैं अलग अलग बीमारियों को लेकर, स्वास्थ्य के संबंध में अनेक प्रकार के क्षेत्रों को लेकर, हमें किस प्रकार की सावधानियां हमारे आसपास की स्थिति को लेकर बरतनी चाहिए, अलग अलग आयु वर्ग में किस प्रकार की स्थितियां हमारे सामने निर्मित होती हैं जब स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन शायद ही कभी हम लोगों ने ये सोचा होगा कि पर्यावरण से संबंधित ऐसी कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है। साथियों, हम सभी इस पृथ्वी पर जो हमारा आधुनिक प्रकार का जीवन है इसके अभ्यस्त हो चले हैं। ऐसे में हमारे दैनिक क्रियाकलापों में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, और यदि उन पर हम ध्यान नहीं देते तभी इस प्रकार की स्थितियां हमारे सामने निर्मित होती है कि नदियों में बहता है प्रदूषित जल, हमारे साथ आसपास जो हवा है वो भी शुद्ध नहीं होती, हमें शुद्ध हवा लेने के लिए ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मात्रा प्राप्त करने के लिए किसी अन्य ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ता है, कल कारखानों के धुएं के कारण, उनसे निकलते प्रदूषित जल के कारण हमारे आसपास का वातावरण यूं कहे कि जहरीला हो गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, बहुत पहले से इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती रही हैं इंसान द्वारा कि हम इस प्रकार के प्रदूषण को रोक सके, जीवन को एक सामान्य तरीके का एक शुद्ध वातावरण हम उपलब्ध करवा सके, और खासकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक शुद्ध विरासत दे सकें। साथियों, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है हमारा जीवन, और जब भी जीवन ने आधुनिकता की नई करवट ली है तब तकनीक का विकास हुआ है, और इसके चलते जो सुविधाएं हमें मिली हैं तो उन सुविधाओं की कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है। साथियों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाओं को परिभाषित किया गया है। अगर हम इसकी परिभाषा सुने तो ये कुछ यूं है कि वे सेवाएं जो निगरानी और नियंत्रण गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण स्वास्थ्य नीतियों को लागू करती हैं, उन्हें पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। साथियों, ये सेवाएं पर्यावरण के मानकों के सुधार को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य का उपयोग प्रौद्योगिकी और व्यवहारों को प्रोत्साहित करने की भूमिका निभाती हैं। और साथियों, यदि हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों के लिए नई पर्यावरण नीति का सुझाव भी विभिन्न क्षेत्रों में देने में ये एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो चलिए, पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं आखिर होती क्या है? साथियों, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, हमारे आसपास जितने भी प्राकृतिक संपत्ति है, प्राकृतिक उपादान है, उन सभी का दोहन करने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वार्थ ये मनुष्य स्वभाव के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है ना? कोई भी व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से ना कर सके जिसके चलते पर्यावरण को नुकसान हो और उसका दुष्प्रभाव अन्य इंसानों पर पड़े, तब इसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा? जी हाँ, इसी प्रकार के नियंत्रण को सामने लाने के लिए अपनाई जाती है पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं। साथियों, इसमें प्रैक्टिशनर्स सैनिटेरियंस भी आते हैं, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षक होते हैं, पर्यावरणीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ या पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारा आस पड़ोस स्वच्छ रहे और हम सभी एक अच्छे वातावरण में रह सकें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने स्थान का कचरा किसी अन्य स्थान पर डालें। आपका स्थान तो स्वच्छ है, लेकिन अन्य स्थानों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, क्या स्वच्छ और शुद्ध वायु पर उनका हक नहीं? इसी प्रकार के मामलों को सुलझाने का काम करते हैं, इसी प्रकार की चीजों को नियंत्रण में लाने का काम जो व्यक्ति करते हैं उन्हें पर्यावरण स्वास्थ्य विशेषज्ञ या पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी कहा जाता है।
साथियों, हमारे आसपास बहुत से ऐसे अधिकारियों की जरूरत है। हम सभी, उदाहरण के तौर पर यदि दिवाली के त्योहार को ही ले लीजिए, हम सभी बड़े जतन से पूरे घर को साफ करते हैं। प्रत्येक कोना चमकना चाहिए, हर चीज साफ होनी चाहिए, सब कुछ सजा धजा होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करते समय हमने कभी ये सोचा है कि आप अपने घर का जो कूड़ा और कबाड़ है उसे कहाँ डाल रहे हैं? उसे जिस स्थान पर डाल रहे हैं, क्या वो डालने के लिए सुरक्षित है? हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी घटना देखी है साथियों। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, वहां पर यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था वो इंदौर और पीथमपुर के क्षेत्र में डाला गया। वो जहरीला कचरा था। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जागरूकता फैली तब इस बात की ओर ध्यान गया और आज इसे लेकर आंदोलन हो रहे हैं, जागरण हो रहा है, सभी में विचारों की जागरूकता आ रही है। लेकिन यदि पहले से इस विषय में जागरूकता दिखाई गई होती, यदि पहले से पर्यावरण स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस क्षेत्र में रुचि लेते, इसको नियंत्रण में लेते, तो शायद ये चीजें आकार ही नहीं ले पाती। साथियों, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जंगल, हमारी वन संपदा भी शामिल होती है। पेड़ों की कटाई होना या फिर वन की उपज को अपने कब्जे में ले लेना, जानवरों का उचित या अनुचित दोहन करना, चाहे वो आपके अधिकार क्षेत्र में हो या ना हो, ये सारी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं साथियों जो हमें सामान्य तौर पर देखने में जरा भी नियंत्रण से बाहर या आपराधिक वृत्ति की नहीं लगती। लेकिन यदि बारीकी से ध्यान दिया जाए तो यदि प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज का अधिकार यदि हम दे दें कि वो किसी भी प्रकार से पेड़ों की कटाई कर सकता है, तो क्या हमारे शहरों में ग्रीन बेल्ट बचेंगे? क्या हमारे शहरी क्षेत्रों में हरियाली बची रह पाएगी? बड़ी मुश्किल से विकास के नाम पर हम सड़कें बना रहे हैं, हम सीमेंट के जंगल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उस हरियाली का क्या जिसकी बनिस्बत हम सांस ले पाते हैं? इस नियंत्रण को ही पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में लेते हैं। दूसरी बात आती है सफाई की। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सफाई की समुचित व्यवस्था होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रहवासी क्षेत्र हैं जहां पर सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, या फिर है भी तो वो ना के बराबर। रहवासी परेशान होते हैं, सरकार को कोसते हैं, व्यवस्था के ऊपर बहुत सारे नाम रखते हैं, लेकिन क्या वो खुद इस व्यवस्था को लेकर जागरूक है? क्या पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोड़कर जो भी प्रबंधन किया जाना चाहिए वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी शहरी विकास के विभाग के अंतर्गत नहीं आना चाहिए? साथियों, हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां के कई राज्यों में पर्यावरण स्वास्थ्य के अभ्यास के लिए पेशेवर व्यक्तियों को लाइसेंस दिया गया होता है। साथियों, इस अनुच्छेद के जो अर्थ है उसमें हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के पंजीकृत पर्यावरण स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा जो अभ्यास किया जाता है उस संबंध में जान सकते हैं। इस अभ्यास में संगठन, प्रबंधन, शिक्षा, शिक्षा को लागू करने का नियंत्रण, परामर्श, पर्यावरण और स्वास्थ्य के खतरे, इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और संवर्धन के साथ ही अनेक क्षेत्रों में पर्यावरण की सुरक्षा और उसे खतरे के रोकथाम के उद्देश्य को लेकर खास प्रबंध किए जाते हैं। साथियों, यदि हम खाद्य सुरक्षा की ही बात करें सबसे पहले उदाहरण के तौर पर, तो बहुत बार बारिश का मौसम शुरू होते ही हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कितना टन अनाज गोदामों में पानी से सील कर खराब हो गया। यहाँ पर पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण और स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका ये आती है कि मौसम के बदलने के साथ ही खाद्य सुरक्षा संबंधी कोई व्यवस्था की गई है या नहीं। यदि हम आपातकालीन व्यवस्था की बात करें तो वर्षा आने के समय या फिर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के समय किसी भी प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के विषय में कोई प्रबंध किए गए हैं या नहीं। यदि आवास और विकिरण क्षेत्र की बात करें तो साथियों, हम बहुत सारे शहरों में ये देखते हैं जहां पर कुछ इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं जिससे विकिरण का प्रभाव जनता पर पड़ सकता है। ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य पर्यावरण अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। साथियों,
इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए सर एडविन चैडविक को, जो सार्वजनिक स्वच्छता निरीक्षकों की एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे और उन्हीं ने इस विषय को आगे बढ़ाया, जिसके चलते आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोड़कर बनाई जाने वाली पर्यावरण स्वास्थ्य नियंत्रक की भूमिका को लेकर। तो साथियों, अब समय हो चला है कि हम संपन्न करें स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम के इस अंक को, और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए है कार्यक्रम में जो जानकारी आपको दी गई है उससे संबंधित एक रोचक सवाल। तो आज का सवाल आपको सुनाते हैं। आज का प्रश्न है, सार्वजनिक स्वच्छता निरीक्षकों की एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न एक बार और सुने, सार्वजनिक स्वच्छता निरीक्षकों की एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? और इसी के साथ संपन्न होता है आज का स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब आप सभी को हमारे स्वास्थ्य के बारे में तो समझ आ ही गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को आप अपने करीबी परिजनों को भी बताएंगे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे और मुझे पहचाना या नहीं। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त ज्योति और इस समय आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो वेरिटास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों अभी की सभा समय 11 से 12 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका वक्त न जाया करते हुए आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुखिया जी, सुना है कि राज्य को हरा भरा बनाने के लिए हरियाली मिशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कई किस्म के पौधे लगाने की योजना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना है कि ये राज्य सरकार की ओर से यह पहल की गई है, एक योजना के तहत, जिसको हरियाली मिशन योजना के नाम से जानते हैं। हरियाली मिशन में पौधों की विभिन्न प्रजातियों पर खास ध्यान होगा। यह योजना पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर से बनाई गई है। हरियाली मिशन के तहत पौधों की वैरायटी का भी खास ख्याल रखा जाएगा, या यूं कहें कि खास ध्यान रखा जा रहा है अभी से ही।
0: तो इसके लिए भूमि का चुनाव भी कर लिया गया है क्या मुखिया जी? किस तरह की भूमि में इस योजना को अंजाम दिया जाएगा, यह तय किया गया है कि नहीं?
1: 5 वर्षों में अवकृष्ट वन भूमि और वनों से बाहर की भूमि पर करीब 21 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सभी प्रजातियों के पौधों को शामिल करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है।
0: किस तरह के वृक्षों को लगाने का प्रावधान बनाया गया है इस योजना के तहत?
1: लकड़ी और व्यावसायिक उपयोग वाले पौधों के अलावा जो पौधे लगा जाएंगे, उनमें फलदार वृक्ष भी होंगे, सौंदर्य प्रसाधन को बनाने वाले पौधे होंगे, औषधीय दवा दारू के पौधे होंगे। इस तरह के ये तमाम पौधों को इस योजना के तहत महत्व दिया गया है, और इसके तहत इन तमाम महत्व के पौधों को भी शामिल किया गया है।
0: तो क्या मुखिया जी, अलग अलग महत्व के प्रजातियों का भी वर्गीकरण किया जाएगा?
1: जी हाँ, ऐसा लगता है कि अलग अलग महत्व के प्रजातियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पौधों की बांटी गई इस श्रेणी के आधार पर ही पौधरोपण किया जाएगा और निजी पौधशालाओं को भी विकसित किया जाएगा। मसलन शहर के सड़कों के किनारे या अन्य खास स्थानों पर सौंदर्य प्रधान प्रजाति वाले पौधे लगाए जाएंगे।
0: इस योजना के तहत किस तरह के पौधों को काफी प्रमुखता के तौर पर शामिल किए जाने की योजना है?
1: इस योजना के तहत, जिसे कृषि वानिकी योजना भी कहा गया है, इसमें पॉपुलर जैसे व्यावसायिक पौधों को प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है।
0: तो फिर इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस तरह के पौधों का चयन किया गया है?
1: ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पौधों को लगाने की योजना है। इसके अलावा क्षेत्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए या विशेषताओं के हिसाब से भी प्रजातियों का चयन किया जाएगा। अगर बात करें कि जल जमाव वाले क्षेत्रों की, तो जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए भी कुछ खास प्रजातियों के पौधों का चयन किया गया है।
0: पॉपुलर पौधों में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती है, जिससे सरकार इस ओर काफी ध्यान दे रही है?
1: पॉपुलर पौधों को विशेष व्यावसायिक महत्व वाला माना गया है। इसे छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों के करीब 9.5 करोड़ पौधों को लगाने की योजना है।
0: इस विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों को विकसित करने के लिए सरकार की किस तरह से पहलकदमी की गई है?
1: सरकार की तरफ से जो पहलकदमी की गई है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन विभिन्न प्रजातियों वाले पौधों को विकसित करने के लिए निजी पौधशालाओं को स्थापित किया गया है या स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न प्रजातियों में श्रेणीवार पौधशालाएं स्थापित किए जाएंगे, ताकि विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों की आपूर्ति कम नहीं पड़े।
0: ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सूबे में सोसाइटी करेगी कृषि बाजारों का संचालन।
1: जिले में खुलने वाले निजी बाजारों के संचालन के लिए सरकार सोसाइटी बनाएगी, ऐसा मुझे भी सुनने में आया है। बाजारों के प्रोजेक्ट पास करने के लिए उनके विकास और संचालन तक की जिम्मेवारी अब इसी सोसाइटी के हाथ में होगी। साथ ही साथ यह किसानों को प्रशिक्षित भी करेगी ताकि राज्य सरकार ने भंग कृषि बाजार का विकल्प ढूंढ लिया है, इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
0: हमारे यहाँ पहले तो बाजार समितियाँ थीं, क्या उसे भी भंग कर दिया गया मुखिया जी?
1: राज्य में 95 बाजार समितियों को वर्ष 2006 से ही सरकार ने भंग कर दिया था। कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत दिलाने के लिए हर जिले में बाजार खोलने का फैसला भी पहले हो चुका है, लेकिन इसके संचालन की जिम्मेवारी अभी तक तय नहीं हो सकी थी।
0: तो क्या अब सरकार ने जिम्मेदारी तय कर दी है या अब इस समस्या को दूर कर लिया गया है?
1: अब सरकार की नई पहल से यह समस्या दूर होने वाली है। विभाग में प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सोसाइटी अस्तित्व में आ जाएगी, फिर बाजार खोलने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी।
0: बाजार खोलने का जो काम है, क्या वह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा? इस बाबत सरकार के पास क्या मसौदा है?
1: सरकार ने पहले चरण में 11 जिलों में कृषि उत्पादों का आधुनिक बाजार खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूरी अधिक होने पर गांवों में भी इन बाजारों की छोटी इकाइयां खोलने की योजना है।
0: क्या इस बाजार को खोलने के लिए सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स भी देना पड़ेगा?
1: किसी भी बाजार के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुविधाओं का उपयोग करने के लिए या सुविधाओं का उपयोग करने पर सिर्फ उसका किराया देना पड़ेगा। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, भोजपुर, रोहतास जिले में मार्केट हब बनेंगे। सभी बाजारों को एग्री बिजनेस सेंटर के नाम से विकसित करने का प्लान है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इन सेंटरों के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जमीन की व्यवस्था निजी पार्टनर को करनी होगी।
0: इस पूरी प्रक्रिया को जो पैसे खर्च होंगे उसका अनुमान क्या है और वह राशि कहाँ से आएगी?
1: इस पर कुल 374.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें अधिकतम 35% की मदद सरकार करेगी। टेंडर उन्हीं प्लॉट किया जाएगा जो सरकार से कम सहयोग मांगेंगे। इन बाजारों की सुविधाएं इलाके की मुख्य फसलों के अनुसार होगी। हालांकि पैक हाउस, बेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, छटनी और ग्रेडिंग जैसी जरूरी सुविधाएं सभी बाजारों में होगी। मार्केट हबों के निकट के किसानों को अपने उत्पादों को लेकर सीधे बाजार पहुंचना होगा या वे बाजार पहुंच जाएंगे, लेकिन दूर के किसानों के लिए उनके गांवों के आसपास ही संग्रहण केंद्र बनाने की योजना इस हरियाली मिशन के तहत है। आशा है कि हमारे किसान भाई इस योजना का भरपूर फायदा उठाएंगे और साथ ही साथ सरकार भी इस ओर ज्यादा ध्यान देगी। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो खेती की गृहस्थी से संबंधित हम कुछ और विशेष बात करेंगे। अभी अनुरोध करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद मुखिया जी।

व्यवस्था का संकट ही होता है। भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए उत्तरदायी है। देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव करने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रोता मित्रों, यह तो थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। और कानून के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो सुनिए हमारी अगली वार्ता। श्रोताओं, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी धन्यवाद
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि भूमिहीन किसानों के लिए कानून के बारे में खास करके, और उसी से संबंधित जो नया बिल पास हुआ है, भूमि अधिग्रहण बिल, उसके बारे में भी हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं। ये बताइए कपूर साहब कि भूमिहीन किसानों के लिए इस अधिनियम में या इस विधेयक में क्या कुछ व्यवस्था की गई है?
1: देखिए, भूमिहीन आरक्षित श्रेणियों के किसानों के लिए अलग अलग पुनर्वास पैकेज बनाने होंगे, लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता दूं कि बहुत सारे लोगों का मानना है ये भूमि अधिग्रहण राहत और पुनर्वास विधेयक 2011 न तो किसानों के हित में है और न ही कृषि के हित में। ये नासमझी भरा गैर जिम्मेदाराना और जन विरोधी कानून है जिसमें आदिवासी क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे आदिवासियों का विनाश शुरू हो जाएगा।
0: तो किस तरह का प्रभाव जनजातीय क्षेत्रों में या आदिवासियों पर पड़ने की संभावना है श्याम जी?
2: देखिए, सच पूछिए तो ये एक ऐसा विधेयक है जो अब तक के किए कराए पर पानी फेर देगा। पुराने कानून में जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक हित के लिए किए जाने का प्रावधान था
0: जी,
2: और इसके लिए मुख्य तीन वजहें थी, आधारभूत विकास, औद्योगिक विकास और शहरीकरण। नए कानून में इसे सिलेक्टिव कर दिया गया है। इसमें ये कहा ही नहीं गया है कि भूमि अधिग्रहण किन परिस्थितियों में किया जाएगा।
0: मैं ये जानना चाह रहा हूँ कपूर साहब कि ये आदिवासियों पर इसका किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा और किस तरह के परिणाम होंगे।
1: आज स्थिति ये है कि यदि उत्तर पूर्व को छोड़ दें तो शेष भारत में औद्योगिकीकरण और शहरी विकास के नाम पर आदिवासियों को इस तरह से उजाड़ा गया है कि वे अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं। रायगढ़, रांची इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जहां आदिवासी आज नाम मात्र के ही रह गए हैं। इस तरह अगर आप बस्तर इलाके में जाएं तो सड़क के किनारे एक भी आदिवासी का गांव नहीं मिलेगा।
0: आखिर ऐसा क्यों हो रहा है श्याम जी, इसकी खास वजह क्या है?
2: दरअसल होता यह है कि जहां से सड़कें निकलती हैं, कुछ समय बाद व्यापारी आदि पैसे वाले लोग वहां आकर 5-10 एकड़ जमीन खरीद ले लेते हैं
0: जी,
2: और जो धीरे धीरे 100-200 एकड़ तक पहुंच जाती है। आदिवासी वहां से उजड़कर दूर जंगल में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। आदिवासी इलाकों में जिस रफ्तार से शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उनकी संख्या इसी रफ्तार में घट रही है।
0: समस्या तो गंभीर है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस पर आखिर ब्रेक कैसे लगाया जाए। आप जो आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीर रख रहे हैं वह सचमुच बहुत भयावह है कपूर साहब।
1: देखिए, काफी लोग वर्षों के संघर्ष के बाद आदिवासी इलाकों में पेशा कानून लागू करवाया था। इसे सभी अधिसूचित क्षेत्र में लागू होना चाहिए और सख्ती से पालन होना चाहिए। नए कानून में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। मैं इसे संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध मानता हूं। उदाहरण के लिए, कहीं एक जगह 100 एकड़ जमीन ली गई, इसके बाद जब वहां शहरी और औद्योगिक विकास शुरू होता है तो पैसे वाले और उसके लठैत घूमने लगते हैं। वे आम आदमी के लिए कुछ नहीं सोचते। इससे स्थानीय लोगों में रोष पैदा होता है जिसकी परिणति भयावह होती है।
0: यह जो व्यवस्था है श्याम भाई, इस पर कैसे अंकुश पाया जा सकता है, कैसे हल निकाला जाए ताकि ऐसी जो स्थिति है जिस स्थिति का जिक्र कपूर

0: प्रस्ताव कर रहे हैं वैसी स्थिति उत्पन्न ही न हो पाए।
1: हाँ, मेरा मानना है कि जहां की जमीन ली जाए वहां के रहने वालों को बराबरी का हक मिले, उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था हो, किसान की गरिमा बनी रहे, अपने ही पुरखों की जमीन बेचकर वे मजदूर बनने पर विवश न हो। लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है। आदिवासी इलाकों में चप्पे चप्पे पर खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। इसे जब आप कंपनियों को दे देंगे और कंपनियां जब वहां से खनिज पदार्थ निकालने के लिए मशीनें लाएंगी, 50 या 100 साल बाद स्थानीय आदिवासियों को खड़े रहने की जमीन वहां कहां होगी?
0: जी,
1: इस मामले में भूरिया समिति की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि पानी, भूमि, हवा आदि आदिवासियों की है, इसलिए वहां जो कोई परियोजना लगती है उसमें 50% हिस्सा आदिवासियों का हो ताकि वे मूल मालिक रहें, उसके बाद 26% हिस्सा कंपनी का हो और शेष 24% उन विस्थापितों का जो परियोजना से विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन नए कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें आदिवासियों के समक्ष कुछ टुकड़े फेंकने की बात है जिससे वे और उजड़ें।
0: कपूर साहब, अब हम लोग थोड़ा सा विदेश विनियमन अधिनियम पर बात कर दें तो अच्छा रहेगा कि ये विदेश विनियमन अधिनियम दरअसल किस प्रकार का अधिनियम है?
2: गरीबों और पद दलितों के बीच सामाजिक कार्यों की प्रगति के लिए बहुत से संघ, संगठन, राजनीतिक दल और व्यक्ति विदेशों से आर्थिक सहायता लेते आ रहे हैं। इससे बहुत सारी स्वैच्छिक संस्थाओं को मदद मिलती है। तो भी इस दिशा में शिकायत थी कि कुछ राजनीतिक दलों ने, संस्थाओं ने और व्यक्तियों ने विदेशों से ली गई सहायता का दुरुपयोग किया है। इसलिए भारत सरकार ने महसूस किया कि विदेशी विनियमन को ग्रहण करने और उपयोग करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता है।
0: यह अधिनियम जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं श्याम भाई, इसको कब पारित किया गया था?
1: इस अधिनियम का नाम ही है विदेशी विनियमन अधिनियम 1976।
0: अच्छा,
1: तो जाहिर है कि 1976 में ही पारित हुआ है। तिथि थी 5 अगस्त। ये 5 अगस्त 1976 से प्रभाव में आया जब केंद्रीय सरकार ने आवश्यक नियम और विनियमन इस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रकाशित किया। बाद में इस अधिनियम में 1984 और 85 में संशोधन किया गया।
0: इस अधिनियम को पारित करने के पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था कपूर साहब?
2: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त पैसा, छात्रवृत्ति और आतिथ्य सत्कार के लिए धन को ग्रहण करने और उपयोग करने के लिए इस कानून को नियमित किया गया है।
0: बात यह है श्याम जी कि यह कानून किस पर लागू होता है?
2: ये अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। साथ ही साथ ये लागू होता है भारत में रहने वाले और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों पर भी, व्यक्तियों के संगठन पर, पंजीकृत या अपंजीकृत सोसाइटी पर, कंपनियों और चुनाव के उम्मीदवारों पर।
0: इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी अभिदाय शब्द का इस्तेमाल किया गया है समझी। तो विदेशी अभिदाय का क्या अर्थ है समझी?
1: इसका अर्थ है किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार की वस्तु, मुद्रा या विदेशी ऋण पत्र का वितरण या स्थानांतरण जो कि किसी भी व्यक्ति ने विदेशी स्रोत से प्रत्यक्ष या एक या अधिक व्यक्तियों से लिया है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या चीजें विदेशी अभिदाय समझी जाएंगी?
2: कोई भी वस्तु जिसकी कीमत 1000 रूपये से कम है, जो किसी व्यक्ति के उपहार स्वरूप दी गई, उसके निजी प्रयोग के लिए, उसे विदेशी अभिदाय माना जाएगा।
0: विदेशी ऋण पत्रों का भी जिक्र इस अधिनियम में है श्याम जी, तो उसका क्या अर्थ है?
1: देखिए, इसका अर्थ है प्रत्येक विदेशी डिवेंचर, बंध पत्र, शेयर, संचित जिसे स्टॉक कहते हैं, और दूसरे ऐसे लिखित उधार पत्र।
0: अच्छा अच्छा, और विदेशी आतिथ्य सत्कार का क्या अर्थ होगा इस अधिनियम के तहत?
2: किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा जैसे विदेश यात्रा, मुफ्त भोजन और अस्थायी निवास, परिवहन या चिकित्सा जो विदेशी स्रोत से ली गई विदेशी आतिथ्य सत्कार में आती है।
0: एक बात यहाँ पर साफ करना जरूरी होगा श्याम जी कि विदेशी स्रोत का इस अधिनियम में क्या अर्थ है?
1: इसके अंतर्गत विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्था या अभिकरण, राष्ट्र संघ का बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धन संबंधी फंड और केंद्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित एजेंसी को छोड़कर विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम, न्यास, सामाजिक संघ या व्यक्तियों का संगठन जो विदेश में पंजीकृत हो, विदेशी नागरिक, विदेश की कोई व्यावसायिक संघ, विदेशी स्रोत के अंतर्गत इन सबको शामिल किया गया है।
0: कपूर साहब, एक बात ये बताइए कि विदेशी सहयोग या सहायता लेने से कौन कौन लोग वंचित हो सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, जिनको यह जो लाभ है, यह जो सहायता है, नहीं मिल सकता है?
2: इसके अंतर्गत जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, पत्रकार, कोलमनिस्ट, व्यंग्य चित्रकार, संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक जो कि पंजीकृत समाचार पत्र के हों, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी निगम के कर्मचारी या निजी कंपनी जो सरकार के नियंत्रण और काबू में हो, किसी भी विधानसभा के सदस्य और राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी, भारत में या भारत के बाहर कोई भारतीय विदेशी अभ्युदाय स्वीकार नहीं कर सकता जो किसी राजनीतिक दल का हो।
0: विदेशी अभ्युदाय देने के लिए किसको केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है?
1: राजनीतिक प्रकृति के संगठन या संस्था।
0: अच्छा।
1: कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है और भारत का कोई नागरिक जो भारत से बाहर रह रहा हो, जो कि विदेशी अभ्युदाय या धन राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन के तौर पर ग्रहण करे या देने के इच्छुक हो या भेजे हुए धन को किसी व्यक्ति को देना चाहे जो भारतीय हो और किसी भी राजनीतिक संगठन को धन दे सके, तो पहले उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। ये विदेशी अभिदाय या आतिथ्य सत्कार की जो फंड मिलता है, तो आतिथ्य सत्कार के लिए पूर्व में अनुमति देने के लिए किसी भी संस्था को या संगठन को क्या करना चाहिए?
2: प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या संगठन जो कि विदेशी अभ्युदाय या आतिथ्य सत्कार लेना चाहता है
0: जी,
2: उसको पहले अनुमति लेने के लिए केंद्रीय सरकार को एक प्रार्थना पत्र देना होगा। राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन को विदेशी अभ्युदाय लेने के लिए फॉर्म FC1 दाखिल करना होगा और आतिथ्य सत्कार के लिए धारा 9 और धारा 10 व के तहत प्रार्थना पत्र फॉर्म नंबर FC2 पर देना होगा।
0: प्रार्थना पत्र देने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये अनुमति प्रदान कर दी गई है या नहीं की गई है?
1: लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद उस पर 60 दिनों के भीतर निपटारा नहीं किया गया तो मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।
0: इस जानकारी के लिए कपूर साहब और श्याम जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
2: जी। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोता मित्रों, कार्यक्रम सर्वधर्म विचार में आप सभी का अभिनंदन है और अभी की वार्ता का शीर्षक है आस्था की तिजारत और इस वार्ता के प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोर जी और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बंडोर एसवीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है आस्था की तिजारत। मित्रों, इस वार्ता में मैं रामपुन्यानी जी के विचार आपके सम्मुख रख रहा हूं। वे लिखते हैं, पिछले लगभग 3 दशकों में हमारे समाज ने धर्म के नाम पर बहुत कुछ देखा भोगा है। एक और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय परिदृश्य के केंद्र में आ गए हैं। वहीं हजारों ऐसे स्वघोषित भगवान, बाबा और आचार्य उगाए हैं जो स्वयं को दैवीय शक्तियों से लैस बताते हैं। वे यह चाहते हैं कि राज्य और समाज उन्हें विशेष दर्जा दे, और कब जब अनौपचारिक तौर पर ही सही राज्य उन्हें कुछ विशेष अधिकार देता भी है, समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। यह प्रवृत्ति एक बार फिर हाल में तब सामने आई जब आसाराम बापू पर एक अवयस्क लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया। इस तरह के मामलों में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए, परंतु आसाराम बापू को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कई दिन लगा दिए और उन्हें बड़ी कठिनाई से और काफी नाटक नौटंकी के बाद गिरफ्तार किया जा सका। बापू ने अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए कई बहाने बनाए। मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, मैं बीमार हूं, मेरे रिश्तेदार की मौत हो गई है आदि। परंतु अंततः दबाव के चलते बापू को उनके इंदौर स्थित आश्रम से 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां तक धन दौलत, आश्रमों की संख्या और अनुयायियों की भीड़ का सवाल है, आसाराम बापू निसंदेह देश के शीर्षस्थ बाबाओं में से एक है। उनके अनुयायियों में अनेक प्रभावशाली व धनी लोग तो है ही, ऐसे राजनीतिज्ञों की भी कोई कमी नहीं है जो उनका बचाव करते हैं। ऐसे ही कुछ राजनीतिज्ञों ने चुनावी समीकरणों के चलते उन्हें जेल जाने से बचाने की पूरी कोशिश की। यह पहली बार नहीं है कि बापू पर आपराधिक मामलों में शामिल होने के आरोप लगे हो। उन पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के आरोप अनेक बार लगे, परंतु सरकारी मशीनरी ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उनके अहमदाबाद और छिंदवाड़ा के आश्रमों में 2-2 बच्चों की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, परंतु इन घटनाओं को भी दबा दिया गया। मित्रों, देश में इस तरह के खेल खेलने वाले आसाराम बापू अकेले नहीं हैं। दर्जनों ऐसे बाबा हैं जिन्होंने अरबों रुपयों की संपत्ति अर्जित कर ली है। उनके आश्रमों में हुई हत्याओं में उनकी संलिप्तता के सबूत मिले हैं। सेक्स स्कैंडलों में फंसे बाबाओं की सूची बहुत लंबी है, और इस संदर्भ में स्वामी नित्यानंद महाराज सबसे आगे हैं जो यह दावा करते हैं कि वे भगवान कृष्ण के अवतार हैं। माया मोह से ऊपर उठने की बात करते हुए ये बाबा अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताते हैं। इन बाबाओं के लिए संत शब्द का प्रयोग विडम्बनापूर्ण है। क्या इनकी तुलना कबीर, तुकाराम, नामदेव, पलटू व रैदास जैसे मध्यकालीन संतों से की जा सकती है जो नीची कही जाने वाली जातियों के थे, श्रम करके अपना पेट भरते थे और गरीबों व वंचितों के बीच जीते थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और सामाजिक असमानता पर प्रश्न उठाए। उन्होंने वंचित वर्गों की व्यथा को स्वर दिया। इस अन्यायपूर्ण दुनिया की चर्चा करते हुए महाराष्ट्र के एक संत चोकमेला लिखते हैं, इस दुनिया में जो अनाज उगाता है वह भूखा है, जो कपड़े बुनता है वह वस्त्रहीन है, और जो मकान बनाता है वह खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। ये संत सत्ता से हमेशा दूर रहे और उन्हें कई बार सत्ताधारियों का कोपभाजन भी बनना पड़ा। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने बादशाह को अपनी कुटिया में आने से मना कर दिया था। कबीर ने जाति प्रथा का विरोध किया, धर्म के आधार पर समाज को बांटने वालों की खिलाफत की और सामाजिक पदानुक्रम की आलोचना की। इन संतों के अधिकांश अनुयायी गरीब और कमजोर वर्ग के लोग थे। आज के इन तथाकथित संतों के चेले मुख्यतः धनिक वर्ग से आते हैं और सत्ताधारियों और धन पशुओं से उन्हें भारी मात्रा में दान मिलता है। इन संतों ने अपने विशाल साम्राज्य खड़े कर लिए हैं जो वैभवपूर्ण व अत्यंत शक्तिशाली हैं। यह दिलचस्प है कि भारत में धर्म से जुड़े लोगों द्वारा समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की लंबी परंपरा है। शंकराचार्य की परंपरा तो है ही, देशभर में ऐसे अनेक मठ, आश्रम और धार्मिक केंद्र हैं जहां धर्मशास्त्र और धर्म के दार्शनिक पक्ष पर गंभीर और बौद्धिक चर्चाएं होती हैं। आज के बाबाओं को
न तो धर्मशास्त्र से मतलब है और न ही धर्म के दार्शनिक पक्ष से। इसके विपरीत मध्यकालीन संतों की जड़ें समाज में थी। वे सामाजिक मुद्दों पर बातें करते थे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते थे। जैसे कबीर ने चक्की की तुलना भगवान की मूर्ति से की और मुल्ला को उसकी तेज बांग या अजान के लिए फटकारा। आज के बाबाओं का सामाजिक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के इतने ढेर सारे बाबा हैं कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के उनके तरीकों में एक रूपता ढूंढना आसान नहीं है। परंतु कुछ मोटी मोटी बातें स्पष्ट हैं। इन सभी को दर्शन शास्त्र, धर्म या सामाजिक मुद्दों का गहरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने कुछ फार्मूले ईजाद कर लिए हैं जिन्हें वे गीत संगीत के साथ प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कुछ प्रवचन देते हैं जिसमें शायद समाज के उस वर्ग जो स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है और कई तरह की दुविधाओं से ग्रस्त है के मन को शांति मिलती है। कुछ तो शुद्ध कपटी है जैसे निर्मल बाबा जो चटनी का रंग बदलकर लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। इनमें से अधिकांश प्रवचनों के अलावा ध्यान और योग का इस्तेमाल भी करते हैं। मुरारी बापू जैसे कुछ बाबा अपने अनुयायियों के साथ लग्जरी क्रूज में विश्व भ्रमण करते हुए गीता का प्रवचन देते हैं। स्पष्टतः इन दोनों श्रेणियों के संतों का जीवन और कर्म एकदम विरोधाभासी हैं। कबीर, निजामुद्दीन औलिया व आसाराम बापू निर्मल बाबा के श्रेणियों में कोई समानता नहीं है। कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, धर्म दमित व्यक्ति की आह है, हृदयहीन दुनिया का हृदय है, संगदिल विश्व की आत्मा है, वह लोगों की अफीम है। यह वाक्य ढेर सारी विविधताओं से युक्त संतों का विभेदीकरण करने में हमारी मदद कर सकता है। एक और है पुरोहित वर्ग, जो धर्म की संस्था और धार्मिक रीति रिवाजों का आधिकारिक अनाधिकारिक रक्षक है। इनमें शामिल है पंडित, मौलाना, ग्रंथी और पादरी। दूसरी ओर है मध्यकालीन संत जो अलग अलग धर्मों के थे, जिनमें शामिल थे भक्ति और सूफी संत जो धर्म की भाषा में बात तो करते थे परंतु उनका न तो कर्मकांडों से कोई लेना देना था और न ही सत्ता से। और तीसरी श्रेणी आज के बाबाओं की लंबी चौड़ी सेना है, जिनमें आसाराम बापू, बाबा रामदेव व श्री श्री रविशंकर जैसे राष्ट्रीय स्तर के बाबाओं से लेकर क्षेत्रीय, प्रादेशिक व शहरी स्तर के बाबा शामिल हैं। पुरोहित वर्ग सत्ता के ढांचे का हिस्सा है, वह जमींदारों और राजाओं का हितेशी था। महाराष्ट्र में शेठ जी, भाट जी शब्द प्रचलित है। इसी तरह राजा, राजगुरु और नवाब, शाही इमाम की भी जोड़ियां थी। इस श्रेणी का सबसे उत्तम उदाहरण है अंग्रेजी शब्द समूह किंग एंड पॉप, यानी राजा और पॉप। राजा, राजगुरु, नवाब, शाही इमाम, किंग एंड पॉप, ये सभी समाज की यथास्थितिवाद के हामी थे और उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे जो गरीब किसानों का खून चूसती थी। वे आमजनों को धर्म के नशे में गाफिल रखते थे ताकि वे दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे और व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का विचार उनके मन में आए ही नहीं। हम कहते हैं कि मध्यकालीन संत इस हृदयहीन शोषणकारी विश्व में दमितों की आह थे। मित्रों, जहां तक आसाराम बापू, निर्मल बाबा जैसे कथित संतों की श्रेणी का सवाल है, वे भी समाज को अफीम परोस रहे हैं। वे कभी व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठाते, वे कभी अन्याय का विरोध नहीं करते और धर्म के नाम पर हो रहे सामाजिक अत्याचारों पर चुप्पी साधे रहते हैं। इसके साथ ही वे राजनीतिज्ञों का संरक्षण हासिल करते हैं, धन कमाते हैं और समाज में अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाते हैं। इस समय भले ही भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पर बाबाओं के पक्ष में आवाज उठा रही हो, परंतु सच यह है कि किसी राजनीतिक दल में यह साहस नहीं है कि वह इन बाबाओं की खुलकर आलोचना कर सके। ये बाबा लोगों को धर्म की अफीम चटाकर उन्हें तनाव से मुक्ति दिला रहे हैं और धर्म का लबादा ओढ़कर अपनी चमकदार और भव्य छवि बना रहे हैं। उन पर हाथ डालना आसान नहीं होता और इसलिए जब वे कोई अपराध करते हैं तब भी वे कानून के शिकंजे से बचे रहते हैं, जब तक उन पर लगे आरोप बहुत गंभीर और स्पष्ट न हो, जैसा कि आसाराम बापू के मामले में है, तब तक उन्हें राजनीतिज्ञों और उनके अंधानुयायियों का संरक्षण मिलता रहता है। यह स्मरणीय है कि आसाराम बापू
और अटल बिहारी वाजपेयी ने शंकर रमन हत्याकांड में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में धरना दिया था। इसी तरह आसाराम बापू के आश्रमों में बच्चों की हत्या के मामले को दबा दिया गया। बाबाओं की रक्षा करने के लिए राजनीतिज्ञों का आगे आना तो आम बात है। मित्रों, यह दिलचस्प है कि इन बाबाओं का उदय धर्म की राजनीति के परवान चढ़ने के साथ ही हुआ है। ये बाबा किसी न किसी रूप में उस विमर्श से जुड़े हुए हैं जिसमें धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है। वे इस विमर्श का प्रचार करते हैं और उसे सही बताते हैं। इनमें से कई दबी छुपी भाषा में मनुस्मृति के मूल्यों और जातिगत व लैंगिक पदानुक्रम का बचाव भी करते हैं। ये बाबा लोग सामाजिक रिश्तों में यथास्थितिवाद के हामी हैं। जैसे श्री श्री रविशंकर जातिगत समरसता की बात करते हैं, वे अम्बेडकर की तरह जाति के उन्मूलन के हामी नहीं हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि लोगों का एक तबका उन्हें भगवान की तरह पूछता है और उसे मानसिक दबावों से मुक्ति पाने के लिए उनकी जरूरत है। यह भी स्पष्ट है कि आर्थिक और राजनीतिक कारकों से जनित सामाजिक असुरक्षा के भाव ने इन बाबाओं के अनुयायियों की संख्या में आशातीत वृद्धि की है। ये सब धर्म और आस्था का लबादा ओढ़े रहते हैं, इसलिए उन पर प्रश्न उठाना कठिन हो जाता है। यह चोला उन्हें कुछ विशेष अधिकार दे देता है और वे देश के कानून से कुछ हद तक ऊपर उठ जाते हैं। मित्रों, आमजनों की आस्था का सम्मान करने की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु इसकी कोई सीमा होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह समाज में अतार्किकता या अंधविश्वास फैलाए या कानून का मखौल उड़ाए। नमस्कार।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था आस्था की तिजारत, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोर जी। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम नाटक, जिसका शीर्षक है हाँ मुझे कुछ याद नहीं, और जिसके लेखक हैं स्वर्गीय कृष्णकांत दुबे जी।

0: सर मैं आपको प्रणाम करता हूं।
1: तुम्हें मेरे आशीर्वाद। लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि तुम कौन हो।
0: सर कभी मैं आपका छात्र रहा था।
1: देखो भाई, मैं वर्षों अध्यापक रहा हूं, अब उम्र 62 साल से ऊपर, अब रिटायर हो चुका हूं। पूरे 40 साल की अवधि, इस समय अवधि में समझो हजारों छात्रों को मैंने पढ़ाया। देखो ना, अब सबको याद रख पाना भी तो मुश्किल है, हैं?
0: पर मुझे याद है आप प्रभात कुमार सर हैं।
1: हाँ, हूं तो वही प्रभात कुमार, लेकिन

0: सर, याद कीजिए जब आप सोनपुर गांव के माध्यमिक शाला में प्रधान अध्यापक बनकर आए थे।
1: सोनपुर, हाँ हाँ याद है मुझे।
0: सर, तब आपको ये भी याद होगा, ये एक लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर स्कूल के बरामदे में आया करता था।
1: नहीं, मुझे उसकी तो कोई याद नहीं है।
0: सर, मैं विशाल, आपको याद दिला दूं?
1: अब उस इतिहास को दोहराने से क्या होगा विशाल।
0: हाँ सर, वो इतिहास ही है, एक उजला इतिहास जिसने मुझे एक नई, एक उजली जिंदगी दी। सर, आज मैं अपने जिले का डिप्टी कलेक्टर हूं, और वो मेरी बहन जिसे मैं स्कूल परिसर में लेकर बैठा रहता था, आज वो आपकी कृपा से एक बैंक अधिकारी है।
1: अगर ये सब कुछ है तो मैं खुश हूं, पर विशाल, विश्वास मानो मुझे कुछ याद नहीं है।
0: सर, ये बात 30 साल पुरानी है।
1: भाई मेरे, इस जिले के डिप्टी कलेक्टर महोदय, कोई 30 साल पुरानी बात है तो सोचो भला मुझे कैसे याद होगी।
0: लेकिन सर, मैं उसे कैसे भूलूंगा, आपकी उस कृपा छाया को जिसने मुझे सचमुच सूरज का आंगन दिया, जिंदगी में एक नई सुबह दी, उजली, जिसने मेरे जीवन को सदैव के लिए उज्ज्वला दे दी। भला मैं उस महाप्रभात को कैसे भूलूंगा। सर, मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मेरा नाम आपका ही दिया हुआ है, विशाल, जो पहले भूरिया था, और बहन, जो पहले नाम में भूरी थी, उसे आपने नाम दिया उज्ज्वला। स्कूल के रजिस्टर में हम विशाल और उज्ज्वला लिखे गए। सर, याद कर लीजिए, मैं वही आपका विशाल हूं जिसकी मां गरीब खेत मजदूर थी और जिसके पिता नहीं रहे थे।
1: कोशिश तो कर रहा हूं याद करने की, लेकिन विशाल, मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं आ रहा।

0: सर उस सुबह को याद कीजिए, सोनपुर की उस सुबह की जब मेरी मां खेत पर मजदूरी करने जा चुकी थी और तब उस सुबह मैं अपनी छोटी बहन को लेकर स्कूल परिसर में आ गया था ताकि हम दोनों वहां बैठकर दिन मजे से गुजार सके।
1: अच्छा फिर क्या हुआ?
0: सर तब सारे स्कूली छात्र प्रार्थना के लिए मैदान में आ चुके थे।
1: फिर
0: मैं और मेरी बहन हम भी कुछ दूर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी, सभी छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए थे।
1: उसके बाद
0: फिर आप हम भाई बहन के पास आए, वहां जहां हम दोनों स्कूली परिसर के सूने बरामदे में बैठे थे। याद कीजिए, तब आपने मुझसे यही कहा था।

0: सुनो बेटे, मैंने देखा है तुम रोज यहां स्कूल आते हो। अगर तुम रोज यहां आते हो तो दोनों भाई बहन के पास इस प्राथमिक स्कूल की क्लास में बैठा करो। मैं तुम्हारे लिए कॉपी किताबों की व्यवस्था कर दूंगा। तुम्हारे लिए स्कूल में पहनकर आने वाले कपड़े भी सिलवा दिए जाएंगे। और हां, ये भी सुन लो, मेरे यहां हर सांझ गरीब और असहाय बच्चे पढ़ने आते हैं। तुम दोनों भी आया करना। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी होगी। हां, और ये भी सुन लो, जिस किसी दिन जब तुम्हारी माताजी खेत पर काम करने नहीं जाए, उन्हें मेरे पास स्कूल लेकर आना। मैं उन्हें कुछ बातें और भी समझा दूंगा।
1: सर, याद कीजिए उस बात, उस समय को, जब एक दिन मैं और मेरी बहन, हम दोनों अपनी मां को लेकर स्कूल आए थे। आपने मां से बातें करते हुए यही तो कुछ कहा था।
0: क्या आप ही इन बच्चों की मां हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सुनिए, आपके इन दोनों बच्चों में मैं भविष्य की यानी आगे आने वाले समय में कई भली संभावनाएं देखता हूं। इन्हें देखते ही मुझे विश्वास हो गया था कि इनके आगे का समय बहुत उजला होगा। मैंने इन दोनों को इसी पास के प्राथमिक स्कूल में भर्ती करा दिया है। अब आगे आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने इनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था कर दी है। बस आपसे एक ही निवेदन है, इन्हें पढ़ने दीजिए, इनको कभी रोकिए नहीं। आप देखेंगी ये बच्चे आगे चलकर सितारों की तरह चमकेंगे।
1: सर, इसे भी याद कीजिए।
0: विशाल, सच कहूं मैं इन बातों से किसी का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। मैं उस 30-35 वर्ष पुरानी बातों को कहां तक याद रख पाऊंगा भला।
1: सर, आपने मुझे मिडिल तक पढ़ाया। हम भाई बहन अपनी हर क्लास में प्रथम श्रेणी प्राप्त करते रहे। हमें स्कॉलरशिप भी मिलती रही। उसके आगे पढ़ने के लिए आपने ही हमें प्रोत्साहित किया था। फिर हम भाई बहन ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां भी हमें बराबर स्कॉलरशिप मिलती रही। सर, हम जानते हैं इस सबके पीछे भी आपकी कृपा रही थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, हम आज जो कुछ भी हैं, आपका मार्गदर्शन और आपकी कृपा का ही परिणाम है। सर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप अपने इस विशाल को पहचान लीजिए जिस पर आपने ऐसी कृपा की थी।
0: तुम बहुत प्रयत्न कर रहे हो कि मैं उस समय की सभी घटनाओं को याद कर लूं। हां, कोशिश जरूर कर रहा हूं, पर सफल नहीं हो पा रहा। इस बारे में तुम मुझे क्षमा करोगे।
1: सर, मैंने तो आपको यहां रेलवे स्टेशन पर देखा और पहचान गया कि आप प्रभात कुमार सर हैं, जिन्होंने मुझे और मेरी बहन के जीवन को संवार दिया।
0: क्या करूं विशाल, वृद्धावस्था है, कभी स्वयं अपने को ही भूल जाता हूं। ये भी मेरी एक विवशता है।
1: सर, यह आपका शिष्य, जिसे आपने एक पिता से भी अधिक प्यार दिया, उसकी हर तरह से सहायता की, आपकी कृपा दया से मैंने आईएएस पूरी सफलता से पूरी कर ली, और वो भी सर्वोच्च श्रेणी में। सर, मैं इस सबको कभी नहीं भूल सकता।
0: ठीक है विशाल, ठीक है, ठीक है।
1: नहीं सर, स्टेशन के बाहर मेरी कार खड़ी है, आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे परिवार को आशीर्वाद देना होगा। सर मेरा ये निवेदन स्वीकार करें, एक दिन अपने पुत्रवत शिष्य के यहां ठहरें, कल आपकी आगे की यात्रा का सारा प्रबंध मैं करवा दूंगा। सर अब आप मुझे निराश नहीं करेंगे।
0: विशाल, शायद तुम नहीं जानते, मेरी श्रीमती का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अकेली है। मुझे हर हालत में अपने घर पहुंचना है। देखो मेरी ट्रेन आने वाली है और मुझे उसी से जाना है।
1: सर आप ये क्या कह रहे हैं?
0: हाँ विशाल, इस समय मैं कहीं नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा।
1: तो फिर आप मुझे अपना पता देते जाएं, फोन नंबर देते जाएं, मोबाइल नंबर भी देते जाएं, ताकि मैं आपसे बात करता रहूंगा और आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करता रहूंगा।
0: इसकी क्या आवश्यकता है विशाल, हम अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हाँ तुम अपने इस अंचल के डिप्टी कलेक्टर हो, तुम पर कई जिम्मेदारियां होंगी। अरे तुम अपना अमूल्य समय इन बातों में खर्च मत करो।
1: तो सर मैं बहुत निराश होकर जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या करूं।
0: क्या करूं यानी क्या मतलब विशाल? हमेशा प्रसन्न रहो, जहां जहां भी रहो उस अंचल के लोगों की हमेशा ईमानदारी से सेवा करते रहो, यही मेरा कहना मेरा आशीर्वाद है। तुम एक युवा अधिकारी हो, तुम्हें तो बहुत काम करना है, देश समाज की सेवा करनी है। और मेरी एक बात ये भी सुन लो, नेकी करो और उसे भूल जाओ, बस यही कहना है।
1: सर आपकी इस शिक्षा को भी मैं हमेशा याद रखूंगा, कभी नहीं भूलूंगा इसे।
0: ठीक है विशाल, अब तुम जाओ, ट्रेन आने वाली है और दूर तक की यात्रा है, मुझे जाना ही होगा।

0: मैंने वर्षों उनका पवित्र सानिध्य पाया, कहूं कि एक तरह उन्हीं के पास रहा। इस पर भी वे मुझे क्यों नहीं पहचान पाए? उन्होंने क्यों किया होगा ऐसा? मुझे बराबर लगता रहा सर मुझे पूरी तरह पहचान रहे हैं, फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ओह, अब समझा उस वाक्य का मर्म।
1: नेकी करो और उसे भूल जाओ, नेकी करो और उसे भूल जाओ, नेकी करो और उसे भूल जाओ।
0: क्या सर ने इसीलिए ये बात कही? शायद यही बात हो।

विशाल विशाल, हाँ मैं उसे देखते ही पहचान गया था। ये मेरे उन छात्रों में एक रहा जो कांटों के बीच भी फूल की राह खोज लेते हैं। विशाल ने उन्नति की, उसकी बहन उज्ज्वला ने अपना जीवन संवारा, लेकिन उसका सारा श्रेय भला मैं कैसे ले लेता? अगर मैं उसे बता देता कि हाँ तुम ही विशाल हो और मैं तुम्हें जानता हूं, तो वो आगे जिंदगी भर अपने भीतर वो दबाव महसूस करता। मैं जानता हूं उसे जो मिलना था वो उसे मिला, मेरी उसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, उसके लिए प्रभु का रचना विधान कुछ यही था जिस कारण उसे सहायता मिली, उसका हकदार मैं कहां था। हां मैंने सिर्फ इतना चाहा, जो गरीब हैं असहाय हैं बस उनकी व्यथाएं मिटे। हां प्रभु ने मुझे प्रसन्नता दी, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने जीवन भर यही चाहा कि सबके दुख दूर हों, सबको मंगल दिशाएं मिलें। प्रभु सदैव हम पर सब पर कृपा करें, बस सब पर उनकी कृपा बरसती रहे, यही मेरी इच्छा, यही मेरी

हाँ, मुझे कुछ कुछ याद नहीं। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक थे कृष्णकांत दुबे और कलाकार संतोष जोशी।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाटक, जिसका शीर्षक था हाँ मुझे कुछ याद नहीं, और जिसके लेखक थे स्वर्गीय कृष्णकांत दुबे जी। दोस्तों नाटक सच में दिल को छू गई। वाकई बहुत ही प्रभावशाली तरह से हमारे प्रतिभाशाली कलाकार नाटिका को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों आपको ढेर सारी नई जानकारियाँ देने और बताने आपके रेडियो दोस्त विवेक जी आ रहे हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए हर पल हर समय कुछ नया। आपकी रेडियो दोस्त ज्योति कुजूर के साथ रेडियो वरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित और उनके साथ ही इंदौर के प्रसिद्ध इंटरनेशनल फोटोग्राफर और कलाकार श्री भालू मोंडे साहब। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात नुपुर दीक्षित के साथ।

0: एक मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में रंग, कला, विविधता, परिवर्तन, विकास, हर चीज के अपने मायने हैं। तो आज इस एक मुलाकात कार्यक्रम में मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनके जीवन में इन सब का बहुत सुंदर संयोजन है। उन्होंने समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश की, कला को नए आयाम दिए, विदेशी धरती पर भारत का नाम रोशन किया और इतना सब कुछ करने के बावजूद वे आज भी अपनी जमीन से उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे हम और आप जुड़े रहते हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ इंदौर के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर और कलाकार श्री भालू मोंडे साहब से। मोंडे साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सर, आपकी ख्याति तो पूरे विश्व में एक फोटोग्राफर के रूप में है, लेकिन फिलहाल मैं इस बातचीत की शुरुआत आपकी एक दूसरी गतिविधि से करना चाहूंगी। हमारे शहर का एक बहुत जाना माना तालाब था जिसकी बहुत दुर्गति हो गई थी, कुछ मानवीय गतिविधियों के चलते, कुछ असामाजिक तत्वों के चलते, और आप लोगों ने उस तालाब को आज प्रदेश के सबसे खूबसूरत तालाब के रूप में विकसित किया है। तो इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सके आप लोग?
1: मेरे बचपन से मेरे को लगाव था झाड़ों, पेड़ और थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ, आई कांट से, बट मैं ये कह सकता हूँ कि आसपास जो जनजीवन था और वाइल्ड लाइफ था उसके लगाव था। तो जब हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आए तो पिकनिक के नाम से हम सिरपुर, पिपलापाला और सब तालाब पे जाते थे, ईश्वर सागर, मांडू, आजू बाजू सब। उस टाइम में सिरपुर पे उस जमाने में भी हमने हिरन देखे है।
0: 1950
1: में मैंने मेरे आंखों से हिरन देखे हैं।
0: मतलब शहर की सीमा के भीतर?
1: सीमा के भीतर, आज जो सीमा है वो तालाब सीमा के अंदर है
0: जी।
1: तो उस टाइम में हिरन देखे। अच्छा, फिर जाने जाते जाते हम कॉलेज में गए वगैरह, और मैंने 1964 में इंडिया के इंग्लैंड से, मैं इंग्लैंड गया 64 में, तो तब तक तो मैं इंदौर से लगाव था। 64 के बाद कंटिन्यूसली 10 साल नहीं आया, और उसके बाद मैंने इंग्लैंड में मेरा काम किया, और उसके 10 साल में मैं 4-5 बार आया। तो जब जब आया तो मेरे को उधर का भी थोड़ा सा आ गया था लुकआउट, डिफरेंट माइंड बन गया था,
0: दृष्टिकोण मिल जाता है,
1: मेरा बन गया, और डेफिनेट इंदौर क्या है अब और मैं कहाँ फिट हूँ उसमें
0: जी।
1: और उस टाइम में भी तालाब अच्छा बिल्कुल फल फूल रहा था। उस टाइम में नगर निगम इंदौर के लिए पानी भी यूज करता था
0: जी,
1: पर वो सब ठीक है। उसके बाद फिर कुछ साल ऐसे ही गए, इधर उधर गए, हम भी बिजी हो गए। पर जब तालाब को बहुत ज्यादा क्राउड और ये जो कॉलोनियां बसी, 20 या 25 साल पहले की बात करो आज, तो जब शुरुआत हुई,
0: यानी कि तालाब में प्रदूषण बढ़ने की जब शुरुआत हुई,
1: प्रदूषण बढ़ने की, फिर कॉलोनी एक फैलाव बढ़ने लगा इंदौर का, वो है 25 साल का पीरियड है, तब जो शुरुआत हुआ तो उसमें एकदम तालाब को घिरने की एकदम एक शंका पैदा हुई, और लोगों को गंदी वाड़ा करने का और फिशिंग, मतलब एक लोगों की मंशाएं जो वृत्ति एकदम बाहर आ गई
0: जी,
1: उससे तालाब के प्रदूषण करने की। और ये वो हम सब, मैं फोटोग्राफर तो हो गया था तब तक, और फॉरेन का भी ट्रेनिंग आ गया था, मैं 75-76 में वापस आ गया, तब से जो चालू किया मैंने जाना रेगुलर। तो मैंने सरकार जो थी, जो भी सरकार उस जमाने की, और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हमेशा उस तरह से मैंने रिपोर्टिंग की कि ये झाड़ कट रहे, पेड़ कट रहे, तब से कर रहा हूं मैं। एनीवे, हमारा फिर हमने सोचा कि हम एनजीओ करेंगे, तो ये हमारा गए 10 साल से हमने फिर रियली एक्शन प्लान किया कि इसको ये सिर्फ बोल के तो हो नहीं रहा है कुछ। प्रदूषण बढ़ते गया, पॉपुलेशन बाहर से लोग आते गए,
0: यानी पहले आपने बहुत शिकायतें की,
1: अवेयरनेस थोड़ा सा लाने की कोशिश की।
0: हाँ हाँ।
1: पर उसका इफेक्ट नहीं हुआ, तो फिर हमने हमारे दोस्तों को भी बताया, फोटोग्राफ्स बताया, ये वो सब बताया, और पोजीशन बताई, क्यों सरकार में भी थोड़ी हमारी पहचान हो गई
0: जी,
1: और एनवायरमेंट वाले लोग थोड़े से हमसे बातचीत करने लगे, जुड़ गए, तो हमने फिर शुरू किया काम, एनजीओ एस्टेब्लिश किया
0: जी।
1: और फिर प्रॉपरली हमने नगर निगम और इनका नोटिस किया, हमको लगा ये फॉरेस्ट का है उस टाइम में, तो फॉरेस्ट के पास गए तो वो बोले हमारे पास तो जमीन का पट्टा है भी नहीं, हम क्या कर सकेंगे, ये तो शहर में आ रहा है। तब पता पड़ा कि ये नगर निगम का है। बीच में नर्मदा के प्रोजेक्ट्स आए, नर्मदा का पानी इंदौर आने लग गया, तो नेचुरली तालाब का पानी रोक दिया। वो एडवांटेज हमको मिला इनफैक्ट टू गो ऑन मेकिंग आवर प्रोजेक्ट, क्योंकि पानी लेते तो हम बोल नहीं सकते थे कि बर्ड के लिए कुछ करो। अब पानी जब बंद हुआ और तब भी गंदीवाड़ा है, तो फिर हमको रहा नहीं गया, तो हमने कमिश्नर को और कहा, तो उन्हें थोड़ा सा नोटिस किया, थोड़ा बहुत करने की कोशिश। वो जब चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश बने, हम इमीडिएटली उनके पास पहुंचे कि अब लास्ट होप है हमारी, अभी आप कुछ कर सके तो करो, उनने तो फिर पता नहीं क्या ये गया फिर तो उनने एक्शन ली, उनने सीधी एप्को कमेटी जो है मध्य प्रदेश की एनवायरमेंटल उसको भेज के और हमसे पूरी रिपोर्ट ली। कमेटी आई, उसकी लैब लेबोरेटरी वगैरह सब आई, फोटोग्राफ करके भोपाल गई। 3 महीने में पूरा एक प्रोजेक्ट बना और करीब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट।
0: यानी कि आपकी मेहनत को आखिरकार मंजिल मिली, एक मुकाम मिला।
1: तो फोटोग्राफ करके कमिश्नर कलेक्टर मंत्री तक सब विजिट करवा के भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। उस आदमी ने जो हमारे विजय सिंह चीफ सेक्रेटरी बने तब उनके पास लास्ट पावर थी मध्य प्रदेश की, उनने अपने ऑफिसर को बुला के और उनने कहा कि ये प्रायोरिटी में होना ही है।
0: यानी कि पूरे 10 सालों का संघर्ष किया गया एक जल स्रोत
1: के विल पावर से, आदमी की विल पावर। हमने वो टेस्ट किया है कि गवर्नमेंट में यदि कुर्सी वाला कर सकता है तो वो काम हो सकते हैं आज।
0: बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से आपका जवाब सुनने के बाद हमारे कई सारे श्रोताओं के मन में एक दूसरा सवाल पैदा हो जाएगा। हम लोग कई बार अपने आसपास बहुत सारे जल स्रोत, तालाब, झील, नदी, इनको प्रदूषित होते हुए देखते हैं। हम अंतर महसूस करते हैं कि पहले नदी का पानी इतना साफ था, आज इतना गंदा है, या पहले फला तालाब में इतनी खूबसूरती थी, आज इस तालाब में इतनी गंदगी पसरी है। लेकिन एक मार्गदर्शन के अभाव में हम कोई कदम नहीं उठा पाते। तो अगर कोई अपने आसपास आप ही की तरह किसी तालाब के लिए, किसी झील के लिए कुछ करना चाहे तो शुरुआत कैसे करें?
1: शुरुआत ये है कि जैसे मैंने भी दूसरे दुनिया में जाके दूसरी जगह के सैंपल देखे कि ये इतनी सुंदर झील या तालाब या नदी कैसी हो सकती है, तो उसका बैकवर्ड जैसे अपन रिवाइंड करके अपने को अपना पूरा तस्वीर देखते हैं वैसा हमने किया कि ये कैसी होती है। तो वहां पे स्टडी किया फिर जाके कि ये लोग कौन है, इसके पीछे कैसा है और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे कोऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए, गवर्नमेंट में आज वो नहीं है। जैसे नगर निगम नर्मदा से कोई लेन देन नहीं है, फिर उसके लिए पावर चाहिए तो उसका एमपीवी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो टेलीफोन, तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट आते हैं रोड कनेक्शंस, ये कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट में नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम स्कीम इनकी फेल होती है, टाइम 4 गुना लेते हैं, पैसा खत्म हो जाता है और काम होता
0: है। और यही सामंजस्य, यही कोऑर्डिनेशन अगर बना रहे तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। मैं अब बिल्कुल प्रायोगिक तौर पर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह का ठहरा हुआ पानी सिरपुर तालाब में था, मेरे ख्याल से लगभग वैसा ही पानी कहीं और जगह पर भी होगा जो प्रदूषित हो चुका होगा। तो अगर इस पानी को साफ करने की कोशिश कोई एनजीओ, कोई समुदाय अपने स्तर पर करना चाहे तो क्या बेसिक मेथड्स होते हैं?
1: बेसिक मेथड है कि पहले तो जनता को पानी से खेलने के लिए या जाने के लिए रोकना है, तो मतलब अननेसेसरी यूज या उसको नाना धोना और पिकनिक स्पॉट बनाना, ये इस तरह की प्लानिंग नहीं चाहिए। उसको तो टोटल रोक दो पहले।
0: मतलब तैरना भी प्रतिबंधित करना चाहिए,
1: तैरना, नाव चलाना, मतलब छोटे तालाब की बात, भोपाल जैसा ताल नहीं, पर एक नॉर्मली 2-3 किलोमीटर वाले तालाब जो है घेरे के, उसमें तो पूरा बंद करना चाहिए। उसको फिर प्लांटेशन पूरे पेरीफेरी में करना चाहिए। और जनता को पानी देना है तो उसको पंपिंग से टैंक में लगा के आप 3-4 जगह कर सकते हो ऐसे स्पॉट्स कि जहां से वो पानी ले।
0: जी, लेकिन डायरेक्ट आकर तालाब में कोई बर्तन डुबोकर पानी ले,
1: जानवर घुस रहे और बर्तन साफ हो रहे और पिकनिक वाले मस्ती कर रहे, कचरा ढोल रहे, बिल्कुल बंद चाहिए वहां पे। ये सब हमने यहां पे किया है।
0: विसर्जन भी बंद करवाना
1: है, विसर्जन टोटल बंद होना है। ये सब मूर्ति पूजा, दुर्गा, गणेश, व्हाटएवर इट इज, ताजिया, सब तरह के अपने अपने विसर्जन होते हैं, वो सब बंद होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: नॉट लेंगे
0: और फिर आखिर इसी पानी पर तो हमारी जिंदगी टिकी है ना।
1: एग्जैक्टली, मतलब मैं कह रहा हूँ नर्मदा का तो बॉटल में भी नर्मदा का पानी है, तो इंदौर की अपन रोज नहा रहे नर्मदा से। अब नदी पे जाके विशेष क्या हो रहा है आपको? उसको एक साबुन से गंदा करना और ये करना, वो कोई मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं उसको आप कहीं बाजू में बाल्टी लेके नहा सकते हैं।
0: आप प्रकृति प्रेमी तो है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान एक कलाकार के रूप में है। आप जितने अच्छे चित्रकार हैं उतने ही अच्छी तरह से आप प्रकृति की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते रहे। तो फोटोग्राफी की शुरुआत किस तरह से हुई और कैसे आपका रुझान बढ़ा फोटोग्राफी की ओर?
1: फोटोग्राफी में मेरे अंकल ने 1923 में एस्टेब्लिश किया इंदौर में स्टूडियो। मेरे अंकल थे मोंडे ब्रदर्स नाम से, तो वो एमजी रोड पे तोपखाने में हमारा स्टूडियो था। उसके बाद 55 में मेरे भाई साहब ने ट्रेनिंग ली वहां से। फिर भाई साहब के बाद मैं आया तो मेरा शुरू हुआ फोटोग्राफी। पर फोटोग्राफी हम जब बाहर चले गए इंग्लैंड और जर्मनी, तो वहां से हमने फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमारा ट्रेनिंग किया। जो यहाँ पे जो पुराना एक ओल्ड मास्टर स्टाइल थी, वो हट के हम मॉडर्नाइजेशन में आए, तो वो आज कला है। और फोटोग्राफी और कैमरा, इसमें मैन बिहाइंड द कैमरा, उससे जो कला उभरती है
0: जी,
1: मतलब वहां क्लिक करेंगे तो फोटो आएगा, पर उसमें कला का अंश डालना या अर्क डालना, ये उसका बिहाइंड पर्सन, दैट इज व्हाट द

0: को वहां का, मैं वहां पे गया तो वहां पे अडॉप्ट कर लिया मैंने, वहां का जैसा बन गया
1: जी।
0: और वहां पे पंक्चुअलिटी टाइम इसका मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनका तरीका, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वो अच्छा लगा। पर बाकी जो टाइप विद द वर्क है वो थोड़ा ज्यादा है और बहुत रिजिड है काम, मतलब वहां, मतलब पंक्चुअलिटी ह्यूमैनिटी से भी ज्यादा है, पर वो पॉइंट अच्छा है उनका।
1: बिल्कुल,
0: दैट आई वांट टू कंबाइन विद इंडिया। मैं यहाँ पे काफी पंक्चुअल हूँ मेरे काम में, बहुत लॉग नहीं है मेरे काम में, कभी पंक्चुअल हूँ, प्रॉमिस है बिल्कुल, लोगों को दिया हुआ उतना बराबर होता है, वो टाइम बाउंड करता हूँ मैं। वो ट्रेनिंग मैंने वहां से लिया और यहाँ आके उसको पनपाया है और मेरे को अच्छा लगता है वो, क्योंकि यहाँ पे जमीन में बिल्कुल सोना गड़ा हुआ है, मतलब भरा हुआ है।
1: लेकिन बस उस सोने को पहचानने के लिए एक जौहरी चाहिए। आपके ऊपर एक कहावत पूरी तरह से लागू होती है कि एक भारतीय भारत से बाहर जाता है, लेकिन एक भारतीय के मन से भारत कभी बाहर नहीं जाता।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही।
1: सर आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप पर्यावरणविद रहे, आप पक्षी प्रेमी हैं, इतने सारे रूप आपके व्यक्तित्व के हैं, इन सारे के सारे रूपों में आप एक संतुलन कैसे बना पाते हैं?
0: मैं फ्रीलांस हूँ, मैं जब से, मतलब मेरा 19 साल से मैं बाहर गया तब से मैं फ्रीलांसिंग नौकरी, मतलब सरकार की और पेंशन के लिए नौकरी नहीं की है
1: जी।
0: काम मेरे को जो पसंद आया वही किया और टाइम बाउंड किया और पैकेट काम खत्म करके वापस आ गया अपन।
1: हाँ।
0: फिर फ्री हो गए, इस तरह से मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं गए 30 साल से इंदौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर, और टाइम मिलता है, टाइम सबको मिलता है, प्रधानमंत्री के पास भी टाइम है,
1: बिल्कुल
0: मेरे पास तो है ही। टाइम मेरा, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द स्क्वायर बॉक्स या टीवी, आई लाइक टू गो इन द फील्ड्स, आई लाइक टू टॉक विद द ट्राइबल। मैं काम ऐसे वर्कआउट करता हूँ कि मेरे को ट्राइबल भेजती सरकार, या आई वर्कआउट माय महेश्वर जैसी ब्यूटीफुल नदी पे मैं जाके बैठता हूँ, तो वहां पे दोस्ती बनाई तो वहां पे रहने वहने का इंतजाम हो जाता है और उनके काम भी कर लेता हूँ, मेरा एंजॉयमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है एक साथ। तो चार चार चीज अचीवमेंट करना एक काम में, आई लर्न दैट।
1: यानी कि कुल मिलाकर कहें तो अगर इंसान करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है।
0: सब कुछ होता है बिल्कुल, और आपका डिटर्मिनेशन है करना, आपको है उपदेश बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है
1: जी।
0: आप करे जाओ तो वो सब आपका है,
1: बिल्कुल
0: आप करे जाएंगे आपका होते जाएगा वो।
1: सर एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद किसी एक या दो या तीन व्यक्तियों की इच्छा हो जाए कि वो अपने शहर की या अपने गांव की नदी के लिए कुछ करना चाहता है, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि उसके पास आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है वो और ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है जिसके मन में इच्छा है एक जल स्रोत को साफ करने की, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे सर एक सुझाव दें कि इस तरह से शुरुआत करो, धीरे धीरे तुम्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि आखिर आपको भी 10 सालों का वक्त लगा।
0: गांव में एक, कोई भी छोटे गांव में ही, छोटा से छोटा गांव ले लो, वहां पे एक अड्डा रहता है झाड़ के नीचे या कहीं तो भी
1: जी,
0: वहां पे उसने जाना है 10-5 गांव के जो बुजुर्ग जवान जो भी है उसके साथ दोस्ती करना है और अपनी बात जो देख रहा है उसको वहां पे बोलना है, वहां से उस बात को फैलाव मिलेगा
1: जी।
0: उस बात का नोटिस किया जाएगा, अपने घर में और एक किसी लंगोटिया यार से बात करे तो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जबकि वो गांव के 10 लोग बैठते वहां पे जाके बात करेगा।
1: हाँ, जहाँ एक बैठक या चौपाल होती है गांव की,
0: कि दादा तालाब बहुत गंदी वाला हो रहा है यार, बोले क्या करोगे, तो करने की कुछ इच्छा है ऐसा कुछ, बात करने से आगे बढ़ेगी बात
1: जी।
0: और करने का दम चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट चाहिए, तो नॉलेज आज खूब जगह मिलेगा आपको, अड़ोस पड़ोस और थोड़ा सा शहर में आ जाए तो एक्सपर्ट मिल जाएंगे, तो इससे चलेगी चीज। वो मेरे को मेरा सराउंडिंग अच्छा करना है, मेरा मैसेज यही है कि यदि आपको सोबर करना है, आपका कमरा साफ होना है, आपके यहाँ डस्टबिन होना है, आपके यहाँ सब कुछ होना है, आवाज नहीं आना है, ये नहीं होना है, तो आपको जागरूक होना है कि आवाज बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा।
1: चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: आपको हर चीज का एनालिसिस करना है, उसके बाद उस पर एक्शन लेने की भी शक्ति आपने अडॉप्ट करना चाहिए कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ सीएम करेगा, पीएम करेगा और नगर निगम के मेयर करेंगे, ये नहीं है। आपको कचरा नहीं फेंकना है तो वो कचरा उठाने की जरूरत नहीं है, फेंकना ही नहीं ना।
1: बहुत सही बात कही कि अगर हम गंदगी को फैलाएंगे नहीं तो किसी को उस गंदगी को साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
0: दिस इज द मैसेज, मतलब वन हैज टू हैव सच ए स्ट्रांग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
1: मुंडे साहब आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके ऊर्जावान व्यक्तित्व का एक प्रसार कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए।
1: तो श्रोताओं आपसे अगली बार मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, अपनी दोस्त नूपुर को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित और उनके साथ थे इंदौर के प्रसिद्ध इंटरनेशनल फोटोग्राफर और कलाकार श्री भालू मुंडे साहब। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरिता सेशा का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसका शीर्षक है राजनीति और युवा शक्ति। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता हैं अंतरा करवड़े एवं आस्था उपमन्यु।

0: साथियों नमस्कार, युवा और विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंतरा करवड़े
1: और मैं हूं आस्था उपमन्यु।
0: आस्था, आज हम हमारे साथियों के साथ जो बात करने वाले हैं वो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। आज का हमारा विषय है राजनीति और युवा शक्ति।
1: वाकई एक दिलचस्प विषय आज हमने लिया है। चुनावी माहौल है जैसा कि हम सब जानते हैं, और एक बात और है कि इस चुनावी माहौल में विशेषकर छात्र राजनीति जिसे हम कहते हैं उसका काफी महत्व बढ़ चुका है। आपको क्या लगता है?
0: बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें आज की तो छात्र राजनीति बिल्कुल एक नवीन पायदान पर है, और यदि हम जनसंख्या की भी बात करें आस्था तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हमारा देश युवा देश है।
1: बिल्कुल।
0: और चाहे राजनीति हो या फिर चाहे किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट, हर किसी का ध्यान आज है युवाओं की ओर।
1: ये बहुत खास अहम बात कही है आपने, कहना होगा, क्योंकि विशेषकर राजनीति को लेकर जब हम बात करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ज्यादातर युवा सांसदों को या युवा विधायकों को चुना जा रहा है, जैसे कि हमने पिछले चुनावों में देखा।
0: हाँ।
1: और हो सकता है आने वाले चुनावों में ये जो
0: मुद्दा है ये बहुत अच्छे से आगे आए, क्योंकि ऐसा है आस्था कि पहले के जमाने में ये माना जाता था कि राजनीति किसी भी अनुभव सिद्ध व्यक्ति के हाथ की ही बपौती है।
1: बिल्कुल।
0: यानी यदि हम देखें तो किसी महत्वपूर्ण पद तक पहुंचना या फिर कोई मंत्री बनना, ये हमेशा जाना जाता था कि उस व्यक्ति का राजनीति में अनुभव कितना है।
1: बिल्कुल।
0: और उसके राजनीतिक अनुभव को लेकर के ही आगे बात की जाती थी।
1: ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज के समय में जो बदलाव आया है उसके मद्देनजर हम कह सकते हैं कि आज का युवा ही एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में सक्षम है या दम रखता है, कह लीजिए, इस तरह की सोच अब बन चुकी है। इसलिए राजनीति में युवाओं को लाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है।
0: बिल्कुल। और आज हम देखें तो दो तरीके से युवा बहुत ज्यादा सामयिक हो चुके हैं। जैसा कि एक आपने कहा कि युवा राजनीति में आ रहे हैं, एक तरुणाई आ रही है राजनीति में, और दूसरा हमारे जो मतदाता हैं उनमें भी युवाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है।
1: सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, आज का युवा जो है वो जागरूक हो रहा है इन मामलों के प्रति। तो आज से कुछ समय पहले हालात ये हुआ करते थे अंतराजी की जब युवाओं से बात की जाती थी कि आप राजनीति में अपना आगे बढ़िए या अपना योगदान दीजिए, तो एक बार वो सोच में पड़ जाते थे।
0: बिल्कुल सही कहा आस्था आपने कि पहले के जमाने में और आज के जमाने में युवा पीढ़ी में फर्क आया है। आजकल बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपने आप को एक भविष्य के नेता के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार से अपनी पढ़ाई या फिर अपने संबंधों को जोड़ना या फिर किसी भी क्षेत्र में अपने धाक जमाना कह सकते हैं, या फिर हो सकता है इसकी शुरुआत छात्र राजनीति से ही होती हो।
1: अंतरा जी, यहाँ अब हम एक चीज और कहना चाहेंगे, एक चीज का और जिक्र करना चाहेंगे कि जो माध्यम है राजनीति में जोड़ने के लिए युवाओं को, वो आज के समय में काफी वृहद हो चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण युवाओं को इतना ज्यादा जागरूक होने का मौका मिल पा रहा है?
0: बिल्कुल। इसकी बात में हम कुछ और तथ्य भी जोड़ सकते हैं आस्था। वो ये है कि इस दौरान, मतलब पिछले 20 सालों में, हमने ऐसे बदलाव देखे हैं जिन्हें आकार में आने में वैसे 200 साल लगते हैं। तकनीक इस कदर से बढ़ी है, लोगों की जीवन शैली, उनकी सोच, उनके सपने, सब कुछ इतनी जल्दी बदले हैं, और सिर्फ बदले नहीं हैं, वो सकारात्मक रूप से आगे जाने की ओर बढ़े हैं। उनमें बदलाव आया है तो वो आधुनिकता की परिभाषा बिल्कुल सही तरीके से खरी उतरी है, और इसका प्रभाव सीधे सीधे युवाओं पर पड़ा है।
1: बिल्कुल। यानी कि आप कुल मिला के कहना ये चाह रही हैं कि हमारे युवा पिछले 20 सालों में जो सोच रहे हैं वो कर भी रहे हैं, यानी कि सिर्फ सोचने तक उनकी सीमित नहीं है कि सिर्फ सोच ही हो। खैर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। हम यहाँ बात करेंगे कि आपको नहीं लगता, विशेषकर जो साइबर का चलन बढ़ा है आज के समय में, नेट फ्रेंडली होता जा रहा है आज का युवा, इन सब वजहों से उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है बेहतरीन मुद्दों से जुड़ने का, देश से जुड़े मुद्दे हों चाहे अपने आसपास से जुड़े कोई सामाजिक मुद्दे हों। आपको क्या लगता है?
0: नहीं, बिल्कुल सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे कलाम साहब, उनका इसमें मुझे बहुत बड़ा योगदान लगता है, क्योंकि उन्होंने देश के सबसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होने के बावजूद उन्होंने युवाओं के जिज्ञासा से भरे ईमेल्स का उत्तर स्वयं दिया है। तो ऐसे में जब हमें ये मालूम पड़ता है कि उम्र से लेकर के साइबर क्रांति का या फिर नेट सेवी होने का या फिर कंप्यूटर से जुड़ने का जब उम्र से कोई संबंध नहीं रह जाता, ऐसे में युवाओं को तो ये उन चीजों से जुड़ना ही चाहिए और जो क्रांति हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमें उपयोगी है, उसका उपयोग तो हमें करना ही चाहिए।
1: बिल्कुल। और यहाँ एक बात और भी है अंतरा जी, कि आज के युवाओं की जो ताकत है वो शायद हमारे राजनेता पहचान चुके हैं, हम कह सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि राजनेताओं की ज्यादातर आज के समय में कोशिश है कि वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा, हाल ही में छात्र राजनीति, ये एक ऐसा विषय उनके बीच में रख दिया गया है कहना चाहिए, कि जिसके कारण वो खुद ब खुद राजनीति की तरफ बढ़ने लगे हैं। वो जानते हैं कि उनके हाथ में, युवाओं के हाथ में कितनी बड़ी ताकत आ गई है।
0: बिल्कुल, बड़ी ताकत आ गई है। और साथियों, जब पहले के हम तुलना यदि करें तो हमारी जो पूर्व पीढ़ी है, वो लोग जब महाविद्यालय में हुआ करते थे, उनके जमाने में जो चुनाव हुआ करते थे, तब आस्था ऐसा नहीं लगता आपको कि उस समय चुनाव लड़ने वाले, राजनीति में भाग लेने वाला एक विद्यार्थियों का धड़ा अलग हुआ करता था।
1: बिल्कुल।
0: और पढ़ाई में ध्यान देने वाले एक विद्यार्थी कुछ अलग ही हुआ करते थे और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना दखल रखने वाले कुछ अलग हुआ करते थे। लेकिन आज हम देखें तो एक युवा राजनीति करने के लिए वो चुनाव में भी खड़ा होता है, वो युवा उत्सव में स्वयं नृत्य करता हुआ भी दिखाई देता है और पढ़ाई में भी वो क्लास में सेकंड थर्ड नंबर पर आ जाता है। इसका मतलब एक ऑल अराउंड जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, वो हमारे
1: मल्टी पर्पज युवा हो चुका है, मल्टी टैलेंटेड कहना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: खैर, एक बात ये भी है अंतरा जी कि हमारे जो युवा हैं आज के समय में, वो सभी बातों को इतने अच्छे से कहना चाहिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं कि उन्हें कोई भी बात समझना या उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान,
0: अमल में लाना
1: बहुत आसान हो जाता है। आपको क्या लगता है इस बारे में?
0: नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा एक फर्क हमें जो मालूम पड़ता है वो ये है कि आज से करीब 10 या 12 साल पहले हम लोग जिन आदर्शों की बात करते थे कि हमारे देश के नेता ऐसे होने चाहिए या फिर हमारे देश के जो युवा हैं वो ऐसे होने चाहिए, उन्होंने नशे से दूर होना चाहिए, उन्होंने देश की संस्कृति को हाथ में लेकर के उसका परचम आगे लेकर के बढ़ाना चाहिए, ये वो जितनी भी आदर्शों की बातें होती थी, ऐसा नहीं लगता कि आज वो आदर्श साकार हो रहे हैं।
1: ये बात बिल्कुल सही कही, लेकिन यहाँ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी कि पहले जो समय था, 20 साल पहले की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस वक्त का जो हमारे देश का सिनेरियो था वो कुछ अलग था, लेकिन आज का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल चुका है। आपने जैसे हाल ही में कहा, टेक्नो फ्रेंडली हो चुके हैं आज के युवा जो है, तो उस वजह से बात वही की वही है, सारे आदर्श हमारे वही के वही हैं, लेकिन उन्हें एक नया रूप मिल गया है, वो एक नए आकार में साकार होने लगे हैं।
0: और मुझे लगता है ये आस्था कि हम अगर राजनीति की भी बात करें ना, तो किसी भी राजनीतिक दल को ये नहीं सोचना चाहिए कि युवा मतदाता को रिझाना बहुत आसान है, क्योंकि आजकल युवाओं में एक स्वभावगत अंतर भी आप देखेंगी कि अगर दो मित्रों में, पहले ये हुआ करता था अगर उनमें अनबन हो गई है तो जिंदगी भर एक दूसरे से बोलते नहीं थे।
1: बिल्कुल।
0: आज यदि अनबन हो गई है तो दूसरे दिन दूसरा दोस्त उसके पास आ जाता है, अहंकार छोड़ देता है और लेट इट बी, ये उनका एक महावाक्य बन चुका है कि जो हो गया वो हो गया, हमारी जिंदगी आगे और भी है, हम साथ में रहेंगे, या जो भी कहते हैं, स्वभाव में जो अहंकार होता था उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसके कारण जो एक स्वभाव उनका है वो प्रत्येक चीज को बहुत गहराई तक देखने का है। इसके चलते यदि कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें आश्वासनों में अपने तरीके से उनको रिझाना चाहे या फिर कुछ भी बात कहकर घोषणाएं करना चाहे और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहे जबकि उस पार्टी में कोई दम नहीं है, तो आज का युवा उतना बेवकूफ नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: विवेक शक्ति उसकी जागरूक है कि वो जान सके कि ये किस आधार पर ये सारी बातें कह रहे हैं।
1: ये बिल्कुल ठीक कहा अंतरा जी आपने, हमारे युवा साथी आज के वक्त में ये जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो इतने परिपक्व हो चुके हैं, उनकी सोच इतनी परिपक्व हो चुकी है। खैर, यहाँ हम हमारे युवा साथियों को बताना चाहेंगे कि एक खास बात जो राजनीति में आजकल और हमें देखने को मिल रही है वो ये कि अलग अलग विज्ञापन हो या कोई भी अन्य जरिया हो चुनाव प्रचार का, उसमें युवाओं को, अगर आपने ध्यान दिया हो तो युवाओं को विशेष रूप से शामिल किया जाता है।
0: बिल्कुल। और सही बात है भी ये आस्था, क्योंकि युवाओं के हाथ में न केवल राजनीति है बल्कि राजनीति की सारी कमान भी युवाओं के हाथ में है, मतलब मंच पर भी युवा है और दर्शक संख्या में भी सबसे ज्यादा युवा है, तो ध्यान तो देना उनकी ओर बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहते हैं ना कि युवाओं में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का सही उपयोग कर लिया जाए, वो ही इस समय जैसे कहते हैं मानव संसाधन, ये किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर उस संसाधन का उपयोग हम एक सही दिशा में उस ऊर्जा को लेकर के जाएंगे तो प्रत्येक का फायदा होगा। तो इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर ले लेने की होड़ सारे राजनीतिक मंचों पर मची है।
1: राजनीतिज्ञ अपनी तरफ से अपने प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम अब हमारे युवा साथियों पर अगर आए बात करें उनकी, तो आपको नहीं लगता कि अब भी हमारे युवा साथी कहीं ना कहीं चुप बैठे हैं?
0: नहीं, चुप तो बैठे हैं, और वो हमें इसलिए भी लगता है आस्था, क्योंकि हमारे सामने मीडिया के द्वारा जो एक युवा वर्ग की तस्वीर पेश की जाती है वो सही तस्वीर मुझे नहीं लगती। क्योंकि मीडिया जिन युवाओं को ढूंढ पाता है वो खासकर शहरी युवा होते हैं, मेट्रो शहरों में रहने वाले युवा होते हैं, और वो मुश्किल से 10 या 12%
1: ही होते हैं। ये अंतरा जी बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो रूप मीडिया में दिखाया जा रहा है युवाओं का, वास्तव में हमारी युवा शक्ति वो नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: उससे बहुत ऊपर निकल चुकी है, चाहे बात हो सोच की, चाहे बात हो किसी भी तरह की क्रिएटिविटी की, जिसको कहते हैं कर्म की।
0: जी,
1: कर्मठ भी है आज का युवा, ऐसा नहीं है कि उसे अगर आलसी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो कार्य नहीं करता।
0: बिल्कुल,
1: शायद किसी और तबका कह लो या वर्ग कह लो, किसी भी उम्र के पड़ाव पर एक, लेकिन अगर युवा है तो उसमें जो शक्ति हमें देखने को मिलती है, जो कर्मठता हमको देखने को मिलती है, या जो लगनशीलता हम देख रहे हैं, उसे वास्तव में आज का मीडिया सामने नहीं ला पा रहा है।
0: बिल्कुल सही है, क्योंकि और इसके पीछे कारण ये है आस्था कि जितने भी मीडिया चैनल हैं उनके कार्यालयों की हम बात करें तो वो मेट्रो शहरों में है, तो उन्हें यदि युवाओं की तस्वीरें दिखानी है तो वो अपने आसपास ही ढूंढेंगे।
1: बिल्कुल,
0: मुझे नहीं लगता कि किसी एक खास कवरेज के लिए किसी एक मीडिया पर्सन को किसी गांव में भेजा जाए कि अब युवाओं की तस्वीर लेकर आओ।
1: गांव में तो दूर चलिए ठीक है, गांव में अगर उम्मीद कम की जाए, वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी एक सोच की बात है, तो आप आसपास के कस्बे में जाइए या किसी छोटे शहर में जाकर देखिए। जरूरी नहीं है कि महानगरों में जो तस्वीर पेश की जा रही है हमारे युवा वही हो। आज आप देखेंगे गांवों की आप कह रही हैं कि मीडिया नहीं पहुंच पा रहा है, अगर मीडिया जाए तो शायद वहां एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी युवाओं की।
0: बिल्कुल,
1: शायद पढ़ने में हमारे युवा वहां इतने सक्षम नहीं हो या उन्हें उतने साधन नहीं मिल पा रहे हो, लेकिन आप देख पाएंगे कि वहां पर उनका मैनेजमेंट जो है, कृषि में कह लीजिए भले ही या आसपास के कार्यों में कह लीजिए, उनका मैनेजमेंट किसी भी शहरी युवा से बेहतर होगा।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही आस्था। और यदि हम बात करें हमारे ग्रामीण युवाओं के साथ ही अगर शहरी युवाओं की भी हम बात करें तो एक कस्बाई युवा भी छूट जाता है बीच में।
1: बिल्कुल,
0: मतलब तीन प्रकार की श्रेणियां मुझे लगती है। एक तो बिल्कुल महानगरीय युवा है जिसके लिए या तो विदेश जाना ही सबसे दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी बात हो जाती है, या तो फिर वो बहुत धनाढ्य है, उसका खुद का अपना एक व्यापार व्यवसाय सेट है तो फिर उसे दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, पैसे के बल पे वो सब कुछ खरीदता है, या फिर कैसे भी करके महत्वाकांक्षा से सब कुछ पाता है। ग्रामीण युवा ये है कि उसे किसी का ही ध्यान नहीं है, वो उपेक्षित है, वो उपेक्षा का मारा स्वयं को मान लेता है, और न उसके पास बहुत ज्यादा साधन है या कुछ। लेकिन जो कस्बाई युवा है, खासकर इसमें वो कस्बाई युवा आते हैं आस्था जो गांव से शहर की ओर आए हैं कुछ साल पहले, या फिर उनकी पहले की पीढ़ी गांव छोड़कर शहर आई हुई है, ऐसे युवाओं की स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि वो अपनी बराबरी करना चाहते हैं शहरी युवाओं से लेकिन उनकी जड़ें बैठी हुई है गांवों
1: में।
0: तो ऐसे खासकर मुझे ऐसा लगता है ये जो मध्यम वर्ग के जो युवा हैं, जो न ठीक गांव के हैं, जो न ठीक शहरी हैं, उनको सबसे ज्यादा टारगेट बनाया जाता है छात्र राजनीति में, या तो भीड़ बढ़ाने के लिए, या फिर आपका अनुमोदन करने के लिए, या फिर किसी भी पद पर उन्हें मोहरा बना करके अपना काम किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: विषय में आप क्या कहेंगे?
1: मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि युवाओं को बजाय मोहरा बनाने के, हम जानते हैं कि युवा शक्ति, ऐसा नहीं है कि हमारे युवा समझते नहीं है, लेकिन सिर्फ फर्क है कि कोई समझाने वाला चाहिए, उन्हें सही राह पर लाने वाला चाहिए। हमारे युवाओं को ये पता होना चाहिए कि भले ही वो कस्बे से आए हो, किसी गांव से शहर की तरफ आए हो, लेकिन वो जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे युवा साथियों के लिए बनती है वो ये कि वो खुद को छोटा समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पहले से शहर में रह रहे युवा हैं तो हम इनके बीच शायद कहीं नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ हम हमारे युवा साथियों को ये बताना चाहेंगे कि किसी भी तरह से अपने आप को कमतर न समझें।
0: बिल्कुल,
1: ये जरूरी है कि आप खुद को उनके समकक्ष रखें। आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आप में अपनी कोई क्वालिटी होगी, आपके अपने गुण हैं जिसकी बदौलत आप आज यहाँ तक पहुंचे।
0: बिल्कुल सही बात है। और जहां तक हम बात करें, यदि राजनीति के अलावा भी हम युवाओं की बात करें, तो किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़ने वाले युवा या फिर किसी भी गिरोह से जुड़ने वाले युवा भी साधारणतः यही होते हैं जिनका अपना कोई आधार नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: वो न ग्राम से है, वो न शहर से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति प्रत्येक स्थान पर हावी है, चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे वो महाविद्यालय की राजनीति हो, चाहे किसी भी नकारात्मक प्रकार के साधन के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्ध करने वाली राजनीति हो। और ऐसा मुझे लगता है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो भी ये सोचेंगे कि खुद को किसी भी प्रकार से राजनीति का मोहरा नहीं बनने देना।
1: बिल्कुल,
0: अब आज्ञा दीजिए, युवा और विकास कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। अंतरा करवड़े
1: और आस्था उपमन्यु का नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था राजनीति और युवा शक्ति। वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे अंतरा करवड़े एवं आस्था उपमन्यु। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है संचार तकनीक से शिक्षा जगत में क्रांति, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: साथियों, युग और संचार, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे संचार तकनीक से शिक्षा जगत में क्रांति इस विषय पर। साथियों, ये विषय जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इन दिनों हमारे जीवन में कुछ इस कदर से शामिल हो चुका है कि उसके बिना किसी भी काम के पूरा होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं तकनीक से होने वाली क्रांति की और उस क्रांति से बदलने वाले हमारे जीवन की। अब हमारे रोजाना के जीवन में ही देखें साथियों, तो डाकिये तो केवल बिल और पत्रिकाएं इन्हें ही बांटते हुए नजर आते हैं। हमारा सारा जरूरी संवाद हो जाता है मोबाइल के जरिए या फिर ईमेल लिखकर, है ना? और साथियों, इसके आगे चलें तो अब न हर काम के लिए बैंक जाना होता है, न ही किसी बिल के भुगतान के लिए घंटों कतार में खड़े होने की मुसीबत। साथियों, तकनीक ने हमें कितनी सारी सुविधाएं दी हैं। समय की बचत, ऊर्जा की बचत, साथ में कम समय में ज्यादा काम करने के चलते हमारी जीवन शैली में सुधार, ये भी तो तकनीकी क्रांति की ही देन है। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में हम तकनीकी क्रांति के शिक्षा जगत पर असर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि हम बात करें आज की शिक्षा प्रणाली की, तो यहाँ पर तो तकनीक अपने पूरे पूरे वजूद को सिद्ध कर ही देती है। यदि आपके नन्हे बच्चों की स्कूल जाने की उम्र हो गई है तो सबसे पहले देखी जाती है नामी स्कूल्स की वेबसाइट्स, याद है ना आपको? साथियों, पहले तो स्कूल जाने की उम्र ही 5 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन आज तो 5 वर्ष के बच्चे कम से कम 2 साल की प्राथमिक शिक्षा हासिल कर चुके होते हैं। स्कूलों का चुनाव वेबसाइट के जरिए करने से स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं, वहां की शिक्षिकाएं, स्कूल की इमारत और पिछला रिकॉर्ड तक आपको मालूम हो जाता है। तो साथियों, ऐसे में अभिभावकों को बहुत सारे स्कूलों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो भी डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध होता है उसके हिसाब से सर्च करने के पश्चात इनमें से जो 2 या 3 स्कूल सर्वश्रेष्ठ लगते हैं वहां पर अभिभावक प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं और अपने बच्चे के लिए उपयुक्त स्कूल का चयन हो जाता है। खैर साथियों, तकनीक ने तो हमारा रसोई घर भी बदल दिया है। माइक्रोवेव की बीप के बिना आजकल हर किचन अधूरा सा लगता है। वहीं नए जमाने के वाटर प्यूरिफायर्स ने मटकों का स्थान लेना शुरू कर दिया है, और ये तकनीक का साथ ना हो साथियों तो हमारी कामकाजी बहनें इतनी जल्दी रसोई से निपट ही ना सके। रसोई हो या पढ़ाई, आजकल तकनीक का बोलबाला हर जगह है। तो चलिए इसी तकनीक से संवरती जिंदगी की खुशियों को हम अपने जीवन में स्थायी स्थान देते हैं। जब से तकनीक का सारा मामला डिजिटल हुआ है, हमारे आसपास विविध गैजेट्स की भी बाढ़ सी आ गई है। कहा जाता है कि एक आधुनिक युवा के पास मोबाइल, लैपटॉप, आईपॉड, ये सारे गैजेट्स तो होते ही हैं। संगीत सुनना हो या अपना कोर्स डाउनलोड करना हो, अपने मित्रों के साथ चैटिंग का लुत्फ उठाना हो या फिर किसी विदेशी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन देना हो, इंटरनेट के साथ ये सब कुछ बहुत आसान है। और यही इंटरनेट इन दिनों शेयर ट्रेडिंग के जरिए हमारी अनेक बहनों के लिए उनकी घर बैठे की कमाई का जरिया भी बन चुका है। तो साथियों, यदि शिक्षा जगत की बात करें, शिक्षा जगत में हो रही तकनीकी क्रांति की बात करें, तो एक बार जब आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल गया, इसके बाद शुरू होता है सिलसिला असाइनमेंट्स का, प्रोजेक्ट्स का और बहुत सारी अलग अलग प्रतियोगिताओं के दौर का। यदि आपके बच्चे को स्कूल में कोई कविता ही गाकर सुनानी है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसके पाठ्यक्रम में से ना हो, तब आपको कविता की पुस्तकों के लिए किसी पुस्तकालय में जाकर उस पुस्तक के पन्ने पलटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई विशेष वेबसाइट्स पर क्लिक करना है, अपनी पसंदीदा कविता चुननी है, सिखाना है उसे अपने बच्चों को और हो गया आपका काम। तो साथियों, स्कूली पढ़ाई के बाद आगे चले हम तकनीक के साथ शिक्षा की क्रांति, इस विषय पर यदि हमारे युवा साथियों की बात करें तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। अब अपने कमरे में बैठकर किताबों में सर खपाते हुए, स्पेलिंग्स याद करते हुए और नोट्स बनाते हुए युवा विद्यार्थी हमें शायद ही कहीं देखने को मिले। अपने कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट्स बनाते हमारे युवा साथी अपनी प्रॉब्लम्स को चैट रूम्स में सुलझाते हैं। अपने कोर्स के चयन के लिए इनके पास पूरे विश्व में फैले अपने दोस्त होते हैं। साथ ही किसी भी यूनिवर्सिटी में किस तरीके का कोर्स उपलब्ध है, वहाँ के फैकल्टीज ने कितनी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, इन बातों से लेकर पिछले रिकॉर्ड की छानबीन और प्रोस्पेक्टस तक ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है। तो साथियों, एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ाई बड़ी आसान, तकनीकी रूप से समृद्ध और खुशनुमा हो चली है। आजकल प्रोफेसर्स भी तो अपने स्टूडेंट से इंटरनेट पर FTP अपलोडिंग से लगाकर लिंक एक्सचेंज जैसे गुर सीख ही रहे हैं। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का आगाज तो काफी समय पहले तभी हो गया था जब कंप्यूटर शिक्षा ने अपना अस्तित्व बनाया था। अनेक अनेक भाषाओं और प्रोग्राम से समृद्ध ये तकनीक आज हमें सफलता के उस मुहाने पर ले आई है साथियों, जहां पर सब कुछ चमत्कार जैसा लगता है। हमें टाइम टेबल मिलता है ईमेल से। कई स्कूलों में, कॉलेजों में विद्यार्थी और शिक्षक साथ मिलकर प्लाज्मा टीवी या लैपटॉप पर काम करते हैं। इनमें कई इलेक्ट्रॉनिक प्रश्न पत्रों के जरिए कक्षा में ली जाने वाली टेस्ट का परिणाम भी तुरंत बिना किसी भूल चूक के हमारे सामने आ जाता है। साथियों, कई स्कूलों में इस प्रकार के परिणाम और विद्यार्थी की संपूर्ण प्रगति को सीधे उनके पालकों को मेल भी कर दिया जाता है, जिससे शिक्षा में पारदर्शिता बनी रह सके। अब साथियों, यदि हम बात करें एक ऐसी तकनीक की जिसमें स्कूल या कॉलेज जाना ही न पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ श्रोताओं, इन दिनों सिर्फ स्कूल या कॉलेज जाने वाले युवा ही विद्यार्थी नहीं रह गए हैं, अनेक नौकरी पेशा, अफसर और ऊंचे ओहदे वाले युवा साथी भी शिक्षा के जरिए अपना करियर संवार रहे हैं। साथियों, इन दिनों किसी नौकरी पेशा व्यक्ति को भी यदि अपनी पढ़ाई जारी रखनी है तो वो सहारा ले सकता है ऑनलाइन कोर्सेज का। यानी जो पाठ्यक्रम पहले पत्राचार के द्वारा पढ़ाए जाते थे, अब उनकी सारी जानकारी, पूरा पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था भी कंप्यूटर पर ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध है। साथियों, आप में से अधिकांश को ये तो मालूम होगा ही कि भारत की सबसे बड़ी प्रबंधन प्रवेश परीक्षा CAT इन दिनों ऑनलाइन हो चुकी है। तो ऐसे में बिना किसी कक्षा के जब ये सारे के सारे होनहार विद्यार्थी तकनीक को अपना गुरु मानकर शिक्षा क्रांति के जरिए आगे बढ़ेंगे, तब निश्चय ही आने वाला समय सफलता और चमत्कारों से भरा होगा। साथियों, आजकल परीक्षा फल SMS पर उपलब्ध है। संगीत से लगाकर तकनीकी और चित्रकला से लगाकर फैशन डिजाइनिंग जैसे पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में जरूरत है इस नए तरीके को अपनाने की। साथियों, यही व्यवस्था, यही बहस हमेशा से होती आई है जब भी कोई नई तकनीक हमारे सामने सुविधाएं लेकर आती हैं। हम कई बार पुरानी व्यवस्था से इसलिए भी चिपके रहते हैं क्योंकि हम बदलाव से अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा साथियों कि ये क्रांतिकारी बदलाव तो हम सभी के भले के लिए हैं। ऐसे में साथियों तकनीक का साथ जब शिक्षा जगत में क्रांति कर रहा है तो हमें भी खुले मन से इन नए तरीकों का स्वागत करना चाहिए। आखिर बदलाव ही तो शाश्वत है साथियों। तो चलिए हम तकनीक और शिक्षा के संगम के साथ शिक्षा क्षेत्र में नए आयामों को चुनें।
0: साथियों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक था संचार तकनीक से शिक्षा जगत में क्रांति और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को। दोस्तों जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। श्रोता साथियों, स्वागत है आप सभी का समय एक से दो की सभा में। स्वीकार करिए आपकी रेडियो दोस्त ज्योति का दुआओं से भरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं और प्ले स्टोर पर जाकर RVA ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। तो जल्दी से, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड करिए और सभी से साझा भी करिए। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मंदर्पण और अंत में पर्यावरण। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम सर्वधर्म विचार में हार्दिक अभिनंदन है और अभी समय एक से दो की वार्ता का शीर्षक है अमरनाथ की आग और प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोर जी और यह प्रस्तुति है सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बंडोर एसपीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है अमरनाथ की आग। मित्रों, आतंकी हमले की धमकियों के बीच इस वर्ष पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की गई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे में 3,157 श्रद्धालु शामिल थे। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था 96 छोटी तथा बड़ी गाड़ियों में सवार होकर बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए निकला। पर्यटन मंत्री जीए मीर ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को पारंपरिक तौर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मित्रों, उत्तराखंड की मची तबाही और आतंकियों की धमकी के बाद लग रहा था कि अमरनाथ यात्रा प्रभावित होगी, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश को देखते हुए लग रहा है कि इन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। अमरनाथ पर आतंकवाद का साया मंडराता रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले कश्मीर में हुए आतंकी हमले से यात्रा पर भी आतंक के बादल मंडरा रहे थे। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान यात्रा की सुरक्षा में तैनात है। 1,00,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी करीब 55 दिनों तक लखनपुर से लेकर गुफा तक भक्तों की सेवा में लगे रहेंगे। कड़ी सुरक्षा के बावजूद रामबन जिले में गोलीबारी की घटना के बाद कश्मीर घाटी और राज्य के कुछ अन्य इलाकों में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी। गुली इलाके में गोलीबारी की घटना के बाद कश्मीर घाटी के अधिकतर भागों में कर्फ्यू लगाया गया। अमरनाथ यात्रा 2 दिनों तक रुकी रहने के बाद फिर जम्मू से शुरू हो गई। मित्रों, रामपुनियानी जी कहते हैं, अमरनाथ यात्रा कश्मीर घाटी की प्रमुख धार्मिक पर्यटक गतिविधियों में से एक है। इस यात्रा का संचालन स्थानीय नागरिकों, जिनमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे, द्वारा किया जाता था। सन 2001 में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया गया और ठीक ठाक चल रही व्यवस्थाओं को बोर्ड के हवाले कर दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल थे व राज्यपाल के प्रमुख सचिव इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। धीरे धीरे बोर्ड अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने लगा और वे काम भी करने लगा जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल होने से उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बोर्ड ने पहलगाम गोल्फ कोर्स पर निर्माण कर डाला। सन 2005 में नियमों के विपरीत बोर्ड को यात्रियों के उपयोग के लिए वन भूमि के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। मजे की बात तो यह है कि बोर्ड की इस गैरकानूनी मांग को मंजूरी देने वाली वन अधिकारी बोर्ड के CIO की पत्नी थी। इस इजाजत से ही उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसके गंभीर नतीजे आज हमारे सामने हैं। राज्य सरकार ने शुरू में वन विभाग के इस निर्णय को गलत ठहराया, परंतु हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। इसके बाद राज्य सरकार दबाव में आ गई और उसने उक्त भूमि बोर्ड को अंतरित कर दी। बाद में यह अंतरण रद्द कर दिया गया। मित्रों, बिना सोच विचार कर लिए गए निर्णयों की श्रृंखला का नतीजा यह है कि कई दशकों की मेहनत से स्थापित की गई शांति के हिंसा और अव्यवस्था में बदल जाने का खतरा पैदा हो गया है। यह जानना दिलचस्प होगा कि अमरनाथ यात्रा हमारे देश के कई अन्य धार्मिक आयोजनों की तरह भारत की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे मालिक ने सन 1850 के दशक में की थी। इसी के बाद से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। मालिक परिवार के सदस्य सन 2001 तक यात्रा के इंतजाम देखते थे। यात्रा का प्रबंध श्राइन बोर्ड के हाथों में आते ही बोर्ड ने पूरी यात्रा और उसके प्रबंधन को भगवे रंग में रंगना शुरू कर दिया। यात्रा का पूरे देश में जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया और नतीजे में तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी उछाल आया। जहां सन 1989 में अमरनाथ यात्रियों की संख्या 12,000 थी, वहीं सन 2007 में 4,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लिया। जहां पहले यात्रा साल में केवल 2 सप्ताह में सम्पन्न की जाती थी, उसकी अवधि बढ़ाकर 10 सप्ताह कर दी गई। इस सबका विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव साफ दिखलाई पड़ रहा है। सैकड़ों टन मानव विष्ठा, प्लास्टिक और पॉलीथीन के कचरे ने निकट के अद्वितीय रूप से सुंदर लिट्ठर नदी को एक गंदे नाले में बदल दिया है। कुछ वर्ष पूर्व पर्यावरण प्रदूषण ही शिवलिंग के पिघलने का कारण भी बना था और उस पर सूखी बर्फ डालकर उसके अस्तित्व को तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए बचाए रखा गया था।
जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित रखने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर यात्रा का आक्रामक ढंग से प्रचार कर यात्रियों की संख्या में वृद्धि करने में योगदान दे रही है। इस क्षेत्र के पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति होगी। इन सब मुद्दों से बेखबर अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रियों की संख्या बढ़ाने और अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में जुटा हुआ है। राज्यपाल के अध्यक्ष होने का लाभ उठाकर बोर्ड ने पहलगाम विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी खुद ही करना शुरू कर दिया है। श्राइन बोर्ड को जमीन अंतरित करने के सरकार के आदेश से पहले से ही तनाव और आतंकग्रस्त घाटी के मुसलमानों में भय की एक नई लहर फैल गई। उन्हें यह डर था कि इस भूमि पर हिंदुओं को बसाकर घाटी के मुस्लिम बहुल चरित्र को बदलने का प्रयास किया जाएगा। इस भय का एक कारण यह भी था कि कुछ वर्ष पहले तत्कालीन इसराइली विदेश मंत्री शिमोन पेरेस ने भारतीय जनता पार्टी नेता एलके अडवाणी को सार्वजनिक रूप से ऐसा करने की सलाह दी थी। उन दिनों अडवाणी देश के गृह मंत्री थे। घाटी के स्वस्फूर्त विरोध प्रदर्शनों का लाभ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरवादी धड़े के नेताओं ने उठाया। सईद अली शाह गिलानी ने विरोध को अलगाववादी प्रदर्शनों में बदल दिया। मित्रों, यह सचमुच बहुत विडम्बनापूर्ण है कि कश्मीर, जो भारतीय संस्कृति की विविध धाराओं का शानदार संगम है, आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। कश्मीरियत में वेदांत के मूल्य, सूफी संतों की शिक्षाएं और गौतम बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत शामिल हैं। कश्मीर 60 वर्ष पहले भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी हुआ था। इन 60 वर्षों में विलय की संधि की सभी शर्तों का जमकर उल्लंघन हुआ है। हर समस्या का समाधान सेना के जरिए ढूंढने की कोशिश की गई। यह कितना दुखद है कि सेना, जिसका काम हमें बाहरी शत्रुओं से बचाना है, कश्मीर में भारत सरकार की नीतियों को लागू करने का एकमात्र प्रभावी तंत्र है। हमें इस विषय पर गंभीरता से आत्मचिंतन करना होगा। मित्रों, जम्मू के लोगों की समस्याओं को भी वर्षों से नजरअंदाज किया जाता रहा है। कोई आश्चर्य नहीं है कि जम्मू के लोग यह मानने लगे हैं कि केंद्र सरकार केवल घाटी की भलाई के बारे में चिंतित रहती है। जम्मू क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयत्न किए जाने चाहिए। अलगाववादी तत्वों की भड़काऊ हरकतें और सांप्रदायिक तत्वों की राजनीति से मुकाबला करने का एकमात्र तरीका यह है कि बंदूक की नहीं, मेल मिलाप की भाषा में बात की जाए। समाज के असंतोष हिस्से के साथ रचनात्मक बातचीत के रास्ते निर्मित किए जाए और शांति वापस लाई जाए। अतीत में हुई गलतियों पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें स्वीकार किया जाए। देश में कभी भी किसी धार्मिक स्थल को वन भूमि नहीं दी गई और न ही कहीं मंदिरों के ट्रस्टों या दरगाहों के प्रबंधन बोर्डों का राजमंदिर या दरगाहों की सीमाओं के बाहर चलने दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड तो मानो अमरनाथ यात्रा के पूरे मार्ग को अपनी जागीर समझने लगा है। मित्रों, कश्मीरियत यदि वापिस आएगी तो अपने साथ शांति, सौहार्द और सामाजिक आर्थिक उन्नति भी लाएगी। कश्मीरियत को वापिस लाने के लिए जो भी जरूरी हो किया जाना चाहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था अमरनाथ की आग, और प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोर जी, और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संसार केंद्र इंदौर की। साथियों, प्रभु की कृपा और आशीष आप सभी पर सदा बनी है और बनी रहेगी, क्योंकि आप हमारे साथ भक्ति गीत सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। तो आइए अब हम सुने एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप सभी का कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण में स्वागत है और आज की वार्ता का शीर्षक बहुत ही रोचक है, जो है सास भी कभी बहू थी, जिसके लेखक है स्वर्गीय माइकल होजेस जी और प्रस्तुत करता है अर्पणा सिंह।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रस्तुत है सास भी कभी बहू थी। लेखक हैं माइकल हॉजेस, प्रस्तुतकर्ता अपर्णा सिंह। श्रोता साथियों, हमारे समाज में कई एक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिसमें से एक है सास बहू के रिश्ते में सास बहू का आपस में मिलके रहना।

देखा जाए तो सास बहु किसी भी विकसित होते हुए घर की नींव होती हैं। यदि नींव में ही एकाग्रता और समानता न हो तो उस नींव पर टिका भवन सुरक्षित और अधिक समय तक टिका नहीं रह सकता। हालांकि पूर्व समय की अपेक्षा आज सास बहू के संबंधों में बहुत हद तक समझदारी आई है और उनके संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, लेकिन इसका एक कारण यह भी है कि आज संयुक्त परिवार की प्रथा समाप्त प्रायः हो सी गई है। आजकल एकल परिवार का चलन बढ़ गया है, जिस वजह से सास ससुर विशेषकर सास के होते हुए भी उसका अस्तित्व नगण्य होकर रह गया है। यदि कहीं पर संयुक्त परिवार अभी भी है तो उनकी संख्या नाम मात्र की है। आज की बहू ने सास के साथ अपने संबंध सहज रखने और उसके साथ रहने की अपेक्षा उससे अलग रहकर उसके अस्तित्व को ही नकार दिया है। बावजूद इसके कुछ बहुएं जब भी अपनी सास से मिलती हैं तो उन्हें अपना पूरा प्रेम और आदर सम्मान देती हैं, तो कुछ बहुएं इसके विपरीत ही आचरण करती हैं। उन्हें लगता है अब जब हम अलग ही रहते हैं तो हमें अपनी सास से क्या लेना देना है, वो अपनी जिंदगी जिए और हम अपनी जिंदगी जिए। जब हम उनकी जिंदगी में किसी प्रकार का दखल नहीं देते हैं तो उन्हें भी हमारी जिंदगी में किसी प्रकार के दखल रखने का अधिकार नहीं है। श्रोता साथियों, जिस जगह और जिस घर में आज भी संयुक्त परिवार निवास करता है और वहां पर यदि सास बहू की आपस में नहीं पटती है तो उन्हें जल्द ही अपने संबंध सुधारने के प्रयास करना चाहिए, अन्यथा घर में फैला तनाव घर की शांति को भंग कर देता है। आइए अब जरा एक नजर इस विषय पर भी डालते चलें कि आखिर सास बहू के रिश्ते में अधिकतर खट्टास क्यों रहती है। यदि इस प्रश्न पर गौर किया जाए तो स्थिति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। अधिकतर सास बहू के रिश्ते में अपने वर्चस्व को लेकर कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न होती है। सास ये मानकर चलती है कि उसके घर में उसका वर्चस्व है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है, और बहू ये मानकर चलती है कि उसके घर में उसकी सास का वर्चस्व पुरानी बात हो गई है, उस घर में अब उसका महत्व है और अब उसकी चलेगी। यही वो स्थिति होती है जब सास बहू के संबंधों में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। दोनों को ही एक दूसरे की जायज और नाजायज बातें अपने विरुद्ध और अपने ही हित के विरुद्ध मालूम पड़ती है। दोनों को ही एक दूसरे के प्रति ऐसा मालूम होता है जैसे उसके सामने वाली उसकी प्रतिद्वंदी है और इस नाते वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इन तमाम बातों के मूल में जो सबसे अहम बात है वो ये है, बेटे अर्थात पति पर एकाधिकार जमाने की चेष्टा अथवा प्रयास करने की। श्रोता साथियों, शादी के पहले ये होता है कि बेटा बेटा रहने के कारण पूरी तरह से अपनी माँ पर आश्रित और निर्भर रहता है। उसके सुबह उठने, नाश्ता आदि से लेकर अपनी नौकरी या दुकान पर चले जाने तक, दोपहर के खाने से लेकर रात के खाने और फिर सो जाने तक माँ का साया रहता है। इसके अलावा उसके कपड़े आदि धोने से लेकर उसकी बीमारी में देखभाल भी उसकी माँ ही करती है। जाहिर सी बात है, जब बेटा इन सारी चीजों के लिए माँ पर निर्भर है तो माँ भी उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां खूब समझती है और निभाती है। इसलिए जब बहू का गृह प्रवेश होता है तो कुछ माएं इसके लिए तैयार नहीं होती। अब उन्हें बेटे की जिम्मेदारियों से निजात मिल जाएगी, जबकि कुछ माएं इस स्थिति के लिए तैयार नहीं होती हैं और अपने बेटे की जिम्मेदारी किसी और के सर पर जाते देख उसका ममता भरा मन इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता है। उसे ये लगता है कि अब उसके इस एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बेटे की पत्नी यानी कि बहू भी यही सोचती है कि उसके एकाधिकार पर सास अपना हक जता रही है, उसके एकाधिकार को कम करने का पूरा प्रयास कर रही है, जबकि दोनों को ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि उन दोनों को ही ये भ्रम है कि सामने वाली उनके एकाधिकार पर डाका डाल रही है। उनके इस भ्रम को तब और भी बढ़ावा मिल जाता है जब कभी बेटा किसी बात पर सास या बहू में से किसी एक का पक्ष लेता है। अब सास और बहू दोनों को ही ये भी समझना चाहिए कि बेटा एक ही समय और एक ही बात पर दोनों का पक्ष एक साथ तो ले नहीं सकता, उसे किसी न किसी एक का पक्ष लेना पड़ेगा। अपने वर्चस्व की लड़ाई में उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है और वे किसी भी विषय को निष्पक्ष दृष्टि से नहीं देख पाती हैं। श्रोता साथियों, जबकि होना ये चाहिए कि सास को ये सोचना चाहिए कि वो कभी बहू थी और जब वो भी बहू थी तब अनजाने या नादानी में
उसके मन में भी अपनी सास के प्रति ऐसे विचार आए थे जैसे आज उसकी बहू के मन में उसके प्रति आ रहे हैं। सास को इतिहास की पुनरावृत्ति मानते हुए अपनी बहू की क्रिया को नजरअंदाज कर देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि जैसा तुम सोचती हो वैसी कोई बात नहीं है। तुम उसकी पत्नी हो और अपने पति पर तुम्हारा ही अधिकार है और सदा ही रहेगा। तुम्हारे और मेरे अधिकार में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे अधिकार पत्नी के हैं जबकि मेरे अधिकार माँ के हैं। हम दोनों एक दूसरे के एकाधिकार पर कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं और बहू को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। बहू को सोचना चाहिए कि जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म देकर इतना बड़ा किया है, जिससे वो पैदा होने के पहले से जुड़ी हुई है, उससे क्या वो एक ही झटके में अलग हो जाएगी। इस संसार में प्रत्येक विषय अपना समय लेता है और समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए प्रत्येक समस्या या विषय को अपना पर्याप्त समय लेना या देना चाहिए। कई बहुएं तो इस विषय को तब समझ पाती हैं जब वे भी सास बन जाती हैं। जिन घरों में और जहां पर सास बहु के रिश्ते सामान्य हैं, वहां पर तो वे दोनों ही प्रशंसा के योग्य हैं और अनुकरणीय हैं। लेकिन जिन सास बहु के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, उन सास बहु को अपने रिश्ते और अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में शीघ्र सोचना चाहिए। देखा गया है कि जिस घर में सास बहू के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, उस घर में अशांति और कलह अपने पैर पसार रही है और जिस घर में सुख शांति नहीं होती उस घर के लोगों का विकास रुक जाता है। साथ ही अशांति से कई एक समस्याओं का जन्म होता है। यीशु मसीह ने भी कहा है, जिस घर में शांति होती है उस घर में मैं निवास करता हूँ। इसलिए प्यारे श्रोता साथियों, सास बहू के रिश्ते कांच की तरह होते हैं जिन्हें बहुत साज संभाल की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही से ये टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं और दुनिया इनका टूटना देखकर रह जाती है। इसलिए सास को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह माने और उसे अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार करे, दुलारे। बहू की कही गई बातों का गलत अर्थ निकालकर उसे दिल पर न डाले और बहू भी अपनी सास को अपनी माँ का दर्जा दे, उनका उचित आदर सम्मान करे और उनकी बात का अन्य अर्थ निकालकर बात का बतंगड़ ना बनाए। जैसे वो अपनी माँ के साथ रहती है वैसे ही सास के साथ भी रहे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था सास भी कभी बहू थी, और जिसके प्रस्तुतकर्ता थी अर्पणा सिंह और लेखक थे स्वर्गीय माइकल हॉजेस जी। दोस्तों, आइए सुनते हैं अब एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोताओं, वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम मन दर्पण का और अभी की सभा की वार्ता का शीर्षक है प्रेम ही जीवन का आधार है और जिसके लेखक व प्रस्तुतकर्ता है स्वतंत्र कुमार ओझा जी। श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम।

हमारे सभी श्रोता मित्रों को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। मन दर्पण कार्यक्रम का शीर्षक हमने आज रखा है, प्रेम ही जीवन का आधार है। साथियों, अब दिसंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है और इस महीने के पहले हफ्ते से ही छमाही परीक्षा, जिसको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कहते हैं, इसका वक्त आ गया है। और फिर आज के समय में इतने अधिक कैरियर कोर्सेस हो गए हैं कि शिक्षा का मापदंड और स्तर पहले से बहुत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, युवा लड़के लड़कियों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है और इसके कारण क्या हुआ है कि एक गला काट कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है और इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण परिश्रम पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है। अब इधर घर में माता पिता और परिवार के जो अन्य परिजन हैं, वो भी इन दिनों में थोड़े से तनाव में इस कारण भी रहते हैं कि बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छी परसेंटेज और रैंक के लिए भी बहुत बहुत बहुत पढ़ाई करनी है। अब इसी कारण क्या होता है कि किसी किसी परिवार के सदस्य जो हैं, वो अपने बच्चों पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। कभी बाहर जाएं और आने में देर हो जाए तो फिर थोड़ा सा डांटने लगते हैं। अब देखिए ना, हर कोई तो पढ़ाई में टॉप पर हो ही नहीं सकता, नंबर वन तो हो ही नहीं सकता, और ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पढ़ाई और अपने विषय के अलावा उस लड़के या लड़की की अन्य हॉबीज हो सकती हैं, रुचियां हो सकती हैं, जैसे साहित्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इनका रुझान कुछ ज्यादा होता है अपनी पढ़ाई के बावजूद। तो माता पिता को ये भी देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस दिशा में जा रहा है। पढ़ाई तो खैर उसे करना ही है, लेकिन उसके और शौक क्या हैं, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान उन्हें रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई के साथ अपनी उनकी अच्छी रुचियों के लिए उन्हें एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रोताओं, सभी मानते हैं कि पढ़ाई एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक तरीका है, लेकिन इनसे कहीं बढ़कर है कि आपका बच्चा समझदार बने, एक अच्छा इंसान बने। अब मान लें कि परीक्षा डॉक्टरी पास करने की है और उसमें 90% से भी ज्यादा नंबर भी आ गए हैं, लेकिन आगे जाकर अगर वो पेशे से एक स्वार्थी डॉक्टर बन गया तो क्या होगा? तो सभी कहेंगे कि ये कैसा डॉक्टर है, ये तो बस किसी भी तरह कमाई को ही अपना सब कुछ मानता है। तो इस तरह के भी कुछ वाकये, कुछ किस्से सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पढ़ाई के साथ अपने भाई के साथ अखबार बेचते थे, जी हाँ, और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन या गांधी जी विद्यार्थी जीवन में बेहद मामूली स्टूडेंट थे, बहुत मामूली छात्र थे, लेकिन आगे जाकर दोनों ही अपनी शताब्दी के, अपनी सेंचुरी के महानायक कहलाए, महामानव कहलाए। ये उदाहरण है। कहने का मतलब यही है कि शिक्षा, पढ़ाई, ये तो बेहद जरूरी है ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने जीवन में समझदार बनना। इसमें हमारी हर क्षण सहायता करता है हमारा ये अपना मन, जो हमारे भीतर धड़कता है, हमारे मस्तिष्क के ऊपर हावी रहता है, जो हमारे हर क्षण पर नजर रखता है। बस यही समझ लेना है कि अपने शुभ अशुभ कार्य और व्यवहार पर समझदारी से अपनी आंख, मन की आंख को खुली रखें और नजर रखें।
और साथियों ऐसे अच्छे उपयोगी संस्कार देने में माता पिता या फिर एक अच्छे गुरु की भूमिका बेहद उपयोगी और असरकारक सिद्ध हो सकती है। अब होता यह है कि किशोर उम्र है, वो थोड़ी सी इमोशनल होती है, भावुक होती है, थोड़ी सी नासमझी भी होती है उनमें। इस उम्र में सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसके विपरीत डांटने फटकारने से किशोर ढीठ बन जाते हैं, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। वो इसलिए कि उनके मन में ये सच्चाई घर कर लेती है कि माता पिता या गुरु क्या कर लेंगे अपना, अरे ज्यादा से ज्यादा डांट लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो इस नाजुक मामले में बच्चों या किशोरों के अभिभावकों को खुद समझदारी से काम लेना होगा। इसी विषय पर आइए एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, गुरु की भी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। गर्मियों के दिन थे, एक स्टूडेंट अपने टीचर की अनुमति लेकर एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने गांव गया। गांव पास ही था, पैदल जाना था। चलते चलते थोड़ी थकान हुई और जोरों की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा, बाईं दिशा में एक कुआं देखा। वहां वो खुश हुआ जाकर के, उसने उस कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाई। पानी शीतल और मीठा था। उसने विचार किया, जब वापस छुट्टियों के बाद घर जाऊंगा ना, तो इस कुएं का पानी गुरुजी के लिए भी पानी की थैली में, जिसमें पानी ठंडा और ताजा रहता है ना, उसमें लेकर के जाऊंगा। छुट्टियां खत्म हुई, विद्यार्थी उसी कुएं का पानी लेकर अपने अध्यापक के पास गया। उन्होंने पानी पिया और शिष्य की इतना अच्छा पानी लाने के लिए उसे शाबाशी दी कि वाह भाई, पानी तो बड़ा अच्छा था। वे सबसे इस पानी की तारीफ करने लगे। कुछ दिनों बाद एक दूसरा शिष्य उन्हीं अध्यापक से बोला, गुरुजी, आप हमेशा उस पानी की बहुत तारीफ करते हैं, मैं भी पीना चाहता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये थैली ले जाओ, वो जो कुआ है ना यहां से थोड़ी दूर पर, वहां जाकर खुद ही सच्चाई जान लो, पानी भी पी लेना और थैली भी भर लाना, तो हम भी पी लेंगे। तो वो विद्यार्थी कुएं के पास गया। जैसे ही पानी पीने का उसने घूंट भरा, तुरंत मुंह से कुल्ला करके पानी बाहर निकाल दिया। बड़ा खींच गया वो, खींचता हुआ वापस आया और गुरुजी से कहा, अरे आप तो बेकार ही इस पानी की इतनी तारीफ कर रहे थे इतने दिनों से, न तो ये पानी ठंडा है और न ही इसमें कोई मिठास है। अध्यापक मुस्कुराए, बोले, हाँ हाँ, मुझे भी जब मैंने पिया तो ऐसे ही लगा था जब मैंने इसे पिया था, लेकिन प्रिय, भले ही जल में अच्छाई न हो, लेकिन लाने वाले उस शिष्य ने जब इसे पिया होगा तो उसे मेरी याद आई और मेरे लिए उसके मन में प्रेम उमड़ा, तो इसलिए वो मेरे लिए भी लेकर आया। जल पीकर मुझे भी अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन ऐसा कहकर मैं उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है पानी भरते समय उसने थैली को साफ नहीं किया हो, ऐसी कोई भूल तुमने भी शायद की हो, तो बिना समझदारी के किसी काम को करने का अंजाम दुखदायी हो जाता है। अब यही मार्गदर्शन मैं उसको और तुम सबको देता रहता हूं, अगर गलती हो जाए तो उसे दोबारा नहीं करने की शिक्षा देना ये मेरा काम है। मैं दो चार दिन में उसे भी यही बात कहूंगा, उस समय कहता तो उसका मन दुख पाता। वो सोचता, ये गुरुजी को देखो, मैं इनके लिए उस कुएं का इतना ठंडा पानी लेके आया और इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो श्रोता मित्रों, कहानी का संदेश यही है कि बड़ों को चाहिए कि वे छोटों से प्रेम करें, उन्हें प्रोत्साहन दें, उनमें जो भी अच्छी आदत है उसे आगे बढ़ाएं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था प्रेम ही जीवन का आधार है, और जिसके लेखक व प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। साथियों, वाकई प्रेम ही जीवन का आधार है, और इस धरा पर यदि कोई उत्तम पुष्प खिल सकता है तो वो है प्रेम का पुष्प। एक खूबसूरत सुगंधित फूल किसी छोटे से पौधे पर भी खिल सकता है। उसी प्रकार प्रेम मानव हृदय में प्रस्फुटित होता और फलता फूलता है, और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए और प्रभु के प्रेम और भक्ति में झूमते रहना चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, घड़ी की टिक टिक करती सुइयां अब इशारा कर रही है और अब वक्त नजाया करते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। हमारा अगला कार्यक्रम है पर्यावरण, जिसका शीर्षक है जल संसाधन के स्रोत एवं संरक्षण और जिसके लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता है स्वर्गीय माइकल होजेस जी।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता जल संसाधन के स्रोत एवं संरक्षण। श्रोता साथियों, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल के बिना इंसान 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे में जल की महत्ता स्वयं ही ज्ञात हो जाती है। जल का हमारे जीवन में इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण स्थान है, तो आइए हम उसके स्रोत के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते चलें। श्रोता साथियों, जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला भूपृष्ठीय जल, दूसरा भूमि जल, तीसरा वायुमंडलीय जल और चौथा महासागरीय जल। हम पहले बात करते हैं भूपृष्ठीय जल की। भूमि की सतह पर मौजूद रहने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहा जाता है, जैसे नदियों का बहता हुआ जल, झीलों और तालाबों का जल। हमारे देश में नदियां और उनकी सहायक नदियां हर क्षेत्र में पाई जाती हैं। देश की प्रमुख नदियों सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में भारत की कुल जल संपदा का लगभग 60% भाग बहता है। यह तीनों नदियां ही संसार की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। इनकी विशालता का कारण है इनका हिमालय से उद्गम। इसी कारण से यह नदियां सूखती नहीं, निरंतर प्रवाहित रहती हैं और अपनी विशालता बनाए रखती हैं। इसी क्रम में देश के अनेक भागों में बड़ी बड़ी झीलें भी पाई जाती हैं। जल का दूसरा स्रोत है भौमजल, यानी कि भूमि की सतह के नीचे इकट्ठा हुआ जल। वर्षा का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, यानी कि वर्षा का जो जल होता है उसका कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। इसमें से कुछ भाग धरती की ऊपरी सतह द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ भाग धरातल के नीचे चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। यह एकत्र हुआ जल ही भौम जल कहलाता है। इस भौम जल को प्रयोग में लाने के लिए कुओं और बोरिंग का सहारा लिया जाता है, जिसका उपयोग पीने, सिंचाई और उद्योगों आदि के लिए किया जाता है। हमारे देश में भौम जल का वितरण बहुत असमान है, इसलिए धरती के नीचे भौम जल का संतुलन भी असमान ही है। तीसरा जल स्रोत है वायुमंडलीय जल। यह भाप के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है और वर्षा के जल के रूप में धरती पर प्राप्त होता है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। और चौथा जल स्रोत है महासागरीय जल। हमारा देश 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है। इस खारे जल का उपयोग जल परिवहन के रूप में किया जाता है। श्रोता साथियों, जैसा कि वार्ता के आरंभ में ही कहा जा चुका है कि जल हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता है, प्रकृति द्वारा उपलब्ध जल का उपयोग इस तरह से होना चाहिए कि भविष्य में भी जल की उपलब्धि इसी तरह से बनी रहे। इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि इस अनमोल जल का सावधानी पूर्वक, मितव्ययता पूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग किया जाए। इसके साथ साथ भू जल स्तर बढ़ाने के लिए जल पुनर्भरण भी अधिक से अधिक हो, ऐसे प्रयास भी किए जाने चाहिए। उपलब्ध जल को अधिक से अधिक प्रदूषण मुक्त रखा जाए, वास्तव में यही वास्तविक जल संरक्षण है। श्रोता साथियों, निम्न बातों के द्वारा सहजता से जल संरक्षण किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस बात पर गौर किया जाए कि पूरी दुनिया में जल की उपलब्धि एक जैसी नहीं है, देशों में भी इस तरह की स्थिति नहीं है। इसलिए समुचित जल वितरण के लिए ऐसी पद्धति अपनाई जाए कि जल का वितरण भी समान हो और उसका सदुपयोग भी हो, साथ ही साथ उसका प्रदूषित होना भी बचाया जा सके। उद्योगों द्वारा निकाला गया अपशिष्ट जल हो या कोई प्रदूषित जल हो,
प्रदूषित और अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण करके उसे उपयोग में आने लायक बनाया जा सकता है। ऐसे जल का उपयोग खेतों, कारखानों और अन्य छिड़काव जैसे कार्यों में किया जा सकता है। जीवन यापन के लिए जितना आवश्यक जल की उपलब्धि है, उतना ही आवश्यक है उपलब्ध जल को शुद्ध रखना और उसे प्रदूषित होने से बचाना। वर्तमान में हालत यह है कि प्रदूषित जल मानव, पशु पक्षी और पेड़ पौधों आदि के विनाश के लिए एक खतरा बन गया है। यही कारण है कि उपलब्ध जल को प्रदूषण मुक्त रखना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए विभिन्न भौतिक और रासायनिक जो भी विधि संभव हो उसे अवश्य अपनाना चाहिए। वर्षा ऋतु की अपार जल राशि व्यर्थ बह जाती है, साथ ही वर्षा काल में नदी और नाले बाढ़ से उफनने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर गर्मी के मौसम में आम जन पानी के लिए तरसने लगते हैं। भूमि जल स्तर वैसे ही काफी नीचे चला गया है। इस प्रकार से दिनों दिन जब जल संकट बढ़ता ही जा रहा है, तब व्यक्ति को पानी बचाने के साधनों की याद आने लगी है। इसलिए आज वर्षा के जल का संग्रहण आवश्यक हो गया है। वर्षा के जल के तालाबों को गहरा कर तथा छोटी छोटी डबरियों में इकट्ठा किया जाना चाहिए। छोटे छोटे नालों पर भी बांध बनाकर वर्षा के जल को रोका और एकत्र किया जा सकता है। श्रोता साथियों, जल के संरक्षण और उसके प्रबंधन के और अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कचरे को नदी में न बहाया जाए, जहरीले रसायनों को भी नदी में बहाना नहीं चाहिए और न ही शवों को नदी में बहाना चाहिए। जल प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जल संरक्षण अभियान द्वारा गांव-गांव में तालाब, कुओं और नदियों का गहरीकरण करना और स्टॉप डैम बनाकर जल रोकने के उपाय करने चाहिए। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के उपाय करना, परंपरागत जल स्रोतों को पुनः उपयोगी बनाना, शिक्षा द्वारा जल की फिजूल खर्ची को रोकना, वन क्षेत्र को सुरक्षित रखना, क्योंकि वनों से ही वर्षा होती है, इसलिए वन क्षेत्रों में कुओं का जलस्तर हमेशा ऊंचा रहता है। वन ही नदी के बहाव को निरंतर संभव बनाते हैं। श्रोता साथियों, जल संरक्षण के साथ साथ हमें जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी करना चाहिए, वरना प्रदूषित जल हमारे किस काम का। इसके लिए कुछ इस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। वे रासायनिक उद्योग जल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन्हें जलाशयों और नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए या ऐसे जल को शुद्ध करके दोबारा सिंचाई के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है जो प्रदूषित जल होता है। सड़कों और कारखानों के किनारे या आसपास के स्थानों पर पौधारोपण किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण युक्त जल की प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी करते रहना चाहिए। जल प्रबंधन के लिए वर्षा के जल को भूमि के अंदर ही संग्रहित करना चाहिए, इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। घरों की छतों के पानी को पाइप के द्वारा नीचे भूमि में लाया जाए, इससे हैंडपंप और कुएं के जल स्तर में सुधार होता है। जिन नदियों में अक्सर बाढ़ आती है, उस नदी की दिशा मोड़कर उसके दोनों किनारों पर कुएं बनवाकर उसमें जल को डाला जा सकता है।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था जल संसाधन के स्रोत एवं संरक्षण, और जिसके लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे स्वर्गीय माइकल हॉजेस जी। दोस्तों, अंत में कविता के माध्यम से अभी की सभा को समाप्त करना चाहूंगी, और इस कविता के लेखक है डॉक्टर राम निवासी, और उनकी कविता का शीर्षक है पानी न होता। श्रोताओं, वे लिखते हैं कि पानी न होता यदि धरा पर, बोलो हम फिर क्या पीते, और बिन पानी के भैया पल भर भी कैसे जीते। क्या बिन पानी पौधे उगते, फसलें लगती हरी भरी, खिलते फूल या रंग बिरंगे, क्या फलों की लगती झड़ी। कैसे बिजली बादल बनते, कैसे फिर वर्षा होती, कैसे नदियां निर्जर बहते, सागर देता क्यों मोती। बर्फ ना होती दूध ना होता, बनती लस्सी फिर कैसे, घर के बर्तन फिल्टर कूलर लगते खाली सब जैसे। बिन पानी जग सूना लगता, नीरस हो जाता जीवन, अतः बचाएं हम पानी को, पानी ही है सच्चा धन। तो श्रोताओं, पानी बचाएं, क्योंकि पानी अमूल्य है। और अब आपकी रेडियो दोस्त ज्योति कुजूर का आपसे विदा लेने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक जी को। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल जगत से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े, और उनकी कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला।

बात है। मछुआरों की बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब दंपति रहता था। मछुआरा प्रतिदिन समुद्र से मछलियां पकड़कर लाता था और पत्नी घर का कामकाज देखती। दोनों बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन जब उसने समुद्र में जाल डाला तो उसे वह बहुत ही भारी महसूस हुआ। उसे लगा कि जाल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसी हैं। मछुआरे ने बड़ी कठिनाई से जाल को खींचकर बाहर निकाला। यह देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि जाल में सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली ही फंसी थी। उसने जैसे ही उसे पकड़ना चाहा, नन्ही मछली बोली, मुझे मत मारना, कृपा करके मुझे समुद्र में डाल दो, बदले में जो भी इच्छा करोगे पूरी करूंगी। मछुआरे ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने उसे छोड़ते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम आजाद हो। जब मछुआरा वह खाली जाल लेकर घर लौटा तो उसे खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी नाराज होकर बोली, तुम सुबह से मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे और पूरे दिन बीतने के बाद लौटे हो, क्या तुम्हें इतने बड़े समुद्र में एक भी मछली नहीं मिली? मछुआरा बोला, मुझे आज एक सुनहरी मछली मिली थी और मैं उसे घर लाना चाहता था, पर मछली ने कहा कि मुझे छोड़ दो और जो चाहे मांग लो, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा। यह सुनकर मछुआरे की पत्नी और भड़क उठी। वह बोली, तुम भी अजीब इंसान हो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और सुनहरी मछली ने तुमसे कुछ मांगने के लिए कहा था तो तुम चुप क्यों रह गए? कम से कम थोड़ी रोटी ही मांग लेते। यह सुनकर मछुआरे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दोबारा समुद्र तट पर गया और बोला, सुनहरी मछली जरा बाहर आना। मछली जब बाहर आई तो उसने कहा, मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, उसका कहना है कि मुझे तुम थोड़ी सी रोटी मांगनी चाहिए थी। मछली ने उत्तर दिया, चिंता मत करो और घर जाओ। घर पहुंचकर मछुआरे ने पत्नी से पूछा, बताओ अब क्या हमारे पास काफी रोटी है या नहीं? पत्नी ने उत्तर दिया, हमारे पास खाने के लिए अब काफी रोटी है, पर एक और समस्या उत्पन्न हो गई है। मछुआरे ने पूछा, अब क्या हुआ? पत्नी बोली, हमारी झोपड़ी काफी टूट फूट गई है, इसीलिए छत और दीवारों से पानी रिसने लगा है। इसलिए तुम सुनहरी मछली के पास जाकर कहो कि वह हमारे लिए एक नया और बड़ा घर बना दे। मछुआरा फिर से समुद्र तट पर गया और उसने सुनहरी मछली को आवाज दी, सुनहरी मछली बाहर आओ। मछली तैर कर बाहर आ गई और उसने मछुआरे से पूछा, कहो क्या कहते हो? मछुआरा थोड़ा संकोच के साथ बोला, मेरी पत्नी पुरानी झोपड़ी में नहीं रहना चाहती, इसलिए कृपा करके हमारे लिए एक नया और बड़ा घर बना दो। चिंता मत करो, घर जाओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह कहकर मछली वापस समुद्र में चली गई। मछुआरे ने घर जाकर देखा तो उसकी पुरानी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर और बड़ा घर बना हुआ था। उसने चैन की सांस ली कि अब पत्नी खुश होगी क्योंकि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। इसलिए अब वह मुझे सुनहरी मछली से कुछ मांगने के लिए नहीं भेजेगी। किंतु अगले ही दिन पत्नी दोबारा मछुआरे से बोली, सुनहरी मछली के पास जाओ और उससे कहो कि मैं अब एक मछुआरे की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि इस द्वीप की रानी बनकर रहना चाहती हूँ। मछुआरा फिर से समुद्र तट पर गया और सुनहरी मछली को बुलाकर अपनी पति की इच्छा उसे बताई। सुनहरी मछली ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। वहाँ से जब मछुआरा अपने घर के समीप पहुँचा तो उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर आलीशान महल है जिसके द्वार पर पहरेदार खड़े हैं। जब वह अंदर पहुँचा तो वहाँ का नजारा अलग था। उसकी पत्नी रानी बनकर सिंहासन पर बैठी थी। उसने जब उसे पास जाकर पुकारा तो वह नाराज हो गई कि उसने रानी क्यों नहीं कहा। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया, इस बूढ़े मछुआरे को पकड़कर जेल में डाल दो और इसकी अच्छी तरह पिटाई करो। सिपाहियों ने रानी की आज्ञा का तुरंत पालन किया।
उन्होंने मछुआरे की इतनी पिटाई की कि वह अपनी टांगों पर चलने के योग्य भी नहीं रहा। थोड़े दिनों तक मछुआरे की पत्नी रानी बनकर काफी खुश रही, पर जल्द ही फिर से उसका मन भटकने लगा। उसने सिपाही को आदेश दिया, मछुआरे को कैद से निकालकर मेरे सामने पेश करो। जब मछुआरा लड़खड़ाता हुआ रानी के पास पहुंचा, तो वह बोली, इसी वक्त समुद्र तट पर जाओ और सुनहरी मछली से कहो कि मैं इस छोटे से द्वीप की रानी बनकर संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरे राज्य की महारानी बन जाऊँ। मछुआरे ने पहले तो सुनहरी मछली के पास जाने से मना कर दिया, पर जब रानी ने उसे जान से मारने की धमकी दी तो उसे जाना ही पड़ा। समुद्र तट पर जाकर उसने सुनहरी मछली को पुकारा, पर वह बाहर नहीं निकली। दो तीन बार पुकारने के बाद समुद्र में जोर का तूफान आया और दिन में ही अंधेरा छा गया। सुनहरी मछली ने समुद्र तट पर आके पूछा, कहो अब तुम क्या जाते हो? मछुआरा बोला, मेरी पत्नी बुरी तरह से पागल हो गई है, इसलिए अब वह रानी बनकर संतुष्ट नहीं है, वरन अब पूरे राज्य की महारानी बनना चाहती है। सुनहरी मछली ने कोई उत्तर नहीं दिया और तैरकर समुद्र के नीचे चली गई। मछुआरा भी घर की ओर लौटने लगा। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल का कोई नामो निशान नहीं था और उसकी जगह छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी के बाहर उसकी पत्नी फटी और पुरानी साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। जीवन फिर से पुराने ढर्रे पर चलने लगा। काश मछुआरे की पत्नी ने अधिक लालच न किया होता तो वे हमेशा सुख से रह रहे होते।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े, और उनकी कहानी का शीर्षक था लालच बुरी बला। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक बाल गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दुम। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, पर कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को एक विनोद सूझा। उसने कहा, बात यहाँ पहुँची कि अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता है। जिन सज्जन का यह विचार था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, वह बोले, मेरा विचार है कि अगर ठीक ढंग से प्रयत्न किया जाए तो कुत्ते की दुम भी सीधी की जा सकती है। राजा ने विनोद के आगे बढ़ने की सोची। बोले, ठीक है, आप लोग यह प्रयत्न कर देखिए। राजा ने 10 चुने हुए व्यक्तियों को एक एक कुत्ते का पिल्ला दिलवाया और 6 मास के लिए हर मास 10 स्वर्ण मुद्राएं देने का निश्चय किया। इन सभी लोगों को कुत्ते की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन 10 व्यक्तियों के लिए तेनाली राम भी एक उसमें से था। शेष 9 लोगों ने इस 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिशें की। एक ने पिल्ले की पूंछ के छोर पर भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाल दिया। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज पूंछ की मालिश करवाना शुरू कर दिया। चौथे ने कोई दवा दी। उसका विचार था कि दवा से दुम सीधी हो जाएगी। पांचवे ने एक ब्राह्मण को घर रखा छोड़ा, जो प्रतिदिन पूंछ सीधी हो जाने के लिए इसके लिए पाठ पूजा करता था। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ जाए, जो कई तरह उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम का प्रयत्न जुटा रहा था। सातवें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवाया। आठवां व्यक्ति कुत्ते के सामने बैठकर 6 मास तक प्रतिदिन उसे भाषण देता रहा कि दुम सीधी रखो भाई, सीधी रखो। नवा व्यक्ति पिल्ले को मिठाइयाँ खिलाता रहा, शायद इससे मान जाए और अपने दुम सीधी कर ले। तेनाली राम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से कि वह जीवित रहे। भूखा रह रहकर बेचारा पिल्ला इतना कमजोर हो गया कि उसके शरीर के सारे अंगे निर्जीव हो गए। उसकी पूंछ भी बेजान से लटक गई, जो देखने में सीधी जान पड़ती थी। 6 मास बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने हट्टे कट्टे और स्वास्थ्य पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले की पूंछ पर से वजन हटाया गया तो वह एकदम टेढ़ी होकर ऊपर हो गई। दूसरे की दुम जब नली में से निकाली गई तो वह भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की भी पूंछें टेढ़ी की टेढ़ी निकली। मालिश, दवाओं, पूजा पाठ और मंत्रों का कोई लाभ नहीं हुआ, ना ही ऑपरेशन, उपदेश और मिठाइयों से कोई बात बनी। राजा ने तेनाली राम से कहा, तुम्हारा पिल्ला कहाँ है, उसे भी देखें। तेनाली राम ने अपना अधमरा पिल्ला राजा के सामने कर दिखाया और उसे सारे अंग ढीले रहे थे, पूंछ भी निर्जीव सी लटक रही थी। तेनाली राम बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कहीं के, राजा ने कहा, बेचारे निरीह पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई, तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी भी शक्ति नहीं है। महाराज, अगर आपने कहा होता इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने का था, जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद कर उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव अवश्य मुर्दा बना सकते हैं।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब और उनकी कहानी का शीर्षक था कुत्ते की दुम। दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपने समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक से, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: गुरुवर, जंगली बीज का ये दृष्टांत हमें समझा दीजिए।
1: अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है, कटनी संसार का अंत है, लुनने वाला स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। यहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले।
2: ईसा, इस दृष्टांत के माध्यम से दो चीजों को प्रकट कर रहे हैं। पहला ये कि किसी को परखने वाला मात्र ईश्वर है, और दूसरा ये कि अंतिम न्याय भी ईश्वर का ही होगा, जब हरेक को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा।
1: स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वो तो सब बीजों से छोटा है, मगर बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं।
2: किसी भी महान वस्तु की शुरुआत एक छोटे से कण से होती है। छोटे पद से गुजरकर व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। ईसा अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि भले ही वे संख्या में कम हो, उन्हें प्रयत्न जारी रखने हैं, ताकि पृथ्वी तल से हिंसा, बैर, मतभेद व अशांति दूर हो।
1: स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया।
2: ईश्वर का राज्य अदृश्य है, परंतु कार्यशील है। ईश्वरीय शक्ति मनुष्य को सच्चाई की ओर प्रेरित करती है, मनुष्य को अपने उद्देश्य तक ले जाने में सहायक बनती है।
1: स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छुपा देता है। तब वो उमंग में जाता और सब कुछ बेच कर उस खेत को खरीद लेता है।
2: मनुष्य को कीमती चीजें उच्च पद आसानी से नहीं मिलता, उसे दिन रात मेहनत करनी होती है। परिश्रम व ईमानदारी व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाती है। स्वर्ग का राज्य कोई अनोखी वस्तु नहीं है, न किसी अन्य विश्व का एक राज्य है, वरन यह हर मानव के भीतर बसी हुई प्रेम, ईमानदारी व सद्भावना का राज्य है, जिसे मानव को अपने व्यवहार तथा कार्यों के आटे में मिलाना है।

जैसा आपने सुना कि स्वर्ग के राज्य को ईसा ने विभिन्न उदाहरणों से समझाया, कहीं वे उसे अच्छे बीज, कहीं राई के नन्हे से दाने, कहीं खमीर, तो कहीं खेत में छिपे हुए खजाने के समान बताते हैं। लेकिन ये समानता सीमित नहीं है। ईसा कहते हैं

स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुआरे उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और बेकार मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे।

मनुष्य अपने दैनिक जीवन के कार्यों और व्यवहार से अपने आसपास के वातावरण को स्वर्गिक बना सकता है, परंतु पहले उसे अपने भीतर से पाप, बुराई और कुकर्म दूर करने होंगे।

ईसा का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वो जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है।

दोस्तों, अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रम को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपने समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य से। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत एक वार्ता जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य और पर्यावरण। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता हैं स्वतंत्र कुमार ओझा जी।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था स्वास्थ्य और पर्यावरण। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। दोस्तों, अब आप सभी को स्वतंत्र जी की ये बातें तो समझ आ ही गई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को आप अपने करीबी परिजनों को भी बताएंगे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। दोस्तों नमस्कार और पिता परमेश्वर की जय। इंतजार खत्म हुआ और अब आ गई है आपकी रेडियो दोस्त ज्योति फिर ढेर सारे नए कार्यक्रमों के साथ। दोस्तों अभी की सभा समय 3 से 4 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम नाटक। दोस्तों मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी जो मैंने इंटरनेट में पढ़ी है जो किसान भाइयों के लिए है। सतीश सक्सेना जी लिखते हैं कि बुरे हाल में साथ न छोड़े, देंगे साथ किसानों का। जुड़ा हमारा जीवन गहरा भोजन के रखवालों से, किसी हाल में साथ न छोड़े, देंगे साथ किसानों का। चलो किसानों के संग बैठे, जग चेतना जगाएंगे, सारा देश समझना चाहे, कष्ट कीमती जानों का। दोस्तों आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम कृषि जगत।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: आपका भी स्वागत है और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: एक बात यह बताइए मुखिया जी कि समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना, हाँ, निःशुल्क बकरी वितरण एवं अनुदान की क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, उन्नत नस्ल यानी ब्लैक बंगाल के 3 प्रजनन योग्य बकरियों का निःशुल्क वितरण करने की योजना है।
0: अच्छा,
1: इसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों का चयन करना है। इस पूरे योजना का संचालन जीविका के माध्यम से किया जाना है।
0: इस योजना के तहत पशुपालकों को किस तरह की रियायत देने की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है मुखिया जी, और इसके लिए किस तरह के लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
1: देखिए, 20 बकरी एवं 1 बकरा के फार्म की स्थापना पर 50% यानी अधिकतम 1,00,000 रुपए अनुदान की योजना है।
0: अच्छा,
1: इसके लिए पशुपालकों को उन्नत नस्ल के यानी ब्लैक बंगाल के 20 बकरी एवं 1 बकरा देने की योजना है। राज्य के सभी जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुमानित लागत जो तय किया गया है वो है 2,00,000 रुपए। इसके लिए आवेदक चाहे तो स्वलागत से या बैंक ऋण से बकरी फार्म स्थापित कर सकते हैं।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि स्वलागत अथवा बैंक ऋण दोनों पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई है? अगर ऐसा है तो पशुपालकों को अनुदान की राशि कब प्राप्त होगी?
1: स्वलागत अथवा बैंक ऋण दोनों के लिए योजना लागत का 50% अधिकतम 1,00,000 रुपए प्रति इकाई फार्म स्थापना के बाद अनुदान दिया जाएगा।
0: अच्छा,
1: ऑनलाइन आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर अपने मतदाता पहचान संख्या, आधार संख्या, मोबाइल संख्या से पंजीकरण कराने के पश्चात आवेदन भरकर सभी आवश्यक दस्तावेज एवं फोटो अपलोड किए जा सकते हैं।
0: जी,
1: फॉर्म समर्पित करने के बाद प्राप्ति रसीद प्रिंट किया जा सकता है।
0: ऑनलाइन जहां तक आवेदन की बात करने की योजना है मुखिया जी, तो कितने दिनों के बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त किया जा सकता है अगर कोई पशुपालक ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो?
1: विभाग के वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन प्रपत्र एवं कार्यान्वयन अनुदेश डाउनलोड किया जा सकता है।
0: जी,
1: विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज तथा आवेदक के फोटो के साथ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन के 45 दिनों के अंदर जमा करके प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकती है।
0: 45 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है?
1: हाँ, 1.5 महीने के अंदर।
0: जी,
1: लाभुकों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए जिला पशुपालक अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
0: वैसे तो किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं मुखिया जी, लेकिन फिर भी किसानों की दशा सुधरने का नाम नहीं दे रही।
1: हाँ।
0: वैसा ही एक महत्वाकांक्षी योजना है सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए तो अच्छा होगा।
1: भारत सरकार ने किसानों के कल्याण और फसलों की उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया है।
0: जी,
1: फरवरी 2015 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सॉयल हेल्थ कार्ड योजना इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।
0: अच्छा,
1: ये सत्य है कि कृषि उत्पादन के लिए मृदा यानी मिट्टी
0: जी
1: एक बेहद अहम घटक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसकी गुणवत्ता में सुधार करने से ही बेहतर उत्पादन तथा किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
0: इस योजना से किसानों को किस तरह का फायदा होने का अनुमान है और ये जो योजना है उसकी बेहतरी के लिए किस तरह के उपाय किए गए हैं?
1: ये योजना किसानों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।
0: अच्छा,
1: भारत सरकार दृढ़ता के साथ इस योजना को सफल बनाने हेतु प्रयासरत है एवं सरकार ने मार्च 2017 तक सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
0: जी,
1: सॉयल हेल्थ कार्ड योजना भारतीय किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी और उनके लिए फायदेमंद होगी।
0: अच्छा,
1: ये योजना निश्चित रूप से प्राकृतिक संसाधनों से अधिक पैदावार प्राप्त करके किसान की आय में वृद्धि प्रदान करेगी, ऐसा सरकार का मानना है।
0: क्या इस योजना को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से कुछ राशि भी आवंटित की गई है? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी राशि मुहैया कराई गई है मुखिया जी?
1: इस योजना के माध्यम से किसानों को मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
0: अच्छा।
1: एवं देश एक स्वस्थ फसल और स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर होगा, जिससे देश में उन्नति होगी। गत वर्ष के मुकाबले 160% की बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2016-17 के लिए 368.30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।
0: जी,
1: यानी 368 करोड़ मान लीजिए इसको।
0: जी,
1: 31 मार्च 2017 तक 2.53 करोड़ मृदा नमूनों के लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर 6 2016 तक 2.21 करोड़ मृदा नमूने एकत्र किए गए, जिससे 12.10 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं।
0: 2016-2017 में कितना करोड़ मृदा नमूने को एकत्र करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है?
1: 2016-17 के दौरान 0.33 करोड़ मृदा नमूनों को एकत्र किया जा रहा है।
0: अच्छा,
1: है ना, ये यानी मतलब हुआ ये लगभग 33 लाख हुआ, है ना
0: जी।
1: तो इससे 1.82 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड तैयार किए जाएंगे।
0: जी,
1: किसानों के अगर फायदे की बात करें तो मुख्य रूप से किसानों के 2 वर्ष के अंतराल पर सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। सॉयल हेल्थ कार्ड 2 साल पर दिए जाएंगे।
0: जी,
1: यानी मिट्टी का स्वास्थ्य की जानकारी उसमें मिलती है, जिन चीजों की जरूरत है मिट्टी को। तो सॉयल हेल्थ कार्ड से किसानों को बृहद पोषक तत्वों और उर्वरकों का फसलवार विवरण मिल सकता है। ये कार्ड सुरक्षात्मक उपाय की भी सलाह देता है, जिससे किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करके बढ़िया फसल प्राप्त हो सकती है। फार्म यार्ड मेन्योरे, रूरल एवं सिटी कंपोस्ट, टॉर ग्रीन मेन्योरे के उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा।
0: ऐसा भी कहा जा रहा है मुखिया जी कि एक कार्ड अनेक लाभ, इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, यही जिसका आपने अभी जिक्र किया है या इसके इतर भी कुछ है?
1: वो भी है, इसके साथ संतुलित मात्रा में उर्वरकों की जानकारी मिलेगी।
0: जी,
1: खेती की लागत को कम करते हुए अधिक आय पर जोर दिया जाएगा। अच्छी फसल हेतु बेहतर मृदा प्रबंधन पर जोर होगा। उच्चतर पैदावार के लिए फसल विविधीकरण को अपनाया जा सकता है।
0: ऐसा कहा जा रहा है कि जैविक खेती जो है, खास करके इसकी चर्चा हम लोग पिछले कृषि कार्यक्रम में बहुत कर चुके हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि जैविक खेती भारत का ग्रीन ड्रीम है।
1: हाँ।
0: किसान परक भारत सरकार मिट्टी पारिस्थितिक तंत्र को और लोगों तक पहुंचाना चाहती है और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में इसकी भूमिका को और तराशना चाहती है और इसके लिए यह कार्य जो है काफी तीव्र गति से चल रही है।
1: देखिए वीरेंद्र जी, परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए व्यापक केंद्रीय प्रायोजित योजना की शुरुआत है।
0: जी,
1: इसे प्रत्येक 50 एकड़ यानी 20 हेक्टेयर पर क्लस्टर आधार पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।
0: जी,
1: इसका लक्ष्य 3 वर्षों की अवधि में 2015-16 से 17-18 में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल को शामिल करते हुए 10,000 क्लस्टर्स को बढ़ावा देना है।
0: अच्छा।
1: भारत सरकार मृदा पारिस्थिति तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पूरे जोर शोर से कार्यरत है। जैविक खेती एक पर्यावरण अनुकूलन प्रणाली है। इसका उद्देश्य रसायन मुक्त उत्पादों और लाभकारी जैविक सामग्री का इस्तेमाल को बढ़ाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इससे उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए मृदा को स्वस्थ और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है।
0: परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किस तरह के कार्य को प्रोत्साहित करने की योजना हमारी सरकार के पास है मुखिया जी?
1: वर्ष 2015-16 में वर्तमान सरकार ने एक क्लस्टर आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें किसानों को गठन समूहों तथा पीजीएस प्रमाणीकरण द्वारा जैविक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया।
0: अच्छा।
1: अगले 3 वर्षों में सरकार ने जैविक खेती के तहत 5 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करके 10,000 समूहों के गठन का लक्ष्य रखा है।
0: अच्छा,
1: जैविक खेती के लिए चुने गए क्लस्टर की सीमा 50 एकड़ तक होगी। प्रत्येक किसान को बीज, फसलों की कटाई तथा बाजार में उपज की ढुलाई हेतु 3 वर्षों में ₹20,000 प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा।
0: इसके अलावा इस योजना के तहत सरकार किस तरह के कदम उठाने की दिशा में प्रयासरत है मुखिया जी?
1: इसके अलावा इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार पारंपरिक संसाधनों का इस्तेमाल करके पर्यावरण अनुकूल कम लागत की प्रौद्योगिकियों को अपनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देगी।
0: जी,
1: उच्च प्रतिफल प्राप्त करने के लिए जैविक उत्पादों को बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना में घरेलू उत्पादनों तथा किसानों को शामिल करके जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में वृद्धि करने का विचार है।
0: एक बात ये बताइए मुखिया जी कि इस योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की भी योजना है, ऐसा सुनने में आ रहा है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ सिक्किम के बारे में।
1: पूर्वी भारत का ये राज्य सिक्किम अब आधिकारिक रूप से एक जैविक राज्य है।
0: अच्छा,
1: सिक्किम फलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है।
0: जी,
1: लगभग 75,000 हेक्टेयर जमीनी क्षेत्र वाले सिक्किम को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार प्रमाणित जैविक खेती के में परिवर्तित कर दिया गया है।
0: आशा की जानी चाहिए मुखिया जी कि ये सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो योजनाएं आने वाली है, उसका भरपूर लाभ हमारे किसान भाई उठा पाएंगे ताकि उनकी खेती उन्नत हो। अगले कार्यक्रम में खेती किसानी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। प्रणाम मुखिया जी।
1: प्रणाम।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। आपका भी धन्यवाद
2: और अपने श्रोताओं का भी।
0: आज के इस कार्यक्रम में तीन तलाक से संबंधित मुद्दे जो लंबे समय से बहस का विषय बना हुआ है, उसी के संदर्भ में आप दोनों से बात करना चाहेंगे
1: जी।
2: बिल्कुल वीरेंद्र जी, हालांकि लंबे समय से बहस तलब तीन तलाक के मसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सिरा देने की कोशिश की है
0: जी। जी,
2: अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक कहा है। इसे क्रूरता मानते हुए कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
0: आपका कहना है श्याम जी कि अदालत ने कुछ बात साफ की है,
2: हाँ,
0: जिन पर गौर करने की जरूरत है। अदालत ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना अलग रुख बनाकर कोई फैसला नहीं थोपा, बल्कि यह कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर नहीं होता।
1: आप एकदम सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी। सवाल ये भी उठाया गया कि जब पवित्र कुरान भी तीन तलाक को अच्छा नहीं मानता, तो फिर मुस्लिम समाज का एक वर्ग इस्लामिक कानून की गलत व्याख्या क्यों कर रहा है?
0: जी जी,
1: ये फैसला दो अलग अलग याचिकाओं पर आया है। विडंबना ये है कि भारत का मुस्लिम समाज अनेक वर्षों से एक ऐसी बहस में उलझा हुआ है जिसका समाधान कई देश पहले ही निकाल चुके हैं। अब तक ये काम अपने यहाँ भी हो जाना चाहिए था
0: जी, बिल्कुल।
1: लेकिन इस पर एक तो मुस्लिम समाज में ही बहस खत्म नहीं हुई, दूसरे बाकी समाज में भी राजनीति शुरू हो गई।
0: श्याम जी, तीन तलाक पर बहस का सिलसिला कब से शुरू हुआ और उसके बाद किन किन हालातों से यह गुजरा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: देखिए, तीन तलाक पर बहस का यह सिलसिला साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका के बाद तेज हुआ जिसमें उत्तराखंड की शारा बानो ने शादी के बाद 15 साल तक अपने साथ हुए सुलूक और फिर अचानक बिना उसकी जानकारी के शौहर द्वारा तीन तलाक देकर मुक्ति पा लेने का विरोध किया था।
0: जी जी,
2: शायरा ने एक तरफा तीन तलाक को खत्म करने की मांग की थी। इसके बाद से ही कई मुस्लिम संगठन और केंद्र सरकार आमने सामने दिखाई दिए थे।
0: कपूर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तीन तलाक के मुद्दे पर सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये दोनों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया था उस समय?
1: देखिए वीरेंद्र जी, सरकार ने तीन तलाक का विरोध किया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। तीन तलाक खत्म करने के पक्ष में तमाम तर्क हैं
0: जी।
1: ऐसा मानने वालों का तर्क है कि जब मिश्र ने 1929 में ही तीन तलाक की कुरीति से मुक्ति पा ली है और पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, कुवैत, इराक, इंडोनेशिया, मलेशिया, अल्जीरिया, ट्यूशिया, ईरान, सीरिया, लीबिया, श्रीलंका और सूडान जैसे देशों में बिना प्रक्रिया पूरी हुई तलाक पूरा नहीं होता, तो फिर भारत जैसे विचारशील देश में अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ?
0: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस विषय पर क्या तर्क है श्याम जी, क्या वह इस तर्क से सहमत है?
2: वीरेंद्र जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे बिल्कुल अलग राय रखता है।
0: अच्छा।
2: बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम विवाह, तलाक और गुजारा भत्ता को कानूनी विवाद का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता।
0: अच्छा।
2: उसकी राय में न अदालत इसमें दखल दे सकती है न ही सरकार।
0: अगर कानून, सरकार और राजनीति से अलग जाकर इस मुद्दे पर गौर किया जाए तो आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कपूर जी?
1: देखिए वीरेंद्र जी, दरअसल कानून, सरकार और राजनीति की बहस से अलग जाकर भी देखें तो आज के विकसित समाज में महिलाओं को बराबरी का हक देने से किसी को कैसे इनकार हो सकता है?
0: जी बिल्कुल।
1: जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हों, तब यह सोचने की बात ही अलग है, उसकी कल्पना से हम लोग परे हैं कि कोई अपनी मर्जी से, उत्तेजना में या सोचे समझे तरीके से ही सही, सामने से या टेलीफोन से तलाक तलाक तलाक बोल दे और एक पवित्र रिश्ते का अचानक अंत हो जाए। इस्लाम भी रिश्ता

0: छोड़ने के लिए सिर्फ इसी तरीके की बात नहीं करता।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं कपूर जी कि वहां तलाक के कई तरीके हैं। तीन तलाक उनमें से एक है। 3 महीने के अंतराल में तलाक पूरा होने की अहम बात भी है, जो टूटते रिश्ते के फिर से जुड़ने की संभावना बनाती है।
2: जी जी,
1: इस्लाम भी रिश्ता बचाने की गुंजाइश रखने वाले तरीकों की ही तरफदारी करता है। मुस्लिम महिलाओं का बड़ा तबका भी 3 तलाक के खिलाफ है। माना जा सकता है कि धार्मिक मामलों में अदालत क्यों दखल दे, लेकिन जब समाज और धार्मिक संगठन हल नहीं निकाल पाते हैं तब अदालतों को सक्रिय होना ही पड़ता है।
2: बिल्कुल, इस बात को तो सभी मानते हैं। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि बिना ठोस कारण तलाक देना गलत है, इसे कहीं से भी जायज नहीं कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिमों में बहुविवाह और तलाक से जुड़े मामलों की जटिलताओं को सुनते हुए, उसकी सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की।
2: जी,
0: अदालत ने कहा कि यदि पत्नी के व्यवहार या बुरे चरित्र के कारण वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाए या हो गया हो तो पुरुष विवाह विच्छेद कर सकता है और इस्लाम में इसे सही माना भी गया है।
2: लेकिन श्याम जी, बिना कोई ठोस कारण के तलाक को धार्मिक या कानून की निगाहों में सही नहीं ठहराया जा सकता, तो फिर इस बात पर बहस क्यों हो रही है?
1: देखिए, बिल्कुल सही है। कई इस्लामिक देशों में पुरुष को कोर्ट में तलाक के कारण बताने पड़ते हैं।
2: जी,
1: तभी तलाक मिल पाता है। ऐसे में 3 तलाक को सही नहीं माना जा सकता।
2: ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया था कपूर साहब,
0: जी,
2: याची पक्ष का तर्क क्या था? क्योंकि यह मसला जो है कई वर्षों से उलझा हुआ है, महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है।
0: देखिए, याची पक्ष का तर्क ये था कि शादी करने वाली महिलाएं बालिग हैं और उन्होंने जिन पुरुषों से शादी की है उन्होंने अपने पूर्व पत्नियों को तलाक दिया है। संविधान अनुच्छेद 21 के तहत स्वेच्छा से किसी के साथ रहने की अनुमति देता है, इसलिए पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए।
2: इसी मसले पर सरकारी वकील की क्या दलील थी श्याम जी, इसको जानना जरूरी है। साथ ही साथ अदालत का इस मामले में क्या रुख रहा था?
1: दोनों मामलों में महिलाओं के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है।
2: जी,
1: इस आधार पर पुलिस जांच और कार्रवाई के लिए उन्हें व उनके साथ रह रहे पुरुष को तलाश रही है। केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की है।
2: अच्छा,
1: केंद्र सरकार ने कहा है कि अदालत ने उसके रुख को सही साबित किया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा।
2: बहुत सारे राजनीतिक दल इस मसले पर सरकार के साथ खड़े नहीं दिखते। वजह है, चाहे जो भी हो सकता है कि वो वोट की राजनीति के चलते ऐसा कर रहे हैं, या सही में वो महिला अधिकारों के हिमायती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार समान नागरिक संहिता थोपने की कोशिश न करे। इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे कपूर साहब?
0: देखिए वीरेंद्र जी, हर राजनीतिक दलों के अपने अपने वोट बैंक हैं।
2: जी,
0: वे अपने ही हिसाब से इस विषय पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन अदालत की अवमानना न हो इससे हर कोई बचना चाहता है।
2: जी जी,
0: जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हम अदालत की टिप्पणी का सम्मान करते हैं, कोई भी धार्मिक मान्यता संविधान के ऊपर नहीं है।
2: जी,
0: लेकिन हमारा संविधान हमें हमारे धर्म के अनुसार अपने धार्मिक रस्म का पालन करने की अनुमति देता है।
2: जी जी,
0: लेकिन 3 तलाक के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय पर समान नागरिक संहिता नहीं थोपी जाए। वहीं कुछ राजनीतिक दलों का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति न हो। 3 तलाक का मुद्दा वोट बैंक की राजनीति की वजह से शाहबानो मामले की राह पर नहीं जाना चाहिए।
2: इस पूरे मसले पर मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने किस तरह की उम्मीद जताई है श्याम जी? उन्हें क्या लगता है कि इस तरह मतभेद के कारण उनको न्याय मिल पाएगा?
1: ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा है कि 3 तलाक की प्रथा अनुचित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम महिलाएं संविधान के साथ साथ इस्लामिक कानूनों के आधार पर न्याय पाएंगी।
2: एक बात मैं यहाँ पर आप दोनों से जानना चाहूँगा कि चाहे कोई भी धार्मिक बोर्ड हो, सभी तो संविधान के दायरे में ही आते हैं ना?
0: जी, आपका सवाल सही है वीरेंद्र जी। दारुल उलूम ने कहा कि जब संविधान में ही पर्सनल लॉ बोर्ड को संवैधानिक मान्यता दी गई है तो उसे कैसे संविधान से ऊपर बताया जा सकता है?
2: जी,
0: कानून के जानकारों को पहले कुरान की जानकारी भी करनी चाहिए। उलेमा ए कराम ने कहा कि तलाक एक दो हो या एक साथ तीन, दोनों ही गलत हैं।
2: अच्छा,
0: उलेमा या मुसलमान तीन तलाक की वकालत नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो तीन तलाक शरीयत के मुताबिक लागू होगा, जिसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता।
2: श्याम साहब, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उलेमा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले से वे संतुष्ट नहीं हैं और शायद इसीलिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: तीन तलाक पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद शहर और देहात की मस्जिदों में नमाज के बाद तकरीरें शुरू हो गई हैं।
2: जी जी,
1: बरेलवी मरकज के उलेमाओं में हाई कोर्ट के रुख को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भी एक राय बनाई गई है।
2: अच्छा,
1: दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता मुफ्ती सलीम नूरी ने कहा कि कुछ लोगों ने साजिश के तहत शरीयत के खिलाफ कोर्ट में रिट दाखिल की।
2: अच्छा,
1: 99% मुसलमान शरीयत पर अमल करते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे।
2: कपूर साहब और श्याम जी, ये तो हो गई तीन तलाक का मामला। एक मामला जो अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है लोकसभा में हंगामे के बीच आयकर संशोधन बिल बिना बहस किए पास कर दिया जाना।
0: जी हाँ, हंगामा के बीच लोकसभा ने आयकर कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के कानून की शक्ल लेने के बाद काला धन रखने वाले 50% टैक्स देकर सफेद कर सकते हैं।
2: अच्छा,
0: ऐसा नहीं करने पर अघोषित आय पर 85% तक कर चुकाना होगा।
2: राज्यसभा में इस बिल को पास करने में कोई अड़चन नहीं आएगी श्याम जी, क्योंकि वहां तो सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, ऐसा हमें लगता है।
1: देखिए, राज्यसभा में सरकार ने इस विधेयक को मनी बिल के तौर पर पेश किया है।
2: अच्छा,
1: यानी
2: अच्छा,
1: वित्त विधेयक के तौर पर।
2: जी जी,
1: इसलिए राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद कोई अड़चन नहीं आएगी। यानी कि आप जानते हैं, वित्त विधेयक को राज्यसभा में न भी पास कराया जाए तो पास माना जाएगा।
2: जी बिल्कुल।
1: तो नोटबंदी को लेकर हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने यह विधेयक पेश किया था। आयकर कानून संशोधन विधेयक कार्यसूची में पारित कराने के लिए शामिल था, पर विपक्ष नोटबंदी से पैदा हुई समस्याओं के साथ इस विधेयक पर चर्चा की मांग कर रहा था।
2: अच्छा अच्छा,
1: लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के कई संशोधनों को नामंजूर करते हुए बिना किसी चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया।
2: जल्दबाजी में विधेयक पारित करवाना क्या सरकार की मजबूरी थी या फिर वैसे ही मौके की तलाश में थी कि विधेयक पर चर्चा ही न हो?
0: देखिए, एक बात तो सही है कि नोटबंदी के कारण संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित करनी पड़ रही थी। इसके बीच इस विधेयक को पारित करवाना कहाँ तक उचित है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा होता इस पर विस्तार पूर्वक अगर चर्चा होती।
2: श्याम जी और कपूर साहब, इसके बारे में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए इंतजार करेंगे हम लोग अगले कार्यक्रम का। इस सुंदर जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपको भी धन्यवाद।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कानून व्यवस्था में केंद्र की भूमिका क्या है? इतना दिमाग में जोर न डालिए, मैं बताती हूँ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अपराध रोकना, पता लगाना, दर्ज करना, जांच पड़ताल करना और अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और खासकर पुलिस को दी गई है। संविधान के मुताबिक ही केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण, अस्त्र-शस्त्र, संचार, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो साथियों, अब तो आपको पता चल गया ना कि केंद्र की भूमिका क्या होती है। और आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोताओं, कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम में आप सभी का स्वागत है और अभी की वार्ता का शीर्षक है गांधी जी की चोटी और जिसकी लेखिका व प्रस्तुत करता है भवानी कौल जी और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

व्यक्ति विशिष्ट वार्ता सुनिए गांधी जी की छोटी छोटी बातें। आज हम जिक्र करेंगे भारत के आन बान और शान महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि व्यक्ति विशिष्ट के रूप में उनसे विशिष्ट भला कौन हो सकता है। बहुत ही खास हैं वो हम भारतवासियों के लिए। वैसे तो दोस्तों, उनके बारे में जितना भी लिखा जाए उतना ही कम है। उनके जीवन की छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी बातें जो निजी जीवन में उतारने लायक है, आज हम इन्हीं छोटी परंतु प्रमुख आदतों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, यह आप सबको पता है। गांधी जी का जीवन कई कई अच्छाइयों एवं महानताओं से भरा पड़ा है। उनकी आदतें व्यावहारिकता से बंधे होते हैं जो जीवन में हमेशा काम आते हैं, पल पल हमें बल प्रदान करते हैं और हिम्मत देते हैं। दोस्तों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हम गांधी जी के बारे में आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे, वह ये है दोस्तों कि बापू नियम के बड़े पक्के थे। वे अनुशासन में जीना पसंद करते थे। यूं कहा जाए कि उनका पूरा जीवन नियमों पर चला और यह उन्हें प्रिय था। गांधी जी रोज शाम को प्रार्थना करते थे, यह उनका रोज का नियम था, बिल्कुल भोजन करने जैसा, क्योंकि उन्हें मालूम था दोस्तों कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। एक बार वे यात्रा पर गए हुए थे, एक शाम को महीन कपड़ा काटने वालों का दंगल देखने गए। देखते देखते उन्हें यह पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया, वे उसमें खो गए और समय भूल गए। थककर घर आए तो बिना प्रार्थना किए ही सो गए। उनके साथी पहले ही आकर सो गए। शाम को प्रार्थना करना वे भी भूल गए। सुबह की प्रार्थना के लिए दूसरे दिन नियम के अनुसार 4 बजे सब उठे और प्रार्थना सभा में सभी शामिल हुए। बापू ने अपने साथियों से पूछा, रात को सोने से पहले आप लोगों ने प्रार्थना की थी? उत्तर मिला, नहीं। जब वहां से लौटे तो थक गए थे, इसलिए बिना प्रार्थना किए ही सो गए। बापू ने कहा, मैं भी सो गया, पर रात को 1 बजे नींद खुली तो याद आया प्रार्थना नहीं की। इतना खराब लगा कि तब से अब तक जाग रहा हूं। उनके साथियों को गांधी जी के इस कड़े नियम से यही सबक मिली दोस्तों कि भले ही देर हो, समय न मिले, पर सुबह शाम की प्रार्थना जरूरी है। इस घटना के बाद गांधी जी कहीं भी सफर में होते थे, मोटर रोककर प्रार्थना करते, पर करते जरूर थे। रेल में भी वे प्रार्थना करने से नहीं चुकते थे। सवेरे शाम की प्रार्थना उनकी रोज की आदतों में थी। सचमुच में दोस्तों, प्रार्थना में बड़ी प्रबल शक्ति होती है। इससे हमें बल मिलता है, जीने की हिम्मत मिलती है। मुसीबतों एवं परेशानियों के समय ईश्वर से बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वाकई आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बड़े बड़े दुखद परिस्थिति से आप प्रार्थना के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। तो आप प्रार्थना करके देखिए, आपको शांति मिलेगी और दुख से उबरने की हिम्मत भी मिलेगी। दोस्तों, अपने बच्चों को भी प्रार्थना करने को कहें ताकि ताउम्र यह आदत बनी रहे। यही प्रार्थना आगे चलकर उनके लिए ताकत बन जाएगी। आप ईश्वर को प्रार्थना के द्वारा जितना धन्य लिखें दोस्तों। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण बात गांधी जी के बारे में यह है दोस्तों कि गांधी जी हमेशा अपने कामों एवं नियमों के लिए दूसरों से अलग हैं। उनका दृढ़ निश्चयी होना एवं मजबूत इरादे उन्हें महान बनाते हैं। सन 1930 को वे यरवदा जेल में थे। काका कालिलकर गांधी जी के साथ जेल में थे। वे जेल में कताई के लिए पुनी बनाना सीखते थे। गांधी जी काफी कर्मठ व्यक्ति थे। जेल में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण कार्य करना नहीं छोड़ा। वे जहां भी होते थे अपना कार्य करना नहीं भूलते थे। पुनी बनाने के लिए कपास पींचना पड़ता था। उसके लिए पिंजन का तार कई बार खराब हो जाता था।
क्योंकि कपास के रेशे लाए जाते और उन पत्तों से यह तार साफ किया जाता। लगभग 4-5 पत्तों से यह काम हो जाता था। पर काका कालिलकर इस काम के लिए नीम की पूरी शाखा तोड़कर ले आते थे। बापू को यह काम समझ में नहीं आया। उन्होंने काका से कहा, काका यह तो ठीक नहीं है, जितने पत्ते चाहिए उतने ही तोड़कर लाया करो, पूरी शाखा तोड़ने से पेड़ को नुकसान पहुंचता है। एक तरह से पूरी शाखा तोड़ना तो पेड़ के साथ हिंसा करना है, यह फिजूल खर्ची भी है और बहुत ही गलत काम है। बापू की यह तरकीब सुनकर काका कालिलकर को सबक मिल गई। फिर उन्होंने दोबारा कभी ऐसा नहीं किया। जितनी पत्तियों की जरूरत होती थी दोस्तों, उतनी ही तोड़कर लाते थे। ये सबक आप भी अपने जीवन में उतार लें दोस्तों। अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को न काटें, इनकी आवश्यकता जितनी हो उतना ही उपयोग करें, क्योंकि इनमें भी जान होती है। पेड़ पत्तों फूलों को बेकार तोड़ मरोड़ करने से इन्हें तकलीफ होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ पौधों में भी सांसें चलती हैं, उनका भी जीवन चलता है, जीवन को रफ्तार मिलता है। तो आप भी सीख लें, पेड़ पौधों के साथ छेड़छाड़ न करें, उन्हें सहज कर रखें। ये सब हमारे प्राकृतिक धरोहर हैं और इन्हें संभालकर प्यार से रखना हमारा कर्तव्य है और हमारा फर्ज बनता है। ऐसा ही एक बार बापू 1947 में धर्मपुर में एक मुस्लिम देहाती असगर भुइया के घर ठहरे। उस परिवार ने गांधी जी को एक बड़ा सा पेड़ दिखाया जिसके पत्ते दो तरह के थे। वे दोनों ही पत्ते अलग अलग तरह के थे। उनको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इस तरह के पत्ते एक ही पेड़ में कैसे हो सकते हैं। उसने पूछा, गांधी जी है ना यह आश्चर्य की बात कि एक ही पेड़ में दो तरह के पत्ते लगे हैं। गांधी जी ने हंसते हुए जवाब दिया, भला इसमें क्या अचरज है, खुदा का करिश्मा है। यह भगवान ने हिंदू और मुसलमान एक ही जमीन से पैदा किए हैं और दोनों एक साथ पड़ोसी की तरह बढ़ रहे हैं, तो भला इसमें आश्चर्य की कौन सी बात हो सकती है। जैसे एक पेड़ में दो अलग अलग पत्ते हैं, उसी तरह हिंदू और मुसलमान हमारे देश के एक ही पेड़ के दो पत्ते हैं और दोनों ही एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं, एक ही खुदा के रचे हुए हैं। तो हमें पेड़ों से यह सीखना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। गांधी जी की यह विचारधारा से मुस्लिम ग्रामवासियों पर बड़ा असर हुआ। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो गांधी जी की छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है और पहली बात यह है कि गांधी जी अपने जीवन में नियमों के बड़े पक्के थे और वो जो ठान लेते थे वो वही करते थे, उन्हें अनुशासन में रहना पसंद था। तो ये सारी बातें हैं हमें अपने जीवन में उतारने के लिए और हमें इनसे सीख ले लेना चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। जो लोग प्रार्थना करते हैं उनसे जाकर पूछिए। बापू जी को ये बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि प्रार्थना आत्मा का मंथन करना है और इससे इंसान को आत्मिक शक्ति मिलती है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है और शांति मिलती है। तो मान गए गांधी जी की महानता को

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था गांधी जी की चोटी और जिसकी लेखिका व प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल जी और यह प्रस्तुति थी सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नाटक में और अभी की सभा समय 4 से 5 में कार्यक्रम नाटक का शीर्षक है मेरी सोच और जिसकी लेखिका है अंतरा करपड़े जी। तो आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत है नाटक मेरी सोच। इसकी लेखिका और निर्देशिका हैं अंतरा करवड़ी।
1: ये क्या पवन, फिर वही चुप्पी। अरे कुछ तो कहो कि इस तरीके से उठकर क्यों चले आए। सब क्या बोलेंगे, बीच प्रोग्राम में से यूं उठकर आ जाना अच्छा लगता है क्या?
2: लेकिन मुझसे नहीं बैठा गया वहां रितेश था, बंटी था, मुझसे अब और नहीं सहा जाता इन दोनों का साथ।
1: लेकिन उन बातों को तो जमाना बीत चुका है पवन, क्या तुम
2: हाँ,
1: क्या तुम
2: मैं अब भी नहीं बाहर निकल पाया हूँ इन बातों से। कैसे हो गए थे पापा मुझे देखकर, क्या सोचा होगा उन्होंने उस घटना के बाद।
1: पवन प्लीज, कितनी मुश्किल से तो आज हमें दिन भर का समय मिल पाया है, और उस पर भी फिर वही बातें लेकर मत बैठो। और वैसे भी आज तो तुम पिताजी से बात करने वाले थे ना हमारे बारे में।
2: तुम सही हो मीनाक्षी, आज कितनी मुश्किल से हमें साथ बिताने को समय मिल पाया है। लेकिन पापा ने भी तो कितनी मुश्किल से वो 3 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, कितने सारे अरमान थे उनके। लेकिन मैं पता नहीं कैसे रितेश और बंटी की बातों में आकर उस जुआ घर में जा बैठा, पापा का विश्वास भी खत्म कर दिया और उनके बचाए हुए पैसे भी।
1: लेकिन पवन, पापा तुम्हें माफ कर चुके हैं, है ना? तुमने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि उन्होंने तुम्हें इस बारे में कुछ कहा हो?
2: कहने को कुछ बचा ही कहां था मीनाक्षी, एक बेटा अपने पिता के पैसे चुराकर जुआ खेलता है, पकड़ा जाता है, और वो भी पिता जाकर उसकी जमानत करवाता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद किसी के पास क्या रह जाता है कहने के लिए?
1: मान लिया कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम्हें उस गलती का एहसास तो है ना पवन?
2: सिर्फ एहसास से जिंदगी तो नहीं चला करती मीनाक्षी, आज मैं जिस दौराहे पर खड़ा हूँ सब और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ऐसी जिंदगी की तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी।
1: पता नहीं पवन, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, लेकिन इसमें मुझे मेरी ही गलती नजर आती है।
2: अब तुमसे क्या हो गया
1: पवन? हम एक दूसरे को पिछले 5 सालों से जानते हैं। तुम्हारे साथ उस समय जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुमने काफी समय लिया था सामान्य होने के लिए। मैं सोचती थी कि अपनी दोस्ती और प्यार से तुम्हारा जीवन बदल कर रख दूंगी, लेकिन शायद मेरे प्रयास कम पड़ रहे हैं। तुम आज भी उसी धुंध में जी रहे हो पवन।
2: लेकिन मीनाक्षी, मैं इस धुंध में से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? मैं वाकई एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मुझे भी पापा के बिजनेस में हाथ बटाना है, मुझे भी मेरे देश के लिए कुछ करना है, तुम्हारे लिए कुछ करना है, लेकिन
1: अब ये लेकिन किस लिए?
2: सिर्फ चाहने भर से मेरे सिर पर लगे हुए कलंक मिट नहीं पाएंगे। पापा से मैं आज भी नजरें नहीं मिला पाता हूँ, परिवार के साथ रह भर रहा हूँ, लेकिन किसी तरह का कोई कर्तव्य नहीं निभा पाता। नौकरी भी मिली तो माँ से कहकर पापा तक खबर पहुँचाई।
1: क्या तुमने पापा को खुद कुछ नहीं बताया?
2: किस मुंह से बताता, उन्हें ये कहता कि आपका नालायक बेटा आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। वैसे भी मेरे जैसे बेटे से उन्हें क्या खुशी मिल सकती है भला?
1: लेकिन तुमने अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर कहीं और नौकरी कर ली, इस बात से उन्हें तकलीफ नहीं होगी?
2: मैंने भी ये सोचा था, लेकिन उनकी ओर से कोई बात ही नहीं आई। मुझे लगा कि मेरे इस कदम से पापा खुश हैं, उन्हें मेरे जैसे बेटे की दखलंदाजी भला क्यों अच्छी लगेगी।
1: लेकिन एक बार उनसे बात कर लेते
2: मीनाक्षी
1: तो...
2: मैं खुद पापा से शर्मिंदा हूँ, उनके सामने जाकर माफी मांगना चाहता हूँ। मैं वाकई एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये परिस्थिति ऐसी है कि कोई मेरा मन नहीं समझ सकता।
1: पता नहीं पवन, तुम कितना सही सोचते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसी तरीके से पूरी जिंदगी तो बिल्कुल नहीं काटी जा सकती।
2: 2 साल तो कट गए, शायद ऐसे ही जीना लिखा हो मेरी किस्मत में। और तुम चाहो तो किसी अलग रास्ते पर जा सकती हो, मैं अपने साथ तुम्हारी जिंदगी को नरक नहीं बना सकता।
1: बस यही सुनना बाकी रह गया था मेरे लिए, वो भी आज के दिन जब तुम अपने पापा से हमारी शादी की बात कहने वाले थे। वाह पवन वाह, कितनी आसानी से कह दिया तुमने कि मैं कोई अलग राह चुन लूं। इसी दिन के लिए हमने एक दूसरे का साथ दिया था शायद, है ना? पता नहीं तुम अपनी सोच कब बदलोगे।
2: मीनाक्षी मीनाक्षी मेरी बात सुनो। चली गई, ये भी मुझे छोड़कर चली गई। छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो सभी। परिवार की नजरों में तो मैं गिर ही चुका हूं। अब मीनाक्षी, क्यों, आखिर क्यों जी रहा हूं मैं ऐसे क्यों जी रहा हूं?
3: अरे भाई संभाल कर, अभी रेलिंग से गिर पड़ते जनाब।
2: जी आप?
3: मैं आनंद राव, इस होटल का मैनेजर। देख रहा हूं कि हॉल में चल रही पार्टी में से आप दोनों बड़ी जल्दी बाहर आ गए। कुछ पर्सनल ना हो तो शेयर करेंगे?
2: क्या पर्सनल हो क्या पब्लिक है सर, सब कुछ बस चल रहा है, किसी ना किसी तरीके से चल रहा है।
3: अरे तुम्हारी उम्र में ये बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा अब समझा, मैडम गुस्सा हो गई है इसलिए तकलीफ हो रही है।
2: बात ये नहीं है सर, अब छोड़िए भी, सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं।
3: लेकिन आपकी परेशानी मुझे थोड़ी अपनी सी लगने लगी।
2: आपने सुना तो कुछ है नहीं मेरे बारे में। और
3: देखिए मिस्टर पवन जी, अपने आप से गुस्सा आदमी अलग ही नजर आता है। आपकी उम्र में मैं भी ऐसा ही था, माँ बाप से गुस्सा, इस जमाने से गुस्सा, लगता था जैसे मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है।
2: लेकिन इस तरीके की सोच का कोई हल तो होता नहीं।
3: देखो पवन, तुमने अभी इस जीवन को जीना है, कितनी अच्छी दोस्त मिली है तुम्हें, कितने अरमान होंगे उसके मन में तुम्हारे लिए, और तुम अपनी परेशानियों के कारण अपने साथ कितने लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो।
2: लेकिन आनंद जी, मैं अपने आप से यूं ही गुस्सा नहीं हूं। मैंने गलतियां की हैं, मैंने मेरे पापा का दिल दुखाया है, उन्हें धोखा दिया है मैंने।
3: लेकिन जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो फिर ये तकलीफ क्यों?
2: लेकिन पापा ने मुझे कभी माफ नहीं किया, वो हमेशा से ये ही सोचते हैं कि मैं एक नाकारा और बेकार लड़का हूं।
3: क्या उन्होंने कभी तुमसे ऐसा कहा?
2: वो तो मुझसे बात ही नहीं करते।
3: पवन यदि तुम्हें गलत ना लगे तो मुझे बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या था?
2: सर आप इतने अपनेपन से पूछ रहे हैं तो जरूर बताऊंगा। दरअसल मैं मेरे मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूं। पापा की कॉटन मिल्स है, उन्होंने मिल के एक्सपेंशन के लिए कहीं से कुछ पैसों की व्यवस्था कर रखी थी। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ये बात मेरे दोस्तों के बीच निकल गई। उनमें से कुछ दोस्त गलत आदतों के शिकार थे, उन्होंने मुझे बहला फुसलाकर घर से पैसे लाने को कहा और वो पैसे मैं जुए में हार गया। यही नहीं, उसी समय उस जुआ घर में वहां रेड पड़ी और हम सब पकड़े गए। पापा ने ही मेरी जमानत भी करवाई। लेकिन वो दिन है और आज का दिन पापा मुझसे सही तरीके से बात भी नहीं करते।
3: ओह बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, ये बात तो किसी भी पिता के लिए अपने ही मुंह पर तमाचा मार लेने जैसी है।
2: क्या ये क्या कह रहे हैं आप, इसमें पापा की क्या गलती है?
3: देखो पवन, तुम्हें छोटे से बड़ा तो पापा ने किया है, तुम्हारे विचार सोच और सारी बातों में उनकी परवरिश और संस्कार दिखाई देते हैं। अब तुमसे कोई गलती भी होती है तो वे यही मानेंगे ना कि उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई है।
2: हाँ बात तो आपकी सही है।
3: और वैसे भी अभी क्या करते हो तुम, और ये अच्छी खासी पार्टी छोड़कर क्यों चले आए?
2: जी मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता हूं और पार्टी छोड़कर इसलिए आना पड़ा कि उस दिन जिन दोस्तों ने मुझे धोखा दिया था वे खुद भी इसी पार्टी में शरीक थे।
3: ओह आई एम सॉरी। लेकिन पवन तुम्हारे पापा को नहीं लगता होगा कि तुम उनकी बिजनेस में हेल्प करो?
2: पता नहीं, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा इस बारे में।
3: देखो पवन, वो तुम्हारी दोस्त वहां अकेली बैठी हुई है, वो देखो, जाओ और उसे मना कर लाओ।
2: क्या कहकर मनाऊं उसे मैं, वो ऐसे आदमी पर भरोसा कर रही है जैसे अपने आप पर ही भरोसा नहीं है।
3: लेकिन तुम अपनी परेशानियों के चलते उसका जीवन क्यों खराब कर रहे हो?
2: दरअसल आज मैंने उससे वादा किया था कि हमारे बारे में पापा से बात करूंगा और
3: पार्टी में तुम्हें पुराने दोस्त मिल गए, तुम्हारा मूड खराब हो गया और तुमने तुम्हारी दोस्त का मूड खराब कर दिया, सही है?
2: अब मैं और क्या कहूं।
3: देखो पवन, मेरा छोटा भाई बिल्कुल तुम्हारी उम्र का था, उसके साथ भी यही परेशानी थी, उसे उसकी नौकरी में गलत इल्जाम में फंसाया गया था। इस बात पर पापा ने उसे कुछ नहीं कहा, उसने अपने मन में यही बात सोच ली कि पापा उससे नाराज है, बस वो अपने आप में घुटता गया। कितने दिनों तक घर से गायब रहा। उसे हमने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं बच पाया। पिछले साल उसने आत्महत्या कर ली। और जानते हो, उसने पापा से माफी मांगी थी अपने सुसाइड नोट में। और सही बात तो ये थी कि पापा उससे नाराज कभी थे ही नहीं। उन्होंने सोचा था कि उसके ऑफिस की बात उसके सामने कहने से उसको तकलीफ होगी, इस वजह से वो चुप रहे। लेकिन इस चुप्पी ने हमसे हमारा भाई छीन लिया। ओह, बड़ा बुरा लगा सुनकर। हाँ, जब तुम्हें यहां देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा विशाल ही वापस आ गया है, इसलिए बिना किसी जान पहचान के तुमसे बात करने चला आया। तुमने बुरा तो नहीं माना?
2: कैसी बातें करते हैं सर, आज के जमाने में कौन किसी को अपना कहता है।
3: सच कहा तुमने, आजकल किसी को कोई अपना नहीं मिलता। इसीलिए पवन, मेरी एक बात मानोगे?
2: जी बोलिए।
3: देखो पवन, तुमने जो गलती की है उससे ये तो तय है कि तुम्हारे पापा को दुख हुआ होगा, लेकिन किसी भी पिता के लिए अपने बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी बातों से ये मालूम होता है कि तुमने अपनी गलती के बाद से अपने पिता से माफी भी नहीं मांगी। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि तुम एक बार माफी मांग लो तो वे भी अपने मन की बात तुमसे कह सकें।
2: हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
3: देखो पवन, सबसे पहले तो अपनी दोस्त को मनाओ, वो अगर खुश रहेगी ना तो तुम खुश रहोगे। देखो, कहीं देर ना हो जाए।
2: जी, मैं अभी आया।
1: आनंद जी, नमस्ते।
3: अरे आप तो, आपका गुस्सा ठंडा कर ही दिया हमारे पवन ने, हैं? आखिर क्या जादू चलाया इसने?
1: आपने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है, आपका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया।
1: आनंद जी, मैं पवन को समझा कर हार गई थी। हर वक्त इसके साथ पिछले दिनों की भूल का साया बना रहता था, लेकिन आज आपने उसे सही बात बताई है। हम सभी कई बार बिना कुछ कहे ही ये मान बैठते हैं कि सामने वाला हमसे नाराज है, जबकि वो तो हमसे बात करने की इच्छा रखता है।
3: पवन के पापा के मन की बात को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। पवन को उनसे बात करनी चाहिए।
1: आपको सुनकर वाकई अच्छा लगेगा, पवन इस वक्त अपने घर पर ही बात कर रहा है।
3: क्या, सचमुच?
1: हाँ।
3: माँ, मैं घंटे भर में वापस आ रहा हूँ। माँ, पापा कहाँ हैं?
4: बेटा, पापा फैक्ट्री के काम से कहीं गए हैं। तुम ठीक तो हो ना? तुमने पापा के बारे में पूछा?
3: मैं ठीक हूँ माँ, और शायद इतना ठीक मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। मैं आज पापा से बात करके उनसे माफी मांगने वाला हूँ माँ।
4: क्या, तुम सचमुच पापा से बात करोगे? इस घर में फिर से वे पुराने दिन आ पाएंगे?
3: हाँ माँ, मुझे लगा कि इतने दिनों तक पापा मुझसे नाराज है, लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी इतनी बड़ी गलती पर मैंने तो कभी पापा से माफी मांगी ही नहीं। माँ
4: बोलो पवन।
3: माँ, पापा मुझे माफ तो कर देंगे ना?
4: कैसी बातें करते हो बेटा, वे तो कितने दिनों से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, आज उनका बेटा उन्हें वापस मिलने वाला है।
3: माँ, वो मैं।
4: हाँ पवन, बोलो बेटा।
3: जी, वो माँ मैं।
4: क्या मीनाक्षी भी साथ आ रही है?
3: अरे माँ, क्या आपको मेरे मन की सारी बातें मालूम है?
4: तुम माँ से कुछ नहीं छुपा सकते। तुम और मीनाक्षी एक दूसरे को पसंद करते हो, ये बात मैं और पापा पिछले कई दिनों से जानते हैं। यानी आज मुझे मेरे बेटे के साथ साथ बहू भी मिलने वाली है।
3: जी, अब मैं और क्या कहूँ।
4: पवन, मैं जानती हूँ तुझमें ये बदलाव लाने वाली मीनाक्षी ही है। वो तो मुझे पहली ही नजर में अपनी बहू के रूप में भा गई थी।
3: और माँ, वो आज हम दोनों ये भी कहने वाले थे।
4: बस पवन, अब तू फोन रख। तू तो ठीक है, मेरी बहू पहली बार मेरे घर आ रही है, मुझे तैयारी करने दे।
3: अरे,
4: फोन रख।
3: अरे लेकिन माँ सुनो तो, ये सारी माताओं को पता नहीं बहू का नाम सुनकर क्या हो जाता है, एकदम से बेटे का तो पत्ता ही काट दिया। क्यों, माँ को बहू पसंद आ गई?
2: अरे आनंद जी, आप मीनाक्षी? तुम?
3: हाँ, मीनाक्षी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और वो तुम्हारा खिला हुआ चेहरा देखकर लगता है कि माँ घर में नई बहू के आगमन की तैयारी कर रही है। तो बहू रानी जी जाइए, आपकी सासू माँ पलके बिछाए अपने बेटे बहू का इंतजार कर रही है।
2: आनंद जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं?
3: सिर्फ एक वादा करके।
2: कहिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं।
3: पवन और मीनाक्षी, तुम दोनों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। जितनी खुशी आज तुम अपने माता पिता की आंखों में देख रहे हो, वादा करो कि यही खुशी जिंदगी भर उन्हें देते रहोगे। किसी भी तरीके से कोई भी गलती हो जाए तो अपने माता पिता से कभी दूरी नहीं बनाओगे।
1: हमें आशीर्वाद दीजिए।
2: सदा सुखी रहो।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाटक जिसका शीर्षक था मेरी सोच और जिसकी लेखिका थी अंतरा करवड़े जी। श्रोताओं, वक्त का पता ही नहीं चलता है। सच में अब मेरा आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। इजाजत दीजिए अपनी रेडियो सहेली ज्योति को, और अब अगली सभा को आगे बढ़ाने के लिए मैं विवेक जी को बुलाना चाहूंगी। मायूस न होइए, खुश रहिए और सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं नुपुर दीक्षित और उनके साथ हैं मनिंदर सिंह मान साहब, जो आज हमें अधिकार के बारे में बताएंगे। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात नुपुर दीक्षित के साथ।

0: एक मुलाकात कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नूपुर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश के संविधान ने हमें कई सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन जब हम उन अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं, तो उनका उपयोग भी सही ढंग से नहीं कर पाते। तो आज के एक मुलाकात कार्यक्रम को हम ऐसे ही एक अधिकार को जानने के लिए समर्पित करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मनिंदर सिंह मान साहब, जो इस वक्त प्रबंधन संस्थान के छात्र हैं। इसके साथ ही हाल ही में इन्होंने सूचना का अधिकार विषय पर एक छोटा सा अभियान चलाया था, जिसकी शहर भर में काफी प्रतिक्रियाएं रही। तो आइए हम बातचीत करते हैं श्री मनिंदर सिंह मान साहब से। मनिंदर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू नूपुर जी, धन्यवाद।
0: मनिंदर जी, जिससे पहले की बातों का दौर शुरू हो, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर सूचना का अधिकार होता क्या है?
1: सूचना का अधिकार हमें अधिकार देता है हमारी सूचना लेने को, जो कि सरकारी फाइलों में पड़ी है। लेकिन ये सिर्फ सूचना तक ही सीमित नहीं रहता
0: जी।
1: इस अधिकार के जरिए हम अपने सभी सही काम, जिसके लिए हमें अब तक रिश्वत या घूस देनी पड़ती थी सरकारी ऑफिस में, वो बिना किसी विलंब के और बिना कोई रिश्वत दिए करवा सकते हैं। सो ये एक तरह से सिर्फ सूचना तक नहीं है, ये हर एक आदमी को सशक्त करता है कि वो अपना काम बिना किसी विलंब या बिना किसी घूस दिए करवा सकते।
0: यानी कि बिल्कुल साधारण शब्दों में कहें तो एक आम आदमी का सबसे बड़ा हथियार है ये अधिकार।
1: हाँ जी, आज के दौर में जब एक आम आदमी बहुत मुश्किल फेस करता है जब वो सरकारी ऑफिस में जाता है, तो ये एक हथियार है जो कि उसको बिना किसी दिक्कत के सरकारी ऑफिस में उसका काम करने में बहुत सशक्त करता है।
0: मैं जानना चाहूंगी कि ये अधिकार भारतीय नागरिकों को कब से प्राप्त हुआ?
1: ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को अक्टूबर 12, 2005 में दिया गया। उससे पहले भी 12 स्टेट्स ने ये अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया था
0: जी।
1: लेकिन एक ही टाइम पे सभी सेंटर और स्टेट के सभी कार्यालयों में ये अधिकार 2005-12 अक्टूबर को मिला।
0: ओके, तो क्या वजह रही कि अचानक सरकार को कोई परिवर्तन करने का विचार आया और उसने देश के 100 करोड़ नागरिकों को इतना बड़ा अधिकार दिया?
1: नूपुर जी, ये एक गणतांत्रिक प्रक्रिया थी। ये एक अभियान चला बहुत बड़ा, राजस्थान में अरुणा जी ने चलाया, जहां पे लोगों ने इस हक की मांग की
0: जी।
1: क्योंकि उन्हें उनको लगा कि जो वो रोज काम करते हैं सरकारी प्रोजेक्ट पे, उनका उनको सही मुआवजा नहीं मिलता।
0: हाँ।
1: तो ये बहुत बड़ा अभियान चला और उस अभियान के जरिए लोगों की मांग को सरकार ने सुना और तब ये हक लोगों को दिया गया। ये पहल सरकार की तरफ से नहीं हुई, ये गणतांत्रिक प्रक्रिया हुई जिसमें सरकार ने सिर्फ लोगों की मांग को सुना और ये हक दिया।
0: यानी कि लोकतंत्र में आम आदमी की सुनी गई और जनता की मांग को स्वीकार दिया गया।
1: बिल्कुल।
0: क्या भारत के पहले भी ये अधिकार दूसरे देशों के नागरिकों को मिला था?
1: ये अधिकार इस वक्त 72 से ज्यादा देशों में है
0: जी।
1: और अभी हाल ही में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी ये अधिकार दिया है, लेकिन भारत में ये अधिकार सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और क्यों ना हो, हम सबसे बड़ा गणतंत्र है तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के कारण सबसे ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी होने का भी हमी को हक है।
0: अगर एक आम आदमी की दृष्टि से देखें तो बहुत छोटा सा काम होता है ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना, है ना? और जब भी हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, बहुत जनरल काम है जिसकी प्रक्रियाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं, लेकिन इस तरह के काम में कई बार ढेर सारी अड़चनें आती हैं जिनके कारण स्पष्ट नहीं हो पाते। तो क्या ऐसे मामलों में भी हम सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं?
1: हाँ जी, ये सूचना अधिकार हर छोटे से बड़े काम के लिए उपयोग हो सकता है। जैसे आपने बताया कि एक छोटा राशन कार्ड बनाना या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाना, तो ये बहुत देर तक फंसा रहता है और जब मांगने जाते हैं कि ये क्यों नहीं काम हो रहा, तो हमें ये भी नहीं बताया जाता कि ये काम में क्या दिक्कत आ रही है।
0: दिक्कत क्या आ रही थी,
1: तो
0: आपका काम इतनी वजह से रुका।
1: हम सूचना मांग सकते हैं कि आप पहले तो सभी रूल्स बताइए कि ये काम होने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर हमने ये सारे रूल्स फॉलो किए हैं तो ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ, किस ऑफिसर के टेबल पे ये काम रुका हुआ है और ये काम कब तक हो जाएगा। सूचना अधिकार में बहुत जरूरी है कि आप क्या सवाल पूछते हैं। सही सवाल पूछने से ही आपको सही सूचना मिलेगी और आपका काम होगा। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है ये देखने के लिए कि कौन कौन से सवाल पूछने हैं, तो एक परिवर्तन है, एक संस्था जो कि एक हेल्पलाइन नंबर चलाती है
0: जी।
1: अगर आप वो हेल्पलाइन नंबर नोट करना चाहें तो मैं एक बार आपके लिए बोलूंगा।
0: जरूर बताइए।
1: 9718100180।
0: ओके।
1: 9718100180।
0: पूरे भारत में से कहीं से भी इस नंबर को डायल किया जा सकता है?
1: हाँ जी, अगर आप दिल्ली में हैं तो इस नंबर को सीधा डायल कर लीजिए, दिल्ली से बाहर सामने जीरो लगा के इस नंबर को डायल कर देंगे
0: जी।
1: तो वहां पे जो एक्टिविस्ट बैठे हैं वो आपको पूरी आपकी अर्जी लिखवा देंगे बिल्कुल सही सवालों के साथ, जिसके आपका काम हो जाएगा।
0: मैं चाहूंगी कि ये नंबर आप एक बार फिर हमारे श्रोताओं को बताएं ताकि उन्हें नंबर को नोट करने का वक्त मिल सके।
1: 9 7 1 8 1 0 0 1 8 0,
0: और इसके आगे शून्य लगाना जरूरी है अगर दिल्ली के बाहर से इसे डायल किया जाए।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: मनिंदर जी, आप IIM कॉलेज में पढ़ते हैं जिसे भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज्यादा सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है, तो आप लोगों की पढ़ाई और दूसरी व्यस्तताएं इतनी ज्यादा होती है, इन सबके बीच सूचना के अधिकार को लेकर एक अभियान चलाने का ख्याल कैसे आया?
1: जी, IIM में आपने सही कहा कि प्रेशर बहुत रहता है पढ़ाई का, लेकिन IIM में हमें एक्चुअली इनकरेज किया जाता है कि हम और भी गतिविधियों में शामिल हों
0: जी।
1: तो अभी हमारा एक क्लब है जिसे प्रगति के नाम से हमने चलाया है, जो कि समाज के लिए काम करता है, तो हम और भी उसमें काम करते थे, किसी स्वयंसेवी संस्था के लिए उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी मदद करना, तो वहीं प्रगति में हमें लगा कि युवा बहुत बड़े स्केल पे जुड़ा है सूचना अधिकार के साथ
0: जी।
1: और इंदौर में वो अभियान नहीं चल रहा है।
0: हाँ हाँ।
1: तो हमें प्रगति में लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस अभियान में पहल करें, तो हमारे 20 से 25 लोग प्रगति के साथ जुड़े थे, जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा काम रहते हैं, तो हर एक टाइम पे दो तिहाई लोग बिजी रहते थे और एक तिहाई थे जो इस अभियान को आगे चलाते थे।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन अच्छी बात ये हुई कि बाकी कॉलेजों के बाकी छात्र हमारे साथ आके जुड़े, और हम सिर्फ 25 लोग नहीं रह गए, हम 100 से ऊपर लोग थे जो इस अभियान से जुड़े।
0: यानी कि एक अच्छे काम की शुरुआत की तो फिर लोगों का साथ भी आपको मिलता चला गया।
1: हाँ जी, और साथ के बिना ये नहीं हो सकता था अगर हम देखें तो।
0: जिस दौरान आप अभियान चला रहे थे, एक दिन आप लोगों ने आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए भी रखा था, तो उस दिन किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई?
1: समस्याएं जो हमने पहले सोची भी नहीं थी कि एक कोई शख्स थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए पैसे लिए और सोचा कि प्रोविडेंट फंड के पैसे से वापस कर देंगे, लेकिन 6 साल से उनका प्रोविडेंट फंड ही नहीं निकल रहा है। एक शख्स थे जिनको कंपनसेशन मिलनी थी एक्सीडेंट के बाद
0: जी।
1: उनको कोर्ट ने जजमेंट भी दे दी कि कंपनसेशन दे दीजिए,
0: यानी कि न्यायालय ने ये आदेश जारी किया कि इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।
1: हाँ जी, लेकिन कौन उनको वो मुआवजा दिलाएगा यही नहीं पता लग रहा। कोई कहता है कि वकील दिलाएगा, कोई कहता है न्याय, तो कोई कहता है पुलिस दिलाएगी
0: जी।
1: तो सूचना का अधिकार ऐसे लोगों को बहुत जल्दी मदद कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक अर्जी डालनी है और साथ में 10 रूपये देने हैं, उससे ये साफ पता चल जाएगा ये किसकी जिम्मेदारी है।
0: चलिए हम पहले वाले सवाल की तरफ गौर करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोविडेंट फंड का कोई मामला हो कि 6 साल से आप कोशिश कर रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड का रुपया बाहर निकले लेकिन नहीं निकल पा रहा है, तो इस मामले में हम किस तरह से सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं?
1: बहुत आसान काम है, एक अर्जी लिखनी है, साथ में 10 रूपये लगते हैं सूचना अधिकारी को प्रोविडेंट फंड के, और उनसे ये पूछना है कि हमारा काम इतने दिनों से नहीं हुआ है, हमें डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बताइए, हमारे काम पे रोज रोज क्या क्या कार्रवाई हुई है, ये काम कब तक हो जाएगा, और जिस ऑफिसर ने ये काम नहीं किया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। अब ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल होता है, तो वो आपका काम ही कर देंगे।
0: बहुत सही कहा आपने, वाकई में अब तक हम सोचते थे कि किसी बड़े अफसर से बात कैसे की जाए, उसे अर्जी कैसे दी जाए, लेकिन इस अधिकार ने एक आम आदमी को इतनी शक्ति तो दी कि हम सीधे सवाल डाल सकते हैं कि हमारे काम में देरी क्यों हो रही है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा जो मामला आपने बताया मुआवजा राशि वाला, मेरे ख्याल से कई लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की समस्याएं झेली होंगी जहां दुर्घटना या किसी और मामले का मुआवजा अटक गया होगा। मुआवजे की घोषणा बहुत जल्दी हो जाती है लेकिन जो वास्तव में उसका हकदार है उस तक पहुंचने में कई बार विलंब होता है, तो इस तरह के मामलों में कैसे हम इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं?
1: तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो कि आपने किस डिपार्टमेंट में अर्जी डालनी है
0: जी।
1: अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप इस केस में जैसे हमने कहा था कि आप कोर्ट में अर्जी डाल दीजिए।
0: हाँ हाँ।
1: तो अगर आपने सही डिपार्टमेंट में अर्जी नहीं भी डाली है तो वो उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो सही डिपार्टमेंट तक आपकी अर्जी पहुंचाएगा।
0: हाँ।
1: और आप अर्जी के नीचे अपना पता और अपना फोन नंबर देते हैं
0: जी।
1: और आपके पते पर सही सूचना पहुंचाना फिर उनका काम हो जाता है, 30 दिन के अंदर वो सूचना आप तक पहुंचती है। अगर वो नहीं पहुंचती तो सूचना अधिकारी को प्रतिदिन 250 रूपये का जुर्माना लगता है जो उनकी अपनी तनख्वाह में से जाता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: इसी कारण ये जो अधिकार है ये इतना शक्तिशाली बना है।
0: हाँ, वरना जिस तरह से काम में देरी हो रही है उसी तरह से सूचना में देरी भी हो सकती है।
1: बिल्कुल।
0: एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, अक्सर गांवों में देखने में आता है कि सरकार की तरफ से गांव में एक स्कूल खोल दिया जाता है, शिक्षक को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कई मर्तबा देखने में आता है कि शिक्षक या तो समय पर स्कूल में पहुंचते नहीं है या लंबी छुट्टियों पर होते हैं, तो इन सब के चलते पढ़ाई में बहुत व्यवधान आ जाते हैं, तो क्या ऐसे मामलों में भी सूचना के अधिकार का उपयोग किया जा सकता है?
1: बिल्कुल, ऐसे मामलों में सूचना का अधिकार का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। सूचना अधिकार में ये लिखा गया है कि हर नागरिक वो सूचना ले सकता है जो कि भारत देश का एक विधायक एमएलए या एमपी ले सकता है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि महीने में वो टीचर या वो डॉक्टर कितने दिन उस स्कूल या अपनी क्लिनिक में आए, लेकिन गांव में होने के कारण आपको पता है कि वो उन दिनों में नहीं आए
0: जी।
1: तो आप एक तरह से लोगों के जरिए प्रेशर जनरेट कर सकते हैं कि कागजों में लिखा है कि ये महीने में 25 दिन आए, लेकिन ये वास्तव में 5 ही दिन आए।
0: हाँ हाँ।
1: तो ये आपको सीधी सीधी सूचना मिल जाती है वहां से।
0: यानी कि सरकारी अस्पताल, स्कूल, सरकारी कॉलेज और समस्त सरकारी विभागों में हम इस अधिकार का उपयोग कर
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: आप वो सभी सूचना ले सकते हैं जो कि एक एमएलए या एक एमपी ले सकता है। तो इतनी शक्ति दी गई है एक आम नागरिक को भारत में इस अधिकार के जरिए।
0: मान साहब, मैं यहाँ पर एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमारे देश में या विदेशों में ऐसा कोई प्रकरण सामने आया है जहाँ सूचना के अधिकार के चलते एक आम आदमी ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो?
1: जी, एक दिल्ली में जैसे एक केस बहुत सुनने में आता है, एक नन्नू थे जिनका कि राशन कार्ड नहीं बन रहा था, तो बहुत सालों से वो सरकारी ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सूचना अधिकार की अर्जी डाली तो 3 ऑफिसर सरकारी ऑफिस से उनके घर के बाहर आके खड़े हो गए। तो ऐसी शक्ति एक आम आदमी को पहली बार देखने में मिली है,
0: बिल्कुल,
1: जो कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र माना जाता है उसमें। सो ये सही तरीके से गणतंत्र को लेके आया है भारत के समाज में ये अधिकार।
0: जी, वैसे आपने परिवर्तन हेल्पलाइन के बारे में तो बताया, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर हम में से किसी को भी सूचना के अधिकार का उपयोग करना है तो जो आवेदन पत्र हम लिखें वो किस तरह से लिखें?
1: आवेदन पत्र पहले तो लिखा जाता है PIO, जो सूचना अधिकारी है, वो हर विभाग में एक सूचना अधिकारी बैठे जाते हैं जिनको आवेदन पत्र लिखा जाता है।
0: हाँ।
1: उसके बाद आवेदन पत्र, अगर आपका कोई काम रुका है या अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड आवेदन पत्र है जो बना हुआ है, उसमें ये मांगा जाता है कि पहले तो ये काम करवाने के लिए रूल्स क्या है।
0: हाँ।
1: क्या नियम है, उसके बाद ये मेरा काम कितने दिन में होना चाहिए था, उसके बाद प्रतिदिन मेरी अर्जी पे क्या क्या काम हुआ है वो बताइए, किस ऑफिसर के टेबल पे ये फाइल रुकी हुई है वो बताइए, अगर ये काम में देरी हुई है तो उस ऑफिसर के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा वो बताइए।
0: तो ये पूरा बना हुआ फॉर्म मिल जाता है?
1: ये सूचना अधिकार में एक बड़ी चीज है कि किसी फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, आप एक खाली कागज पे अर्जी लिख के साथ में 10 रूपये दे देंगे तो आपकी अर्जी वो मानी जाएगी।
0: तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि किसी भी तरह के फॉर्म की जरूरत नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: सिर्फ एक खाली कागज पर हमें अपनी बात को लिखना होता है।
1: अगर आपको फिर भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए जिसमें सही तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक वेबसाइट है right2information.org। तो उस वेबसाइट पे 36 तरह के ऐसे फॉर्म पड़े हैं कि अगर आपने सड़क का निरीक्षण करवाना है तो क्या क्या सवाल पूछे जाने चाहिए, अगर आपने स्कूल का

0: उसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है और वो मटेरियल सरकारी स्टैंडर्ड का है या नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप ऐसी अर्जी डालते हैं तो आपकी अर्जी का जवाब देने से पहले पहले वो सड़क भी बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है।
1: तो उम्मीद है कि इस अधिकार के बारे में जागृति धीरे धीरे फैलती जाएगी और हर जगह काम वक्त पर, समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे होंगे।
0: लेकिन ये निर्भर करता है हम पे, भारत के नागरिकों पे, कि हम इस हक का कैसे यूज करते हैं।
1: मनिंदर जी, क्या अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में आपने कभी राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया?
0: जी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जितनी बार भी मैं इसको इस्तेमाल करना चाहा, मैंने सिर्फ नाम ही लिया और नाम लेने से इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं, उससे पहले ही काम हो गए। क्योंकि मैंने सिर्फ व्यक्तिगत यूज के लिए इसे करना चाहा था
1: जी।
0: तो इसकी असली शक्ति इसी बात में है कि इसे आधे काम तो इसका नाम लेने से ही हो जाते हैं।
1: मनिंदर जी, अक्सर देखने में आया है कि हमारे यहाँ पर आम नागरिक के पास अधिकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि सामर्थ्यवान के आगे पूरी दुनिया झुकती है, तो कई बार हम अपने अधिकारों का उपयोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि हम जिसके विरुद्ध इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं कहीं न कहीं वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर एक भय मन में आ जाता है कि यदि हमारा नाम उजागर हो गया या हमारे बारे में पता चल गया तो कहीं ऐसा न हो कि हमें कुछ दूसरा नुकसान पहुंच जाए।
0: नहीं, बिल्कुल सही बात है। कई लोगों पे हमले भी हुए इसके कारण, लेकिन फिर एक बहुत अच्छा तरीका ये इजाद किया गया कि एक अर्जी देने में 10 रूपये ही लगते हैं
1: जी।
0: तो आप भारत की 10 अलग अलग जगह से ये अर्जी भिजवा दीजिए।
1: हाँ।
0: तो कोई कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, वो कन्याकुमारी और कश्मीर दोनों जगह पे तो जा नहीं सकता।
1: बहुत खूब कहा सर आपने। मनिंदर जी, यहाँ आकर हमारे श्रोताओं को ढेर सारी जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद नुपुर जी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रही थी नुपुर दीक्षित और उनके साथ थे मनिंदर सिंह मान साहब, जिनके द्वारा हमें अधिकार के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आरवीए ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसके लेखक हैं माइकल हॉजेस और प्रस्तुत करता है माइकल हॉजेस एवं नलिनी गहलोद। और वार्ता का शीर्षक है सदुपयोग या दुरुपयोग।

0: युवा और विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है एक बातचीत, सदुपयोग या दुरुपयोग। इसके लेखक है माइकल हॉजिस और बातचीत में भाग ले रहे हैं नलिनी गहलोत और माइकल हॉजिस।
1: युवा और विकास सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को नलिनी गहलोत
0: और माइकल हॉजिस का
1: नमस्कार। हाँ तो माइकल जी कहिए, आज हम अपने युवा श्रोता साथियों के लिए किस विषय पर और क्या बातचीत करने जा रहे हैं?
0: देखिए नलिनी जी, इसके पहले कि मैं अपने श्रोताओं को यह बताऊं कि आज हम उनके लिए किस विषय पर और क्या बातचीत करने जा रहे हैं, उसके पहले मैं कुछ और बात भी करना चाहूंगा।
1: तो जल्दी से अपनी वो बात भी कह डालिए कि हम अपनी बातचीत शुरू कर सकें।
0: मैं ये कहना चाह रहा था कि वैज्ञानिकों की नित नई खोज ने आज हमारा जीवन कितना आरामदायक और सुखमय बना दिया है, नहीं क्या?
1: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा माइकल जी, आज वैज्ञानिकों की खोज ने हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल आरामदायक और सुख से भरा हुआ बना दिया है।
0: नलिनी जी, इसका कोई एक उदाहरण देना चाहेंगे आप?
1: इसके लिए एक नहीं माइकल जी, बल्कि कई उदाहरण दिए जा सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे कि अपनी टीवी, वॉशिंग मशीन है ना, ओवन हो गया, मिक्सी रोटी बनाने के लिए मशीन, और कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप तो आम चीज है।
0: अच्छा, जरा ये बताइए कि इन सब में सबसे अधिक जीवन को आरामदायक और सुखमय बनाने वाली कौन सी चीज है?
1: मेरे ख्याल से तो मोबाइल फोन है।
0: बिल्कुल ठीक कहा नलिनी जी। तो आज हम युवाओं द्वारा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली वस्तु या संचार के साधन मोबाइल पर बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे युवा साथी सबसे अधिक मोबाइल का उपयोग करते हैं।
1: जी माइकल जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि हमारे आज के जो युवा हैं वो सबसे अधिक मोबाइल का ही उपयोग करते हैं, चाहे वो जरूरी या खास बात हो या कि फिर बेवजह की गप्पे ही मारना हो, उनका काम मोबाइल के बिना तो चल ही नहीं सकता।
0: लेकिन नलिनी जी, जहां मोबाइल बहुत काम की वस्तु में गिनी जाती है, जहां वह एक आज की दिनचर्या की एक अहम वस्तु है, वहीं अब आए दिन उसके दुरुपयोग की बातें भी होने लगी हैं।
1: बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं माइकल जी कि जब से मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग वीडियो और कैमरों का समावेश हुआ है ना, तब से मोबाइल का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
0: बिल्कुल, फिर चाहे मोबाइल का दुरुपयोग अश्लील एमएमएस, अश्लील एसएमएस, वीडियो क्लिपिंग या फिर लड़कियों को परेशान करने में या फिर आतंकवादियों द्वारा बम आदि बनाए जाने में क्यों न बढ़ाओ।
1: जी, लेकिन मैं एक समझती हूँ कि जब से हमारी और विशेष करके युवाओं की जीवन शैली में बदलाव आया है, तब से आज की युवा पीढ़ी में जागरूकता भी बढ़ी है और वे पहले की अपेक्षा और अधिक सजग और जागरूक हुए, आपको ऐसा नहीं लगता?
0: देखिए, उनकी इसी जागरूकता के कारण आज के अभिभावक या माता पिता भी उन पर किसी भी प्रकार की बंदिश लगाने से पहले सोचते हैं और उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
1: जी माइकल जी, हालांकि युवा भले ही जागरूक हो गए हों, अपना बुरा भला समझने लगे हों, लेकिन उनकी जागरूकता और सजगता पर उनकी उम्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा है नलिनी जी, उम्र में परिपक्वता न होने के कारण, अनुशासनहीन होने के कारण ही अक्सर उनके निर्णय भी किसी मुसीबत को आमंत्रित करते हुए देखे जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और इसीलिए आज हालात ये हैं कि युवा या किशोर उम्र की बेटी जो होती है वो घर से निकलकर जब तक बाहर से घर वापस न लौट आए, तब तक माता पिता या अभिभावकों को बेटी की चिंता बनी ही रहती है।
0: जाहिर सी बात है नलिनी जी, जागरूकता और सजगता के बावजूद भी आज के युवाओं के सही और गलत की ठीक तरह से पहचान उनको नहीं है, इसलिए उनके माता पिता और अभिभावक उनके सही सलामत घर लौटने तक जरूर चिंता करते हैं और करेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि वे जानते हैं ना माइकल जी कि न तो वे अभी परिपक्व ही हुए हैं और न ही उन्हें अपनी उम्र का अभी कोई थोड़ा सा भी अनुभव ही है, विशेष करके लड़कियों को।
0: आजकल के बदलते हुए जमाने में नलिनी जी, अब लड़का लड़की की दोस्ती को जमाने ने एक विपरीत लिंग की दोस्ती और महज लड़का लड़की के संबंधों से अलग एक साफ सुथरी और निस्वार्थ मित्रता के रूप में भी देखना शुरू कर दिया है।
1: हाँ,
0: या आप कह सकते हैं कि अपना लिया है।
1: हाँ, ये तो सही है, लेकिन माइकल जी, अब विपरीत लिंग के साथ का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ प्रेम संबंध ही रह गए हैं, बल्कि उसे दोस्ती के मायने के अर्थ के रूप में भी लिया जाने लगा है।
0: स्वच्छ और निस्वार्थ दोस्ती।
1: बिल्कुल, और यह एक बहुत अच्छी बात है समाज के लिए।
0: बिल्कुल नलिनी जी, लेकिन ऐसी मित्रता का सदुपयोग होने के अलावा अब ऐसी विपरीत लिंगों की मित्रता का दुरुपयोग होना भी आम बात होता जा रहा है। यदि ये कहा जाए कि आजकल इस प्रकार की दोस्ती का नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा।
1: हाँ माइकल जी, ये बात तो सही है कि आजकल इस प्रकार की जो मित्रता का दुरुपयोग है
0: जी,
1: वो हमारे समाज में देखने सुनने और पढ़ने को आमतौर पे मिली जा रहा है।
0: नलिनी जी, इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।
1: कैसा?
0: एक कॉलेज पढ़ने वाली लड़की है, उसके साथ लड़के भी पढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है कि अन्य लड़कों की तरह उसकी भी लड़कों लड़कियों से समान रूप से दोस्ती थी।
1: माइकल जी, आजकल के हिसाब से तो ये बिल्कुल होना ही है।
0: जी हाँ, और मैं ये भी बताना चाहूंगा नलिनी जी कि चार लड़के और तीन लड़कियों का उनका अपना एक अलग ही ग्रुप था।
1: अच्छा।
0: एक दिन इन सातों ने कहीं आउटिंग का एक प्रोग्राम बनाया
1: जी,
0: लेकिन दो लड़कों ने आउटिंग जाने के एक दिन पहले शाम को, एक दिन पहले शाम को ही दो लड़कों और एक लड़की को मोबाइल पर यह खबर दे दी कि कल आउटिंग का प्रोग्राम कैंसिल हो गया।
1: ओहो, मतलब कि ये उनके मन में कुछ बुरी योजना चल रही थी, है ना? ताकि मतलब वो जो लड़के हैं वो सिर्फ उन दो लड़कियों के साथ ही जा सकें।
0: बिल्कुल नलिन जी, तभी तो उन्होंने केवल उन दो लड़कियों को छोड़कर ही बाकी सभी को प्रोग्राम कैंसिल हो जाने की बात कही, क्योंकि वे दोनों लड़के, जैसे कि मैं पहला भी कह चुका हूँ, केवल उन दो लड़कियों के साथ ही आउटिंग पर जाना चाहते थे।
1: इसीलिए ना माइकल जी, उन्होंने उन्हीं दोनों लड़कियों को प्रोग्राम कैंसिल होने की झूठी खबर नहीं दी होगी।
0: हाँ, क्योंकि उनके मन में इन्हीं दो लड़कियों को लेकर कुछ बुरा जो चल रहा था।
1: ओहो, अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ?
0: फिर वही हुआ जो उन दोनों लड़कों ने सोच रखा था।
1: जैसे?
0: वे केवल उन दोनों ही लड़कियों को लेकर आउटिंग पर चले गए।
1: उन लड़कियों ने बाकी साथियों के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था क्या?
0: क्यों नहीं पूछा था, जरूर पूछा था, लेकिन उन दोनों लड़कों ने ये कहकर उन्हें चुत करा दिया था कि बाकी लोगों ने उन्हें फोन कर न आने की बात कही थी।
1: ओहो, फिर क्या हुआ?
0: फिर क्या था, फिर वे चारों ही आउटिंग पर चले गए और वहाँ पर उन दोनों लड़कों ने वही सब किया जिसका प्रोग्राम बनाकर वे दोनों उन दो लड़कियों को दोस्ती के नाम पर लेकर आए थे।
1: क्या मतलब माइकल जी?
0: मतलब ये नलिनी जी कि उन्होंने एक सुनसान जगह पर उन दोनों लड़कियों को ठंडा यानी कोल्ड ड्रिंक पिलाया जिसमें नशे की गोलियां मिलाई थी उन्होंने।
1: अच्छा अच्छा।
0: और जिससे वो लड़कियां बेसुध हो गई थी।
1: मैं समझ गई माइकल जी, दोनों लड़कियों के बेसुध हो जाने के बाद उन दोनों लड़कों ने उनके साथ बलात्कार ही किया होगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल नलिनी जी, न केवल उनके साथ उन्होंने बलात्कार किया बल्कि उनकी अश्लील वीडियो क्लिपिंग और MMS वगैरह भी बना डाले।
1: बाप रे माइकल जी, ये तो उन दोनों लड़कियों के साथ बहुत बुरा हुआ।
0: ये तो कुछ भी नहीं नलिनी जी, इससे भी बुरा ये हुआ कि उन दोनों लड़कियों को उन दोनों बदमाश लड़कों ने जी भरकर ब्लैकमेल कर उनका खूब शोषण किया, आर्थिक भी और शारीरिक भी। उसके बाद उनके अश्लील वीडियो की CD बनाकर वे बाजार में बेचने लगे ताकि और आर्थिक रूप से कमाई कर सकें, और MMS को डाउनलोड कर यहाँ वहाँ भेजने लगे।
1: तो क्या उन लड़कों को पकड़ा नहीं गया?
0: उन्हें पकड़ा तो एक दिन जाना ही था, सो वे पकड़े भी गए, लेकिन जब उन्हें चाहे कठोर या लंबी सजा ही क्यों न दे दी जाए, मतलब पकड़ने के बाद उनको, लेकिन उससे क्या होने वाला, क्योंकि वो जितना लड़कियों का बुरा कर सकते थे वो तो वो कर चुके थे। और नलिनी जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये अधिकतर उन सभी केसेस में होता है जिनमें किसी भी लड़की या क्या कहना चाहिए फरियादी के साथ अगर किसी किस्म की बदतमीजी या शारीरिक शोषण या कुछ शारीरिक प्रताड़ना की बात होती है, तो उसमें बाद में न्यायालय द्वारा वो आरोपी सिद्ध हो जाए या उन्हें सजा भी दे दी जाए, तो मेरे ख्याल से वो क्षतिपूर्ति तो किसी भी हालत में नहीं हो पाती है लड़की की, क्योंकि वो सामाजिक रूप से इतनी बदनाम हो चुकी होती है, मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित हो चुकी होती है, मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि दुख उसका पीछा छोड़ता नहीं चाहे आरोपी को भले ही सजा हो जाए।
1: जी हाँ माइकल जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही, और उन दोनों लड़कों को फांसी दे देने के बाद भी क्या उन लड़कियों की इज्जत और आबरू वापस आएगी क्या? वो तो आने से रही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? और उनकी जो बर्बादी हुई, जो उनकी बदनामी हुई, वह भी किसी तरह के यश में तो बदलने से रही?
0: बिल्कुल नहीं रही, और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपने भी कहा कि फांसी दे देने से कुछ नहीं होता, यानी कि अगर आरोपी को फांसी की सजा दे दी जाए, उसके प्राण ले लिए जाए, तो उससे पूर्ति तो होती नहीं, जो नुकसान लड़की ने उठाया है, लड़की को जो नुकसान हुआ है। और वही जो सामाजिक यश वगैरह की बात मैं कर चुका हूँ, आप भी कर रही हैं, तो वो किसी भी तरह से बदनामी एक यश में तो बदलने से रही, और उन लड़कियों को इस हादसे से दो चार होना पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और विपरीत लिंग की मित्रता के दुरुपयोग के ही कारण।
1: जी बिल्कुल माइकल जी, उन लड़कों ने मित्रता और मोबाइल का सदुपयोग करने की बजाय सचमुच उसका दुरुपयोग ही किया है।
0: जी हाँ नलिनी जी, ऐसी बातें आए दिन हमें सुनने पढ़ने और टीवी पर देखने को मिलती रहती हैं। लड़कियां घर से निकलती हैं तो कई बार वे माता पिता और भाई को बताकर जाती हैं कि वे कहाँ और क्यों जा रही हैं और कब तक वापस आ जाएंगी।
1: बिल्कुल सही।
0: कुछ लड़कियां, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो अपने माता पिता भाई या घर पर ये बताना सोचती हैं कि शायद कोई जरूरी नहीं है, या वो जानबूझकर नहीं बताती कभी कभी। वो बस ये कि हाँ हम आ रहे हैं, हम वहाँ जा नहीं, बस अब भी गए अब भी आइए, इस तरह से करके बातचीत को टाल के वो घर से निकल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल सही। और कई बार तो ऐसा होता है माइकल जी कि वे अपने माता पिता और अपने घर में जो उनके भाई हैं उनसे छिपाकर या फिर झूठ बोलकर भी चली जाती हैं। लेकिन झूठ बोलकर जाते समय वे उन अनजाने खतरों से बिल्कुल ही अनजान रहती हैं जो उनके रास्ते में घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे कि आपने जो भी किस्सा बताया, एक वही उदाहरण ले लीजिए कि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था और वो लोग चले गए थे,
0: और उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या
1: हुआ? बहुत बहुत बुरा भुगतना
0: पड़ा, हादसे का शिकार हो गए।
1: बिल्कुल।
0: और इसके बाद उन्हें भोगनी पड़ती है जीवन भर की एक त्रासदी।
1: सही बात।
0: उस स्थिति में जबकि वो अपने घर पर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करके ना जाएं कि वो कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कब तक आ जाएंगी, और अगर वो स्थिति स्पष्ट नहीं करती, बिना बताए ऐसे ही चुपचाप चली जाती हैं, तो फिर जो हादसे होते हैं उसके बाद उन्हें जीवन भर के लिए त्रासदी का सामना करना पड़ता है, त्रासदी भोगना पड़ती है, जो कभी कभी आत्महत्या जैसे अव्यवहारिक कदम पर भी उसी पर ही समाप्त होती है कभी कभी।
1: बिल्कुल सही।
0: क्योंकि वो लड़की जीवन से इतनी निराश, इतनी परेशान हो जाती है कि फिर उसके सामने आत्महत्या के सिवा और कोई राह सूझती नहीं या दिखाई नहीं पड़ती।
1: इसलिए माइकल जी, हम तो अपने सुनने वाले सभी युवा श्रोता साथियों से यही कहना चाहेंगे कि आधुनिकता के नाम पर वे अपनी आंखें बंद करके किसी भी विपरीत लिंग से, लड़के या लड़कों से दोस्ती बिल्कुल भी ना करें।
0: हम यह नहीं कहते कि आप किसी युवा से दोस्ती ही ना करें।
1: हाँ, ये भी सही
0: है। बिल्कुल नहीं, दोस्ती करें लेकिन जांच परख कर।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्ती के बाद भी सतर्क और सजग जरूर रहें, यानी कि दोस्ती में एकदम
1: अंधे ना हो जाएं,
0: अंधे ना हो जाएं और सामने वाले पे एकदम अटूट विश्वास ना करें, एकदम उस पर भरोसा ना करें। हालांकि सभी लड़के एक जैसे नहीं रहते हैं, लेकिन नलिनी जी ये भी एक बात है ध्यान रखने वाली कि सभी जिस तरह से कि पांचों उंगलियां बराबर
1: नहीं,
0: उसी तरह से सभी लड़के भी एक तरह से नहीं होते हैं। अगर उनमें कुछ बदमाश है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लड़के अच्छे शरीफ भी हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन अपनी ओर से सावधान रहने और सावधानी बरतने में मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं।
1: बिल्कुल। और इसी प्रकार से माइकल जी, कई बार लड़कियां जो होती हैं वो मोबाइल से लड़कों के द्वारा अपनी फोटो खिंचवाती हैं, है ना, और ये एक होड़ सी हो गई है ना,
0: गलत फहमी भी रहती है।
1: हाँ, लेकिन यदि फोटो लेने वाला लड़का अगर शरीफ हुआ तब तो ठीक है,
0: ठीक
1: है ना, लेकिन अगर इसके विपरीत अगर यह लड़का अच्छा ना हुआ तो लड़कियों को यह हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा नलिनी जी। आजकल की तकनीक इस कदर बढ़ गई है कि कब किसके शरीर पर किसका चेहरा लगाकर कौन सा चेहरा और किस परिस्थिति का फोटो तैयार कर लिया जाएगा कहना मुश्किल है,
1: बहुत ज्यादा मुश्किल
0: है। किसी भी फोटो के द्वारा आजकल आपको उच्च तकनीक के माध्यम से किसी भी फोटो में आपको वो दिखाया जा सकता है जो कि आप नहीं हैं, या जो आप नहीं कर रहे हैं वो फोटो में आपको दिखाया जा सकता है कि आप ये कर रहे हैं। तो आजकल की उच्च तकनीक का एक दुरुपयोग
1: भी है और सदुपयोग भी।
0: सदुपयोग
1: सही है माइकल जी। ये कहा जा सकता है कि कब नई तकनीक और संबंधों का कब सदुपयोग किया जा सकता है और कब दुरुपयोग किया जा सकता है, यह कहना मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है
0: जी,
1: है ना। और इसीलिए खास करके युवतियों को और विशेषकर महिलाओं को अपनी तस्वीरों के प्रति, जो आजकल वो खिंचवाती हैं या उनको बड़ा मजा आता है जो चीज खिंचवाने के अंदर, उसके प्रति उनको बिल्कुल गंभीर स्वभाव रखना चाहिए।
0: जी मेरे ख्याल से करते ही हैं हमारे युवा श्रोता, अगर हम हमारी बातचीत सुनते हैं तो उसका लाभ तो उठाते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आप सभी युवा श्रोताओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए हम कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे।
1: बिल्कुल। और चाहेंगे कि आप आने वाला जो आपका कल है वो आज से और भी अच्छा हो।
0: अब माइकल
1: और नलिनी को
0: इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था सदुपयोग क्या दुरुपयोग। इस वार्ता के लेखक थे माइकल हॉजेस और प्रस्तुतकर्ता थे माइकल हॉजेस एवं नलिनी गहलोत। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है सितारों से आगे जहां और भी है, जिसके प्रस्तुतकर्ता है स्वतंत्र कुमार ओझा जी।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के युग संचार कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है सितारों से आगे जहां और भी है। इस शीर्षक को सुनकर आपको ताज्जुब तो होगा, होना भी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, एक सच्चाई है, एक यथार्थ है कि सितारों से आगे भी एक संसार है, ब्रह्मांड है, और भी इतना विस्तृत और फैला हुआ है कि जिसकी खोज आज भी इंसान कर रहा है। आप और हम सभी देख ही रहे हैं आज, यानी वर्तमान में विज्ञान की गति समय की गति के साथ साथ बड़ी तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया और विज्ञान की पत्र पत्रिकाओं और अखबारों के द्वारा हमें जानकारी मिलती रहती है कि हर रोज प्रतिदिन नए नए आविष्कारों की घोषणाएं होती हैं, और हम एक तरह से महसूस करते हैं कि अच्छा ऐसा भी होगा क्या, और कभी कभी हमें लगता है कि पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, अब जो ये हो रहा है क्या कहीं ये सब कोई चमत्कार तो नहीं है, ये सब क्यों हो रहा है, मनुष्य का ज्ञान और परिश्रम आखिर किस सीमा रेखा को छू रहा है, ये विचार तो आता ही है मन में। भविष्य और कल जो आ रहा है उसमें ये अनुसंधान, ये खोज और कितनी ऊंचाइयों का स्पर्श करेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी विज्ञान के जरिए संचार माध्यम अपने नए नए चेहरे लेकर हमारे सामने मौजूद है, हमारे साथ है, और आगे भी अनेक नए चेहरे लेकर आएगा और हम आश्चर्य से देखेंगे। थोड़ा पीछे मुड़े आज से लगभग 25-30 साल पहले तो हमें लगता था जैसे हम अन्य देशों के मुकाबले कितने पीछे हैं। अगर उन दिनों किसी इमरजेंसी में, यानी कि जिसको हम आपातकालीन हालत कहते हैं, उसमें अगर अपने किसी को दूसरे शहर में कोई खबर, कोई सूचना तुरंत देनी होती थी तो टेलीफोन विभाग की बिल्डिंग में जाकर लाइटनिंग कॉल हुआ करते थे उन दिनों में, जो बड़े महंगे होते थे, तो लाइटनिंग कॉल से ही ये काम करना पड़ता था। बहुत महंगा काम था, लेकिन अगर जरूरी खबर है, तुरंत सूचना देनी है, तो करना ही पड़ता था। अब आज संचार के माध्यम कितने बदल गए, उनमें कैसी चमत्कारी सुविधाएं हमें मिल गई हैं, ये सब अच्छी तरह से आप हम सभी जानते हैं। अब आगे और क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा, उनसे और क्या क्या नई नई सुविधाएं हमें मिलेंगी, इसकी कल्पना भी आज तो हम नहीं कर सकते, और न ही इस बारे में किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। पता नहीं टपाक से कोई चीज आ जाए, ऐसी चीज जो कभी देखी ना सुनी। हमें तो बस देखते रहना है कि कल जो आएगा वो क्या लेकर आएगा। तो आज 21वीं सदी में विज्ञान के द्वारा संचार उपकरणों के आश्चर्य करने वाले माध्यमों ने समूचे संसार को समय की तेज गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और दौड़ने के लायक तो बना ही दिया है, बना दिया है। इस बात को हम सभी स्वीकार करते हैं और एक तरह का बड़ा ही अच्छा उपहार है ये, और हम स्वागत करते हैं इस अनोखे उपहार का। चलिए कुछ ऐसी ही अन्य बातों की चर्चा करते हैं। एक समय पहले अखबारों में एक समाचार छपा था, जापान की एक फर्म ने एक रोबोट बनाया। अब ये रोबोट एक अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर का काम करे। सुनकर और पढ़कर ताज्जुब हुआ कि भाई ट्रांसलेशन कैसे करेगा रोबोट? जो भी दो व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे एक दूसरे की भाषा न तो समझते हैं और न ही जानते हैं। अब दोनों के बीच बात या चर्चा या संवाद तभी हो सकता है जब कोई तीसरा व्यक्ति जो दोनों भाषाएं जानता है वो अनुवाद करके एक दूसरे को समझाता जाए। लेकिन जब हमने इस नए आविष्कार के बारे में पढ़ा तो लगा कि इस नए आविष्कार के बाद अब जापान का ये रोबोट दोनों के बीच, जो दो बात कर रहे हैं अलग अलग भाषाओं में, उनके बीच भाषा के माध्यम से अनुवादक का काम करेगा। ये जो जापान ने रोबोट बनाया है, अभी शुरू में वो केवल अंग्रेजी से जापानी और जापानी से अंग्रेजी में ही अनुवाद का काम कर रहा है, यानी काम शुरू हो गया है। अब कहने का अर्थ यही है कि एक जापानी व्यक्ति जो न तो अंग्रेजी बोल सकता है और न ही समझ सकता है, और इसी तरह अंग्रेज जापानी बोली न तो समझ सकता है और न बोल सकता है, तो ऐसी हालत में अब किसी व्यक्ति की बजाय यानी बीच में कोई इंसान ट्रांसलेट करके उनको समझाए, ये रोबोट का जो आविष्कार हुआ है ये अनुवादक का काम कर रहा है। और अब ये समाचार भी पुराना हो चुका है मित्रों, लेकिन कहीं न कहीं हमें विज्ञान के अनुसंधान और संचार के माध्यम से इस कथन की प्रामाणिकता अवश्य मिलती है कि जो भी हो रहा है उसकी कुछ सालों पहले तक तो कल्पना भी नहीं थी। इसी प्रसंग में सबसे पहले तो ये कि रोबोट अब ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, ये बात भी अब पुरानी हो गई है। अब इसके बारे में हम जो बात करने जा रहे हैं उसे भी हम क्या कहें, चलिए चमत्कार ही कह लेते हैं। जी हाँ, अभी कोई 3 महीने पहले जर्मनी के वैज्ञानिक एच फ्रैंक इंदौर आए थे। विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच उनका भाषण आयोजित किया गया था हमारे इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, और ये विषय था रोबोट की एकदम से चौंका देने वाली खबर। तो इसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा, अपने भाषण को शुरू करते हुए, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब वो दिन दूर नहीं है जब रोबोट भी आम इंसानों की तरह मानवीय संवेदनाएं, उनका दुख दर्द खुशी न केवल व्यक्त कर सकेंगे बल्कि उन्हें प्रदर्शित भी कर सकेंगे। तब एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, विद्वान महोदय, ये कैसे, किस प्रकार होगा? मानवीय संवेदनाएं, दुख दर्द खुशी, रोबोट कैसे होगा? तब विद्वान वैज्ञानिक एच फ्रैंक ने कहा, वो इस तरह कि रोबोट का उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान एक अटेंडेंट यानी सहायक के रूप में किया जाने वाला है। बाद में ऐसे प्रयास चल रहे हैं कि रोबोट भविष्य में ऑपरेशन करने में भी सक्षम होंगे, और उनमें इस तरह के सेंसर उपकरण लगाए जा रहे हैं जिससे वे मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए उसके अनुसार काम कर सकें, व्यवहार कर सकें। श्रोताओं, इस भाषण से पूरे कक्ष में जैसे एक आश्चर्य से भरा सन्नाटा पसर गया। सभी विद्यार्थी एकदम चुप होकर के बात सुनते रहे, और क्या पूछें, क्या बात करें इस बारे में, किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि ये ऐसी खबर थी जिसको वास्तव में एक चमत्कार ही माना जा सकता है। तो श्रोताओं, क्यों नहीं हम विज्ञान की इस नई पहल को आज के युग संचार का एक ऐसा उपहार माने जिसकी कल्पना भी कुछ सालों पहले नहीं की जा सकती थी। अभिनंदन है आज के दौर के उन तमाम वैज्ञानिकों का जो वर्षों पहले उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर डॉक्टर इकबाल की इस लाइन को साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी है। नमस्कार।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक था सितारों से आगे जहां और भी है। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य सर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। हेलो दोस्तों, सर स्नेहा नमस्कार। आपकी रेडियो दोस्तोति फिर उपस्थित है समय 5 से 6 की सभा में नए कार्यक्रमों के साथ। इंतजार अब खत्म हुआ और सुनिए मेरे साथ रेडियो वरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। सत्य अभी की सभा की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मंदर्पण और अंत में पर्यावरण। दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है अंधविश्वास की तिजारत और राजनीति, और जिसके प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोर जी, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

प्रिय श्रोता मित्रों, फादर हरमन बंडोड़ एसपीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है अंधविश्वास की तिजारत और राजनीति। मित्रों, राम पुन्यानी जी अपने एक लेख में लिखते हैं, जहां एक ओर सेमेल इडामरक्कू नामक तार्किकवादी धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाने के आरोप में कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निर्मल बाबा पर धोखाधड़ी करने के आरोप है। निर्मल बाबा का दावा है कि वे देवीय शक्तियों के स्वामी हैं, उनके कार्यक्रम 40 से अधिक टीवी चैनलों पर प्रसारित होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बाकायदा पैसा भी चुकाया जाता है। निर्मल बाबा के पास आपकी और मेरी हर समस्या का देवीय हल मौजूद है। एक स्थानीय अदालत ने पुलिस को निर्मल बाबा के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यद्यपि सेमेल इडामरक्कू और निर्मल बाबा के मामले अलग अलग धर्मों से संबंधित है, तथापि उनके बीच गहरा रिश्ता है। इडामरक्कू यह साबित करने में सफल रहे कि मुंबई में इरला इलाके में क्रॉस पर टंगे प्रभु ईसा की मूर्ति के पैरों के बीच से निकल रही पानी की धार कोई देवीय चमत्कार नहीं था। दूर दूर से श्रद्धालु इस चमत्कार को देखने और देवीय पानी का सेवन करने उस चर्च में पहुंच रहे थे। इडामरक्कू ने पता लगाया कि दरअसल चर्च के पास में बह रही एक नाली चौक हो गई थी और उसका पानी कैपिलरी एक्शन के जरिए ऊपर चढ़कर मूर्ति के पैरों के बीच से बह रहा था। इडामरक्कू के अपने समुदाय के लोग उनसे बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि इडामरक्कू ने उनकी आस्था को चोट पहुंचाई है। निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला ने अपने जीवन की शुरुआत व्यवसायी के रूप में की। उनका धंधा नहीं चला और सन 1970 के आसपास वे अचानक गायब हो गए। जब वे वापस लौटे तो वे देवीय शक्तियों से लैस थे। पहले उन्होंने पैसे खर्च कर टीवी चैनलों पर समय खरीदा। उनके शो में शामिल श्रोताओं को अपनी समस्याओं के बारे में उनसे प्रश्न पूछने के लिए पैसे दिए जाते थे। जब धंधा चलने लगा तो लोगों से निर्मल दरबार में हिस्सा लेने के लिए पैसे वसूले जाने लगे। निर्मल दरबार में बाबा अपने भक्तों की समस्याओं का हल सुझाते थे और इसके बदले हजारों रुपये लेते थे। कुछ ही सालों में निर्मल बाबा अरबपति बन गए और उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। मित्रों, जो लोग प्रभु ईसा मसीह के पैरों से बह रहे नाली के पानी को श्रद्धापूर्वक पीते थे, उन्हें उस पानी का असली स्रोत बताना उनके धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना था। निर्मल बाबा से अपनी समस्याओं का हल चाहने वाले सैकड़ों लोग भी आस्था और विश्वास के कारण ऐसा करते थे। अक्सर विश्वास और अंधविश्वास के बीच की विभाजन रेखा बहुत अस्पष्ट होती है। आस्था और तार्किकता के बीच हमेशा आपसी संघर्ष चलता रहता है। अज्ञान और अदृश्य ताकतों में विश्वास और भविष्य के बारे में चिंता अतार्किक आस्था आने का मुख्य स्रोत है। इस आस्था के केंद्र में है विभिन्न धर्मगुरुओं की तथाकथित देवीय शक्तियां और दर्जनों स्वनियुक्त बाबा और भगवान, महामारियां, सूर्य और चंद्रग्रहण और हमारी पृथ्वी के आकार जैसे मामलों में पिछली कुछ सदियों में आस्था का स्थान तार्किकता ने ले लिया है। आज हम में से अधिकांश जानते हैं और मानते भी हैं कि महामारियां ईश्वरीय प्रकोप से नहीं फैलती और न ही राहु केतु के कारण ग्रहण होते हैं। इसके बावजूद राजनीति सहित ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें आज भी आस्था और विश्वास का बोलबाला है। राम मंदिर आंदोलन आमजनों की आस्था के दोहन का एक उदाहरण है। शरीयत के नाम पर सड़ी गली मान्यताओं और प्रथाओं से चिपके रहना इसका एक अन्य उदाहरण है। गुजरे समय में प्राकृतिक घटनाओं को भी आस्था से जोड़ा जाता रहा है। यह माना जाता था कि धरती चपटी है और इस संसार की रचना ईश्वर ने की है। इस तरह के किसी को हानि न पहुंचाने वाले विश्वास और लोगों की आस्था को सुनियोजित ढंग से एक दिशा में मोड़कर टीवी और मीडिया के एक हिस्से के माध्यम से इसे व्यवसाय बनाकर उससे अरबों रुपए कमाने में बहुत फर्क है। हमें यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज के समाज में आमजन स्वयं को अत्यंत असुरक्षित अनुभव करते हैं और आस्था उन्हें जीवन की कठिनाइयों से जूझने की भावनात्मक ताकत देती है। इस सब के बावजूद हमें कहीं न कहीं एक रेखा खींचनी होगी। हमें यह कोशिश करनी होगी कि वैज्ञानिक सोच, जिसे बढ़ावा देने की बात हमारा संविधान भी करता है, कि समाज में स्वीकार्यता बढ़े।
निर्मल बाबा के मामले में पुलिस और प्रशासन की नींद टूटी है और उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर समाज और राज्य को इडामरक्कु और उनके जैसे अन्य लोगों को कानून के पंजे से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की आस्था को चोट पहुंचाने संबंधी कानून का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए कि भारतीय संविधान की तार्किक सोच को बढ़ावा देने की मंशा भी पूरी हो सके और इडामरक्कु जैसे लोगों को संरक्षण मिले। निर्मल बाबा के मामले में मीडिया को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। आखिरकार निर्मल बाबा को भगवान बनाने में मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कहना गलत होगा कि निर्मल बाबा की गतिविधियां धार्मिक है और इडामरक्कु की धर्म विरोधी। यह मान्यता धर्म की गलत समझ पर आधारित है। हर धर्म में आत्मा है वे नैतिक सिद्धांत जिनका प्रतिपादन पैगंबरों और अन्य धार्मिक नेताओं ने समय समय पर किया। संस्थागत धर्म और शरीयत व कर्मकांडों को धर्मगुरुओं ने धर्म का हिस्सा बनाया है। इन धर्मगुरुओं के अपने निहित स्वार्थ होते हैं और वे नहीं चाहते कि आमजन तार्किक ढंग से सोचे और धार्मिक मसलों पर बहस करे। हर धर्म में पैगंबरों ने तत्कालीन समाज में प्रचलित बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। वे न्याय के लिए लड़े। उनके नाम पर जिस संस्थागत धर्म की स्थापना की गई वह बुराई के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, उल्टे वह बुराइयों और यथास्थितिवाद का पोषक है। वह ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है जिससे चंद लोग आनंद करें और बाकी कष्ट में अपना जीवन काटे। मित्रों, इतिहास गवाह है कि वैज्ञानिकों और तार्किक सोच रखने वालों को धर्मगुरुओं के कोप का शिकार होना पड़ा है। गैलीलियो को इसलिए सजा दी गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि धरती गोल है। जिन लोगों ने यह कहने का साहस दिखाया कि महामारियां ईश्वरीय प्रकोप का नतीजा नहीं होती, उन्हें जमकर प्रताड़ित किया गया। हर धर्म का पुरोहित वर्ग तार्किक सोच का घोर विरोधी रहा है क्योंकि इससे उनके विशेषाधिकार प्रभावित होते हैं। जहां यूरोप के समाज ने अंधश्रद्धा के विरुद्ध लड़ाई में लगभग विजय प्राप्त कर ली है, वहीं हम भारतीय आज भी अंधविश्वासों के मकरजाल से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास का कोई भी अध्येता यह जानता है कि ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, पेरिया रामास्वामी नायकर और भगत सिंह जैसे लोग जो सामाजिक परिवर्तन और न्याय के हामी थे में एक बात समान थी, उन सबकी सोच तार्किक थी। इसके विपरीत वे लोग जो सामाजिक रिश्तों को जस का तस बनाए रखना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा धर्म का सहारा लिया। धर्म के नाम पर उन्होंने पहचान आधारित मुद्दों को खोद निकाला और उनका इस्तेमाल अपने प्रभाव को बढ़ाने और अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए किया। हमारे देश के अधिकांश निवासियों की मानसिकता आज भी सामंती है। नई अर्थव्यवस्था के उदय, उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न असुरक्षा के भाव से भी उन्हें जूझना पड़ा है। ऐसी स्थिति में आमजनों, विशेषकर मध्यम और उच्च वर्ग का बाबाओं की शरण में जाना स्वाभाविक है। मित्रों, निर्मल बाबा तो बाबाओं की फौज में मामूली सिपाही है। इस फौज में कई ऐसे बाबा शामिल है जो निर्मल बाबा से कहीं अधिक वाक्पटु, बुद्धिजीवी और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से अपने अनुयायियों की बड़ी बड़ी सेनाएं तैयार कर ली हैं। ये भगवान आस्था के सौदागर हैं। वे आस्था, चमत्कार और आध्यात्मिकता की एक ऐसी चटनी तैयार करते हैं जिसे असुरक्षा और भविष्य के प्रति संकित मध्यम वर्गीय लोगों को जटाकर वे अपना उल्लू सीधा कर सके। जाने माने समाज वैज्ञानिक मीरानंदा अपनी पुस्तक गॉड मार्केट यानी भगवान का बाजार में लिखती है कि पिछले 3 दशकों में इस बाजार में जबरदस्त उछाल आया है। बाबाओं और भगवानों की भीड़ से घिरा आम आदमी मानो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता ही खो बैठा है। इन भगवान के अनुयायियों में शक्तिशाली राजनेता, शीर्ष अधिकारी, डॉक्टर, जज व अरबपति व्यवसायी शामिल हैं। ये भक्त इन भगवानों को रईस और प्रभावशाली बनाते हैं। इसके विपरीत इडामरक्कु जैसे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। यही दर्शाता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। मित्रों, जो लोग बाबाओं की चरण वंदना करते हैं और जो लोग इडामरक्कु जैसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर करते हैं, उन्हें परखने की कसौटी यह होनी चाहिए कि उनमें से कितने
अपने अपने धर्म की नैतिक शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनमें से कितनों को समाज में हो रहे अन्याय और अत्याचार को देखकर गुस्सा आता है, उनमें से कितने जरूरतमंदों की मदद करते हैं, इन सभी मसलों पर बाबा और भगवान कभी अपना मुंह नहीं खोलते। इस बात की महती आवश्यकता है कि हम तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें और निर्मल बाबा जैसे धोखेबाजों के जाल में न फंसें, जिन तथाकथित चमत्कारों की व्याख्या मान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर की जा सकती है, उसे चमत्कार मानने से हम सबको स्पष्ट इनकार कर देना चाहिए। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था अंधविश्वास की तिजारत और राजनीति, और जिसके प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोजी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। और आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सिर्फ प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए अब हम सुनते हैं अभी की सभा में अगला कार्यक्रम जो है हमारी सखियों के लिए। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण में और अभी की सभा का वार्ता का शीर्षक है आप भी कर सकती है और जिसकी लेखिका एवं प्रस्तुत करता है समता बोरेकर जी।

ये प्रस्तुत है नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत, आप भी कर सकती हैं। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता बोरेकर। श्रोता साथियों, दुनिया बदल रही है और साथ साथ महिलाओं को लेकर दुनिया की सोच भी बदल रही है। लोगों ने माना है कि बुद्धिमानी का पैमाना किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि वह अमुक व्यक्ति महिला है या कि पुरुष। ICICI में महिला और पुरुष एग्जीक्यूटिव्स के बीच पदोन्नति की होड़ में प्रायः महिलाओं ने पुरुषों को परास्त किया है। यह न तो संयोग है और न ही पक्षपात। ICICI बैंक के CEO कुंडापुर वामन कामत के अनुसार, द्रुत गति से दौड़ने वाले प्रतिस्पर्धी बिजनेस ग्रुप बुद्धिमान और दूरंदेशी लीडर्स खोजते हैं, महिला या पुरुष को नहीं। यदि इस दौड़ में ICICI बैंक में महिलाएं अव्वल रही तो इसका कारण है उनकी प्रतिभा और प्रतिबद्धता। श्री कामत के अनुसार, महिलाएं पुरुष से अलग सोचती हैं। वे टीम को ज्यादा सलीके से लीड करती हैं। पुरुषों की लॉयल्टी यानी ईमानदारी का आधार होता है प्राप्तियां यानी कि पे पैकेज, जबकि महिलाएं जॉब संतुष्टि को प्राथमिकता देती है। सन 2009 में श्री कामत की सेवानिवृत्ति के बाद ICICI की CEO की पोस्ट संभालने आई चंदा कोचर। दोस्तों, चंदा कोचर किसी जानकारी की मोहताज नहीं है। चंदा कोचर ने ICICI बैंक को देश की दूसरी सबसे बड़ी रिटेल बैंक बनाया है। दोस्तों, 23 साल के अपने अल्पावधि करियर में वे चौंकाने वाली द्रुत गति से दौड़ी। 1984 में उन्होंने ICICI को मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किया था। सन 2004 में वे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। 5 साल बाद वे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी और अभी वे CEO की पोस्ट पर है। साथियों, चंदा कोचर की सफलता की कहानी उनकी दूरदर्शिता और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता की कहानी है। ICICI में चंदा कोचर ने प्रोजेक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट की शुरुआत की। 32 वर्ष की उम्र में

चंदा कोचर आईसीआईसीआई की कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस लॉन्च करने वाली कोर टीम की लीडर बना दी गई। इस दौरान वे अपने कारपोरेट कार्यालय के भव्य कैबिन से उठकर एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां पहले दस्तावेज रखे जाते थे। चंदा कोचर स्वयं कहती है, गैरेज नुमा कैबिन एवं एक जूनियर सहायक के साथ काम करते हुए देखकर मेरे एक पुराने परिचित ग्राहक को लगा था कि मेरी पदावन्नति हो गई है और यह एक सजा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक को देश का दूसरा सबसे बड़ा रिटेल बनाया। उनकी सारी रणनीति पर यदि गौर करें तो कह सकते हैं कि कम मार्जिन, हाई वॉल्यूम बिजनेस टेक्नोलॉजी, वित्तीय सेवाओं की क्रॉस सेलिंग अर्थात एक ही ग्राहक को एक से ज्यादा सेवाओं की बिक्री और ग्राहकोन्मुखी उत्पाद जैसे होम लोन्स, व्हीकल लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड आदि पर चंदा ने ध्यान केंद्रित किया। वे कहती हैं, आईसीआईसीआई की चार ताकत है, वित्तयन, तकनीक, मानव संसाधन और गति। हमें सिखाया गया है कि हमेशा बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। जब एटीएम अस्तित्व में आए तो चंदा कोचर की दूरंदेशी का नमूना है आईसीआईसीआई द्वारा ऑफ साइड एटीएम मतलब शाखा परिसर के बाहर एटीएम लगवाना। एटीएम लाने का श्रेय भी आईसीआईसीआई को ही जाता है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी आधारित कार्य प्रणाली से आईसीआईसीआई ने ग्राहकों को बैंक ही नहीं एटीएम तक पहुंचने की झंझट से भी मुक्त कर दिया है। देश में टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि की शुरुआत करने के साथ ग्राहकों को इनका अभ्यस्त बनाने का श्रेय भी आईसीआईसीआई को ही जाता है। यह चंदा कोचर का ही करिश्मा है कि आज हम अपने घर बैठे बैठे पर्सनल कंप्यूटर से रेल या हवाई जहाज यात्रा का टिकट बुक करवा सकते हैं, होटल में कमरा बुक करवा सकते हैं। इससे कितना मानवीय श्रम बचता है, यह शोध का मुद्दा है। पर चंदा कोचर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पेपरलेस बैंकिंग ने आईसीआईसीआई का परिचालन व्यय घटाया है और ग्राहकों को सेवा की जेट गति प्रदान की है। आईसीआईसीआई के ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नचिकेतन मोर तो चकित हैं कि जिन ग्रामीण ग्राहकों को हम नादान और नासमझ मानते हैं, उन्होंने भी तकनीक आधारित बैंकिंग सेवाओं को पसंद किया है। वे कहते हैं कि आईसीआईसीआई के 18% ग्रामीण ग्राहक हैं और वे ऑनलाइन लेन देन करने लगे हैं। चंदा कोचर की दूसरी नवोन्मेषी पहल है बैंक के रिटेल ग्राहकों को वित्तीय सेवाओं की क्रॉस सेलिंग। बैंक ने रिटेल बैंकिंग उत्पादों के साथ साथ ग्राहकों को होम लोन्स, कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड बेचे हैं, जिनसे आईसीआईसीआई का विभिन्न बिजनेस सेगमेंट में कारोबार कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, दिलचस्प व्यक्तित्व की धनी चंदा कोचर अपनी सफलता का श्रेय भारत की परिवार व्यवस्था को देती हैं। वो कहती हैं, हमारे देश के सामाजिक परिवेश व संयुक्त परिवार प्रणाली से मिले समर्थन के बलबूते पर भारतीय महिलाओं ने घरेलू जवाबदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। जिन महिलाओं को मौका मिला है, उन्होंने इस समर्थन का घर के बाहर भी अच्छा दोहन किया है। यह सुविधा दूसरे देश की किसी भी अन्य महिला को उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपने देखा कि यदि महिलाओं को उचित समर्थन और अनुकूल परिस्थितियां मिले तो वह इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को न सिर्फ बराबरी से टक्कर दे सकती हैं, बल्कि उनसे काबिल भी साबित हो सकती हैं। दोस्तों, महिलाओं की सीमाएं अनंत हैं। यदि उन्हें सही दिशा और समर्थन मिल जाए तो वे अभूतपूर्व सफलता अर्जित कर सकती है। चंदा कोचर आज कारपोरेट जगत की जानी मानी हस्ती है। हम किसी भी क्षेत्र को देखें, आज हर कहीं महिलाओं का ही वर्चस्व है। उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभा को जाना और इसे विकसित होने दिया। वे प्रतिभा आप में भी हो सकती है, बस उसे खोज निकालने की देर है। अपने दिल की आवाज सुनिए। आज हमारे देश में नारी शिक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में निश्चय ही बदलाव आया है और यह बदलाव सच में ही सुकून देने वाला है।
साथियों, अपने आसपास, अपने घर परिवार में देखिए, क्या कहीं कोई चंदा कोचर छुपकर तो नहीं बैठी। मेरा मानना है कि महिलाओं को सबसे बड़ी बाधा घर से निकलने की ही होती है, क्योंकि घर से निकलते ही उनका परिवार, समाज, नाते रिश्तेदार और सबसे पहले उनके माता पिता आड़े आ जाते हैं।

शीर्षक था आप भी कर सकती है और जिसकी प्रस्तुतकर्ता एवं लेखिका थी समता भोरेकर जी। सखियों, आपको मैं चंग पंक्तियां कहना चाहूंगी। नारी फूलों की कोमल छाया में, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। तो सखियों, हिम्मत रखिए और सकारात्मक सोचिए और आप भी कर सकती है। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है शुभ प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथ ही इस समय आप आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, कार्यक्रम मन दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी की वार्ता का शीर्षक है आइए अच्छा सोचे अच्छा करे, और लेखक व प्रस्तुत करता है स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। मन दर्पण, आज के हमारे मन दर्पण कार्यक्रम का शीर्षक है, आइए अच्छा सोचें, अच्छा करें। मित्रों, कहते हैं कि इंसान को कोई भी अच्छा काम करने से पहले एक बार मन रूपी आईना अवश्य देख लेना चाहिए। अब यूं तो लगभग हर कोई दिन में एक बार तो आईना देखता ही है, लेकिन ये केवल मुंह देखने के लिए ही नहीं, ये भी जरूर देख लेना चाहिए कि जो भी काम वो आज करने जा रहा है उसे कर पाने की क्षमता और योग्यता उसमें है भी या नहीं है। तो इस विचार के बाद ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगर काम उसके बूते के बाहर है तो वो कुछ और करे, क्योंकि अगर ऐसा काम जो वो नहीं कर सकता है, जो उसकी ताकत के भीतर नहीं है, तो वो लोगों की हंसी का पात्र हो जाएगा। बड़ा कुछ करने का सपना है तो उस दिशा में आगे कदम बढ़ाने से पहले अपने भीतर के आईने में, यानी मन रूपी दर्पण में एक बार जरूर झांक ले। कहते हैं कि इस मन के दर्पण की हजार आंख होती हैं। वैसे तो मनुष्य की दो आंखें होती हैं, लेकिन मन रूपी दर्पण की तो हजार आंखें होती हैं। तो इसलिए अगर इसमें देखते हैं तो ये झूठ नहीं बोलता। तो मन का ये दर्पण ठीक ठीक बता देगा कि जो भी हम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत। अगर जिद में आकर हमने अपने मन रूपी दर्पण की बात को टालने की या फिर झुटलाने की कोशिश की, तो हो सकता है जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसमें शायद सफलता नहीं मिले। तो सीधी सी बात है कि अगर आंखों से नहीं दिखाई देता तो कसीदा या डिजाइन बनाने की क्या जरूरत है। अगर ऐसा जिद में आकर किया तो वो जो सुई की नोक है ना, वो तो उंगलियों को लहूलहान कर देगी, क्योंकि आपको डिजाइन बनाना या कसीदा करने की जो कला है वो आती ही नहीं है, तो ऐसा काम क्यों करना। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, श्रोताओं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे दूसरों की देखा देखी ऐसे काम करने लगते हैं या करने की कोशिश करने लगते हैं जिसकी करने की जो योग्यता होती है वो उनमें है ही नहीं। अब उन्हें ये गलत फहमी रहती है कि जब सामने वाला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई, ऐसे में अगर उसे कोई उसका अपना उसे ऐसा करने से रोकने की समझाइश दे तो मुमकिन है, संभव है कि देखा देखी करने वाले को बात समझ में आ जाए कि भाई उसने अगर ऐसा किया है तो मैं भी कर सकता हूं। ये पहले विचार कर लेना चाहिए कि मैं इस योग्य हूं कि नहीं, उसके बाद ही अपना कदम बढ़ाना चाहिए। श्रोताओं, इसी प्रसंग में एक घटना हमें याद आ गई। शहर में कुछ लड़के लड़कियों का किसी टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन होना था, और जो ऑडिशन करने वाले लोग थे, यानी चयनकर्ता जो थे, वो मुंबई से आए थे। तो मेरे पड़ोस के वर्मा जी का बेटा भी इसमें भाग लेना चाहता था। अब उसने कॉलेज में एक दो नाटकों में भाग भी लिया था, लेकिन ऑडिशन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी वो
मेंटली यानी कि मानसिक रूप से कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा। घर में मां को डांट देता, अगर वो नाश्ता या खाना खाने को कहती तो कहती, ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, खा लूंगा। इसी तरह पिता से भी एक दिन उलझ पड़ा, जब पिता ने उसे एक अर्जेंट चिट्ठी रजिस्ट्री से भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने को कहा तो उसने पलट कर जवाब दिया, आपको मालूम नहीं क्या कि मुझे ऑडिशन देना है, तैयारी करनी है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, आपकी तरह मुझे वो ऑफिस क्लर्क नहीं बनना है। और फिर जानते हैं पोस्ट ऑफिस में कितनी भीड़ रहती है, मैं घंटों तक लाइन में तो नहीं खड़ा रह सकता। बेटे के इस अंदाज और बोलने के तरीके से पिता कुछ खिन्न से हो गए, उदास हो गए। बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन शायद उसे कोसते हुए कमरे से बाहर निकले होंगे कि देखो ये लड़का इतना सा भी काम नहीं करता। तो खैर, इसके बाद ऑडिशन के ठीक दो दिन पहले वो लड़का अचानक से बीमार हो गया। दवाई चली पर एन ऑडिशन के दिन वो इतना स्वस्थ नहीं था कि भाग लेने जा सके। नतीजा ये हुआ कि वो नहीं जा सका और उसके बाद तो उसका व्यवहार बिल्कुल ऊल जलूल होता चला गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़का चुपचाप माता पिता को बिना बताए घर से कुछ नकदी और जेवर चुरा करके घर से भाग गया। बेचारे माँ बाप सिवाय रोने धोने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। और मोहल्ले में तो जितने मुंह उतनी बातें। जो कुछ अपने थे उन्हें जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने अपना दुख भी प्रकट किया, अफसोस जाहिर किया कि ये क्या किया इसने। तो प्रिय श्रोता मित्रों, ये घटना एक नहीं कई घरों की कहानी है और मुद्दा वही है, देखा देखी करना, बिना सोचे विचारे, बिना अपने मन का सही मार्गदर्शन पाए ऐसे काम में हाथ डालना जिसमें सफलता और यश का शिखर मिल ही जाएगा, ये नितांत बुद्धिहीन और नासमझी का फैसला माना जाएगा, फैसला कहा जाएगा। एक्टिंग अगर आपको करनी है, किसी भी युवा या युवती को, लड़के या लड़की को एक्टिंग करनी है, फिल्मों में, टीवी सीरियल में, या फिर सिंगर बनना है, गायक गायिका बनना है, तो सबसे पहले अपनी आवश्यक पढ़ाई पूरी कर लें, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी बनना है उसका विधिवत प्रशिक्षण लें, यानी जिसको कहते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है हर एक की, एक्टिंग की भी ट्रेनिंग होती है और गायक बनने की, गाना गाने की तो बहुत कठिन प्रशिक्षण उसका होता है, कठिन ट्रेनिंग होती है। तो ये सब प्रशिक्षण लेने के बाद ही इस लाइन में आगे बढ़ें। लाखों की भीड़ में अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है और आपने वाकई मेहनत की है तो फिर एक न एक दिन भले ही महानायक जैसी शिखरता ना भी मिले, लेकिन भीड़ से अलग आपकी अपनी एक खास पहचान बन कर रहेगी। तो अंत में चलते चलते यही कहना है कि हमेशा अपनी योग्यता अनुसार अच्छा सोचें, अच्छा करें,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था आइए अच्छा सोचे अच्छा करे, और लेखक व प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा जी। दोस्तों, सदैव बड़ा और अच्छा सोचे, हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर चले और अच्छी बातों का स्मरण करे, सब अच्छा ही होगा। ज्यादातर लोग बहुत सीमित दायरों में रहकर ही सोचते हैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। और तो और, जो काम मन को भाए वही करे, जहाँ तक हो सके अपनी रुचि के अनुसार ही काम चुने, क्योंकि ऐसा करने से हम उसमें अपना 100% दे सकते हैं। इसके अलावा जीवन को संतुलित बनाना सीखे। हमें जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो घर और बाहर दोनों स्तर का हो सकता है। इसमें हमें चाहिए कि हम अपना संतुलन बना के रखें, यही हमारी सफलता का आधार है। असफलता से घबराना कैसा? असफलता किसी काम को फिर से शुरू करने का मौका देती है, उसी काम को और भी बेहतर तरीके से किया जाए। इसलिए सफलता असफलता की चिंता किए बगैर पूरे मन से काम करे, कर्मठ बने। कुछ लोग लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करते। सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के अनुसार मेहनत करे। श्रोताओं, अपनी क्षमता पर विश्वास रखे। आपके मन में यह भरोसा जरूर होना चाहिए कि मैंने अपने लक्ष्य को साधने के लिए जो सपने देखे हैं, उन्हें मैं पूरा कर सकता हूँ। साथियों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आप सभी का कार्यक्रम पर्यावरण में हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की वार्ता का शीर्षक है वनों का संरक्षण और लेखक व प्रस्तुत करता है स्वर्गीय माइकल हॉजेस जी।

पर्यावरण के अंतर्गत प्रस्तुत है वार्ता वनों का संरक्षण। इसके लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं माइकल हॉजिस। श्रोता साथियों, जिस प्रकार से हमारे जीवन में अन्य किसी प्राकृतिक संसाधनों का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से घास के मैदानों और वनों का भी अत्यधिक महत्व है। एक ओर जहां वन प्राकृतिक सौंदर्य और उसके संतुलन के कारण और प्रतीक हैं, वहीं ये वन्य जीवों के आश्रय स्थल भी हैं। ये वन्य जीव वनों का उपयोग आश्रय स्थल और भोजन के रूप में करने के साथ साथ प्रकृति के साथ उसका संतुलन भी बनाए रखते हैं। इन्हीं के माध्यम से जलवायु को भी बनाए रखा जाता है। वनों से हमें कई प्रकार की औषधियां और वनोपज प्राप्त होती हैं। वनों की कटाई से अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो हमारे जीवन को निरंतर कठिनाई की ओर ले जा रही हैं। इसी प्रकार से घास के मैदानों के विषय में भी कहा जा सकता है, वन हो चाहे घास के मैदान हो, इससे हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ ही मिलते हैं। श्रोता साथियों, तो क्या हमें केवल इसलिए ही वनों के संरक्षण के विषय में सोचना चाहिए या वन संरक्षण की पहल करना चाहिए कि वनों से हमें लाभ मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। वनों से राजस्व की प्राप्ति होती है, इसलिए निसंकोच रूप से कहा जाता है कि वन है तो जीवन है। हमारे अपने इस जीवन के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। वनों का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वनों से ही पर्यावरण में स्थिरता कायम रहती है, यानी कि पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। वन हमारी भलाई के लिए ही प्रकृति ने हमें सौंपा है। इस प्रकार से वन हमारे लिए प्राकृतिक धरोहर है। हमारे निवास स्थान की तरह वन भी वन्य जीव जंतुओं के लिए आवासीय स्थल हैं। वनों से लोगों की, विशेषकर आदिवासियों की, बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। वन के महत्व को हमारे जीवन में इस तरह से भी आंका जा सकता है कि वन है तो मिट्टी है, मिट्टी है तो खेती है, और खेती है तो जीवन है। यही कारण है कि हमारे लिए इन परिस्थितियों में वनों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। जैसा कि वार्ता के आरंभ में यह कहा जा चुका है कि वनों से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है, तो आइए हम वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ पर भी एक नजर डाल लें। सबसे पहले हम बात करते हैं वनों से अप्रत्यक्ष लाभ की। वनों से अप्रत्यक्ष रूप से हमें यह लाभ होता है कि वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं। यही काम वनस्पतियां और झाड़ियां भी करती हैं। इनकी जड़ें, विशेषकर वृक्षों की जड़ें, गहराई में भी मिट्टी को पकड़कर रखती हैं। ये वन ही होते हैं जो क्षेत्र में जलवायु को एक रूप या एक समान बनाए रखते हैं। बारिश में जब नदियों में बाढ़ आती है, तब नदी का पानी उफन कर वृक्षों के कारण ही नदी से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वृक्षों से ही नदी के किनारे ऊंचे बने रहते हैं। इसलिए अधिकतर नदी की बाढ़ का पानी नदी से बाहर निकलकर फैल नहीं पाता है। कई बार बाढ़ अपने उग्र रूप में तभी तबाही मचाती है जब वह उग्र और उफनती नदी के ऊंचे किनारों को पार करके समतल भूमि पर उतर आती है। तब बाढ़ का भयावह रूप खेतों, घरों और भूमि के एक बड़े भाग को पानी में जलमग्न कर देता है। इसीलिए नदी के तट पर बड़े और घने वृक्षों का होना नितांत ही आवश्यक है, ताकि बाढ़ के प्रकोप से बहुत हद तक बचा जा सके। वनों की एक खासियत यह भी है कि वे वायुमंडल की नमी को लगातार बनाए रखते हैं और बादलों को वर्षा करने के लिए आकर्षित करते हैं। जिन क्षेत्रों में सघन वन होते हैं, इसलिए वहां बहुतायत से वर्षा होती है, और जिन क्षेत्रों में वनों की कमी है या वन नहीं है, वहां पर कम वर्षा या फिर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ता है। श्रोता साथियों, पौधारोपण के कार्य को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि यही पौधे वृक्ष का रूप धारण करके पर्यावरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वृक्ष ही होते हैं जो अपनी जड़ों के माध्यम से वर्षा के जल को भूमि में पहुंचाते हैं और उस जल को संग्रहित करते हैं। यदि ये वृक्ष ऐसा न करें तो वर्षा का जल
भूमि में संग्रहित होने की बजाय व्यर्थ में बह जाए। इस प्रकार से वृक्ष भूमि के नीचे जल का संग्रहण करके भूमि के जलस्तर में वृद्धि भी करते हैं। वनों के वृक्ष एक और महत्वपूर्ण कार्य यह करते हैं कि वे पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाते हैं तथा साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित भी रखते हैं। इससे वायु शुद्ध बनी रहती है। यही कारण है कि वनों से प्राणदायी शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन का विसर्जन करते हैं। श्रोता साथियों, इसके अलावा वन प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि भी करते हैं, उस प्राकृतिक सौंदर्य में जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और पर्यटक उस सौंदर्य को निहारने और उसका आनंद लेने के लिए वनों की रोमांचक यात्रा करते हैं। क्योंकि वनों में अनेक प्रकार के वन्य जीव और जंतु भी रहते हैं, इसलिए उनके प्रति अपनी जिज्ञासा मिटाने, उनके रहन सहन, उनकी आदतों और उनसे होने वाले लाभ और हानि का विश्लेषण करने के लिए भी जीव वैज्ञानिक, अन्य वैज्ञानिक तथा विशेषज्ञ जंगल की साहसिक यात्रा करते हैं, उन पर शोध कार्य करते हैं और उनका जीवन स्तर वनों में कायम रखने के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि वनों को सघन बनाए रखने में वन्य जीव जंतुओं की भी अपनी एक महत्वपूर्ण और एकल भूमिका होती है। यही वन्य जीव और जंतु प्रकृति प्रदत्त अपनी आदतों से, अपने रहन सहन से वनों के क्षेत्रों में इजाफा भी करते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। श्रोता साथियों, हम बात कर रहे थे वनों से अप्रत्यक्ष लाभ की। आइए अब बात करते हैं वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ की। आदिकाल से मानव ने सहजता से प्राप्त होने वाले ईंधन के रूप में लकड़ी और पशु के मल यानी कि गोबर की पहचान की। आदिकाल का यह सिलसिला हमारे देश के गांवों में आज भी प्रचलन में है। भारत के गांवों में आज भी ईंधन के लिए लकड़ी और गाय भैंस के गोबर का ही उपयोग किया जाता है। लकड़ी और गोबर का ईंधन देश के कुल शक्ति संसाधन के रूप में लगभग 35% उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वनों की लकड़ियों से ईंधन का काम भी लिया जाता है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत खेतों, सड़कों और रेल लाइनों के किनारे वृक्षों के लिए पौधारोपण किया गया। हर बच्चे के लिए एक पेड़ और वर्तमान का नारा गो ग्रीन विकसित किया जा रहा है। गो ग्रीन का सरल अर्थ है हरियाली की ओर अग्रसर होना, हरी तिमा फैलाना, हरा भरा कर देना। इसीलिए वर्तमान में वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। श्रोता साथियों, वन और उसके वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं और रखते हैं, बल्कि वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। साथ ही हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। तो क्या हमें भी वृक्ष और वनों का संरक्षण नहीं करना चाहिए? क्या हमें भी गो ग्रीन नारे के साथ हरा नहीं हो जाना चाहिए? चारों ओर हरितिमा नहीं फैलाना चाहिए? वनों का संरक्षण नहीं करना चाहिए? पौधारोपण नहीं करना चाहिए ताकि भविष्य में हमें सघन वन मिले, वृक्ष मिले? इसीलिए हमें हरियाली फैलानी चाहिए।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था वनों का संरक्षण और जिसके लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता थे स्वर्गीय माइकल हॉजिस जी। दोस्तों, पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति द्वारा कुछ चीजें उपहार के रूप में मिली है। प्रकृति ने हमें सूर्य, चांद, हवा, जल, पहाड़, हरे भरे वन और धरती के नीचे छिपी हुई खनिज संपदा धरोहर के रूप में हमारी सहायता के लिए प्रदान किए हैं। मनुष्य अपनी मेहनत से धन कमा सकता है, लेकिन प्रकृति की धरोहर को अथक प्रयास करने के पश्चात भी बढ़ा नहीं सकता। प्रकृति द्वारा दी गई ये सभी वस्तुएं सीमित है। आज हम सबको इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि प्रकृति ने धरोहर के रूप में जो भी वस्तुएं दी हैं, उनका हम सब अच्छी तरह से प्रयोग करें और आने वाली पीढ़ी के लिए इन वस्तुओं को संभाल कर रखें तथा इनके स्थान पर दूसरे विकल्प ढूंढने का प्रयास करें। अतः यह पृथ्वी हमारी धरोहर है और हर तरीके से इसको संभाल कर रखना हम सभी का कर्तव्य है। साथियों, वक्त की सुइयां इशारा कर रही है और अब हमें बंदिशें लगा रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। इजाजत दीजिए अपनी रेडियो सहेली ज्योति कुजूर को और खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो वेरिटास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक जी को कि वो आए और ढेर सारे कार्यक्रमों से आपका मनोरंजन करे और ज्ञान बढ़ाए। नमस्कार।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारे से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं पवित्र बाइबल के पाठ से। तो आइए सुनते हैं आज का पहला पाठ जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वो उनकी तरह निष्पाप है, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान ये है, जो धर्माचरण नहीं करता वो ईश्वर की संतान नहीं है, और वो भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दूसरे दिन योहन फिर अपने दो शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी ये बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रेयस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वो उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत योहन के अनुसार। पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से RV मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVA हिंदी। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है RVA हिंदी। दोस्तों, अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड एड्रेस है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के अंतर्गत आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका शीर्षक है पानी पर केंद्र के हक में ही राष्ट्रहित। श्रोताओं, देश के 256 जिलों के 33 करोड़ से अधिक सूखे से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु सरकार की चेतना को जागृत करने के लिए प्रबुद्ध समाज सेवियों द्वारा देशव्यापी जल सत्याग्रह का समापन हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने पानी को लेकर आपातकाल लगाने की बात करके जल संकट पर एक नई संवैधानिक बहस छेड़ दी। श्रोताओं, संसद में जब महत्वपूर्ण विषयों पर राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, तब पानी के बारे में अधिकतर नेताओं का आम मत होना सुखद है। श्रोताओं, इसकी बानगी लोकसभा की जल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में मिलती है, जिसमें पानी को संविधान की समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की गई है। संविधान के अनुच्छेद 262 और केंद्र की सूची प्रविष्टि 56 में दिए गए अधिकार के बावजूद पानी और नदी पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची का कानून अगर पारित हो गया तो पानी के बारे में केंद्र सरकार भी कानून बना सकेगी। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता 30 वर्ष पहले 1986 में ही समझते हुए भूजल पर केंद्र सरकार के अधिकार पर जोर दिया था। संसद की लोक लेखा समिति की 2014-15 की आठवीं रिपोर्ट में जल प्रदूषण की चर्चा करते हुए पानी को समवर्ती सूची में लाने की बात की गई है। श्रोताओं, भाजपा तथा टीआरएस के कुछ सांसदों ने पानी को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्राइवेट बिल भी पेश किए हैं।

शारीरिक शोषण से हालात गंभीर हो गए हैं। श्रोताओं, बढ़ती आबादी और उपभोग से आजादी के 70 साल बाद देश में पानी के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1/4 रह गई है। श्रोताओं, पिछले साल देश में लगभग 1879 अरब घन मीटर सालाना पानी उपलब्ध था, जिसमें सिर्फ 1123 अरब घन मीटर का ही इस्तेमाल हो पाया था। बकाया पानी के बेहतर प्रबंधन एवं इस्तेमाल के लिए देशव्यापी नजरिए की जरूरत है, क्योंकि पानी राज्यों की सीमाओं के राजनीतिक भूगोल को नहीं समझता। श्रोताओं, प्रगतिशील राज्यों ने इस बात को पहले ही समझ लिया था, जिस वजह से डैम सुरक्षा विधेयक 2010 हेतु बंगाल और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार को पानी के बारे में कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। श्रोताओं, सूखे पर केंद्र सरकार की मदद मांगने वाले राज्य पानी को समवर्ती सूची में लाने का विरोध कैसे कर सकते हैं? अभी हाल में 10 राज्यों ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 42,143 करोड़ रुपए की मांग की है। लातूर में पानी के संकट पर केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन से पानी भेजा गया। श्रोताओं, पंजाब द्वारा सतलज जल संधि के उल्लंघन पर हरियाणा ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अधिकारों के संरक्षण की गुहार लगाई थी, जिसमें पानी पर केंद्र सरकार के अधिकार का तर्कसंगत मामला बनता है। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख 2002 में एक रोचक मामला आया, जिसमें नदियों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हुए उन्हें आपस में जोड़ने की बात की थी। नदियों को जोड़ने की योजना कांग्रेस के शासनकाल में केएल राव ने 1972 में बनाई थी। इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मूर्त रूप देते हुए टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके मुखिया सुरेश प्रभु बने हुए थे। श्रोताओं, जनहित याचिका में 10 साल की लंबी सुनवाई के बावजूद 2012 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं पारित किया। श्रोताओं, क्रियान्वय में विलंब से प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है, और अब इसका क्रियान्वय इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि राज्य पानी की अधिकता को मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रोताओं, पर्यावरण विस्थापन एवं अन्य कारणों से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आशंका व्यक्त की जा रही है। विरोध के आधार पर प्रोजेक्ट रोकने की बजाय समस्याओं का निराकरण होना आवश्यक है। योजना में विलंब से बुंदेलखंड, विदर्भ, कालाहांडी और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में भयानक मानवीय त्रासदियां हो रही हैं। श्रोताओं, जिस वजह से देश में पानी का आपातकाल लागू करने की बात होने लगी है, अर्थव्यवस्था के फैलाव में जैसे खनिज पदार्थों का ट्रांसफर होता है, वैसे ही मानवीय समाज को बचाने के लिए पानी का नदियों में ट्रांसफर हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है। श्रोताओं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे जल संकट वाले देश को 2050 तक जीडीपी में 6% तक की हानि हो सकती है। श्रोताओं, भारत में विश्व की 18% आबादी है, पर पानी के स्रोत सिर्फ 4% हैं। अगर हम बढ़ती आबादी पर नियंत्रण पर असफल रहे तो पानी के प्रबंधन के नए तरीके अपनाने ही होंगे। एनएसडीआई की रिपोर्ट के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 2% वृद्धि होने के साथ सिंचाई में 33 MH की बढ़ोतरी हो सकती है। श्रोताओं, इससे 34,000 मेगावाट जल विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होने के साथ रोजगार में भी 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें ग्रामीण समाज में एक नई कृषि क्रांति हो सकती है। श्रोताओं, सूखती नदियों की बड़ी जवाबदेही राजनेताओं की है, जो राज्यों में संगठित तौर पर अवैध माइनिंग करवाते हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी के कारोबार से भी राजनेता संपन्न हो रहे हैं। राज्यों के बीच पानी की लड़ाई से किसानों की फसलों को फायदा हो ना हो, पर
दलों की चुनावी

कल जरूर अच्छी हो जाती है। पानी राष्ट्रीय संपत्ति है, जिसके बेहतर उपयोग के लिए केंद्रीय नियमन होना ही चाहिए। संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर गतिरोध है, पर पानी को समवर्ती सूची में लाने के यूपीए सरकार तथा वर्तमान एनडीए सरकार ने पानी को समवर्ती सूची में लाने की पैरवी की है। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर पानी के कानून को पारित करके क्या राजनेता देश को जोड़ पाएंगे? पानी के आपातकाल के इस भयानक दौर में सामूहिक विमर्श और सहमति ही देश को पानी और खुशहाली ले पाएगी। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम पुनः सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।

रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को प्रवीण परमार का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की इस प्यारी से सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे आज का बाइबल पाठ, प्रभु वचन, कार्यक्रम पर्यावरण और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं पवित्र बाइबल के पाठ से। तो आइए सुनते हैं आज का पहला पाठ, जो लिया गया है संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वो उनकी तरह निष्पाप है, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान ये है, जो धर्माचरण नहीं करता वो ईश्वर की संतान नहीं है, और वो भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पहला पाठ जो लिया गया था संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य संख्या 7 से 10 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया है संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दूसरे दिन योहन फिर अपने दो शिष्यों के साथ वहीं था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी ये बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहां रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहां रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेत्रुस का भाई अंद्रेयस था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं, और वो उसे ईसा के पास ले गया। ईसा ने उसे देखकर कहा, तुम योहन के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेत्रुस कहलाओगे।

दोस्तों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार जो लिया गया था संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 से 42 तक, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveasia.org पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप स्टोर से आरवी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है rva hindi। हमारा ट्विटर हैंडल है @rva hindi। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है rva hindi। दोस्तों, अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड एड्रेस है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, परविंदर अरोरा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण के अंतर्गत आइए सुनते हैं आज की वार्ता, जिसका शीर्षक है पानी पर केंद्र के हक में ही राष्ट्रहित। श्रोताओं, देश के 256 जिलों के 33 करोड़ से अधिक सूखे से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु सरकार की चेतना को जागृत करने के लिए प्रबुद्ध समाज सेवियों द्वारा देशव्यापी जल सत्याग्रह का समापन हुआ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने पानी को लेकर आपातकाल लगाने की बात करके जल संकट पर एक नई संवैधानिक बहस छेड़ दी। श्रोताओं, संसद में जब महत्वपूर्ण विषयों पर राजनीतिक गतिरोध चल रहा था, तब पानी के बारे में अधिकतर नेताओं का आम मत होना सुखद है। श्रोताओं, इसकी बानगी लोकसभा की जल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में मिलती है, जिसमें पानी को संविधान की समवर्ती सूची में डालने की सिफारिश की गई है। संविधान के अनुच्छेद 262 और केंद्र की सूची प्रविष्टि 56 में दिए गए अधिकार के बावजूद पानी और नदी पर केंद्र सरकार का कोई अधिकार नहीं है। समवर्ती सूची का कानून अगर पारित हो गया तो पानी के बारे में केंद्र सरकार भी कानून बना सकेगी। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता 30 वर्ष पहले 1986 में ही समझते हुए भूजल पर केंद्र सरकार के अधिकार पर जोर दिया था। संसद की लोक लेखा समिति की 2014-15 की 8वीं रिपोर्ट में जल प्रदूषण की चर्चा करते हुए पानी को समवर्ती सूची में लाने की बात की गई है। श्रोताओं, भाजपा तथा टीआरएस के कुछ सांसदों ने पानी को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्राइवेट बिल भी पेश किए हैं। शिक्षा, बिजली एवं चिकित्सा जैसे विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं। उसी तर्ज पर पानी भी संविधान की समवर्ती सूची में आने से जल संकट से निपटने में आसानी होगी। आलोचकों के अनुसार पानी को केंद्र सरकार के दायरे में लाने से निजीकरण तथा बाजारवाद हावी होने की उम्मीद है, पर ऐसे खतरे तो पानी पर राज्य सरकार के नियंत्रण में ज्यादा हैं। श्रोताओं, बढ़ती आबादी के साथ नदियां सुकुड़ रही हैं और भूजल स्तर खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा है। देश में पानी 6,607 ब्लॉक्स हैं, जिनमें 2,000 ब्लॉक्स में पानी के अत्यधिक शोषण से हालात गंभीर हो गए हैं। श्रोताओं, बढ़ती आबादी और उपभोग से आजादी के 70 साल बाद देश में पानी के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1/4 रह गई है। श्रोताओं, पिछले साल देश में लगभग 1879 अरब घन मीटर सालाना पानी उपलब्ध था, जिसमें सिर्फ 1,123 अरब घन मीटर का ही इस्तेमाल हो पाया था। बकाया पानी के बेहतर प्रबंधन एवं इस्तेमाल के लिए देशव्यापी नजरिए की जरूरत है, क्योंकि पानी राज्यों की सीमाओं के राजनीतिक भूगोल को नहीं समझता। श्रोताओं, प्रगतिशील राज्यों ने इस बात को पहले ही समझ लिया था, जिस वजह से डैम सुरक्षा विधेयक 2010 हेतु बंगाल और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने केंद्र सरकार को पानी के बारे में कानून बनाने का अधिकार दे दिया था। श्रोताओं, सूखे पर केंद्र सरकार की मदद मांगने वाले राज्य पानी को समवर्ती सूची में लाने का विरोध कैसे कर सकते हैं? अभी हाल में 10 राज्यों ने सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार से 42,143 करोड़ रुपए की मांग की है। लातूर में पानी के संकट पर केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय द्वारा विशेष ट्रेन से पानी भेजा गया। श्रोताओं, पंजाब द्वारा सतलज जल संधि के उल्लंघन पर हरियाणा ने केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख अधिकारों के संरक्षण की गुहार लगाई थी, जिसमें पानी पर केंद्र सरकार के अधिकार का तर्कसंगत मामला बनता है। श्रोताओं, सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख 2002 में एक रोचक मामला आया, जिसमें नदियों के राष्ट्रीयकरण की बात करते हुए उन्हें आपस में जोड़ने की बात की थी। नदियों को जोड़ने की योजना कांग्रेस के शासनकाल में के.एल. राव ने 1972 में बनाई थी।
इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने मूर्त रूप देते हुए टास्क फोर्स का गठन किया, जिसके मुखिया सुरेश प्रभु बने हुए थे। श्रोताओं, जनहित याचिका में 10 साल की लंबी सुनवाई के बावजूद 2012 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं पारित किया। श्रोताओं, क्रियान्वयन में विलंब से प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है और अब इसका क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि राज्य पानी की अधिकता को मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रोताओं, पर्यावरण विस्थापन एवं अन्य कारणों से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आशंका व्यक्त की जा रही है। विरोध के आधार पर प्रोजेक्ट रोकने की बजाय समस्याओं का निराकरण होना आवश्यक है। योजना में विलंब से बुंदेलखंड, विदर्भ, कालाहांडी और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में भयानक मानवीय त्रासदियां हो रही हैं। श्रोताओं, जिस वजह से देश में पानी का आपातकाल लागू करने की बात होने लगी है, अर्थव्यवस्था के फैलाव में जैसे खनिज पदार्थों का ट्रांसफर होता है, वैसे ही मानवीय समाज को बचाने के लिए पानी का नदियों में ट्रांसफर हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी भी है। श्रोताओं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे जल संकट वाले देश को 2050 तक जीडीपी में 6% तक की हानि हो सकती है। श्रोताओं, भारत में विश्व की 18% आबादी है पर पानी के स्रोत सिर्फ 4% हैं। अगर हम बढ़ती आबादी पर नियंत्रण पर असफल रहे तो पानी के प्रबंधन के नए तरीके अपनाने ही होंगे। एनएसडीआई की रिपोर्ट के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन से खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 2% वृद्धि होने के साथ सिंचाई में 33 MH की बढ़ोतरी हो सकती है। श्रोताओं, इससे 34,000 MW जल विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होने के साथ रोजगार में भी 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। इसमें ग्रामीण समाज में एक नई कृषि क्रांति हो सकती है। श्रोताओं, सूखती नदियों की बड़ी जवाबदेही राजनेताओं की है जो राज्यों में संगठित तौर पर अवैध माइनिंग करवाते हैं। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी के कारोबार से भी राजनेता संपन्न हो रहे हैं। राज्यों के बीच पानी की लड़ाई से किसानों की फसलों को फायदा हो ना हो पर दलों की चुनावी फसल जरूर अच्छी हो जाती है। पानी राष्ट्रीय संपत्ति है जिसके बेहतर उपयोग के लिए केंद्रीय नियमन होना ही चाहिए। संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर गतिरोध है पर पानी को समवर्ती सूची में लाने के यूपीए सरकार तथा वर्तमान एनडीए सरकार ने पानी को समवर्ती सूची में लाने की पैरवी की है। राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर पानी के कानून को पारित करके क्या राजनेता देश को जोड़ पाएंगे? पानी के आपातकाल के इस भयानक दौर में सामूहिक विमर्श और सहमति ही देश को पानी और खुशहाली ले पाएगी। इसी के साथ वार्ता समाप्त करती हूँ। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम पर्यावरण और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगर आप यह कार्यक्रम पुनः सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर आर्काइव में यह कार्यक्रम पुनः सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए अपने मित्र प्रवीण परमार को। धन्यवाद।

एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत SSPS। दोस्तों, अभी की सभा 11 से 12 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुंबकम, नाटक और भक्ति गीत। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: बिहार में खेती का भविष्य आपको कैसा दिखता है मुखिया जी? क्या कृषि के माध्यम से बिहार में एक और हरित क्रांति की आशा की जा सकती है?
1: बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है
0: जी।
1: अगर कृषि के क्षेत्र में उचित ध्यान दिया जाएगा तो निश्चय ही क्रांति की आशा की जा सकती है। ये सब कुछ सरकार की कृषि नीति के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन बात यह है कि जब तक सरकार इस दिशा में सक्रिय नहीं होगी तब तक कुछ किया नहीं जा सकता।
0: एक बात ये बताइए कि किसान आप किसे कहेंगे, क्या उसका मापदंड आपकी नजर में क्या है?
1: देखिए भाई, किसान से मेरा मतलब खेती करके अपनी आजीविका चलाने वाला व्यक्ति है, न कि जमीन का मालिक जो कोई और काम करता हो। हाल ही में मुझे एक पब्लिक स्कूल में जाने का मौका मिला
0: जी।
1: वहां हमें एक भी छात्र नहीं मिला जो किसान का बेटा हो या फिर भविष्य में किसान बनना चाहता हो। ये स्थिति कृषि के वर्तमान और भविष्य दोनों को ही प्रतिबिंबित करता है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसा माना जाए मुखिया जी कि बिहार की कृषि बदल रही है या फिर इसके प्रति लोगों का सोच जो है वो नकारात्मक होता जा रहा है, कैसे इसको आप देखते हैं?
1: देखिए, मैंने अपने जीवन में दो ही चीजों को ऐसा देखा है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो है बिहार की कृषि और यहाँ के किसान।
0: अच्छा अच्छा।
1: इनकी दशा आज भी वैसी है जैसे 50 साल पहले थी। सरकार ने कई योजनाएं चलाई और कई प्रोत्साहन दिए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। एक सच्चाई ये भी है कि किसान को छोड़कर कृषि से जुड़ा अन्य व्यक्ति, चाहे वो बीज बेचने वाला हो या उपज खरीदने वाला, सभी खुश हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा ही आकलन हमारा भी रहा है मुखिया जी। बिहार की कृषि और किसान, अगर दोनों का दशा देखते हैं तो आप किस तरह की आशाएं आपको नजर आती हैं?
1: बिहार की कृषि और किसान दोनों को ही इस सरकार से बहुत आशाएं हैं
0: जी,
1: और वे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कृषि के क्षेत्र में कई समस्याएं और चुनौतियां हैं। यहां के लगभग 90% किसान भूमिहीन और छोटे या फिर सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं
0: जी। जी,
1: वे जमीन बटाई पर लेकर खेती करते हैं और उनकी हालत सबसे खराब होती है
0: जी।
1: इसकी विडंबना देखिए कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान इनकी फसल को होता है और सरकारी मुआवजा
0: जी, जी,
1: जमीन के मालिक उठा लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं ये जानना चाहूंगा मुखिया जी कि अब क्या ऐसा माना जाए कि हमारे जो युवा वर्ग है उनका कृषि से मोह भंग हो रहा है, उनको कोई रुचि नहीं रह गई है, वे कृषि कार्य से जुड़ना नहीं चाहते हैं?
1: लगता ऐसा ही है कि आज के युवा का कृषि से मोह भंग हो गया है और इस क्षेत्र में बौद्धिक मानव शक्ति का तेजी से पलायन हो रहा है। आम धारणा बन गई है कि दिमाग वालों के लिए खेती नहीं है।
0: आखिर इसके पीछे कारण क्या है मुखिया जी?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, कृषि के अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ किसान को छोड़कर हर क्षेत्र के लोगों के लिए पक्की मासिक और वार्षिक आय तय है
0: जी। जी,
1: बिहार में सिंचाई की सुविधा और साधनों का अभाव है। अगर यहां सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त होती तथा इस साल हर साल आने वाले अकाल को टाला जा सकता। बिहार में किसानों के लिए एक भी संस्थान नहीं है। बिहार किसान आयोग सरकार द्वारा प्रायोजित है, लेकिन किसानों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन सारी अव्यवस्था के बाद भी किसान कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ये बात भी कम नहीं है मुखिया जी।
1: देखिए, मैं मानता हूं कि सभी समस्याओं के बावजूद यहां के मेहनतकश किसान फसल उपजा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी चुनौतियां खत्म नहीं होती हैं
0: जी।
1: उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। कृषकों के लिए सरकार की ओर से हर साल पैकेज और अनुदान की घोषणा की जाती है, पर वितरण प्रणाली और पद्धति के खराब होने के कारण किसानों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। खाद्य सुरक्षा भी यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
0: इस बाबत नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई?
1: देखिए, नई सरकार से प्रदेश के भूमिहीन, छोटे, सीमांत और बड़े सभी किसानों की एक ऐसी कृषि नीति, कृषि मैप, कृषि योजना की उम्मीद है जिसमें कृषि एक मोहक कार्य बन जाए।
0: अच्छा अच्छा,
1: अगर सरकार कुछ बातों पर गंभीरता से ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर लोगों की आशाएं पूरी हो सकती हैं।
0: आप बोल रहे हैं कि सरकार इन बातों पर गंभीरता से ध्यान देगी, तो किन बातों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, इसमें पहला है भूमि सुधार।
0: जी,
1: बिहार की कृषि व्यवस्था संस्थागत सुधार के लिए कराह रही है।
0: जी जी,
1: ये क्षेत्र भी कृषक फ्रेंडली नीतियों की मांग कर रहा है। इसमें सबसे प्रमुख है भूमि सुधार। बटाईदारी व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें फसल उगाने वाला व्यक्ति किसान माना जाए, न कि जमीन का मालिक किसान कहलाए।
0: जी,
1: एक बार किसान बटाईदारों को किसान के रूप में मान्यता देती है तो कृषि अपने आप फलीभूत होने लगेगी।
0: तो क्या यह माना जाए मुखिया जी कि सरकार के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही है?
1: जी हाँ, सरकार की पहली चुनौती यही होगी कि बटाईदारी बिल पास करती है या नहीं। सरकार को एक ऐसी नीति भी बनानी चाहिए जिसमें किसानों में सुरक्षा का अनुभव हो, मसलन उनकी मासिक और वार्षिक आय पक्की की जाए।
0: जी, जी।
1: इससे किसानों में नए प्रयोग करके और उसमें रिस्क उठाने की शक्ति आ जाएगी।
0: अगर ऐसा हो जाए, मान लिया जाए कि अगर ऐसा होता है तो बिहार देश में एक और मामले में प्रथम हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही एक ऐसे संस्थान का विकास करना होगा जो किसानों को समर्पित हो, किसानों के लिए हो और किसानों के द्वारा संचालित हो।
0: जी, जी।
1: इसमें यह होगा कि किसानों के हितों को सरकार के समक्ष बेहतर और प्रभावी तरीके से रखा जा सकता है।
0: एकदम सही कह रहे हैं मुखिया जी, अगर इसी सोच के तहत काम किया जाए तो निश्चय ही किसानों की दशा और दिशा बेहतर हो सकेगी। सरकार से किसानों की काफी उम्मीदें हैं, किसानों की बेहतरी के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है?
1: देखिए वीरेंद्र भाई, मेरा बिल्कुल साफ तौर पर यह मानना है कि बिना भूमि सुधार के बिना किसानों की दशा नहीं सुधर सकती।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि किसान तभी होता है जब उसके पास खेती योग्य भूमि हो।
0: जी।
1: और हमारे यहाँ के हालात ऐसे हैं कि बहुत से लोगों के पास खेती योग्य भूमि ही नहीं है।
0: जी।
1: आज के दौर में वैसे भी खेती करना जोखिम का काम माना जाता है, लागत बढ़ जाती है, लेकिन उसके अनुपात में उनको फसलों का उचित दाम नहीं मिलता।
0: एक बात यह भी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक सही समय पर उचित रूप में नहीं पहुंच पा रहा है, इसके लिए किस तरह के पहल करने की जरूरत है?
1: इस बात को मैं भी मानता हूं वीरेंद्र भाई कि सरकार की अधिकांश योजनाओं से लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लाभ पाने की पद्धति को और सरल बनाने की जरूरत है। सरकार को अपनी डिलीवरी मैकेनिज्म को संस्थागत और प्रक्रियागत दोनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में काम करना होगा।
0: जी,
1: डिलीवरी मैकेनिज्म को किसान के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना होगा, तभी जाकर इस समस्या का हल निकल सकता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, हमारे देश के किसान भाई में ऐसे भी साक्षरता का औसत देखें तो बहुत कम है। ऐसे में मैकेनिज्म में बदलाव करना ही होगा, तभी जाकर के हम लाभ की राशि उन तक सही समय में और उचित मात्रा में जो तय की जाती है उस मात्रा में उन तक पहुंचा सकेंगे। इस जानकारी के लिए मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर कृषि से संबंधित आपसे बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कानूनी ज्ञान का। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीजिंग एक्ट लागू हुए वर्षों बीत गए, लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। श्याम भाई,
2: हाँ।
0: हमारे यहाँ बड़ी विडम्बना की स्थिति है कि आज भी हमारे यहाँ भूमि सुधार कानून सही ढंग से, कारगर ढंग से लागू नहीं है, जिसके प्रभाव से हमारे यहाँ करीब करोड़ों लोग त्रस्त हैं, बेचैन हैं।
2: हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वीरेंद्र भाई। हमारे यहाँ जो खेती करना चाहते हैं उनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, और जिनके पास जमीन है वो खेती करना नहीं बल्कि करवाना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अपने पूरे रकबे में वो खेती कर पाने की स्थिति में भी नहीं है, उनके बच्चे खेती में कोई रुचि भी नहीं लेते हैं, और जो मेहनत कश तबका है वो खेती योग्य जमीन के अभाव में बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में वे खेती करें तो कैसे?
0: यही बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सीजिंग एक्ट के अभाव में आज जो देश के हालात हैं उसको आप कैसे देखते हैं कपूर साहब?
1: देखिए वीरेंद्र जी, आजादी के 65 साल बाद भी देश में 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खेती करना चाहते हैं, पर उनके पास अपना खेत नहीं है, यहाँ तक कि अपना घर भी नहीं है। वे जहाँ रहते हैं वहाँ से उजड़ना उनकी नियति बन गई है।
0: सबसे दुखद बात तो यह है श्याम जी कि ये अधिकांश विवाद और समस्याओं की जड़ में जमीन ही है।
1: जी,
0: कुछ समय पहले की ही घटना को ले लीजिए। बिहार के समस्तीपुर में दबंगों ने 40 महादलित परिवारों के घरों को उजाड़ दिया था।
1: जी,
0: और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, यहाँ तक कि कई दिन बीत जाने के बाद भी FIR दर्ज तक नहीं हुआ।
2: इसी परिप्रेक्ष्य में अगर दूसरी घटना का जिक्र करें तो कुछ दिन पहले पूर्णिया में ट्रक पर सवार होकर कुछ दबंग आए और महादलितों पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया।
0: जी जी।
2: जिसमें 3 महादलित मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। इसकी पृष्ठभूमि में भी कहीं न कहीं जमीन का मामला ही था।
0: जी,
1: आप सही कह रहे हैं। दोनों घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम ही है। इसी नीति को बदलने के लिए राजगोपाल PV ने व्यवस्था को संवेदनशील बनने पर विवश किया। 50,000 सत्याग्रही सरकार के साथ करार के बाद आगरा से लौट गए।
0: तो क्या उनके सत्याग्रह का मकसद पूरा हो गया? भूमि की जो मांग उन्होंने उठाई थी उस पर कार्रवाई करने का भरोसा या दिलासा उन्हें मिल गया था श्याम जी?
2: इस मुद्दे पर उनका कहना था कि आंदोलन तथा सत्याग्रह सतत प्रक्रिया है।
0: अच्छा अच्छा।
2: सत्य मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। पर उस समय के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने जो करार किया था उससे भूमि गारंटी कानून मिलने की उम्मीद थी। वहां लैंड रिफॉर्म के लिए राज्य सरकारों से कहने की बात भी की गई थी। इसके अलावा मनरेगा की तर्ज पर ऐसा पूरक कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार तैयार थी जिससे भूमिहीनों और बेघरों को जमीन मिल सके।
0: नए भूमि सुधार कानून की सख्त जरूरत किन राज्यों में है? क्या कुछ राज्य पहले से बेहतर नहीं कर रहे हैं? हालांकि ये सीजिंग एक्ट कानून तो हमारे यहाँ कपूर साहब वर्षों से मौजूद है।
1: जी, देश के ज्यादातर इलाकों में अभी तक लैंड रिफॉर्म नहीं हो सका।
0: जी,
1: पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो लाखों एकड़ जमीन राज्य सरकारों के कब्जे में है, जिन्हें जरूरत के हिसाब से तो उद्योगों को दिया जा रहा है पर भूमिहीन बेघर लोगों को नहीं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार की जरूरत है। पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने इस दिशा में अच्छी पहल कर रखी है। जम्मू कश्मीर में तो भूमि सुधार किया जा चुका है।
0: राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के लिए जो मसौदा केंद्र सरकार को सौंपा गया था श्याम भाई
1: जी, हाँ,
0: अगर सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या कुछ किया जा सकता है?
2: सरकार ऐसा नहीं कर सकती। कानून की दिशा बदलने में ब्यूरोक्रेसी की दिलचस्पी रहती है। लोगों की कोशिश है कि सरकार में बैठे लोग पहले सच्चाई से तो अवगत हों।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब लोग मकसद से नहीं भटकेंगे, और ये बात सही है कि गरीबों के लिए कानून बनना चाहिए। अगर कुछ कमियां रहीं तो दूर करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो फिर नया आंदोलन शुरू किया जाएगा।
0: जब राजगोपाल टीवी से पूछा गया था कपूर साहब कि केंद्र सरकार आपके संगठन का इस्तेमाल नक्सल और माओवादी संगठनों से निपटने के लिए करना चाहती है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था?
1: उनका साफ कहना था कि हम लोग गांधीवादी विचार के लोग हैं
0: जी,
1: हिंसा के हमेशा विरुद्ध हैं, चाहे वो सरकार व उसकी एजेंसियों की ओर से की जा रही हिंसा हो या प्रतिक्रियावादी संगठनों की ओर।

0: ब्राजील समेत सैकड़ों देश इस समस्या से प्रभावित हैं। इथोपिया जैसे भूखमरी के शिकार देश में भारत की कंपनियां सफेद मूसली उगाकर अरब देशों के बीच बेच रही हैं।
1: अच्छा,
0: वहां लोगों की जमीन मिले तो वे मूसली की जगह अनाज उगाएंगे।
1: इस प्रश्न पर राजगोपाल जी का क्या कहना था कि भूमिहीनों को मकान और खेती के लिए कितनी भूमि पर्याप्त मानते थे वे?
2: इस मसले पर उनका साफ कहना था कि हमने 10 डिसमिल जमीन मांगी है, एक एकड़ का दसवां हिस्सा
1: जी।
2: पहले हमारी राज्य सरकारें भूमिहीनों को 15 डिसमिल जमीन देती थी, इसे धीरे धीरे घटाकर 2-3 डिसमिल कर दिया गया। अब 3 डिसमिल जमीन में घर कहां बनाएंगे, बकरी कहां बांधेंगे, गाय बैल कहां रखेंगे? मकान के लिए 10 डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए, खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर जमीन मिले जिसे भूमिहीन परिवारों का पोषण हो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न मैं अपनी जानकारी के लिए आपसे जानना चाहता हूं श्याम जी, कि ये हमारे देश में उतनी जमीन है क्या?
0: देखिए, सच तो ये है कि हमारे देश में खेती के लिए जमीन इतनी है कि अगर सरकार ठीक से बांटे तो भूमिहीनों को जमीन देने के बाद भी करोड़ों एकड़ जमीन बची रहेगी।
1: भूमि सुधार कानून में मुख्य रूप से किन चीजों की मांग की गई है कपूर साहब?
2: वीरेंद्र जी, सबसे पहली बात है कि भूमि का सही वितरण हो
1: जी,
2: भूमि का रिकॉर्ड सही और राष्ट्रीय स्तर पर हो। भूमि को सरकारों ने उत्पाद बना दिया है, किसान आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कुछ राज्यों में एक एक व्यक्ति के पास 100-100 एकड़ जमीन है और किसी के पास या लाखों लोगों के पास एक डिसमिल भी नहीं है। खेती की जमीन अलग हो, जंगल के लिए जमीन अलग हो और उद्योगों के लिए अलग जमीन तय की जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। पर सरकारी जमीन तो सार्वजनिक संपत्ति है,
0: हाँ।
1: उसे सरकार मुफ्त में भला क्यों देगी, ये भी एक प्रश्न उठता है।
0: देखिए, गरीबों को जमीन न देने के लिए कई तरह के दबाव हैं। मुफ्त में जमीन का सवाल भी उसी से जुड़ा है
1: जी।
0: पर देश आजाद होने के बाद गरीबों को क्या मिला? 22 करोड़ लोग भूमिहीन और आवासहीन हैं। वे रहने के लिए जमीन नहीं खरीद सकते। क्या देश में पूंछ हिलाकर जीने वालों का समाज तैयार किया जा रहा है? सरकार यही चाहती है पर लोग नहीं चाहते। पंजाब के किसानों ने सरकार से कहा था कि 1 एकड़ जमीन दो और अपने बीपीएल कार्ड, पेंशन कार्ड सब वापस ले लो।
1: बिल्कुल, उन लोगों का जो जवाब था बिल्कुल जायज है। एक चीज ये बताइए कपूर साहब, कि जब उनसे पूछा गया कि आप सड़क पर क्यों उतर रहे हैं, जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था जमीन के लिए, तो सरकार तो ग्वालियर में ही समझौते को तैयार थी, तो फिर उन्होंने क्या कहा?
2: उनका कहना था कि गांधी जी ने लोक सेवक बनने का संदेश दिया था
1: जी,
2: जिसे राजनेताओं और नौकरशाहों ने भुला दिया है। उनका साफ कहना था कि उनको लड़ने का शौक नहीं है, जवाबदेही तय करने के लिए सड़क पर उतरना मजबूरी है। सरकार की नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 142 जिलों में नक्सल की समस्या है, गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है, देश इमरजेंसी वार्ड में पड़ा है और आप सड़क पर उतरने को जुर्म बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने सही कहा था। जमीन से ही जुड़ा एक मसला है भूमि अधिग्रहण को लेकर के
2: जी,
1: जिसके लिए विधेयक का मसौदा भी स्वीकृत किया जा चुका है श्याम भाई, यह संसद हाँ। में पारित भी हो गया है, तो उसके परिणाम को भी अगर हम लोग देखते हैं तो खास करके आप बताइए कि उसके परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ होने वाला है?
0: अधिकार प्राप्त मंत्रियों के एक समूह ने जमीन अधिग्रहण के लिए जिस विधेयक का मसौदा स्वीकृत किया है
1: जी,
0: जो संसद में पास भी हो गया है, वो कहीं से भी जायज नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
0: उससे भूमि अधिग्रहण में कुछ आसानी हो जाएगी। सिंगूर, नंदीग्राम और अन्य कई जगहों पर उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जो उग्र आंदोलन हुए, उनका एक नतीजा ये निकला कि अधिग्रहण लगभग ठहर गया था, जो अब खुलकर सामने आएगा।
1: जो राज्य औद्योगिकरण के दौर से गुजर रहे हैं, वहां पर भूमि अधिग्रहण की स्थिति कैसी है कपूर साहब?
2: जिन राज्यों में पहले से काफी औद्योगिकरण हो चुका है
1: जी,
2: वहां तो फिर भी स्थिति ठीक है, पर जो राज्य पहले से औद्योगिक रूप से पिछड़े थे और राज्य सरकारें उद्योग

0: जाना चाहती है, वहां स्थिति बहुत खराब है। मसलन पश्चिम बंगाल में सिंगूर नंदीग्राम आंदोलनों के बाद कोई बड़ा निवेश नहीं आया है।
1: ऐसा क्यों श्याम जी, जानकारों का इस मुद्दे पर क्या विचार है, वे क्या कहते हैं?
2: देखिए, देशी विदेशी निवेशक और अर्थशास्त्र के जानकार बता रहे हैं कि देश में नए निवेश के कम होने की एक वजह यह भी है कि उद्योगों को जमीन मिलने में दिक्कत हो रही है।
1: अच्छा,
2: तमाम राज्यों ने अपने अपने स्तर से जमीन अधिग्रहण को लेकर कानून बनाए हैं, पर इस मामले में उलझन अभी भी वैसी ही बनी हुई है।
1: क्या इससे पहले भी जमीन अधिग्रहण के लिए संसद में विधेयक लाया गया था कपूर साहब?
0: ये प्रस्तावित विधेयक उस विधेयक का संशोधित रूप है जो 3 साल पहले संसद में पेश हुआ था और जिसे संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। उस समय संसदीय समिति की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन प्रस्तावित विधेयक से संतुष्ट थी क्योंकि उनकी समिति की सिफारिशों को बहुत हद तक मान लिया गया था।
1: एक बात यह है श्याम भाई कि ये खेती योग्य भूमि जो है वो बिल्कुल सिमटती जा रही है।
2: हाँ।
1: देश आने वाले खाद्यान्न संकट को नजरअंदाज कर रहा है बिल्कुल
0: जी।
1: अभी भूमि का समान वितरण नहीं हुआ और ऊपर से पूंजीपतियों के लिए खेती योग्य जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए नित्य नए नए कानून बनाए जा रहे हैं।
2: हाँ।
1: किसानों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। बहुत सारे कानून अभी भी धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। वो लगातार ऐसा देखा जा रहा है। आप दोनों के साथ इस मुद्दे पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में अभी हम लोग चलते हैं। इस जानकारी के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल आईडी है rva@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है आरवीए ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड नंबर है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहे और सुनते रहे सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, आइए अब सुनते हैं भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

दोस्तों, अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुंबकम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी। वे हमसे बात करेंगे डॉक्टर अमृत सिंह के बारे में, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। व्यक्ति विशिष्ट, आज के व्यक्ति विशिष्ट कार्यक्रम में हम आपको नोबेल पुरस्कार प्राप्त सुविख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में कुछ रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज के युग में, आज के जीवन में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, उसमें पूंजी, ब्रॉन्ड्स और धन का लगभग संपूर्ण वर्चस्व छाया हुआ है। वास्तविक मुद्दों को उठाया तो जा रहा है, लेकिन उन पर अमल करने की तो जैसे अनदेखी भी की जा रही है और उन्हें गंभीरता से सुलझाने की प्रवृत्ति को भी नहीं अपनाया जा रहा है। ध्यान वास्तविक मुद्दों की बजाय हवाई मुद्दों में ज्यादा है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ समझ में आता है। कुछ विद्वान इसे वर्चुअल लूटपाट का नाम देते हैं। अब जरा सोचें, ऐसे माहौल में हमारे निर्धन और साधारण जन की हालत पहले से बेहतर हो सकती है क्या? तो इसी संदर्भ में हमें याद आती है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर अमर्त्य सेन का, जिन्हें आज से 12 साल पहले इसी अक्टूबर माह में अपनी लेखनी और शोध के कारण तथा आम जन के प्रति उनके चिंतन के आधार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय मूल के दार्शनिक अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन को विश्व का सर्वोच्च सम्मान मिलने से ये सत्य पूरी तरह से उजागर हुआ है, और उजागर ही क्या, प्रमाणित हुआ है कि एक आम निर्धन व्यक्ति की मूलभूत समस्याओं को एक नई सोच के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता और पहचान प्राप्त हुई है। अब योजनाएं तो अनेक बनती हैं और फिर ढोल धमाकों के साथ उनका बड़े जोर जोर से प्रचार भी होता है, लेकिन इनमें से बहुत कम पूर्ण सफलता पाती हैं योजनाएं, और बाकी तो पांडित्य और आंकड़ों के जाल में फंसकर कहीं खो जाती है, गुम हो जाती है। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने इसी तथ्य को अपनी शोध का आधार बनाया था और इसके द्वारा विश्व को ये जानकारी दी थी कि लक्ष्य और घोषणा के बीच में कितनी दूरी होती है, क्या हमें पाना है और क्या हमें उसकी योजना बनानी है, क्या उसकी हमें घोषणा करनी है, इसके बीच की जो दूरी है, ये जानकारी डॉक्टर अमर्त्य सेन ने दी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सेन इस तथ्य को बखूबी जानते थे कि शहरों की चकाचौंध में भारतीयों को अपने देश की गरीबी, भुखमरी और भयानक कुपोषण की वास्तविक तस्वीर का पता ही नहीं चल पाता। उन्होंने जान लिया था कि ऐसे ही कारणों से अनेक तरह की समस्याओं का जन्म होता है, निर्धन और भूख से मरता है, गरीब और अपनी लाचारी से परेशान होता है। इसीलिए उन्होंने अपने शोध में ये बात जोर देकर कही कि अगर हमारी आर्थिक रूप से जो बढ़ोतरी होती है, कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, कोई योजना हम शुरू करते हैं और उसमें हमें आर्थिक रूप से बहुत फायदा होता है, तो ये होती है आर्थिक रूप से बढ़ोतरी। तो अगर हमारी आर्थिक रूप से कोई बढ़ोतरी होती है और उसका अगर समान रूप से वितरण नहीं होता है, सब जन को उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो भयानक समस्याओं का समाधान कैसे होगा?
कैसे गरीब को उसका हक मिलेगा? आर्थिक वृद्धि केवल शासन द्वारा जो धन यानी राजस्व के रूप में अर्जित होती है और जो फिर बाजार में जाकर फैलने लगती है, इसी को प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए कि ये बात जोर शोर से कही जा रही है कि देखिए बाजार में ये चीज कितनी कितनी कितनी मुनाफे कमा रही है, ये गलत है। इस पूरी प्रक्रिया में आबादी के बहुमत की भागीदारी होनी ही चाहिए, और वो भी खास करके गरीब वर्ग की भागीदारी, जिसकी तादाद हमारे देश में काफी है। जब वितरण प्रणाली में इस वर्ग की भी समान हिस्सेदारी होगी, तभी तो हम उसे आर्थिक सफलता कहेंगे, और यही मानी भी जानी गई। डॉक्टर अमर्त्य सेन का दृढ़ता से यही मानना था कि वास्तविक रूप में और हिसाब के रूप में नैतिकता और मानवीयता से जुड़ी वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र ही मानव के सुखद और स्थायी विकास के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, और यही दृष्टिकोण हमें अपनाना ही होगा। श्रोता मित्रों, डॉक्टर अमर्त्य सेन उच्च श्रेणी के अर्थशास्त्री थे, इसी कारण उनका सदैव यही प्रमुख और प्राथमिक लक्ष्य रहा कि समाज में जितनी भी तरह की आर्थिक आमदनी जितने भी स्रोतों से प्राप्त होती है, वो किस रूप में और किस तरह से बांटी जाती है, उसका वितरण होता है, और इस प्रणाली में हमारे गरीब तबके को कितना लाभ और कितना हिस्सा मिलता है। बहुत बड़ी बात है साथियों। डॉक्टर अमर्त्य सेन के बारे में कुछ हम जानकारी देने जा रहे हैं कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को भी पढ़ाया, बाद में वहां से पद छोड़कर कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ के रूप में भी वे छात्रों को पढ़ाते रहे, अपने मूल विषय यानी अर्थशास्त्र में, जिसे हम इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, अपनी शोध और योगदान देने के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले एशियाई हैं। और हमें मालूम ही है कि उनसे पहले जिन भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे हैं महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर, सर सी वी रमन, डॉ हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा और डॉ सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो साथियों, ये बात सर्वमान्य है कि डॉक्टर सेन ने भूख और गरीबी के मापदंड पर आर्थिक वृद्धि को परखने और वितरण करने की जो पहल की, उसे पूरे संसार में मान्यता मिली। 21वीं सदी को बीते 10 साल हो चुके हैं। इस बीच पूंजीपतियों, मुनाफाखोरों, भ्रष्टाचारियों और उनके कारनामों का ग्राफ काफी बढ़ चुका है। भारत और विश्व के अधिकांश देश महंगाई की मार से त्रस्त और परेशान हैं। अर्थव्यवस्था विकास के नाम पर ब्रांड बन चुकी है। हमें डॉक्टर सेन ने जो कुछ किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो भी हमें आर्थिक सफलता मिलती है, उसका सबको लाभ मिले।

दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी, जिन्होंने हमें बताया डॉक्टर अमृत सिंह के बारे में। और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नाटक, जिसके प्रस्तुतकर्ता और लेखक हैं संदीप दुबे, और नाटक का शीर्षक है कितना बदल गया इंसान, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: प्रसिद्ध नाटक कितना बदल गया इंसान, इसके लेखक और निर्देशक हैं संदीप दुबे।
1: नफरत, गुस्से व खून खराबे की आग में जल रहा इंदौर शहर। चारों ओर पुलिस की घूमती गाड़ियां सन्नाटे को और भयावह करते पुलिस के सायरन। मैंने अपनी आंखों से पहली बार कर्फ्यू के वे चार दिन देखे थे। पूरा शहर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। खून से लथपथ एक आदमी अचानक हमारे बगीचे के दरवाजे पर लड़खड़ाते आ गिरा था। वह कराह रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। दंगे की आग कहां से भड़की थी किसी को पता नहीं था, लेकिन इस आग को बहुत सावधानी के साथ फैलाया गया था।
2: शंकर, शंकर बेटा।
1: क्या बात है रहीम चाचा?
2: अरे शंकर बेटा, आगे मत जाना, यहीं से वापस लौट जाओ।
1: घबराते क्यों हो रहीम चाचा? मेरा कोई क्या करेगा? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
2: अरे बेटा, शहर में दंगा हो गया है। दंगा? हम गरीब लोगों को दंगों में मार डालना सबसे आसान काम होता है। घर चले जाओ शंकर बेटा।
1: होने दो चाचा जान, हमारे देश में जरा सी झड़प को भी दंगों का नाम देकर बड़ी खबर बना दिया जाता है।
2: नहीं बेटा, आगे मत जाना। अरे शहर के चार भागों में कर्फ्यू लग गया है। भले ही यह मजहबी जुनून रहा हो, पर इंदौर की सड़कों पर हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है। शंकर बेटा, इंसानियत का खून हो रहा है। घर चले जाओ बेटा।
1: पर कल तक तो सब ठीक था चाचा, आज अचानक ऐसा क्या हो गया?
2: अरे क्या बताऊं बेटा, सड़क चौड़ीकरण अभियान के अंतर्गत 100 साल पुराने एक मंदिर को तोड़ दिया गया था, वहीं एक मस्जिद को भी। अब वहाँ फैल गई कि यह सोची समझी साजिश है और दंगा फैल गया।
1: चाचा, गैर कानूनी कब्जों का यह सवाल केवल यहाँ ही नहीं है बल्कि पूरे देश का है। हर कोई अपना मंदिर, अपनी मस्जिद बीच रास्ते में बना लेगा तो हमें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी।
2: बेटा, मुझे 80 साल हो गए इस शहर को देखते देखते, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। हमारे मंदिर मस्जिद तो शहर के बाहर ही बने थे। शहर बड़ा, आबादी बढ़ी, तो ये सब शहर के बीचों बीच आ गए। सरकार चाहती तो यह मसला हल हो सकता था बेटा। सड़क निकालने का रास्ता कोई दूसरा भी तो हो सकता था।
1: पर यह तो इस शहर के लोगों को भी सोचना चाहिए था चाचा। इस स्वर्ग से सुंदर इस शहर को कब्रगाह में बदलने की क्या जरूरत है?
2: बेटा शंकर, ठीक भी हो तेरा कहना। इस सवाल का जवाब एक इंदौर, एक शहर को नहीं, हम सबको देना है। अरे अरे, भीड़ हमारी तरफ आ रही है। ले ले शंकर बेटा मेरी टोपी, पहले बढ़ना ये छोड़।
1: तुम डरो मत चाचा, ये सब मेरे अपने लोग हैं। ये फारूक, ये सलीम और ये अयाज। क्यों भाइयों, मैंने सच कहा ना?
2: बेटा, आज इनका इरादा ठीक नहीं। सभी की आंखों में खून तेज रहा है। भाग जा बेटा, भाग जा।
1: मैं भाग कर कहां जाऊं चाचा? ये शहर, ये मोहल्ला, इबादतपुरा मेरा अपना है। यहाँ इबादत पड़ी जाती है चाचा। इस मस्जिद की नींव मैंने उस मंदिर के चंदे से रखी थी। इस मस्जिद की अजान से मैं जागा हूँ और उस मंदिर की आरती के बाद मैं सोया हूँ चाचा।
2: शंकर बेटा, ये सब आज कुछ नहीं सुनेंगे। भाग जा बेटा, भाग जा। इनकी आंख में सांप्रदायिकता की आग धड़क रही है। इन सब की आंख पर पर्दा पड़ा है। इनकी नजर में आज कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। इन सब का आज एक ही मकसद है, बदला, खून का बदला। इनकी न कोई जात है, न कोई मजहब। भाग जा बेटा।
3: मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। देखो तुम्हारा बदला उन लोगों से है जिन्होंने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी और फिर हमारा भी तो मंदिर टूटा। देखो मुझे छोड़ दो, मैंने तो इस इलाके की जर्जर हुई मस्जिदों को संवारा है। देखो मुझे, देखो ये चाकू, ये खंजर दूर करो।
4: चुप कर वे, मंदिर मस्जिद संभालने वाले, हमारे पास समय कम है। 22 में से 11 थानों में कर्फ्यू लगा है। हमें बचे हुए लोगों में भी दंगा भड़काना है। मुद्दा बहुत गर्म है, तेरे जैसे लोग तो माहौल को ठंडा करके रख देंगे। भाग यहाँ से वरना निकाल दूंगा।
3: मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। हिंदू मुसलमान में नफरत की खाई और गहरी नहीं करने दूंगा। मैं सबको समझूंगा, आंखें खोलूंगा कि यह सब षड्यंत्र है, आपस में लड़ाने का षड्यंत्र। इन सब के पीछे राजनीति है, राजनीति है। मैं तुम्हें चाचा
2: शंकर बेटा, मैं तुम्हारे सीने में खंजर नहीं घोंपते देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया।
3: रहीम चाचा, ये तुमने क्या किया?
5: एक अधेड़ को नहलुहान कर दिया तुम लोगों ने। रहीम चाचा को खून कर दिया तुम लोगों ने।
4: चलो हमें और भी काम करना है।
3: चाचा जान, तुमने क्यों मेरा पक्ष लिया?
2: बेटे अब मेरा क्या काम, तुम्हें तो अलख जगानी है, एक नया सवेरा लाना है, तुम्हारी सख्त जरूरत है।
3: हाँ चाचा, भूल सकता हूँ कैसे वो नजारा उम्र का, जब खुदा भी सो रहा था चल दिए तुम जो बिछड़े इस चमन की खुशियां चल गई, जैसे माली चल दिया हो गुल से रिश्ता तोड़।

0: भैया भैया यहाँ क्यों छिपे खड़े हो? आज राखी है, रक्षाबंधन। तुम अपने घर नहीं गए? क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है?
1: कौन कौन है? हट जाओ, हट जाओ मेरे सामने। मैं राखी जैसे कमजोर धागे नहीं बांधता। मेरे हाथों में बमों की लड़ियां बनी है। ये देख लड़की, राखी आत्मघाती बमों से मेरा पूरा शरीर बंधा है। मेरे शरीर पर अब कोई जगह खाली नहीं है।
0: भैया राखी का धागा तुम्हारे इन बमों से कहीं अधिक शक्तिशाली है, बंधा कर तो देखो। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई बहन नहीं है ना? मुझे ही अपनी बहन बना लो। याद रखना, जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगी राखी।
1: बहन राखी जीवन? मेरा कोई जीवन नहीं और न ही मेरी रक्षा की कोई गारंटी। मुझे भावना में मत फुसला लड़की। मैं सब छोड़ कर आया हूँ, सब अपने घर परिवार सब छोड़ दिया मैंने। अब मेरा एक ही मकसद है, आतंक। जिसकी सब पूजा करते हैं। मैं आज तक किसी का सगा नहीं हुआ, तेरा भी गला रेत सकता हूँ लड़की।
0: चलो घर चलो भैया, तुम थक गए हो। राखी बंधा लेना फिर चले जाना। मेरा भी कोई भाई नहीं है, शायद ऊपर वाले ने तुम्हें ही भाई बनाकर भेजा है।
1: अरे कैसा भाई और कैसी बहन, मेरा रिश्ता सिर्फ आतंक से है, पैसे से है और बड़े बड़े नेताओं से। मैं कभी नहीं हार सकता। इस देश की भोली भाली जनता पर मैं हमेशा भारी रहूंगा और आतंक के साए में कम कपाती अवाम पर मेरी जीत हमेशा होगी।
0: क्या कहा? आवाम पर भारी रहना चाहते हो? तुम्हारी ये सोच गलत है, तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। मैं मूर्ख थी जो तुम जैसे क्रूर आदमी को अपना भाई बनाने चली थी। गद्दार, देश के दुश्मन। देश का दुश्मन मेरा भाई कभी नहीं हो सकता।
1: चल मेरे सामने से हट जा लड़की, मुझे अभी बहुत काम है। मस्जिदों पर पत्थर बिकवाने हैं और मंदिरों पर अपवित्र चीजें। फिर सवेरा होते ही इंसान भेड़िया बन जाएगा।
0: नीच आदमखोर आतंकवादी, तेरा अंत जल्दी ही आएगा।

0: कौन है? अंधी हूँ तो क्या बेटा, टटोल कर तो देख सकती हूँ और बता सकती हूँ। तू कोई परेशानी में है ना? चल चल अंदर चल बेटा, बाहर बड़ी ठंडी है। चल।
1: ए बुढ़िया, कहीं तू मुझे देख तो नहीं रही है?
0: अरे
1: अंधे होने का नाटक किया तो गला काट डालूंगा तेरा।
0: बेटा जीवन भर इन आँखों ने कलयुग ही तो देखा है, अब आंखें देख नहीं सकती थी तो अंधी हो गई। अच्छा रहा, पर तू इतना हाफ क्यों रहा है बेटा? क्या हुआ, कोई तेरा पीछा करता है या किसी का डर है?
1: मेरा कोई क्या पीछा करेगा बुढ़िया, सिर्फ मौत मेरा पीछा करती है, सिर्फ मौत। इसलिए मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, ना देखता हूँ।
0: बेटा काम क्या करते हो, क्या धंधा करते हो?
1: आतंक फैलाना धंधा है मेरा, और देश की आवाम को भड़काना, खून खराबा कराना मेरा व्यवसाय। बुढ़िया मेरा खंजर न हिंदू को बख्शता है, न मुसलमान को, न भाई को, न बहन को हर्जा मिलता,
0: और न माँ को।
1: हाँ न माँ को। बुढ़िया मैंने कहा न मुझे किसी से कोई लेना देना है, हर्जा मैं कहता हूँ, हर्जा हर्जा।
0: बेटा बेटा मुझे पता है तू ये सब बेमन से कर रहा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, त्याग दे, छोड़ दे ये चूल्हा, छोड़ दे।
1: मेरा रूप कभी बदल नहीं सकता बुढ़िया, मुझे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। आतंक नाम है मेरा, अभी अभी 11 साल के एक लड़के को बम से बांध कर चीथड़े चीथड़े करके आया हूँ मैं। पूरे बाजार में सिर्फ मैं खड़ा रहता हूँ, बाकी तो सब अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। आतंक नाम है मेरा बुढ़िया, हट जा मेरे सामने से।
0: बेटा बेटा एक माँ के गले लगकर देख, फिर तुझे पता चलेगा एक बेटे का सुख क्या होता।
1: नहीं नहीं, ए बुढ़िया, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना।
0: क्यों बेटा? बेटा भला एक माँ को अपने बेटे को छूने से क्या ऐतराज?
1: नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे हाथ मत लगा। माँ मैं तेरे लायक नहीं, मैं तेरा नालायक बेटा हूँ। मैंने चंद लोगों के बहकावे में आकर, पैसों के लालच में आकर, स्वर्ग से सुंदर इस इंदौर शहर को, इस देश को नरक बनाकर राख कर दिया है। आज तेरी ममता ने मुझे तोड़कर रख दिया माँ। गरीबी और बेरोजगारी के चलते मैं अपना रास्ता भटक गया था, उन लोगों को बचा लो, उन लोगों को बचा लो माँ, उन लोगों को बचा लो, मर जाएंगे वो लोग।
0: किसको?
1: उन निर्दोषों को जिनकी जिंदगी आज शाम 5:50 पर लाशों में बदलने वाली है।
0: क्या मतलब बेटा?
1: हाँ, और इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आज शाम लाल बाग के भीड़ भरे इलाके में 5 बम फटने वाले हैं, और वो बम मैंने रखे हैं माँ, मैंने रखे।
0: बेटा बेटा बेटा तेरा प्रायश्चित है, तेरी क्षमा है। हाँ बेटा अपनी माँ की गले लग जा।
1: नहीं
0: और कसम कहा कि फिर कभी भी ऐसा नहीं।
1: नहीं माँ मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, मेरे शरीर में बम लगे हुए, तुमने छुआ तो देखते देखते मेरे चीथड़े हो जाएंगे। ये देख ये रहा रिमोट कंट्रोल, इससे मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अरे तू तो देख भी नहीं सकती। अब ध्यान से सुनना माँ, तेरे बेटे के चीथड़ों में कितना दम है।
0: नहीं नहीं बेटे,
1: देखना माँ।
0: नहीं बेटा रुको, नहीं
1: तो
0: नहीं
1: तीन।

कितना बदल गया इंसान। अभी आपने सुना ये नाटक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे नूपुर दीक्षित, अंतरा करवड़े और संदीप दुबे।

साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नाटक, जिसके प्रस्तुतकर्ता और लेखक थे संदीप दुबे। इस नाटक का शीर्षक था कितना बदल गया है इंसान, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब मैं आगे की सभा का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ विवेक पीटर रॉबर्ट को। अब आज्ञा दीजिए सिस्टर गंगा रावत, एसएसपीएस को धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास और अंत में युग संचार। तो दोस्तों, अब हम अपनी समय सारिणी के अनुसार हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संतोष जोशी और उनके साथ हैं प्रीति वर्मा। प्रीति जी आज हमें करियर के बारे में बताएंगी कि स्टूडेंट्स को किस प्रकार से अपना करियर चुनना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात संतोष जोशी के साथ।

0: श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम में हमने विभिन्न अवसरों पर आपकी मुलाकात अलग अलग शख्सियत से करवाई है और आज भी हम उसी मुकाम पर हैं। श्रोताओं, अक्सर ये देखा गया है कि आज के दौर में किसी भी विद्यार्थी के लिए अपने कैरियर का चुनाव करना एक सोच का विषय हो जाता है और उसके लिए उसे उसकी ये कोशिश रहती है कि वो कहां से उस चीज के बारे में मालूम करे और ये हासिल करे कि उसे निर्णय ले क्या लेना है। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है प्रीति वर्मा जी को। हम उनका सबसे पहले स्टूडियो में स्वागत करते हैं। प्रीति जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: प्रीति जी, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अभी आप क्या कर रही हैं।
1: संतोष जी, मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी से, गुजराती कॉलेज से।
0: तो ये तो आप पढ़ाई कर रही हैं।
1: जी,
0: पढ़ाई का बताया आपने।
1: जी,
0: पढ़ाई के अलावा आप कोई नौकरी भी कहीं कर रही हैं?
1: जी संतोष जी, मैं एक नौकरी कर रही हूँ, एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है दी एज मेकर्स, और यहाँ पर मैं टेलीकॉलिंग का काम करती हूँ। इसको अगर हम कहें तो मतलब स्टूडेंट जो बच्चे रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, उन्हें फोन पर समझाना कि वे आगे क्या करना चाहते हैं अपने भविष्य में, कैसे अपना भविष्य सफल बनाना चाहते हैं, तो उन्हें वही समझाना कि आगे उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है कि आगे हमें क्या करना है, उसके लिए अभी से हम क्या करें, तो उन्हें वही समझाना कि आगे आप अच्छे से करें, ये सीखें आप, तो इससे आपको आपका विकास होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी।
0: हाँ हाँ, तो ये तो आप जब ऑफिस पहुंचती हैं, अपने ऑफिस में आप गई, तो आपका काम कैसे शुरू होता है वो बताएं आप, कि वहां पर विद्यार्थी आते हैं या आपको उन्हें उनके पास जाना होता है?
1: संतोष जी, ऐसा होता है कि जैसे जो हमारे जो ऑफिस में एक सेक्टर है, एक विभाग है, विभाग उसमें उसके कुछ लोग रहते हैं बाहर, वे जाते हैं, जो विद्यार्थी उन्हें बाहर मिलते हैं, कॉलेज के बाहर मिलते हैं, और जो सड़क पर अपन वो कैनोपी लगाते हैं उसमें जो विद्यार्थियों से वे बात करते हैं, फिर उनको बस हमारे पास प्रोग्राम है उसके बारे में वे समझाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, फिर विद्यार्थियों से बात करके उन्हें दो दिनों की प्री क्लास, मतलब दो दिनों की क्लासेस देखने के लिए कि कैसी होती हैं, इसके लिए वे लोग आमंत्रित करके आते हैं उन्हें, फिर वही नंबर और नाम हमारे पास आते हैं, फिर उन्हीं से हम बात करते हैं, बच्चों से, विद्यार्थियों से उन्हें हम फोन लगाते हैं, फिर उनसे हम बात करते हैं कि आगे वे क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं वे, और अभी से उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं वे, हम वो जानते हैं, फिर उन्हें उनके प्रयास और कैसे बेहतर हो सके, हम उस तरीके से उन्हें अपने विचार बताते हैं कि आगे वो और कितना अच्छा कर सकते हैं।
0: तो ये जो कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो उनकी सारी जानकारी आपके पास कैसे पहुंचती है? आपने बताया कुछ लोग तो वहाँ जाते हैं
1: जी,
0: लेकिन जिस विद्यार्थियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है
1: जी,
0: तो आपके पास क्या सबकी जानकारी पहुंचती है?
1: सभी की नहीं, जिन विद्यार्थियों से हम मिल पाते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में हमें जानकारी होती है, सभी के बारे में जानकारी नहीं होती है, मगर कुछ जैसे कि जो विद्यार्थी आते हैं वहाँ पर, तो फिर वो दूसरों से भी मिलते हैं, तो फिर उन्हें भी पता चलता है कि नहीं ये अच्छा है, तो फिर दूसरे विद्यार्थी भी हमसे मिलने आते हैं, वे भी जानते हैं कि आगे हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम उन्हें भी वहाँ पर पूरा गाइड करते हैं, उन्हें सब बताते हैं कि कैसे उन्हें भी आगे बढ़ना है।
0: तो इसके लिए वहाँ विद्यार्थियों को आपसे वहाँ संपर्क करने के लिए उनके कोई कम से कम कोई योग्यता पढ़ाई में होनी चाहिए कि उन्हें 11वीं या 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ऐसा कुछ कोई नियम
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं नहीं संतोष जी, ऐसा कुछ नियम तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है इंदौर शहर में आपने भी देखा होगा अधिकतर विद्यार्थी बाहर से आकर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी इतना ज्यादा पता नहीं होता है कि आगे हमें क्या करना है और इंदौर में हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं अपने करियर को, तो उनको भी मतलब ऐसी कुछ योग्यता नहीं है, वे भी आकर हमसे बात करते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि देखिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इसमें इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर उन्हें हम समझाते हैं, ऐसा कुछ योग्यता जरूरी नहीं होती है जी।
0: इंग्लिश का जैसे आपने बताया
1: जी,
0: तो ये बात तो तय है कि आने वाले कुछ सालों में अंग्रेजी जहां नहीं किसी को आएगी उसके लिए कैरियर बनाना बहुत मुश्किल होगा।
1: बिल्कुल सही,
0: इस तरह की कुछ बातें हैं। तो जैसे किसी, यहां तो वातावरण उतना है नहीं कि अगर किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती
1: जी,
0: तो उसे फिर, लेकिन उसे शुरू से बोलना सिखाना पड़ेगा
1: जी, जी।
0: तो वो भी होता है
1: जी, बिल्कुल। इसके लिए हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स, हम कह सकते हैं उसे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अनुसार हम विद्यार्थी की योग्यता देखकर हम उन्हें वो प्रोग्राम सुझाव करते हैं कि आप इसे ले सकते हैं और इसमें आप, हम ये कराते हैं ताकि इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश, अंग्रेजी सीख सकें।
0: तो अगर जिसे थोड़ी बहुत आती है
1: जी,
0: तो उसकी, उसे आने के लिए, उसमें और रवानी लाने के लिए
1: जी,
0: उसे फ्लुएंसी जिसे कहते
1: जी,
0: हैं, रवानी लाने के लिए भी आप अलग से कोई प्रोग्राम होता है?
1: हाँ जी संतोष जी, हमारे पास जैसे अलग अलग प्रोग्राम है, जिसे शुरू से जिसे सिखाना है उसके लिए अलग है बेसिक इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, उसे शुरू से सिखाया जाता है उसमें, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं रवानी लाने के लिए, तो उस तरीके का प्रोग्राम भी हमारे पास है जो कि फ्लुएंसी डेवलपमेंट कहलाता है, लैंग्वेज प्लस कहलाता है। तो उसमें जो विद्यार्थियों की क्षमता रहती है कि जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, तो उन्हें हम और ऐसा वातावरण हम उन्हें उस प्रोग्राम में देते हैं ताकि वो और रवानी ला सके अपनी अंग्रेजी में, अच्छे से बोल सके। कई बार विद्यार्थियों को डर लगता है कि दूसरों के सामने हम कैसे बोल पाएंगे, तो उनके डर को दूर करने के लिए भी वहां पर हम ऐसा करते हैं जैसे कि उन्हें मंच पर आमंत्रित करके उन्हें कहते हैं कि अब आप अपने आप को, अपने बारे में कुछ बोलिए, उससे उनका डर दूर होता है और वो सभी के सामने इंग्लिश, अंग्रेजी बोल पाते हैं।
0: तो इस तरह से एक आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है
1: जी।
0: एक बात देखी हमने कि कई बार जो विद्यार्थी है उसका, उसके जो माँ बाप, माता पिता हैं, माता पिता के साथ पढ़ाई के मामले में उसके विचार नहीं मिलते। ज्यादातर ये देखा है कि वो करना कुछ चाहता है और उसके जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, वो उससे कुछ दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ आपको नहीं लगता कि उनके माता पिता से भी आपका संपर्क होना जरूरी है? होता है ऐसा, या उन्हें बुलाते हैं या संपर्क करवाते हैं विद्यार्थी?
1: अधिकतर तो विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ नहीं आते हैं क्योंकि वे बाहर से पढ़ने आते हैं, तो उन्हें जो अच्छा लगता है, जैसे कि उन्हें पता चला कि यहाँ पर ये प्रोग्राम्स होते हैं, ये जो ऑफिस है अच्छा है, ये जो इंस्टीट्यूट है अच्छा है, यहाँ पर जाना चाहिए, तो कई बार तो वे अपने माता पिता के साथ आते हैं और कई बार वे अकेले भी आते हैं, तो वही हम उन्हें बताते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। और रही माता पिता की बात, तो विद्यार्थी एक जिस उसमें उसकी रुचि रहेगी,
0: जिस
1: क्षेत्र में
0: उसकी
1: रुचि रहेगी, उसी क्षेत्र में वो अच्छा अपने आप को बना पाएगा। तो वही माता पिता कई बार समझते हैं, मगर कई बार माता पिता सोचते हैं कि नहीं, इसमें अच्छा नहीं कर पाएगा, इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएगा हमारा बच्चा, या इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, तो उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आगे मेरा जो बच्चा है वो अच्छा मतलब कर पाएगा या नहीं।
0: एक बात ये है कि इसमें आपने देखा होगा, इतना आपको समय इसमें हो गया है काम करते हुए समय, कि आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है या लड़कों की?
1: आने वाले विद्यार्थियों में अगर हम इस तरीके से देखें तो दोनों की संख्या समान ही है, क्योंकि पहले लड़कियां नहीं आती थी बाहर से, क्योंकि माता पिता नहीं भेज पाते थे कि लड़की बाहर कैसे जाएगी पढ़ने, मगर आज का जो समय चल रहा है उसमें लड़कियों को भी पूरी आजादी मिल रही है उन्हें, कि वे भी अपने आप को दिखा सके कि हम भी कुछ कर सकती हैं, तो लड़कियों की भी संख्या बढ़ रही है, पूरी बराबर चल रही है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि लड़कियां कम है या पीछे हैं।
0: और विषय भी, जो विषय लड़के चुनते हैं वही लड़कियां भी चुनती हैं, या उसमें कोई फर्क है कि लड़कियां फला फला कोई विषय वो नहीं ले पाती हैं, ऐसा नहीं?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लड़कियों को, आज के समय में लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो बिल्कुल वो उस विषय को चुनती हैं, वो उस क्षेत्र को चुनती हैं, जैसा कि देखा होगा आपने पायलट, तो अगर हम ऐसे देखें तो हम यही सोचते हैं कि नहीं एक लड़का है वो पायलट अच्छे से बन सकता है, मगर आज लड़कियां भी उस क्षेत्र में रुचि ले रही हैं, उसमें अच्छे से अच्छा करके बता रही हैं कि नहीं हम भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
0: अच्छा, एक आजकल काफी शब्द सुनने में आ रहा है जिसे कहा जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
1: जी,
0: अपने व्यक्तित्व का विकास
1: जी,
0: तो यहाँ आपके यहाँ कुछ इससे भी संबंधित कुछ किया जाता है, तो कैसे उसको आप लागू करते हैं?
1: जी संतोष जी, इससे संबंधित हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम है एडवांटेज, ये पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए ही ये प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले हम ये सिखाते हैं, क्योंकि एक व्यक्तित्व, एक अच्छी विकसित व्यक्तित्व सिर्फ दिखने के कारण ही नहीं होता है, उसे ज्ञान कितना है हर चीज के बारे में वो भी ज्यादा महत्व रखता है। तो वहीं हम सिखाते हैं उन्हें कि कैसे वो अपनी बोली को और अच्छे से निखार सके, अच्छे जो शब्द होते हैं वो अपनी बातचीत में ला सकें। क्योंकि हमने देखा है कि जो सबसे ज्यादा अच्छे शब्द अपने उपयोग में लाता है बात करने के, हम उसी को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यही हमारा मेन व्यक्तित्व विकास में ये हम लेकर चलते हैं पॉइंट, अगर हम इसे कहें तो ये लेकर चलते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी है। एनालिटिकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो दूसरों को कैसे हम पहचान सकते हैं, दूसरों को कैसे, दूसरों के बारे में कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डिसीजन, जैसे कि क्या कहेंगे हम इसे,
0: निर्णय
1: लेने की क्षमता कैसी है और हम कैसे सही टाइम पर सही निर्णय लेते हैं, वो भी जल्दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जिस जगह पर हम हैं वो हमने पहले कोई निर्णय लिया होगा तभी हम उस जगह पर हैं। उसके बाद लगन और मेहनत कैसी है, अपने हमारे सामने, मतलब हमारा विजन अगर हम देखें, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं हम, आगे अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, वो हमारे सामने पूरा होना चाहिए कि हमें ये करना है, पूरा हमें पहले से जानकारी होना चाहिए कि हमें इस क्षेत्र में जाना है और उसके लिए हमें ये करना है।
0: तो प्रीति जी, आपने अपने काम के बारे में बताया
1: जी,
0: अपने ऑफिस के बारे में, अपनी पढ़ाई आपने की वो बताया, अब हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे आपने खुद के बारे में। अब अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके परिवार में कौन कौन है।
1: संतोष जी, इंदौर में ही मेरा जन्म हुआ है और मेरे परिवार में मेरे मम्मी हैं, मेरे पिताजी हैं और हम चार भाई बहन हैं, मुझसे बड़ा एक भाई है और मुझसे छोटी दो बहनें हैं।
0: और आपके पिताजी क्या करते हैं?
1: मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं और मेरी मम्मी जो है वो घर में ही सिलाई करती हैं, ताकि मतलब और घर में हेल्प हो पाए ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम समस्या ना आए ज्यादा, क्योंकि हम शुरू से ही मतलब ऐसा रहा है कि जब से दादा दादी नहीं रहे हैं उस वक्त के बाद से घर में बहुत ज्यादा मतलब समस्या होने लगी थी कि कैसे चारों भाई बहनों को पढ़ाना,
0: आर्थिक समस्या
1: कह सकते हैं जी, तो सभी को पढ़ाना। उसके बाद हमारे माता पिता का यही सपना था, मेरे माता पिता का, कि उनका भविष्य अच्छा बना पाए, तो उसके लिए उन्होंने शुरू से ही बहुत मेहनत करी, जैसे कि अभी तक भी वे करते आ रहे हैं, हमें इस सफल उस पे जगह पर उन्होंने लाए हैं। वे अभी मेरा भाई भी बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहा है, मेरी बहन भी अच्छा पढ़ रही है, स्कूल में है दोनों बहनें।
0: तो आपने मतलब जो नौकरी की, जो अपने जॉब किया
1: जी,
0: तो उसके पीछे भी कहीं यही बात है कि आप अपने परिवार को सहारा देना चाहती थी?
1: हाँ, मैंने मेरी नौकरी का निर्णय इसी के लिए था कि मैं अपने परिवार को भी सहारा दे सकूं, और नौकरी करने के साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि आज बाहर क्या है, वातावरण बाहर का, कैसे हम बाहर अपने आप को और ऊपर लाएं और आगे बढ़ाएं अपने आप को। पता चला कि बाहर क्या क्या चीजें जरूरी हैं। हमें ऐसा लगता है कि सब चीज करना बहुत आसान होता है, बिल्कुल अगर हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो सब कुछ आसान ही होता है। हम सोचते हैं कि हम कैसे कोई कुछ बन सकते हैं, डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, मगर ये है कि अगर हम उसके लिए सही से मेहनत करें, शुरू से अगर हम करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं
0: बन जाता है, हर चीज
1: आसान बन जाती
0: है। प्रीति जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था
1: जी,
0: कि आप चूंकि ऑफिस में काम कार्य करती हैं तो वहां जो आपके बॉस हैं वो तो स्वाभाविक तौर से आपसे उम्र में बड़े होंगे और आप बहुत छोटी हैं अभी, क्या उम्र आपकी होगी?
1: 20 साल।
0: बहुत छोटी उम्र है, तो अगर कभी वहां आपको कोई कुछ कह देता है आपका बॉस, या तो आपको बुरा तो लगता होगा, डांट देता है किसी बात के कारण, काम के कारण?
1: संतोष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझसे और अपेक्षा करते हैं कि मैं और अच्छा करूं, वो मुझमें ही कहीं ना कहीं सुधार लाना चाहते हैं, इसलिए वे मुझे डांटते हैं। तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश भी करती हूं कि मैं और अच्छे से अच्छा काम करूं और कभी ऐसा मौका ना आने दूं कि सर को मुझे कुछ, मेरे बॉस को मुझे कुछ कहना पड़े, तो मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करती रहती हूं।
0: देखिए, ये कच्चा संदेश है श्रोताओं तक कि नहीं तो क्या होता है कि तैश में या भावावेश में या गुस्से में
1: जी,
0: कोई नौकरी छोड़ के भी चला जाता है कि रखो हमें नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे युवा श्रोताओं का आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं अपने युवा श्रोताओं को सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगी कि जो भी अपने भविष्य में आप करना चाहें उसे पूरे अच्छी तरीके से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे ये करना है और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि सभी सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं और इससे हमारा लक्ष्य जो है हम नहीं पा पाते हैं। तो अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलें कि मुझे इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है और इसी के लिए प्रयास करना है। अपने आप पे विश्वास रखें सिर्फ और अपना मार्गदर्शन अच्छे से करें।
0: तो प्रीति जी, आपने जो बातें बताई एक श्रोताओं के लिए आपने संदेश भी दिया और वैसे भी आपकी जो बातें हुई उससे भी काफी बातें श्रोताओं तक पहुंची हैं। हमारे वो युवा श्रोता जो कि अभी पढ़ रहे हैं और अभी कुछ करना चाहते हैं, जिनके सामने कोई लक्ष्य अभी है नहीं, कईयों के सामने है भी और उन्हें लगता होगा कि वो क्या करें, तो ये बातें साफ हुई हैं कि एक तो लक्ष्य है वो साफ होना चाहिए। आपकी बातों से यही पता लगता है कि सुने सबकी कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए क्या सही होगा उसे ठीक ठीक सामने रखकर मार्गदर्शन सही लेकर मेहनत और लगन से अगर वो जुटे रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्रीति जी, आज आप हमारी स्टूडियो में आई और आपने हमारे जरिए श्रोताओं तक इतनी अच्छी बातें पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रम को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है सत्यस्वर डॉट

RVA। हमारा ट्विटर हैंडल है @SatyaSwar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता का, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं श्री कृष्णकांत दुबे एवं स्वतंत्र कुमार ओझा। और वार्ता का शीर्षक है पुस्तकालय और पुस्तक मेलों का महत्व।

0: हमारे आज के युवा विकास कार्यक्रम में हर बार की तरह मैं और मेरे वरिष्ठ श्री कृष्णकांत दुबे आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो भी संभवतः एक महत्वपूर्ण विषय है। तो दुबे जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले ये पढ़ा और अक्सर पढ़ने में आता ही रहता है कि हमारे इंदौर शहर में भी एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो पुस्तक मेला अपने आप में बेहद ज्ञानवर्धक होता है।
1: सही कहा आपने।
0: और युवाओं के लिए सबसे पहली जरूरी बात है उनका शिक्षण, पढ़ाई लिखाई। आप शहरों महानगरों में तो यहाँ के जो युवा हैं, युवतियां हैं, ये तो किसी तरह इनको पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं वहां के भी युवा युवतियों को पढ़ाई पूरी करना बहुत जरूरी है। अपना कोर्स, अपना स्कूल और अपना जो भी पाठ्यक्रम है सबसे पहले उसमें ध्यान देना चाहिए। भले ही परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, हालात ऐसे हो सकते हैं कि भाई नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ भी कुछ और अपना पुश्तैनी जो काम है वो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी है। तो आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, यानी हमारे श्रोताओं को बताइए कि युवाओं के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और ये जो पुस्तक मेलों का आयोजन होता है ये कितने सहायक हो सकते हैं, खास करके हमारे इस वर्ग को।
1: तो देखिए ओझा जी, जब शिक्षण की बात आती है तो हम इसे दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक वे शिक्षण संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, उनका अपना एक स्तर होता है। वहां जो विद्यार्थी, जो छात्र पढ़ते हैं, वाले समझिए कि उनको बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं ज्ञान प्राप्त करने की
0: जी।
1: लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी इस चीज की कमी है कि वे सामान्य रूप से अपने पाठ्यक्रम जरूर पढ़ लेते हैं बच्चे और युवा, लेकिन जो सही ज्ञान होता है कभी कभी जो पुस्तकों में होता है वो उनको कम मिलता है। इसके सबसे बड़े कारण ये हैं कि वहां इस तरह के साधन नहीं होते। यहां शहरों में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां होती हैं, पुस्तकों की दुकान भी होती हैं, जहां जाकर के युवा अपने विषय का और यहां तक कि मनोरंजन के लिए जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पुस्तकें खरीदी जाती हैं ये बड़ी आसानी से मिल जाती हैं।
0: हर विषय से, हर विषय से पुस्तकों का शहरों में तो कम से कम मिलना आसान है।
1: बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं उदय जी कि जो शहरों में सुविधा है वो गांव में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वे ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते ग्राम के युवा या ग्राम के बच्चे, उनमें भी बड़ी आकांक्षा होती है। वे चाहते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्ति की जितनी दिशाएं हैं वो प्राप्त हों। वे शहर आते हैं क्योंकि अब तो आप जानते हैं कि परिवहन के और आवागमन के साधन जो हैं काफी बढ़ चुके हैं। जब वे शहर में आते हैं तो शायद वे अपनी इस आकांक्षा की थोड़ी बहुत पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन सर्वसुलभ ये बात नहीं है। जिनकी क्षमता है वे तो आ जाते हैं, लेकिन जिनकी क्षमता नहीं है, जो युवक दूसरे काम करते हैं, वो इस सुविधा से वंचित रहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि गांव में, जैसा आपने कहा, कि ज्ञान प्राप्ति की दिशा में एक जागृति लाई जाए, एक विकास लाया जाए, तभी जाकर के ये समस्या हल हो सकती है।
0: और ये जो पुस्तक मेलों का आयोजन होता है इसके पीछे भी एक उद्देश्य तो ये भी रहता है।
1: जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
0: कम से कम पाठक वर्ग को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसे कुछ अपने विषय से मेल खाता हुआ साहित्य या पुस्तक पढ़ने को मिले। तो दुबे जी, ये अपन ग्रामीण अंचलों की बात कर रहे हैं, तो आपने जैसा भी कहा कि अब तो آنے جانے کے سادھن. اور آپ اب تو اب ہم سب یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ادھک تر گاؤں سمٹتے چلے آ رہے ہیں شہروں کی اور شہروں میں سماہت ہوتے جا رہے ہیں. تو اب جو گاؤں میں ہیں, جو دور انچل میں ہیں یا کہیں بھی گاؤں میں ہیں, اور اگر ان کو ایسی جانکاری ہوتی ہے کہ بھئی شہر میں پستک میلہ لگا ہے, تو میری رائے یہ ہے کہ انہیں بھئی کوئی اچھی فلم لگتی ہے تو سات آٹھ لڑکے لڑکیاں مل کر کے بھلے گاؤں میں ہی رہتے ہوں وہ فلم دیکھنے کے لیے شہر میں آ جاتے ہیں.
1: بالکل.
0: تو پستک میلہ اگر لگتا ہے تو اس میں بھی آنا چاہیے.
1: یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اگر گیان پراپتی کی جگیاسا ہے تو انہیں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ جب پستک میلہ لگے, چاہے وہ شہر میں ہو یا قصبے میں ہو, وہاں ان کو ضرور جانا چاہیے اور اپنی روچی کی پستکیں یا اپنے وشے کی پستکیں ضرور خریدنا چاہیے. خریدنا بہت ضروری ہے,
0: بہت ضروری ہے,
1: کیونکہ جو خریدی گئی چیز ہے وہ آپ کے پاس سنگرہت رہتی ہے. مانگ کر لائی گئی کوئی چیز کبھی بھی استھائی نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پستکیں مانگی نہ جائے, اسے خریدا جائے اور پڑھا جائے. میں ایک اس سندرب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خاص کر گاؤں کی بات ہے. یہ ہمارے یہاں پر سرسوتی کو گیان داتری مانا گیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کی آرادھنا کی جاتی ہے تو پستک دھارنی شبد کہا جاتا ہے.
0: کیا بات.
1: جب پستک دھارنی شبد کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیان کا سارا سروت جو ہے وہ پستکوں میں ہے. وہیں سے ہم شکشا بھی پراپت کرتے ہیں, وہیں ہمیں گیان کی پراپتی بھی ہوتی ہے, اور وہ گیان ہمیں کئی دشائیں دیتا ہے. آج میں کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ ہمارے دیش کے یوا باہر دیشوں میں جا کر کے جو نام کما رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی شکشا, ان کا گیان, ان کے اوتسک گیان کے پرتی اوتسکتا, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہمیں برابر اس بات کا انگت کرتی کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی. یہ آج دنیا کے نقشے میں یا دنیا کے اتہاس میں یا اتہاس کے پنوں میں انہوں نے اپنا نام درج کیا ہے. تو یہ اس لیے کیا ہے کہ وہ, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, کئی بار آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ گاؤں کے بچے جو ہیں وہ ان چیزوں میں اگرنی ہوتے ہیں. تو وہ اسی لیے کہ جن میں ایسی لگن ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو گیان کے سروت ہیں, پستکیں ہیں, ہم ان کو خریدیں, ان کو پڑھیں, ان میں ادھیئن کریں. اگر ہمیں اس کا پورا گیان نہیں ہے تو ہم اپنے گروؤں سے اس کی گیان کی پراپتی کریں.
0: اور پھر ایک طرح کی جگیاسا بھی رہتی ہے جی کی. اکثر کئی چیزیں گرامین انچلوں میں, گرامین علاقوں میں پتہ ہی نہیں رہتی.
1: جی.
0: تو مطلب یہ کہ کہنے کا, اور شاید آپ کی باتوں سے میں تو خیر سہمت ہوں ہی, ہمارے یوا ساتھی بھی سہمت ہوں گے کہ بھائی اگر آس پاس آپ کے شہر میں کہیں پستک میلے کا آیوجن ہو تو اس میں ضرور جائیے. تھوڑا سا بھائی اور کچھ نہیں تو ایک ڈکشنری خرید
1: لیجیے,
0: ایک شبد کوش ہی خرید لیا, ہندی میں بھی اپلبدھ ہے, انگریزی کے تو نہیں ہے.
1: بالکل.
0: تو بھائی شبد کوش ہی خریدنے, کیونکہ دبئی جی میرا یہ انبھو رہا ہے کہ کئیوں کے پاس ڈکشنری رہتی نہیں ہے,
1: اور اسی لیے ان کا شبد بھنڈار جو ہوتا ہے اوجا جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سیمت ہوتا ہے. اور جن کے شبد بھنڈار وستار ہوتا ہے, جن کے پاس اپنے شبد ہوتے ہیں, جن کے پاس اپنی ابھیویکتی کی ایک طریقے سے صحیح دشا ہوتی ہے, تو آگے چل کر کے وہ لیکھک بھی بن جاتے ہیں, آگے چل کر کے وہ ایک اچھے وکتا بھی بن جاتے ہیں. تو کئی سارے لابھ ہیں ان چیزوں کے جو انہیں پراپت کرنا چاہیے. تو اوجا جی اس سندرب میں آپ کیا کہیں گے کہ جو جیسے شبد کوش کے بارے میں آپ نے کہا یہ بہت ضروری ہے, تو شبد بھنڈار کا جو مہتو ہے آپ اس کے بارے میں کچھ یواؤں سے کہیں گے؟
0: بالکل. میں تو یہی سمجھتا ہوں دبئی جی کہ شبد اپنے آپ میں ایک ایسا استر ہے
1: جی
0: جو بڑے سے بڑے سنکٹ اور دویدھا کے کھڑوں میں
1: جی
0: آپ کی سہایتا کر سکتا ہے.
1: بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کے پاس شبد ہیں تو اپنے آپ کو ابھیویکت کرنے میں آپ کو کبھی دقت نہیں آئے گی. جو اپنے کو ابھیویکت کر دیتا ہے یا ابھیویکتی کی اس میں کھمتا ہوتی ہے, वो व्यक्ति कभी भी कहीं हारता नहीं है।
0: जी, बिल्कुल।
1: हर जगह जब वो खड़ा होता है तो उसके शब्दों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और समझते हैं कि विद्वान आदमी है। तो ये
0: और इसके लिए जरूरी है, देखिए शब्दों का भंडार सागर के समान है, जैसे स्वर है वैसे शब्द हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और इसीलिए आप जानते हैं कि शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है।
0: हाँ,
1: तो ब्रह्म का मतलब केवल भगवान नहीं है।
0: उसका ज्ञान तो आप मतलब आपको जितना मिल जाए कम ही मानना चाहिए, लेकिन अगर जिसके पास है शब्द है तो कम से कम वो अपनी बात को अच्छी तरह से लोगों के। और आज देखिए आज क्या स्थिति है कि रोजगार और नौकरियों के मामले में युवा साथियों को शब्द से बहुत समृद्ध होना चाहिए, बोलने में उनको बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि स्मार्ट होना चाहिए, तेज होना चाहिए। और वो तेजी जरूर तभी आएगी जब आप अपने आसपास के माहौल को भी समझेंगे और पढ़ते लिखते भी रहेंगे।
1: और
0: भले आप रोज अखबार पढ़ें, पूरा अखबार भी अगर आप पढ़ें तो कई चीजें आपको बाहर विदेशों की भी जानने को मिलती हैं।
1: और इसीलिए जब आपने कहा कि पुस्तक मेलों का महत्व बहुत अधिक है, इसमें दो मत हो ही नहीं सकते ओझा जी। और युवकों को इस दिशा में सोचना चाहिए और ये कोशिश भी करनी चाहिए कि गांव में भी कभी पुस्तक मेले लगें। अगर ग्रामीण युवा जो हैं उनको इन चीजों की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से
0: बिल्कुल लगना चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। खाली शहरों में ही नहीं लगाएं, वो कस्बों में भी लगाएं आसपास, ताकि आसपास के गांव के लोग या वहां के वो सब
1: युवा हैं।
0: तो जुबी जी, अब इसी संदर्भ में मैं पुस्तकों की अब बात निकली है तो मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी किस रूप में सहायक होती है।
1: अब देखिए, अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ और मेरा बचपन गांव में बीता है। तो जिस समय देश आजाद हुआ उस समय गांव में जब पंचायतों का निर्माण हुआ तो मैं समझता हूं कि उस जमाने में जो पंचायतों का स्वरूप था उसमें एक बात महत्वपूर्ण थी कि हर गांव के अंदर लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय हो, ताकि गांव के जो युवा हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिले पुस्तकों के द्वारा। और यह भी देखा है मैंने कहा कि दुनिया की बेस्ट से बेस्ट यानी सबसे अच्छी सर्वोत्तम पुस्तकें जो अनुदित थी हिन्दी में वो गांव में आपको उपलब्ध हो जाती थी। ये
0: हाँ, मतलब आप
1: ये नेहरू की बात कह रहा हूँ।
0: अगर आपको प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ने को मिले या अच्छी कविताएं पढ़ने को मिले, अच्छे निबंध पढ़ने को मिले,
1: क्या बात,
0: तो उससे ज्ञान बढ़ता ही है। तो आज किसी सदी की बात करें तो आज लाइब्रेरी का और खास करके उस लाइब्रेरी में काम कर रहे लाइब्रेरियन के पद का बहुत अधिक महत्व हो गया है। दुबे जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आजकल लाइब्रेरियन की भर्ती जो है ना वो नई तकनीक के हिसाब से की जाए,
1: बिल्कुल
0: है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। और इसमें क्या होता है बताऊं मैं आपको, लाइब्रेरियन को ई रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब स्रोत
1: है,
0: ई मेल जैसे होता है ना,
1: जी जी जी,
0: तो ई रिसोर्सेस का मतलब विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत से उसको जानकारी होनी चाहिए लाइब्रेरियन को। दूसरी ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो कंप्यूटर में आजकल किताबों, तो उसका उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए लाइब्रेरियन को। और ई जर्नल्स यानी जो पत्र पत्रिका
1: है
0: इसकी कैटलॉगिंग को आना चाहिए कि भाई कहाँ से कौन सी पत्रिका निकल रही है, विदेशों से कौन सी निकल रही है, अपने देश में कौन सी निकल रही है। तो ये सब चीजें आज के दौर में लाइब्रेरी के पद पर काम करने वाले लाइब्रेरियन को सीखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो लाइब्रेरी का अपना महत्व है,
1: पुस्तक
0: मेले का अपना महत्व है, और इन सबसे बढ़ के ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और ज्ञान हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि वो इसे प्राप्त कर सकें। और अगर वो भले वो कोई भी आगे जाकर
1: कुछ भी
0: करें, किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन अगर वो शिक्षित होंगे,
1: ज्ञानवान होंगे,
0: तो उनका निश्चित रूप से सुखद भविष्य होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो अब हम अपने श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था पुस्तकालय और पुस्तक मेलों का महत्व। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे श्री कृष्णकांत दुबे एवं स्वतंत्र कुमार ओझा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, कार्यक्रम योग संचार का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम योग संचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक है संचार अमृत है, जहर नहीं बनना चाहिए, और प्रस्तुतकर्ता है स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के हमारे युग संचार कार्यक्रम का विषय है संचार अमृत है, जहर नहीं बनना चाहिए। साथियों, संचार सभी जानते हैं कि जीवन में और जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। अब क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है, चाहे कला का क्षेत्र हो तो संगीत, नृत्य और चित्रकला सहित समस्त ललित कलाओं को चारों ओर संचारित करने का, प्रसारित करने का काम संचार ही तो करता है। जब भी कोई सुंदर कला प्रदर्शित होती है तो उसे जनमानस में लोकप्रिय करने का काम संचार ही करता है। यही स्थिति साहित्य में भी है। जब भी कोई ज्ञान युक्त फैंटेसी या फिर समाज और धर्म को लेकर कोई साहित्य प्रकाशित होता है, कोई पुस्तक छपकर बाहर आती है, तो उसकी प्रसिद्धि से, उसकी सारगर्भित भाषा से सभी साहित्य प्रेमी उसको पढ़ने को उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। आकर्षण के इस कार्य को भी संचार ही प्रसारित करता है। तो कहने का अर्थ यही है कि शब्द और ध्वनि का सुमधुर संप्रेषण संचार के द्वारा ही संभव है। कुछ विद्वानों ने संचार की तुलना सागर से भी की है, यानी अथाह जल का समुद्र। सभी जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का भी रोचक वर्णन पढ़ने को मिलता है। क्या है ये कथा? जब देवताओं और दानवों ने मिलकर वासुकी नाग का प्रयोग करते हुए समुद्र मंथन किया था, तब इस मंथन से अनेक बहुमूल्य रत्न और अमृत के घड़े के साथ विष भी निकला था, जहर भी निकला था। अब विष का तो भगवान शिव ने पान कर लिया और अमृत कुंभ के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि सभी अमर होना चाहते थे, कोई मरना नहीं चाहता था। उसमें से थोड़ा सा भी अमृत पी लेते तो वो मर ही नहीं सकते थे। बहरहाल, संचार की तुलना समुद्र से कुछ ऐसे ही संदर्भ को लेकर की गई है, इसीलिए संचार की तुलना सागर से मानी जाती है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है? तो इसका उत्तर यही है कि संचार का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है मशीनी उद्योग, उपकरण आदि। इन सब में तो जैसे क्रांति आ गई, और ये बात प्रामाणिक है कि इस क्षेत्र में विज्ञान ने जो हर दिन नूतन, जिसको कि हम लेटेस्ट कहते हैं, इन्वेंशंस, आविष्कार विज्ञान द्वारा हो रहे हैं, निश्चय ही वो संचार मंथन से निकला अमृत है जो मानव के लिए अत्यंत हितकारी है। लेकिन इसी मंथन से जो जहर निकला है, जो विष निकला है, उसे भी मानव को ही पीना पड़ रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात नहीं बल्कि हम तो कहेंगे गंभीर स्थिति है। तो अब इस संचार मंथन से किस तरह जहर फैला है, उसी पर बात करें। इस आधुनिक संचार क्रांति के बेहद उपयोगी यंत्र हैं सभी जानते हैं, कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल, उसके बाद वेबसाइट और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल रूप से ये हैं। और आज के दौर में चाहे युवा हों अथवा अधेड़, जो कि असामाजिक और खुराफाती आदतों के हैं, ये सब इसका जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे गलत काम कर रहे हैं और इनमें अपराध जगत सबसे ऊपर है और अपराधों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। टेलीफोन के आविष्कार ने दुनिया भर में संवाद स्थापित करने को आसान और सुलभ बना दिया। विमान के आविष्कार ने, जिसे जहाज कहें या हवाई जहाज कहें, इसके आविष्कार ने क्या किया? विश्व की दूरियां मिटा दी। इसके साथ टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल के आविष्कार ने क्या किया? इन्होंने मनोरंजन और अपार ज्ञान का ऐसा संसार जगमगा दिया कि पूरी दुनिया इसके अनगिनत रंगों में रंग गई। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इंटरनेट, जो कि कंप्यूटर से संचालित होता है। लेकिन बहुत ही दुखी मन से, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन रंगों को बदरंग कर दिया चंद बहके हुए भटके हुए इंसानों ने। मोबाइल के रूप में टेलीफोन ब्लैकमेलिंग का माध्यम संचार करने लगा, विमान विध्वंस और विनाश करने लगा। अरे, हम सभी जानते हैं कि विमानों से कैसे कैसे भयानक आतंकी हमले हुए हैं। इसी कड़ी में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 20 सालों में लगभग विश्व के अनेक विमान हाईजैक के शिकार हुए। हाईजैक हम सभी जानते हैं, विमान उड़ रहा है, अचानक से 4-5 आतंकवादी मशीन गने लेकर के उसमें घुसे हुए हैं और सारे यात्रियों को डरा रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, नहीं तो उन यात्रियों को मार दिया जाएगा या हवाई जहाज से फेंक दिया जाएगा। इस तरह कई चित्र आपने हमने सभी ने देखे हैं। तो ये विमान हाईजैक बहुत ज्यादा हुआ है और जो विमान को किडनैप करते हैं इन्हें अपहरणकर्ता कहते हैं। तो अपहरणकर्ताओं की मांगें पूरी करने में विमान में सवार निर्दोष यात्रियों को खामोखा बिला वजह अपनी जान पर बनाती, उनकी बहुत परेशानी उनको उठाना पड़ती। और ऐसी भी घटनाएं हमें मालूम है कि इसमें कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है, अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है उनको। तो अब इसे क्या कहेंगे? इन आतंकी घटनाओं को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे संचार के मंथन से निकला जहर। जी हाँ, यही वो जहर है। इसी तरह मोबाइल और उसके SMS स्कूल कॉलेज की लड़कियों और महिलाओं को परेशान और बदनाम करने जैसी अश्लील वारदातों के लिए धड़ल्ले से उपयोग में लिए जा रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि मानसिक रूप से विकृत पागल कुछ लोग आए दिन ऐसी नाजायज हरकतें करते हुए एक तरह की सनसनी फैला रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। अब इंटरनेट की बात करें, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है, तो उसका भी उपयोग ऐसे ही लोग, यानी हम तो कहेंगे कि अश्लीलता की हदें पार कर चुके हैं। पोर्नोग्राफी हैकिंग, इकोनॉमिक क्राइम, कॉपीराइट और पेटेंट के उल्लंघन की घटनाएं भी काफी बढ़ रही हैं। इसे साइबर क्राइम कहा जाता है। इंटरनेट सर्फिंग ज्ञान का विस्तार करने के लिए है, अश्लीलता के लिए नहीं है। लेकिन ये खुराफाती असामाजिक तत्व निरंतर इसका उपयोग गंदी हरकतों के लिए करते हैं और ये एक गंभीर मसला है, और गंभीर मसला ही नहीं बल्कि ये तो एक अपराध है। इन कामों के लिए कुछ साइबर कैफे भी अपनी दुकानदारी चलाकर पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अंत में हम यही बात दोहराना चाहेंगे कि संचार हमारे लिए अमृत के समान है। इस अमृत को जो जहर में बदलने वाले मानव समुदाय हैं, वो पूरे विश्व के लिए कलंक हैं, और इस कलंक को मिटाने का हमें सामूहिक प्रयास करना ही होगा। नमस्कार।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा विकास के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था संचार अमृत है, जहर नहीं बनना चाहिए, और प्रस्तुतकर्ता थे स्वतंत्र कुमार ओझा। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दे आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट है आकाश जांगरा। नमस्कार।

विवेक जी, आपने बुलाया और हम चले आए। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, लीजिए मैं फिर से उपस्थित आपकी खिदमत के लिए, आपको नई नई जानकारी देने, आपका मनोबल बढ़ाने। स्वीकार करें आपकी रेडियो दोस्त ज्योति का फूलों से भरा, कोमलता से भरा सह स्नेह नमस्कार। दोस्तों, अभी की सभा समय 9 से 10 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। श्रोता साथियों, कार्यक्रम सर्वधर्म विचार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अभी की सभा की वार्ता का शीर्षक है, धार्मिक अतिक्रमण को ना मिले सार्वजनिक मान्यता, जिसके प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोर जी। और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बेंडोर एसवीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है, धार्मिक अतिक्रमण को न मिले सार्वजनिक मान्यता। मित्रों, गिरीश उपाध्याय जी लिखते हैं, मध्य प्रदेश में इटारसी के पंडितों का एक फैसला पूरे देश के लिए नजीर बन सकता है। वहां के सर्व ब्राह्मण समाज ने हाल ही में निर्णय लिया है कि निजी स्वार्थों के खातिर नालियों के ऊपर या आसपास मंदिर बनाकर धर्म का फायदा उठा रहे लोगों के मंदिरों में वे पूजा या कोई भी कर्मकांड नहीं करेंगे। सर्व ब्राह्मण समाज ने कर्मकांडी पुजारियों और पंडितों का प्रकोष्ठ बनाया है, जिसके हाल में ही हुई एक बैठक में शहर के पुजारियों द्वारा सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया। पुजारियों का स्पष्ट कहना है कि जिस मंदिर का निर्माण व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया गया है, वहां वे पूजा करने नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि इस तरह के मंदिरों में विराजित देव प्रतिमाओं को विधि विधान के साथ विस्थापित कर शहर के प्रमुख मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाए। मित्रों, दरअसल मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थलों को धड़ल्ले से स्वार्थ सिद्धि का जरिया बनाया जा रहा है। चाहे किसी जमीन पर बेजा कब्जा करना हो या जमीन अथवा निर्माण को कानूनी कार्यवाही से बचाना हो, सबसे बेहतर तरीका यही हो गया है कि वहां कोई धार्मिक ढांचा खड़ा कर दिया जाए। यह बात किसी एक संप्रदाय पर नहीं, सभी पर लागू होती है। कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों के लिए ऐसे निर्माण अक्सर बड़ा सिरदर्द बन जाते हैं। कई बार तो शहर की निर्माण या विकास योजनाएं ऐसे अवैध निर्माणों के कारण या तो वर्षों लटकी रहती है या फिर उनका स्वरूप ही बदलना पड़ता है, जिस पर जनता का ही अतिरिक्त पैसा खर्च होता है। ऐसे निर्माण न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन बल्कि सार्वजनिक यातायात में भी बाधा खड़ी करते हैं। प्रशासनिक तौर पर की जाने वाली कार्यवाहियों से बचने के लिए कोर्ट से स्थगनादेश ले लिया जाता है और मामला सालों तक उलझा रहता है। जबलपुर शहर में ही हाईकोर्ट ने स्वयं पहल कर ऐसे सैकड़ों धार्मिक अतिक्रमण हटवाए हैं। यह बात अलग है कि बाकी शहरों में अभी इस तरह की कोई मुहिम प्रभावी ढंग से नहीं चल सकी है। सरकारी जमीन पर काबिज धार्मिक ढांचे के अतिक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दो टूक टिप्पणी करते हुए कहा है कि अलग से जमीन खरीदो और बनाओ आलिशान मंदिर। न्यायालय ने यह टिप्पणी सरकार के जवाब पर की, जिसमें कहा गया था कि सामान्य जन के लिए बने बगीचे के अंदर बने मंदिर किसी भी तरह यातायात में बाधक नहीं है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पार्क बच्चों के खेलने के लिए बने हैं। न्यायाधीश के लाहौटी और न्यायाधीश अजीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक स्थल अतिक्रमण माना जाए और उसे तत्काल हटा दिया जाए। धार्मिक स्थलों के नाम पर भूमि के अवैध अतिक्रमण के प्रयासों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका भी सराहनीय है। कोई भी धर्म या संप्रदाय धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर नाजायज लाभ उठाने के लोभ के संवरण से आज पीछे नहीं है। धार्मिक चिन्ह स्थापित कर अच्छी खासी भूमि का अतिक्रमण हम सभी ने देखा है। हद तो तब हो जाती है जबकि अपने निवास स्थानों, जिनकी बाउंड्री अमूनन अतिक्रमण ही होती है, को बचाने के लिए बाहरी कोने में एक छोटा सा मंदिर या आराधनालय स्थापित कर दिया जाता है। इसी भगवान की व्यक्तिगत उपासना ही उन्हें नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान से बचाने में ढाल का काम कर देती है। इस पाप कर्म में जबरन भागी बनवाए जाते प्रभु के हृदय पर क्या गुजरती होगी, भला सोचा है उनके भक्तों ने। कई बार काफी सावधानी पूर्वक चलाए जा रहे अभियानों में भी एक छोटी सी असावधानी, जैसे मूर्ति की एक उंगली का टूटना जैसी घटनाओं ने बड़े दंगों का रूप भी ले लिया है। ऐसी घटनाओं का लाभ उठाने में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहे हैं। मित्रों, इस परिप्रेक्ष्य में इटारसी के सर्व ब्राह्मण समाज का फैसला नई दिशा दे सकता है। दरअसल ऐसे किसी भी निर्माण को यदि सार्वजनिक मान्यता न मिले तो न उसका कोई धार्मिक महत्व बन सकता है और न ही उसके खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही में कोई खास बाधा आ सकती है। लेकिन गली गली में हो जाने वाले ऐसे निर्माण तब और ज्यादा तकलीफदेह हो जाते हैं जब वहां आए दिन धार्मिक आयोजन या भंडारे होने लगते हैं और लोग बीच सड़क में गाड़ियां रोककर धार्मिक कर्मकांड करने लगते हैं। यदि कर्मकांड करवाने वाले लोग ही
ऐसे निर्माणों को तवज्जो न दे तो इस ढांचों की पूछ परख ही नहीं होगी और धीरे धीरे लोगों का ध्यान भी उन पर से हटता जाएगा। नालियों पर या उसके किनारे बनने वाले धार्मिक ढांचों का तो वैसे भी कोई महत्व नहीं होना चाहिए। इटारसी से जो विचार सामने आया है, देश प्रदेश के अन्य शहरों में भी उसका अनुसरण हो तो धार्मिक अतिक्रमणों की समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है। मित्रों, आज जरूरत है कि सभी धर्मों के प्रतिनिधि और राजनीतिक दल व्यक्तिगत हित साधना के इस शर्मनाक प्रयास के विरोध में एकजुट हो। अतिक्रमित धर्मस्थलों को उपासना के लिए अयोग्य घोषित किया जाए और भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर उसका उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ धार्मिक आयोजनों के नाम पर सार्वजनिक स्थलों के संतुलित अतिक्रमण के विरुद्ध भी जनमानस बनाए जाने की जरूरत है। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था धार्मिक अतिक्रमण को ना मिले सार्वजनिक मान्यता, और जिसके प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोर जी, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संसार केंद्र इंदौर की। साथियों, आइए सुनते हैं अब एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संसार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अगले कार्यक्रम के बारे में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि बोए जाते हैं बेटे और उगाती है बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलहाती है बेटियां, एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ढीले जाते हैं बेटे और चढ़ जाती है बेटियां, रुलाते हैं कुछ बेटे और रोती हैं बेटियां, कई तरह गिरते हैं बेटे और संभाल लेती हैं बेटियां, और यही बेटियां नारी बनकर सशक्त होती है। साथियों, अब तो आप हमारे अगले कार्यक्रम के बारे में जान ही चुके होंगे। हमारा अगला कार्यक्रम है नारी सशक्तिकरण और अभी की सभा समय 9 से 10 की वार्ता का शीर्षक है उपदेश देने वाली महिलाएं, और जिसकी लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता है भवानी कौल जी।

नारी सशक्तिकरण वार्ता सुनिए, उपदेश देने वाली महिलाएं। साथियों, अपने आसपास दफ्तर में, रिश्तेदारी में, सभा स्थल में महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समूह आपने देखा और सुना होगा, जो अक्सर दूसरों को केवल और केवल उपदेश देती हैं। ऐसी महिलाओं को सुनकर, देखकर आप मंद मंद मुस्कुराते होंगे या उनकी मूर्खता पर आपको दया आती होगी। इस तरह के नारियों की कोई कमी नहीं है, ये हर जगह मिल जाती हैं, बखूबी अपनी बातों को रखते हुए, समझाते हुए। वैसे तो महिलाएं विभिन्न तरह की होती हैं साथियों, उनका रहन सहन, विचार, सोचने समझने की शक्ति व उसकी क्षमता अलग अलग होती है, ये आप भी जानते हैं। नारियों के इन तमाम समूह में एक समूह महिलाओं का ऐसा भी होता है जो खुद को बहुत होशियार समझती हैं। कई तो समझदारी के साथ स्वयं को विद्वान और बुद्धिमान भी मानती हैं। वे जो कह रही हैं वही सही है, वे जो कर रही हैं वही सही है, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं। उनका कहना यानी पत्थर की लकीर है, उसे कोई झूठला नहीं सकता। ऐसी महिलाओं से आप कभी सामना हुआ होगा, अपनी बातों को दावे के साथ रखते हुए आप भी उलझन में पड़ गए होंगे। तो साथियों, आप अपने विचार उन महिलाओं के सामने

तो वो करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं, इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है। तुम तो मूर्ख हो। मेरी बात मानो तो ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आदि आदि, और ना जाने कितनी तमाम बातें। अब भला आप ही बताइए, ये कोई बात हुई? कोई आपके पास अपनी समस्या लेकर आया है, अपनी परेशानी लेकर आया है, अपना दुख लेकर आया है, और आप उसे अपनी ही बात थोप रहे हैं, अपनी ही बातें किए जा रहे हैं, उनकी सुनने को तैयार ही नहीं? साथियों, ऐसी महिलाओं को जरा गंभीरता से लिया जाए तो ये दूसरों को अपने उपदेश के जरिए हताश करती हैं, निराश करती हैं, आपको अपने विचारों से ठेस पहुंचाती हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि इस तरह की नारियां अंदर ही अंदर बहुत खुश होती हैं कि हमने उनको बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। इतना ही नहीं, वे उपदेश दे देकर थकती भी नहीं हैं और बोर भी नहीं होती हैं। वे यह भी नहीं सोचती कि मैं जो कह रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, क्या वह सही है या गलत है। सुनने वाला बोर हो जाएगा, पर वे नहीं थकती और न ही बोर होती हैं। तो साथियों, फिर ऐसा भी नहीं कि वे केवल अपने घर परिवार, जान पहचान वालों को ही उपदेश देती हैं। वे तो पड़ोसियों के घर भी जाकर उपदेश देती हैं, उनके पारिवारिक मामलों में टांग अड़ाती हैं। इन महिलाओं से बात करने में लोग कतराते हैं। सामने वो महिला दिख जाए तो उल्टे पांव दूसरे रास्ते से निकलना पड़ता है उनको। अनजान व्यक्ति भी इनके उपदेश की मार से बच नहीं सकता। कुछ सासू माँ से अपनी बहुएं तो संभलती नहीं है, दूसरों की बहुओं को बोलने से चुकती नहीं, उन्हें जमाने भर का नियम धर्म बताएंगी, परंपराओं को समझाएंगी, खाना बनाने के तौर तरीके बताएंगी और ना जाने क्या क्या, जैसे कुछ उस बेचारी को आता ही नहीं। अरे भाई, नई नवेली बहू को वो भी पड़ोस की, उसे सिखाएंगी कि सास माँ के समान होती है, उसकी हर बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है, सासू माँ को कभी झिड़कना मत, सास कुछ बोले तो बुरा नहीं मानना, उसकी सेवा करना, उसके हाथ पैर दबाना, और तुम्हारे जो छोटे नंद देवर हैं उनका भी खास ध्यान रखना। इस तरह के तमाम उपदेश देकर आ जाएंगी। अब अनावश्यक रूप से उपदेश देने वाली उस महिला को कौन समझाए कि ये सारी बातें उसे भी पता है, उस नई नवेली दुल्हन को भी पता है। यथाशक्ति वो अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेगी। ये तो सही है कि वो एक नए परिवेश में गई है, नए परिवार में गई है, लेकिन भाई उसके ऊपर भी तो कुछ जिम्मेदारी है, वो भी पढ़ी लिखी है, संभाल लेगी, अपनी जिम्मेदारियां समझ लेगी। साथियों, एक राहगीर ने ऐसी ही एक महिला से पता पूछ लिया, पता बताने के बजाय लगी उपदेश देने। देखो बेटा, पता पूछने से पहले तुम्हें हम जैसे बुजुर्ग महिला का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें दो तीन बार आवाज नहीं देना चाहिए, और सुनो बेटा, पता बताने के बाद हमें धन्यवाद देना चाहिए था। अपने बुजुर्गों को ना नमस्ते ना धन्यवाद, अरे ये कहाँ का रिवाज है। उस बेचारे ने अपना सिर पीट लिया, कहाँ पता पूछने चला गया, ढंग से पता भी नहीं मिला और दुनिया भर का उपदेश। अगर आप महिलाएं भी इस तरह दूसरों को छोटी मोटी बातों में बड़े बड़े उपदेश देती हूँ तो समझ जाइए, लोग आपकी बातें सुनते कम हैं, मखौल ज्यादा उड़ाते हैं। आप समय पर हंसी का पात्र भी बन सकती हैं, तब आपको काफी तकलीफ होगी। इसलिए उपदेश देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कभी न करें। आपकी उपदेश भरी बातों से लोग बचना चाहेंगे और आपके समक्ष आने से डरेंगे भी, क्योंकि बेकार की बातें सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। आपकी बातें सुनकर उसे अमल में लाया जाएगा यह जरूरी नहीं है। इसलिए आप महिलाएं अधिक उपदेश देती हैं तो फिर संभल जाइए, कम बोलिए, अच्छा बोलिए। यदि आप कम बोलेंगी, सार गर्भित बातें बोलेंगी, तो लोग आपकी बातें सुनेंगे भी और मानेंगे भी।
इस तरह से साथियों देखा जाए तो उपदेश

उपदेश देना इन महिलाओं में आदतन होता है। किसी को उपदेश दिए बिना इनके पेट का खाना नहीं पचता। किसी को बोलने का मौका न देते हुए उसे ढेर सारी बातें बताना। अच्छा, इनकी सब हिदायतें चाहिए में होती हैं। तुम्हें ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना चाहिए। तो आप महिलाएं संभल जाइए और अच्छा बोलिए और कम बोलिए ताकि लोग आपकी बात माने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था उपदेश देने वाली महिलाएं और जिसकी लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल जी। दोस्तों, आइए अब हम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि उन्होंने नारी की रचना की। उन्होंने हम मनुष्य को, पशु पक्षियों को बनाया, धरती बनाई। तो आइए सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, कार्यक्रम मन दर्पण में आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वार्ता का शीर्षक है जाने की क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य, और लेखक है कृष्णकांत दुबे जी और प्रस्तुत करता है संतोष जोशी जी।

मन दर्पण के अंतर्गत वार्ता जाने कि क्या है हमारा जीवन उद्देश्य, लेखक कृष्णकांत दुबे, प्रस्तुतकर्ता संतोष जोशी। मित्रों, अगर मनुष्य ये दावा करता है कि वो इस ईश्वरीय सृष्टि में अन्य प्राणियों से भिन्न है, उनसे भिन्न है उसका अस्तित्व, वो सब में उन्नत है और उसमें ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं हैं, शक्ति हैं, जो कि किसी अन्य प्राणी में नहीं है, तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि प्रभु की यह कृपा मनुष्य के प्रति उसका कोई विशेष पक्षपात नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि ईश्वर ने उसे ये विशेषताएं इसलिए भेंट की, प्रदान की हैं कि वो इस पृथ्वी को अधिक सुंदर, अधिक संपन्न, अधिक अच्छा और शांतिपूर्ण बनाए रखने में भरपूर मदद करे, सहयोग करे। उस प्रभु ने यही विशेष उत्तरदायित्व सौंपकर इंसान को इस धरा, इस पृथ्वी पर भेजा है। इस महत उत्तरदायित्व को मनुष्य किस तरह संपन्न करता है, ये सब कुछ मनुष्य पर ही तो निर्भर है। हाँ, किसी विद्वान ने ये कितना सही कहा है, ईश्वर ने मनुष्य को ज्ञान इसलिए दिया कि वो उसकी निर्मित सृष्टि में जो भी कुछ है वो उसे ठीक ठाक और व्यवस्थित बनाए रखे। इसलिए मनुष्य जाति को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सृष्टि में इंसान को जो ज्ञान, जो संवेदना, जो विशेष चेतना, जो श्रेष्ठता प्राप्त है, वो इसलिए कि इस संसार की श्रेष्ठता न केवल बनी रहे बल्कि मनुष्य उसमें लगातार वृद्धि करता रहे, बढ़ोतरी करता रहे। हम यानी मनुष्य ये भी नहीं भूलें कि ईश्वर द्वारा उसे इस धरती पर इस उद्देश्य से भेजा गया कि वो एक ऐसा सेवक, ऐसा अनुयायी है जो अपने कुशल हाथों से इस सृष्टि को अच्छी तरह परख कर उसकी रचना को और अधिक सजा संवार सके, उसे और अधिक सुंदरता दे सके। प्रभु ने इस धरा पर उसे ऐसे ही अधिकार, ऐसे ही कर्तव्य, ऐसे ही महत्वपूर्ण दायित्व देकर भेजा है, ताकि वो इस धरती पर लोक मंगल की भावना का निरंतर विस्तार कर सके, उसे बढ़ा सके। हम सब इस महत सत्य से परिचित हैं कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, जिसमें सेवा भावना होती है, उसका विस्तार होता है, वही सच्ची उन्नति का, प्रशंसा का, यश का सहज भागीदार बनता है। अब प्रश्न है, क्या आप अपने आप को ऐसा बनाना नहीं चाहेंगे? वैसे किसी विद्वान ने, चिंतक ने कितना सच कहा है। देखा जाए तो किसी भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं होती, बशर्ते कि वो अपना जीवन सहजता, सादगी, सरलता से बिताए। जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है, उसके पास न तो लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए समय की कमी होती है, न ही सामान्य साधनों की। उसे तो अपने समय और उसके पास जो भी जैसे भी साधन हैं, उनका उपयोग तो उन्हीं कामों में करना चाहिए जो परहित के लिए हों, जन जन के हित के लिए, कल्याण के लिए हों। उसे तो इसी व्रत का पालन करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि लोकहित को ही अपना जीवन लक्ष्य, जीवन उद्देश्य बना लेते हैं। वे ऐसी जन सेवा करके अपने में सच्चे सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन को सिर्फ अपनी ही महत्वाकांक्षा में बांध लेते हैं, एक घेरे में बांध लेते हैं, और ये समझ लेते हैं कि यही सब कुछ हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। पर वे ये भूल जाते हैं कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक बार प्रवेश करने पर उसमें से निकल पाना एकदम असंभव, एकदम कठिन हो जाता है। उसके बाद तो एक के बाद एक महत्वाकांक्षाएं जीवन में उभरते हुए उसी मनुष्य के लिए निरंतर बोझ बनती चली जाती हैं, और उसके पश्चात शुरू होता है उन इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दिन रात संघर्ष, दिन रात परिश्रम। यूं व्यक्ति का परिश्रमशील होना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन हाय तौबा वाला परिश्रम आगे चलकर जीवन को हर तरह से असहनीय बना देता है। और महत्वाकांक्षाएं हैं कि वे मनुष्य को मृग तृष्णा की तरह लगातार छलावा देती रहती हैं,
और वे व्यक्ति उस मृग मरीचिका के पीछे भागते चले जाते हैं। ऐसे मनुष्य को फिर कहीं भी विश्राम नहीं मिल पाता और न ही सच्चा लक्ष्य ही। इस तरह उनका जीवन अंधी थकान से भर जाता है। ऐसे लोग ये बात भूल जाते हैं कि कुछ भले काम भी हैं इस जीवन में जो उन्हें करना है और जो उनकी राह देख रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ये सोचना है कि केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति मात्र ही हमारे जीवन का उद्देश्य बनकर न रह जाए। हाँ, ये भी सही है, शुरू शुरू में महत्वाकांक्षाएं बड़ी मोहक, बड़ी सुहानी लगती हैं। वे व्यक्ति को निश्चित आकर्षित करती लुभाती हैं। वे व्यक्ति को अपने पीछे चलने के लिए भी विवश करती हैं। अगर व्यक्ति ने एक बारगी उनके पीछे चलना शुरू कर दिया तो फिर उस चलने का, उस अंधी यात्रा का कहीं कोई अंत नहीं होता, कहीं छोर, कहीं समाप्ति नहीं दिखाई देती। कई व्यक्तियों का यह अनुभव भी है कि महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में मिली असफलताएं जीवन में भयावह हाहाकार उत्पन्न कर देती हैं। ये हाहाकार मनुष्य की आंतरिक और बाह्य शांति को भी भंग कर देती है और बाकी सब कुछ सिमट कर रह जाता है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जितना सहज सरल होगा और जितना अधिक मानव कल्याण की भावना से भरा होगा, वो मनुष्य को उतना ही सुख देगा, शांति देगा। विश्व में जितने भी मनीषी, जितने भी महान चिंतक विचारक हुए हैं, कहें कि महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन का मूल उद्देश्य मात्र मानव कल्याण और विश्व कल्याण ही रहा है। इसी महत उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपने जीवन पथ का निर्माण किया। हम ये भी नहीं भूलें कि उन्होंने अपना रोजमर्रा का या पारिवारिक जीवन ना जिया हो, पर उनका जीवन उद्देश्य महिमामय रहा है। उन्होंने महत्वाकांक्षा के अहंकार भरे जीवन को कभी भी नहीं स्वीकारा, कहें कि उसे ठुकराया ही है। हम सब जानते हैं कि जिनका जीवन उद्देश्य निर्मलता भरा है, ऐसे पुरुष विपत्तियों से कभी नहीं घबराते, क्योंकि वे जानते हैं कि वे स्वयं प्रपंच रहित हैं। इसीलिए आपदाएं जैसी आई हैं वैसी चली भी जाएंगी, इसीलिए वे अपना जीवन निर्भयता पूर्वक बिताते हैं। ज्ञानी जन इसीलिए तो कहते हैं, जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए आत्मकल्याण और दूसरा जन कल्याण। आत्मकल्याण व्यक्ति जीवन को ऊंचाइयां देता है और उसे देवत्व की सुनहली दिशा की ओर अग्रसर करता है। जनकल्याण के प्रति रुझान व्यक्ति का समाज के प्रति सीधा सीधा कर्तव्य बोध है। जिन लोगों के बीच, जिस समाज के बीच व्यक्ति ने जन्म लिया, जिनके सहयोग ने व्यक्ति जीवन को गति दी, उसे आगे बढ़ाया, विकसित किया, जिसके बीच रहकर ज्ञान अर्जित किया, जिस समाज ने जीवन साधन दिए, उनके प्रति भी व्यक्ति के अपने कर्तव्य होते हैं। व्यक्ति जनहित समाज हित में काम करके अपने इन्हीं कर्तव्यों का पालन करता है। इसीलिए आत्मकल्याण और जन कल्याण व्यक्ति जीवन के प्रमुख उद्देश्य होने ही चाहिए। कुल मिलाकर एक सफल जीवन के बारे में यदि हम कहें तो यही होगा कि आत्मकल्याण और जन कल्याण, ये दो बातें मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं ही तथा उसके आसपास के समाज के लिए भी कल्याणकारी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के अंतर्गत वार्ता, और आज की वार्ता का शीर्षक था जाने की क्या है हमारा जीवन का उद्देश्य, और लेखक थे स्वर्गीय कृष्णकांत दुबे जी और प्रस्तुतकर्ता थे संतोष जोशी जी। श्रोताओं, मेरी सहेली ने मुझे एक संदेश लिख के भेजा है। वे कहती है कि इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। साथियों, आइए अब सुनते हैं भगवान के आदर में एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, इस समय आप आपकी रेडियो दोस्त ज्योति के साथ रेडियो वरिदास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब वक्त न जाया करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण, जिसका शीर्षक है हो जाए कॉफी, और लेखिका व प्रस्तुत करता है समता खान चंदानी।

पर्यावरण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है हो जाए कॉफी। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता खामचंदानी। श्रोता साथियों, आप सभी को समता का प्यार वाला नमस्कार। दोस्तों, क्या आपका भी गर्मी के मारे बुरा हाल है और गला सूख रहा है? मेरा भी हाल आपके ही जैसा है और मुझे ठंडी कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, क्या कहा, आपको भी कॉफी पसंद है? अरे साथियों, कॉफी तो दुनिया भर में बहुत पसंद की जाती है। आपको बता दूं कि दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में कॉफी का नाम दूसरे स्थान पे आता है और चाय से ज्यादा दुनिया में कॉफी के दीवाने हैं। बरिस्ता, कैफे कॉफी डे, कॉफी हाउस, कोस्टा और कैरेबियन कॉफी जैसे कॉफी बेचने वाली शॉप भी दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्हें इतनी शोहरत कॉफी ने ही तो दिलाई है। दोस्तों, वैसे आप बताइए, आपको ठंडी कॉफी पसंद है या गर्म? आपको बताऊं कि कैपेचिनो कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, एस्प्रो कॉफी, अरबी कॉफी या दक्षिण भारत की फिल्टर कॉफी, सभी का स्वाद अपने आप में निराला है। चलिए दोस्तों, कॉफी के साथ कॉफी की यात्रा पर चलते हैं। पहले पहल कॉफी इथियोपिया में पाई गई थी। कुछ कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति का स्थान यमन है, पर कुल मिलाकर सबसे पहले अरब देशों में कॉफी लोकप्रिय हुई। दोस्तों, ये 13वीं शताब्दी की बात है। उस समय इस्लाम में अल्कोहल पर पाबंदी थी और शायद इसी कारण लोगों का रुझान कॉफी के प्रति बहुत बढ़ गया। 16वीं शताब्दी तक कॉफी का उत्पादन अरब देशों में बड़े खुफिया तरीके से किया जाता था। यहाँ तक कि उपजाऊ कॉफी के बीज अरब देशों के बाहर मिलते ही नहीं थे। 1650 में कॉफी इंग्लैंड आ गई और ऑक्सफोर्ड व लंदन में कॉफी की दुकानें भी खुल गई। हैरत की बात तो यह है दोस्तों कि जहाँ 16वीं शताब्दी तक कॉफी का उत्पादन केवल अरब देशों में ही किया जाता था, वहीं 19वीं शताब्दी में कॉफी का 80% उत्पादन केवल अकेले ब्राजील ने किया। कितनी जल्दी लोकप्रिय हुई होगी ना दोस्तों। भारत में भी कॉफी चोरी चोरी 16वीं शताब्दी में ही आई। अब तो करीब 70 देशों में कॉफी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब इसके पेड़ के बारे में कुछ बातें जान लें। कॉफी का पेड़ करीब 10 से 12 फुट लंबा होता है और इसको आमतौर पर झाड़ यानी शर्ब भी कहा जाता है। 3 से 5 वर्ष की आयु के झाड़ पर फलाना शुरू हो जाते हैं और लगभग 50 वर्षों तक यह पेड़ उपजाऊ रहता है। इसके फल को कॉफी बीन्स कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि फल मिल गया यानी बस मिल गई कॉफी, तो दोस्तों आप गलत हैं। कॉफी बीन्स से कॉफी निकालना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले कॉफी के दानों को तोड़कर उसमें से नरम पदार्थ जिसे कि पल्प कहा जाता है उसे निकाला जाता है। इसके पश्चात कॉफी के बीजों से निकले पल्प को 36 घंटे पानी में भिगोकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इससे कॉफी में कुछ रासायनिक बदलाव हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें धोकर सुखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है दोस्तों, लेकिन इसी मेहनत और समय के कारण कॉफी का स्वाद लाजवाब बन जाता है। कॉफी की दो प्रजातियां पाई जाती है। इनमें कैफिया अरेबिका सबसे पुरानी प्रजाति है। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति का स्थान इथियोपिया था और वहीं से यह मिस्र और यूरोप होते हुए सारी दुनिया में फैली थी, लेकिन क्योंकि यह सबसे पहले अरब देशों में पसंद की गई, इसीलिए इसे अरेबिका नाम दिया गया। कॉफी की यह प्रजाति बेहद संवेदनशील थी और दोस्तों यह हर कहीं उग नहीं पाती थी। कॉफी की दूसरी प्रजाति कैफिया रोबस्टा ऐसे वातावरण में भी पनप सकती थी जहाँ अरेबिका नहीं उग पाती थी। यूं तो दोस्तों अब कॉफी की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन यही दो प्रजाति सबसे पुरानी और मुख्य है। कैफिया अरेबिका स्वाद और गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, परंतु कैफिया रोबस्टा में उससे 40 से 50% तक ज्यादा कैफीन होता है। दोस्तों, उगाने से लेकर पीसने तक हर कदम पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है। कॉफी के झाड़ पर बहुत से कीड़े लगने की आशंका हमेशा बनी रहती है और इसमें डाले जाने वाली खाद भी कॉफी की गुणवत्ता पर असर डालती है। इसके बाद कॉफी के पके हुए दानों को तोड़ना भी खासा मायने रखता है। यहाँ यदि सावधानी नहीं बरती गई, तो अच्छे पके दानों के साथ अधपके दानों के मिल जाने की संभावना हो जाती है और इससे सारी की सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। एक एक दाना चुन चुन कर तोड़ा जाता है।
तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कॉफी इतनी महंगी क्यों मिलती है। खैर दोस्तों, आजकल कॉफी सिर्फ स्वाद के ही लिए नहीं पी जाती, कॉफी कैफीन का अच्छा स्रोत है। कैफीन एक उत्तेजक होता है जो हमारे दिमाग की नसों को सचेत करता है। साथ ही साथ दोस्तों, कॉफी में ऐसे कई सारे गुण हैं जिनका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉफी में कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारी में फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों ये तो आपने खुद अनुभव किया होगा कि कॉफी पीने के बाद थकान से राहत मिल जाती है और कॉफी नींद भी भगा देती है। इसीलिए रात में जाकर पढ़ाई करने वाले बच्चों में कॉफी पीने का प्रचलन है। इससे न सिर्फ उनकी नींद उड़ जाती है बल्कि उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है। इसी गुण के कारण कई दफ्तरों में काम के दौरान कॉफी ब्रेक दिया जाता है। साथ ही साथियों, कॉफी में कई औषधीय गुण भी होते हैं। यह दर्द निवारक दवाओं का असर बढ़ा देती है। जिनका रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है उन्हें भी तुरंत कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं तो अक्सर ही कॉफी पीने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। दोस्तों जिन्हें अस्थमा की शिकायत है उन्हें भी मैं कॉफी पीने की सलाह दूंगी, क्योंकि अस्थमा के रोगियों को भी कॉफी पीने से राहत महसूस होती है। हाल ही में साथियों, एक शोध ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कॉफी के साथ चीनी मिलाकर पीने से दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए तो यह मेमोरी यानी कि याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ा देती है। खैर श्रोता साथियों, शोध तो और भी बहुत हुए कॉफी पर। जैसे कि एक शोध ये कहता है कि कॉफी का महिलाओं और पुरुषों पर असर अलग अलग होता है। कैपेचिनो या एस्प्रेसो कॉफी पीने से जहां महिलाओं का दिमाग तेजी से काम करने लगता है, वहीं पुरुषों पर इसका कोई खास असर नहीं होता। जो भी हो दोस्तों, लेकिन कॉफी दर्द में राहत तो निश्चय ही पहुंचाती है और इसी कारण दर्द निवारक दवाइयों में कैफीन का सम्मिश्रण दिया जाता है। कैफीन इन दवाओं के अवशोषण की क्षमता को बेहतर बनाता है और इसके दर्द निवारक असर को बढ़ा देता है। दोस्तों कई लोग ये भी दावा करते हैं कि कैफीन वाली कड़क कॉफी माइग्रेन में आराम देती है, और अगर शुरुआती दौर में ही इसे लिया जाए तो माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दोस्तों कॉफी का सेवन मधुमेह की बीमारी में भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉफी का सेवन मेलिटस टाइप 2 मधुमेह यानी कि डायबिटीज की संभावना को भी कम करता है, और तो और दिल के दौरे की गुंजाइश भी कॉफी पीने वालों में कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों इतने सारे औषधीय गुणों को जान लेने के बाद ऐसा मत कीजिएगा कि बस एक के बाद एक कॉफी के प्याले पे प्याले चढ़ाए जाएं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादा मात्रा में कॉफी पीने से नुकसान भी होता है। आखिर दोस्तों अति तो हर चीज की बुरी होती है ना। खास करके दोस्तों गर्भवती महिलाओं को तो कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि अधिक कैफीन पीने से गर्भपात का खतरा हो सकता है। मेरी राय तो यह है दोस्तों कि किसी भी चीज का अधिक सेवन अच्छा नहीं होता, इसीलिए कॉफी की एडिक्ट मत बन जाइए। जैसा कि आजकल का ट्रेंड हो चला है, चाय और कॉफी के बगैर तो लोग रह ही नहीं पाते। दोस्तों जो लोग कॉफी का स्वाद तो लेना चाहते हैं लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाले कैफीन का सेवन नहीं करना चाहते, उनके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। अब बाजार में डी कैफिनेटेड कॉफी भी उपलब्ध है जिसमें कैफीन की अधिकांश मात्रा निकाल दी जाती है। तो देखा दोस्तों, प्रकृति और पर्यावरण ने हमारी सेहत और हमारे स्वाद दोनों का हमेशा से ख्याल रखा है। तो चलिए ना शुक्रिया अदा करते हैं पर्यावरण का एक कप कॉफी के साथ। तो चलिए एक एक कप कॉफी का प्याला पीते हैं और मुझे दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था हो जाए कॉफी, और जिसकी लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता थी संता खान चंदानी। दोस्तों, वक्त की सुइयां अब मुझे बंदिशे लगा रही है और कह रही है अब आपके रेडियो दोस्त विवेक जी को आमंत्रित करने का समय हो गया है और आपसे अलविदा कहने का वक्त भी हो चुका है। अनुमति दीजिए आपके रेडियो दोस्त ज्योति को। नमस्कार।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोताओं को आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य और बाल जगत। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बाल जगत से, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े और उनकी कहानी का शीर्षक है बिल्ली और चूहे।

बाल मित्रों, आपके भाई ईशान खापर्डे का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है बिल्ली और चूहे। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। तेनालीराम के घर में चूहों ने हुड़दंग मचा रखा था और एक दिन चूहों ने उसकी पत्नी की एक सुंदर साड़ी को काटकर उसमें छेद भी कर दिया। अब तो तेनालीराम और उसकी पत्नी को उन चूहों पर बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने सोचा इन चूहों को पकड़कर खत्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जाने कितना बड़ा नुकसान कर दे। लेकिन बहुत प्रयत्न के बाद भी चूहे उनके हाथ नहीं आ रहे थे। कई घंटों की कोशिश के बाद भी एक चूहा ही पकड़कर खत्म कर पाए। तेनालीराम बहुत ज्यादा परेशान था। थक हार कर वह अपने एक मित्र के पास गया जिसने उसे सलाह दी थी कि इनसे छुटकारा पाने के लिए वह एक बिल्ली पाल ले। अपने दोस्त की सलाह पर तेनालीराम ने एक बिल्ली पाल ली और सचमुच उसके यहाँ के चूहे खत्म होने लगे। पति पत्नी दोनों ने राहत की सांस ली। अचानक एक दिन बड़ी अजीब घटना घट गई। तेनालीराम की पालतू बिल्ली ने पड़ोसियों के पालतू तोते को पकड़कर खा लिया। तोते की मालकिन ने अपने पति से इस बात की शिकायत की और कहा कि इस दुष्ट बिल्ली को पकड़कर फौरन ही मार डालो। उस औरत के पति ने तेनालीराम के बिल्ली का पीछा किया और उसे धर दबोचा। वह उसे मारने ही वाला था कि तेनालीराम वहाँ पहुँच गया। तेनालीराम ने उस औरत के पति से कहा, भाई मैंने यह बिल्ली अपने घर में हुए चूहों से छुटकारा पाने के लिए पाली है, इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए और मुझे वापिस कर दीजिए, मुझ पर आपकी बड़ी ही मेहरबानी होगी। लेकिन वह नहीं माना, बोला चूहे पकड़ने के लिए तुम्हें बिल्ली की क्या आवश्यकता है, मैं तो बिना बिल्ली के ही चूहे पकड़ लेता हूँ, और कहते हुए उसने बिल्ली को मार डाला। थोड़े समय बाद पड़ोसी ने सुंदर संदूक उपहार स्वरूप भेजा। उसने अपने सोने वाले कमरे में ले जाकर वह संदूक खोल कर देखा। उसे कमरे में उसकी पत्नी की कीमती साड़ियाँ और उसके भी कपड़े रखे थे। उस संदूक के खुलते ही चूहों की भारी फौज उसमें से उछलकर बाहर निकल आई और वे कमरे में चारों ओर धमाचौकड़ी मचाने लग गए। उसने काफी प्रयत्न किए, असफल रहने पर उन्हें पकड़ने के लिए अपने नौकरों को भी इस काम पर लगा दिया। काफी समय की उछल कूद के बाद घर में जब चूहों की फौज से छुटकारा मिल पाया, पर इस बीच बहुत ही नुकसान हो गया। गलीचों का सत्यानाश हो गया, कीमती फूलदान टूट गए। हारकर पड़ोसी ने पता लगाने का प्रयत्न किया कि उनको संदूक भेजने वाला कौन हो सकता है। तभी संदूक में रखे कागज पर उनकी नजर पड़ी जिस पर लिखा था, आपने कहा था कि आप बिल्ली के बगैर भी चूहों को पकड़ सकते हैं। मैं आपका इम्तिहान लेने के लिए कुछ चूहे आपके पास भेज रहा हूँ, कृपया परिणाम की जानकारी देने का भी कष्ट करें। आपका आज्ञाकारी सेवक तेनालीराम। कागज का वह पुर्जा पढ़ते ही तोते के मालिक की समझ में सारा माजरा आ गया और वह अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर धड़ाम से बेड पर बैठ गया।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे बाल कलाकार ईशान खापड़े, और उनकी कहानी का शीर्षक था बिल्ली और चूहे। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं एक बाल गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे बाल गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए सुनते हैं बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी जिसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक है चोर विद्वान।

प्यारे बाल मित्रों, आपकी बहन मर्लिन का नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है चोर विद्वान। तो आइए यह कहानी सुनते हैं। एक शहर में पंडित तोताराम जैसा विद्वान रहता था, किंतु दुख की बात यह थी कि उस बेचारे के पास केवल विद्या ही विद्या थी। घर में केवल गरीबी थी, वह दो समय की रोटी के लिए भी चिंतित थे। भूखा भी इंसान कब तक रह सकता है, दुख भी कब तक सह सकता है। मित्र संबंधी उसे देखते ही इसीलिए आंखें फेर लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि यह भूखा उनसे कुछ न कुछ मांगेगा। इतने सारे दुख सहन करने के पश्चात वह करता भी तो क्या करता। अब तो उसके सामने दो रास्ते ही थे, या तो वह आत्महत्या कर ले या फिर चोर बन जाए। मरने से तो चोर बनना ही अच्छा है, क्योंकि आत्महत्या तो वैसा ही पाप है। यही सोचकर वह विद्वान पंडित चोर बन गया। चोरी करना भी पाप है, मगर भूखे मरना तो उससे भी बड़ा पाप है। अब बेचारा पंडित चोरी करके अपना पेट पालने लगा। चोर बनते ही जैसे उसके दिन फिर गए। खूब पेट भरकर खाता, बल्कि उन सबको खिलाता जो भी भूखे नजर आते। साधु संतों को बुलाकर भोजन करवाता। एक बार उस चोर पंडित ने चार ब्राह्मणों को कुछ कीमती चीजें बेचते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। वह सोचने लगा कि इनको कैसे लूटा जाए, कोई ऐसा ढंग निकालूं जिससे यह सब कुछ उसके कब्जे में आ जाए। थोड़ी देर सोचने पश्चात वह उनके पास पहुंचा और बड़े बड़े श्लोक बोलने लगा। उसे इस प्रकार श्लोक बोलते देखकर ब्राह्मण बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, भाई तुम तो बहुत विद्वान ब्राह्मण हो, क्या हमारे साथ नौकरी करोगे? किसी ने ठीक ही कहा है, अत्यंत शर्मिली नारी उल्टा होती है। खारा पानी ठंडा होता है, मीठी बातें करने वाला प्राणी खतरनाक होता है। उन चार ब्राह्मणों ने अपनी कीमती सामान बेचकर और बहुत सा कीमती सामान खरीदा, ताकि उसे दूसरे शहर में जाकर बेचकर वह धन कमाए। वह चोर पंडित उनका नौकर बनकर इन ब्राह्मणों के साथ ही चलने लगा। उसके मन में तो पाप था ही, वह सोच रहा था कि इनका सारा माल कैसे छीन लूं। क्या ना मैं इन्हें जहर देकर मार डालूं और इनका माल लेकर गायब हो जाऊं। मगर जैसे ही वह यह सोच रहा था और वे सब चलते चलते एक गांव के करीब पहुंचे, तो वहां पर बैठे एक नाई ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आओ आओ, देखो बड़े धनी पंडित आए हैं, इनका माल लूट लो। उस नाई की आवाज सुनते ही बहुत से लोग लाठियां भाले लिए दौड़ आए। सबके मुंह से यही शब्द निकल रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शिकार मोटा है, जाने ना पाए। सब चोरों ने मिलकर इन ब्राह्मणों को घेर लिया। इनमें से एक मोटा सा आकर बोला, जो कुछ तुम्हारे पास है वह निकाल दो, नहीं तो याद रखो हम तुम्हें आदमी की चमड़ी उधेड़ कर उसके शरीर में से सब कुछ निकाल देते हैं। देखो सरकार, हमारे पास धन नहीं है, तुम चाहो तो हमारी तलाशी ले सकते हो, चारों ब्राह्मणों ने कहा। ओ मूर्ख ब्राह्मणों, आज तक तुम्हारी बातें झूठ नहीं निकली। यदि तुम धन निकालकर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देंगे। उनकी यह बात सुनकर पांचवा चोर ब्राह्मण सोचने लगा कि यही मौका है अपने पापों को धोने का। मैं यदि इन ब्राह्मणों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं, तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। मौत तो हर इंसान की आती है। यह सोचकर वह ब्राह्मण उन चोरों से बोला, देखो भाई, यदि तुम्हें संदेह है कि हमारे पास बहुत धन है, तो सबसे पहले मेरे शरीर की तलाशी लो। यदि तुम्हें मेरे पास धन न मिले तो मेरे शरीर के टुकड़े करके फेंक देना और इन्हें छोड़ देना, क्योंकि फिर तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे। उस ब्राह्मण की बात सुनते ही
उन चोरों ने उसकी तलाशी ली। जब उसकी तलाशी ली तब उसे कुछ न मिला तो उसके शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाले। मगर उसने भी कमाल की कुर्बानी दी कि शरीर के टुकड़े होते समय उफ तक न की। अब तो चोरों को विश्वास हो गया कि इनके पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो ब्राह्मण अपनी जान नहीं दे सकता था। उस ब्राह्मण ने केवल सच को सिद्ध करने के लिए ही अपनी जान दी है। शेष चारों ब्राह्मणों को इशारा करते हुए डाकुओं का सरदार बोला, जाओ भाई, अब तुम जाओ। हमारी ही भूल थी कि हमने आप पर विश्वास नहीं किया। अब इसकी हत्या करने के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि तुम लोग सच्चे हो। ब्राह्मण तो बचकर चले गए, मगर उस नौकर के त्याग को वे सदा ही याद रखेंगे जिसने अपनी जान गंवाकर उन्हें बचा लिया था।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल जगत के अंतर्गत एक कहानी, जिसे प्रस्तुत कर रही थी हमारी बाल कलाकार मल्लिन जेकब, और उनकी कहानी का शीर्षक था चोर विद्वान। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब हम अपने समय सारणी के अनुसार हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक से, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: समुद्री लहरें जीवन के उन संघर्षों का प्रतीक है जो मनुष्य को निराश कर देते हैं या फिर ऐसे कुछ निर्णय लेने पर बाध्य करते हैं जिससे वो ताउम्र उबर नहीं पाता। मगर वही ईश्वर पर विश्वास और संघर्षों में धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर संकट से उबर जाता है। यहां ईसा नाव से उतरकर गेनेसरेत पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें पहचान लिया और आसपास के गांवों में भी ये खबर फैला दी। सब लोग अपने अपने रोगी रिश्तेदारों व मित्रों सहित आए और ईसा से चंगाई पाकर खुशी खुशी लौट गए। मगर यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री ईसा के पास उनके शिष्यों की शिकायत लेकर पहुंचे।
1: आपको पता है आपके शिष्य पुरखों की परंपरा तोड़ते हैं, वे बिना हाथ धोए भोजन करते हैं।
2: मेरे शिष्य तो पुरखों की ही परंपराएं तोड़ते हैं, परंतु तुम लोग अपनी ही परंपरा के नाम पर ईश्वर की आज्ञा क्यों भंग करते हो? ईश्वर ने कहा, अपने माता पिता का आदर करो और जो अपने माता पिता को श्राप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वो ईश्वर को अर्पित है, तो वो फिर अपने माता पिता को कुछ नहीं दे सकता है। इस प्रकार तुम लोगों ने अपनी परंपरा के नाम पर ईश्वर का वचन रद्द कर दिया है। ढोंगियों, ईसा या नबी ने तुम्हारे बारे में ठीक ही भविष्यवाणी की है। ये लोग मुख से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए नियम मात्र।

अशांति और पाप कर्म में लिप्त होती मानवता का एक प्रमुख कारण है मानव के बनाए नियम, जिन्हें कोई स्वीकार करता है तो कोई अस्वीकार, कोई उसे उचित मानता है तो कोई अनुचित, कोई प्रशंसा करता है तो कोई आलोचना, और यूं ईश्वरीय नियमों के पालन से दूर मानव अपने ही द्वारा बनाए नियमों से कटुता का शिकार बनता जाता है। तुम लोग मेरी बात सुनो और समझो, जो मुंह में आता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है, जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है।

0: फरीसियों की मान्यता थी कि शारीरिक शुद्धता आत्मिक शुद्धता से जरूरी है, जबकि ईसा कहते थे कि ईश्वर के नियमों का पालन अपने जीवन व्यवहार में सदाचरण द्वारा किया जा सकता है। ईसा के दो टूक जवाब फरीसियों को जरा नहीं भाते थे। उस रोज भी वे ईसा से नाराज हो उठे थे। इस पर शिष्यों ने ईसा से कहा,
1: गुरुवर, क्या आप जानते हैं कि फरीसी आपकी बात सुनकर बुरा मान गए हैं?
2: जो पौधा मेरे पिता ने नहीं रोपा वो उखाड़ा जाएगा। तुम लोग उन फरीसियों की चिंता न करो, उन्हें रहने दो। वे तो अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। यदि अंधा अंधे को ले चले तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे।
1: गुरुवर, शुद्ध और अशुद्ध भोजन वाला यह दृष्टांत हमें समझा दीजिए।
2: पितरुस, क्या तुम ये नहीं समझते कि जो मुंह में पड़ता है वो पेट में जाकर शौच घर में निकलता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वो मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलते हैं। ये ही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, न कि बिना हाथ धोए भोजन करने से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, कार्यक्रम स्वास्थ्य का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक है पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओ नमस्कार, स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो इस कार्यक्रम का पूरा पूरा अर्थ आपके सामने रखने वाली है। जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं। साथियों, स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम में हमने कई दफा बातें की हैं अलग अलग बीमारियों को लेकर, स्वास्थ्य के संबंध में अनेक प्रकार के क्षेत्रों को लेकर, हमें किस प्रकार की सावधानियां हमारे आसपास की स्थिति को लेकर बरतनी चाहिए, अलग अलग आयु वर्ग में किस प्रकार की स्थितियां हमारे सामने निर्मित होती हैं जब स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन शायद ही कभी हम लोगों ने ये सोचा होगा कि पर्यावरण से संबंधित ऐसी कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है। साथियों, हम सभी इस पृथ्वी पर जो हमारा आधुनिक प्रकार का जीवन है इसके अभ्यस्त हो चले हैं। ऐसे में हमारे दैनिक क्रियाकलापों में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, और यदि उन पर हम ध्यान नहीं देते तभी इस प्रकार की स्थितियां हमारे सामने निर्मित होती है कि नदियों में बहता है प्रदूषित जल, हमारे साथ आसपास जो हवा है वो भी शुद्ध नहीं होती, हमें शुद्ध हवा लेने के लिए ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मात्रा प्राप्त करने के लिए किसी अन्य ग्रामीण क्षेत्र में जाना पड़ता है, कल कारखानों के धुएं के कारण, उनसे निकलते प्रदूषित जल के कारण हमारे आसपास का वातावरण यूं कहे कि जहरीला हो गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, बहुत पहले से इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती रही हैं इंसान द्वारा कि हम इस प्रकार के प्रदूषण को रोक सकें, जीवन को एक सामान्य तरीके का एक शुद्ध वातावरण हम उपलब्ध करवा सके और खासकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम एक शुद्ध विरासत दे सकें। साथियों, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है हमारा जीवन, और जब भी जीवन ने आधुनिकता की नई करवट ली है तब तकनीक का विकास हुआ है और इसके चलते जो सुविधाएं हमें मिली हैं तो उन सुविधाओं की कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है। साथियों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाओं को परिभाषित किया गया है। अगर हम इसकी परिभाषा सुने तो ये कुछ यूं है कि वे सेवाएं जो निगरानी और नियंत्रण गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण स्वास्थ्य नीतियों को लागू करती हैं, उन्हें पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। साथियों, ये सेवाएं पर्यावरण के मानकों के सुधार को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य का उपयोग प्रौद्योगिकी और व्यवहारों को प्रोत्साहित करने की भूमिका निभाती हैं। और साथियों, यदि हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों के लिए नई पर्यावरण नीति का सुझाव भी विभिन्न क्षेत्रों में देने में ये एक प्रमुख भूमिका निभाती है। तो चलिए, पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं आखिर होती क्या है? साथियों, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, हमारे आसपास जितने भी प्राकृतिक संपत्ति है, प्राकृतिक उपादान है, उन सभी का दोहन करने के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वार्थ ये मनुष्य स्वभाव के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है ना? कोई भी व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से ना कर सके जिसके चलते पर्यावरण को नुकसान हो और उसका दुष्प्रभाव अन्य इंसानों पर पड़े, तब इसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा? जी हाँ, इसी प्रकार के नियंत्रण को सामने लाने के लिए अपनाई जाती है पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं। साथियों, इसमें प्रैक्टिशनर्स सैनिटेरियंस भी आते हैं, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षक होते हैं, पर्यावरणीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ या पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारा आस पड़ोस स्वच्छ रहे और हम सभी एक अच्छे वातावरण में रह सकें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने स्थान का कचरा किसी अन्य स्थान पर डालें। आपका स्थान तो स्वच्छ है, लेकिन अन्य स्थानों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, क्या स्वच्छ और शुद्ध वायु पर उनका हक नहीं? इसी प्रकार के मामलों को सुलझाने का काम करते हैं, इसी प्रकार की चीजों को नियंत्रण में लाने का काम जो व्यक्ति करते हैं उन्हें पर्यावरण स्वास्थ्य विशेषज्ञ या पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी कहा जाता है।
साथियों, हमारे आसपास बहुत से ऐसे अधिकारियों की जरूरत है। हम सभी, उदाहरण के तौर पर यदि दिवाली के त्योहार को ही ले लीजिए, हम सभी बड़े जतन से पूरे घर को साफ करते हैं। प्रत्येक कोना चमकना चाहिए, हर चीज साफ होनी चाहिए, सब कुछ सजा धजा होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करते समय हमने कभी ये सोचा है कि आप अपने घर का जो कूड़ा और कबाड़ है उसे कहाँ डाल रहे हैं, उसे जिस स्थान पर डाल रहे हैं क्या वो डालने के लिए सुरक्षित है? हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी घटना देखी है साथियों। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, वहां पर यूनियन कार्बाइड का जो कचरा था वो इंदौर और पीथमपुर के क्षेत्र में डाला गया, वो जहरीला कचरा था। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जागरूकता फैली तब इस बात की ओर ध्यान गया और आज इसे लेकर आंदोलन हो रहे हैं, जागरण हो रहा है, सभी में विचारों की जागरूकता आ रही है। लेकिन यदि पहले से इस विषय में जागरूकता दिखाई गई होती, यदि पहले से पर्यावरण स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस क्षेत्र में रुचि लेते, इसको नियंत्रण में लेते, तो शायद ये चीजें आकार ही नहीं ले पाती। साथियों, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जंगल, हमारी वन संपदा भी शामिल होती है। पेड़ों की कटाई होना या फिर वन की उपज को अपने कब्जे में ले लेना, जानवरों का उचित या अनुचित दोहन करना, चाहे वो आपके अधिकार क्षेत्र में हो या ना हो, ये सारी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं साथियों जो हमें सामान्य तौर पर देखने में जरा भी नियंत्रण से बाहर या आपराधिक वृत्ति की नहीं लगती। लेकिन यदि बारीकी से ध्यान दिया जाए तो यदि प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज का अधिकार यदि हम दे दें कि वो किसी भी प्रकार से पेड़ों की कटाई कर सकता है, तो क्या हमारे शहरों में ग्रीन बेल्ट बचेंगे? क्या हमारे शहरी क्षेत्रों में हरियाली बची रह पाएगी? बड़ी मुश्किल से विकास के नाम पर हम सड़कें बना रहे हैं, हम सीमेंट के जंगल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उस हरियाली का क्या जिसकी बनिस्बत हम सांस ले पाते हैं? इस नियंत्रण को ही पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में लेते हैं। दूसरी बात आती है सफाई की। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सफाई की समुचित व्यवस्था होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रहवासी क्षेत्र हैं जहां पर सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, या फिर है भी तो वो ना के बराबर। रहवासी परेशान होते हैं, सरकार को कोसते हैं, व्यवस्था के ऊपर बहुत सारे नाम रखते हैं, लेकिन क्या वो खुद इस व्यवस्था को लेकर जागरूक है? क्या पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोड़कर जो भी प्रबंधन किया जाना चाहिए वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी शहरी विकास के विभाग के अंतर्गत नहीं आना चाहिए? साथियों, हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां के कई राज्यों में पर्यावरण स्वास्थ्य के अभ्यास के लिए पेशेवर व्यक्तियों को लाइसेंस दिया गया होता है। साथियों, इस अनुच्छेद के जो अर्थ है उसमें हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के पंजीकृत पर्यावरण स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा जो अभ्यास किया जाता है उस संबंध में जान सकते हैं। इस अभ्यास में संगठन, प्रबंधन, शिक्षा, शिक्षा को लागू करने का नियंत्रण, परामर्श, पर्यावरण और स्वास्थ्य के खतरे, इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और संवर्धन के साथ ही अनेक क्षेत्रों में पर्यावरण की सुरक्षा और उसे खतरे के रोकथाम के उद्देश्य को लेकर खास प्रबंध किए जाते हैं। साथियों, यदि हम खाद्य सुरक्षा की ही बात करें सबसे पहले उदाहरण के तौर पर, तो बहुत बार बारिश का मौसम शुरू होते ही हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कितना टन अनाज गोदामों में पानी से सील कर खराब हो गया। यहाँ पर पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण और स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका ये आती है कि मौसम के बदलने के साथ ही खाद्य सुरक्षा संबंधी कोई व्यवस्था की गई है या नहीं। यदि हम आपातकालीन व्यवस्था की बात करें तो वर्षा आने के समय या फिर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने के समय किसी भी प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के विषय में कोई प्रबंध किए गए हैं या नहीं। यदि आवास और विकिरण क्षेत्र की बात करें तो साथियों, हम बहुत सारे शहरों में ये देखते हैं जहां पर कुछ इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं जिससे विकिरण का प्रभाव जनता पर पड़ सकता है। ऐसे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य पर्यावरण अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। साथियों,
इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए सर एडविन चैडविक को, जो सार्वजनिक स्वच्छता निरीक्षकों की एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे और उन्हीं ने इस विषय को आगे बढ़ाया, जिसके चलते आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोड़कर बनाई जाने वाली पर्यावरण स्वास्थ्य नियंत्रक की भूमिका को लेकर। तो साथियों, अब समय हो चला है कि हम संपन्न करें स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम के इस अंक को, और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए है कार्यक्रम में जो जानकारी आपको दी गई है उससे संबंधित एक रोचक सवाल। तो आज का सवाल आपको सुनाते हैं। आज का प्रश्न है, सार्वजनिक स्वच्छता निरीक्षकों की एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न एक बार और सुने, सार्वजनिक स्वच्छता निरीक्षकों की एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? और इसी के साथ संपन्न होता है आज का स्वास्थ्य और पर्यावरण कार्यक्रम।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य के अंतर्गत वार्ता, जिसका शीर्षक था पर्यावरण स्वास्थ्य सेवाएं, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, अब आप सभी को हमारे स्वास्थ्य के बारे में तो समझ आ ही गया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि इन बातों को आप अपने करीबी परिजनों को भी बताएंगे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

धन्यवाद विवेक जी। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे और मुझे पहचाना या नहीं। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त ज्योति और इस समय आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो वेरिटास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों अभी की सभा समय 11 से 12 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका वक्त न जाया करते हुए आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आइए सुनते हैं यह कार्यक्रम और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुखिया जी, सुना है कि राज्य को हरा भरा बनाने के लिए हरियाली मिशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें कई किस्म के पौधे लगाने की योजना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना है कि ये राज्य सरकार की ओर से यह पहल की गई है, एक योजना के तहत जिसको हरियाली मिशन योजना के नाम से जानते हैं। हरियाली मिशन में पौधों की विभिन्न प्रजातियों पर खास ध्यान होगा। यह योजना पर्यावरण एवं वन विभाग की ओर से बनाई गई है। हरियाली मिशन के तहत पौधों की वैरायटी का भी खास ख्याल रखा जाएगा, या यूं कहें कि खास ध्यान रखा जा रहा है अभी से ही।
0: तो इसके लिए भूमि का चुनाव भी कर लिया गया है क्या मुखिया जी? किस तरह की भूमि में इस योजना को अंजाम दिया जाएगा, यह तय किया गया है कि नहीं?
1: 5 वर्षों में अवकृष्ट वन भूमि और वनों से बाहर की भूमि पर करीब 21 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सभी प्रजातियों के पौधों को शामिल करने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है।
0: किस तरह के वृक्षों को लगाने का प्रावधान बनाया गया है इस योजना के तहत?
1: लकड़ी और व्यावसायिक उपयोग वाले पौधों के अलावा जो पौधे लगा जाएंगे उनमें फलदार वृक्ष भी होंगे, सौंदर्य प्रसाधन को बनाने वाले पौधे होंगे, औषधीय दवा दारू के पौधे होंगे। इस तरह के ये तमाम पौधों को इस योजना के तहत महत्व दिया गया है और इसके तहत इन तमाम महत्व के पौधों को भी शामिल किया गया है।
0: तो क्या मुखिया जी, अलग अलग महत्व के प्रजातियों का भी वर्गीकरण किया जाएगा?
1: जी हाँ, ऐसा लगता है कि अलग अलग महत्व के प्रजातियों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पौधों की बांटी गई इस श्रेणी के आधार पर ही पौधरोपण किया जाएगा और निजी पौधशालाओं को भी विकसित किया जाएगा। मसलन शहर के सड़कों के किनारे या अन्य खास स्थानों पर सौंदर्य प्रधान प्रजाति वाले पौधे लगाए जाएंगे।
0: इस योजना के तहत किस तरह के पौधों को काफी प्रमुखता के तौर पर शामिल किए जाने की योजना है?
1: इस योजना के तहत, जिसे कृषि वानिकी योजना भी कहा गया है, इसमें पॉपुलर जैसे व्यावसायिक पौधों को प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है।
0: तो फिर इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किस तरह के पौधों का चयन किया गया है?
1: ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार पौधों को लगाने की योजना है। इसके अलावा क्षेत्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए या विशेषताओं के हिसाब से भी प्रजातियों का चयन किया जाएगा। अगर बात करें कि जल जमाव वाले क्षेत्रों की, तो जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए भी कुछ खास प्रजातियों के पौधों का चयन किया गया है।
0: पॉपुलर पौधों में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती है जिससे सरकार इस ओर काफी ध्यान दे रही है?
1: पॉपुलर पौधों को विशेष व्यावसायिक महत्व वाला माना गया है। इसे छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों के करीब 9.5 करोड़ पौधों को लगाने की योजना है।
0: इस विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों को विकसित करने के लिए सरकार की किस तरह से पहलकदमी की गई है?
1: सरकार की तरफ से जो पहलकदमी की गई है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन विभिन्न प्रजातियों वाले पौधों को विकसित करने के लिए निजी पौधशालाओं को स्थापित किया गया है या स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न प्रजातियों में श्रेणीवार पौधशालाएं स्थापित किए जाएंगे ताकि विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधों की आपूर्ति कम नहीं पड़े।
0: ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि सूबे में सोसाइटी करेगी कृषि बाजारों का संचालन।
1: जिले में खुलने वाले निजी बाजारों के संचालन के लिए सरकार सोसाइटी बनाएगी, ऐसा मुझे भी सुनने में आया है। बाजारों के प्रोजेक्ट पास करने के लिए उनके विकास और संचालन तक की जिम्मेवारी अब इसी सोसाइटी के हाथ में होगी। साथ ही साथ यह किसानों को प्रशिक्षित भी करेगी ताकि राज्य सरकार ने भंग कृषि बाजार का विकल्प ढूंढ लिया है, इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है।
0: हमारे यहाँ पहले तो बाजार समितियाँ थीं, क्या उसे भी भंग कर दिया गया मुखिया जी?
1: राज्य में 95 बाजार समितियों को वर्ष 2006 से ही सरकार ने भंग कर दिया था। कृषि उत्पादों की अच्छी कीमत दिलाने के लिए हर जिले में बाजार खोलने का फैसला भी पहले हो चुका है, लेकिन इसके संचालन की जिम्मेवारी अभी तक तय नहीं हो सकी थी।
0: तो क्या अब सरकार ने जिम्मेदारी तय कर दी है या अब इस समस्या को दूर कर लिया गया है?
1: अब सरकार की नई पहल से यह समस्या दूर होने वाली है। विभाग में प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सोसाइटी अस्तित्व में आ जाएगी, फिर बाजार खोलने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी।
0: बाजार खोलने का जो काम है, क्या वह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा? इस बाबत सरकार के पास क्या मसौदा है?
1: सरकार ने पहले चरण में 11 जिलों में कृषि उत्पादों का आधुनिक बाजार खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूरी अधिक होने पर गांवों में भी इन बाजारों की छोटी इकाइयां खोलने की योजना है।
0: क्या इस बाजार को खोलने के लिए सरकार को किसी प्रकार का कोई टैक्स भी देना पड़ेगा?
1: किसी भी बाजार के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुविधाओं का उपयोग करने के लिए या सुविधाओं का उपयोग करने पर सिर्फ उसका किराया देना पड़ेगा। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, भोजपुर, रोहतास जिले में मार्केट हब बनेंगे। सभी बाजारों को एग्री बिजनेस सेंटर के नाम से विकसित करने का प्लान है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इन सेंटरों के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जमीन की व्यवस्था निजी पार्टनर को करनी होगी।
0: इस पूरी प्रक्रिया को जो पैसे खर्च होंगे उसका अनुमान क्या है और वह राशि कहाँ से आएगी?
1: इस पर कुल 374.74 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें अधिकतम 35% की मदद सरकार करेगी। टेंडर उन्हीं प्लॉट किया जाएगा जो सरकार से कम सहयोग मांगेंगे। इन बाजारों की सुविधाएं इलाके की मुख्य फसलों के अनुसार होगी। हालांकि पैक हाउस, बेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, छटनी और ग्रेडिंग जैसी जरूरी सुविधाएं सभी बाजारों में होगी। मार्केट हबों के निकट के किसानों को अपने उत्पादों को लेकर सीधे बाजार पहुंचना होगा या वे बाजार पहुंच जाएंगे, लेकिन दूर के किसानों के लिए उनके गांवों के आसपास ही संग्रहण केंद्र बनाने की योजना इस हरियाली मिशन के तहत है। आशा है कि हमारे किसान भाई इस योजना का भरपूर फायदा उठाएंगे और साथ ही साथ सरकार भी इस ओर ज्यादा ध्यान देगी। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो खेती गृहस्थी से संबंधित हम कुछ और विशेष बात करेंगे। अभी अनुरोध करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद मुखिया जी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। मित्रों, किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराधों को कम करना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून व्यवस्था का मुख्य अंग है। अक्सर जहां भी कहीं राजनीतिक या सामाजिक बवाल या टकराव होता है या फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है तो कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाता है, यानी किसी क्षेत्र में अशांति या हिंसा होना भी कानून व्यवस्था का संकट ही होता है। भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए उत्तरदायी है। देश में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव करने और अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्रोता मित्रों, यह तो थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दी। और कानून के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो सुनिए हमारी अगली वार्ता। श्रोताओं, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और श्याम जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी धन्यवाद
2: और अपने श्रोताओं का भी स्वागत है।
0: हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं कि भूमिहीन किसानों के लिए कानून के बारे में खास करके, और उसी से संबंधित जो नया बिल पास हुआ है, भूमि अधिग्रहण बिल, उसके बारे में भी हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं। ये बताइए कपूर साहब कि भूमिहीन किसानों के लिए इस अधिनियम में या इस विधेयक में क्या कुछ व्यवस्था की गई है?
1: देखिए, भूमिहीन आरक्षित श्रेणियों के किसानों के लिए अलग अलग पुनर्वास पैकेज बनाने होंगे, लेकिन एक बात मैं साफ साफ बता दूं कि बहुत सारे लोगों का मानना है ये भूमि अधिग्रहण राहत और पुनर्वास विधेयक 2011 न तो किसानों के हित में है और न ही कृषि के हित में। ये नासमझी भरा गैर जिम्मेदाराना और जन विरोधी कानून है जिसमें आदिवासी क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे आदिवासियों का विनाश शुरू हो जाएगा।
0: तो किस तरह का प्रभाव जनजातीय क्षेत्रों में या आदिवासियों पर पड़ने की संभावना है? श्याम जी,
2: देखिए, सच पूछिए तो ये एक ऐसा विधेयक है जो अब तक के किए कराए पर पानी फेर देगा। पुराने कानून में जमीन का अधिग्रहण सार्वजनिक हित के लिए किए जाने का प्रावधान था
0: जी,
2: और इसके लिए मुख्य तीन वजहें थी, आधारभूत विकास, औद्योगिक विकास और शहरीकरण। नए कानून में इसे सिलेक्टिव कर दिया गया है। इसमें ये कहा ही नहीं गया है कि भूमि अधिग्रहण किन परिस्थितियों में किया जाएगा।
0: मैं ये जानना चाह रहा हूँ कपूर साहब कि ये आदिवासियों पर इसका किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा और किस तरह के परिणाम होंगे।
1: आज स्थिति ये है कि यदि उत्तर पूर्व को छोड़ दें तो शेष भारत में औद्योगिकीकरण और शहरी विकास के नाम पर आदिवासियों को इस तरह से उजाड़ा गया है कि वे अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं। रायगढ़, रांची इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: जहां आदिवासी आज नाम मात्र के ही रह गए हैं। इस तरह अगर आप बस्तर इलाके में जाएं तो सड़क के किनारे एक भी आदिवासी का गांव नहीं मिलेगा।
0: आखिर ऐसा क्यों हो रहा है श्याम जी, इसकी खास वजह क्या है?
2: दरअसल होता यह है कि जहां से सड़कें निकलती हैं, कुछ समय बाद व्यापारी आदि पैसे वाले लोग वहां आकर 5-10 एकड़ जमीन खरीद ले लेते हैं
0: जी,
2: और जो धीरे धीरे 100-200 एकड़ तक पहुंच जाती है। आदिवासी वहां से उजड़कर दूर जंगल में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया अनवरत जारी है। आदिवासी इलाकों में जिस रफ्तार से शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ रहा है, उनकी संख्या इसी रफ्तार में घट रही है।
0: समस्या तो गंभीर है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस पर आखिर ब्रेक कैसे लगाया जाए। आप जो आदिवासी क्षेत्रों की तस्वीर रख रहे हैं वह सचमुच बहुत भयावह है कपूर साहब।
1: देखिए, काफी लोग वर्षों के संघर्ष के बाद आदिवासी इलाकों में पेशा कानून लागू करवाया था। इसे सभी अधिसूचित क्षेत्र में लागू होना चाहिए और सख्ती से पालन होना चाहिए। नए कानून में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। मैं इसे संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध मानता हूं। उदाहरण के लिए, कहीं एक जगह 100 एकड़ जमीन ली गई, इसके बाद जब वहां शहरी और औद्योगिक विकास शुरू होता है तो पैसे वाले और उसके लठैत घूमने लगते हैं। वे आम आदमी के लिए कुछ नहीं सोचते। इससे स्थानीय लोगों में रोष पैदा होता है जिसकी परिणति भयावह होती है।
0: यह जो व्यवस्था है श्याम भाई, इस पर कैसे अंकुश पाया जा सकता है, कैसे हल निकाला जाए ताकि ऐसी जो स्थिति है, जिस स्थिति का जिक्र कपूर साहब कर रहे हैं, वैसी स्थिति उत्पन्न ही न हो पाए?
2: हाँ, मेरा मानना है कि जहां की जमीन ली जाए वहां के रहने वालों को बराबरी का हक मिले, उनके लिए सम्मानजनक व्यवस्था हो, किसान की गरिमा बनी रहे, अपने ही पुरखों की जमीन बेचकर वे मजदूर बनने पर विवश न हो। लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है। आदिवासी इलाकों में चप्पे चप्पे पर खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। इसे जब आप कंपनियों को दे देंगे और कंपनियां जब वहां से खनिज पदार्थ निकालने के लिए मशीनें लाएंगी, 50 या 100 साल बाद स्थानीय आदिवासियों को खड़े रहने की जमीन वहां कहां होगी
0: जी?
2: इस मामले में भूरिया समिति की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि पानी, भूमि, हवा आदि आदिवासियों की है, इसलिए वहां जो कोई परियोजना लगती है उसमें 50% हिस्सा आदिवासियों का हो ताकि वे मूल मालिक रहें, उसके बाद 26% हिस्सा कंपनी का हो और शेष 24% उन विस्थापितों का जो परियोजना से विस्थापित हो रहे हैं। लेकिन नए कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें आदिवासियों के समक्ष कुछ टुकड़े फेंकने की बात है जिससे वे और उजड़े।
0: कपूर साहब, अब हम लोग थोड़ा सा विदेश विनियमन अधिनियम पर बात कर लें तो अच्छा रहेगा कि ये विदेश विनियमन अधिनियम दरअसल किस प्रकार का अधिनियम है?
1: गरीबों और पद दलितों के बीच सामाजिक कार्यों की प्रगति के लिए बहुत से संघ, संगठन, राजनीतिक दल और व्यक्ति विदेशों से आर्थिक सहायता लेते आ रहे हैं। इससे बहुत सारी स्वैच्छिक संस्थाओं को मदद मिलती है। तो भी इस दिशा में शिकायत थी कि कुछ राजनीतिक दलों ने, संस्थाओं ने और व्यक्तियों ने विदेशों से ली गई सहायता का दुरुपयोग किया है। इसलिए भारत सरकार ने महसूस किया कि विदेशी विनियमन को ग्रहण करने और उपयोग करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता है।
0: यह अधिनियम जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं श्याम भाई, इसको कब पारित किया गया था?
2: इस अधिनियम का नाम ही है विदेशी विनियमन अधिनियम 1976।
0: अच्छा,
2: तो जाहिर है कि 1976 में ही पारित हुआ है। तिथि थी 5 अगस्त। ये 5 अगस्त 1976 से प्रभाव में आया जब केंद्रीय सरकार ने आवश्यक नियम और विनियमन इस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रकाशित किया। बाद में इस अधिनियम में 1984 और 85 में संशोधन किया गया।
0: इस अधिनियम को पारित करने के पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था कपूर साहब?
1: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त पैसा, छात्रवृत्ति और आतिथ्य सत्कार के लिए धन को ग्रहण करने और उपयोग करने के लिए इस कानून को नियमित किया गया है।
0: बात यह है श्याम जी कि यह कानून किस पर लागू होता है?
1: ये अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। साथ ही साथ ये लागू होता है भारत में रहने वाले और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों पर भी, व्यक्तियों के संगठन पर, पंजीकृत या अपंजीकृत सोसाइटी पर, कंपनियों और चुनाव के उम्मीदवारों पर।
0: इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी अभिदाय शब्द का इस्तेमाल किया गया है समझे? तो विदेशी अभिदाय का क्या अर्थ है समझे?
2: इसका अर्थ है किसी भी प्रकार का दान किसी

0: क्या अर्थ होगा इस अधिनियम के तहत?
1: किसी भी प्रकार की ऐसी सुविधा जैसे विदेश यात्रा, मुफ्त भोजन और अस्थायी निवास, परिवहन या चिकित्सा जो विदेशी स्रोत से ली गई विदेशी आतिथ्य सत्कार में आती है।
0: एक बात यहाँ पर साफ करना जरूरी होगा श्याम जी कि विदेशी स्रोत का इस अधिनियम में क्या अर्थ है।
2: इसके अंतर्गत विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्था या अभिकरण, राष्ट्र संघ का बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धन संबंधी फंड और केंद्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित एजेंसी को छोड़कर विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय निगम, न्यास, सामाजिक संघ या व्यक्तियों का संगठन जो विदेश में पंजीकृत हो, विदेशी नागरिक, विदेश की कोई व्यावसायिक संघ, विदेशी स्रोत के अंतर्गत इन सबको शामिल किया गया है।
0: कपूर साहब एक बात ये बताइए कि विदेशी सहयोग या सहायता लेने से कौन कौन लोग वंचित हो सकते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, जिनको यह जो लाभ है, यह जो सहायता है नहीं मिल सकता है।
1: इसके अंतर्गत जो चुनाव के उम्मीदवार हैं, पत्रकार, कोलमनिस्ट, व्यंग्यचित्रकार, संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक जो कि पंजीकृत समाचार पत्र के हों, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी निगम के कर्मचारी या निजी कंपनी जो सरकार के नियंत्रण और काबू में हो, किसी भी विधानसभा के सदस्य और राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी, भारत में या भारत के बाहर कोई भारतीय विदेशी अभ्युदाय स्वीकार नहीं कर सकता जो किसी राजनीतिक दल का हो।
0: विदेशी अभ्युदाय देने के लिए किसको केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है?
2: राजनीतिक प्रकृति के संगठन या संस्था।
0: अच्छा,
2: कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है और भारत का कोई नागरिक जो भारत से बाहर रह रहा हो, जो कि विदेशी अभ्युदाय या धन राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन के तौर पर ग्रहण करे या देने के इच्छुक हो या भेजे हुए धन को किसी व्यक्ति को देना चाहे जो भारतीय हो और किसी भी राजनीतिक संगठन को धन दे सके, तो पहले उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये विदेशी अभिदाय या आतिथ्य सत्कार की जो फंड मिलता है, तो आतिथ्य सत्कार के लिए पूर्व में अनुमति देने के लिए किसी भी संस्था को या संगठन को क्या करना चाहिए?
1: प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या संगठन जो कि विदेशी अभ्युदाय या आतिथ्य सत्कार लेना चाहता है
0: जी,
1: उसको पहले अनुमति लेने के लिए केंद्रीय सरकार को एक प्रार्थना पत्र देना होगा। राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन को विदेशी अभ्युदाय लेने के लिए फॉर्म FC1 दाखिल करना होगा और आतिथ्य सत्कार के लिए धारा 9 और धारा 10 व के तहत प्रार्थना पत्र फॉर्म नंबर FC2 पर देना होगा।
0: प्रार्थना पत्र देने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये अनुमति प्रदान कर दी गई है या नहीं की गई है?
2: लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद उस पर 60 दिनों के भीतर निपटारा नहीं किया गया तो मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।
0: इस जानकारी के लिए कपूर साहब और श्याम जी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
1: जी। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद।
2: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। श्रोता मित्रों, कार्यक्रम सर्वधर्म विचार में आप सभी का अभिनंदन है और अभी की वार्ता का शीर्षक है आस्था की तिजारत और इस वार्ता के प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोर जी और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

श्रोताओं, फादर हेरमन बंडोर एसवीडी का प्यार भरा नमस्कार। सर्वधर्म विचार के तहत आइए सुनते हैं एक वार्ता जिसका शीर्षक है आस्था की तिजारत। मित्रों, इस वार्ता में मैं रामपुन्यानी जी के विचार आपके सम्मुख रख रहा हूँ। वे लिखते हैं, पिछले लगभग 3 दशकों में हमारे समाज ने धर्म के नाम पर बहुत कुछ देखा भोगा है। एक और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय परिदृश्य के केंद्र में आ गए हैं। वहीं हजारों ऐसे स्वघोषित भगवान, बाबा और आचार्य उगाए हैं जो स्वयं को देवी शक्तियों से लैस बताते हैं। वे यह चाहते हैं कि राज्य और समाज उन्हें विशेष दर्जा दे, और कब जब अनौपचारिक तौर पर ही सही राज्य उन्हें कुछ विशेष अधिकार देता भी है, समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। यह प्रवृत्ति एक बार फिर हाल में तब सामने आई जब आसाराम बापू पर एक अवयस्क लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया। इस तरह के मामलों में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की जानी चाहिए, परंतु आसाराम बापू को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कई दिन लगा दिए और उन्हें बड़ी कठिनाई से और काफी नाटक नौटंकी के बाद गिरफ्तार किया जा सका। बापू ने अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए कई बहाने बनाए। मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, मैं बीमार हूं, मेरे रिश्तेदार की मौत हो गई है आदि। परंतु अंततः दबाव के चलते बापू को उनके इंदौर स्थित आश्रम से 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया। जहां तक धन दौलत, आश्रमों की संख्या और अनुयायियों की भीड़ का सवाल है, आसाराम बापू निसंदेह देश के शीर्षस्थ बाबाओं में से एक है। उनके अनुयायियों में अनेक प्रभावशाली व धनी लोग तो है ही, ऐसे राजनीतिज्ञों की भी कोई कमी नहीं है जो उनका बचाव करते हैं। ऐसे ही कुछ राजनीतिज्ञों ने चुनावी समीकरणों के चलते उन्हें जेल जाने से बचाने की पूरी कोशिश की। यह पहली बार नहीं है कि बापू पर आपराधिक मामलों में शामिल होने के आरोप लगे हो। उन पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के आरोप अनेक बार लगे, परंतु सरकारी मशीनरी ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। उनके अहमदाबाद और छिंदवाड़ा के आश्रमों में दो दो बच्चों की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, परंतु इन घटनाओं को भी दबा दिया गया। मित्रों, देश में इस तरह के खेल खेलने वाले आसाराम बापू अकेले नहीं हैं। दर्जनों ऐसे बाबा हैं जिन्होंने अरबों रुपयों की संपत्ति अर्जित कर ली है। उनके आश्रमों में हुई हत्याओं में उनकी संलिप्तता के सबूत मिले हैं। सेक्स स्कैंडलों में फंसे बाबाओं की सूची बहुत लंबी है, और इस संदर्भ में स्वामी नित्यानंद महाराज सबसे आगे हैं जो यह दावा करते हैं कि वे भगवान कृष्ण के अवतार हैं। माया मोह से ऊपर उठने की बात करते हुए ये बाबा अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताते हैं। इन बाबाओं के लिए संत शब्द का प्रयोग विडम्बनापूर्ण है। क्या इनकी तुलना कबीर, तुकाराम, नामदेव, पलटू व रैदास जैसे मध्यकालीन संतों से की जा सकती है जो नीची कही जाने वाली जातियों के थे, श्रम करके अपना पेट भरते थे और गरीबों व वंचितों के बीच जीते थे। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और सामाजिक असमानता पर प्रश्न उठाए। उन्होंने वंचित वर्गों की व्यथा को स्वर दिया। इस अन्यायपूर्ण दुनिया की चर्चा करते हुए महाराष्ट्र के एक संत चोकमेला लिखते हैं, इस दुनिया में जो अनाज उगाता है वह भूखा है, जो कपड़े बुनता है वह वस्त्रहीन है, और जो मकान बनाता है वह खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर है। ये संत सत्ता से हमेशा दूर रहे और उन्हें कई बार सत्ताधारियों का कोपभाजन भी बनना पड़ा। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने बादशाह को अपनी कुटिया में आने से मना कर दिया था। कबीर ने जाति प्रथा का विरोध किया, धर्म के आधार पर समाज को बांटने वालों की खिलाफत की और सामाजिक पदानुक्रम की आलोचना की। इन संतों के अधिकांश अनुयायी गरीब और कमजोर वर्ग के लोग थे। आज के इन तथाकथित संतों के चेले मुख्यतः धनिक वर्ग से आते हैं। औसत्याधारियों और धन पशुओं से उन्हें भारी मात्रा में दान मिलता है। इन संतों ने अपने विशाल साम्राज्य खड़े कर लिए हैं जो वैभवपूर्ण व अत्यंत शक्तिशाली हैं। यह दिलचस्प है कि भारत में धर्म से जुड़े लोगों द्वारा समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की लंबी परम्परा है। शंकराचार्य की परम्परा तो है ही, देशभर में ऐसे अनेक मठ, आश्रम और धार्मिक केंद्र हैं जहां धर्मशास्त्र और धर्म के दार्शनिक पक्ष पर गंभीर और बौद्धिक चर्चाएं होती हैं। आज के बाबाओं को
न तो धर्म शास्त्र से मतलब है और न ही धर्म के दार्शनिक पक्ष से। इसके विपरीत मध्यकालीन संतों की जड़ें समाज में थी। वे सामाजिक मुद्दों पर बातें करते थे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते थे। जैसे कबीर ने चक्की की तुलना भगवान की मूर्ति से की और मुल्ला को उसकी तेज बांग या अजान के लिए फटकारा। आज के बाबाओं का सामाजिक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के इतने ढेर सारे बाबा हैं कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के उनके तरीकों में एक रूपता ढूंढना आसान नहीं है। परंतु कुछ मोटी मोटी बातें स्पष्ट हैं। इन सभी को दर्शन शास्त्र, धर्म या सामाजिक मुद्दों का गहरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने कुछ फार्मूले ईजाद कर लिए हैं जिन्हें वे गीत संगीत के साथ प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कुछ प्रवचन देते हैं जिसमें शायद समाज के उस वर्ग जो स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है और कई तरह की दुविधाओं से ग्रस्त है के मन को शांति मिलती है। कुछ तो शुद्ध कपटी है जैसे निर्मल बाबा जो चटनी का रंग बदलकर लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। इनमें से अधिकांश प्रवचनों के अलावा ध्यान और योग का इस्तेमाल भी करते हैं। मुरारी बापू जैसे कुछ बाबा अपने अनुयायियों के साथ लग्जरी क्रूज में विश्व भ्रमण करते हुए गीता का प्रवचन देते हैं। स्पष्टतः इन दोनों श्रेणियों के संतों का जीवन और कर्म एकदम विरोधाभासी हैं। कबीर निजामुद्दीन औलिया व आसाराम बापू निर्मल बाबा के श्रेणियों में कोई समानता नहीं है। कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, धर्म दमित व्यक्ति की आह है, हृदयहीन दुनिया का हृदय है, संगदिल विश्व की आत्मा है, वह लोगों की अफीम है। यह वाक्य ढेर सारी विविधताओं से युक्त संतों का विभेदीकरण करने में हमारी मदद कर सकता है। एक और है पुरोहित वर्ग जो धर्म की संस्था और धार्मिक रीति रिवाजों का आधिकारिक अनाधिकारिक रक्षक है। इनमें शामिल है पंडित, मौलाना, ग्रंथी और पादरी। दूसरी ओर है मध्यकालीन संत जो अलग अलग धर्मों के थे, जिनमें शामिल थे भक्ति और सूफी संत जो धर्म की भाषा में बात तो करते थे परंतु उनका न तो कर्मकांडों से कोई लेना देना था और न ही सत्ता से। और तीसरी श्रेणी आज के बाबाओं की लंबी चौड़ी सेना है, जिनमें आसाराम बापू, बाबा रामदेव व श्री श्री रविशंकर जैसे राष्ट्रीय स्तर के बाबाओं से लेकर क्षेत्रीय, प्रादेशिक व शहरी स्तर के बाबा शामिल हैं। पुरोहित वर्ग सत्ता के ढांचे का हिस्सा है, वह जमींदारों और राजाओं का हितेशी था। महाराष्ट्र में शेठ जी, भाट जी शब्द प्रचलित है। इसी तरह राजा, राजगुरु और नवाब, शाही इमाम की भी जोड़ियां थी। इस श्रेणी का सबसे उत्तम उदाहरण है अंग्रेजी शब्द समूह किंग एंड पॉप यानी राजा और पॉप। राजा, राजगुरु, नवाब, शाही इमाम, किंग एंड पॉप ये सभी समाज की यथास्थितिवाद के हामी थे और उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे जो गरीब किसानों का खून चूसती थी। वे आमजनों को धर्म के नशे में गाफिल रखते थे ताकि वे दिन रात कड़ी मेहनत करते रहे और व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का विचार उनके मन में आए ही नहीं। हम कहते हैं कि मध्यकालीन संत इस हृदयहीन शोषणकारी विश्व में दमितों की आह थे। मित्रों, जहां तक आसाराम बापू, निर्मल बाबा जैसे कथित संतों की श्रेणी का सवाल है, वे भी समाज को अफीम परोस रहे हैं। वे कभी व्यवस्था पर प्रश्न नहीं उठाते, वे कभी अन्याय का विरोध नहीं करते और धर्म के नाम पर हो रहे सामाजिक अत्याचारों पर चुप्पी साधे रहते हैं। इसके साथ ही वे राजनीतिज्ञों का संरक्षण हासिल करते हैं, धन कमाते हैं और समाज में अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाते हैं। इस समय भले ही भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पर बाबाओं के पक्ष में आवाज उठा रही हो, परंतु सच यह है कि किसी राजनीतिक दल में यह साहस नहीं है कि वह इन बाबाओं की खुलकर आलोचना कर सके। ये बाबा लोगों को धर्म की अफीम चटाकर उन्हें तनाव से मुक्ति दिला रहे हैं और धर्म का लबादा ओढ़कर अपनी चमकदार और भव्य छवि बना रहे हैं। उन पर हाथ डालना आसान नहीं होता और इसलिए जब वे कोई अपराध करते हैं तब भी वे कानून के शिकंजे से बचे रहते हैं, जब तक उन पर लगे आरोप बहुत गंभीर और स्पष्ट न हो, जैसा कि आसाराम बापू के मामले में है, तब तक उन्हें राजनीतिज्ञों और उनके अंधानुयायियों का संरक्षण मिलता रहता है। यहाँ स्मरणीय है कि आसाराम बापू
और अटल बिहारी वाजपेयी ने शंकर रमन हत्याकांड में शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में धरना दिया था। इसी तरह आसाराम बापू के आश्रमों में बच्चों की हत्या के मामले को दबा दिया गया। बाबाओं की रक्षा करने के लिए राजनीतिज्ञों का आगे आना तो आम बात है। मित्रों, यह दिलचस्प है कि इन बाबाओं का उदय धर्म की राजनीति के परवान चढ़ने के साथ ही हुआ है। ये बाबा किसी न किसी रूप में उस विमर्श से जुड़े हुए हैं जिसमें धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है। वे इस विमर्श का प्रचार करते हैं और उसे सही बताते हैं। इनमें से कई दबी छुपी भाषा में मनुस्मृति के मूल्यों और जातिगत व लैंगिक पदानुक्रम का बचाव भी करते हैं। ये बाबा लोग सामाजिक रिश्तों में यथास्थितिवाद के हामी हैं। जैसे श्री श्री रविशंकर जातिगत समरसता की बात करते हैं, वे अम्बेडकर की तरह जाति के उन्मूलन के हामी नहीं हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि लोगों का एक तबका उन्हें भगवान की तरह पूछता है और उसे मानसिक दबावों से मुक्ति पाने के लिए उनकी जरूरत है। यह भी स्पष्ट है कि आर्थिक और राजनीतिक कारकों से जनित सामाजिक असुरक्षा के भाव ने इन बाबाओं के अनुयायियों की संख्या में आशातीत वृद्धि की है। ये सब धर्म और आस्था का लबादा ओढ़े रहते हैं, इसलिए उन पर प्रश्न उठाना कठिन हो जाता है। यह चोला उन्हें कुछ विशेष अधिकार दे देता है और वे देश के कानून से कुछ हद तक ऊपर उठ जाते हैं। मित्रों, आमजनों की आस्था का सम्मान करने की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता, परंतु इसकी कोई सीमा होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह समाज में अतार्किकता या अंधविश्वास फैलाए या कानून का मखौल उड़ाए। नमस्कार।

श्रोता साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता जिसका शीर्षक था आस्था की तिजारत, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन बंडोर जी। श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम नाटक जिसका शीर्षक है हाँ मुझे कुछ याद नहीं, और जिसके लेखक हैं स्वर्गीय कृष्णकांत दुबे जी।

0: सर मैं आपको प्रणाम करता हूं।
1: तुम्हें मेरे आशीर्वाद। लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि तुम कौन हो।
0: सर कभी मैं आपका छात्र रहा था।
1: देखो भाई, मैं वर्षों अध्यापक रहा हूं, अब उम्र 62 साल से ऊपर, अब रिटायर हो चुका हूं। पूरे 40 साल की अवधि, इस समय अवधि में समझो हजारों छात्रों को मैंने पढ़ाया। देखो ना, अब सबको याद रख पाना भी तो मुश्किल है, हैं?
0: पर मुझे याद है आप प्रभात कुमार सर हैं।
1: हाँ, हूं तो वही प्रभात कुमार, लेकिन

0: सर याद कीजिए, जब आप सोनपुर गांव के माध्यमिक शाला में प्रधान अध्यापक बनकर आए थे।
1: सोनपुर, हाँ हाँ याद है मुझे।
0: सर तब आपको ये भी याद होगा, ये एक लड़का अपनी छोटी बहन को लेकर स्कूल के बरामदे में आया करता था।
1: नहीं, मुझे उसकी तो कोई याद नहीं है।
0: सर मैं विशाल, आपको याद दिला दूं?
1: अब उस इतिहास को दोहराने से क्या होगा विशाल।
0: हाँ सर, वो इतिहास ही है, एक उजला इतिहास जिसने मुझे एक नई, एक उजली जिंदगी दी। सर आज मैं अपने जिले का डिप्टी कलेक्टर हूं, और वो मेरी बहन जिसे मैं स्कूल परिसर में लेकर बैठा रहता था, आज वो आपकी कृपा से एक बैंक अधिकारी है।
1: अगर ये सब कुछ है तो मैं खुश हूं, पर विशाल विश्वास मानो मुझे कुछ याद नहीं है।
0: सर ये बात 30 साल पुरानी है।
1: भाई मेरे, इस जिले के डिप्टी कलेक्टर महोदय, कोई 30 साल पुरानी बात है तो सोचो भला मुझे कैसे याद होगी।
0: लेकिन सर मैं उसे कैसे भूलूंगा, आपकी उस कृपा छाया को जिसने मुझे सचमुच सूरज का आंगन दिया, जिंदगी में एक नई सुबह दी, उजली, जिसने मेरे जीवन को सदैव के लिए उज्ज्वला दे दी। भला मैं उस महाप्रभात को कैसे भूलूंगा। सर मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मेरा नाम आपका ही दिया हुआ है, विशाल, जो पहले भूरिया था, और बहन जो पहले नाम में भूरी थी उसे आपने नाम दिया उज्ज्वला। स्कूल के रजिस्टर में हम विशाल और उज्ज्वला लिखे गए। सर याद कर लीजिए, मैं वही आपका विशाल हूं जिसकी मां गरीब खेत मजदूर थी और जिसके पिता नहीं रहे थे।
1: कोशिश तो कर रहा हूं याद करने की, लेकिन विशाल मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं आ रहा।

0: सर उस सुबह को याद कीजिए, सोनपुर की उस सुबह की जब मेरी मां खेत पर मजदूरी करने जा चुकी थी और तब उस सुबह मैं अपनी छोटी बहन को लेकर स्कूल परिसर में आ गया था ताकि हम दोनों वहां बैठकर दिन मजे से गुजार सके।
1: अच्छा फिर क्या हुआ?
0: सर तब सारे स्कूली छात्र प्रार्थना के लिए मैदान में आ चुके थे।
1: फिर
0: मैं और मेरी बहन हम भी कुछ दूर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी, सभी छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए थे।
1: उसके बाद
0: फिर आप हम भाई बहन के पास आए, वहां जहां हम दोनों स्कूली परिसर के सूने बरामदे में बैठे थे। याद कीजिए, तब आपने मुझसे यही कहा था।

0: सुनो बेटे, मैंने देखा है तुम रोज यहां स्कूल आते हो। अगर तुम रोज यहां आते हो तो दोनों भाई बहन के पास इस प्राथमिक स्कूल की क्लास में बैठा करो। मैं तुम्हारे लिए कॉपी किताबों की व्यवस्था कर दूंगा। तुम्हारे लिए स्कूल में पहनकर आने वाले कपड़े भी सिलवा दिए जाएंगे। और हां, ये भी सुन लो, मेरे यहां हर सांझ गरीब और असहाय बच्चे पढ़ने आते हैं। तुम दोनों भी आया करना। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी होगी। हां, और ये भी सुन लो, जिस किसी दिन जब तुम्हारी माताजी खेत पर काम करने नहीं जाए, उन्हें मेरे पास स्कूल लेकर आना। मैं उन्हें कुछ बातें और भी समझा दूंगा।
1: सर, याद कीजिए उस बात, उस समय को, जब एक दिन मैं और मेरी बहन, हम दोनों अपनी मां को लेकर स्कूल आए थे। आपने मां से बातें करते हुए यही तो कुछ कहा था।
0: क्या आप ही इन बच्चों की मां हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सुनिए, आपके इन दोनों बच्चों में मैं भविष्य की यानी आगे आने वाले समय में कई भली संभावनाएं देखता हूं। इन्हें देखते ही मुझे विश्वास हो गया था कि इनके आगे का समय बहुत उजला होगा। मैंने इन दोनों को इसी पास के प्राथमिक स्कूल में भर्ती करा दिया है। अब आगे आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने इनकी पढ़ाई की सारी व्यवस्था कर दी है। बस आपसे एक ही निवेदन है, इन्हें पढ़ने दीजिए, इनको कभी रोकिए नहीं। आप देखेंगी ये बच्चे आगे चलकर सितारों की तरह चमकेंगे।
1: सर, इसे भी याद कीजिए।
0: विशाल, सच कहूं मैं इन बातों से किसी का स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। मैं उस 30-35 वर्ष पुरानी बातों को कहां तक याद रख पाऊंगा भला।
1: सर, आपने मुझे मिडिल तक पढ़ाया। हम भाई बहन अपनी हर क्लास में प्रथम श्रेणी प्राप्त करते रहे। हमें स्कॉलरशिप भी मिलती रही। उसके आगे पढ़ने के लिए आपने ही हमें प्रोत्साहित किया था। फिर हम भाई बहन ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वहां भी हमें बराबर स्कॉलरशिप मिलती रही। सर, हम जानते हैं इस सबके पीछे भी आपकी कृपा रही थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, हम आज जो कुछ भी हैं, आपका मार्गदर्शन और आपकी कृपा का ही परिणाम है। सर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप अपने इस विशाल को पहचान लीजिए जिस पर आपने ऐसी कृपा की थी।
0: तुम बहुत प्रयत्न कर रहे हो कि मैं उस समय की सभी घटनाओं को याद कर लूं। हां, कोशिश जरूर कर रहा हूं, पर सफल नहीं हो पा रहा। इस बारे में तुम मुझे क्षमा करोगे।
1: सर, मैंने तो आपको यहां रेलवे स्टेशन पर देखा और पहचान गया कि आप प्रभात कुमार सर हैं, जिन्होंने मुझे और मेरी बहन के जीवन को संवार दिया।
0: क्या करूं विशाल, वृद्धावस्था है, कभी स्वयं अपने को ही भूल जाता हूं। ये भी मेरी एक विवशता है।
1: सर, ये आपका शिष्य, जिसे आपने एक पिता से भी अधिक प्यार दिया, उसकी हर तरह से सहायता की, आपकी कृपा दया से मैंने IAS पूरी सफलता से पूरी कर ली, और वो भी सर्वोच्च श्रेणी में। सर, मैं इस सबको कभी नहीं भूल सकता।
0: ठीक है विशाल, ठीक है, ठीक है।
1: नहीं सर, स्टेशन के बाहर मेरी कार खड़ी है, आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे परिवार को आशीर्वाद देना होगा। सर मेरा ये निवेदन स्वीकार करें, एक दिन अपने पुत्रवत शिष्य के यहाँ ठहरें, कल आपकी आगे की यात्रा का सारा प्रबंध मैं करवा दूंगा। सर अब आप मुझे निराश नहीं करेंगे।
0: विशाल, शायद तुम नहीं जानते, मेरी श्रीमती का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अकेली है। मुझे हर हालत में अपने घर पहुंचना है। देखो, मेरी ट्रेन आने वाली है और मुझे उसी से जाना है।
1: सर आप ये क्या कह रहे हैं?
0: हाँ विशाल, इस समय मैं कहीं नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा।
1: तो फिर आप मुझे अपना पता देते जाएं, फोन नंबर देते जाएं, मोबाइल नंबर भी देते जाएं, ताकि मैं आपसे बात करता रहूंगा और आपका आशीर्वाद भी प्राप्त करता रहूंगा।
0: इसकी क्या आवश्यकता है विशाल, हम अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हाँ, तुम अपने इस अंचल के डिप्टी कलेक्टर हो, तुम पर कई जिम्मेदारियां होंगी। अरे तुम अपना अमूल्य समय इन बातों में खर्च मत करो।
1: तो सर मैं बहुत निराश होकर जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं क्या करूं।
0: क्या करूं यानी क्या मतलब विशाल? हमेशा प्रसन्न रहो, जहां जहां भी रहो उस अंचल के लोगों की हमेशा ईमानदारी से सेवा करते रहो, यही मेरा कहना, मेरा आशीर्वाद है। तुम एक युवा अधिकारी हो, तुम्हें तो बहुत काम करना है, देश समाज की सेवा करनी है। और मेरी एक बात ये भी सुन लो, नेकी करो और उसे भूल जाओ, बस यही कहना है।
1: सर आपकी इस शिक्षा को भी मैं हमेशा याद रखूंगा, कभी नहीं भूलूंगा इसे।
0: ठीक है विशाल, अब तुम जाओ, ट्रेन आने वाली है और दूर तक की यात्रा है, मुझे जाना ही होगा।

0: मैंने वर्षों उनका पवित्र सानिध्य पाया, कहूं कि एक तरह उन्हीं के पास रहा। इस पर भी वे मुझे क्यों नहीं पहचान पाए? उन्होंने क्यों किया होगा ऐसा? मुझे बराबर लगता रहा, सर मुझे पूरी तरह पहचान रहे हैं, फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ओह, अब समझा उस वाक्य का मर्म।
1: नेकी करो और उसे भूल जाओ, नेकी करो और उसे भूल जाओ, नेकी करो और उसे भूल जाओ।
0: क्या सर ने इसीलिए ये बात कही? शायद यही बात हो।

विशाल विशाल, हाँ मैं उसे देखते ही पहचान गया था। ये मेरे उन छात्रों में एक रहा जो कांटों के बीच भी फूल की राह खोज लेते हैं। विशाल ने उन्नति की, उसकी बहन उज्ज्वला ने अपना जीवन संवारा, लेकिन उसका सारा श्रेय भला मैं कैसे ले लेता? अगर मैं उसे बता देता कि हाँ तुम ही विशाल हो और मैं तुम्हें जानता हूं, तो वो आगे जिंदगी भर अपने भीतर वो दबाव महसूस करता। मैं जानता हूं उसे जो मिलना था वो उसे मिला। मेरी उसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, उसके लिए प्रभु का रचना विधान कुछ यही था जिस कारण उसे सहायता मिली। उसका हकदार मैं कहां था? हां मैंने सिर्फ इतना चाहा, जो गरीब हैं असहाय हैं बस उनकी व्यथाएं मिटे। हां प्रभु ने मुझे प्रसन्नता दी, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने जीवन भर यही चाहा कि सबके दुख दूर हों, सबको मंगल दिशाएं मिलें। प्रभु सदैव हम पर सब पर कृपा करें, बस सब पर उनकी कृपा बरसती रहे। यही मेरी इच्छा, यही मेरी कामना।

हां, मुझे कुछ कुछ याद नहीं। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक थे कृष्णकांत दुबे और कलाकार संतोष जोशी।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाटक, जिसका शीर्षक था हाँ मुझे कुछ याद नहीं, और जिसके लेखक थे स्वर्गीय कृष्णकांत दुबे जी। दोस्तों नाटक सच में दिल को छू गई। वाकई बहुत ही प्रभावशाली तरह से हमारे प्रतिभाशाली कलाकार नाटिका को प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों आपको ढेर सारी नई जानकारियाँ देने और बताने आपके रेडियो दोस्त विवेक जी आ रहे हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए हर पल हर समय कुछ नया। आपकी रेडियो दोस्त ज्योति कुजूर के साथ रेडियो वरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर में नमस्कार।

दोस्तों, रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी अनुष्ठान सत्यस्वर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिस्टर गंगा रावत, एसएसपीएस। दोस्तों, अभी की सभा 12 से 1 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत।

आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी, और यह प्रस्तुति है सब प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: तो ये मुरुड की आबादी क्या होगी?
1: मुरुड की करीब 14,000 या 15,000 आबादी है।
0: बस 14-15 हजार, छोटा सा गांव है। मतलब
1: छोटा सा गांव है।
0: अच्छा, तो फिर ये जैसा आप संगीत का जलसा करते हैं तो उसमें आम लोग भी आते हैं सुनने के लिए?
1: हाँ, आते हैं 100-150, और आजू बाजू के गांव से यानी अलीबाग, महाड़, पनवेल, इधर से भी लोग सुनने को आते हैं, गाने को आते हैं।
0: मुंबई आपके गांव से कितनी दूर है?
1: करीब 125 या 200 किलोमीटर।
0: अच्छा, अगर कोई दवाइयां वगैरह खास तरह की मंगानी हो तो खुद जाते हैं?
1: नहीं नहीं, मिलती है मुरुड में।
0: मुरुड में दवाइयां मिल जाती हैं? अच्छा अच्छा, तो संगीत आपने सीखा भी है?
1: संगीत पहले तो मैंने भारत गायन समाज में सीखा, जो भास्कर बुआ बखले जी ने स्थापित किया था। और फिर मैंने वामन राव भावे जी से सीखा। और मुरुड एकदम शांत जगह है, इसलिए खुद गाते रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, शास्त्रीय संगीत गाते हैं?
1: हाँ।
0: और साथ में संगत तबले पर कोई करता है आपकी?
1: पहले तो थे मेरे, लेकिन अभी नहीं है।
0: अब नहीं है? तो बिना तबले के तो शास्त्रीय संगीत अभ्यास जरा मुश्किल होता है। ऐसा सुना है हमने।
1: बराबर है, छोटे गांव में तो ये मुश्किलें आती है, इसलिए तो ये मंडल हमने स्थापित किया। क्योंकि जिधर बजाने वाले है उधर गाने वाले नहीं, गाने वाले बजाने वाले नहीं। एक दूसरे से मुलाकात होती है, कम से कम बरस में एक दिन तो हम साथ रहते हैं, साथ गाते हैं, साथ उठते बैठते हैं, गाने की बातें होती है।
0: एक बात डॉक्टर नाम जोशी हम आपसे सुनना चाहेंगे, वो ये कि जब आप एक छोटे से गांव में संगीत का एक समारोह करते हैं एक स्वर्गीय गुणी कलाकार के नाम पर, तो क्या आप इसमें किसी प्रकार की कोई शासकीय सहायता की मांग नहीं कर सकते, ताकि आपके यहाँ भी कुछ और अच्छे नामी कलाकार आए हैं? और शास्त्रीय संगीत के अलावा सुगम संगीत है, लोक संगीत है, मछुआरों का भी बड़ा लोकप्रिय संगीत होता है, होता है कि नहीं?
1: होता है, बिल्कुल होता है।
0: तो इस तरह का मिला जुला आयोजन आप करें, ऐसा आप नहीं सोचते?
1: क्या है कि भक्ति संगीत तो यानी हर जगह चालू रहता है, मछुआरों का संगीत तो त्योहार में सुनने को मिलता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत सुनने वाले कम होते हैं, गाने वाले कम होते हैं। यानी आपको मजे की बात बताता हूँ, समझो मेरे जैसा आदमी गाने गया किधर, तो पहले बोलेंगे आऊ नको, यानी शास्त्रीय संगीत मत सुनाओ, नाट्य संगीत सुनाओ, गजल सुनाओ, ये सुनाओ। तो मेरी जो चाह है, और मेरे जैसे बहुत लोग है कि गाने वाला है बजाने वाला, उनकी चाह पूरी होनी चाहिए, इसलिए ये हमने मंडल बनाया है।
0: तो हम ये चाहेंगे, क्योंकि हमारे अधिकांश श्रोता, मतलब जरूरी नहीं कि वो सब शास्त्रीय संगीत ही समझते हों, गांव के भी श्रोता हैं, खास करके हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारे मध्य प्रदेश, यहाँ के जो श्रोता हैं। तो आपको कोई मछुआरों का गीत याद है जिसे आप गा के सुना सकें? जैसे उनके यहाँ कोई त्योहार होता है, शादी होती है, तो गाते तो वो अपनी भाषा में ही होंगे, तो वो क्या धुन होती है उसकी?
1: अभी मैं मराठी में एक भजन सुनाता हूँ जो मछुआरों को भी अच्छा लगता है,

0: बड़े बांधोन गया हाँ। देसी काड़ा हाथी
1: हाँ।
0: ऐसे काये चित्ती आले तुझा।
1: इसका मतलब क्या है बताएंगे?
0: पूरी तरह से कस के बांधा है तुमने
1: हाँ।
0: मुझे, और जो काल है
1: हाँ।
0: उसके सामने मुझे फेंक दिया
1: हाँ।
0: यानी मैं कुछ कर भी नहीं सकता
1: हाँ।
0: ऐसी मेरी हालत क्यों बनाई
1: हाँ।
0: तुझा माजा देवा कार्य वैराकार, यानी तुम्हारी और मेरी क्या दुश्मनी है जो मुझ पर दुख के पहाड़ गिरा रहे हो तुम।
1: अच्छा, ये ईश्वर को उलाहना दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा,
0: नामदेव महाराज जी, नामदेव महाराज जी थे, उनका भजन है ये,
1: संत नामदेव।
0: हाँ, संत नामदेव महाराज जी।
1: अच्छा डॉक्टर नाम जोशी, आप में कई चीजें ईश्वर ने आपको दी हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं, रुचि आपकी संगीत में है। आपका जो अगला जीवन है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि जीवन की डोर कितनी लंबी है, कब कट जाएगी, तो आप अपने इस जीवन से संतुष्ट हैं, एक बात, और दूसरी कि आप आगे और क्या करना चाहेंगे?
0: हाँ जी, मैं संतुष्ट तो हूँ और आगे गाने यानी शास्त्रीय संगीत ही और सीखने की कोशिश करूंगा, और ये जो मंडल का कार्य है ये आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा।
1: और अपने मरीजों की सेवा?
0: मरीजों की सेवा तो करनी ही है, वो तो काम जितने दिन हो सकेगा उतने तो करता ही रहूंगा, बिल्कुल करता रहूंगा। मरीजों की सेवा तो करनी है, अभी तक 35 साल में मैंने कभी देर रात पेशेंट बुलाने आते हैं, डॉक्टर साहब विजिट पर चलो,
1: कैसे जाते
0: किसी को भी मैंने ना नहीं बोला, जाता हूँ।
1: और छोटे से गांव में जहाँ 14,000 की आबादी, आप जाते कैसे हैं मरीजों के?
0: पहले टांगे में भी गया था।
1: अच्छा।
0: साइकिल पर भी गया था।
1: अच्छा।
0: अभी स्कूटर पर भी जाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा, तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप हमारे स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम में अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार।

मित्रों, अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय स्वतंत्र कुमार ओझा जी, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। दोस्तों, हमारे समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है कार्यक्रम युवा विकास का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास जिससे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वर्गीय माइकल होजेस जी, और इनकी वार्ता का विषय है अपने आप को परखें, और यह प्रस्तुति है सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: युवा विकास के अंतर्गत प्रस्तुत है बातचीत अपने आप को परखें। लेखक माइकल हॉजिस और बातचीत में भाग ले रही हैं अपर्णा सिंह और माइकल हॉजिस।
1: युवा और विकास कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा

0: इसके लिए जरूरी है विशेषकर युवाओं के लिए कि वे अपना जीवन जीते हुए अपने जीवन को परखते भी चलें या परखते रहें।
1: बिल्कुल।
0: जैसे जीवन में किसी विशेष अवसर पर या अवसर में प्रवेश करते हुए वे खास तौर पर अपने आप को परखें।
1: अपर्णा जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे उदाहरण के लिए, यूं तो प्रत्येक युवा के जीवन में साक्षात्कार, परीक्षा, नौकरी, खरीदारी और विवाह जैसे अनेक अवसर आते हैं जिनसे युवा अभिभूत हो उठते हैं।
0: मेरे ख्याल से माइकल जी, लेकिन युवाओं के जीवन में
1: जी,
0: इनमें से सबसे अलग और सबसे सुखद अवसर विवाह का ही होता है।
1: बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने।
0: जी, क्योंकि किसी के भी जीवन में विवाह मुख्यतः जोश और धूमधाम से एक ही बार होता है।
1: इसीलिए अपर्णा जी, ऐसे अवसरों के पूर्व युवाओं को अपने आप को विशेष तौर से परखना चाहिए, क्योंकि अपर्णा जी, विवाह बंधन कोई एक दो दिन का बंधन तो होता नहीं है। ये बंधन तो उम्र भर का बंधन है।
0: और इसलिए माइकल जी, हम अपने युवा साथियों को यही सलाह देना चाहेंगे कि विवाह की रजामंदी के पूर्व या विवाह करने के पूर्व यदि हमारे युवा साथी कुछ विशेष प्रश्नों और कुछ मुद्दों का जो उनके विवाह से संबंधित हो तो उन्हें उस पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए।
1: जी हाँ अपर्णा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस विचार विमर्श से वे अपने भविष्य में होने और घटने वाली अनेक अनचाही दुर्घटनाओं और विसंगतियों तथा समस्याओं से बच सकते हैं।
0: जी, अनचाही दुर्घटनाओं, हादसों और विसंगतियों और समस्याओं से बच सकते हैं, साथ ही साथ अपना भविष्य और अपना जीवन सुखी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल अपर्णा जी, सबसे पहले तो उन्हें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या उनकी आयु वास्तव में विवाह के योग्य है।
0: पहला प्रश्न, पहली
1: जी,
0: सोच
1: जी, या फिर महज वे किसी भावना के अतिरेक या किसी जोश में आकर यह कदम उठाने जा रहे हैं।
0: माइकल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि कई बार युवा किसी के प्रेम में पड़कर या फिर किसी के मोह में पड़कर समय से पहले ही विवाह करने की तैयारी करते हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए आपने उम्र की बात की है सबसे
1: जी,
0: पहले।
1: जी। इसके अलावा अपर्णा जी, किसी और युवा को विवाहित जिंदगी बिताते देखकर या किसी विवाहित को देखकर भी उनका मन विवाह करने के लिए डोलने लगता है कि हम भी शादीशुदा होते या हम भी शादी कर ही लें। मेरे ख्याल से ये विचार इस समय किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता, क्योंकि विवाह करने के पूर्व वैचारिक विमर्श अपने आप में मैं समझता हूँ जरूरी है।
0: और माइकल जी, कई बार विशेषकर गांव के या गांव की पृष्ठभूमि वाले युवा अपने माता पिता के कहने पर विवाह के लिए राजी हो जाते हैं बिना ये जाने और सोचे समझे कि इस उम्र में विवाह करने से वे अपने भविष्य में फूल बो रहे हैं या कांटे बो रहे हैं।
1: जी हाँ अपर्णा जी, और इसके अलावा उन्हें इस प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए कि क्या वे अपने पैरों पर खड़े हैं, यानी कि क्या वे नौकरी कर खुद कोई कमाई कर रहे हैं या फिर माँ बाप पर ही आश्रित हैं और शादी करने जा रहे हैं। ये एक अहम सवाल उनके सामने होना चाहिए।
0: डिपेंडेंट है या नहीं, ये कह रहे हैं आप, जो बहुत जरूरी है किसी के लिए भी। आपने एक बहुत अहम सवाल की ओर ध्यान दिलाया है कि वाकई क्या शादी करने वाला युवा कोई नौकरी करके इतना कमा रहा है कि शादी के बाद वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरीके से कर पाता है।
1: इसके अलावा अपर्णा जी, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि किसी युवा के, विशेषकर युवती के प्रेम विवाह करने पर या करने के पूर्व घर परिवार या बाहर किसी न किसी को किसी न किसी बात पर आपत्ति जरूर होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: विशेषकर युवती के करने पर
0: जी।
1: इसलिए इस बात का ध्यान भी वे जरूर रखें कि सारी आपत्तियों के निराकरण के बाद ही अपने विवाह के बारे में कोई युवती या युवक सोचे।
0: जी हाँ माइकल जी, क्योंकि वैसे तो उनका विवाह हर हाल में अगर वे चाहेंगे तो हो ही जाएगा।
1: जी हाँ,
0: लेकिन किसी को नाराज करके क्या वे अपने भावी जीवन के लिए किसी से आशीर्वाद पा सकेंगे, इस बात का विचार उन्हें जरूर करना चाहिए।
1: अपर्णा जी, यहाँ मैं एक बात विशेष तौर पर युवतियों के लिए कहना चाहूंगा
0: जी,
1: कि युवतियों को भी इन बातों पर विचार करना चाहिए कि क्या मुझे अभी विवाह करना है या अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना है
0: जी,
1: क्या मुझे पहले अपना करियर बना लेना चाहिए और फिर शादी के बारे में सोचना चाहिए।
0: और सबसे बड़ी बात माइकल जी, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जिस घर परिवार में मेरी शादी होने वाली है या मैं जाने वाली हूँ वो घर परिवार मेरे लायक है या नहीं, मैं उस घर परिवार के लायक हूँ या नहीं, और क्या मेरा सारा जीवन वहाँ बिना किसी परेशानी के, किसी बड़ी परेशानी के सुखद हो सकता है या नहीं, या सुखपूर्वक बीतेगा या नहीं।
1: पन्ना जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि युवतियों को तो बहुत ही सोच समझकर और बहुत देखभाल कर अपने आप को

0: कतर ही अपना आपको शादी के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
1: और इसके साथ ही एक ये बात भी जरूरी हो जाती है माइकल जी कि युवती के परिवार वाले भी उसे अपने आप को परखने का अवसर दें
0: जी।
1: इसके बाद ही उसे अपने विवाह पर सहमति प्रकट करने दें क्योंकि ये उसके जीवन भर का सवाल होता है।
0: अपर्णा जी मैं आपसे सहमत हूँ क्योंकि इस दृष्टि से युवती का परिवार भी युवती यानी कि अपनी बेटी के सुखद भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकता है क्योंकि अपनी बेटी के सुखमय और सुरक्षित जीवन के लिए जो हर माँ बाप ही लालायित रहते हैं और सोचते हैं ऐसा अपनी बेटी के सुखद भविष्य के लिए।
1: और एक बात और कहना चाहूंगी माइकल
0: जी जरूर
1: कि इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि माता पिता अपने बेटे और बेटी को स्वयं को परखने का अवसर दें और बेटा बेटी भी अपने आप को परखें।
0: अपर्णा जी हम अपने युवा श्रोता साथियों को ये भी बताते चले हैं कि हम यहाँ अपने आप को परखने की बात क्यों कर रहे हैं।
1: क्यों कर रहे हैं
0: ये बात हम इसलिए कर रहे हैं अपर्णा जी क्योंकि बिना परखे व्यक्ति अपने आप को तैयार कर ही नहीं सकता है और अपने आप को बिना परखे वो किसी भी प्रतियोगिता या अवसर के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकता।
1: बहुत अच्छी और गहरी बात कही है माइकल जी आपने। और अपने आप को न परखने का परिणाम भी व्यक्ति को खुद ही भुगतना पड़ता है
0: अपर्णा जी और मेरे ख्याल से उसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ती है
1: क्योंकि जब तक आप अपने आप को परखेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आप किस लायक हैं या किस लायक नहीं हैं।
0: जरूर ये पता होने के बाद ही तो आप किसी प्रतियोगिता किसी अवसर के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
1: और माइकल जी अपने आप को बिना तैयार करे ही किसी प्रतियोगिता या अवसर में शामिल करने का खामियाजा उसे असफलता या नाकामयाबी के रूप में भुगतना पड़ता है
0: जी।
1: और जहां तक मैं समझती हूं किसी भी प्रतियोगिता में सबसे अधिक युवा ही शामिल होते हैं और अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी सबसे अधिक मुझे लगता है कि युवा ही अपने आप को प्रस्तुत करते हैं।
0: जी हाँ और अपर्णा जी यही कारण है कि युवा ही किसी परीक्षा प्रतियोगिता अथवा किसी अवसर के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों से प्रभावित होते हैं।
1: बिल्कुल और किसी भी परीक्षा या प्रतियोगिता में शामिल होना युवाओं की एक अनिवार्य विवशता भी होती है।
0: अपर्णा जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप युवाओं के किसी भी परीक्षा अथवा प्रतियोगिता में शामिल होने को एक अनिवार्य व्यवस्था क्यों कह रही हैं? क्योंकि युवाओं को अपना करियर बनाने के लिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण तो करना ही होगा
1: बिल्कुल
0: ये तो एक नियम है और इसको कोई मजबूरी कैसे कह सकता है जरा स्पष्ट कीजिए।
1: देखिए माइकल जी जहां कहीं भी कोई नियम किसी बारे में होता है तो उस नियम को मानना उसका पालन करना अपने आप में एक मजबूरी ही तो होती है।
0: जी
1: ऐसा मैं सोचती हूँ।
0: हाँ
1: और मजबूरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल के युवा चाहते तो ऊंचे पद पर और प्रतिष्ठित पद पर जाना है लेकिन इन सबको पाने के लिए जो मेहनत और पढ़ाई करनी होती है वो कितने युवा करते हैं और ऐसे ही लोगों के लिए ये व्यवस्था बन जाती है।
0: अपर्णा जी अच्छे करियर और ऊंचे पद की कामना तो हर युवा करता ही है जैसा कि आपने अभी कहा लेकिन एक पुरानी कहावत भी तो है कि कुछ त्यागे बिना कुछ प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से यूं भी कहा जा सकता है कि कुछ पाने के लिए उससे पाने से पहले योजना बनानी पड़ती है और तैयारी भी करना पड़ती है।
1: माइकल जी इसे यूं भी कह सकते हैं हम कि यदि आपको कोई पद प्राप्त करना है तो पहले अपने आप को उस पद के योग्य बनाना होगा यानी आप उस पद के योग्य बनकर ही उस पद को प्राप्त कर सकते हैं बिना उसके तो बिल्कुल संभव ही नहीं है।
0: यानी कि आपको पहले अपने आप को परखना होगा कि आप उस पद को पाने की योग्यता रखते हैं या नहीं।
1: जी यही बात कह रहे हैं।
0: अगर नहीं रखते हैं योग्यता तो आपको उस पद को प्राप्त करने की कामना छोड़ देनी चाहिए। और अगर आप में उस पद को प्राप्त करने की योग्यता है तो फिर आपको उस पद को प्राप्त करने की तैयारी में जुट जाना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: उस पद को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत शुरू कर देना चाहिए।
1: और माइकल जी यूं भी कह सकते हैं हम कि यदि व्यक्ति को कुछ पाना है तो पाने से पूर्व उसे अपने आप को उस पद के योग्य अवश्य बना लेना चाहिए या अपने आप को उस पद के योग्य सिद्ध करना चाहिए।
0: जी हाँ अपर्णा जी और ये सारी बातें बिना किसी पूर्व तैयारी और बिना कड़ी मेहनत के तो बिल्कुल भी संभव नहीं है।
1: बिल्कुल माइकल जी क्योंकि फिर उस पद पर व्यक्ति को एक दो दिन नहीं बल्कि वर्षों तक कार्य करना पड़ता है तभी तो व्यक्ति की सही कार्य क्षमता और उसके कार्य करने के ढंग और उस पद पर उस व्यक्ति के योग्य और अयोग्य होने के बारे में टिप्पणी भी की जा सकती है।
0: लेकिन अपर्णा जी प्राथमिक रूप से तो उस पद को पाने के लिए उसे अपनी योग्यता तो सिद्ध करनी ही पड़ेगी। जो सफल हो जाते हैं वे अपनी सफलता का जश्न उस पद को पाकर मनाते ही, और जो युवा सफल हो जाते हैं आगे से कुछ अपनी उस सफलता को गंभीरता से लेते हैं, कुछ आगे जाकर और कुछ हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: और माइकल जी, यदि आपकी बात पर गौर किया जाए तो मेरे ख्याल से असफलता की श्रेणी में आने वाले तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है।
0: कौन कौन सी तीन श्रेणियां पढ़ना जी, बताइए जरा।
1: देखिए माइकल जी, पहली श्रेणी में तो वे असफल लोग होते हैं जो किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में असफल हो जाने पर उसे बहुत हल्के रूप में ले लेते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी असफलता को भूलकर फिर से अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं।
0: और दूसरी श्रेणी वाले?
1: और दूसरी श्रेणी उनकी होती है माइकल जी, जो अपनी असफलता को गंभीरता से लेते हैं और अपनी इस असफलता से सबक सीखकर दुगने जोश से और दुगने उत्साह से अपनी असफलता को एक बार फिर से मेहनत कर सफलता में बदलने के लिए जुट जाते हैं।
0: और तीसरी श्रेणी
1: माइकल जी? तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो अपनी असफलता को लेते तो गंभीरता से हैं
0: जी,
1: लेकिन अपनी असफलता का दोष ये खुद को नहीं मानते। ऐसे लोग अपनी असफलता का दोष किसी और के माथे मरते हैं और यहाँ तक देखा गया है कि आत्महत्या के रूप में सजा खुद को दे डालते हैं।
0: जाहिर सी बात है, ऐसे युवा स्वयं की पढ़ना जी केवल स्वयं की निगाह में ही सही रहते हैं, लेकिन सारे समाज की निगाह में उनका ये काम गलत, अविवेकपूर्ण और ईश्वर के विरुद्ध ही रहता है।
1: और मेरे ख्याल से माइकल जी, यदि ऐसे युवा इस तरह का कोई कदम उठाने के पहले यदि अपने आप को परख लेते तो यकीनन ऐसी नौबत ही नहीं आती, उन्हें तब खुद ही पता चल जाता कि उनकी असफलता या जिन भी कारणों से वे असफल हुए हैं उनके जिम्मेदार कौन है, वे खुद या फिर कोई और है।
0: और अपने आप को परखने के क्रम में उसे ये भी पता चल जाता कि उसकी परीक्षा की तैयारी में उससे कब, कहां और कैसे चूक हो गई, उसकी तैयारी पूरी थी या अधूरी।
1: और यदि वो अपनी इस अधूरी तैयारी के बजाय पूरी तैयारी के साथ बिना किसी प्रकार की कमी लिए परीक्षा में शामिल होता तो आज उसे यूं इस तरह से असफलता का सामना नहीं करना पड़ता।
0: अपर्णा जी, हमारे युवाओं के साथ यही स्थिति प्रेम में भी होती है
1: जी।
0: वे बिना स्थिति को या किसी शख्स को परखे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को प्रेम का नाम दे बैठते हैं या उस स्थिति को प्रेम समझ लेते हैं, आकर्षण की स्थिति को, जबकि प्रेम मनुष्य को ईश्वर का एक अनुपम उपहार है, यह क्षणिक आकर्षण बिल्कुल भी नहीं है।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा माइकल जी, इसलिए युवाओं को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने पर उसे प्रेम की संज्ञा देने के पूर्व अपने पर एक दृष्टि डालते हुए अपने आप को परख लेना चाहिए
0: जी। अपने आप को परखते समय उन्हें ये देखना और सोचना समझना चाहिए कि जिस विपरीत लिंग के प्रति वे आकर्षण महसूस कर रहे हैं वो महज एक आकर्षण ही है, मित्रता है, या फिर वास्तव में भविष्य में वह एक सुदृढ़, सच्चे और आदर्श प्रेम में बदल जाने वाला विषय है।
1: इसके साथ साथ माइकल जी, उन्हें इस बात को भी परखना और देखना और सोचना चाहिए कि क्या परिवार और समाज भविष्य में सहजता से इस संबंध को स्वीकार कर लेंगे या नहीं करेंगे, और यदि इस संबंध में भविष्य में बाधाएं आएंगी तो कौन सी बाधाएं वे हो सकती हैं।
0: और अपर्णा जी, क्या इन हालातों में भविष्य में भी उनके आपस के संबंध सामान्य और हो सकते हैं?
1: बिल्कुल सही,
0: बने रहेंगे और उनके बीच में प्रेम बना रहेगा। इन तमाम सभी प्रश्नों पर भी उन्हें विचार कर अपने आप को स्थिति के साथ साथ परखना चाहिए।
1: तो माइकल जी, हम आशा करते हैं कि अब से हमारे युवा अपने कार्यों को और खुद को परखते हुए आगे बढ़ेंगे और जीवन में सफलता पाएंगे।
0: जी अपर्णा जी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने युवा साथियों से इजाजत लेते हैं, माइकल को
1: और अपर्णा को।

मित्रों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास, जिससे प्रस्तुत कर रहे थे स्वर्गीय माइकल होजिस जी, और इनकी वार्ता का विषय था अपने आप को परखें, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है चार्ल्स वास मुंबई की।

0: साथियों, अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी चार्ल्स वास मुंबई की। मित्रों, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार, जिसे प्रस्तुत कर रही है भवानी कौल, और इनकी वार्ता का विषय है रिश्तों में दरारों को बढ़ावा देता मोबाइल, और यह प्रस्तुति है सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: युग संचार वार्ता सुनिए, रिश्तों में दरार को बढ़ावा देता मोबाइल। साथियों, ये शीर्षक सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन सत्य है। युग संचार में लगातार जिस प्रकार से तरक्की हो रही है, उसे देखकर सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज हमारे पूर्वज होते तो सोचते और यही कहते, हमने अपना जीवन ठीक से जिया ही नहीं, मीलों पैदल चलते थे। दूर कहीं खबर या संदेश लेना पड़े तो हफ्ते महीने लग जाते थे। नाते रिश्तेदार से खैर खबर मिले भी अरसों हो जाते थे। पर अब तो भाई सात समंदर पार भी 5 मिनट में बात हो जाती है। दुनिया घटित कोई भी घटना को सारी दुनिया पल भर में देखती और सुनती है। इसलिए आजकल के बुजुर्ग यही कहते हैं, भैया जमाना बड़ा बदल चुका है। इसे यूं भी मोबाइल का जमाना कहें तो बिल्कुल सही है। साथियों, आज संचार व्यवस्था ने जितनी धड़ल्ले से तरक्की की है, उसके बनिस्पत शायद और किसी क्षेत्र में तरक्की हो। संचार व्यवस्था ने तो कमाल ही कर दिया। छोटी सी छोटी जगह एवं बड़ी सी बड़ी जगह में संचार के लंबे तार इस तरह फैले हैं कि बातचीत करने में कुछ समय नहीं लगते। बटन दबाया कि बातचीत शुरू। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोबाइल के बारे में। बहुत ही कमाल की चीज है यह मोबाइल। जिस तरह से मोबाइल आज 5 में से हर 3रे और 4थे आदमी के हाथ में है, वह चौंकाने वाला है। इस मोबाइल ने दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। समय की गति को इसने बढ़ा दिया है। संचार के जितने भी साधन आज उपलब्ध हैं, उनमें मोबाइल का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। साइकिल से लेकर कार वाले तक सबके पास मोबाइल होता है। मोबाइल के बारे में कहा जाए कि यह आज सबकी जरूरत बन गई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बिना किसी का काम पूरा नहीं होता और न ही किसी काम में सफलता मिलती है। या बगैर मोबाइल के सफलता मिल गई कहें तो यह भी असंभव है। इतनी सख्त जरूरत है सबको मोबाइल की। मोबाइल जरूरत भी है और काम की पूर्णता भी है। साथियों, मोबाइल के लाभ के बारे में सोचे तो लाभ ही लाभ है। इसके बिना कोई भी काम अधूरा ही माना जाएगा। इतने ज्यादा फायदे हैं इसके। फिर भी मोबाइल से हानि भी बहुत है। आप कहेंगे, बेचारा मोबाइल तो सफलता की पूंजी बन चुका है, फिर कैसे कह सकते हैं कि मोबाइल से कुछ हानियां भी हैं? हैं दोस्तों, हानियां भी हैं। आप तो जानते ही हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक लाभ और दूसरा हानि। जहां लाभ है वहां हानि भी है। कई घरों से ये शिकायत आ रही है कि इससे पति पत्नी के आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं। मोबाइल के कारण पति पत्नी में परस्पर प्रेमपूर्ण बातें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि पति जब ऑफिस से घर आते हैं, पत्नी से बातें करने के बजाय वो अपने मोबाइल से ही लगे रहते हैं। पत्नी कुछ बोलना शुरू करती है कि फोन आ जाता है, फिर वह कुछ पति से पूछना चाहती है तो फिर फोन की घंटी बज उठती है। बेचारी पत्नी तंग आ जाती है। अब भाई करे तो क्या करे। मोबाइल में पति द्वारा लगातार बातचीत ने पत्नी का जीना हराम कर रखा है। वह अपने पति से इस वजह आज बहुत हैरान परेशान दिखती है। मोबाइल के बढ़ते प्रचलन से वाकई में पति पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ने लगे हैं। ऐसे अनेक किस्से हैं जिससे लगता है कि रिश्तों की बुनियाद कमजोर होने लगी है। अब श्रीमती माला को ही लें। माला से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि मोबाइल आज की तारीख में जीवन का एक अंग बन चुका है, परंतु गुस्सा तब आता है जब पति महोदय ऑफिस से घर आते हैं तो लगातार मोबाइल से बातें करते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि घर आकर घर का हालचाल पूछ लें, बच्चों के बारे में पूछ लें कि कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, घर का कामकाज कैसा रहा। ये सब पूछने के बजाय वे अपने दोनों कानों में मोबाइल पूरे समय लगाए रखते हैं। हमें कोई साधारण सी बात पूछने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब बात खत्म होगी तब बात खत्म होगी, पर बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। फिर क्या है, मौका मिलते ही मैं उन पर उबल पड़ती हूँ। फिर पति जी भी शुरू हो जाते हैं। इस तरह मोबाइल के कारण आए दिन हम दोनों में कहा सुनी होती रहती है। मुझे पता है कि मोबाइल बहुत काम की चीज है, पर मुझे मोबाइल से चिढ़ होने लगी है। मैं तो उसे सौतन कहती हूँ, सौतन, और सचमुच मेरे अंदर सौतिया डहा है। रेखा के पति ऑफिस से घर आए, नहाने के लिए जैसे ही वे बाथरूम में गए, रेखा चुपचाप पति के मोबाइल में वो सब कुछ देखने लगी कि उसके पति ने दिन भर क्या क्या किया, किस किस से बातें की, किसका मैसेज या संदेश आया, किसका एसएमएस आया, या उसका रोज का काम था। पति मोबाइल छोड़ इधर उधर होते कि रेखा ढूंढने लगती कि किसी महिला या लड़की का फोन तो नहीं आया था। एक दिन सचमुच एक लड़की का मैसेज उसे मिला मोबाइल पर। उसमें लिखा था, तुम मिलो तो हम मिलेंगे, तुम आगे बढ़ो तो हम आगे बढ़ेंगे, तुम रुको तो हम रुकेंगे, इस तरह के कुछ संदेश थे। यह पढ़कर अब तो रेखा से रहा नहीं गया। गुस्से से लाल पीली आखिर वह पति से पूछ ही बैठी, ये लड़की कौन है जिसने तुमको ऐसा मैसेज भेजा है? तुमसे उसका क्या संबंध है? क्या काम करती है? ऐसा सवाल सुनकर रेखा के पति तो हक्के बक्के रह गए। उसे अपनी पत्नी पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, मेरे पीठ पीछे यह मेरा मोबाइल टटोलती रहती है। उसके पति ने गुस्से से जवाब दिया, क्या ऑफिस में महिला काम नहीं करती? लेकिन रेखा का कहना था, इस तरह का कोई मैसेज भेजता है? ऐसा मैसेज तो प्रेमी प्रेमिका ही एक दूसरे को भेज सकते हैं। इस खींचतान में दोनों के बीच में खूब झगड़े हुए। बात इतनी बढ़ गई कि रेखा ने पति से अलग रहने का मन बना लिया। दोनों की गृहस्थी पल भर में उजड़ गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के कारण। दोस्तों, ये सारी बातें घटनाएं बिल्कुल सही हैं। इसी तरह मानसी ने पति के मोबाइल में कुछ ऐसे तस्वीर देखे जिससे उसका पति से पूरा भरोसा और विश्वास ही उठ गया। आपत्तिजनक तस्वीर से मानसी की दिमागी हालत भी कुछ समय के लिए गड़बड़ा गई थी, पर किसी तरह उसने अपने आप को संभाल लिया। अब परिस्थितियां भी पूरी तरह बदल चुकी थीं। वे दोनों एक घर में साथ साथ तो रहते हैं, पर एक दूसरे से बातें नहीं करते। कोई किसी को पसंद करता है या नापसंद करता है, पर कोई रोक टोक नहीं करते। दोनों अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। मानसी और उसके पति ने केवल एक छत के नीचे रहने का फैसला इसलिए लिया कि ताकि बच्चों का भविष्य बिगड़े नहीं, बल्कि उनका भविष्य उज्ज्वल बने। साथियों, मोबाइल के कारण घर परिवार टूटने के अनेक किस्से कहानियां आप सुन सकते हैं। पति द्वारा मोबाइल में घंटों बातें करना महिलाओं को बहुत चुभता है, उन्हें टीस पहुंचाता है। इसी तरह पत्नी भी अगर नौकरी पेशा है और मोबाइल पर लगातार बातें करती है तो पति भी उसे शक की निगाह से देखता है। अंदर ही अंदर पति जल भुन जाता है। तो साथियों, युग संचार ने विकास की ऊंचाइयों को छुआ जरूर है, वहीं रिश्तों को बिगाड़ने में मोबाइल के हाथ भी लंबे होते जा रहे हैं। संचार के साधन मोबाइल सुविधा तो देते हैं, पर सुख नहीं। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि पति पत्नी दोनों को मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना होगा। जहां जरूरत है वहीं बातें करें, और लगातार अनावश्यक बातें, वो भी घर के अंदर, इससे तो दूर रहना ही उचित है। साथियों, मोबाइल आपकी सुविधा के लिए बनी है, संचार की सुविधा है, बातचीत की सुविधा है, तरक्की की सुविधा है। इसके लिए ये मोबाइल बनाया गया है और इसका आविष्कार हुआ है। तो आप मोबाइल पर उतना ही बातें करें जिससे कि आपकी पत्नी चिढ़े नहीं या आपका पति नाराज न हो।
0: श्रोता साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिससे प्रस्तुत कर रही थी भवानी कौल, और इनकी वार्ता का विषय था रिश्तों में दरारों को बढ़ावा देता मोबाइल, और यह प्रस्तुति थी सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। प्रस्तुत करता है फादर हरमन बंडोड SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते हैं वार्ता जिसका शीर्षक है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मित्रों, गरीब लोग अगर कहीं 2 जून की रोटी कमाने जाए और वहां से भी उन्हें भगाया जाए तो उनके पास विकल्प कम ही बचते हैं। ऐसे में पहले से ही देश के लिए नासूर बने नक्सलवाद को बल मिल सकता है। ये लोग हथियार उठा सकते हैं और फिर उनके भयावह नतीजों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त प्रभुत्व समझे जाने वाले कई लोगों ने यह घोषणा की थी कि विविधताओं के इस देश का बिखरना तय है। सीधे तौर पर देखे तो आज उनकी बात असत्य मालूम पड़ती है, पर अगर गहराई से जाकर समझा जाए तो यह समझने में देर नहीं लगती कि भले ही देश न टूटा हो लेकिन धर्म जाति आदि के नाम पर समाज बटा जरूर है। सियासतदान समय समय पर धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति की रोटी सेकते रहे हैं। फिरका परिस्थिति के लिए अब भाषा और क्षेत्र को भी हथियार बनाया जा रहा है। हाल ही में राज ठाकरे के इशारे पर देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में मराठी अस्मिता के नाम पर उपद्रव मचाया गया। असम में दर्जनों हिंदी भाषी मजदूरों की हत्या भी क्षेत्रीयता के नाम पर ही की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और यहां के उपराज्यपाल को भी बिहारियों और उत्तर प्रदेश वालों का देश की राजधानी में रहना नहीं सुहाता है। दक्षिण भारत में क्षेत्रवाद का इतिहास काफी पुराना है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्षेत्रवाद की इस आंधी में राष्ट्रवाद का क्या होगा। मन में यह शंका भी पैदा होती है कि विविधताओं को खुद में समेटने वाला यह देश बिखराव की राह तो नहीं चल पड़ा है। मित्रों, अब जब संसदीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हमारे देश की कुछ सियासी पार्टियां और कुछ राजनेता कुर्सी पाने के खातिर जिस प्रकार की गंदी राजनीति पर उतारू हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद छोटी जाति बड़ी जातियों में हमें बांटकर हम भारतवासियों के दिलों में जिस प्रकार ये लोग नफरत का जहर भर रहे हैं वो निसंदेह हमारे देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस धर्म की राजनीति का सबसे बुरा प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। आज से 10-20 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम सब लोग तमाम त्योहार और शादी विवाह की रस्में मिलजुल कर मनाते थे। गांव और कस्बों में शाम को चौपालें सजती थी। हुक्के की गुड़गड़ाहट के बीच सांग और लोकगीतों की धुनों के बीच लोग प्यार सौहार्द के साथ ईद दिवाली दशहरा होली का गुलाल खेलते थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। गांव के हर एक बुजुर्ग का युवा पीढ़ी सम्मान करती थी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। आज राह से पूरी तरह भटकी हुई सत्ता के भूखे भेड़िये रूपी राजनेताओं की इस दौर की राजनीति ने फिजा में किस तरह सांप्रदायिक जहर भर दिया है। गांव और कस्बों की बात तो छोड़िए, आज एक ही घर में सिर्फ कुर्सी के कारण भाई भाई के खून का प्यासा हो गया है, बाप बेटे का और बेटा बाप के खून का प्यासा है। पर आज भी हमारे मुल्क कश्मीर घाटी में जिस मुगल बादशाह शाहजहां ने जन्नत का खिताब दिया था, ये जन्नत भी गंदी राजनीति के कारण दोखज बन गई है। इस घाटी में उगने वाले तमाम खूबसूरत फूलों को बारूद के धुएं ने काला और बदरंग बना दिया है। इस सब के बावजूद आज भी देश में ऐसी तमाम मिसालें हम भारतवासियों की ओर से सुनने को मिलती हैं, जिसे सुनकर अमन पसंद लोगों का सीना गर्व से फूल जाता है। मित्रों, ऐसी ही एक मिसाल कश्मीर घाटी के पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे स्थित 900 वर्ष प्राचीन शिव मंदिर में आज भी देखने को मिलती है, जिसके पुजारी मुस्लिम हैं। कश्मीर घाटी का यूं तो ये एकमात्र ही मंदिर है। इस मंदिर का संचालन लंबे समय से पंडित राधाकृष्ण के नेतृत्व में स्थानीय कश्मीर पंडित संघ किया करता था, लेकिन 1989 में हिंदू कश्मीर पंडितों को कश्मीरी आतंकवाद के चलते कश्मीर छोड़ना पड़ा। कश्मीर छोड़ने से पूर्व पंडित जी ने पास के गांव में रहने वाले एक मुस्लिम मित्र अब्दुल भट्ट को मंदिर का पूरा दायित्व
यह कहकर दिया था कि तुम रोज मंदिर के दरवाजे खोलकर इसकी साफ सफाई कर दिया करना। और वायदे के मुताबिक अब्दुल बट ने वर्ष 2004 में हुए तबादले के पहले तक रोज मंदिर की देखरेख करना और उसका दरवाजा खोलना और बंद करना जारी रखा। अब्दुल बट के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन ने इस ममालक मंदिर की जिम्मेदारी जब से ली है, तब से आज तक मंदिर के दरवाजे को बंद नहीं होने दिया। इस मंदिर के घंटियों को बजने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन का कहना है कि हम केवल मंदिर की देखरेख ही नहीं करते, बल्कि रोज मंदिर में आरती भी करते हैं। मंदिर में स्थित 3 फुट ऊंचे शिवलिंग की सुरक्षा का ही सिर्फ ध्यान नहीं रखते, बल्कि मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन रोजाना ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी श्रद्धालु मंदिर से प्रसाद लिए बगैर न चला जाए। राजा जयसूर्या द्वारा निर्मित इस मंदिर का महत्व एक समय ऐसा था कि कोई भी अमरनाथ यात्री इस मंदिर के दर्शन किए बगैर अपनी आगे की यात्रा शुरू नहीं करता था। दरअसल मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन मंदिर की सेवा ही नहीं करते, बल्कि भगवान शिव में अपार आस्था भी रखते हैं। इनके द्वारा मंदिर के अंदर समय समय पर मरम्मत की जाती है। मंदिर का तमाम काम ये लोग आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद सुचारू रूप से चला रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन ने यूं तो कश्मीरी पंडितों के इस मंदिर की सुरक्षा हेतु हर एक जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है, फिर भी ये लोग चाहते हैं कि इस मंदिर के असली हकदार कश्मीरी पंडित लौट आए और अपने इस मंदिर की तमाम जिम्मेदारियां फिर से संभाल ले। मित्रों, इस सुंदर और अनोखे शिव मंदिर में गणेश, पार्वती और हनुमान की मूर्तियां भी स्थापित हैं। और इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर कलकल करता एक दुधिया झरना भी बहता है। पिछले 4 वर्षों में इस मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। इन श्रद्धालुओं में अब वो लोग भी शामिल हैं जो यहां से अपने अपने घर और ये मंदिर छोड़कर चले गए थे, पर अब ये लोग एक पर्यटक के रूप में इस मंदिर के दर्शन करने आया करते हैं। 900 वर्ष पुराने इस शिव मंदिर की देखरेख करते इन मुस्लिम पुजारियों द्वारा नियमित रूप से मंदिर में आरती की जाती है और श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा जाता है। मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन की मेहनत और आस्था देखकर हिंदू श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बनती है। दर्शन के साथ साथ कुछ श्रद्धालु मोहम्मद अब्दुल्ला और गुलाम हसन के दर्शन कर पांव छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी तमाम मिसालें फिरका परस्त लोगों के मुंह पर बार बार तमाचे मारती है, पर कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह ये राह से भटके कुछ राजनेता और कुछ धर्म के ठेकेदार फिर भी सीधे नहीं हो पा रहे हैं। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। प्रस्तुतकर्ता थे फादर हनुमान बंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति को भुनाइए मत, और प्रस्तुत करता है भवानी कॉल।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत वार्ता सुनिए, नारी शक्ति को भुनाइए मत। साथियों, बहुत दिनों बाद कविता अपनी प्रिय सहेली अनीता के घर आई थी। न जाने कितने समय बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिल रही थीं। अनीता जहां कविता के आने से खुश थी, वहीं कविता कुछ दुखी दिख रही थी। उसे अनीता से मिलने की खुशी तो थी, पर चेहरे में उसके अंदर की भावनाएं साफ झलक रही थीं। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, फिर चाय पानी का दौर चला। अनीता अपने ससुराल में अपने पति व बच्चों के साथ खुश थी, यानी उसका जीवन हंसी खुशी से भरा पूरा था। अनीता कविता से चहकते हुए बतिया रही थी, जबकि कविता बुझी बुझी थी। आखिर में खाने का समय हो चला था। चूंकि अनीता काफी समझदार महिला थी, उसने अपनी सहेली के मन की बात ताड़ ली। अनीता कविता से पूछने लगी, अच्छा बता कविता, तुम कॉलेज के दिनों में खूब हंसती थी, खूब मस्ती करती थी। तुम्हारी ठाके वाली हंसी पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थी, पूरे कॉलेज में गूंजा करती थी। यहां तक कि जब तुम जोर जोर से हंसती थी, तब प्रोफेसरों को भी पता चल जाता था कि कविता हंस रही है। तुम्हारा साथ पाने के लिए सारी सहेलियां तरसती थीं, क्योंकि तुम फोकट में सबको हंसाती थी। कॉलेज वाली जिंदगी कितनी मजेदार और खुशनुमा थी। और कभी कभी तो ऐसा लगता है, काश कॉलेज वाली जिंदगी दोबारा मिल जाती। क्यों कविता, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कविता बोली, लगता तो है, पर सब कुछ अपने वश में नहीं होता। तुम तो बात बात में हंसती थी, आज तुम्हें क्या हो गया? शादी होते ही तुम हंसना भूल गई? कविता अपनी उस प्रिय सहेली के सामने रो पड़ी, कहने लगी, हाँ हाँ अनीता, मैं अब हंसना भूल चुकी हूँ। हंसना तो क्या, मुस्कुराना भी भूल गई हूँ। मेरा जीवन कांटों से भरा पड़ा है। मेरा पति कमाता बहुत अच्छा है, 50-60 हजार महीने में कमाता है। खाते पीते घूमते फिरते सब है, पर छोटी छोटी बातों में वो मुझे लताड़ते हैं, ताने मारते हैं, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। बच्चे जब छोटे थे तब तक सब ठीक था, लेकिन बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों के सामने वो मुझे गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। गुस्से के मारे घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं, चीजों को तोड़ना फोड़ना आए दिन की बात है। और उनसे कोई जवाब तलब करे तो और अधिक तोड़ फोड़ करते हैं। इतना ही नहीं, शराब पीकर सारा गुब्बार निकालते हैं। खूब शराब पीना और गाली गलौज करना जैसे उसकी आदत बन गई है। इतना ही काफी नहीं, वो हर वक्त घर से निकल जाने की बात कहते हैं, तलाक लेने की बात कहते हैं। सचमुच साथियों, हमारे समाज में ऐसी बहुत सी कविता होंगी जो इस तरह की घटनाओं की, पति उत्पीड़न की शिकार होती होंगी। न जाने कितनी महिलाएं या नारियां होंगी जिन्होंने अपने आप को ऐसी खाई में झोंक दी है। कभी वे हंसमुख एवं खुशियों के पल से लबरेज हुआ करती थीं, खुशी और उमंग जिसके आसपास घूमती थी। पर शादी के बाद का जीवन कैसा नारकीय बन जाता है। कविता जैसी अनेक नारियां बहुत महत्वाकांक्षी होती हैं। आगे बढ़ने का, तरक्की करने का उन्हें बड़ा शौक होता है। वो भी पति की तरह आगे बढ़ना चाहती हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहती हैं। अपनी मेहनत के बल पर नारियां आज कहां से कहां पहुंच चुकी हैं। पर कुछ महिलाएं अपने बच्चों के खातिर, अपने पति के खातिर, अपने परिवार के खातिर और उनको भरपूर समय देने के लिए उसी कारण अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देती हैं। खुद के कैरियर का ध्यान
अपने दिमाग से निकाल देती हैं ताकि वे परिवार का हर वक्त साथ दे सकें। सुबह से लेकर शाम तक खटने वाली नारी को कब तक, आखिर कब तक ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, नहीं मालूम। इसका कोई अंत नहीं दिखता। साथियों, हम लोग हमेशा गरीब नारियों को इस तरह की समस्याओं से जूझते हुए देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज पढ़े लिखे आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों में भी नारियां ऐसी कष्टदायक स्थिति से अछूती नहीं हैं। सुशिक्षित एवं बुद्धिमान नारियां पति की गंदी गालियां सहती हैं, यहां तक भी मार भी सहती हैं। इस तरह के तमाम मानसिक एवं शारीरिक तनाव को झेलने वाली नारी सिर्फ अपने बच्चों के मुंह के कारण पति के घर से बाहर नहीं निकलती हैं। महिला को बार बार घर से बाहर भागने के लिए मजबूर करना अत्यंत पीड़ादायक है। दोस्तों, ऐसी नारी जो दिन रात परिवार की सेवा करती है, पति व बच्चों की देखभाल में सारा समय लगा देती है, इसके परिणाम स्वरूप उसे क्या मिलता है? बच्चों के जन्म से लालन पालन तक, पति को तैयार कर ऑफिस भेजने तक लगातार उसकी भूमिका जारी रहती है। उसके बाद सास ससुर की खातिरदारी एवं उनकी देखरेख, दिन भर का उसका यही कार्यक्रम चलता रहता है। अब कई नारियां हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का शौक होता है, पर वो जिम्मेदारियां

मानसिकता को भावनाओं को समझती है। आपके बच्चे व परिवार के सुख दुख में बराबर साथ निभाती है। दुख के क्षणों में हमदर्द बनकर खड़ी रहती है। ऐसी नारी को तलाक देने, प्रताड़ित करने व ताने मारने की बात करना भला कहाँ तक उचित है? तो नारी शक्ति को भुनाइए मत, उसे संभाल कर रखिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नारी शक्ति को भुनाइए मत, और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rvasatyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है मन दर्पण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मन क्यों सोचता है ऐसे। इस वार्ता के लेखक हैं कृष्ण कांत दुबे और प्रस्तुत करता है भवानी कौल।

मन दर्पण वार्ता सुनिए। मन क्यों सोचता ऐसे, लेखक हैं कृष्णकांत दुबे। एक दोपहर जब मैंने उस आम वृक्ष की ओर देखा तो लगा उसमें मंजरियों का जन्म होने लगा है। वह वृक्ष अपनी कुछ रंगत बदल रहा है। उसी आम वृक्ष के पास खड़े उस ग्रामवासी युवा से मैंने कहा, वसंत आ रहा है। उसने मेरे कहे पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मेरी बात सुनकर भी अनासक्त सा खड़ा रहा। लगा प्रकृति में वसंत आ रहा है, उसमें उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वह वहां खड़े हो खेत में लहराती गेहूं फसल को देख रहा था। मैंने सोचा शायद उसमें उसकी विशेष रुचि हो। इस पर मैंने फिर कहा, सुनो इस बार गेहूं फसल समझो ठीक ठाक ही है। मेरी इस बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर मैंने उसके चेहरे की ओर गौर से देखा तो लगा शायद कोई दुख है, कोई संतरास है जो उसे घेरे हुए है, या शायद कोई गहरा अवसाद है जिसे वह भोग रहा है। जब मैंने गौर से उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें उसकी गवाह थीं। वे यही कह रही थीं, आप मेरे अंतर में झांक कर देखें तो आपको यही लगेगा, हजार दर्द है जिसे मैं अपने मन दर्पण में छुपाए बैठा हूं। याद रखें यह सामान्य दर्पण नहीं जिसमें देख आप हट जाएं तो आपकी छाया भी उससे लोप हो जाती है। यह तो मन दर्पण है, इसमें जिसकी भी छवि एक बार अंकित हुई फिर वह मिटती नहीं, स्थायी हो जाती है, फिर उससे निजात पाना मुश्किल है। एक बार अंकित हो गई सो हो गई बस। जी हाँ, यही आज का मानुष सत्य और समाज का सत्य है। चाहे गांव हो या शहर या फिर महानगर हो, आज हर कहीं दुख ही लहरे हैं जो हर मन में निरंतर हरहरा रही है। आप हर कहीं इस अनुभव को पा जाएंगे, उसे अपने में भी महसूस करेंगे। और मैंने तब इस विषय में सोचा, चिंतन किया और तब वर्षों पहले पढ़ी एक कविता की कुछ पंक्तियां मन में जैसे उभर आई, जो आज की सामाजिक व्यथा की सीधी बयानी है। एक काला दरवाजा, उसके भीतर बन बिलाऊं का रुदन, ऐसा यथार्थ हमें सहना पड़ता है। और यह यथार्थ आज का है जिसे आज का मनुष्य लगातार भोगने को विवश है। क्यों है ऐसा कि आज हर व्यक्ति यह महसूस करने लगा है कि उसके दुख पहले से कहीं अधिक बढ़ गए हैं। उन दुखों की छाया दिन प्रतिदिन और अधिक गहरी और अधिक लंबी होती जा रही है। क्यों है ऐसा कि आज उसके विस्तार को रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है। आज बहुत से लोग कुछ यही सोचते हैं, वे सभी इसी दौर से गुजर रहे हैं। पर अगर आप इसके कारण को देखने की कोशिश करें, उसे गहराई से सोचें, तो पाएंगे कहीं ये दुख की दीवारें खुद उन्होंने अपने हाथों तैयार तो नहीं की है, या वे ही इस दुख विस्तार के कारणों में स्वयं भागीदारी तो नहीं निभा रहे हैं। हमें इस सच से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि वर्तमान में हमारे सामुदायिक सोच में भी कई कई दोष आ गए हैं। आज कुछ ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया गया है कि हर व्यक्ति केवल अपने ही हित के बारे में सोचने लगा है। आज तो लगातार यह स्थिति बनती जा रही है कि किसी को भी न अपने पड़ोस से, न समाज समुदाय से, न गांव नगर से, न राज्य, न देश, न विश्व से स्नेह है, न वह इस संदर्भ में कभी कोई चिंता करता है, न उसके प्रति कहीं कोई संवेदना है, न ही कोई उचित सोच। आज तो स्थिति यह है कि कितनों को इस बात की परवाह है कि उसके अपने कार्यकलाप से दूसरों को भी कहीं कोई कष्ट हो रहा है, जब अधिकांश इसी लहर में बहे जा रहे हैं, वे यही कुछ कर रहे हैं तो निश्चित है कष्टों का विस्तार होगा ही, वे बढ़ेंगे ही और सारा समाज उस स्थिति से उत्पन्न दुख झेलेगा ही। साथियों, आज हर व्यक्ति का करीब करीब यही सोच बनता जा रहा है। इनमें पढ़े लिखे की संख्या
सबसे अधिक है कि उन्हीं के पास सारे सुख हों, सुख के सारे साधन हों, सब कुछ आधुनिक हो, एकदम आज के हों। जो विज्ञापनों में गूंजते या दिखाई देते वे सभी कुछ हों, किसी भी तरह का कोई कष्ट कोई दुख न हो। ऐसे में भला वह दूसरों की क्यों परवाह करे, क्यों देखे दूसरों के कष्ट दूसरों के दुख। बस उन्हें तो सिर्फ अपना देखना है और अधिक से अधिक देखना है, तो सिर्फ अपने परिवार को इससे आगे उनकी अपनी कोई सोच सीमा नहीं। अधिकांश व्यक्ति हर कहीं अपनी छवि बनाने की ही कोशिशों में जुटा मिलेगा। वह यह नहीं सोचता कि उसके कार्यकलाप उसकी अपनी गतिविधियां दूसरों के लिए भी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आज आप गांव हो या कस्बे या नगर या महानगर, एक बात वहां की सड़कों पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जल्दी में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश में अधिकांश व्यक्ति अपने अपने वाहन को जिस गति से दौड़ाते भगाते हैं कि पूछो नहीं। वे इस बात को देखने की कोशिश तक नहीं करते कि उससे दूसरों को कितना कष्ट हो रहा है। इससे कभी कभी भयंकर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें कई की जीवन लीला तक समाप्त हो जाती है। ऐसे में कुछ घरों में जिंदगी तबाह हो जाती है। क्या कभी वे लोग सोचते हैं इस विषय में? शायद नहीं। अगर वे इस संदर्भ में सोच लें तो ये सब कुछ नहीं हो, पर आज यह सोच किसके पास है? साथियों, हम यह भी नहीं भूलें कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोग अपने वाहनों में जिस घटिया किस्म के ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, यह जानते हुए कि इससे वातावरण में प्रदूषण फैलेगा, लोगों को सांस लेने में कठिनाई होगी, तकलीफ होगी। जो लोग श्वास रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए तो यह बेहद पीड़ादायक होगा, फिर भी वे ऐसा करते हैं। आप इसे क्या कहेंगे और इस प्रदूषण का आगे क्या परिणाम होगा, वे इसे भी जानते हैं, फिर भी यह सब कुछ हमारे यहाँ घटित हो रहा है। आज हर सूचना तंत्र हर बार प्रदूषण से होने वाली हर तरह की हानि की सूचनाएं प्रकाशित प्रसारित करता है, फिर भी इस दिशा में कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। यही नहीं, वे बताते हैं गांवों, नगरों, महानगरों में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके कितने भयावह परिणाम हो रहे हैं। वे यह भी बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जाए, इसकी भी दिशा देते हैं। पर यह बात सभी जानते हैं कि बावजूद इसके सबके पर्यावरण संरक्षण की कहीं कोई चेतना दिखाई नहीं देती, बल्कि हो या रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी महत्वपूर्ण संसाधन हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिर पर्यावरण संरक्षण कहां होगा? तब उससे होने वाली हानि को कौन रोकेगा? 5 सितारा होटलों में होने वाले सेमिनारों में इस संदर्भ में जरूर चर्चाएं होती हैं, लेकिन वही लोग जो वहां पर्यावरण संरक्षण का समर्थन सुंदर भाषा शैली में करते हैं और वे ही लोग बाहर आकर खुद उसके दोषी बन जाते हैं। तो साथियों, ऐसा लगता है और भले लोग सोचने लगते हैं, यह सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लोगों के मन दर्पण पर कालिमा पसरती जा रही है, क्यों मन हो रहे हैं ऐसे। ऐसे में बस मुंह से एक ही प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था मन क्यों सोचता है ऐसे। इस वार्ता के लेखक थे कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता थी भवानी कौल। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इस जानकारी से कुछ लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारिणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है कार्यक्रम पर्यावरण। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम पर्यावरण में, जिसका शीर्षक है हो जाए कॉफी। इस वार्ता की लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता है समता खानचंदानी।

पर्यावरण के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है हो जाए कॉफी। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता कामचंदन। श्रोता साथियों, आप सभी को समता का प्यार वाला नमस्कार। दोस्तों, क्या आपका भी गर्मी के मारे बुरा हाल है और गला सूख रहा है? मेरा भी हाल आपके ही जैसा है और मुझे ठंडी कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, क्या कहा, आपको भी कॉफी पसंद है? अरे साथियों, कॉफी तो दुनिया भर में बहुत पसंद की जाती है। आपको बता दूं कि दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में कॉफी का नाम दूसरे स्थान पे आता है और चाय से ज्यादा दुनिया में कॉफी के दीवाने हैं। बरिस्ता, कैफे कॉफी डे, कॉफी हाउस, कोस्टा और कैरेबियन कॉफी जैसे कॉफी बेचने वाले शॉप भी दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्हें इतनी शोहरत कॉफी ने ही तो दिलाई है। दोस्तों, वैसे आप बताइए, आपको ठंडी कॉफी पसंद है या गर्म? आपको बताऊं कि कैपेचिनो कॉफी, इंस्टेंट कॉफी, एस्प्रो कॉफी, अरबी कॉफी या दक्षिण भारत की फिल्टर कॉफी, सभी का स्वाद अपने आप में निराला है। चलिए दोस्तों, कॉफी के साथ कॉफी की यात्रा पर चलते हैं। पहले पहल कॉफी इथियोपिया में पाई गई थी। कुछ कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति का स्थान यमन है, पर कुल मिलाकर सबसे पहले अरब देशों में कॉफी लोकप्रिय हुई। दोस्तों, ये 13वीं शताब्दी की बात है। उस समय इस्लाम में अल्कोहल पर पाबंदी थी और शायद इसी कारण लोगों का रुझान कॉफी के प्रति बहुत बढ़ गया। 16वीं शताब्दी तक कॉफी का उत्पादन अरब देशों में बड़े खुफिया तरीके से किया जाता था। यहाँ तक कि उपजाऊ कॉफी के बीज अरब देशों के बाहर मिलते ही नहीं थे। 1650 में कॉफी इंग्लैंड आ गई और ऑक्सफर्ड व लंदन में कॉफी की दुकानें भी खुल गई। हैरत की बात तो यह है दोस्तों कि जहाँ 16वीं शताब्दी तक कॉफी का उत्पादन केवल अरब देशों में ही किया जाता था, वहीं 19वीं शताब्दी में कॉफी का 80% उत्पादन केवल अकेले ब्राजील ने किया। कितनी जल्दी लोकप्रिय हुई होगी ना दोस्तों। भारत में भी कॉफी चोरी चोरी 16वीं शताब्दी में ही आई। अब तो करीब 70 देशों में कॉफी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब इसके पेड़ के बारे में कुछ बातें जान लें। कॉफी का पेड़ करीब 10 से 12 फुट लंबा होता है और इसको आमतौर पर झाड़ यानी शर्द भी कहा जाता है। 3 से 5 वर्ष की आयु के झाड़ पर फलाना शुरू हो जाते हैं और लगभग 50 वर्षों तक यह पेड़ उपजाऊ रहता है। इसके फल को कॉफी बीन्स कहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि फल मिल गया यानी बस मिल गई कॉफी, तो दोस्तों आप गलत हैं। कॉफी बीन्स से कॉफी निकालना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले कॉफी के दानों को तोड़कर उसमें से नरम पदार्थ जिसे कि पल्प कहा जाता है उसे निकाला जाता है। इसके पश्चात कॉफी के बीजों से निकले पल्प को 36 घंटे पानी में भिगोकर रखा जाता है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इससे कॉफी में कुछ रासायनिक बदलाव हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें धोकर सुखाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है दोस्तों, लेकिन इसी मेहनत और समय के कारण कॉफी का स्वाद लाजवाब बन जाता है। कॉफी की दो प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कैफिया अरेबिका सबसे पुरानी प्रजाति है। दोस्तों, इसकी उत्पत्ति का स्थान इथियोपिया था और वहीं से यह मिस्र और यूरोप होते हुए सारी दुनिया में फैली थी। लेकिन क्योंकि यह सबसे पहले अरब देशों में पसंद की गई, इसीलिए इसे अरेबिका नाम दिया गया। कॉफी की यह प्रजाति बेहद संवेदनशील थी और दोस्तों यह हर कहीं उग नहीं पाती थी। कॉफी की दूसरी प्रजाति कैफिया रोबस्टा ऐसे वातावरण में भी पनप सकती थी जहां अरेबिका नहीं उग पाती थी। यूं तो दोस्तों अब कॉफी की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन यही दो प्रजाति सबसे पुरानी और मुख्य है। कैफिया अरेबिका स्वाद और गुणवत्ता की दृष्टि से बेहतर है, परंतु कैफिया रोबस्टा में उससे 40 से 50% तक ज्यादा कैफीन होता है। दोस्तों, उगाने से लेकर पीसने तक हर कदम पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है। कॉफी के झाड़ पर बहुत से कीड़े लगने की आशंका हमेशा बनी रहती है और इसमें डाले जाने वाली खाद भी कॉफी की गुणवत्ता पर असर डालती है। इसके बाद कॉफी के पके हुए दानों को तोड़ना भी खासा मायने रखता है। यहाँ यदि सावधानी नहीं बरती गई, तो अच्छे पके दानों के साथ अधपके दानों के मिल जाने की संभावना हो जाती है और इससे सारी की सारी मेहनत पानी में मिल सकती है। एक एक दाना चुन चुन कर तोड़ा जाता है।
तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कॉफी इतनी महंगी क्यों मिलती है। खैर दोस्तों, आजकल कॉफी सिर्फ स्वाद के ही लिए नहीं पी जाती, कॉफी कैफीन का अच्छा स्रोत है। कैफीन एक उत्तेजक होता है जो हमारे दिमाग की नसों को सचेत करता है। साथ ही साथ दोस्तों, कॉफी में ऐसे कई सारे गुण हैं जिनका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कॉफी में कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो कि कैंसर जैसी बीमारी में फायदा पहुंचाते हैं। दोस्तों ये तो आपने खुद अनुभव किया होगा कि कॉफी पीने के बाद थकान से राहत मिल जाती है और कॉफी नींद भी भगा देती है। इसीलिए रात में जाकर पढ़ाई करने वाले बच्चों में कॉफी पीने का प्रचलन है। इससे न सिर्फ उनकी नींद उड़ जाती है बल्कि उनकी एकाग्रता भी बढ़ती है। इसी गुण के कारण कई दफ्तरों में काम के दौरान कॉफी ब्रेक दिया जाता है। साथ ही साथियों, कॉफी में कई औषधीय गुण भी होते हैं। यह दर्द निवारक दवाओं का असर बढ़ा देती है। जिनका रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है उन्हें भी तुरंत कॉफी पीने की सलाह दी जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं तो अक्सर ही कॉफी पीने के बहाने ढूंढती रहती हूँ। दोस्तों जिन्हें अस्थमा की शिकायत है उन्हें भी मैं कॉफी पीने की सलाह दूंगी, क्योंकि अस्थमा के रोगियों को भी कॉफी पीने से राहत महसूस होती है। हाल ही में साथियों, एक शोध ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कॉफी के साथ चीनी मिलाकर पीने से दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाए तो यह मेमोरी यानी कि याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ा देती है। खैर श्रोता साथियों, शोध तो और भी बहुत हुए कॉफी पर। जैसे कि एक शोध ये कहता है कि कॉफी का महिलाओं और पुरुषों पर असर अलग अलग होता है। कैपेचिनो या एस्प्रेसो कॉफी पीने से जहां महिलाओं का दिमाग तेजी से काम करने लगता है, वहीं पुरुषों पर इसका कोई खास असर नहीं होता। जो भी हो दोस्तों, लेकिन कॉफी दर्द में राहत तो निश्चय ही पहुंचाती है और इसी कारण दर्द निवारक दवाइयों में कैफीन का सम्मिश्रण दिया जाता है। कैफीन इन दवाओं के अवशोषण की क्षमता को बेहतर बनाता है और इसके दर्द निवारक असर को बढ़ा देता है। दोस्तों कई लोग ये भी दावा करते हैं कि कैफीन वाली कड़क कॉफी माइग्रेन में आराम देती है, और अगर शुरुआती दौर में ही इसे लिया जाए तो माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दोस्तों कॉफी का सेवन मधुमेह की बीमारी में भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉफी का सेवन मेलिटस टाइप 2 मधुमेह यानी कि डायबिटीज की संभावना को भी कम करता है, और तो और दिल के दौरे की गुंजाइश भी कॉफी पीने वालों में कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों इतने सारे औषधीय गुणों को जान लेने के बाद ऐसा मत कीजिएगा कि बस एक के बाद एक कॉफी के प्याले पे प्याले चढ़ाए जाएं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादा मात्रा में कॉफी पीने से नुकसान भी होता है। आखिर दोस्तों अति तो हर चीज की बुरी होती है ना। खास करके दोस्तों गर्भवती महिलाओं को तो कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि अधिक कैफीन पीने से गर्भपात का खतरा हो सकता है। मेरी राय तो यह है दोस्तों कि किसी भी चीज का अधिक सेवन अच्छा नहीं होता, इसीलिए कॉफी के एडिक्ट मत बन जाइए। जैसा कि आजकल का ट्रेंड हो चला है, चाय और कॉफी के बगैर तो लोग रह ही नहीं पाते। दोस्तों जो लोग कॉफी का स्वाद तो लेना चाहते हैं लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाले कैफीन का सेवन नहीं करना चाहते, उनके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। अब बाजार में डी कैफीनेटेड कॉफी भी उपलब्ध है जिसमें कैफीन की अधिकांश मात्रा निकाल दी जाती है। तो देखा दोस्तों, प्रकृति और पर्यावरण ने हमारी सेहत और हमारे स्वाद दोनों का हमेशा से ख्याल रखा है। तो चलिए ना, शुक्रिया अदा करते हैं पर्यावरण का एक कप कॉफी के साथ। तो चलिए एक एक कप कॉफी का प्याला पीते हैं और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर्यावरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था हो जाए कॉफी। इस वार्ता की लेखिका एवं प्रस्तुतकर्ता थी समता खानचंदानी। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को और रिकॉर्डिस्ट है आकाश चांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की सभा 2 से 3 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक स्वास्थ्य, बाल जगत और भक्ति गीत। दोस्तों, हम कार्यक्रम की शुरुआत से पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत्य प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, आप सुनते हैं कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: आदम और हेवा की बाग में रहने की खुशी ही सब कुछ नहीं था। बाग में एक पेड़ ऐसा भी था जो सब पेड़ों से अलग था और उसके फल मन को लुभाने वाले थे। वो पेड़ था जीवन वृक्ष का, जिसे भले और बुरे का ज्ञान कराने वाला कहा जाता था। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि ईश्वर ने आदम और हेवा से इसे छूने व खाने के लिए मना किया था, वरना वे मर जाएंगे। बेशक काफी दिनों से बाग में रहते हुए उन दोनों का मौत नामक वस्तु से या बला से साक्षात्कार नहीं हुआ था। वे नहीं जानते थे कि मौत क्या है। ईश्वर ने उन्हें ये पेड़ यही जानने के लिए दिया था कि वे उसकी आज्ञा मानते हैं या नहीं। एक रोज की बात है,
1: आदम, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले हम एक पहाड़ पर घूम रहे थे। हमने वहां से एक सुंदर नदी भी देखी थी। आदम, चलो ना, हम एक बार फिर वहां चलते हैं।
2: हेवा, नदी तो बहुत दूर है और फिर तुम तो चलते चलते थक जाती हो, नहीं घूमो? देखो, हमारा ये अदन बाग ही कितना सुंदर है।
1: वो तो है आदम, लेकिन मैं उस नदी में तैरना चाहती हूँ, उस पानी को छूना और उसमें खेलना चाहती हूँ। चलो ना, तुम वहाँ के पशु पक्षियों के साथ खेलना और घूमना, और मैं वहाँ के पानी में जी भर के तैरूंगी।
2: और अगर तैरते तैरते मेरी प्यारी हेवा को नदी बहा ले गई तो?
1: वो कैसे, ईश्वर ने तो मुझे तुम्हारे लिए ही बनाया है ना? नदी कैसे ले जाएगी मुझे?
2: नदी का पानी एक जगह रुका थोड़े ही रहता है, वो तो बहता रहता है। तुम बहके मुझसे दूर कहीं चली गई तो?
1: आदम, तुम हो तो सही मुझे बचाने के लिए।
2: और अगर उस समय मैं वहाँ ना रहा तो?
1: तो ठीक है आदम, हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकूंगी आदम। इस धरती पर हम दो ही तो हैं, और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो?
2: इसलिए तो कह रहा हूँ हेवा, आदन बाग बहुत सुंदर है, यहीं घूमो, रोज एक ना एक नई चीज देखने को मिलती है।
1: आदम, तुम भी चलो ना।
2: तुम जाओ हेवा, कुछ अच्छी चीज देखे तो मुझे आवाज देना, और सुनो, उस पेड़ से दूर रहना।
1: अच्छा। कितना सुंदर पेड़ है, देखो इसके फल भी कितने सुंदर हैं। भला है कहीं ऐसा फल? न तो कहीं ऐसा फल है और न पेड़ ही। पता नहीं ईश्वर ने इन्हें खाने से मना क्यों किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये फल खाऊं और आदम से दूर हो जाऊं, या आदम खाए और मुझसे दूर हो जाए? पर दूर कैसे? उन्होंने तो कहा है मर जाओगे। ये मरना क्या होता है? आदम भी कहता है उस पेड़ तक न जाओ, उस फल को न छुओ। आखिर ईश्वर ने हमें मना क्यों किया है?
0: मना?

0: हे वाह, क्या सोच रही हो?
1: अरे ये कितना सुंदर जीव, पर ये तो हमारे जैसा बोलता है।
0: हे वाह, हे वाह, क्या हुआ?
1: कौन हो तुम?
0: अरे छोड़ो छोड़ो, ये बताओ तुम इन फलों के बारे में क्या सोच रही हो हेवा?
1: मैं इन्हीं के बारे में सोच रही हूँ, पर तुम बताओ तुम कौन हो?
0: मैं शैतान हूँ, शैतान। शैतान, तो तुम सोच रही हो ना ये कितने सुंदर हैं?
1: हाँ।
0: तो इसमें घबराना कैसा? तुम इन्हें खाकर क्यों नहीं देखती हेवा?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं तो इन्हें छूना भी नहीं चाहती।
0: क्यों? क्या ईश्वर ने तुम्हें इस बाग के किसी भी पेड़ का फल खाने से मना कर रखा है हेवा?
1: नहीं, हम इस बाग के और तो सभी पेड़ों के फल खा सकते हैं, पर इस पेड़ के लिए उन्होंने कहा है कि इसके फल खाने पर हम मर जाएंगे।
0: नहीं हेवा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मरोगी नहीं। पता है, ईश्वर जानता है कि जिस क्षण भी तुमने ये फल खाया तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। तुम्हें भी अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा।
1: पर तुम्हें कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने इस पेड़ का फल खाया है और अब मैं तुम्हारे समान बोल सकता हूँ।
1: लेकिन
0: हेवा, हेवा, तुम बहुत सुंदर हो लेकिन बड़ी भोली हो, बहुत भोली हो। थोड़ी होशियार बनो, बुद्धू नहीं।
1: वो कैसे?
0: अरे जब तुम इस पेड़ का फल खाओगी तो सुंदरता के साथ साथ तुम्हें होशियारी भी आएगी, तुम बुद्धिमान हो जाओगी ईश्वर के समान। हेवा, हेवा, लो मैं तुम्हारे लिए ये फल तोड़ता हूँ। लो लो खाओ हेवा, लो लो, डरती क्यों हो?
1: इसकी तो खुशबू भी बहुत ही अच्छी है।
0: खुशबू ही नहीं हेवा, इसका तो स्वाद भी बहुत अच्छा है। तुम खाकर तो देखो हेवा।
1: मैं? पर ईश्वर ने तो कहा था अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे।
0: फिर सोचने लगी हेवा, क्या सोच रही हो?
1: नहीं नहीं, मैं ये फल नहीं खाऊंगी।
0: क्यों, क्या हुआ हेवा? बड़ी भोली हो, डर गई ईश्वर से? उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि तुमने ये फल खाया है। लो लो खाओ हेवा, खाओ।

0: कहो कैसा लगा ये फल?
1: सचमुच बहुत मजेदार।
0: और देखो खाने के बाद भी तुम जिंदा हो ना? और खाओ और खाओ।
1: नहीं, मैंने तो खा लिया। मैं इसे अपने पति आदम को भी देना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ।

अभी आपने सुना कार्यक्रम बाइबल धारावाहिक और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं अंतरा करवड़े और इनकी वार्ता का शीर्षक है जीवन में उत्साह और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों नमस्कार, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहा जाता है कि जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तब शुरुआत में तो उत्साह बड़ा बना रहता है, लेकिन आगे चलकर वो उत्साह कहीं भी नहीं रहता। तो चलिए आज के स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम आपको यही बताएं कि जीवन में हर समय उत्साह कैसे बनाकर रखें। साथियों, ये तो बिल्कुल सही है कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होता तब तक जीवन में उत्साह नहीं आता, लेकिन यदि जीवन में उत्साह बना रहे तो कई बार शरीर को अस्वस्थ होने की नौबत ही नहीं आती। जी हाँ साथियों, स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमने कई बार ये चीज आपको बताई है और शायद आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उस मानसिक स्थिति का उसके शारीरिक स्थिति पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और यदि आपकी मानसिक स्थिति उत्साह से भरी है, खुशियों से भरी है, तो वाकई इसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, यानी दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये देखें कि जीवन भर में यदि हमें उत्साह का माहौल बनाए रखना है, खुशियां हमेशा आपके आसपास रहें, ऐसा माहौल बना रखना है, ऐसी परिस्थिति बनाए रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अपने आसपास की स्थितियों को बदल डाले। जी नहीं साथियों, कई बार हम लोग कोशिशें यही करते हैं कि हम अपने आसपास की परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें शिकायतें या तो अपने आसपास की परिस्थिति से होती है या फिर अपने घर में रहने वाले सदस्यों से। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे लिए ये सदस्य अपने स्वभाव के कुछ विशेष गुणों को बदल डालें, या फिर यदि घर में परिस्थिति कुछ विपरीत है हमारे लिए तो परिस्थिति बदल जाए। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी खुद को लेकर ये सोचा है कि जो चीजें आपको दूसरे लोगों की खटकती है कुछ न कुछ वैसा आप में भी होगा? जी हाँ, मेरा कहना यही है कि यदि हम खुद को भी बदलने की ओर चलें तो जीवन में उत्साह बिल्कुल अच्छे से बना रह सकता है। दरअसल हमें इस चीज की ओर सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से काम हैं जो हमारे जीवन में उत्साह को भर देते हैं। ये तो सही है साथियों कि जब भी आप जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे अपने काम करते करते, अपने लक्ष्यों को पूरा करते करते, तो कई बार जीवन में एक रास्ता आ जाती है, हताशा आ जाती है, थकान, ऊब और निराशा भी आ जाती है। लेकिन जब भी ये स्थिति निरंतर बनी रहती रहे तब आपको ये सोच लेना चाहिए कि अब समय है कुछ बदलाव का। जी हाँ, बदलाव की स्थिति कभी भी आपके सामने ये कहकर नहीं आती कि अब मुझे बदलिए। ये चीज आपको स्वयं ही समझनी होती है कि अब आप एक रास्ता से ऊब चुके हैं, अब आप एक ही प्रकार का काम करते करते ऊब चुके हैं, और जब किसी काम को करने में ऊब महसूस होने लगती है इसका मतलब वो काम करने में आपको मजा नहीं आ रहा, वो काम करने से आपको खुशी नहीं मिल रही। तब जब आप रोजाना कर रहे काम में खुशी नहीं पा रहे हैं तो आप में उत्साह कहाँ से आएगा? दरअसल उत्साह और उमंग आपके जीवन को ढेर सारी ऊर्जा देते हैं, और उसी ऊर्जा के बल पर हम कठिन से कठिन काम हंसते हंसते कर लेते हैं। जी हाँ, लेकिन साथियों, यही उत्साह यदि आपके जीवन में नहीं है

ये उमंग, ये खुशी आपके जीवन में नहीं है, तो चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी भी आपके सामने क्यों न हो, आपको वो फीकी लगेगी। तो यदि किसी भी प्रकार की खुशी आपके सामने है या परिस्थिति आपके सामने है, आपके मन की अवस्था उत्साह से भरी होनी चाहिए, खुशियों से भरी होनी चाहिए, तब जाकर आप उन खुशियों का सही आनंद ले पाएंगे। दूसरी चीज ये होती है साथियों कि यदि आप में ऊर्जा है, आप में उत्साह है, तो आप इस चीज का प्रवाह दूसरे लोगों की ओर भी करते हैं। आप सभी ने ये चीज देखी होगी कि जब परिवार में एक खुशनुमा व्यक्ति आ जाता है जो बहुत उत्साह से लबरेज है, जो ढेर सारी हंसी मजाक की बातें बार बार कहता है, और आप जब भी किसी समस्या का जिक्र करते हैं उसे यूं धुएं में उड़ा देता है जैसे कि वो हो ही ना, उसके ढेर सारे हल और वो भी बड़े आसान से हल आपके सामने इस तरीके से ले आता है कि आप स्वयं आश्चर्य करते रह जाते हैं कि ये हल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए। और रही सही समस्या जिसने आपको थका कर रखा हुआ था, वो तो शायद अब आपके सामने होती ही नहीं है। तो साथियों, अब हम ये बताएंगे आपको कि जीवन में आपको उत्साह किस प्रकार से हमेशा के लिए मिल सकता है। जैसे कि हमने सबसे पहले आपसे कहा, पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ साथियों, आपको चुस्त दुरुस्त रखने में आप स्वयं ही अपनी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको बनावटी जीवन शैली के पीछे भागकर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सरल और सहज जीवन को जिए, संयमित जीवन को जिए, इसी से आप अपने जीवन को सहज बना पाएंगे। आपको लोगों की देखा देखी करने की बजाय स्वयं का आकलन करना चाहिए कि इस समय आपकी उम्र क्या है, आपकी शारीरिक दृष्टि किस प्रकार की है, उस स्थिति के अनुरूप आपको संतुलित भोजन लेना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप नियमित दिनचर्या का पालन कर सके, व्यायाम को उसमें स्थान दे सके, और भारी चटपटे तले और बाहर के भोजन से जितना हो सके उतना बचें, तो वाकई आप सुबह की सैर के बाद जैसा मन प्रफुल्लित हो जाता है, वैसा आपका प्रफुल्लित मन हमेशा बना रह सकता है। इसके साथ ही साथियों, कई बार हमारे जो भी श्रोतागण हैं उन्हें भी लगता होगा कि स्वास्थ्य कार्यक्रम में बैठकर इस प्रकार के उपदेश देना तो बड़ा सरल है, लेकिन यदि वास्तविक जीवन में हमें स्वस्थ रहना हो तो ये नियमित जीवनचर्या को या फिर रोजाना व्यायाम करना या संतुलित भोजन करना, ये सारी चीजें व्यवहार में लानी तो बहुत मुश्किल होती है। जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल मुश्किल होती है सोचने में, लेकिन जब आप इसे करते हैं तब धीरे धीरे आप में ऊर्जा जरूर आती है। सबसे पहली बात ये होती है कि हम सभी से जो एक गलती होती है, हम सभी कोणों पर एक साथ काम करना चाहते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हम एक ही दिन में संतुलित भोजन करना भी सीख लें। हम सभी ये चाहते हैं कि रोजाना हम ढेर सारी एक्सरसाइज करना या व्यायाम करना, इन सारी चीजों को एक साथ अपने जीवन में लेकर आ जाए। और जब आपकी आराम तलब जिंदगी में भूचाल की मानिंद ये सारी चीजें एकदम आ जाती हैं, तो आप घबरा उठते हैं। एक या दो दिन बड़े भक्ति भाव से स्वस्थ शरीर पाने की कामना में आप ये सारी चीजें कर जरूर लेते हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन या ज्यादा से ज्यादा एक दो सप्ताह के बाद आपका मन विद्रोह कर उठता है। होता है ना ऐसा? इसलिए यदि आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है तो बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी उम्र के अनुरूप भोजन करना चाहते हैं तो धीरे धीरे इन चीजों पर काम करें। यदि आपको लगता है कि आपके भोजन में वसा की मात्रा जरा ज्यादा है तो उसकी मात्रा को कम करने की धीरे धीरे कोशिश करें। एक सप्ताह तक इसी पर काम करें। फिर आपको लगता है कि आपके भोजन में मीठे की मात्रा जरूरत से जरा ज्यादा ही हो रही है, तो अब आप चूंकि कम वसा खाने के आदि हो चुके हैं, अब मीठे की ओर जाएं। इसके बाद यदि आपको लगता है कि आप एक ही बार में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, दिन भर में आप दो बार ठूस ठूस कर खाते हैं और बाकी दिन भर कुछ खाते ही नहीं है, शायद ये स्थिति है जिसके चलते आपका पाचन तंत्र गड़बड़ाता है या फिर आप शरीर में भारीपन महसूस करते हैं, तो एक बार जब आपने वसा पर नियंत्रण कर लिया, आपने मीठे पर नियंत्रण कर लिया, तब धीरे धीरे अपने भोजन को मात्रा वही रहने दीजिए, लेकिन दिन भर में चार या पांच भागों में बांट दीजिए। तो इस तरीके से पूरे एक महीने तक जब आप अपने भोजन और उसके प्रबंधन पर काम करेंगे, तब जाकर एक स्वस्थ भोजन संबंधी दिनचर्या आपके सामने तैयार होगी। और अब जब आपका शरीर सही और स्वस्थ भोजन करने का आदि हो चुका है, तो धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में व्यायाम करना शुरू करें। शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की पैदल सैर से की जा सकती है।
और धीरे धीरे इसे हर सप्ताह में 2 मिनट या 3 मिनट बढ़ाकर पूरे महीने भर में 25 से 30 मिनट तक ले जाया जा सकता है। साथियों, 2 महीने में ही आप स्वयं को व्यायाम और संतुलित भोजन, इन दोनों चीजों में प्रशिक्षित कर देंगे तो हो गई ना आपकी स्वस्थ जीवन शैली तैयार। तो जब ये स्वस्थ जीवन शैली आपके पास रहेगी, उसके साथ ही आप पा सकेंगे धीरे धीरे एक अच्छा स्वास्थ्य। और जब ये सारी चीजें आपके साथ रहेंगी, तब अगली चीज जो आपको करनी है वो है वक्त की पाबंदी। साथियों, किसी भी काम को अगर वक्त पर पूरा कर दिया जाता है तो आपको एक ऊर्जा मिलती है। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब किसी काम को करने का वक्त पूरा हो जाता है और उसके बाद भी आपका काम पूरा नहीं होता, तो आपका मन अपने आप ही बहाने सोचने लगता है कि ये काम करने में मुझे देरी इसलिए हुई क्योंकि मुझे मेरे साथी से काम समय पर नहीं मिला था, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको काम करने से रोकती हो। लेकिन इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपका समय प्रबंधन सही नहीं है, और यदि आप एक नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहते हैं तो वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथियों, जो चीज हमें भोजन के साथ ही लेनी चाहिए या फिर भोजन के साथ ही जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो है जल सेवन। जी हाँ, अब अखबारों के स्वास्थ्य कॉलम में या फिर यहाँ वहाँ जहाँ भी स्वास्थ्य संबंधी बात होती है, आप एक चीज बार बार सुनते हैं कि हमें भरपूर पानी पीना चाहिए। हमारे बहुत से श्रोता इस संबंध में एक विपरीत मत भी रखते हैं कि आवश्यकता से अधिक या फिर प्यास लगने से ज्यादा, जब प्यास नहीं लगी है तब भी पानी पीना, ये शायद शरीर पर कुछ अत्याचार करना होगा क्योंकि इससे किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन नहीं साथियों, यदि आप दिन भर में 10 या 12 ग्लास पानी अच्छे से पी लेते हैं, इसकी ताजगी आपको इस नियम को इस्तेमाल करने के 4-5 दिन बाद महसूस होगी। इसके साथ ही आपको पानी के साथ ही कुछ इस प्रकार के मौसमी फलों को भी लेना चाहिए जो आपको पूरी ऊर्जा दे और आपके शरीर के सभी आवश्यक तत्वों का संतुलन बनाकर रखे। अगर हम बात करें सूरजमुखी के बीजों की, इनमें होता है मैग्नीशियम जो आपकी हड्डियों, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। उसी प्रकार से यदि आप दिन भर में, जैसे मैंने आपको बताया, 4 या 5 बार में अपने भोजन को बांट ले और उसे अच्छे से पौष्टिकतापूर्वक खाएं, उसमें यदि आप सूरजमुखी के बीज जिनमें मैग्नीशियम होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भोजन के एक भाग में सिर्फ फल या कच्ची सब्जियां या सलाद ले सकते हैं। बाकी इस प्रकार के प्रयोग यदि आप करते रहते हैं तब आपको ये चीज समझ में आती है कि यदि नियमित दिनचर्या रखी जाए तो उसके कितने फायदे होते हैं।

अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंतरा करवड़े, और इनकी वार्ता का शीर्षक था जीवन में उत्साह, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों आइए सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं ईशान खापड़े और इनकी कहानी का शीर्षक है गोलू का गोरख धंधा और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

एक समय की बात है, एक गांव में गोलू नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह काफी बुद्धिमान था। एक दिन उसने सोचा, मैं सारा दिन इधर उधर बेकार भटकता रहता हूँ, क्यों ना कोई काम किया जाए। यह विचार आते ही वह शहर चला गया और वहाँ जाकर उसने एक दुकान किराए पर ले ली। दुकान पर उसने एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, अक्ल की सेल। उसकी दुकान के आसपास बड़े बड़े व्यापारों की दुकान लगी थी। उन्होंने जब गोली की दुकान पर वह विचित्र बोर्ड टंगा देखा तो सब गोलू पर हंसने लगे, वह उसे चिढ़ाने लगे। गोलू ने उनकी परवाह नहीं की और दुकान के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा, अक्ल ले लो, अक्ल ले लो। एक दिन एक व्यापारी का बेटा अमित उस दुकान के सामने से गुजरा। उसने गोलू की आवाज सुनी, अक्ल ले लो, यहाँ तरह तरह की अक्लें मिलती हैं। अमित को समझ नहीं आया कि यह दुकानदार क्या बेच रहा है, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी सेल के बारे में कभी नहीं सुना था। कौतूहलवश वह उस दुकान पर पहुंचा और बोला, एक किलो अक्ल का क्या भाव है? यह सुनकर गोलू हंसकर बोला, मैं अक्ल तौल कर नहीं बेचता, बल्कि इस किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। अमित ने अपनी जेब से एक रुपया निकालकर उसे दिया और बोला, मुझे एक रुपये वाली अकल चाहिए। गोलू ने एक पर्ची अमित को थमा दी। अमित वह पर्ची लेकर खुशी खुशी घर पहुंचा। घर जाकर उसने पर्ची अपने पिता को दिखाते हुए कहा, पिताजी देखिए, मैंने एक रुपये की अकल खरीदी है। उनके पिता ने पर्ची पढ़ी और अपना माथा पकड़कर बोले, मूर्ख, यह बात कौन नहीं जानता कि जब दो लोग लड़ रहे हों तो उनके पास खड़े नहीं होना चाहिए। दुकानदार ने अति साधारण बात बताकर तुमसे एक रुपया ठग लिया, मुझे उस दुकानदार के पास ले चलो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अमित पिता को लेकर गोलू की दुकान पर पहुँच गया। वे बहुत गुस्से में थे। दुकान पर जाकर वह चिल्लाकर बोले, मेरे बेटे को बेवकूफ बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा रुपया वापिस करो, हमें तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर उन्होंने पर्ची गोली के मुंह पर दे मारी। गोलू घबरा गया कि पहला ही सौदा उल्टा पड़ गया। फिर कुछ सोचकर वह बोला, मुझे अपनी कागज का टुकड़ा नहीं वरन अपनी सलाह वापस चाहिए। आपका बेटा लिखकर दे कि वह उस स्थान पर खड़ा होगा जहां दो व्यक्ति आसपास में लड़ रहे हों, तो मैं उसका रुपया वापस कर दूंगा। अमित के पिता ने आओ दिखाना ताओ अमित की ओर से लिखकर दे दिया कि वह उस स्थान पर खड़ा रहेगा जहां दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे होंगे। इसके बाद दोनों घर लौट गए। उस देश के राजा की दो रानियां थी। दोनों एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या रखती थी कि एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। यही हाल उनकी नौकरानियों का भी था। एक दिन दोनों नौकरानियां बाजार से सब्जी खरीदने गईं। संयोग से दोनों एक ही दुकान पर एक साथ पहुंच गईं। दुकानदार के पास एक ही सीताफल था और दोनों जोर दे रही थी कि सीताफल उसे मिलना चाहिए। दुकानदार कुछ बोलता उससे पहले ही वापस में गुतमुता गए। अमित पास खड़ा होकर दोनों का झगड़ा देख रहा था। पहली नौकरानी बोली, तुम गवाह हो कि इस नौकरानी ने मुझे पीटा है। यही बात दूसरी नौकरानी ने भी कही। कुछ देर के बाद दोनों नौकरानियां महल लौट गईं। अगले दिन अमित के पास राजा का फरमान पहुंचा। उसे दो दिन बाद राजा के दरबार में पहुंचकर गवाही देनी थी। फरमान पाकर अमित के पिता बहुत डर गए। वह दौड़े दौड़े गोलू की दुकान पर पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताकर उससे सलाह मांगी कि अब क्या करना चाहिए। गोलू ने सबसे पहले उनसे 100 रुपए रखवाए और फिर सलाह दी, अमित राजा के पास दरबार में पागल की तरह व्यवहार करें। अमित ने वैसा ही किया। राजा ने यह देखकर कि गवाह के रूप में पेश किया गया लड़का तो पागल है, मुकदमा ही रद्द कर दिया। वहां से लौटकर अमित के पिता ने सोचा, पागल का अभिनय करके आज तो अमित बच गया है, किंतु यदि राजा को देर सवेर यह बात चला कि अमित पागल नहीं है और उसने धोखा दिया है, तो वे इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद भी जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने गोलू से सलाह लेने की सोची। गोलू के पास जाकर बोले, तुम्हारे कहने के मुताबिक अमित राज दरबार में पागल का अभिनय करके बच तो गया है, पर भविष्य में यदि राजा को पता चल गया
कि हमने उनके साथ धोखा किया है तो क्या होगा? बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। गोलू ने सबसे पहले उनसे सलाह की कीमत के रूप में 100 का नोट लिया, फिर बोला, किसी दिन जब राधा का मिजाज अच्छा हो उन्हें सारी बात सच सच बता देना। उन्हें गोलू की सलाह अच्छी लगी और वे निश्चिंत होकर घर लौट आए। कुछ दिनों बाद अमित के पिता दरबार में गए तो उन्होंने देखा कि राजा बहुत प्रसन्न है। अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने राजा को सारी घटना सच सच बता दी। सुनकर राजा हंस पड़े और उन्होंने अमित को माफ कर दिया। गोलू की दुकान की शहर भर में चर्चा थी। खबर जब राजा के कानों तक पहुंची तो उन्हें भी उससे मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने सिपाही को भेजकर गोलू को दरबार में बुला लिया। जब गोलू राजा के सामने उपस्थित हुआ तो वह बोले, सुना है कि तुम लोगों को अकल बेचते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई खास अकल है? गोलू निडरता से बोला, महाराज मेरे पास एक खास अकल है जो आपके बहुत काम आ सकती है, परंतु उसकी कीमत 1,00,000 रुपये है। राजा ने गोलू को 1,00,000 रुपये दिए। बदले में गोलू ने एक पर्ची पर लिख कर दिया, कोई भी काम करने से पहले उस पर गहराई से सोचो। राजा को गोलू की सलाह काफी काम की लगी। उन्होंने इसे महल की दीवारों पर, फर्श पर बिछे कालीनों पर, अपने सिराने पर, अपनी क्रॉकरी पर और तमाम उन वस्तुओं पर लिखवा दिया जो वस्तुएं उनके प्रयोग में आती थी। वह चाहते थे कि यह सलाह उन्हें हमेशा याद रहे। एक बार राजा बीमार पड़ गए। अवसर का फायदा उठा उनके एक मंत्री ने बड़ी रानी के साथ मिलकर उन्हें मरवाने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजवैद्य को भी अपने साथ मिला लिया। राजवैद्य ने राजा को पीने के लिए जो दवा दी उसमें जहर मिला हुआ था। वह उसे पीने ही वाले थे कि उनकी नजर गिलास पर लिखे गोलू की सलाह पर पड़ी। वे सतर्क हो गए और गिलास को घुमा घुमा कर ध्यान से देखने लगे। यह देखकर राजवैद्य डर गया। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। वह राजा के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज मैं निर्दोष हूँ, मुझे महारानी और महामंत्री ने दवा में जहर मिलाने के लिए कहा था। राजा ने सिपाही को आदेश देकर राजवैद्य को कारागार में डाल दिया। फिर उन्होंने महामंत्री और अपनी बड़ी रानी को बुलाया। राजा ने उनसे कहा, यह दवा पियो। दोनों जानते थे कि दवा में जहर है और यदि उन्होंने दवा पी तो वे मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करने में ही भलाई समझी। राजा ने उन दोनों को भी जेल में डाल दिया। फिर उन्होंने गोलू को बुलाया और सबके सामने अपना महामंत्री घोषित कर दिया।

दोस्तों अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे ईशान खापड़े, और इनकी कहानी का शीर्षक था गोलू का गोरख धंधा, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों अब सुनते हैं बाल गीत।

अभी आपने सुना बाल गीत। आइए साथियों, आप सुनते हैं कार्यक्रम बाल जगत, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं ईशान खापड़े, और इनकी कहानी का शीर्षक है मोबाइल चोर, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: रवि और श्रेय दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों दिल्ली के एक ही कॉलोनी में रहते थे। दोनों के घर आसपास थे। दोनों एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ते थे। जब इतनी समानताएं थी तो दोनों में दोस्ती होना स्वाभाविक ही था। रवि देहरादून का रहने वाला था और श्रेय कानपुर का। रवि के दादा दादी देहरादून में रहते थे। वह हर साल गर्मी की छुट्टियों में उनसे मिलने देहरादून जाता था। इस बार भी गर्मी की छुट्टियां पड़ते ही रवि ने मम्मी पापा से देहरादून जाने की रट शुरू कर दी। पापा को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसलिए रवि मम्मी के साथ देहरादून जाने की तैयारी करने लगा। रवि अक्सर श्रेया से अपने शहर देहरादून की बातें किया करता। श्रेया का मन भी देहरादून जाने का होता। इस बार जब रवि देहरादून जाने की तैयारी करने लगा तो उसने श्रेय को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। श्रेय ने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। रवि ने अपनी मम्मी को बताया, मम्मा श्रेय भी हमारे साथ देहरादून चलना चाहता है पर उसके पापा उसे नहीं भेज रहे हैं। यदि आप अंकल से बात करेंगी तो वे जरूर मान जाएंगे। ठीक है, कहकर रवि की मम्मी उस वक्त श्रेय के घर गई। उन्होंने श्रेय के पापा से कहा, भाई साहब श्रेय का देहरादून जाना का बड़ा मन है, आप उसे भेज दीजिए। इस बार रवि के पापा भी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। यदि श्रेय हमारे साथ जाएगा तो रवि को साथ मिल जाएगा। हम लोग कल ही जा रहे हैं। यदि आप अनुमति दें तो श्रेय भी अपनी पैकिंग कर लेगा। श्रेय के पापा मान गए। फिर उसने खुशी खुशी अपनी पैकिंग कर ली। अगले दिन सुबह सवेरे रवि के पापा उसे, उसकी मम्मी और श्रेय को देहरादून की बस में बैठा आए। पापा ने रवि को बस में बैठाते हुए हिदायत दी, मम्मी को परेशान मत करना और गाड़ी से हाथ आदि अंग बाहर मत निकालना। रास्ते में यदि कोई परेशानी हो तो फोन कर लेना। रवि ने पापा की बात समझ ली। पापा मैं फोन कर लूंगा, वैसे भी मम्मी हर बार की तरह इस बार भी बस में सो जाएंगी। मोबाइल मेरे पास ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। गाड़ी आगे बढ़ चली। रवि और श्रेय दोनों साथ साथ खुश थे। दोनों कभी अंताक्षरी खेलते तो कभी एक दूसरे को चुटकुले सुनाते। मम्मी भी उनकी बातों का मजा ले रही थी। इसी तरह वे आधी से अधिक दूरी तय कर चुके थे। तभी फोन बजा। मम्मी ने फोन रिसीव कर बात की। रवि के पापा का फोन था। रवि मचलते हुए बोला, मम्मी मैं भी पापा से बात करूंगा, फोन दीजिए। मम्मी ने रवि को फोन दिया। रवि पापा से बात करने के बाद फोन पर गेम खेलने लगा। मम्मी ने उसे फोन वापस मांगा तो वह बोला, मम्मा हम गेम खेल रहे हैं, बाद में दे देंगे। मम्मी को झपकी आ गई। रवि और श्रेया भी गेम खेलते खेलते सो गए। बस का कंडक्टर बहुत देर से उन दोनों पर नजर जमाए हुए था। उसने देखा कि फोन रवि के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया है। जब बस देहरादून स्टेशन पर आ रुकी तो मम्मी ने श्रेय और रवि को उठाते हुए कहा, उठो देहरादून आ गया है, और वे सामान उतारने लगी। तभी मम्मी ने रवि से मोबाइल मांगते हुए कहा, रवि फोन दे, मैं तेरे पापा को फोन कर दूं। रवि अपने हाथ में मोबाइल न देखकर हैरान हो गया। उसने अपने जेब और सीट के नीचे देखा पर मोबाइल कहीं नहीं मिला। वह बोला, मम्मा लगता है मेरे हाथ से मोबाइल कहीं गिर गया, पर कहाँ जा सकता है। फिर उन तीनों ने बस की एक एक सीट छान मारी पर मोबाइल नहीं मिला। उन्हें परेशान देखकर ड्राइवर ने पूछा, बहन जी आप क्या ढूंढ रही हैं?
1: हमारा मोबाइल बस में कहीं गिर गया है, क्या आप कंडक्टर को बुला देंगे? हो सकता है उसने मोबाइल देखा हो,
0: मम्मी ने विनम्रता से कहा। ड्राइवर ने तुरंत कंडक्टर को बुलाया। कंडक्टर अपना एक हाथ जेब में डाले हुए उसके सामने खड़ा था। मम्मी ने उससे पूछा, क्या आपने कोई मोबाइल देखा?
1: कंडक्टर हिचकिचाते हुए बोला, नहीं नहीं नहीं तो।
0: कंडक्टर को हिचकिचाता देखकर श्रेय बोला, तुम अपना हाथ जेब से बाहर तो निकालो। कंडक्टर ने अपना हाथ जेब से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वह निकल नहीं पाया। यह देखकर श्रेय रवि की तरफ देखकर हंस दिया। फिर रवि और श्रेय दोनों ने पकड़कर कंडक्टर का हाथ जेब से बाहर निकाला। उसके हाथ में चुंगम के साथ साथ मोबाइल भी लटक रहा था।
1: यह देखकर रवि और सूरी ने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। मम्मा, यह रहा मोबाइल चोर, आज तो चिंगम ने हमारा मोबाइल बचा लिया,
0: रवि बोला। कंडक्टर ने उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। मम्मी ने तो उसे माफ कर दिया। फिर दोनों दोस्त हंस पड़े। मम्मी भी हंसते हुए बोली, यह धर्मवीर की जोड़ी जहाँ जाएगी वहाँ कमाल ही करेगी।

ईशान खापड़े और इनकी कहानी का शीर्षक था मोबाइल चोर और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, मैं आगे की सभा का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक पीटर रॉबर्ट जी को। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी की समय सारिणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम कृषि जगत, कानूनी ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम और अंत में नाटक। तो दोस्तों, अब हम अपने समय सारिणी के अनुसार हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम कृषि जगत की वार्ता से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: मुखिया जी, कृषि जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: मुखिया जी, हमारे राज्य में बीज के बाजार में निजी कंपनियों की सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि निजी कंपनियां ही बीज बाजार को नियंत्रित करेंगी।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है। राज्य के बीज बाजार से निजी कंपनियों के पांव उखड़ जाएंगे। संकर प्रभेदों के बीज में उनका जो एकाधिकार था उसको खत्म करने की पहल सरकार ने शुरू कर दी है।
0: वो कैसे मुखिया जी? संकर प्रभेदों पर तो उनका एकाधिकार था और रहेगा भी, तो फिर किस तरह से राज्य सरकार उनके एकाधिकार को खत्म कर पाएगी?
1: देखिए, ऐसा है कि ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने मक्के के संकर बीज के नए प्रभेद की अनुशंसा की है। DHM 117 नाम का यह प्रभेद किसान खुद ही पैदा करेंगे और सरकार उसको खरीदेगी। जो यह निजी कंपनियों का एकाधिकार है इसके मार्फत या इस पहल से खत्म कर देगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस प्रभेद की खासियत यह है कि भुट्टों के पक जाने के बाद भी खेतों में खड़े डंठल हरे ही रहते हैं, लिहाजा किसानों को पशु चारे के लिए दूसरी फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी खेती रवि या खरीफ दोनों मौसम में की जा सकती है।
0: क्या इस नए प्रभेद का प्रयोग करके इसकी खासियत का अंदाजा लगाया जा चुका है या फिर इसका प्रयोग अभी जारी है?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने अभी इस नए प्रभेद की खेती मात्र 40 हेक्टेयर में शुरू की। यह प्रभेद निजी कंपनियों के बीज के मुकाबले बहुत अच्छी है, या यूं कहें कि ये निजी कंपनियों के बीज से वो मुकाबला कर सकती है। इसकी विशेष खासियत यह है कि इसका प्रयोग जो किया गया वो काफी सफल रहा, तो इसका विस्तार होते ही मक्के की खेती करने वाले लगभग 13-14 लाख किसानों की निजी कंपनियों से निर्भरता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी।
0: अगर ऐसा होता है तो किस तरह का फायदा किसानों को या राज्य सरकार को मिलने वाला है मुखिया जी?
1: देखिए, अगर ऐसा होता है तो राज्य में पहली बार मक्के के संकर प्रभेद की खेती किसान करेंगे। इससे किसानों को तो लाभ होगा ही, राज्य का पैसा भी बाहर जाने से बचेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राज्य के किसानों का 400 करोड़ रुपये निजी कंपनियों से बीज खरीदने में खर्च होते हैं, क्योंकि राज्य के बीज व्यापार पर निजी कंपनियों का कब्जा है। संकर प्रभेद के मामले में तो इनका एकाधिकार है। पुनः मैं आपको बता दूं कि बीज का कुल व्यापार हमारे यहाँ जो है वो लगभग 400 करोड़ रुपए का होता है।
0: बीज के कुल व्यापार में निजी कंपनियों का हिस्सा कितना प्रतिशत है मुखिया जी, और कितनी मात्रा में इनके द्वारा बीज की आपूर्ति की जाती है?
1: बीज के व्यापार में निजी कंपनियों का हिस्सा या यो कहें कि शेयर लगभग 95 से 97.33% है। निजी कंपनियों के द्वारा बीज की आपूर्ति प्रतिवर्ष 1.76 लाख क्विंटल की जाती है।
0: तो क्या हमारा राष्ट्रीय बीज निगम किसानों को बीज मुहैया नहीं कर पाता या फिर इसकी कोई दूसरी वजह है? कारण क्या है मुखिया जी?
1: सच बात तो यह है कि राष्ट्रीय बीज निगम किसानों की मांग का 1% हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाता है। दूसरी बात यह है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पुराने संकर प्रभेद मार्केट में चल ही नहीं पाते हैं। इसका बीज 90 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में रहता है, फिर भी निजी कंपनियों के 250 रुपए प्रति किलो वाले बीज की मांग ज्यादा होती है, उनकी मांग ज्यादा होती है, बाजार पर उनकी पकड़ ज्यादा होती है।
0: लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि निजी कंपनियों के बीज के इस्तेमाल करने के बावजूद भी फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है।
1: आपका कहना सही है। समस्या यह है कि फसल ठीक नहीं होने पर निजी कंपनियों की भूल के लिए मुआवजा सरकार को देनी पड़ती है। 2 वर्ष पहले बीज फेल हो गया, 61,000 एकड़ हेक्टेयर में लगी मक्के की फसल में दाने नहीं आए। कभी कभी ऐसा होता है।
0: यह बात तो सही है कि सरकार को दोहरी मार झेलनी पड़ती है और गलती कंपनियों की होती है और मुआवजा सरकार को देना पड़ता है।
1: हाँ, वही हुआ ना। 2 वर्ष पहले जब मक्के की फसल में दाने नहीं आए तो कंपनियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि सरकार को किसानों को बतौर मुआवजा 61 करोड़ रुपए देने पड़े। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है।
0: तो क्या बीज के उत्पादन के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने का भी प्रोग्राम है मुखिया जी?
1: हाँ, प्रसार निदेशक जो हैं आरके सुहाने ने कहा है कि इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि राष्ट्रीय बीज निगम 4,000 क्विंटल बीज की आपूर्ति करती है, तराई बीज निगम की आपूर्ति 600 क्विंटल है, वहीं संकर बीज आपूर्ति करने वाली कंपनियों की संख्या 60 है। ऐसे में अगर यहाँ के किसान संकर प्रभेद के बीज उपजाएंगे तो उन्हें फायदा तो होगा ही होगा।
0: आशा की जानी चाहिए मुखिया जी कि सरकार की यह पहलकदमी किसानों के लिए फायदे का सौदा होगा और बीज बाजार से निजी कंपनियों के पांव उखड़ जाएंगे। निजी कंपनियों के बीज से किसानों को लगातार होने वाली हानि से मुक्ति भी मिल जाएगी, साथ ही साथ राज्य का राजस्व भी राज्य में ही रहेगा।
1: बिल्कुल, ऐसी आशा की जानी चाहिए कि ये सरकार की जो पहलकदमी है खास करके संकर प्रभेद को उगाने की, उससे किसान भाइयों को तो अवश्य ही फायदा होगा और साथ ही साथ राज्य का जो राजस्व था जो निजी कंपनियों के हिस्से जाता था वो अब राज्य सरकार के पास ही रहेगी, किसानों को फायदा होगा और एक नए तरह के सोच के साथ किसान भाई इस कार्य को अपनाएंगे ताकि हमारे राज्य में भी संकर प्रभेद के बीज उपजाए जाएं और उगाए जाएं। और खासकर जब निजी कंपनियों के बीज लगाए जाते थे तो कभी कभी ऐसा शिकायत भी सुनने को मिलता था कि मक्के में दाने नहीं आए, तो इस समस्या से भी उनको निजात मिलेगा और आने वाले समय में हमारे यहाँ संकर प्रभेद के बीजों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करेंगे।
0: मुखिया जी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो गन्ने की खेती के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें आपसे करेंगे।
1: हाँ, उस पर भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि हमारे राज्य में गन्ने की खेती करने वाले किसान काफी हताश हैं, काफी निराश हैं, तो उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी स्थिति ऐसी क्यों है। तब भी रुक सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद मुखिया जी।

अभी आप सभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, इस वार्ता में हमें काफी सारी महत्वपूर्ण और रोचक बातें बताई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी किसान श्रोताओं को इन सभी बातों से लाभ हुआ होगा। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉयड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्य स्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल है सत्य स्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआं पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें कानून के बारे में बताएंगे। जी हाँ साथियों, मैं अपने अगले कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी ज्ञान, और यह प्रस्तुति है रवि भारती पटना की।

0: कपूर साहब और रितेश जी, कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी आपका भी स्वागत है, धन्यवाद।
0: कपूर साहब, यौन हिंसा की घटनाएं घटने के बजाय आए दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि हमारे सभ्य समाज के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
2: जी हाँ, 2012 में हुई बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा चौंकाती हैं। ऐसा लगता है कि लड़कियों का वजूद ही खत्म समाप्त होता जा रहा है।
1: एकदम आप लोग सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी और रितेश जी। असल में सबसे आश्चर्य की बात यह है
0: जी
1: कि 12 अरब से भी ज्यादा की जनसंख्या वाले इस देश में बलात्कार सबसे तेजी से बढ़ने वाले अपराधों की श्रेणी में शामिल है।
0: बिल्कुल।
1: हालांकि बलात्कार करने वालों के खिलाफ मृत्यु दंड जैसी कड़ी सजा तक पर कई बार विचार और बहस की गई, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके।
0: लेकिन एक बात है कपूर साहब
1: जी,
0: यौन हिंसा का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है।
1: बिल्कुल।
0: जबकि न्यायिक प्रक्रिया का ग्राफ जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है, लगातार घटते जा रहा है।
1: वीरेंद्र जी, स्थिति ये है कि भारतीय महिला के साथ बलात्कार होने की आशंका पिछले 2 दशक में दोगुनी हो गई है, जबकि अपराधी को दंडित किए जाने या न्याय मिलने की दर नीचे गिर गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं।
0: जी
2: इसका मतलब यह निकलता है कपूर जी कि भारत औरतों के एक खतरनाक जोखिम भरा देश है, जहां कोई भी औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी इलाका इससे छूटा नहीं है, फिर चाहे वो खाप के खौफ में जीते हरियाणा या गांव हो, या तरक्की पसंद या स्त्री शक्ति के प्रतीक पश्चिम बंगाल के महानगर हो। बलात्कार और यौन अपराध इन सबकी वास्तविकता है। वैसे जैसे सामाजिक और आर्थिक विपन्नता इस देश की संस्कृति की वास्तविकता है।
0: एक बहुत गंभीर समस्या है कपूर साहब
1: जी।
0: इस गंभीर समस्या पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा किस तरह की तस्वीर पेश करता है, इसको मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: स्थिति इतनी गंभीर है वीरेंद्र जी कि हर 20 मिनट में भारत में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। इन पीड़ितों में से हर तीसरी पीड़ित कोई बच्ची होती है। ये आंकड़े साल 2011 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित है।
0: अच्छा,
2: इस मामले में न्याय की प्रक्रिया की स्थिति क्या है कपूर साहब? क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल भी पाता है या नहीं?
1: न्याय की प्रक्रिया की हालत ये है कि 4 मामलों में केवल 1 मामले में ही ट्रायल हो पाता है।
0: जी
1: जिसमें भी कई बार सालों का समय लग जाता है। पिछले 2 दशक में मामलों के लंबित पड़े रहने की दर में काफी इजाफा हुआ है। पहले ये दर 78% थी तो आज 83% हो गई है।
0: कपूर साहब, ये जो बलात्कार मामले पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं
1: जी,
0: इस गंभीर मसले पर, तो बलात्कार मामले तो वैसे सभी प्रदेशों में है कपूर जी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि किन प्रदेशों में यह जो समस्या है वो काफी विकराल है, बहुत ज्यादा गंभीर है।
1: बलात्कार के मामलों में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। पिछले साल वहां रेप के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। हरियाणा की स्थिति भी बेहद बुरी है। पिछले 1 महीने के अंदर वहां दर्जन भर रेप के मामलों की रिपोर्ट की गई है।
2: ये तो वे मामले हैं कपूर जी जो पुलिस तक पहुंच पाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: ऐसे ना जाने कितने मामले होंगे जो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर आंकड़ों से आगे बढ़कर सोचें और देखें तो NCRB केवल उन मामलों की बात करती है जो पुलिस तक जाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जबकि आधिकारिक खुद स्वीकार करते हैं कि इनसे हटकर एक बड़ी जनसंख्या उन मामलों की है जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का तो ये भी कहना है कि कई मामले तो पुलिस खुद दर्ज नहीं करती, पीड़ित को डरा धमकाकर या समझा बुझाकर वापस लौटा देती है। कई बार पुलिस खुद अपराधियों से प्रभावित या भयभीत भी होती है।
0: बिल्कुल कपूर साहब, आपका कहना बिल्कुल जायज है और ये हकीकत के बहुत करीब है। कई बार तो अपराधी पीड़ित के परिवार वालों को भी धमकाते हैं ताकि वे मामले को दर्ज न करवाएं,

0: देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कपूर जी
0: जी,
1: कि कई बार या कई मामलों में ऐसा होता चला आ रहा है। न्याय में विलंब होने का एक बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ वो यह भी है।
0: सही कह रहे हैं आप। मिसाल के तौर पर साल 1990 में मात्र 41% मामलों में अपराध साबित किया जा सका है। साल 2000 में ये प्रतिशत घटकर 30 ही रह गया। पिछले साल की बात करें तो 4 में केवल 1 को जेल हुई, जबकि 3 आसानी से छूट गए।
2: ऐसे जो भी कहे कपूर जी, लेकिन अदालत का फैसला आने में भी काफी समय लग जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे लोग अदालत के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही आपने बात कही है। ध्यान देने लायक बात ये भी है कि अदालत का फैसला आने में भी काफी समय लग जाता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: NCRB के अनुसार 1.27 लाख लोग रेप के मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि न्याय की उम्मीद जल्दी नहीं की जा सकती।
1: कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं जो काफी अजीबोगरीब लगती है कपूर साहब
0: जी,
1: जो इसकी गंभीर समस्या पर से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है।
0: बिल्कुल।
1: पता नहीं यह विडम्बना कब तक हमारे देश में जारी रहेगा। जैसे खाप पंचायत का जो मामला है
0: जी,
1: जिसकी जिक्र और चर्चा आपने कुछ देर पहले की।
0: बिल्कुल।
1: तो ये सब जो खाप पंचायत का जो समस्या है, आपस में बैठ करके जिस तरह से क्रूरतापूर्वक लोग निर्णय करते हैं
0: जी,
1: और किसी एक खास पक्ष को, खास करके लड़कियों के पक्ष में ही अपना निर्णय को वाजिब ठहराने की कोशिश करते हैं, तो ये खाप पंचायत भी अजीबोगरीब भूमिका अदा कर रहा है।
0: जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है वीरेंद्र जी। और ये बड़ी अजीब बात है, खाप पंचायत इस समस्या का ये हल सुझाती है कि शादी की उम्र कम कर देनी चाहिए ताकि पुरुषों का सेक्स जीवन जल्दी शुरू हो सके। वही हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस RS दलाल तो रेप की बढ़ती घटनाओं से इनकार कर देते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: वे कहते हैं कि घटनाएं इतनी ज्यादा नहीं है जितना मीडिया में हो हल्ला है, जिसकी वजह से लगता है कि समस्या ज्यादा विकराल है।
2: लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कपूर साहब, उससे तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है ना, और वो भी रिफिल्टराइज्ड आंकड़े। 2011 में पूरे 12 महीने के अंदर 723 मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह क्या यह चौंकाने वाला तथ्य नहीं है?
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रीतेश जी। इस बात में मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा।
2: जी जी।
0: हिसार के दबरा गांव में 16 साल की लड़की के साथ 7 युवाओं ने सामूहिक बलात्कार किया। वो लड़की दलित किशोरी है। बलात्कार करने वाले ऊंची जाति के सदस्य है। सितंबर 9 तारीख को घटी इस घटना के 9 दिन बाद लड़की के पिता ने आत्महत्या कर ली। वो बलात्कार की घटना से ज्यादा आहत इस बात से थे कि उस घटना को MMS बनाकर उसे प्रचारित किया गया। लड़की के 18 वर्षीय भाई के लिए भी इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है। फिलहाल वो अपनी दादी के साथ रह रहा है, लेकिन लड़की अपनी जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। वो मानती है जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है।
1: ऐसे में कपूर साहब, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी होगी।
0: बिल्कुल।
1: नहीं तो ऐसे हालात में लड़कियां अपना आत्मविश्वास खो बैठती हैं और जिंदगी से निजात पाने की कोशिश करने लगती हैं या फिर उसके बारे में सोचने लगती हैं।
0: आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो लड़की 11वीं परीक्षा की तैयारी कर रही है। वो शिक्षित है और आत्मनिर्भर होना चाहती है। उसकी बातों और भाव भंगिमाओं से अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है का भाव साफ झलकता है। इस भाव को इसी इलाके की एक 30 वर्षीय दलित महिला बखूबी समझती है, जिसके खुद के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, उसके बच्चों को बंदूक का भय दिखाकर मजबूर किया गया कि वो अपनी माँ के साथ बलात्कार होते देखे। इस महिला के साथ 21 सितंबर को जिंद के पीलू खेरा गांव में बलात्कार किया गया। ये महिला बताती है कि मेरे साथ हुए बलात्कार का MMS इस गांव के सबने देखा। अब सब मुझे देखकर इशारा करते हैं कि ये वही महिला है जिसके साथ बलात्कार किया गया। इसके बावजूद मैं जिंदा हूं। मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है।

0: उसके पति की भी यही इच्छा है। वो मानती है कि इस घटना का शोक मनाने के लिए रुका या बैठा नहीं जा सकता है, आखिर परिवार को चलाना भी तो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल कपूर साहब,
2: ऐसे में तो बच्चियों पर बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। पुरुषवादी शक्तियां हमेशा उनके मनोबल को तोड़ना चाहती है। वैसे में मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वह तो दिल को दहला देने वाला है।
0: मध्य प्रदेश में सन 2011 में अवयस्कों के साथ बलात्कार के 1262 मामले दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में 2011 में 1088 यानी 1088 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 2011 में 818 मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में सन 2011 में 723 मामले दर्ज किए गए। इसे बच्चियों पर संकट तो नहीं और क्या कहा जा सकता है?
3: बिल्कुल कपूर साहब, ये बच्चियों पर संकट ही है। जब तक पुरुषवादी मानसिकता, पुरुषवादी सोच बदलती नहीं है, तब तक शायद इस तरह की घटनाओं में कमी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है।
0: जी
3: कपूर साहब, अगले कार्यक्रम में फिर कानून से संबंधित, देश के हालात से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभी हम रुकते हैं कपूर साहब, नमस्कार, धन्यवाद।
0: जी आप लोगों को भी नमस्कार, धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानूनी ज्ञान के तहत वार्ता और यह प्रस्तुति थी रवि भारती पटना की। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है वसुधैव कुटुम्बकम। तो आइए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

साथियों, व्यक्ति विशिष्ट में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह से। साथियों, भारत की आजादी की लड़ाई में पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह का नाम अमर है। आम धारणा ये है कि उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारी और निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया। लेकिन साथियों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने माइकल ओडवायर को मारा था, जो जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर थे। ओडवायर जहां ऊधम सिंह की गोली से मरे, वहीं जनरल डायर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर मरे। लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम आता है, तब आज भी सभी भारतीयों के मन में एक घृणा की लहर दौड़ जाती है। हम सभी जानते हैं जनरल डायर के नाम को। इस नाम को हम बचपन से इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते आए हैं और हमारे मन में इस नाम को लेकर एक घृणा है, एक इस प्रकार की विपरीत भावना है कि इस प्रकार का व्यक्ति जिसने इतने सारे जनसमूह को बड़ी निर्ममता से मार डालने के पश्चात मन में कोई पाप की भावना नहीं रखी और आगे चलकर लंदन में एक विलासितापूर्ण जीवन भी बिताया। साथियों, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जितने महान क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं, उनमें ऊधम सिंह प्रमुख हैं। क्रांतिकारी यानी आजादी की चिंगारी को मन में एक बीज के रूप में रोपकर स्वयं उस क्रांति की ज्वाला को अपने साथियों के बीच ले जाकर भारत को आजादी दिलाने वाला ऐसा वीर जिसका अकेले का नाम भले ही प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर नहीं हो, लेकिन इस पूरे आजादी के समुद्र में यदि उसके खून की एक बूंद नहीं होती, तो शायद आज हम आजादी की, सुकून की और चैन की सांसें नहीं ले पाते। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे ऊधम सिंह। इतिहासकारों का मत चाहे जो हो, ऊधम सिंह के मन में स्वतंत्रता को लेकर, आजादी को लेकर जो जज्बा था, उसे सलाम करते हैं और सुनते हैं उस आजाद भारत के सपने देखने वाले युवा वीर की कहानी। साथियों, ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। सन 1901 में ऊधम सिंह की माता और सन 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। ऊधम सिंह का बचपन का नाम था शेर सिंह और उनके भाई का नाम था मुक्ता सिंह, लेकिन उन्हें अनाथालय में नाम मिले ऊधम सिंह और साधु सिंह। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार ऊधम सिंह देश में सर्वधर्म संभाव के प्रतीक थे और यही कारण था उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद सिंह रख लिया था, जो भारत के तीन प्रमुख धर्मों का प्रतीक था। यही प्रतीक है साथियों कि ऊधम सिंह के मन में देश प्रेम की भावना बहुत प्रबल थी। धर्म को लेकर आजादी के मार्ग में कोई रोड़ा उन्होंने नहीं डाला। अनाथालय में ऊधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि सन 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। ऊधम सिंह पूरी तरह से अनाथ हो गए। सन 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। चूंकि ऊधम सिंह अनाथ हो गए थे, बावजूद इसके वे विचलित नहीं हुए और देश की आजादी और डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। साथियों, ऊधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटे जालियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी थे। राजनीतिक कारणों से जालियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी भी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर ऊधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जालियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली।
अपने मिशन को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी। इस प्रकार भारत का ये वीर क्रांतिकारी हत्यारे माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। साथियों, क्रांतिकारी ये शब्द सुनते ही हम सभी के मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि आती है जिसका मन गुस्से से भरा हुआ है। वो जब तक अपने दुश्मन से बदला नहीं ले लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। शायद क्रांतिकारी इस शब्द का या इस व्यक्तित्व का संबंध विवेक शक्ति या धैर्य से होता ही नहीं है, लेकिन ऊधम सिंह जैसे वीर और परिपक्व व्यक्ति के साथ क्रांतिकारी होने के बावजूद परिपक्वता, विवेक शक्ति और धैर्य, ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई थी। और यही कारण था साथियों कि ऊधम सिंह लंदन पहुंचे थे 1934 में, लेकिन अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका उन्हें मिला सन 1940 में। इतने सालों तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद भी उन्होंने अपने मन के संकल्प को मिटने नहीं दिया। साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद यानी 13 मार्च सन 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी और उस बैठक में माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। अपने जीवन भर की साध पूरी करने के लिए ऊधम सिंह उस दिन समय से पहले ही बैठक स्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने अपने रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छुपा ली थी और उन्होंने किताब के कुछ पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। जब बैठक पूरी हुई तब दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी और उससे उनकी तत्काल मौत हो गई। साथियों, ऊधम सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने इस दुनिया को संदेश दिया कि अत्याचारियों को हम भारतीय वीर कभी बख्शा नहीं करते हैं। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की और एक वीर की भांति उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। उन पर मुकदमा चला। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि वे डायर के अन्य साथियों को भी तो मार सकते थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऊधम सिंह ने जवाब दिया कि वहां पर कई महिलाएं भी थीं और भारतीय संस्कृति में महिलाओं पर हमला करना पाप है। साथियों, 4 जून सन 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई सन 1940 को उन्हें पैंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। और इस तरह से अपने धीरज के साथ, अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ और संकल्प के साथ ये क्रांतिकारी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। सन 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भी भारत को सौंप दिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुधैव कुटुम्बकम के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है नाटक, जिसका शीर्षक है बदलते रिश्ते भाग दो। इस नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं संदीप दुबे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नाटक।

0: सुधा, सुधा कैसी हो?
1: ठीक हूं।
0: मैं राहुल को ले जाने के लिए आया हूं। मेरी बात हो चुकी है श्याम से। श्याम, तुमने बताया होगा ना सुधा को सब? मैं पूरी पूरी कीमत देने को तैयार हूं सुधा।
2: मेरी कोई बात नहीं हुई। सुधा तुम्हारी पत्नी है, जो कहना है खुद ही उससे कहो। मुझे मध्यस्थ बनाने की जरूरत नहीं है।
0: तुम समझाओ ना उसे।
2: क्यों समझाऊं मैं? अरे क्या लगता हूं मैं उसका? 10 साल पहले जब मेरा सब लूट फाट कर चोर की तरह चले गए थे, तब क्या जाते जाते सुधा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए थे तुम? मेरी कुछ नहीं लगती तुम्हारी पत्नी, और ना ही तुम्हारा बेटा मेरा कुछ लगता है। जो कुछ कहना है अपने मुंह से कहो। सुधा, तुम फैसला करो। राहुल का गुर्दा चाहिए अजय को। पूरी पूरी कीमत देगा तुम्हें राहुल का बाप। जिस बच्चे के सहारे तुम पूरी उम्र गुजारना चाहती हो, उसी को खरीदने आया है अजय। अजय के दोनों गुर्दे समाप्त हो चुके हैं, और जीने के लिए उसे राहुल का गुर्दा चाहिए। राहुल जिंदा रहे या मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना तुमने? बस यही काम है अजय को तुमसे।
1: बेटे श्याम, अजय की मदद करो। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे विनती करती हूँ।
2: आप घर की बुजुर्ग है ना? आपकी नाक के नीचे आपके बेटे क्या क्या कर गए, क्या आपने कभी जाना? मुझ पर इल्जाम लगा दिया भाई साहब ने कि मेरा सुधा के साथ नाजायज संबंध है। क्या यह नहीं बताया कैसी हालात में सुधा आधी रात को मेरे घर पर आई थी, और क्यों आई थी? सुधा आपकी अपनी बेटी होती तब भी क्या आप अपनी आंखें मूंदे रहती?
1: तुम क्या चाहती हो सुधा? क्या राहुल को अजय पर कुर्बान करना चाहती हो? अजय का रक्त किसी से नहीं मिलता, इसलिए एक आस के साथ यह यहाँ चला आया कि शायद राहुल के शरीर का एक हिस्सा इसके काम आ जाए। अजय यहाँ क्या सोचकर चला आया, पूछो इससे। सुधा बेटी, क्या सचमुच राहुल अजय का बेटा है?
3: तो क्या कहना चाहती हैं आप? अजय का बेटा न होता तो किस विश्वास पर अजय यहाँ चला आता? आप कहना क्या चाहती हैं? राहुल किसका बेटा?
2: खैर छोड़ो, तुम बोलो सुधा, क्या अजय को राहुल देना चाहती हो?
1: राहुल हमारा पोता है, तो हमें बताया क्यों नहीं?
3: मैं कोई अधिकार मांगने नहीं आई हूँ। श्याम ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है माँ जी, कि किसी के भी सामने झुकना ना पड़े। श्याम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष यही था ना कि मेरे पति मुझसे दगा करके भाग गए, और मैंने अपने देवर जेठ की वासना का शिकार होना नहीं चाहता। मैं तब कहाँ जाती? माँ जी, श्याम ने मुझे वो दिया है जो मुझे इस घर में मिलना चाहिए था। रहा सवाल राहुल को आपको देने का, तो मैं...
1: हाँ बहू, उसका क्या?
3: वो मैं कैसे कर सकती हूँ? मात्र जन्म दे देने से वो अजय का बेटा तो नहीं हो जाता ना? पालने वाले का स्थान ज्यादा ऊंचा होता है। जब मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, श्याम ने ही रात रात भर जागकर राहुल को संभाला था। श्याम का खून नहीं है राहुल के शरीर में, फिर भी श्याम राहुल के लिए पिता से भी बढ़कर है, और इसका निर्णय तो श्याम ही लेंगे।
1: तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेटा?
4: मेरे पापा नहीं है, सबके पापा होते हैं, मेरे पापा नहीं है।
0: तुम्हारी माँ ने क्या बताया तुम्हें? तुम्हारे पापा नहीं है?
4: अगर होते तो मुझसे मिलने नहीं आते। मैं इतना बड़ा हो गया, मुझसे मिलने नहीं आए, मेरे जन्मदिन पर भी नहीं।
0: सुधा, राहुल को गोद में ले लो, घबरा रहा है। सच भी हो उसका कहना, 7 साल तक कोई नहीं लौटे तो कानून भी उसे मरा हुआ मान लेता है, और फिर मैं तो 10 साल बाद लौटा हूं। मैं तो अमेरिका में अपना जीवन जीता रहा, सुधा का जीवन रुक गया, श्याम का जीवन रुक गया। तुम दोनों के साथ अन्याय हुआ है। आज मैं आप दोनों पर अपना अधिकार समाप्त करता हूं। तुम दोनों कोई भी निर्णय लेने को आजाद हो। अपने ठहरे हुए जीवन को तुम उचित दिशा दो। मैं आभारी हूं तुम्हारा, जो तुमने मेरे घर की इज्जत को अपने पास संभाल कर रखा। तुमसे अच्छा इंसान कौन होगा सुधा के लिए? राहुल के पापा बस तुम ही हो सकते हो श्याम। पीछे मुड़कर मत देखना, अब पीछे तुम्हारा कुछ नहीं है। सुधा, जीती रहो, खुश रहो।

0: 苏檀，
1: 苏檀，
2: 嗯，
1: क्या सोच रही हो?
2: कुछ नहीं।
1: मरता हुआ अजय यदि ईमानदार होता तो मैं ही अपना शरीर काटकर एक गुर्दा उसे दे देता, कुछ भी करता, कैसे भी तुम्हारा सुहाग बचाने का प्रयास करता, पर वह लौटा भी था तो एक जल्लाद बनकर, एक अजनबी बनकर, मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी?
2: ऐसा ऐसा क्यों हो जाता है श्याम? ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता? रिश्ते इस तरह बदल क्यों जाते हैं श्याम?
1: सुधा, कुछ प्रश्नों के उत्तर होते ही कहाँ हैं जो मैं कोई उत्तर देता। कुछ प्रश्न तो सदा अनुत्तरित ही रह जाते हैं। तुम्हें जी जान से चाहने के बाद भी एक लक्ष्मण रेखा का सम्मान किया है हमने। सदा एक अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं मैं। राहुल ही तो एक सेतु है जिसने हमें कच्चे धागे से बांध रखा है।
2: मुझे खुशी है श्याम, मुझे खुशी है कि मेरा राहुल अब लावारिस नहीं है।
1: हाँ सुधा।

बदलते रिश्ते। अभी आपने सुना ये नाटक। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे संदीप दुबे, अपर्णा सिंह, अंतरा करवड़े और मास्टर संकल्प।

अभी आप सुन रहे थे नाटक जिसका शीर्षक था बदलते रिश्ते भाग दो, और इसके लेखक एवं निर्देशक थे संदीप दुबे। साथियों, अब कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपकी दोस्त ज्योति कुजूर को, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों, जाने से पहले आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या iOS मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो सुनते रहिए सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। दोस्तों, अब आज्ञा दें आपके दोस्त विवेक पीटर रॉबर्ट को, और रिकॉर्डिस्ट हैं आकाश जांगरा। नमस्कार।

सत्य स्वर सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को ग्लोरिया गांगले का प्यार भरा नमस्कार तथा आज की सभा में हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अभी की सभा 4 से 5 में आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक मुलाकात, युवा विकास, युग संचार और भक्ति गीत।

0: श्रोता साथियों नमस्कार। मातृत्व के आज के अंक के साथ मैं समता। और देखिए हमारा जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने इनवाइट किया था डॉक्टर रक्षा गोयल को और वही बात अब हम आज आगे जारी रखेंगे। रक्षा जी आप एक बार फिर हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
0: तो रक्षा जी हमने जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने बात की कि हम प्रेगनेंसी के पहले कैसे अपने आप को तैयार करें और अब जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उस समय तो उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि न सिर्फ उसे अपने आप को हेल्दी रखना है बल्कि अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके शरीर में जाए उसकी भी तैयारी करनी है। तो ऐसे समय हमारा जो खान पान है हमारी डाइट है वो कैसी हो?
1: अब जबकि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है तो जैसे बोला जाता है यूजुअली घरों में कि अब आपको दो लोगों का खाना खाना है, एक आपका भी और एक आपके बच्चे के लिए भी। जी हाँ ये कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं।
0: अच्छा।
1: दो लोगों का खाना खाना मतलब ये नहीं होता है कि आप जितना खा रहे हो उससे डबल
0: कर लें।
1: हमें डबल करने का जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है प्रॉपर तरीके का खाना खाना,
0: जिसे संतुलित आहार,
1: संतुलित आहार जिसे हम बोलते हैं। माने अगर हम कोई खाना माना कि हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन का जरूरत है, अच्छी क्वालिटी के, मतलब यहाँ हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। उस तरह का फूड अगर हम लेते हैं, उस तरह का खाना अगर हम खाते हैं तो हमारे बच्चे का विकास के लिए जरूरी है, इंटरनली उसकी हड्डियां बनने के लिए, उसका सांचा बनने के लिए, उसके ब्रेन के लिए, इन सब के लिए हमारा खाना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
0: तो रक्षा जी जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज जो होता है पहली तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें बहुत सारी महिलाएं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करती और हम जोर देते हैं कि आपको अच्छा खाना है लेकिन उस वक्त तो एक निवाला खाना भी दुश्वार होता है और ऐसे समय बहुत हालत खराब होती है तो हम उस वक्त में अपने आप को कैसे मेंटेन करें?
1: जी हाँ जो पहला तिमाह जिसे हम बोलते हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो हमें कंप्लेन आती है एक मदर की साइड से या वुड बी मदर जिसे बोले उनकी साइड से वो होता है कि हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है,
0: उल्टियां
1: बहुत ज्यादा हो रही है, खाना देखकर उल्टी जैसी इच्छा होती है जिसे हम नोशिया बोलते हैं, होता है, बहुत कॉमन है ये चीज होती है। पर ध्यान हमें ये रखना है कि इनका कई बार कारण होता है कमजोरी। ये ज्यादातर उन लोगों में देखा जाता है जो प्रेगनेंसी से पहले अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं। अगर प्रेगनेंसी से पहले हमारा शरीर उस चीज के लिए तैयार है तो इस तरह की परेशानियां हमें कम से कम महसूस होती हैं। अब इसके बाद अगर उसके बाद भी ये परेशानी उन्हें लगती है तो यूजुअली होता है कि लोग खाना बंद कर देते हैं कि नहीं इच्छा हो रही है मत खाओ, नहीं इच्छा हो रही है तो उस जगह आप खाना चेंज करके खाओ, जो खाने की इच्छा नहीं है वो छोड़कर आप दूसरा खाना खाओ। कई बार प्रेगनेंसी में होता है कि जो खाना हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पर वही चीज बिल्कुल अच्छी नहीं
0: लग रही है।
1: कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर हम ये सोचें एक सेट रूल होता है कई जगह पर कि जब कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसे एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि आपको ये नहीं खाना, ये चीज नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन घर वाले ये नहीं बोलते कि आप ये सब चीजें खा सकते हो। आजकल हम किसी भी चीज को खाने में मना नहीं करते हैं, आप वो खाओ जो आपको पसंद आता है, जो आपका शरीर डाइजेस्ट कर सकता है, जो आपका शरीर उसे पचा सकता है। जहां तक उल्टी की बात होती है, अगर किसी को बहुत फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होती है, बहुत ज्यादा उल्टियां होती है, इसका मतलब होता है कि शरीर से पानी की कमी हो रही है, तो उस टाइम पे जरूरी है कि हम शरीर में पानी का इंटेक अच्छा रखें। पानी किसी भी रूप में पिया जा सकता है, चाहे आप नींबू पानी बना के पियो, रूह अफजा शरबत बना के पियो, आप शिकंजी बना के पियो, छाछ लस्सी, किसी भी रूप में। आपको बस ध्यान रखना है कि अगर मुझे उल्टियां ज्यादा हो रही है तो शरीर में पानी की कमी ना हो।
0: तो इसका कुछ हम ऐसा कुछ तरीका है कि हम जो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि यदि आप सुबह सुबह उठ रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग उठते से ब्रश के भी पहले अगर आप कुछ खा लेती हैं तो मे बी आपको जो थोड़ी सी उल्टी की जो समस्या है उसमें कंट्रोल होगा।
1: जी हाँ बिल्कुल ये होता है क्योंकि कई बार उल्टियां होती है एसिडिटी के कारण या खाली पेट के कारण। हम पहले ही 8 घंटे कुछ नहीं खाए होते हैं क्योंकि हम सोए रहते हैं, उठने के बाद में अगर हम 2 घंटा और इस चीज में वेस्ट कर दें कि हमने कुछ नहीं खाया, पहले घर का काम किया या पहले अपनी और जिम्मेदारियों को देखा, तो हमारे पेट में एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब वो एसिड किसी न किसी तरीके से तो शरीर से बाहर निकलेगा, और जहाँ प्रेगनेंसी होती है तो वो फिर आता है ऊपर की साइड, यानी उल्टी होना या नोशिया वाला सेंसेशन होना। तो इसके लिए जरूरी है कि उठते से थोड़ा सा कुछ खा लें,
0: बिस्किट खा लें, टोस्ट खा लें या ऐसा कुछ।
1: उससे भी अच्छा होगा आप एक ग्लास दूध ले लें या उसके साथ में बादाम खा लें या एक फल खा लें, वो सबसे हेल्दी फूड रहेगा।
0: तो चलिए, ये तो हुई हमारी स्टार्टिंग फेज वाली बात। उसके बाद जब आपका बच्चा जो पेट में सेटल हो गया और अब हमें चाहिए वेट गेन, तो उस समय हमें क्या खाना है?
1: जहां हम वेट गेन का बात करते हैं वहां हमें बेसिकली चाहिए होता है मसल गेन। वहां हम मसल गेन अगर बात करते हैं तो मसल हमारी बनती है प्रोटीन से। फिर से प्रोटीन का रोल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि हम जो भी अपना खाना खा रहे हैं, जो मैंने आपसे बात की थी कि हमारा क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा होना चाहिए,
0: तो गुणवत्ता जो हमारी श्रोता, हमारे खाने की गुणवत्ता पर हमें ध्यान देना है
1: जी। तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम वजन बढ़ाना चाह रहे हैं तो वह सही तरीके का वजन बढ़े, क्योंकि एक वजन होता है कि आप बहुत सारा घी वाला चिकनाई वाला खाना खा लो तो उससे वजन बढ़ रहा है, लेकिन वो अच्छा वजन बढ़ना नहीं माना जाता है। तो फिर से हमें, यानी हमारे खाना एक संतुलित आहार, एक थाली इतनी अच्छी हो जो देखने में कलरफुल हो, जिसको देखकर मन अच्छा हो जाए।
0: यानी हमें सलाद खाना है,
1: बिल्कुल,
0: हमें दाल जरूर चाहिए, चावल जरूर चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी,
1: बिल्कुल। और कलर की जहां हम बात करते हैं, रंगों की जहां हम बात करते हैं खाने में, यहां हम बात करते हैं नेचुरल कलर, प्राकृतिक कलर की, ना कि हम किसी इंजेक्शन वाले कलर की बात कर रहे हैं।
0: नहीं, आजकल है ना रक्षा जी, ये बड़ी समस्या है क्योंकि पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा डलते हैं, तो हमारे मन में एक ये कंफ्यूजन रहता है कि हम जो भी चीज खा रहे हैं तो हम खा क्या रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई बस नहीं। लेकिन श्रोता साथियों, फिर भी हम एटलीस्ट अपनी साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। हम जो भी चीज पका रहे हैं उसको आप ठीक तरीके से धोइए, साफ बर्तन इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथ साफ रखिए, और मैं सोचती हूँ कि जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें ही।
1: बिल्कुल, जब हम खरीदते हैं तब हम कई चीजों पे ध्यान दे सकते हैं कि कलर जो दिख रहा है, सबसे जरूरी होता है कि उस मौसम का फल या सब्जी खाएं जो जिस मौसम में उगता है। अगर हम वो लेना शुरू करेंगे तो हमें नेचुरली वही मिलेगा जो सीजन में मिल रहा है, जो सीजन में उगता है उसमें कोई कलर नहीं डालता। लेकिन अगर हम ऑफ सीजन में कोई फल या सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो पहला चीज कि हमें फ्रीज का रखा हुआ मिलेगा जो कि कोल्ड स्टोरेज में होता है, और उसे उगाने के लिए इन्हें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर, जो हम बोलते हैं कि खाद, केमिकल वाली, उसका यूज करना पड़ेगा। अगर वो होगा तो नेचुरल सी बात है कि हमारे खाने में वो सब आ ही जाएंगे। तो सबसे जरूरी है मौसमी फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना। इसके अलावा में, जैसे हमने बात की प्रोटीन क्वालिटी को लेकर, इसके दूसरा चीज होता है आयरन। एक और हमारे यहाँ पर समता जी एक मिथ होता है या भ्रांति है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ फल बंद कर दिए जाते हैं।
0: पपीता
1: मना करते हैं, कुछ लोग मौसमी मना कर देते हैं, कुछ पाइनएप्पल मना कर देते हैं। किसी भी तरह से इन फल का रोल मिसकैरेज में नहीं होता है, आराम से ये सारे फल खाए जा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर सबसे ज्यादा कब्जी की शिकायत होती है एक मदर को। कब्जी तभी दूर होगी जबकि रेशे वाली चीजें खाई जाएं, और हम सब जानते हैं कि पपीता कब्जी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ये सब चीजें खाना चाहिए, रेशे जितना ज्यादा हम खाने में ले सके वो अच्छी बात है। आयरन का जैसे हमने बात किया, एक सामान्य लेडी से ज्यादा आयरन का जरूरत बढ़ जाता है शरीर में। जैसे हम सामान्य बात करें तो 30 मिलीग्राम आयरन सफिशिएंट होता है कि एक नॉर्मल
0: महिला
1: के लिए जरूरी है। लेकिन जहां गर्भावस्था की बात करें वहां इसका मात्रा बढ़कर 38 ग्राम पहुंच जाता है। माने जो हमें ज्यादा 8 ग्राम लेना है वो हमें अपने खाने के थ्रू, तो जो हमने बात की गुणवत्ता की, वो तब भी आएगा जब हमारा खाना उतना अच्छा होगा। एक चीज और इसमें है, आजकल जो लेडीज होती हैं, कई लोगों में कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे हम बोलें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOD या हम डायबिटीज का बात करते हैं, कई लेडीज में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी गर्भावस्था के टाइम पर ब्लड में शक्कर का लेवल बढ़ जाता है।
0: हाँ।
1: जिसे हम गर्भावस्था की डायबिटीज कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत से लोगों को होता है। हमें ध्यान ये रखना है कि इस समय पर डॉक्टर के पास जाएं, उन्होंने जो मेडिसिन दिया है उसे लेना शुरू करें, अपनी मर्जी से बंद ना करें, और दूसरा उसी के साथ में जो आपको खाना पीना बताया है उन चीजों पे ध्यान दें। और अगर आप में गर्भावस्था के टाइम पर ये कोई बीमारी है, ये कॉम्प्लिकेशन है, तो डिलीवरी के बाद में हो सकता है कुछ टाइम तक आपको ये ठीक लगे, लेकिन आपको ज्यादा सजग होने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस पे आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये आपके बेबी को भी अफेक्ट कर सकता है।
0: तो श्रोता साथियों, देखिए समय जो है वो तो पंख लगाए उड़ता चला जाता है। हमारे इस एपिसोड का समय तो खत्म होने को है, लेकिन बातें अभी बहुत सी बची हैं, तो उम्मीद है कि हमारे अगले एपिसोड में एक बार फिर मैं रक्षा जी को आपकी सेवा में लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही, मुझे अन्य समता को दे इजाजत। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा विकास और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: कार्यक्रम है युवा विकास और इसके अंतर्गत चर्चा है भारतीय युवा नई दिशा। इसका आलेख श्री कृष्णकांत दुबे ने तैयार किया है और भाग ले रहे हैं मैं इंदु
1: और मैं भवानी।
0: नमस्कार श्रोताओं।
1: मित्रों, विश्व में यह अवधारणा फिर विकसित हो रही है कि जब तक नैतिक मूल्यों का विस्तार नहीं होगा, दुनिया में व्याप्त व्यथाएं कभी समाप्त नहीं होंगी।
0: क्योंकि आज हर तरफ आर्थिक विषमताएं हैं, गरीबी और असहायता है, आतंक से उपजा भय है, उस भय से मनुष्य जाति बुरी तरह आहत है, संतरस्त है। एक ओर समृद्धि के महाशिखर हैं, तो दूसरी ओर अंधकार भरी गरीबी और उससे उपजी खाइयां, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता।
1: इस बीच एक प्रश्न है, क्या इन सबसे मुक्ति संभव है? आज सार्वजनिक रूप से यह प्रश्न किया जाए तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि विषमता का अंधेरा इस तरह व्याप्त है कि उसमें आशा की किरणें नजर ही नहीं आती हैं।
0: लेकिन भवानी
1: जी,
0: समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कि हर जो उत्तर जो है
1: जी
0: वो सकारात्मक
1: है। हाँ, जी हाँ।
0: उनका विश्वास है कि अगर हर व्यक्ति में इन नैतिक मूल्यों का प्रसार कर सकेंगे तो निश्चित ही इस विश्वव्यापी दुखद स्थिति से, जिसका हमने भी पहले जिक्र किया, निजात पाई जा सकती है।
1: अगर युवा शक्ति आगे बढ़कर इस दिशा को ग्रहण कर ले तो इस संदर्भ में बहुत कुछ किया जा सकता है। समाज में सही नैतिकता सचमुच विस्तार पा सकती है, विषमताएं भी दूर हो सकती हैं, मातृभाव का विस्तार हो सकता है और इससे प्रेम और अहिंसा की स्थापना, मानवीय भावनाओं का व्यक्ति चरित्र में प्रवेश हो सकता है। पर इसके लिए अगर ईमानदार कोशिश हो तो इसमें निसंदेह सफलता प्राप्त हो सकती है।
0: अगर इसके लिए ग्राम, नगर, प्रदेश, देश और फिर विश्व स्तर पर यही सही प्रयत्न किए जाएं,
1: जी हाँ,
0: तो ये सपना सहज ही पूरा हो सकता है। लेकिन भवानी
1: जी,
0: हम एक बात नजरअंदाज कर जाते हैं।
1: कौन सी बात?
0: कि दुनिया में कुशक्तियों के बजाय
1: हाँ।
0: शुभ और मंगलकारी शक्तियां अधिक हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: यही कारण है कि वही दुनिया चल रही है
1: हाँ।
0: और विकास की गतिविधियां हैं और मनुष्य जाति का
1: अस्तित्व बना हुआ है।
0: बना।
1: लेकिन इंदु जी, अब समय आ गया है जब उन शुभ शक्तियों को संपूर्ण रूप से जागृत करना होगा। अगर यह हुआ, यानी समाज की ये शुभ

0: आगे होता है।
1: बिल्कुल, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। यह जानकर सचमुच अच्छा लगा कि इस संदर्भ में कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ संस्थाएं इस दिशा में अपनी भागीदारी भी निभा रही है। यह अपने आप में एक भली बात है, अच्छी बात है। अगर अंधकार के बीच कहीं कोई दीपक जलाता है तो वह निश्चित प्रकाशदाता बन जाता है। कभी देखने में कोई छोटा प्रयास भी कभी कभी बड़ा आकार ग्रहण कर लेता है। यह अपने में भली बात ही तो हो सकती है और भली बात कही जाएगी।
0: हाँ,
1: इसे
0: हाँ, अगर युवा वर्ग ऐसे किसी संस्था या आंदोलन से जुड़ पाए तो इससे अच्छी बात की भला क्या होगी।
1: बिल्कुल,
0: अगर वे ऐसी संस्था और आंदोलन से न भी जुड़ पाए
1: जी,
0: लेकिन अपने में उन अच्छे भावों को, उन विचारों को, उन आदर्शों को जागृत कर लें और उस दिशा में अपने को प्रवृत्त कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत कुछ हो सकता है। तो बस आवश्यकता होगी उस दिशा में प्रवृत्त होने की। हाँ, इसके लिए अपने में कुछ गुण आदर्शों का समावेश कर लें तो ये गुण आदर्श उन्हें अच्छी दिशा देने में समर्थ होंगे। कोई युवा कहे कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टि जागृत कर ले, उससे उसके जीवन में, बल्कि कहें उसके आसपास, उसके निकट रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी वही भाव विचार जागृत होने में मदद मिलेगी। और कई हैं जो हर कहीं कमी, हर कहीं शून्यता को ही देखते पाते हैं। उनका यह दृष्टिकोण सदैव के लिए कुछ इस तरह बन जाता है कि सब कुछ होने के बाद भी वे अपने में निरंतर अभाव और दुख महसूस करते रहते हैं।
0: लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से
1: जी
0: अपने में सुख और संतुष्टि
1: महसूस कर लेते हैं।
0: ऐसे आशावादी लोग समाज में अच्छा भला वातावरण निर्मित करते हैं तथा प्रेममय वातावरण बनाते हैं, आस्थावादी वातावरण बनाने में भी समर्थ होते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं।
1: जी हाँ,
0: ऐसे स्वस्थ आस्थावादी वातावरण के अभाव में समाज में कई विसंगतियां जन्म लेती रहती हैं। अगर जागृत नहीं रहेंगे तो विसंगतियां होंगी।
1: जी हाँ, हाँ, जो लगातार बढ़ती ही जाती है। यूं कहें, अच्छा वातावरण समाज को सदैव शुभ दिशा देता है। याद रखें, जिन्हें आधे करे दूध के गिलास को हमेशा आधा खाली ही नजर आए, उन्हें आप क्या कहेंगे समझ लें। उनके जीवन में कभी संपूर्णता नजर नहीं आ सकती। जब ग्लास आधा भरा नजर न आए, ऐसी दृष्टि में आप आनंद और उत्साह के भाव विचार
0: कभी नहीं पा सकेंगे। सच तो ये है कि मनुष्य के अपने भाव विचार ही उसके अपने सुख दुख में सुख दुख के कारण होते हैं। सुख दुख समझ लो कि उन्हीं की वजह से होता है। जो युवा अपने जीवन को शिक्षा दे रहे हैं, ये दिशा दे रहे हैं, उन्हें निश्चित सकारात्मक दृष्टि कोण की ही आवश्यकता होती है। युवा वर्ग अगर इस भाव विचार को ग्रहण करेगा तो समाज स्वयं स्वस्थ दिशा पा जाएगा।
1: तो बस
0: क्योंकि युवा वर्ग ही तो है
1: जी हाँ
0: हमारे
1: देश को, समाज को, परिवार को आगे बढ़ाने वाला। तो बस अगर युवा इस संदर्भ में बुनियादी परिवर्तन कर लें तो बहुत कुछ संभव है। इसी तरह इंदु जी, युवा वर्ग को वर्तमान स्थितियों के बीच अपने हृदय में, अपने दिल में एक विश्वास जागृत करना होगा और वह विश्वास होगा उन्हें अपने उद्देश्य में सफल होना है तो वे सफलता भी शुद्ध मार्ग से ही अर्जित करें। उन्हें इसी का संकल्प लेना होगा। हाँ जी, और उसी से उन्हें अपनी जीत का मार्ग बनाना होगा और वही रास्ता बनाना होगा।
0: हम पराजित नहीं होंगे, चाहे कैसी भी स्थितियों का सामना करना पड़े, हम हार नहीं मानेंगे।
1: बिल्कुल,
0: पर हमारी जीत, हमारी सफलता नैतिक मूल्यों पर ही आधारित होगी।
1: लेकिन इंदु जी
0: जी,
1: इस पर विचार किया जाए तो यह तभी संभव होगा जब युवा वर्ग जीवन के 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे।
0: वो कौन से?
1: और आप कहेंगे, पूछ रही है मुझसे कौन से, तो मैं बताती हूँ वो बिंदु कौन कौन से हैं। वे बिंदु हैं ईमानदारी,

0: वैचारिक शुद्धता, प्रेम, निस्वार्थता और नैतिकता, इन्हीं गुणों को अपने में जागृत करना होगा हमारे युवाओं को। जीवन के इन्हीं प्रकाश बिंदुओं को अपने में धारण करना होगा। इन गुणों को धारण करके ही युवा वर्ग अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो यह सब बातें उन्हें जीवन में आनंद देगी और वे इससे निरंतर अपनी प्रगति की दिशा को विस्तार देने में पूरी तरह समर्थ भी हो सकेंगे।
1: वर्तमान भारतीय युवा वर्ग से हमारा यही कहना है कि वे जीवन के इस प्रकाश बिंदुओं को जो बताए हैं, 6 अपने चरित्र का अंग बना लें, तो वे देखेंगे कि उन्हें किन किन बातों की उपलब्धियां प्राप्त होंगी। बस वे एक बार उस सूत्र को अपने जीवन में अपना तो लें, उनके उच्चतम परिणाम उनके सामने आने लगेंगे।
0: बिल्कुल सही लिखा है दुबे जी ने। जो युवा सजग हैं, थोड़े बौद्धिक हैं, वे समाज, प्रदेश, देश और विश्व के संदर्भ में अवश्य सोचते ही हैं। इन स्तरों पर जो घटनाएं, चाहे वे भली हों या बुरी, उस पर निश्चित चिंतन करते ही हैं। उस संदर्भ में उनके मन में प्रश्न होते हैं कि क्यों होता है ऐसा। जी, आज भारत जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, हर कहीं जो दुखद स्थितियां निर्मित की जा रही हैं, वह सब भी उनकी सोच के दायरे में है। अगर इस विषय में इंदुजी गहराई से सोचा जाए, विचार किया जाए, तो ज्ञात होगा कि समाज में लगातार कुछ ऐसे तत्व उभर आए हैं जिन्होंने संपूर्ण भारतीय समाज में कई अंतर विरोधों को जन्म दे दिया है और जो देश समाज को अंधी दिशाओं में धकेल देने की कोशिश कर रहे हैं।
1: वे चाहते नहीं ना ये बात।
0: जी हाँ, वे नहीं चाहते देश समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे का विस्तार हो। इस संदर्भ में युवाओं से हमारा यही कहना है, वे स्वयं सबसे पहले यह देखें कि कहीं उनके अपने काम इन सब में कहीं सहायक तो नहीं है।
1: हाँ, देखें उनके अपने विचार स्वयं शुद्ध हैं या नहीं। देखें कि कहीं उनके अंतर्मन में कहीं कोई विशेष की भावना तो नहीं है। अगर है तो वे संकल्प करें कि हम इसे दूर करके रहेंगे, उससे मुक्ति पाएंगे। और स्वयं कोई ऐसी आदत तो नहीं है जो अन्य लोगों को
0: आहत करती है, परेशान करती है। भारतीय युवा जानते हैं, अच्छी तरह से ये जानते हैं कि देश का एक बड़ा भाग हर वर्ष जल अभाव से पीड़ित होता है। आज देश का हर युवा इस स्थिति से परिचित है। एक बार युवाओं के परिसंवाद के दौरान एक युवा ने एक बहुत प्रेरक प्रसंग सुनाया था। और वह था, स्वतंत्रता संग्राम के दिन थे, तब एक बार महात्मा गांधी इलाहाबाद आए और वे पंडित मोतीलाल नेहरू के निवास आनंद भवन में ठहरे। जब सुबह महात्मा गांधी हाथ मुंह धो रहे थे, तब श्री जवाहरलाल नेहरू उनसे बातें कर रहे थे। जब गांधी जी हाथ मुंह धोकर कुल्ला करने लगे, तब तक पात्र का पानी समाप्त हो चुका था। इससे महात्मा गांधी का मन कुछ उखड़ा सा गया और बातचीत बीच में ही बंद हो गई। जब जवाहरलाल जी ने इसका कारण पूछा, तो वे बोले, मैं बातचीत में इतना खो गया था कि सारा पानी खर्च हो गया, अब मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। गांधी जी की यह बात सुन जवाहरलाल जी हंसते हुए बोले, बापू, बस इतनी सी बात है, इलाहाबाद में तो गंगा और यमुना दोनों बहती हैं, जितना चाहे उतना पानी इस्तेमाल कीजिए।
1: इस पर गांधी जी ने क्या कहा?
0: इस पर गांधी जी ने कहा, ये गंगा और यमुना अकेले मेरे लिए तो नहीं बहती, प्रकृति में कोई भी चीज किसी भी मात्रा में क्यों न उपलब्ध हो, परंतु मनुष्य को अपने लिए उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए जितनी की जरूरत हो। इंदु जी, दुबे जी ने आगे यह भी लिखा है कि सकारात्मक सोच में भी मानवता हो तो ही वह उत्तम होगा। तो इस संदर्भ में एक घटना स्मरण हो आता है। देखिए वो घटना क्या है। आप
1: अपने युग के गोल्फ चैंपियन श्री रॉबर्टो डी वाइचेंजो के पास एक महिला आई और उनसे रोते हुए बोली, मेरी बेटी को रक्त कैंसर है और उसके इलाज के लिए काफी धन की जरूरत है। ये सुनकर उन्होंने उस महिला को वो रकम दे दी। एक दिन उनके एक मित्र ने आकर कहा, ये आपने क्या किया, उस महिला की बेटी का कोई कैंसर वैंसर नहीं है। उसने वो पैसे अपने लिए मांगे, उसे पैसे की जरूरत कैंसर के लिए नहीं थी।
0: अच्छा।
1: इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, मित्र तुमने सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई। मुझे पैसे देने से कहीं ज्यादा खुशी ये बात सुनकर हो रही है कि उसे कैंसर
0: नहीं है। तो मित्रों, इस प्रसंग ने जो सकारात्मक सोच की ध्वनि दी है उसे युवा वर्ग अपना ले।

अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा विकास और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, अब सुनते हैं एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

0: अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, आप सुनते हैं कार्यक्रम युग संचार, जिसका शीर्षक है आदिवासी संस्कृति की अनूठी कलाएं, और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र कुमार ओझा, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।
1: हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्र कुमार ओझा का नमस्कार। युग संचार, आज के युग संचार कार्यक्रम का शीर्षक हमने रखा है आदिवासी संस्कृति की अनूठी कलाएं। साथियों, आज जब रोहित स्कूल से घर आया तो बड़ा खुश नजर आ रहा था। ड्राइंग रूम में आया, सोफे पर बस्ता पटका और वहीं बैठे दादाजी की गोद में बैठ गया। दादाजी ने प्यार से सर पर हाथ फेरा और बोले, क्या बात है छोटे नवाब, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे हाँ दादाजी, पता है आज हमारे स्कूल में आदिवासी लोगों की मंडली का नाच गाना बड़ा शानदार प्रोग्राम हुआ, बहुत मजा आया सबको, बहुत मजा आया। और फिर रोहित गोदी में से एकदम उतरकर पास ही बैठ गया। बोला, दादाजी कार्यक्रम तो वैसे बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात सभी कलाकारों में मैंने देखी, सभी के हाथ पैर मुंह तथा पीठ पर गहरे नीले रंग की कुछ आकृतियां और कुछ निशान छपे हुए थे। इसको सुनते ही दादाजी झट से बोले, बेटा रोहित, ये निशान छपने से नहीं बनते, बल्कि गोदने से बनते हैं, और ये आदिवासी जनजाति और ग्रामीण संस्कृति की बरसों बरसों पुरानी कला है, और इस कला को ये लोग गुदना कहते हैं। और खास बात ये है कि ये निशान महिलाओं के शरीर पर ज्यादातर गुदे रहते हैं, ये निशान उनके लिए गहनों की तरह होते हैं, और इन निशानों के कारण ये औरतें कुछ अलग आकर्षक और सुंदर नजर आती हैं। रोहित को बड़ा मजा आ रहा था ये सब बातें सुन के। बोला, दादाजी और बताइए ना इस बारे में। दादाजी ने बोलना शुरू किया, देखो छोटू, इन लोगों में ये मान्यता है कि सोने चांदी के गहने तो जब तक जिंदा हैं तब तक ही साथ रहते हैं, लेकिन गुदने के निशान मरने के बाद भी शरीर का साथ नहीं छोड़ते। इसके साथ ही ये लोग ऐसा भी मानते हैं कि गुदने मौत के बाद भी आने वाली अगर कोई यातनाएं हैं, दुख हैं, तो उनसे भी रक्षा करके मुक्ति दिलाते हैं। दादाजी ने रोहित की ओर देखा, हाँ, अरे अरे कहाँ खो गए छोटू, यही सोच रहे हो ना कि ये भला कैसी मान्यता है। पर बेटा, इन मान्यताओं का आधार विश्वास और इन लोगों के पुरखों द्वारा विरासत में छोड़ी गई रीतियों और रिवाजों के अनुसार ही तो कायम हुई हैं, और इन्हीं का एक संचार आज तक जारी है। और दरअसल गुदना ये एक बड़ी ही अनोखी कला है, जिसको कुछ मान्यताओं के साथ जोड़ दिया गया है। हम वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं, उन्हें देवता मानते हैं ना, इसीलिए करते हैं। और ये भी है उसके साथ कि हमें वृक्ष शीतल छाया और फल देते हैं, तो ये गुदना भी एक ऐसी ही परंपरा है, और आदिवासी क्षेत्रों में ये बेहद लोकप्रिय है। जिस महिला के अंग पर जितने ज्यादा गुदने के निशान होंगे, वो अपने समुदाय में उतनी ही ज्यादा लोकप्रिय होगी। लेकिन दादाजी, ये गुदने जो कभी मिटते नहीं ना, ये बनाए कैसे जाते हैं अगर छपते नहीं है तो, रोहित ने एकदम से सवाल किया। अरे बेटा पूछो मत, दादाजी बोले, ये निशान जो है ना, सुई की नोक से गोद गोद कर सुई चुभो चुभो कर बनाए जाते हैं। हाय हाय हाय हाय, अरे तब तो बड़ा ज्यादा दर्द होता होगा ना दादाजी, है, रोहित बोला। हाँ बेटा, बहुत दर्द तो होता है, लेकिन ये स्त्रियां हंसते हंसते इसकी बेहद पीड़ा को सहन कर लेती हैं, इस विश्वास के साथ कि गुदाने से इनकी मनचाही मुराद इच्छा जरूर पूरी होगी। अब सुनो क्या क्या गोदा जाता है। आड़ी तिरछी लकीरें शरीर के सब हिस्सों में बनाई जाती हैं, जो किसी मंत्र के समान प्रतीक के रूप में माना जाता है, और छाती पर मोर या टोकनी, माथे पर त्रिकोण का निशान, हाथ के पीछे की ओर झोपड़ी और जांघों पर धनुष गोदा जाता है। रोहित चुपचाप सुन रहा था और दादाजी सुना रहे थे। हाँ तो बेटा, इस कला का कार्यक्रम आदिवासियों द्वारा एक खास उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस शुभ कार्य का संदेश वाद्यों जैसे तुरही, मादल, ढोल वगैरह बजा बजाकर दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। फिर सारे लोग इकट्ठे होकर जोर शोर से नाचते गाते हैं, ताकि गुदना गुदाने वाली स्त्रियों को हो रहे दर्द से इनका ध्यान हटाया जा सके। क्योंकि एक तरफ तो गुदने का कार्यक्रम चल रहा है औरतों के शरीर पर, और दूसरी तरफ जोर जोर से ढोल मादल बजते हैं तो उनका ध्यान बढ़ जाता है। तो समझे रोहित, ऐसी दर्द से भरी विचित्र और अनोखी कला से भरपूर है हमारा देश, जो परंपराओं का संचार भी करता है और आपस में एक दूसरे से हम सबको जोड़ता है। और ये कलाएं विदेश में भी विस्तार पा रही हैं, तो यही इनका संचार है, और हमारे यहां शहरों में भी इस कला को अपनाया गया है। तो क्या दादाजी, शहरों में भी औरतें या आदमी इस तरह के रिवाजों को मानते हैं? क्या वे भी ये सुई के चुभने की पीड़ा सहन करके गुदने गुदवा सकते हैं? रोहित ने फिर प्रश्न किया। बेटा, तुमने सवाल तो बहुत अच्छा किया, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में रहने वाले इन सबको नहीं मानते। जैसे जैसे विकास की प्रक्रियाएं हो रही हैं, शहरीकरण हो रहा है, उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, बाजारवादी संस्कृति बढ़ रही है, ये सब चीजें धीरे धीरे धीरे धीरे नकारते जा रहे हैं। लोग इन सबको नहीं मानते हैं। अब ना माने, लेकिन आज भी ये परंपराएं जीवित हैं, क्योंकि शुद्ध रूप से ये केवल हमारी आदिवासी जनजाति संस्कृति की कला है। हाँ, कुछ साल पहले शहरों के आसपास जो गांव होते थे ना, वहां के कुछ लोग अपने हाथों पर अपना नाम जो है वो जरूर गुदवा लेते थे। औरतें भी गुदवाती थी, और कभी कुछ ऐसा मौका आ जाए, कोई प्रसंग आ जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो वो नाम मुंह से नहीं बोलती थी, वो अपना हाथ बढ़ता देती थी जिस पर उसके पति का नाम गुदा हुआ रहता था। तो स्त्रियां जो विवाहित होती थी ना, वे जैसा कि मैंने अभी बताया, अपने पति का नाम गुदवा लेती थी और अपना हाथ दिखा देती थी। क्योंकि हमारे यहां आज भी अधिकतर गांव देहातों में ये मान्यता है कि भाई पति का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए। ये भी एक मान्यता है, रीति है, रिवाज है। और ऐसा भी नहीं है कि ये रीति एकदम से नकार दी जाए। कुछ बातें अगर अच्छी होती हैं तो वो हमेशा जीवित रहती हैं। वैसे कुंवारी लड़कियां भी शौक के कारण अपना नाम गुदवा लेती हैं हाथ पर, और कहीं कहीं आज भी गांवों में इसका चलन है जरूर। और बेटा एक बात कहूं, ये तो तुम शायद जानते भी होगे, अपने स्कूल में पढ़ते हो तो, है ना, ये शहर जो है ना, इन शहरों में आजकल टेटू का चलन बहुत जोरों पर है। हाँ, ये टेटू जो है ना, ये बने बनाए कुछ भी चित्र या तो बदन पर चिपका दिए जाते हैं या छपवा दिए जाते हैं, पर ये गुदना की कला नहीं है। जैसा कि सुई से गोद गोद कर किया जाता वो नहीं है, ये अलग है, लेकिन ये इसको टेटू कहा जाता है और ये बहुत चल रहा है शहरों में। दादाजी, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हाँ छोटू, समझे ना, तो ये क्या है कि हमारी प्राचीन और आधुनिक मान्यताएं हैं, और ये भी एक युग संचार की तरह हमारी जीवनधारा में प्रवाहित होती रही हैं। और यही नहीं, ऐसी अनेक कलाएं हैं बरसों पुरानी, तो कुछ आज के युग की, कुछ पुराने युग की। और जब भी इनका प्रयोग और चलन होता है तो धीरे धीरे संचार की सहायता से इनका प्रचार प्रसार होता है और ये जनमानस में लोकप्रियता पाने लगती हैं। तो श्रोताओं, कलाएं असीम हैं, अनंत हैं, और इसी संदर्भ में आदिवासी कलाओं का चलन अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। नमस्कार।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम युग संचार, जिसका शीर्षक था आदिवासी संस्कृति की अनूठी कलाएं, और इसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वतंत्र कुमार ओझा, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए साथियों, सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

अभी आपने सुना एक भक्ति गीत और प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए ग्लोरिया गांगले को। अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे विवेक पीटर रॉबर्ट। धन्यवाद।

धन्यवाद ज्योति जी। सभी श्रोता मित्रों को विवेक पीटर रॉबर्ट का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी की समय सारणी के अनुसार आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार, नारी सशक्तिकरण, मन दर्पण और अंत में पर्यावरण। तो आइए साथियों, समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार से। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है न धर्म की सीमा न जात का बंधन। इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता हैं फादर हरमन मंडोट SVD।

सर्वधर्म विचार के तहत लीजिए सुनते वार्ता जिसका शीर्षक है न धर्म की सीमा न जात का बंधन। प्रिय श्रोता मित्रों नमस्कार। भारत में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों का होना सांप्रदायिकता नहीं है। जब लोगों के धार्मिक हित आपस में टकराने लगते हैं तब सांप्रदायिकता पैदा होने लगती है। चाहे पंडित मुल्ला कुछ भी कहे, सलमान खान अपने घर में गणपति बैठाते हैं और बाकायदा पूरे अनुष्ठान के साथ उनकी खातिरदारी करते हैं। वे ईद भी मनाते हैं और क्रिसमस भी। फिर सिर्फ वे ही क्यों, शाहरुख खान भी दिवाली मनाते हैं और वह भी बड़ी सी पार्टी देकर। हकीकत में इस देश की गंगा जमुनी तहजीब यदि कहीं दिखाई देती है तो वो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। यहाँ हर स्तर पर समानता नजर आती है। धर्म जाति उम्र को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ राष्ट्रीयता का सवाल भी हास्य पर ही होता है। व्यवसायिक तौर पर तो खैर ये नजरिया जरूरी है ही, लेकिन सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी ये नजरिया यहाँ का सच है। और ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि सालों साल से यह परंपरा इस इंडस्ट्री की विशेषता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सही मायनों में धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। एक तो किसी भी फिल्म के निर्माण में इतने सारे लोग होते हैं कि उनमें हर धर्म जाति क्षेत्र और संप्रदाय के लोग काम करते हैं। इस दुनिया में कई अलग अलग तरह के कामों की जरूरत होती है और उसी के अनुरूप लोगों की भी। फिल्म निर्माण एक ही साथ रचनात्मक कर्म भी है और तकनीकी भी, तो जाहिर है यहाँ धर्म भाषा जाति संप्रदाय और हर क्षेत्र के प्रश्न उठते ही नहीं है। यहाँ एक ही धर्म है और वो है सफलता, किसी भी कीमत पर बस सफलता। और इस धर्म के इर्द गिर्द और कोई धर्म टिक नहीं पाता। तभी तो यहाँ के रिश्तों का स्वरूप भी वैसा ही है, तरल प्रवाहमान बिना किसी गांठ पत्थर के बहते हुए से। राजनीति की तरह ही व्यवसायिक दुनिया में कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। इस दुनिया में रिश्तों का सीधा सा हिसाब या तो दिल से है या फिर दौलत। जब मामला काम का हो तो पूरा का पूरा ध्यान काम की गुणवत्ता मतलब फिल्म की सफलता पर होता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि काम करने वाला कौन है। इसी तरह इंडस्ट्री के परिवारों में भी दुनिया के सारे रंग देखने को मिल जाते हैं। चाहे हमारी दुनिया में ये अब उतना असामान्य नहीं रहा है, लेकिन फिल्मी दुनिया में ये कभी भी असामान्य नहीं रहा। जब शशि कपूर ने जेनिफर कैंडल से शादी की तब भी नहीं, और अभी अभी जब रितेश देशमुख ने जेनेलिया डिसूजा से शादी की तब भी नहीं। फिल्मी दुनिया में कितने परिवार ऐसे हैं जहां अंतरजातीय और अंतर्राष्ट्रीय शादियां हुई है। शशि कपूर जेनिफर कैंडल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जहां यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। सलमान खान का परिवार इसका प्रतिनिधि उदाहरण है। सलमान के पिता सलीम खान ने पहले हिंदू लड़की सुशीला चरण के साथ शादी की, जिन्हें सलमान नाम दिया गया। बाद में हेलन से शादी की। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया सलमान के भाइयों अरबाज और सोहेल ने। अरबाज ने पंजाबी क्रिश्चियन लड़की मलाइका अरोड़ा से शादी की, तो सोहेल ने सीमा सचदेव से। बेटी अलवीरा खान ने अतुल अग्निहोत्री से शादी की, तो सलीम खान ने अर्पिता नाम की एक हिंदू लड़की को भी गोद लिया। सुनील दत्त के परिवार में भी यही क्रम चलता रहा। सुनील दत्त ने नरगिस से शादी की, संजय ने पहले ऋचा शर्मा से शादी की, लेकिन ऋचा की जल्दी ही मृत्यु हो गई। बाद में कई हीरोइनों से उनके अफेयर की चर्चा चलती रही और अंत में उन्होंने मान्यता उर्फ दिलनवाज शेख से शादी की। साथ काम करते हुए प्यार होना तो खैर बहुत साधारण बात है। नसरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, पंकज कपूर, नीलिमा अजीम, राज बब्बर, नादिरा जहीर, कयाज जगदीत कौर, किशोर कुमार मधुबाला, जावेद अख्तर, हनी ईरानी, अर्जुन रामपाल, मेहर जेसिया, आमिर खान और किरण राव जैसे साथ साथ काम करने वालों के बीच के रिश्ते हो या फिर फिल्म परिवारों में ही एक ही से परिवेश से संपर्क में आने के उदाहरण हैं,
जैसे ऋतिक रोशन, सुदेन खान का उदाहरण, बल्कि ये कहना कि अंतर धार्मिक विवाह आम जिंदगियों में चाहे उतने सामान्य न हो, लेकिन फिल्मी दुनिया में हर दूसरे परिवार में यही होता आया है, होता रहा है और होता रहेगा। फिल्मी और गैर फिल्मी जोड़ों में भी अंतर धार्मिक विवाह बहुत आम है। फिरोज खान के परिवार में यही क्रम चल रहा है। फिरोज खान ने सुंदरी से विवाह किया और फरदीन ने नताशा माधवानी से। अंतर धार्मिक विवाहों का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हो रहा है। अभी इसी कतार में कई कपल इंतजार कर रहे हैं, जैसे सेफ करीना और कुणाल सोहा। असल में शायद उस दुनिया में धर्म और जाति पर विचार ही नहीं किया जाता है। हाँ, सुरैया और देवानंद जैसे संकीर्ण मामले भी हुआ करते थे, लेकिन वे बहुत कम हैं। आमतौर पर फिल्मी दुनिया इस तरह की संकीर्णताओं से ऊपर ही हुआ करती है। भिन्न भिन्न धर्मों का होना सांप्रदायिकता नहीं है। लोगों के समुदायों के धार्मिक हित कभी नहीं टकराते, इसलिए उनमें कोई हिंसा तनाव होने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ लोगों के सांसारिक हित टकराते हैं तो वे अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इस बात का धुआंधार प्रचार करते हैं कि एक धर्म के मानने वाले लोगों के हित समान है और भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के हित परस्पर विपरीत एवं विरोधी है। बस यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। सांप्रदायिकता को फैलाने वाले स्वार्थी लोग इतने चालाकी से इस काम को करते हैं कि कुछ लोग उन लोगों के हितों को अपने हित मानने की भूल कर बैठते हैं। उन स्वार्थी सांप्रदायिक लोगों के भौतिक स्वार्थ लोगों को अपने आध्यात्मिक हित नजर आए, इसके लिए वे धर्म का सहारा लेते हैं। चूंकि धर्म से लोगों का भावनात्मक लगाव होता है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसका सहारा लेकर उनको आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। लोगों की आस्था व विश्वास को सांप्रदायिकता में बदलकर दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ प्रयोग करके स्वार्थी सांप्रदायिक लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। मित्रों, यहां हमें फिल्म दुनिया के लोगों से सीख लेनी होगी कि धर्म और जाति से ऊपर मानवता है। फिल्मी दुनिया में सफलता कलाकारों को जोड़ती है। हमें सफलता भले ही आपस में न जोड़े, मानवता जरूर हमें आपस में जोड़ सकती है। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सर्वधर्म विचार के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था न धर्म की सीमा न जात का बंधन, और इस वार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे फादर हरमन मंडोड SVD। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं सभी नारियों के लिए विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, आप सभी सही समझ रहे हैं कि मैं कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के बारे में ही कह रहा हूँ। तो आइए सहेलियों, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है नारी उद्यमिता, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत आज सुनिए वार्ता नारी उद्यमिता। बहनों, पिछले कुछ वर्षों में हम सभी ने देखा है कि कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। हम इसे महिलाओं की प्रगति का आधार जरूर मान सकते हैं, लेकिन एक और क्षेत्र है जिसके द्वारा महिला न केवल स्वावलंबी हो सकती है वरन अपने प्रबंधन और निर्णय क्षमता के गुणों का और अच्छे से विकास कर सकती है। जी हाँ, ये क्षेत्र है उद्यमिता का। उद्यमिता अर्थात किसी कंपनी या संस्थान में नौकरी करने के स्थान पर स्वयं का उपक्रम प्रारंभ करना और अपने उत्पाद या सेवाओं का विक्रय करना। अब उदाहरण के लिए, मेरी एक परिचिता को अलग अलग पोशाकों पर सजने वाले मोती, कुंदन, सिक्के और घुंघरुओं को सजाने का शौक था। उसके सजे सजाए ड्रेस और साड़ियां हमेशा ही पार्टियों की शान होते थे। अब ये देखकर उसके परिचितों और सहेलियों ने अपने वस्त्रों की ऊपरी साज सज्जा का काम उसे सौंपना शुरू कर दिया। शुरुआती समय में जब उसका बेटा सिर्फ 2 वर्ष का था, घर बैठकर ये स्वावलंबन उसे खूब भाया। लेकिन बेटे के बड़े होने और परिवार के साथ सामंजस्य के चलते उसे जब अपने काम के लिए समय मिलने लगा, तब उसके पति ने स्वयं निवेश कर उसे एक सुंदर बुटीक बनाकर दिया। उसने अपने साथ 7-8 कारीगर रखे और धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों के प्रसिद्ध वस्त्र भी बिक्री के लिए रखने लगी। और धीरे धीरे बढ़ती उसकी इस उद्यमिता के फलस्वरूप आज मेरी सहेली एक व्यस्त बुटीक की मालकिन है। मैंने उद्यमिता यानी सिर्फ काम करना और लाभ कमाना ही नहीं होता, इसके अनेक फायदे भी हैं। जैसे आप अपने समय और परिवार की प्राथमिकताओं का निर्धारण स्वयं कर सकती हैं, आपका अपना काम है। जिनके बच्चे छोटे हैं, वे उनके स्कूल में जाने का समय, छोटा मोटा काम शुरू करते हुए धीरे धीरे ही अपना काम बढ़ा सकती हैं। रोजाना 1 या 2 घंटे किया हुआ काम आगे चलकर एक पूरे दिन के काम में कब बदल जाता है आपको स्वयं मालूम नहीं पड़ता, और उस समय तक आप अपने बच्चों के बचपन को भी बचा चुके होते हैं, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर चुके होते हैं। दूसरी बात बहनों, आप स्वयं के निर्णयों से जो सीखती है ना, इससे आपको व्यापारिक समझ और प्रबंधन का खासा ज्ञान हो जाता है। आप यदि किताबों में पढ़कर प्रबंधन के गुर सीखेंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा परीक्षा पास करने के काम आएंगे, लेकिन स्वयं के निर्णय लेकर उन्हें अपने व्यापार में लागू करना और इस प्रकार से अपने व्यापार का प्रबंधन करना, इससे आपको जो सीख मिलेगी वो जिंदगी भर के लिए आपके काम आएगी। दूसरी बात, स्वावलंबन और आत्मविश्वास होने के कारण आप अपने जीवन को आसान बना लेती हैं। आप निर्णय जल्दी ले लेती हैं, निर्णय सही लेती हैं। हर बात में पति या परिवार पर निर्भर रहने के स्थान पर आप अपने विचारों से भी स्वतंत्र होने लगती हैं। फलस्वरूप होता यह है कि आपके परिवार का, आपके समाज का आपके ऊपर विश्वास होने लगता है। वैसे भी सभी को ऐसे ही व्यक्तित्व तो चाहिए होते हैं जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़े, सभी के हित में निर्णय ले लें और सफल भी रहें। वैनो, बाजार के चलन के अनुरूप अपने आप को और अपने उत्पाद और सेवाओं को बनाए रखने के लिए आप प्रयत्न करती हैं। उद्यमिता में इसके फलस्वरूप आपकी शिक्षा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप नई पीढ़ी के साथ भी सामंजस्य बैठा पाती हैं। बाजार का चलन जब भी आप देखती हैं, इस प्रकार से आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है और उस प्रकार को, उस बदलाव को जब आप अपने व्यापार में लागू करती हैं, तब आपको एक नवीन आत्मविश्वास मिलता है, और जब वो चलन, वो बदलाव आपको और अधिक लाभ देता है, तब ये सिद्ध होता है कि आपके द्वारा लिया गया बदलाव का निर्णय बिल्कुल सही था। बहनों, उद्यमिता किसी भी महिला को और उसके व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती है। इससे आप अपने पारिवारिक मसलों को बहुत आसानी से हल कर लेती हैं। आखिर उद्यमिता के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं और परिवार में जो समस्याएं आती हैं, उनमें कुछ न कुछ एक रास्ता तो होती है। तो जब आप अपनी उद्यमिता की समस्याओं को हल कर पा रही हैं, तब घर की समस्याएं तो बहुत आसान हैं। दरअसल स्वावलंबन और आधुनिकता हमेशा एक साथ चलते हैं, लेकिन नौकरी करने से मिलने वाली स्वावलंबन की भावना और उद्यमिता के कारण मिलने वाली स्वतंत्रता में फर्क है।
और ये फर्क आप इसके अनुभव से ही जान सकती हैं। समय की पाबंदी के बिना अपनी पूरी मेहनत का पूरा मूल्य जब आपको मिलता है, तब उस स्वावलंबन का अर्थ ये होता है कि ये सारा उपक्रम आपका अपना है। अब बहनों, जब हम उद्यमिता की इतनी तारीफें आपके सामने कर रहे हैं, तो चलिए आपको ये भी बता दें कि यदि आपको इस क्षेत्र में आना है तो आप शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले तो बहनों, अपना आकलन करें। क्या आप छोटे मोटे खतरे उठा पाने में सक्षम हैं? एक बहुत अच्छी ग्रीक कहावत कही जाती है बहनों कि जो भी महिला बिना किसी की मदद के न्यूनतम समय में एक व्यस्त सड़क को पार कर लेती है, कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी उद्यमी बनती है। दरअसल यातायात के नियम, आने जाने वाली गाड़ियां, ये निर्भर करती हैं, ये प्रतीक होती हैं आने वाले खतरे की। और आप यदि उन खतरों से अपने आप को बचाकर बहुत अच्छे से आगे जा सकती हैं, बहुत सही तरीके से सड़क को पार कर सकती हैं, तो ये सोच लीजिए कि आपके उद्यम में आने वाली किसी भी परेशानी को आप बहुत आसानी से आगे ले जाएंगी। इसके बाद बहनों, आपको परिवार की स्थिति को देखना है। अब ये देखिए कि यदि आपके घर में बीमार बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चों की उपस्थिति है और वे आप पर ही निर्भर हैं, अब ऐसे में सोच समझ कर निर्णय लें और धीमी और छोटी सी शुरुआत करें। इसके अगली बात कि आपको अपनी रुचि का क्षेत्र चुनना है। अब आप ज्यादा पैसे देने वाला क्षेत्र चुनेंगी जिसमें आपको ज्ञान भी कम है और रुचि भी, तो आपका ज्यादा समय तक चल पाना मुश्किल होगा। आपको अपनी रुचि और सुविधा का ख्याल तो हमेशा रखना ही होगा। इसके बाद वित्तीय स्थिति। बहनों, कई महिलाएं ये करती हैं कि वे दूसरों की देखा देखी किसी व्यापार में धन लगाती हैं और फिर बाद में पछताती हैं। हो सकता है कि आपकी सहेली ने कोई बुटीक खोला, आपकी सहेली ने किसी नई वस्तु की एजेंसी ली और उसको उसमें बहुत सारी सफलता मिली, लेकिन हो सकता है उसे उस वस्तु का बहुत अच्छे से ज्ञान हो या फिर उसे किसी का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन मिल रहा हो, लेकिन ये बात आपके साथ तो सही नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप भी नकल करें और उद्यमिता को प्राप्त करें। आपको ये देखना है कि आपकी रुचि, आपका क्षेत्र क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रशिक्षण। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें उन्नत खेती से लगाकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इकाई तक के लिए लगने वाले ज्ञान, वित्त और बाजार की स्थिति आदि की जानकारी दी जाती है। बेहतर होगा कि ऐसा ही कोई प्रशिक्षण लेकर जिस उद्यम को लगाने का सपना आप देख रही हैं, उसके बारे में प्रशिक्षण लिया जाए और सही स्थिति को जान लिया जाए। तो फिर बहनों, अब आप तैयार हैं अपने उद्यमिता के गुणों को सभी के सामने रखने के लिए? देखिए, अपने भीतर किसी उत्पादन या सेवा प्रदाता के बतौर आने वाले कुछ वर्षों में आपकी पहचान अवश्य बनेगी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक था नारी उद्यमियता, और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। दोस्तों आइए अब सुनते हैं एक भक्ति गीत, और यह प्रस्तुति है सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीत और यह प्रस्तुति थी सत प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर की। साथियों, आप रेडियो वेरितास एशिया का हिंदी अनुष्ठान सत्य स्वर सुन रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी कार्यक्रमों को ऑनलाइन hindi.rveritas-asia.org पर सुन सकते हैं, या अगर आप एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करने के लिए सर्च कीजिए सत्यस्वर वेरितास। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है satyaswar.rva। हमारा ट्विटर हैंडल है @satyaswar। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है सत्यस्वर वेरितास। दोस्तों, आप अपने सुझाव और रचनाएं भेजने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9165597216। हमारा ईमेल एड्रेस है rva.satyaswar@yahoo.in। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस, सत प्रकाशन संचार केंद्र, 10 खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सत्य स्वर, जो है हर पल हर क्षण आपके साथ। साथियों, हमारी समय सारणी के अनुसार अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है मन दर्पण। तो आइए मित्रों, सुनते हैं कार्यक्रम मन दर्पण के तहत वार्ता, जिसका शीर्षक है मन में हो सेवा भाव संवेदना। इस वार्ता के लेखक हैं कृष्णकांत दुबे और प्रस्तुत करता है भवानी कौर।

मन दर्पण के अंतर्गत सुनिए वार्ता मन में हूँ सेवा भाव संवेदना। लेखक हैं कृष्णकांत दुबे, वाचिका भवानी कौल। क्या यह सत्य है, जिस मन में सेवा भाव तथा संवेदना है वह मन सुख पाता है? प्रश्न यही था, उत्तर मिला हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। जिसमें भी सेवा भाव तथा संवेदना